0: और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: मुलाकात करने, अनशन खत्म करने की अपील के लिए धन्यवाद भी दिया है सोनम वांगचुक ने। दोनों नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद अपना ये अनशन खत्म कर दिया है और उन्होंने कहा है, सोनम वांगचुक ने ये कहा है कि बातचीत के दौरान सरकार की ओर से उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने की बात कर दी है। उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया, हालांकि इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कुछ शर्त भी रखी है। वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर दोनों नेताओं से अस्पताल आने और उनसे मुलाकात करने के लिए, अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए धन्यवाद भी दिया। विचार का भरोसा दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, दोनों नेता पहुंचे थे, आपने बताया था कि इस समय मुलाकात चल रही है, क्या कुछ सकारात्मक बातें रही जिनके आधार पर सोनम वांगचुक ने हिमांशु अनशन खत्म करने का निर्णय लिया?
2: मांगे थी उसको सरकार कंसीडर कर रही है, वो

0: हिमांशु सुन पा रहे हैं आप हमें?
1: जी जी जी सही में सुन पा रहे हैं बिल्कुल आपको.
0: जी हिमांशु अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज.
1: जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर लीक के बाद सुसाइड किया उन बच्चों के परिवारों को एक एक करोड़ रुपए मुआवजा देने की, और इस प्रोटेस्ट के दौरान और मार्च के दौरान जिन पर केस दर्ज किए गए उन केसों को वापस लेने की उनकी मुख्य मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की भी मांग थी. तो हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ एश्योरेंस दिया गया हो कि हम ये कर रहे हैं. और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुबह कहा था उसका गठन होगा, देर शाम तक उसका गठन हो गया. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से एक घंटे पहले जो है वो एक वीडियो जारी किया कि सरकार किस तरीके से पेपर लीक के ऊपर गंभीर है, क्या एक्शन अभी तक लिए गए हैं, और कल कैबिनेट में एक नया बिल जो है पेपर लीक से जुड़ा हुआ सरकार लेकर आएगी, जिसको संसद के इसी सत्र के दूसरे सप्ताह में दोनों ही सदनों से पास कराकर उसको कानून बनाने का काम जो है सरकार करने वाली है. ये सारे प्रयास अगर आप देखें और उस पर फिर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब पहुंचते हैं सोनम वांगचुक से मुलाकात करने, जो दूसरे राउंड की मुलाकात थी, इससे पहले दो दिन पहले मुलाकात हुई थी, अब दूसरे राउंड की, तो ये सारी चीजें जो है होने के बाद सोनम वांगचुक को कहीं ना कहीं सरकार का आश्वासन होगा, उनकी मांगों पर सरकार विचार कर सकती है. और उसके बाद जो है सोनम वांगचुक ने जो है अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया.
0: अच्छा हिमांशु, मांगों का भी आपने उल्लेख किया, एक बार हम फिर से बता दें कि जो पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को मुआवजा, इसके अलावा जो संसद घेराव के दौरान जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया उनके केस खत्म करना, लेकिन क्या इसके अलावा जो एक मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उस पर भी कुछ आश्वासन हो सकता है?
1: देखिए उस पर कोई मुझे नहीं लगता इस तरीके का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया होगा, क्योंकि मांग भी लंबी चल रही थी और सरकार इस तरीके के एक्शन के मूड में नहीं थी. और आप देखिए इसी तरह इसीलिए जो है वो दो राउंड की मुलाकात जो है वो हुई है सोनम वांगचुक के साथ, जो लगातार अनशन पे थे, उनके 25 दिन पूरे हो चुके थे अनशन के, 26वां दिन जो है आज देर रात से शुरू हो गया. और उसके बाद अगर आप देखें तो सीजेपी के दो प्रोटेस्टर से मुलाकात हुई, उनका मेमोरेंडम लिया, उनको ये कहा गया कि हमने आपका मेमोरेंडम ले लिया है, आप शांति बनाए रखें और प्रशासन के साथ जो है शांति बनाने में सहयोग करें, तो एक तरफ वो. और दूसरी तरफ आप देखें तो तमाम सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने पहले किया था अपने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के जो मंगल मिलन कार्यक्रम था उसमें उन्होंने साफ कर दिया था ये घोर पाप हुआ है पेपर लीक के लिए, जो सरकार को कदम उठाने हैं वो उठाए गए हैं, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए एक्ट किया. जैसे ही ये सामने मामला आया न्यूज पेपर लीक का होने के बाद दोबारा री एग्जाम कराएगा, री एग्जाम के जो रिजल्ट है वो पहले जो है वो घोषित हुए, ये सारी प्रक्रिया हुई और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा ये उन्होंने कहा. आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाता है शाम तक दिल्ली में, उसके ऑर्डर आ जाते हैं, फिर देर रात प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कल कैबिनेट में एक बड़ा बिल जो है वो लेके आएगा जो सख्त कदम होगा पेपर लीक मामलों के ऊपर. तो एक तरीके से सरकार ने जो ज्यादातर मांगी थी उन पर विचार किया है.
0: प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी इस समय हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है. भंडारी जी, सकारात्मक विचार की बात करते हुए सोनम वांगचुक ने ये अनशन तोड़ा है, क्या उनकी जो मांग थी सारी सभी पर विचार का मतलब है सरकार ने क्या ये मांगे मान ली?
2: देखिए आज ये स्पष्ट हो चुका है सईद जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार छात्रों की एस्पिरेशंस और छात्राओं की भावनाओं के प्रति एक जवाबदेह और संवेदनशील सरकार है और युवाओं को उनके प्रति कंप्लीट और अटूट भरोसा है. प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो मैसेज देना कि एक कैबिनेट के अंदर बड़ा निर्णय लाया जाएगा और स्ट्रिक्टर प्रोविजंस लाए जाएंगे, इसके पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा ये अनाउंस करना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आए,
0: हमारी आवाज सुन पा रहे हैं,
2: स्पष्ट होता है कि किसी से
0: जी जी आपकी बात पूरी कीजिए प्लीज.
2: जी सोनम वांगचुक जी को भी ये विश्वास हुआ है कि समाधान सिर्फ और सिर्फ चर्चा से होगा और मोदी सरकार की भावना युवाओं के मुद्दों पे समाधान पाने की है, ना कि राजनीति करने की.
0: प्रदीप जी, क्या मांगे, इसका अर्थ ये लगाया जाए कि मांगे मान ली गई हैं सरकार की तरफ से?
2: देखिए सोनम वांगचुक जी की जो बात अगर आप गौर करेंगे, हमेशा से उनकी रही है कि चर्चा होनी चाहिए और एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो संदेश ये
0: नहीं, नहीं, नहीं प्रदीप जी, उन्होंने दो तीन बातें कही थी, दो तीन मांगे उनकी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने जान उनके परिवार को मुआवजा मिले, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।
2: देखिए सोनम वांगचुक जी का जो आप लास्ट वीडियो स्टेटमेंट देखेंगे उसमें ये स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि छात्रों को, अभी जो सोनम वांगचुक जी का अगर आप ट्विटर हैंडल पढ़ेंगे उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि वो वायलेंस के साथ में नहीं है परंतु वो स्टूडेंट रिफॉर्म्स के साथ में है। डिटेल्स के बारे में सोनम वांगचुक जी खुद देश को बताएंगे।
3: दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में पिछले 33 दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को क्लियर कर दिया है कि उन्होंने अपनी शर्तें बता दी हैं, बातचीत करनी है तो जंतर मंतर आकर बात करें। जंतर मंतर पर आखिर क्या चल रहा है, हमारी रिपोर्ट।
4: जंतर मंतर पर धरना जारी, क्या है आगे की तैयारी? प्रदर्शनकारियों की एक ही आवाज, इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान। सरकार से बातचीत पर सीजेपी ने मैसेज क्लियर कर दिया। जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन से सुधरेगा देश का शिक्षा तंत्र? जुलाई को जंतर मंतर पर लाठी चार्ज के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन की सूरत और सीरत दोनों बदल चुकी हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन जंतर मंतर से आगे बढ़कर मुंबई, बेंगलुरु, पटना, जयपुर समेत दो दर्जन से अधिक राज्यों और प्रमुख शहरों तक फैल चुका है।
5: डेढ़ महीने पुराना एक मूवमेंट शुरू होता है, उसने आज अपने पूरे देश की जनरेशन को जगा दिया है। जेन जी आज जाग चुका है। 33 दिन हो गए इस आंदोलन को शुरू हुए, लेकिन आप देखिए अभी भी जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर के बाहर है, लाखों की संख्या में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता है कि आपने पूरी जनरेशन को जगा दिया है, जो अब अपने हक के लिए लड़ रही है, अब बैठी नहीं है, अब डर नहीं रही है और आंख में आंख डालकर सवाल कर रही है।
4: एक तरफ जंतर मंतर से सियासी तंत्र हिला है, दूसरी तरफ देश के शिक्षा तंत्र को सुधारने का तूफान उठा है। जंतर मंतर से एक ही आवाज जोर शोर से आ रही है, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, और सीजेपी कह रही है कि उन्होंने अपनी मांगे और मैसेज क्लियर कर दिया है।
6: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं, जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है, अगर आप कहें ऑफिस में तो ऑफिस में भी हो सकती है। कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक चार मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।
5: उनको बात करनी तो खुद आ जाए, हम तो गए थे दो दिन पहले बात करने, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे नड्डा जी के घर पे। उनको बात करनी तो खुद आ जाए ना यहाँ पे जंतर मंतर, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमारी तो डिमांड्स क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो या तो होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ नेगोशिएशन नहीं है। तो आप डेढ़ महीने से क्या विचार रहे हैं, मतलब कुछ इसमें विचारने लायक है क्या? या तो आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर को आप सस्पेंड तो नहीं कर सकते हो, तो या तो हटाओ या मत हटाओ, जो भी है बता दो, इसमें डिस्कशन क्या करना है?
4: जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा है, और अब आपको जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं, कैसे प्रदर्शनकारियों के लिए फूड डिलीवरी आ रही है, अनजान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के लिए खाना पीना और कई जरूरत का सामान भेज रहे हैं।
7: आप क्या लेके आए भैया? पानी है। तो लोगों ने, गर्मी है, उमस का मौसम है, तो पानी भेजा ढेर सारा इतना जंतर मंतर पे। तो लोगों ने सैनिटरी वगैरह भी भेज रहे हैं।
8: सैनिटरी पैड्स मैं कुछ 7 दिन से
7: लेकर के आ रहा हूँ।
8: 7 दिन से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ।
7: आप लोग दिल्ली के हैं, बाहर के हैं?
8: दिल्ली, दिल्ली।
9: हम दिल्ली के।
7: रोज इतना खाना लेकर के आते हैं?
8: रोज
9: इससे डबल ही होता है, ट्रिपल होता है।
7: बाहर से आए? किस, कहाँ से आए ऑर्डर?
10: ये मतलब दिल्ली से बाहर से है।
7: आप भी खाना डिलीवर करने आए भैया? आपका ऑर्डर कहाँ से आया था?
11: ये मैं लाया था राजेंद्र नगर
7: दिल्ली से। हाँ। किसको देने को बोला उन्होंने?
11: उन्होंने बोला जो यहाँ पर खड़े हुए खाना लेने वाले उनको दे दो।
7: नहीं, कुछ नाम बताया था किसी का? नाम बता? कोई
11: नाम नहीं बताया,
7: बस बोला खाना देकर आ जाओ। दिन भर में कितना ऑर्डर आप लेके आते हैं?
11: कम से कम 20-25।
7: तो आप लोग इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं खाना लेकर के?
12: हाँ, मतलब जस्ट गिविंग द फूड, वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट एंड वी आर टेकिंग इट इनसाइड टू द पीपल हु वांट दैट।
7: का ऑर्डर कहाँ से आया है?
10: करोल बाग,
7: दिल्ली का ही है।
4: 20 जुलाई से लेकर अब तक जंतर मंतर और उसके करीब कई बार हंगामे और प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने की तस्वीरें आई हैं। ऐसे में जंतर मंतर के चारों ओर सुरक्षा बलों का घेरा और तगड़ा कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से भी पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी कर रही है।
13: इस वक्त मैं संसद मार्ग में मौजूद हूँ और यहाँ से ठीक सामने की तरफ संसद मार्ग और जंतर मंतर का टी पॉइंट है, जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो आरएएफ के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, वो यहाँ पर मौजूद। अभी की ताजा स्थिति है कि नारेबाजी हो रही है। एक तरफ आरएएफ की टीम है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त कभी कभी ऐसी तस्वीर होती है, लेकिन देर शाम होते होते यहाँ पर भीड़ उग्र हो जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं, जो पुलिस पर लगातार पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर हमले कर रहे हैं। 22 जुलाई की अगर बात की जाए तो 5 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोट आई थी। अब इस पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरे से दिल्ली पुलिस कर रही है।
4: इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी और तादाद में जंतर मंतर पर न पहुंचे, इसके लिए सुबह से ही दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं।
14: जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस ने भी नई दिल्ली के इलाके में व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। लेकिन एक विचित्र किस्म का प्रयोग दिल्ली में हो रहा है, मेट्रो स्टेशन पर ताला जड़ दिया गया है। ये मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है, शटर डाउन है। ये वो समय है जब बड़ी तादाद में दिल्ली वाले अलग अलग जगह दफ्तरों को जाते हैं और लिस्ट बड़ी सी लंबी लिस्ट है 16 मेट्रो स्टेशन की जिनको बंद कर दिया गया है।
4: हजारों की संख्या में जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में डटे प्रदर्शनकारियों की वजह से नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस की सभी दुकानों, दफ्तरों और रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे ही बंद करने का ऐलान कर दिया।
13: इस वक्त मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और 6:30 बजे के बाद कनॉट प्लेस की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। सामने की तरफ हम आपको दिखाएं तस्वीरें। अमूमन यहां चहल पहल होती है, जो दुकानें हैं वो खुली होती है, रेस्टोरेंट, बार और तमाम यहां पर शॉप्स होती हैं। लेकिन न्यू दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन ने एक चिट्ठी जारी करके ये बताया है दुकानदारों को कि 6:30 बजे के बाद दुकान बंद हो जाएंगी।
4: सरकार सीजेपी और उसकी अगुवाई में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को शांत कराने और समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और अब आपको जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर सड़क से संसद तक राजनीतिक संग्राम की रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। विपक्ष ने ऐलान किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, संसद नहीं चलेगी। सरकार विपक्ष में पेपर लीक को लेकर टकराव की स्थिति है। इसी बीच पीएम मोदी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना संदेश भेजा। सवाल यही कि क्या पीएम के ऐलान से प्रदर्शन खत्म हो जाएगा?
4: सरकार की टेंशन हाई, इस्तीफे पर लड़ाई। सड़क से संसद तक छिड़ा है सियासी संग्राम।
15: बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है।
4: विपक्ष एकजुट, प्रदर्शनकारी अड़े, संसद ठप। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष का सीधा इनकार। पीएम का पैगाम, क्या निकलेगा कोई समाधान? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। संसद में पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर संपूर्ण विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, तो विपक्ष की मांग यही है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी। टकराव और तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर पैगाम दिया है। पैगाम देश के युवाओं के नाम था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मुद्दे की सुनवाई और सजा की घोषणा की। दावा किया कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिलेगा ताकि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मतलब पीएम ने यही कहा कि सरकार समाधान के लिए तैयार है, पूरा प्लान तैयार है, लेकिन पीएम के ऐलान की टाइमिंग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
5: मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी।
4: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार करने वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम के ऐलान पर निशाना साधते हुए यही कहा कि छात्रों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है। मतलब यही है कि पीएम के पैगाम से किसी समाधान की उम्मीद अभी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि पीएम ने छात्रों के वास्ते समाधान के रास्ते खोज लिए हैं।
15: देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
16: प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है।
4: छात्र जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क से संसद तक विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष की अपनी दलील है और सरकार अपना राग अलाप रही है।
17: ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है।
18: प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया तो हमने क्या, हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले?
4: विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार यही दम भर रही है कि वो देश के युवाओं के हक पर डाका डालने वालों को बख्शेगी नहीं।
19: नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले।
20: सदन न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है। हमारी मांग कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, 152 बार जिसका पेपर लीक हुआ है, इस्तीफा दे, तभी चर्चा होगी।
4: तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान ही इस आंदोलन का समाधान है? विपक्ष की मांग है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।
1: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है।
21: युवा संतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम नहीं है। ये रटी रटाई बातें हैं, पहली बार नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो एक ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया घोटालों का, इसमें हमारे बच्चों ने आत्महत्या की है, शर्म आनी चाहिए।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद तोड़ा अनशन। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया फैसला। पीएम मोदी ने वांगचुक के लिए पोस्ट किया। पेपर लीक पर पीएम मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश। कहा छात्रों और परिवार के लिए पीड़ादायक। कैबिनेट सख्त फैसला लेगी। संसद में जल्द बिल पास कराएंगे।

छात्र जनता पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन, आज छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों के साथ हो सकती है बैठक। पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी का स्मृति तक मार्च, विपक्षी सांसदों के साथ लाठीचार्ज का किया विरोध, बोले मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मानसून सत्र के पांचवें दिन भी घमासान के आसार, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, बीजेपी ने सांसदों को दोनों सदनों में मौजूद रहने के निर्देश दिए।

0: साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और 6 ताजा खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले आज आपको बताएंगे, 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने फैसला लिया। दूसरी बड़ी खबर, नीट पेपर लीक को लेकर के पीएम मोदी ने आधी रात को वीडियो संदेश जारी कर दिया, क्या कहा यह भी आपको बताएंगे। तीसरी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी का आज का प्लान क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। चौथी खबर यह भी दिखाएंगे कि नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर के विपक्ष क्या कह रहा है, राहुल गांधी ने कहां तक मार्च निकाला। पांचवी बड़ी खबर यह कि संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है, बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे, उत्तर से पूरब और पश्चिम तक मानसून ने कहां कहां जल प्रलय मचाया। तो बुलेटिन में सबसे पहली और बड़ी खबर सोनम वांगचुक को लेकर आ रही है, क्योंकि पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया। देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद सोनम वांगचुक ने यह फैसला लिया। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराया। अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, उन्होंने क्या कहा बता दें आपको। लंबी बातचीत और कुछ शर्तों पर सहमति बनने के साथ देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मैंने यह फैसला लिया है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, उन्होंने भी सोशल मीडिया पोस्ट किया और कहा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अब अपनी दिनचर्या रखें, जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। आपको बता दें, वांगचुक के अनशन का आज 27वां दिन था। 21 जुलाई को उन्हें सफदरजंग से मेदांता अस्पताल ले जाया गया था। वहां उन्होंने कहा था कि उन्हें सफदरजंग में नहीं रहना है। अदालत ने कहा कि वो हिरासत में नहीं है। उसके बाद वो मेदांता ले गए और ये देखिए वो तस्वीरें हैं जब कल शाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ सोनम वांगचुक की मुलाकात हुई। उन्होंने जो शर्तें रखी सरकार ने उस पर सहमति जताई और उन शर्तों की सहमति के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया।
1: सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन। 26 दिन बाद अस्पताल में खत्म की भूख हड़ताल। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया फैसला। नीट पेपर लीक के खिलाफ और छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन खत्म कर दिया है। देर रात मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उनका अनशन खत्म कराया। अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त किया। सोनम वांगचुक ने अपनी शर्तों पर सरकार के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म करने पर हामी भरी। वांगचुक ने पोस्ट कर लिखा, ये कदम शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने देने को लेकर बहुत सतर्क रहें। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने उनके स्वस्थ रहने की कामना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। सोनम वांगचुक ने 28 जून को नीट पेपर लीक को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद अब उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर अनशन तोड़ने से पहले सोनम वांगचुक और केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत का वीडियो सामने आया है, जिसमें जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध करने वालों और 20 जुलाई संसद मार्च में होने वालों के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने को लेकर सकारात्मक रुख अपना रही है। जो पहली शर्त थी सोनम वांगचुक की, उस पर सरकार ने सहमति दी और ये वीडियो उसका प्रमाण है। सरकार पहले ही संसद में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े शैक्षिक सुधारों का समाधान खोजने के लिए विस्तृत चर्चा का भरोसा दे चुकी है। इसके अलावा सरकार हाल ही में नीट पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या के मामलों में पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। तो सोनम वांगचुक की 3 मांगों में से 2 पर सरकार ने असहमति दिखाई। कोई एफआईआर, कोई मुकदमा, कोई केस नहीं और मुआवजा भी दिया जाएगा।
2: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्ट्रिंग केसेस against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent paper leaks. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent paper leaks.
0: तो इधर एक तरफ जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने मुलाकात की, उसके बाद सोनम वांगचुक ने भी उन्हें रिप्लाई दिया और उसी बीच प्रधानमंत्री का भी एक संदेश आता है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार वे अपनी दिनचर्या रखें, जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। तो आखिरकार सोनम वांगचुक के साथ सरकार की मुलाकात हुई, सरकार के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद उनकी शर्तों पर भी सहमति बनी और अब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। हालांकि और इस मुलाकात के बाद अभी भी सरकार की ओर से इस पर कोई आश्वासन नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा या उनका इस्तीफा होगा। वहीं नीट पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के नाम बीती रात एक वीडियो संदेश भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, पेपर लीक छात्रों और उनके माता पिता के लिए बेहद दुखद है, इसलिए पेपर लीक की घटना के बाद से पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल में है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं, संबंधित विभागों ने मसौदा भेजा है, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान हैं और आज केंद्रीय कैबिनेट में भी इस पर लेकर चर्चा होगी। सरकार जल्द से जल्द इस विधेयक को सदन में पारित कराने का प्रयास करेगी। पेपर लीक को लेकर के कड़ी सजा, जिसको लेकर के आज केंद्रीय कैबिनेट में बैठक होगी, इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दी है और केंद्रीय कैबिनेट के बैठक की जानकारी के साथ साथ छात्रों के नाम प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया है देर रात। ये देखिए, ये वो वीडियो है, प्रधानमंत्री ने खुद इंस्टाग्राम पे वर्टिकल वीडियो जेन जी को सीधे संबोधित करते हुए, फ्रेंड्स, और ये वीडियो है, ये अपने आप में वो कहानी कहता है कि खुद प्रधानमंत्री ने सीधे उस जेनरेशन जी के साथ जुड़ने की कोशिश की, उन तक ये वीडियो संदेश भेजा।
1: पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच पीएम मोदी का संदेश। छात्रों के नाम पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही।
3: अब तो
1: जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने आधी रात को वीडियो जारी कर कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, इससे लाखों छात्रों और उनके परिजनों को बहुत दुख हुआ।
3: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
1: यही नहीं, छात्रों के नाम संदेश जारी करते हुए पीएम मोदी ने पेपर लीक को लेकर सरकार के द्वारा लिए गए एक्शन के बारे में भी बताया।
3: अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
1: पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा कराने पर भी पीएम मोदी बोले, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो।
3: हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
1: पेपर लीक को लेकर अब सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई है। फास्ट ट्रैक कोड बनाने के मसौदे पर अब कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।
3: मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी।
1: अब सरकार की तैयारी संसद में विधेयक लाकर जल्द से जल्द पारित कराने की कोशिश है।
3: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: कि जंतर मंतर पर लंबा चला यह आंदोलन, लेकिन उस आंदोलन के बाद क्या कुछ नहीं कहा गया। लेकिन देखिए, अब उसी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वालों के नाम सीधा संदेश देश के प्रधानमंत्री का। कौन सी बड़ी बातें उन्होंने जो बीती रात वीडियो जारी किया, कहा गया आपको बता देते हैं। छात्रों के नाम जो प्रधानमंत्री मोदी का संदेश आया इंस्टाग्राम पर, वर्टिकल वीडियो, लाखों छात्र और उनके परिजनों को बेहद पीड़ा है। नीट पेपर लीक को लेकर के आखिरकार सरकार भी समझ रही है वो संवेदना। उसके बाद प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं आगे, पेपर लीक घटना के बाद हमने कई कदम उठाए, तत्कालीन अधिकारियों को बदला गया बोर्ड के, उसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई हैं, दोषी जो पकड़े गए हैं वो जेल में हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें जांच हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है। पेपर लीक पर कैबिनेट सख्त फैसला लेगी, आज आपको बता दें मोदी सरकार की आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है जिसमें पेपर लीक को लेकर के कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। संसद में जल्द एक कानून लाएंगे, यानी पेपर लीक ऐसी घटनाओं पर कड़ी सजा मिले उसे कैसे रोका जाए, इससे संबंधित कानून भी मोदी सरकार लाने की तैयारी में है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट में आज बैठक होगा और उसके बाद उसे संसद के सत्र में, संभवतः इस सत्र में या फिर आगामी सत्र में। और ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस पैथेटिक आधी रात वाले वीडियो से उनकी इंटेलिजेंस का अपमान मत कीजिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधान को बर्खास्त किया जाए, छात्रों को पीटने वाले पुलिस वालों को सजा मिले और माफी मांगे सरकार की ओर से, वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान कर। ये देखिए, ये राहुल गांधी का वो पोस्ट है जो उन्होंने प्रधानमंत्री के वीडियो के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी और सीधी से मांगे, तीन मांगे जो जंतर मंतर से लेकर के संरक से संसद तक है, धर्मेंद्र प्रधान को सैक किया जाए, जिन छात्रों पर कार्यवाही करने वाले पुलिस वालों को सजा मिले और सरकार माफी मांगे।

0: तो एक तरफ सियासी हंगामा है, दूसरी तरफ सड़क पर क्या हो रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। सीजेपी पार्टी का डेलीगेशन आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगा और ये मुलाकात दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि अब सिर्फ जंतर मंतर पर शुरुआती में बात करने को तैयार दिख रही थी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगह होनी चाहिए और सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने देर रात ये जानकारी दी कि आज उनका प्रतिनिधिमंडल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेगा। अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक जंतर मंतर पर सीजेपी का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, यानी धरना जारी है, प्रदर्शन जारी है, मांग वही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या फिर उन्हें हटाया जाए।
1: So tomorrow the discussion that has been called for, we are very happy that the government has acceded to our request that it be at a neutral venue, and the Constitution Club of India has been chosen is what we've been told. It's great. We hope that the government comes with an open mind and it will listen to the people of this country who have been out on the roads for so long.
0: उधर सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस जनता पार्टी ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी ने कई जिलों शहरों में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर प्रदर्शन की अपील की है। इसको लेकर एक पोस्टर जारी कर दिया गया है जिसमें लिखा है एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड का नारा दिया गया है। यानी सरकार को अगर लगा कि सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद आंदोलन खत्म होगा तो ऐसा नहीं है। अब इस प्रदर्शन में जंतर मंतर पर छात्रों के साथ मारपीट का विरोध करने की भी अपील की गई है। आपको बता दें दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी ने 20 जून से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आज देशव्यापी प्रदर्शन। आपको बता दें इसके पहले जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक मार्च करने की कोशिश और उसी के साथ ये प्रदर्शन का दायरा देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ता हुआ, मुंबई, बिहार, यहां तक मिजोरम से हमने तस्वीरें देखी। और अब कांग्रेस जनता पार्टी ने कह दिया है आज देश भर में प्रदर्शन होगा, यानी मांग पर अभी भी अड़े हैं, या तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, जब तक पद से नहीं हटे तब तक आंदोलन जारी रहेगा, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया है और कहा है एक दिन पूरे दाज सीजेपी का देश भर में प्रदर्शन। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सीजेपी अड़ा हुआ है, छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जंतर मंतर से लेकर के अब देश के दूसरे राज्यों में भी इस आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है और अब आज देशव्यापी प्रदर्शन की बारी है। तो एक तरफ जहां सड़क पर घमासान है वहीं नीट के मुद्दे पर सियासी घमासान भी चल रही है। पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन में लाठीचार्ज के खिलाफ राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ कल शाम गांधी स्मृति तक मार्च निकाला। राहुल गांधी के साथ शिवसेना यूबीटी के सांसद, एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद, तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल समेत कई विपक्षी दलों के नेता भी इसमें शामिल रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमारे नेता महात्मा गांधी की हत्या यही हुई थी, मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये वो तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ गांधी स्मृति तक गए, मोबाइल टॉर्च जलाकर के प्रदर्शन किया। क्या सरकार क्या विपक्ष, हर कोई जेनजी से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। सरकार जेनजी को समझाने में जुटी है, विपक्ष जेनजी के मुद्दों के साथ खड़ा है और पेपर लीक के मुद्दे पर क्या सड़क क्या संसद, हर जगह घमासान मचा हुआ है। अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इसी के साथ साथ दूसरे विपक्षी दलों के सांसद भी गांधी स्मृति तक पहुंचे। उन्होंने वहां शुरुआती तौर पर भारी संख्या, देखिए हाथों में मोबाइल टॉर्च लेकर के जो साथ में समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं और ये प्रदर्शन के साथ विपक्ष ये संकेत दे रहा है और संदेश दे रहा है कि वो सड़क पर हो रहे आंदोलन के साथ खड़ा है।
2: जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया, फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को,
3: यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे।
2: 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है इसलिए। वो शायद अब खोल रहे हैं,
4: सरकार सुनेगी।
5: सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी, सवाल ये है कि क्या ये सरकार करोड़ों युवाओं को नकार सकती है? इस देश में जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए हजारों शहीद हुए, मैं आपको बताती हूँ, नहीं नकार सकते।
0: युवा और छात्र सड़क पर हैं, विपक्ष सड़क पर है, लेकिन घमासान सिर्फ सड़क पर नहीं है बल्कि सदन में भी है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज इसी सत्र का पांचवा दिन है। पिछले चार दिनों से संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। बीजेपी ने अपने सांसदों को संसद के दोनों सदनों में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। पिछले चार दिनों से सरकार और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध बना हुआ है, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। विपक्षी दल अपनी मांगों पर अड़े हैं तो विपक्षी दल नीट परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर सहमत नहीं है। विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर चर्चा चाहते हैं और राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले पर भी सदन में बहस की मांग करते रहे हैं। तो अब बीजेपी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। अब देखना है कि सरकार की रणनीति आगे क्या होती है। तो नीट पेपर लीक को लेकर के सड़क से संसद तक सियासी संग्राम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। विपक्ष ने ऐलान किया है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी।
6: सरकार की टेंशन हाई, इस्तीफे पर लड़ाई। सड़क से संसद तक छिड़ा है सियासी संग्राम। विपक्ष एकजुट, प्रदर्शनकारी अड़े, संसद ठप। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष का सीधा इनकार। पीएम का पैगाम, क्या निकलेगा कोई समाधान? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। संसद में पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर संपूर्ण विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, तो विपक्ष की मांग यही है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी। टकराव और तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर पैगाम दिया है। पैगाम देश के युवाओं के नाम था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मुद्दे की सुनवाई और सजा की घोषणा की। दावा किया कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिलेगा ताकि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मतलब पीएम ने यही कहा कि सरकार समाधान के लिए तैयार है, पूरा प्लान तैयार है, लेकिन पीएम के ऐलान की टाइमिंग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
7: मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी।
6: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार करने वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम के ऐलान पर निशाना साधते हुए यही कहा कि छात्रों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा, मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है। मतलब यही है कि पीएम के पैगाम से किसी समाधान की उम्मीद अभी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि पीएम ने छात्रों के वास्ते समाधान के रास्ते खोज लिए हैं।
4: देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
5: प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है।
0: तो एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
9: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
12: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: क्या आपके विचार आपके जीवन साथी से नहीं मिल पाते? क्या विवाह के बाद आपको अपने जीवन साथी से दूर रहना पड़ रहा है? क्या आपके वैवाहिक जीवन में परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है? कौन सी हैं विवाह की विशेष समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद तोड़ा अनशन। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद फैसला लिया। पीएम मोदी ने वांगचुक के लिए पोस्ट किया। पेपर लीक पर पीएम मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश, कहा छात्रों और परिवार के लिए पीड़ादायक, कैबिनेट सख्त फैसला लेगी, संसद में जल्द बिल पास कराएंगे। कांग्रेस जनता पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन, छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों के साथ हो सकती है बैठक। पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल का गांधी स्मृति तक मार्च, विपक्षी सांसदों के साथ लाठीचार्ज का विरोध किया, बोले मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और मानसून सत्र के पांचवें दिन भी घमासान के आसार, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, बीजेपी ने सांसदों को दोनों सदनों में मौजूद रहने के निर्देश दिए।

के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। फिलहाल वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 खबरों का। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद तोड़ा अनशन। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया फैसला। 28 जून से अनशन पर थे वांगचुक। वांगचुक ने बताया अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात कर या पत्र लिखकर अनशन खत्म करने का आग्रह किया था। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अनशन खत्म कर दिया। हिंसा किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने पर पीएम मोदी ने संदेश जारी किया। बोले डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें, जल्द अपना पुराना वजन फिर से हासिल करें। पीएम के वीडियो मैसेज पर राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, छात्रों पर कार्रवाई करने वाले को सजा दी जाए और सरकार माफी मांगे। वांगचुक का अनशन खत्म होने पर अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया। बोले 26 दिन के संघर्ष के लिए आभार। सौरभ दास ने दावा किया कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी, सीजेपी इसमें शामिल होगी। कांग्रेस जनता पार्टी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया, बड़ी संख्या में छात्रों से शामिल होने की अपील की। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर के वायरल पोस्ट पर पुलिस ने खंडन करते हुए कहा कि पासपोर्ट रद्द करने का कोई आदेश नहीं है। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। सत्र पिछले 4 दिनों से लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। गुजरात के वलसाड़ जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों को भारी मुसीबत हुई। एनडीआरएफ की नावों का पहुंचना मुश्किल हुआ, रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वलसाड़ में बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर रेस्क्यू हुआ। सलवाब में 24 घंटे से बिजली के पोल पर फंसे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुजरात में बाढ़ के हालात पर डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी एक्टिव हुए, नवसारी वलसाड़ पहुंचकर हालात का जायजा लिया। रामबन के नेशनल हाईवे 44 बंद होने से यात्रियों फंस गए, बनिहाल से कटरा तक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई। किश्तवाड़ में भारी बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते जल विद्युत परियोजना का कॉफर डैम टूट गया। भारी जल प्रवाह से अब खतरा बढ़ा है, लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर खौफनाक मंजर देखने को मिला। रामबन में पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरे, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 लगातार भूस्खलन के चलते बंद कर दिया।

0: गया है। मलबा हटाकर जल्द से जल्द रास्ता खोलने की कोशिश में जुटा है प्रशासन। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिला। बिलासपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान है। कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। बिलासपुर में भारी बारिश से स्वारघाट का नाला उफान पर है। रेलवे कंपनी कार्यस्थल महिला पूरी तरह जलमग्न हो गया। पहले T20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। हरारे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन। 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत 1-0 से आगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने भारत को 126 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया। ईशान किशन ने 35 रन की पारी खेली। कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 28 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों में जड़ा अर्धशतक। T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। मयंक यादव प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट झटके। शिवम दुबे रवि बिश्नोई को 1-1 सफलता मिली। तो चलिए अब खबरें विस्तार से और बात करेंगे सोनम वांगचुक को लेकर के। पेपर लीक खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात हुई और ये दूसरी मुलाकात जो मेदांता अस्पताल में हुई, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने फैसला लिया। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करा दिया। अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि लंबी बातचीत और कुछ शर्तों पर सहमति बनने के साथ साथ देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। आपको बता दें, लगातार सरकार और उसी के साथ साथ CJP जो प्रदर्शन चल रहा है, वो अपील कर रहे हैं सोनम वांगचुक से कि आप अनशन खत्म कर दें। विपक्षी दलों की ओर से भी चिट्ठी लिखी गई कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आप अनशन खत्म कर दें। और आखिरकार 26 दिनों के बाद वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया, अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद पीएम मोदी ने भी पोस्ट किया और लिखा कि मैं सोनम वांगचुक से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें।
1: सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन। 26 दिन बाद अस्पताल में खत्म की भूख हड़ताल। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया फैसला। नीट पेपर लीक के खिलाफ और छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन खत्म कर दिया है। देर रात मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उनका अनशन खत्म कराया। अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त किया। सोनम वांगचुक ने अपनी शर्तों पर सरकार के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म करने पर हामी भरी। वांगचुक ने पोस्ट कर लिखा, ये कदम शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने देने को लेकर बहुत सतर्क रहें। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने उनके स्वस्थ रहने की कामना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। सोनम वांगचुक ने 28 जून को नीट पेपर लीक को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद अब उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अनशन खत्म करने के पहले सोनम वांगचुक और केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जेपी नड्डा आश्वासन दे रहे हैं, सरकार जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध करने वालों और 20 जुलाई को संसद तक मार्च में शामिल होने वालों के खिलाफ केस नहीं करेगी और उसको लेकर के सकारात्मक रुख अपना रही है। ये भी कहा कि सरकार पहले ही संसद में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े शैक्षिक सुधारों का समाधान खोजने के लिए विस्तृत चर्चा का भरोसा दे चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हाल ही में नीट पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या के मामलों में पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। ये वीडियो बीती शाम का है, जब जेपी नड्डा और मिलने के लिए मेदांता अस्पताल गए।
2: अगेंस्ट दोस प्रोटेस्टिंग गवर्नमेंट इज पॉजिटिव और नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोस प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोस पार्टिसिपेटिंग इन द मार्च टू द पार्लियामेंट ऑन जुलाई 2026। The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent paper leaks.
0: तो उधर नेट पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो संदेश में उससे पहले आपको बता दें कि सोनंग वांगचुक ने जब अनशन खत्म किया तो क्या कहा, सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त किया। अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मिलकर या पत्र लिखकर अनशन तोड़ने की अपील की थी, आग्रह किया था और यह कदम शर्तों पर लंबी बातचीत, देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कहीं भी किसी तरह की हिंसा न होने दें, इसको लेकर के बहुत सतर्क रहें। यानी सोनम वांगचुक ने जो छात्र हैं उनसे अपील की है कि सावधानी बरतें, हिंसा ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपने एक नया वीडियो रात को जब उन्होंने वीडियो जारी किया और छात्रों के नाम पर क्या कहा था वो भी आपको बताएंगे। एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, बीती रात जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से मिलने गए तो प्रधानमंत्री ने भी सोनम वांगचुक के स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि डॉक्टरों के अनुसार वो अपनी दिनचर्या रखें, जल्द से जल्द पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। तो नीट पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, ये सरकार की ओर से भी अब कहा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये कोई मामूली विषय नहीं है, पेपर लीक छात्रों और उनके माता पिता के लिए बेहद दुखद है। इसलिए पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो जेल में हैं। पीएम मोदी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं, विभागों ने अपना मसौदा भेजा है जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान है और आज केंद्रीय कैबिनेट की इस पर बैठक होगी। इस बैठक में सरकार चर्चा करेगी जल्द से जल्द कठोर प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पारित करने का प्रयास भी किया जाएगा। ये देखिए प्रधानमंत्री का ये वो वीडियो है जो सीधा जनरेशन जी को संबोधित करते हुए इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये वर्टिकल वीडियो जारी किया है, सीधे जुड़ने की कोशिश, सीधा संदेश उन छात्रों के लिए।
1: पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच पीएम मोदी का संदेश। छात्रों के नाम पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही।
3: अब तक
1: जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने आधी रात को वीडियो जारी कर कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, इससे लाखों छात्रों और उनके परिजनों को बहुत दुख हुआ।
3: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
1: यही नहीं, छात्रों के नाम संदेश जारी करते हुए पीएम मोदी ने पेपर लीक को लेकर सरकार के द्वारा लिए गए एक्शन के बारे में भी बताया।
3: अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
1: पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा कराने पर भी पीएम मोदी बोले, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो।
3: हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था, सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं इसका प्रबंध किया।
1: पेपर लीक को लेकर अब सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के मसौदे पर अब कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।
3: मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी।
1: अब सरकार की तैयारी संसद में विधेयक लाकर जल्द से जल्द पारित कराने की कोशिश है।
3: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: इधर छात्रों के नाम पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया तो उधर राहुल गांधी की ओर से भी जवाब आया। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस पथेटिक आधी रात वाले वीडियो से उनकी इंटेलिजेंस का अपमान मत कीजिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधान को बर्खास्त करें, छात्रों को पीटने वालों को सजा दें और सरकार माफी मांगे। यानी प्रदर्शनकारी और विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उनको हटाए जाने से कम पर राजी नहीं है। तो नीट पेपर लीक को लेकर के सड़क से लेकर संसद तक सियासी संग्राम है। उसकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने है। विपक्ष ने ऐलान किया है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी।
4: सरकार की टेंशन हाई, इस्तीफे पर लड़ाई। सड़क से संसद तक छिड़ा है सियासी संग्राम। उनका रिजर्वेशन
5: पहला लीजिए, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है।
4: विपक्ष एकजुट, प्रदर्शनकारी अड़े, संसद ठप। सरकार चर्चा को तैयार, विपक्ष का सीधा इनकार। पीएम का पैगाम, क्या निकलेगा कोई समाधान? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। संसद में पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर संपूर्ण विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है, तो विपक्ष की मांग यही है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी। टकराव और तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर पैगाम दिया है। पैगाम देश के युवाओं के नाम था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मुद्दे की सुनवाई और सजा की घोषणा की। दावा किया कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिलेगा ताकि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। मतलब पीएम ने यही कहा कि सरकार समाधान के लिए तैयार है, पूरा प्लान तैयार है, लेकिन पीएम के ऐलान की टाइमिंग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं।
6: मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी।
4: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार करने वाली सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम के ऐलान पर निशाना साधते हुए यही कहा कि छात्रों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर विपक्ष तैयार नहीं है। मतलब यही है कि पीएम के पैगाम से किसी समाधान की उम्मीद अभी नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्री यही दावा कर रहे हैं कि पीएम ने छात्रों के वास्ते समाधान के रास्ते खोज लिए हैं।
7: देखिए, आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और सजा भी जल्दी होगी। डिले नहीं होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
8: प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है।
4: छात्र जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क से संसद तक विपक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। विपक्ष की अपनी दलील है और सरकार अपना राग अलाप रही है।
9: ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है।
10: प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया, तो हमने क्या, हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
4: विपक्ष सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार यही दम भर रही है कि वो देश के युवाओं के हक पर डाका डालने वालों को बख्शेगी नहीं।
11: नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले।
12: सदन न चलने देना लोकतंत्र का अपमान है। हमारी मांग कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी कि जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है, 152 बार जिसका पेपर लीक हुआ है, वो इस्तीफा दे, तभी चर्चा होगी।
4: तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान ही इस आंदोलन का समाधान है? विपक्ष की मांग है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।
13: बड़ी बात क्या है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बकायदे सोशल मीडिया पर कहा है कि नौजवानों का हित सबसे हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है और जितने मामले हैं गड़बड़ी के उसका फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी, ये उन्होंने निर्देश दिया है।
14: युवा संतुष्ट है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम नहीं है। ये रटी रटाई बातें हैं, पहली बार नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो एक ऐसा आर्किटेक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया घोटालों का, इसमें हमारे बच्चों ने आत्महत्या की है, शर्म आनी चाहिए।
0: तो सड़क से लेकर संसद तक लगातार घमान, पूरे दिन आज तक की कवरेज लगातार जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
16: ट्यून इन हाउ टू, अ ब्रीफ लुक इन ऑल द स्पेशल फंक्शंस एंड थिंग्स यू माइट नॉट नो वी हैव।
17: गेट इनटू द गेम विद योर फेवरेट टीम्स एंड नेवर मिस अ गेम। Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

0: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे।
1: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पे चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
2: पीछे छह फुट वाली रखी, पीछे दुणाली, आगे हैट पे लिखा था गुजर। बात करा दे दीदी तेवर से। मेरे निकले जानू वाके तेवर से।
3: वाह, ये अलग लेवल पे है भाई।
4: वाहन का क्या है? जब तक इस देश में एथनॉल है।
5: पानी हल्का गर्म है, मिर्ची अपने मुंह पे डाल लिया, हल्दी वो पानी उन्हें गिरा के रो रहा हो कि एक लाइक दे दो। हम उसको स्वाइप कर मिले तो लाते लात मारो कि क्या पागलपन कर रहा है भाई।

0: आपके विचार आपके जीवन साथी से नहीं मिल पाते? क्या विवाह के बाद आपको अपने जीवन साथी से दूर रहना पड़ रहा है? क्या आपके वैवाहिक जीवन में परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है? कौन सी हैं विवाह की विशेष समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
1: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
2: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
1: Big 12 Radio.
3: Today is Big 12 Insiders Game Day. We're breaking
1: and
3: down.
1: Talk sports.
4: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
1: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.

0: पीछे 6 फुट वाली रखी, पीछे दुणाली, आगे हैट पे लिखा था गुजर। बात करा दे दीदी तेवर से, मेरी निकले जान हुआ के तेवर से।
1: वाह, ये अलग लेवल पे है भाई।
2: वाहन का क्या है? जब तक इस देश में एथनॉल है।
1: पानी हल्का गर्म है, मिर्ची अपने मुंह पे डाल लिया, हल्दी वो पानी उन्हें गिरा के रो रहा हो कि एक लाइक दे दो। हम उसको स्वाइप कर मिले तो लात मारो कि क्या पागलपन कर रहा है भाई।

सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद तोड़ा अनशन। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद फैसला लिया। पीएम मोदी ने वांगचुक के लिए पोस्ट किया। पेपर लीक पर पीएम मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश, कहा छात्रों और परिवार के लिए पीड़ादायक, कैबिनेट सख्त फैसला लेगी, संसद में जल्द बिल पास कराएंगे। कांग्रेस जनता पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन, छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों के साथ हो सकती है बैठक। पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल का गांधी स्मृति तक मार्च, विपक्षी सांसदों के साथ लाठीचार्ज का विरोध किया, बोले मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और मानसून सत्र के पांचवें दिन भी घमासान के आसार, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, बीजेपी ने सांसदों को दोनों सदनों में मौजूद रहने के निर्देश दिए।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैवाहिक जीवन की छोटी छोटी समस्याएं कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं और उन समस्याओं की वजह से वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके वैवाहिक जीवन की छोटी लेकिन विशेष समस्याएं क्यों पैदा होती हैं और उनके समाधान क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः काल 9:12 तक, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं वैवाहिक जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में जो आगे चलकर के बड़ा रूप ले लेती हैं या बड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले सबसे कॉमन समस्या ये है कि विवाह के बाद पति पत्नी के विचारों में तालमेल नहीं बैठ पाना। क्या कारण होता है? देखिए, जब पति और पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो, ग्रह मैत्री ना हो, तो ऐसी समस्या हो जाती है। ग्रहों में मित्रता ना होने पर पति के विचार और पत्नी के विचार आपस में मेल नहीं खाते। अब मित्रता नहीं है तो एक बात हो सकती है, लेकिन अगर पति पत्नी के ग्रहों में शत्रुता है तो रोज वाद विवाद होता रहता है, बेवजह के झगड़े झंझट लड़ाइयां होती हैं। वैसे तो देखिए, विचार ना मिलना एक सामान्य बात भी हो सकती है, लेकिन अगर दोनों के ग्रहों में शत्रुता है तो बेवजह के वाद विवाद, बेवजह का उपद्रव, झगड़ा और लड़ाइयां वैवाहिक जीवन में नियमित रूप से चलती रहेंगी। अगर पति पत्नी के विचार आपस में नहीं मिल पाते तो क्या उपाय करें? ऐसी दशा में पति और पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए और हर सोमवार को पति अलग और पत्नी अलग सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, चीनी, दूध, या तो बेडरूम में सफेद रंग के फूल लगाकर रखें या सफेद रंग के फूलों का चित्र लगाएं। अगर आप ऐसा करें तो ऐसा करने से पति पत्नी के विचार थोड़े बेहतर होंगे,
एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होगा और उनके विचार मिल पाएंगे। वैवाहिक जीवन की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन के अपव्यय से बचाव करें, करियर में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, संपत्ति का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विवाह के बाद भी पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है, नौकरी की वजह से, पति कहीं और नौकरी करते हैं, पत्नी कहीं और रहती हैं, करियर की वजह से ऐसी स्थितियां बनती हैं जिससे पति पत्नी दूर हो जाते हैं कुछ समय के लिए। ऐसा होता क्यों है? अगर विवाह के तुरंत बाद शनि की या राहु की दशा आ जाए तो पति पत्नी को कुछ समय तक दूर दूर रहना पड़ता है, और यहां पर दूरी का कारण होता है करियर या नौकरी। करियर या नौकरी के कारण दूर रहना पड़ता है और काफी प्रयास करने के बावजूद पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। बहुत कोशिश करते हैं कि पति की पोस्टिंग पत्नी के पास हो जाए या पत्नी की पोस्टिंग पति के पास हो जाए। प्रेम बहुत होता है, चाहते बहुत हैं, लेकिन नौकरी और करियर की मजबूरियां ऐसी होती हैं कि पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति जीवन में है कि पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है तो क्या उपाय करेंगे? पति और पत्नी दोनों रोज सुबह नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। पति भी और पत्नी भी जहां पर रहते हैं वहीं पर
हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जहां भी रहते हैं अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र, पति पत्नी का ज्वाइंट फोटो लगाना चाहिए। अगर ये फोटो विवाह के समय की हो तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये उपाय करके देखिए और प्रयास अपना जारी रखिए। निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच की दूरियां समाप्त हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन की कुछ और समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, खान पान का ध्यान रखें, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मोनिका जी ने हमें लिखा है और मोनिका जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1982, जन्म का समय दोपहर में 2:35, जन्म का स्थान है वाराणसी और मेल लिखती हैं गुड़गांव से। मोनिका कह रही हैं कि मैंने कुछ समय पहले अपना एक व्यापार शुरू किया है ऑनलाइन और शुरुआत में बहुत अच्छा रिस्पांस था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, तो क्या मुझे व्यापार बदलना चाहिए या यही व्यापार मेरा आगे बेहतर चलेगा। मोनिका, आपने व्यापार बिल्कुल सही समय शुरू किया है, व्यापार की स्थिति भी ठीक है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव किसी भी व्यापार में आ सकते हैं, आपके व्यापार के लिए कोई मुश्किल समय दिखाई नहीं दे रहा है, आप मेहनत से काम करिए,
अगले साल के फरवरी के बाद इस व्यापार को और आगे ले जा पाएंगी। एक ओपल 10-12 रत्ती का चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विवाह के पहले तो पति भी स्वस्थ थे, पत्नी भी स्वस्थ थी, विवाह के बाद पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या विवाह के बाद पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या दोनों के स्वास्थ्य में विवाह के बाद दिक्कतें आ रही हैं। कारण क्या है? पति पत्नी में से कोई एक अगर मांगलिक हो और दूसरा अगर मांगलिक ना हो तो जो मांगलिक नहीं होगा उसके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, बिल्कुल अपोजिट साइड में हों। जैसे जल के साथ पृथ्वी चलेगी लेकिन जल तत्व के साथ अग्नि तत्व नहीं चलेगा। इसीलिए दोनों की राशियों के तत्व अगर बिल्कुल अपोजिट होंगे तो भी विवाह के बाद पति पत्नी बीमार होंगे। पत्नी का बृहस्पति अगर ज्यादा खराब है, पत्नी का बृहस्पति अगर ज्यादा निगेटिव है तो भी पत्नी खुद भी बीमार होगी और उसकी कुंडली के वजह से उनके पति के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें पैदा होंगी। स्थितियां इस तरह की बन जाती हैं कि विवाह हो जाता है और विवाह के बाद बाकी चीजें तो ठीक रहती हैं लेकिन पति पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, घर में हर मंगलवार और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करिएगा। हर मंगलवार और हर शनिवार शाम को सुंदर कांड का पाठ करना बेहतर होगा। पूजा के स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती का चित्र रखें या उनकी मूर्ति रखें और नियमित रूप से उनकी पूजा करेंगे। पत्नी चाहे उनका स्वयं का स्वास्थ्य खराब होता हो या पति का स्वास्थ्य खराब रहता हो, नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करेंगी। रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल डालेंगी और रोज शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। निश्चित रूप से स्वास्थ्य में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन पर चर्चा हमारी जारी है लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति के कार्य करेंगे इस समय, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, धन के खर्चे परेशान करेंगे। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। आपसी तालमेल के बाद सबसे बड़ी समस्या है कि पति पत्नी की शादी तो हो गई, लेकिन या तो पति के परिवार वाले या पत्नी के परिवार वाले उनके वैवाहिक जीवन में घुसे रहते हैं, हस्तक्षेप करते रहते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्यों होता है ऐसा? आम तौर पर चंद्रमा के खराब होने पर परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसके परिवार वालों का हस्तक्षेप उसके वैवाहिक जीवन में ज्यादा होता है, और कभी कभी चंद्रमा के साथ अगर मंगल भी निगेटिव हो गया तो आपके परिवार वाले ही अलगाव के जिम्मेदार होंगे, मुकदमेबाजी की नौबत आ जाएगी। विवाह के बाद लड़की के घर वाले कभी कभी कंट्रोल करने लगते हैं, हस्तक्षेप करने लगते हैं, जिस चक्कर में विवाह टूटने की नौबत आ जाती है या लड़के के घर वाले उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, पत्नी को स्पेस नहीं देते हैं, तब भी विवाह टूटने की नौबत आ जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, जमीन में या गमले में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाने हैं। अपने शयन कक्ष को, अपने बेडरूम को और अपने किचन को बिल्कुल साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। और अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, खिड़की निकलवा के, शीशा लगा के किसी भी तरह व्यवस्था करिए कि घर में सूर्य का प्रकाश आए। और हर सप्ताह में बेहतर होगा रविवार को अपने मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए और इसको हर सप्ताह में बदल दीजिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू करें तो आप पति पत्नी का जीवन आपस में बेहतर होगा, दूसरों का हस्तक्षेप नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, डूबा हुआ धन मिलेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। क्या माता लक्ष्मी की पूजा भी बेलपत्र से की जा सकती है?

दरिद्रता दूर होगी। हर शुक्रवार को अपनी आयु के बराबर बेलपत्र अगर आप माता लक्ष्मी को अर्पित करके लक्ष्मी अष्टकम का, श्री सूक्तम का या महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन की प्राप्ति होगी। नंबर 3, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर की समस्या हल होगी। नंबर

आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, सफेद मिठाई खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करने के बाद जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, लाभ होगा। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

वृश्चिक वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मकर वालों के लिए, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा मेष राशि के लोगों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज दशमी तिथि है। आज यम देवता के लिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइएगा, आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: और आखिरकार सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। 26 दिनों का अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने अब देर रात अपना वीडियो जारी किया है। देर रात अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने यह फैसला लिया। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराया। अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि कुछ शर्तों पर सहमति बनने के साथ संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मैंने फैसला लिया है, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया।
1: और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि दो दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें दो दिन लगे और मुझे इसलिए

0: ये अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज्यादा भी बैठ जाता, तो आखिर में आज उन्होंने लिख कर आश्वासन दिया है।
1: स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग इन द मार्च टू द पार्लियामेंट ऑन July 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent meat paper leaks. Ye hamare side se. Thank you.
2: एक तरफ सरकार ने आश्वासन दिया है, दूसरी तरफ आज दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन आज फिर बंद रहेंगे। अगर आज आप समय से दफ्तर जाना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन आज बंद रहेंगे, जिसकी वजह से हजारों लाखों की संख्या में दफ्तर जाने वालों को अब मुश्किलें हो सकती हैं। सुबह 7:30 बजे से मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। डीएमआरसी की ओर से यह जानकारी दी गई है, एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी, लेकिन कई मेट्रो स्टेशन जहां पर इंटरचेंज की सुविधा है वो जारी रहेगी। राजीव चौक समेत 17 मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस, ITO, प्रगति मैदान यानी सुप्रीम कोर्ट, और ये तमाम एंट्री एग्जिट बंद रहेंगे, और ऐसे में हजारों लाखों यात्रियों को, कर्मचारियों को, दफ्तर जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और आइए अब देखते हैं नॉनस्टॉप 100।

0: रोमांचुक ने 26 दिनों बाद अपना अनशन तोड़ा। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद फैसला लिया। 28 जून से अनशन पर थे सोनम वांगचुक। वांगचुक ने बताया अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने भी उनसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर अनशन खत्म करने का आग्रह किया था। 26 दिनों बाद अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने कहा कि हिंसा किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। वांगचुक का अनशन खत्म होने पर पीएम मोदी ने भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार वो अपनी दिनचर्या रखें और जल्द ही अपना पुराना वजन हासिल करें। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो मैसेज पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, छात्रों पर कार्रवाई करने वालों को सजा दें और माफी मांगें। अनशन तोड़ने से पहले सोनम वांगचुक और केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध करने वालों और 20 जुलाई को संसद तक मार्च में शामिल होने वालों के खिलाफ केस न दर्ज करने को लेकर के सकारात्मक रुख अपना रही है। पेपर लीक और परीक्षा सुधारों को लेकर के जेपी नड्डा ने कहा कि शिक्षा से जुड़े सुधारों का समाधान खोजने के लिए विस्तृत चर्चा का भरोसा सरकार दे चुकी है। जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या मामलों में मुआवजे पर भी सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है। वांगचुक का अनशन खत्म होने पर अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया, कहा 26 दिनों के संघर्ष के लिए सोनम वांगचुक का बहुत बहुत आभार। उधर सौरभ दास ने दावा किया कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी, सीजेपी इस मुलाकात में शामिल होगी। सीजेपी का आज देशव्यापी प्रदर्शन है, बड़ी संख्या में छात्रों से शामिल होने की अपील की गई है। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर के वायरल पोस्ट पर पुलिस ने खंडन किया है। डीसीपी ने कहा कि पासपोर्ट रद्द करने का कोई आदेश नहीं है। दिल्ली में आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। राजीव चौक मंडी हाउस पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया लेकिन छात्रों के मुद्दों पर आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। छात्र प्रोटेस्ट पर सलमान खान ने कहा कि पीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, घर लौट जाएं छात्र, वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील। छात्रों के समर्थन में सचिन तेंदुलकर भी आए, अपने पिता की सीख को याद करते हुए कहा कि असफलता स्वीकार है लेकिन नकल या छल स्वीकार नहीं है, छात्रों की समस्या का समाधान जरूरी है। सीजेपी प्रोटेस्ट पर बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी भी सामने आए, उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज सही नहीं है, छात्राओं पर बल प्रयोग बेहद पीड़ादायक है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों की मांग अलग है, सरकार का जवाब अलग है, भरोसे के लिए सरकार को मंत्री का इस्तीफा लेना होगा। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्ट वाले पर राहुल का पलटवार, उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान है आपने पहुंचाया है, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने में बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी के पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने वाले ट्वीट पर सौरभ दास का बयान, कहा कि यह सिर्फ झांसा देने की कोशिश है, हमें जवाबदेही चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी का नड्डा को जवाब, आशुतोष राका ने कहा नड्डा के घर नहीं होगी बैठक, बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर या किसी बीच की जगह पर आए। शिरोमणि अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल का आप पर दोहरे मापदंड का आरोप, बोली दिल्ली में दिखावे के आंसू, पंजाब में पेपर लीक पर जीरो कार्रवाई। जेपी नड्डा का बयान, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अब केस नहीं होंगे, नीट पीड़ितों के लिए मुआवजे पर सरकार सकारात्मक है। महुआ मोहित्रा का पीएम मोदी पर हमला, बोली सुबह 4 बजे उठकर धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दें। सीजेपी ने कहा सरकार से न्यूट्रल जगहों पर ही होगी मुलाकात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत 4 मांगे रखेंगे, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस और पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले। सीआर पाटिल का बयान, नीट पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई होगी, छात्रों के हितों की सुरक्षा मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। केंद्र सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, शिक्षा मंत्रालय के दोनों प्रमुख विभागों के सचिव बदल गए, नीट जोशी पंचायती राज मंत्रालय भेजे गए, नरेश पाल गंगवार और टीके अनिल कुमार को नई जिम्मेदारी भेजा गया है। सीएम फडणवीस का उद्धव गुट पर बड़ा हमला, कहा छात्र आंदोलन के जरिए पार्टी अस्तित्व बचाने की कोशिश में है उद्धव ठाकरे। मुंबई में छात्र आंदोलन को लेकर के बीजेपी और विपक्षी पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ, जमकर नारेबाजी हुई। दिल्ली छात्र लाठीचार्ज के विरोध में महाराष्ट्र बंद, कोल्हापुर में बाइक रैली निकाली गई, दुकानदारों से बंद करने की अपील की गई। मुंबई में शिवाजी पार्क पर जुट रही भीड़ को हिरासत में लिया गया, छात्रों के समर्थन में उतरे एमएनएस नेता संदीप देशपांडे। मुंबई में बीएमसी के सदन में कार्यवाही के बाद मेयर रितु तावड़े ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी पार्षदों ने देश विरोधी नारे लगाए, कांग्रेस पार्टी ने आरोपों को खारिज किया। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की हाई लेवल बैठक हुई, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मौसम प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई। कोल इंडिया की नई पहल, खदानों के पानी से बनेगा पीने योग्य पानी, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम के वेस्ट टू वेल्थ विजन के तहत कोल इंडिया के ये अच्छी पहल है, कोल नीर नाम दिया जाएगा इसका। देश में स्वच्छ जल परिवहन की नई शुरुआत की गई है, वाराणसी के नमोघाट पर पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक नौकाओं की शुरुआत की जा रही है। त्रिपुरा में खर्ची फेस्टिवल की धूम देखी गई, सीएम मानिक साहा ने महोत्सव का शुभारंभ किया, मेले में संस्कृति की झलक देखी गई। गुजरात के वलसाड जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है, लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एनडीआरएफ की नावों का पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। रेस्क्यू के लिए अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वलसाड़ में बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर रेस्क्यू हुआ। सलवाव में 24 घंटे से बिजली के खंभे पर फंसे युवक को सुरक्षित बचा लिया गया है। गुजरात में बाढ़ के हालात पर डिप्टी सीएम हर्षांगी सक्र लगातार सक्रिय हैं। नवसारी वलसाड़ पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वहीं रामबन के नेशनल हाईवे 44 बंद होने से यात्रियों को बचाने के लिए बनिहाल से कटरा तक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की, वलसाड़ में बारिश को लेकर के समीक्षा की। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते वलसाड़ में बाढ़ जैसे हालात हैं। मधुबन डैम के 10 गेट खोले गए। दमनगंगा नदी में लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण गुजरात में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भरूच में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर सैलाब बहा। आने वाले दिनों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रटले जल विद्युत परियोजना का कॉपर डैम टूट गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर खौफनाक मंजर देखने को मिला। रामबन में पहाड़ी से मलबा गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। सुरक्षा के मद्देनजर नेशनल हाईवे 44 को फिलहाल भूस्खलन के चलते बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बिलासपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान है। भारी बारिश से स्वारघाट का नाला भी उफान पर है। रेलवे कंपनी का कार्यस्थल महिला पूरी तरह जलमग्न हो गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात दिखे। वीआईपी इलाके भी डूब गए। सड़कों बाजारों में भारी जलभराव। हनुमानगढ़ में भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। गांवों में लगभग 20 से 30 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। अमृतसर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घर खेत सड़कें जलमग्न हैं। डूबी धान की फसलें। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सूर्या नदी में उफान से चारों तरफ सैलाब। दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश के चलते खाड़ियों का जलस्तर बढ़ा। सूरत में सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। पालघर में बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुआ। पानी से घिरे फंसे एक ही परिवार के 4 लोगों को बचाया गया। पालघर के बसई में बड़ा हादसा टल गया। ब्रेक फेल होने से सड़क किनारे भरे पानी में गिरी कार। स्थानीय लोगों ने 4 लोगों को सुरक्षित बचाया। पालघर में बाढ़ के बीच फंसे एक ही परिवार के 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने रस्सी और ट्यूब की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के आनंद में ताश के पत्तों की तरह 2 मंजिला जर्जर इमारत गिर गई। लाइव वीडियो सामने आया। जूनागढ़ में एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर शेर आया। लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया। उदयपुर में पड़ोसियों के मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। एक ने तलवार से हमला करने की कोशिश करते पड़ोसी की हत्या कर दी। हैदराबाद के सिकंदराबाद में प्रॉपर्टी विवाद में बहू ने सास पर चाकू से हमला किया। उड़ीसा के ढेंकनाल में भीषण सड़क हादसा हुआ। शादी से लौट रही कार तालाब में गिरी। 5 लोगों की मौत हो गई। चंदौली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुर्गी दाने की बोरियों के बीच छिपी 15 लाख की प्रतिबंधित कोडिन तफसीरा बरामद की गई। उज्जैन में हनी ट्रैप के बाद अपहरण का खुलासा हुआ। 10 लाख की फिरौती वसूलने वाले गैंग को गिरफ्तार किया गया। पुरुलिया में मिलावटी मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। खतरनाक रंग केमिकल बरामद किए गए। गोरखपुर में काला हेलमेट पहनकर हमलावर आए। आदिवासी अभियंता पर थप्पड़ बरसाए। धनबाद में सेप्टिक टैंक में सफाई करने उतरे 2 श्रमिकों की मौत। जहरीली गैस में चपेट में आने से दम घुट गया। सहारनपुर में पुलिस बदमाश में मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ स्ट्री सीटर। 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वाराणसी में मां ने मोबाइल चलाने से बेटी को रोका तो लड़की ने फांसी लगा ली। पुलिस ने शव बरामद कर फॉरेंसिक टीम को भेजा। भिवाड़ी में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम की गई। सायरन बजते ही फरार हो गए नकाबपोश। अलवर में कच्छा गैंग ने दस्तक दी। चोरी से पहले घरों की रेकी करते हुए संदिग्ध सीसीटीवी में कैद हो गए। पंजाब के फिरोजपुर में नहर में छलांग लगाने से पहले एएसआई ने वीडियो बनाया। पत्नी के पार्षद चुनाव लड़ने के बाद ब्लैकमेलिंग से परेशान था। एमपी के छतरपुर में नेत्रहीन व्यक्ति को मांस खिलाने का वीडियो वायरल हुआ। सामाजिक संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। पंजाब के फाजिलका में बारिश के बीच भरभराकर मकान की छत गिरी। अंदर सो रहे 2 लोग मलबे में दबे। दोनों की हालत गंभीर। पहले टी20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। हरारे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की शानदार जीत। 3 मैचों की टी20 सीरीज में भारत 1-0 से आगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने भारत को दिया था 126 रनों का लक्ष्य, जिसे टीम इंडिया ने 14वें ओवर में हासिल कर लिया। ईशान किशन ने 35 रन की पारी खेली। कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 28 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। मयंक यादव प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट झटके। शिवम दुबे रवि बिश्नोई को 1-1 सफलता मिली।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: Durable Pipes Fittings and Tanks A Complete Range of Sanitary Solutions Hexa Organic, Radiance.
3: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
4: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
3: More top sports.
5: And he's gonna go! There's the tying goal!
3: And everything in between.
6: The game is over!
3: Upgrade now for the premium listening experience.
1: Skin and Nourished Hair, pure Ayurvedic.
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन भी कुदरती है जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स,

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी हिंड बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
3: नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है
4: सरकार, हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
5: सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए।
6: संसद में जिन भी मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे,
7: सदन में बहस के लिए तैयार है।
8: सरकार की ओर से अब तक किरेन रिजिजू, जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा खुलकर कह चुके हैं कि आइए छात्रों के मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ और अब प्रधानमंत्री मोदी खुद सामने आ गए हैं। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने साफ किया कि पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस भेजकर जल्द से जल्द सजा दिलवाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा। इधर पीएम का पोस्ट आया, उधर राहुल गांधी ने भी उसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिख दिया कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। राहुल गांधी ने अपनी मांगें फिर दोहराई कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। विपक्ष ने भी अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि वो पीछे हटेंगे नहीं, मुद्दे पर झुकेंगे नहीं। विपक्ष की मांग सिर्फ पेपर लीक पर चर्चा नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी है। खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के निष्पक्ष चर्चा हो ही नहीं सकती।
9: विद्यार्थियों की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए।
8: फिलहाल सरकार इस मामले को जैसे तैसे करके रफा दफा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष इस बार सरकार को हल्के में छोड़ने के मूड में नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो. क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है. ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे.
2: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पे चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा. हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं. राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोरा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है.
3: गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त, रसोई में गैस सिलेंडर मंगवाते वक्त या फिर महंगाई की चर्चा करते वक्त एक चीज अक्सर नजर नहीं आती और वो है कच्चा तेल. दुनिया के किसी कोने में तनाव बढ़े तो उसका असर कुछ ही दिनों में भारत के करोड़ों घरों तक पहुंच जाता है. इस बार भी पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने ऐसा ही किया है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, ऐसे में तेल की कीमतों में आई तेजी ने देश की जेब पर बड़ा दबाव डाला है. ताज़ा आंकड़े बताते हैं 2026-27 की पहली तिमाही में भारत का कच्चा तेल आयात बिल 77% बढ़कर 4.64 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले देश को करीब 2.02 लाख करोड़ रुपए ज्यादा चुकाने पड़े, जबकि अप्रैल से जून के दौरान तेल आयात की मात्रा में करीब 4.5% की गिरावट दर्ज की गई. दिलचस्प बात है कि खरीद कम होने के बावजूद बिल कहीं ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इस दौरान ऊंचे स्तर पर बनी रही. हॉर्मुज रूट पर सप्लाई से जुड़ी चिंताओं ने भी बाजार का तापमान बढ़ाया. इसी दौरान ब्रेंट क्रूड एक समय $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया. वहीं पहली तिमाही में औसत कीमत $113 प्रति बैरल तक रही. पिछले साल इसी अवधि में कीमत करीब $67 प्रति बैरल थी. तेल महंगा होने का असर सरकार के आयात बिल तक सीमित नहीं रहता, इसका दबाव ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, हवाई किराए, केमिकल इंडस्ट्री और रोजमर्रा के कई सामानों की लागत पर भी दिखाई देता है. तेहरान और वाशिंगटन के बीच तनाव बरकरार है और बाजार की नजर हर नई सैन्य गतिविधि पर बनी हुई है. हालांकि मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थोड़ी नरमी देखने को मिली है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है और WTI क्रूड करीब $82 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि ब्रेंट क्रूड करीब $89 प्रति बैरल के आसपास है. वहीं एक दिन पहले यानी सोमवार को ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल के ऊपर निकल गया था. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर लंबे समय तक तेल $90 प्रति बैरल के आसपास बना रहता है तो भारत का सालाना तेल आयात बिल और तेजी से बढ़ सकता है. इसका असर व्यापार घाटे से लेकर महंगाई तक कई मोर्चों पर दिखाई दे सकता है. भारत के लिए चिंता की बात है कि देश हर साल भारी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है. डेटा के मुताबिक हर साल करीब 1.8 से 2 अरब बैरल कच्चा तेल खरीदता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल $1 की बढ़ोतरी भी देश के खर्च में बड़ा इजाफा कर देती है. पश्चिम एशिया का तनाव कब खत्म होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि तेल की कीमतों में उथल पुथल का असर आने वाले महीनों में आम आदमी की जेब, सरकार के खर्च और देश की महंगाई तीनों पर नजर आ सकता है. आदित्य के राणा आज तक.

चुके अनशन का द एंड। वीडियो संदेश में बोले, जिम्मेदारी तय करने का सरकार ने दिया आश्वासन, संसद में होगी चर्चा, केंद्र सरकार ने भी दिए पुख्ता संकेत।

प्रवक्ता सौरभ दास का बयान, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी बातचीत, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कम मंजूर नहीं। गुजरात महाराष्ट्र में बारिश का तांडव, वलसाड़ सूरत नवसारी समेत कई शहर जलमग्न, 22,000 से ज्यादा लोगों के छूटे घर, 1200 का रेस्क्यू, आज भी 3 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट।

0: सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा पाराशर। सुबह के 8 बजे और अब वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपके सामने होंगी। सबसे पहले आपको बताएंगे कि 26 दिन बाद सोनम वांगचू ने अपना अनशन तोड़ दिया है। वहीं आपको खबर नीट पेपर लीक को लेकर पीएम मोदी ने आधी रात को क्या संदेश दिया है, उस बारे में भी दिखाएंगे। साथ ही आज केंद्रीय मंत्रियों से सीजीपी का डेलीगेशन मुलाकात कर सकता है। वहीं राहुल गांधी के पेपर लीक पर गांधीगिरी की बात भी करेंगे। साथ ही पेपर लीक को लेकर सरकार ने क्या एक्शन लिया है, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे। बात सियासत की भी होगी क्योंकि छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर संसद से सड़क तक क्या बवाल मचा हुआ है, इस पर भी डिटेल से आपको देंगे जानकारी। बात ईरान पर अमेरिका के लगातार हमले की भी करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि उत्तर से पूरब और पश्चिम तक मानसून ने कहां कहां जल प्रलय मचाया है। तो सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक को लेकर आ रही एक बड़ी। दरअसल पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ चुके हैं और देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद सोनम वांगचुक ने यह फैसला लिया। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराया है। अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, लंबी बातचीत और कुछ शर्तों पर सहमति बनने के साथ साथ देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखे और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। और आपको बता दें कि वांगचुक ने अनशन का आज 27वां दिन था, अब यह अनशन खत्म हो गया है। 21 जुलाई को उन्हें सरदर्जन से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था।
1: सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन। 26 दिन बाद अस्पताल में खत्म की भूख हड़ताल। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया फैसला। नीट पेपर लीक के खिलाफ और छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन खत्म कर दिया है। देर रात मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उनका अनशन खत्म कराया। अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त किया। सोनम वांगचुक ने अपनी शर्तों पर सरकार के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म करने पर हामी भरी। वांगचुक ने पोस्ट कर लिखा, ये कदम शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने देने को लेकर बहुत सतर्क रहें। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने उनके स्वस्थ रहने की कामना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। सोनम वांगचुक ने 28 जून को नीट पेपर लीक को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद अब उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: तो अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक का पहला बयान सामने आया। सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिले आश्वासन का जिक्र किया। वांगचुक ने कहा है कि भूख हड़ताल का अंत हो चुका है, अब जवाबदेही की शुरुआत है। वीडियो संदेश में वांगचुक ने कहा कि सरकार और विपक्षी दलों के सांसदों के आश्वासन के बाद भूख हड़ताल खत्म की। उन्होंने ये भी कहा कि आश्वासन दिया गया है कि विफल होती परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही के मुद्दे पर भारतीय संसद में चर्चा की जाएगी।
2: आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूंगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा। और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि दो दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए और इसमें दो दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर दो दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता, तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है।
0: तो अनशन तोड़ने से पहले सोनम वांगचुक और केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत का वीडियो सामने आया, जिसमें जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध करने वालों और 20 जुलाई को संसद तक मार्च में शामिल होने वालों के खिलाफ केस दर्ज न करने को लेकर सकारात्मक रुख अपनी रही है।
3: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग in the march to the parliament on July 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent paper leaks.
0: वही नीट पेपर लीक पर मचे हुए घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, पेपर लीक लाखों छात्रों और उनके माता पिता के लिए बहुत ही दुखद है, इसलिए पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए गए, दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल में है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है और संबंधित विभागों ने मसौदा भेजा है, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान हैं और आज कैबिनेट के बीच चर्चा होगी और सरकार जल्द से जल्द इस विधेयक को सदन में पारित कराने का भी प्रयास करेगी।
1: पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच पीएम मोदी का संदेश, छात्रों के नाम पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही।
4: अब तो
1: जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने आधी रात को वीडियो जारी कर कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, इससे लाखों छात्रों और उनके परिजनों को बहुत दुख हुआ।
4: पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
1: यही नहीं, छात्रों के नाम संदेश जारी करते हुए पीएम मोदी ने पेपर लीक को लेकर सरकार के द्वारा लिए गए एक्शन के बारे में भी बताया।
4: अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
1: पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा कराने पर भी पीएम मोदी बोले, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो।
4: हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
1: पेपर लीक को लेकर अब सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के मसौदे पर अब कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।
4: मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी।
1: अब सरकार की तैयारी संसद में विधेयक लाकर जल्द से जल्द पारित कराने की कोशिश है।
4: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: देखिए, पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस पैथेटिक आधी रात वाले वीडियो से उनकी इंटेलिजेंस का अपमान मत कीजिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें, छात्र को पीटने वालों को सजा दें और माफी मांगें। नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस जनता पार्टी की यानी कि सीजेपी ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है और पार्टी ने जिलों और शहरों में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर प्रदर्शन की अपील की है। इसको लेकर एक पोस्टर भी जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड का नारा दिया गया है। प्रदर्शन में जंतर मंतर पर छात्रों के साथ मारपीट का विरोध करने की अपील की गई है। साथ ही आपको ये बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का 20 जून से प्रदर्शन जारी है। पार्टी नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग कर रही है और आज भी प्रदर्शन का ऐलान शांतिपूर्ण तरीके से करने की बात सीजेपी की तरफ से कही गई है। देश भर में आज सीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है सीजेपी। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी के डेलीगेशन आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास के मुताबिक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मुलाकात होगी। पहले सीजेपी सिर्फ जंतर मंतर पर ही बात करने को तैयार दिख रही थी। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने देर रात बताया है कि पार्टी आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेगी और अभिजीत दीपके ने ये कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक जंतर मंतर पर सीजेपी का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है प्रदर्शन के बीच, आज भी दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जिन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक जो कि बंद कर दिए गए हैं, आरके आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद मंडी, यानी 17 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। तो राजीव चौक समेत 17 वो कौन से मेट्रो स्टेशन हैं जिनको बंद कर दिया गया है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद किया गया है यानी मेट्रो स्टेशन अंदर से खुले रहेंगे। देखिए, समझिए आप, आरके आश्रम मार्ग, झंडे वाला जो कि ब्लू लाइन पर है, बाराखंबा रोड और मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, ये 17 मेट्रो स्टेशन है जिनको बंद किया गया है। और खान मार्केट, जनपद, आईटीओ, दिल्ली गेट भी बंद कर दिया गया है। इनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद किए गए हैं। वहीं चेंजिंग, जो मेट्रो में चेंज की जो प्रक्रिया होती है उसको बंद नहीं किया गया है। नई दिल्ली, राजीव चौक और शिवाजी स्टेडियम, साथ ही केंद्रीय सचिवालय, सेवा तीर्थ, लोक कल्याण मार्ग, जोरबाग, इन सब को बंद कर दिया गया है। जंतर मंतर मेट्रो स्टेशन भी बंद है। तो कुल 17 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। इनके एंट्री एग्जिट पॉइंट को बंद किया गया है आज भी प्रदर्शन को देखते हुए। तो देखिए, नीट के मुद्दे पर हो रही सियासी घमासान की एक और खबर, पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन में लाठीचार्ज के खिलाफ राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ कल शाम गांधी स्मृति तक मार्च निकाला। राहुल गांधी के साथ शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और साथ ही टीएमसी, जेएमएम, आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमारे नेता महात्मा गांधी की हत्या यही हुई थी, आज मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र की भी हत्या कर रही है।
5: लीक पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को घेरने का विपक्ष एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। संसद से लेकर सड़क तक लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार शाम राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ गांधी स्मृति तक मार्च निकाला। कांग्रेस नेताओं के अलावा इस मार्च में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट, तृणमूल कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, लेफ्ट और समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल रहे। इससे पहले राहुल गांधी ने इंडिया गेट जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उनके मार्च को अनुमति नहीं दी, जिसके बाद राहुल ने गांधी स्मृति का रुख किया।
6: जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया।
5: दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कर लेते हैं दिल्ली में 20 जुलाई को हुए भारी बवाल की। सीजेपी के चलो संसद मार्च के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया है कि उन पर पैलेट गन से फायरिंग की गई है। एक प्रदर्शनकारी ने दावा किया है कि उसके मेडिकल दस्तावेजों में पैलेट इंजरी दर्ज है। आज तक ने ऐसी ही एक 25 वर्षीय प्रदर्शनकारी से भी बात की, जिसने दावा किया है कि उसके मेडिकल लीगल दस्तावेजों में भी पैलेट इंजरी दर्ज हुई है। प्रदर्शनकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया है कि वो 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होने गया था, और उसका यह भी कहना है कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। साथ ही उसने ये भी बताया कि जंतर मंतर के पास प्रदर्शन के दौरान वो घायल हो गया था। बाद में अस्पताल में पता चला कि उसके शरीर में पैलेट लगे थे, और प्रदर्शनकारी ने यह भी बताया है कि घटना के बाद उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक दिन अस्पताल में वो भर्ती रहा, उसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई। उसके मुताबिक डॉक्टर्स ने उसके शरीर से सभी पैलेट निकाल दिए, और रिपोर्ट्स के अनुसार एक 19 वर्षीय युवक की एक आंख की रोशनी जाने का खतरा भी है। वहीं एक अन्य व्यक्ति के गले की मुख्य रक्त वाहिका भी बेहद ही पास एक पैलेट में फंसा हुआ बताया गया है। और एक और खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी। दरअसल जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। उरी में बादल फटने के कारण अचानक से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है, जबकि डोडा में भारी बारिश और भूस्खलन से कई सड़कें बंद हैं। उधर श्रीनगर के पास झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
1: जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है। सबसे पहले तस्वीरें उरी के मयान बिझामा इलाके की, जहां बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। पहाड़ों से तेज बहाव के साथ बड़े बड़े पत्थर, मलबा और पानी नीचे की ओर आया। इसके बाद भी मूसलाधार बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। प्रशासन ने नीचे के इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत अलर्ट किया और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। ये तस्वीरें डोडा की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच एक विशाल और पुराना चिनार का पेड़ जड़ से उखड़ गया। पेड़ गिरने से एक मकान और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इसी बारिश और भूस्खलन की वजह से जम्मू कश्मीर की कई अहम सड़कें भी बंद हो गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44, NH 244 और किश्तवाड़ सिंथन रोड पर लैंडस्लाइड के कारण आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और रास्ते साफ करने का काम जारी है। उधर श्रीनगर के पास पंपोर में झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। नदी का पानी धीरे धीरे और बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और हालात पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी रखा है। ऐसे में प्रशासन लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील कर रहा है। फिलहाल घाटी में बारिश ने जनजीवन पर बड़ा असर डाला है और आने वाले घंटों में हालात पर सभी की नजर बनी हुई है। मीर फरीद के साथ सुनील जी भट्ट, उरी, बारामूला, आज तक ब्यूरो।
0: तो महाराष्ट्र में बारिश अब राहत नहीं, आफत बनती जा रही है। पालघर से लेकर वसई, भिवंडी और नासिक तक पानी का ऐसा कहर है कि सड़कें दरिया बन गई हैं, गांव का संपर्क टूट रहा है और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई जगह लोगों की जिंदगी भी थम सी गई है।
7: ये पालघर जिले की तस्वीरें हैं, जहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। यहां सूर्या नदी उफान पर है। ये पूरा इलाके का एरियल व्यू है, देखिए कैसे बाढ़ के हालात हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लोगों से नदी, पुल और जलभराव वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचने की अपील की गई है। पालघर के कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा असर दहनु, तलासरी और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। अनेक सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। कई प्रमुख और ग्रामीण मार्गों पर पानी भर जाने से आवागमन ठप है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। दहनु के केटी नगर में हालात बेहद गंभीर है। यहां बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है और कई इमारतों के ग्राउंड फ्लोर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है। बाइक, कार, सब कुछ डूबी हुई नजर आ रही है। यही हाल मुंबई से सटे वसई विरार का भी है, जहां लगातार दूसरे दिन बारिश तेज हुई। रात भर हुई बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए पालघर जिला कलेक्टर ने आज जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। ये ठाणे के भिवंडी की तस्वीरें हैं, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। कामवारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नासिक में भी पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कल रात से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। वहीं नासिक आगरा हाईवे पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक बाधित हुआ है। एक शख्स यहां फंस भी गया था। गोदावरी नदी के किनारे ये व्यक्ति सुबह रामकुंड पर गांधी छतरी पर गया था, लेकिन तभी नदी का जलस्तर बढ़ गया और यह शख्स वहीं फंसा रह गया, जिसे बाद में निकाला गया।
0: वहीं गुजरात के वलसाड में बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। वलसाड जिला प्रशासन ने दमन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई बचाव अभियान शुरू किया। वापी के सलवाव इलाके में बिजली के पोल पर फंसे एक युवक को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक जान बचाने के लिए कल से ही पोल पर चढ़ा हुआ था और मदद का लगातार इंतजार कर रहा था। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रशासन का कहना है कि अब उन इलाकों तक भी राहत पहुंचाई जा सकेगी जहां पर पानी ज्यादा होने की वजह से नाव का पहुंचना मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, सुपर 8 में वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। भिवाड़ी में एटीएम मशीन को तोड़ते समय बजा सायरन बजते ही फरार हुआ बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मुजफ्फरपुर में बिजली ऑफिस में उपभोक्ताओं का हंगामा, तोड़फोड़ और पथराव, डिफरमेंट चार्ज पर भड़का गुस्सा। पटना में बीजेपी प्रदर्शन के दौरान महिला एमएलसी एएसपी कोमल मीना के बीच सड़क पर हुई तीखी बहस, वीडियो आया सामने। राजस्थान में सक्रिय हुआ चोरों का गैंग। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में हिरासत में युवक की मौत पर मामला सामने आया, परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। भावनगर में सतर्क लोको पायलट ने ट्रेन की चपेट में आने से शेर को बचाया। अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या से कुछ घंटों बाद सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, लश्कर ए तैयबा के दो आतंकियों के घर किए ध्वस्त। जहानाबाद में परीक्षा पेपर लीक के विरोध में छात्रों का उबाल, छात्रों और पुलिस के बीच जमकर पत्थरबाजी। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
1: continue to face political pressure to reach a peace deal,
0: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
3: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
2: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
4: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
5: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: मैं करता हूँ ना,
7: मैं करूँगा।
8: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
6: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
8: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे डाइनिंग एंड मच मोर।
6: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
8: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर।

26 दिन बाद सोनम वांगचुक के अनशन का दी एंड। वीडियो संदेश में बोले जिम्मेदारी तय करने का सरकार ने दिया आश्वासन। संसद में होगी चर्चा, केंद्र सरकार में दिए पुख्ता संकेत। वांगचुक का अनशन खत्म होने का सीजेपी ने किया स्वागत, लेकिन आंदोलन अब भी रहेगा जारी। आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान, दिल्ली में सुरक्षा और सख्त। तीसरे दिन 17 मेट्रो स्टेशन बंद। पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा आश्वासन, बोले सख्त सजा के प्रावधान वाला कानून लाएंगे। आज कैबिनेट में चर्चा, अगले हफ्ते संसद में बिल। नए उच्च शिक्षा सचिव की भी नियुक्ति। छात्र केंद्र के बीच बातचीत का आज अहम राउंड। सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास का बयान, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी बातचीत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। गुजरात महाराष्ट्र में बारिश का तांडव, वलसाड़ सूरत नवसारी समेत कई शहर जलमग्न। 22,000 से ज्यादा लोगों के छूटे घर, 1200 का रेस्क्यू। आज भी तीन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट।

0: खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने नया वीडियो जारी करते हुए कहा कि भूख हड़ताल का अंत, जवाबदेही की शुरुआत। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद तोड़ा अनशन। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया फैसला। 28 जून से अनशन पर थे वांगचुक। वांगचुक ने बताया अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात कर या पत्र लिखकर अनशन खत्म करने का किया था आग्रह। बोले हिंसा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने पर पीएम मोदी का संदेश। बोले डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार रखे दिनचर्या, जल्द ही अपना पुराना वजन हासिल करें। पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर बोले राहुल गांधी, धर्मेंद्र प्रधान हटाएं, छात्रों पर कार्रवाई करने वालों को सजा दें, मांगी माफी। अनशन तोड़ने से पहले सोनम वांगचुक और केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत का वीडियो भी सामने आया। जेपी नड्डा ने कहा सरकार जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध करने वालों और 20 जुलाई को संसद तक मार्च में शामिल होने वालों के खिलाफ केस दर्ज न करने को लेकर सकारात्मक रुख अपना रही। पेपर लीक और परीक्षा सुधारों पर को लेकर जेपी नड्डा ने पढ़ते हुए कहा कि शिक्षा से जुड़े सुधारों का समाधान खोजने के लिए विस्तृत चर्चा का भरोसा दे चुकी है सरकार। जेपी नड्डा ने कहा नीट पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या मामलों में मुआवजे पर सरकार सकारात्मक।
1: Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent meat paper leaks.
0: सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने पर अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया। बोले 26 दिन के संघर्ष के लिए आभार। सौरभ दास का दावा, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, सीजेपी भी होंगे शामिल। आज सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन, बड़ी संख्या में छात्रों से शामिल होने की अपील। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर वायरल पोस्ट पर पुलिस का खंडन। डीसीपी नई दिल्ली ने कहा पासपोर्ट रद्द करने का कोई भी आदेश नहीं। दिल्ली में आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद, राजीव चौक और मंडी हाउस पर जारी रहेगी इंटरचेंज की सुविधा। संजय सिंह का सरकार पर हमला। बोले सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ लेकिन छात्रों के मुद्दों पर आंदोलन जारी रहेगा। छात्र प्रोटेस्ट पर सलमान खान बोले पीएम ने सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा, घर लौटे छात्र। छात्रों के समर्थन में आए सचिन तेंदुलकर अपने पिता की सीख को याद करते हुए कहा कि असफलता स्वीकार नहीं लेकिन नकल या छल स्वीकार नहीं, छात्रों की समस्या का समाधान जरूर। सीजेपी प्रोटेस्ट पर बोले बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, कहा छात्रों पर लाठीचार्ज सही नहीं, छात्राओं पर बल प्रयोग पीड़ादायक। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। बोली छात्रों की मांग अलग, सरकार का जवाब अलग, भरोसे के लिए सरकार को मंत्री का इस्तीफा लेना होगा। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले पोस्ट पर राहुल का पलटवार। बोले युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान आपने पहुंचाया, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने में बढ़ावा दिया। पीएम मोदी के पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने वाले ट्वीट पर सौरभ दास का बयान, कहा यह सिर्फ झांसा देने की कोशिश, हमें जवाबदेही चाहिए। बीजेपी का नड्डा को जवाब। आशुतोष रांका ने कहा कि नड्डा के घर नहीं होगी बैठक, बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर या किसी बीच की जगह पर आए। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल का आम आदमी पार्टी पर दोहरे मापदंड का आरोप। बोली दिल्ली में दिखावे के आंसू, पंजाब में पेपर लीक पर जीरो कार्रवाई। जेपी नड्डा का बयान, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर केस नहीं होंगे, नीट

पीड़ितों के लिए मुआवजे पर सरकार सकारात्मक। महुआ मोइत्रा का पीएम मोदी पर हमला, बोले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें। सीजेपी का बयान, सरकार से न्यूट्रल जगह पर होगी मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत चार मांगे रखेंगे। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा की मांग जारी। सीआर पाटिल का बयान, नीट पेपर लीक पर होगी सख्त कार्रवाई। छात्रों के हितों की रक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता। केंद्र सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, शिक्षा मंत्रालय के दोनों प्रमुख विभागों के सचिव बदले। नीत जोशी पंचायती राज मंत्रालय भेजे गए और नरेश पाल गंगवार और टीके अनिल कुमार को मिली नई जिम्मेदारी। वहीं सीएम फडणवीस का उद्धव गुट पर बड़ा हमला, कहा छात्र आंदोलन के जरिए पार्टी का अस्तित्व बचाने की कोशिश में है उद्धव ठाकरे। मुंबई में भी छात्र आंदोलन को लेकर बीजेपी और विपक्षी पार्षदों के बीच हंगामा हुआ, जमकर हुई नारेबाजी। दिल्ली छात्र लाठीचार्ज के विरोध में महाराष्ट्र बंद, कोल्हापुर में बाइक रैली निकालकर दुकानदारों से बंद की अपील की। मुंबई में शिवाजी पार्क पर जुट रही भीड़ को हिरासत में लिया गया, छात्रों के समर्थन में उतरे एमएनएस नेता संदीप देशपांडे। नीति आयोग निवेश सूचकांक में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर पहुंचा, वहीं रविंद्र चौहान ने फडणवीस सरकार की नीतियों को बताया बड़ी उपलब्धि का कारण। ईरान अमेरिका तनाव के बीच तेहरान में हवाई खतरे को लेकर अलर्ट, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम हुआ सक्रिय। ईरान पर अमेरिका की लगातार 13वीं रात एयर स्ट्राइक जारी, अमेरिकी सेना ने सैन्य ठिकानों पर किए कई हमले। एआई पर ट्रंप और उनकी बड़ी बैठक, 24 सितंबर को अमेरिका आएंगे चीनी राष्ट्रपति। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, किर्गिस्तान पहुंचे ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। गाजा पर भूख का बड़ा संकट, साल के अंत तक करोड़ों लोग हो सकते हैं प्रभावित। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर, रूरी में बादल फटने से तबाही, डोडा में भूस्खलन से सड़कें बंद हुई, श्रीनगर में झेलम खतरे के निशान के ऊपर। डोडा में भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद, कई इलाकों में हालात बिगड़े। उफान पर झेलम नदी श्रीनगर के पास खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर। बारिश बनी आफत, मलबे और पानी के तेज बहाव से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, प्रशासन ने निचले इलाकों को सतर्क किया। किश्तवाड़ में भारी बारिश से चुनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, जिससे कि रटले जल विद्युत परियोजना का कॉफर डैम टूटा और साथ ही भारी जल प्रवाह से खतरा भी बढ़ गया है। जम्मू श्रीनगर NH44 पर खौफनाक मंजर, रामबन में पहाड़ी से अचानक गिरे बड़े बड़े पत्थर, कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर NH44 लगातार भूस्खलन के चलते किया गया बंद, मलबा हटाकर जल्द से जल्द रास्ता खोलने की कोशिशों में प्रशासन। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर, बिलासपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान, कई इलाकों में जलभरा। बिलासपुर में भारी बारिश से स्वरघाट का नाला उफान पर पहुंचा, रेलवे कंपनी कार्यस्थल महिला पूरी तरह से जलमग्न। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, वीआईपी इलाके भी डूबे, सड़कें बाजार में भारी जलभराव से आवागमन बाधित हुआ। हनुमानगढ़ में भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाके जलमग्न, गांव में जलभराव से 20 से 30 मकान क्षतिग्रस्त। अमृतसर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, घर खेत सड़कें जलमग्न, जलभराव में डूबी धान की फसलें। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सूर्या नदी में उफान से चारों तरफ सैलाब, घर सड़कें खड़े वाहन जलमग्न। दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश का कहर, खाड़ियों का जलस्तर बढ़ा। सूरत में सड़कों पर भारी जलभराव, घरों में पानी में तैर रहे हैं घरेलू सामान। गुजरात के वलसाड जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए, लोगों को आ रही है भारी मुसीबत। एनडीआरएफ की नाव का पहुंचना हुआ मुश्किल, रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। वलसाड में बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर रेस्क्यू, जलवाब में 24 घंटे से बिजली के पोल पर फंसे युवक को सुरक्षित बचाया गया। गुजरात में बाढ़ के हालात पर डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी एक्टिव हुए, नवसारी वलसाड पहुंचकर लिया हालात का जायजा। रामबन के NH44 बंद होने से फंसे यात्रियों के लिए राहत, बनिहाल से कटरा तक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर की बातचीत, वलसाड में भारी बारिश को लेकर की समीक्षा। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ का कहर, नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर, 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। वलसाड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर, मधुबन डैम के 10 गेट खोले गए और साथ ही नदी में 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़े जाने से अलर्ट। दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, हजारों लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थानों पर। भरूच में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कों पर बहा सैलाब। आने वाले दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी, स्कूल कॉलेज में 2 दिन की छुट्टी। दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर की हत्या, कृष्णानगर में चाकू से हमला किया गया, वारदात के बाद इलाके में सनसनी। मुजफ्फरपुर बिजली ऑफिस में हंगामा, डिफरमेंट चार्ज को लेकर भड़के उपभोक्ता, तोड़फोड़ और पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बहराइच में बड़ी कार्रवाई, अजनाल थाने हमले का आरोपी गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर से एसएसबी पुलिस ने वारिस पंजाब दे से जुड़े विक्रमजीत और साथियों को पकड़ा। बांदा में करंट से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत, कपड़े उठाने गए बेटे को बचाने पहुंचे पिता की भी गई जान, मां झुलसी।
गुजरात के खेड़ा मातर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पानी से भरे नाले में गिरी कार, चार लोगों की मौत, दो का रेस्क्यू। पालघर में बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पानी से घिरे घर में फंसे एक ही परिवार के चार लोगों को बचाया गया सुरक्षित। पालघर के वसई में बड़ा हादसा टला, ब्रेक फेल होने के कारण सड़क किनारे भरे पानी में गिरी कार, स्थानीय लोगों ने चार लोगों को बचाया सुरक्षित। पालघर में बाढ़ के बीच फंसे एक ही परिवार के 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया, पुलिस इंस्पेक्टर ने रस्सी और ट्यूब की मदद से बचाया सुरक्षित। गुजरात के आणंद में ताश के पत्तों की तरह गिरा दो मंजिला जर्जर मकान, लाइव वीडियो आया सामने, कोई हताहत नहीं। जूनागढ़ के सासन गिर में एक बार फिर से रेलवे ट्रैक का आया शेर, दरअसल लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। उदयपुर में दो पड़ोसियों में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, एक ने तलवार से हमला कर दूसरे पड़ोसी की हत्या कर दी। हैदराबाद के सिकंदराबाद में प्रॉपर्टी विवाद में बहू ने सास पर चाकू से हमला किया, हत्या की कोशिश का वीडियो आया सामने, हुई गिरफ्तार। ओडिशा के ढेंकनाल में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रही कार तालाब में जाकर गिरी, पांच लोगों की हुई मौत। चंदौली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुर्गी दाने की बोरियों के बीच छिपी 15 लाख की प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप बरामद हुई। तो वहीं उज्जैन में हनी ट्रैप के बाद अपहरण का खुलासा, 10 लाख की फिरौती वसूलने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुरुलिया में मिलावटी मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम का छापा, खतरनाक रंग और केमिकल बरामद, फैक्ट्री को किया गया सील। गोरखपुर में काला हेलमेट पहनकर आए हमलावर, अधिशासी अभियंता पर बरसाए गए थप्पड़, ऑफिस में जमकर मारपीट की गई। धनबाद में सेप्टिक टैंक में सफाई करने उतरे दो श्रमिकों की मौत, जहरीली गैस की चपेट में आने की वजह से घुटा दब। सहारनपुर में पुलिस बदमाश में मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने की वजह से घायल हुआ हिस्ट्री शीटर, 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज। वाराणसी में मां ने मोबाइल चलाने से बेटी को रोका तो लड़की ने लगाई फांसी, पुलिस ने शव बरामद कर फोरेंसिक टीम को भेजा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः काल 9:12 तक, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन के अपव्यय से बचाव करें, करियर में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, संपत्ति का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, खान पान का ध्यान रखें, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।
कन्या राशि करियर

प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति के कार्य करेंगे इस समय, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, धन के खर्चे परेशान करेंगे। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Education minister should be the side.
2: Yeah! Yeah, Mudda Congress, Majadi
3: Pakistan.
4: संसद में हंगामा बरपा है, तीन दिन से स्थगन स्थगन और सिर्फ स्थगन।
3: सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है।
5: सदन
3: आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।
5: The House will meet again at 2 PM today. The House is scheduled to complete the delivery on Thursday, the 23rd July 2026.
4: एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन तो दूसरी तरफ संसद में व्यवधान। सरकार बैकफुट पर तो है, लेकिन नैरेटिव को बदलने के लिए सरकार एक्टिव मोड में भी आ गई है। सीजेपी से बातचीत का चैनल खोला जा चुका है। सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मुलाकात हो चुकी है और कल संसद में सरकार ने भी साफ कर दिया कि वो चर्चा के लिए तैयार है।
5: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है।
4: पीएम आवास पर राहुल गांधी के धरने के जवाब में कल बीजेपी की तरफ से देश भर में प्रदर्शन हुआ। संदेश साफ दिया कि चीजें एक तरफा तरीके से नहीं होंगी। अगर विपक्ष की तरफ से हमला जारी है तो सरकार की तरफ से भी लगातार पलटवार हो रहा है। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा लगातार एक्शन में।
6: Why are you so selective? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं।
4: नड्डा ने जवाब दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हमलावर दिखे।
7: दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
4: अब बड़ा सवाल ये है कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच कहीं असली मुद्दे गुम न हो जाएं।
8: आज तक ब्यूरो।

कैंशन का दी एंड वीडियो संदेश बोले जिम्मेदारी तय करने का सरकार ने दिया आश्वासन लेकिन सीजेपी का आंदोलन रहेगा जारी आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा आश्वासन बोले सख्त सजा के प्रावधान वाला कानून लाएंगे आज कैबिनेट में चर्चा संसद बिल लाने की तैयारी नए उच्च शिक्षा सचिव की नियुक्ति और केंद्र के बीच बातचीत का आज अहम राउंड मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास का बयान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं दिल्ली में तीसरे दिन 17 मेट्रो स्टेशन बंद आज पांचवें दिन हंगामे की भेंट चढ़ सकती है संसद राहुल तीन मांगों पर अड़े प्रधान का इस्तीफा पुलिस पर एक्शन और माफी से कम मंजूर नहीं सोनिया गांधी का लेख आंदोलन दबाना चाहती है संवेदनहीन सरकार और गुजरात महाराष्ट्र में बारिश का तांडव वलसाड़ सूरत नवसारी समेत कई शहर जलमग्न 22,000 से ज्यादा लोगों के छूटे घर 1200 का रेस्क्यू आज भी तीन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट

0: घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। ट्वीट से वीडियो संदेश तक छात्रों को बनाने के लिए एक्शन में आए प्रधानमंत्री, लेकिन इतने एक्शन के बावजूद भी क्यों नहीं बन रही है बात, आज की लीड खबर से करेंगे शुरुआत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का दबाव बनाने के लिए इंडिया ब्लॉक के सांसदों की गांधीगिरी, पूरी खबर अब से कुछ ही देर बाद। गुजरात में तबाही और बर्बादी का मंजर आपको दिखाएंगे, हालात पर पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं पेपर लीक मामले के साथ, जिस पर संसद से सड़क तक घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर कल शाम से घटनाक्रम तेज है और आज भी काफी कुछ होने वाला है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि सीजेपी और सरकार के बीच आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वार्ता प्रस्तावित है। वार्ता स्थल को लेकर 2 दिन से सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन सीजेपी के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वार्ता के लिए सरकार तैयार हो गई है। आज एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक पर सख्त कानून के मसौदे पर चर्चा हो सकती है। कल प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में इसकी जानकारी दी थी, 6 तस्वीरों में पूरी खबर देखिए। सरकार से ठोस आश्वासन मिलने पर सोनम वांगचुक ने कल रात अपना अनशन तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने देर रात वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक पर सरकार का एक्शन प्लान बताया है। सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान है। साथ ही बड़ा सवाल यह कि आज संसद के मॉनसून सत्र का क्या होगा, क्योंकि कल शाम इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने गांधी स्मृति पर जाकर यह साफ किया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और अब तक के घटनाक्रम पर यह रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर संवाददाताओं के पास लिए चलेंगे।
1: मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी।
2: पेपर लीक पर सड़क से संसद तक छेड़े घमासान के बीच पिछले 24 घंटों से एक्शन मोड में है प्रधानमंत्री मोदी। कल सुबह 9:07 पर पीएम ने पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान सोशल मीडिया पर किया और फिर करीब 15 घंटे बाद एक्स पर ही वीडियो संदेश जारी कर दिया। पेपर लीक पर सरकार के उठाए कदमों और छात्रों की समस्या पर सरकार कितनी गंभीर है इसकी जानकारी दी।
1: पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
2: 2:56 के अपने इस वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने बताया, पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाया जाएगा। इससे जुड़े मसौदे पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी, फिर इसे अगले हफ्ते संसद में पेश कर जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश होगी।
1: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: लेकिन पीएम मोदी का ये आश्वासन न तो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे सीजेपी को संतुष्ट कर पाया और न ही विपक्ष को। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनकी बुद्धि का अपमान न करें, प्रधान को बर्खास्त करें, उन्हें पीटने वालों को दंडित करें, माफी मांगे। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने पीएम मोदी के बयानों को दिखावा करार दे दिया।
3: दिस इज अ कंप्लीट आई वॉश द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और अ लॉ, जस्ट इमेजिन दे आर ब्रिंगिंग अ लॉ आफ्टर नो डिस्कशन नो डेलिब्रेशन नथिंग एट ऑल। What is going to be the credibility of that law? How is it going to change people's lives? वो ही नहीं सकता है।
2: रात 11:52 पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया। 48 मिनट बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से सरकारी आश्वासन मिलने के बाद वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया।
4: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi. and those participating in the march to the parliament on July 2026.
2: वांछुक को मनाकर सरकार ने राहत का एक मोर्चा तो फतह कर लिया, लेकिन सीजेपी धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। सीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने एक्स पर लिखा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कांग्रेस जनता पार्टी का शांतिपूर्ण विरोध जंतर मंतर पर जारी रहेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए आश्वासन दिया है कि तमाम मुद्दे जो कि पेपर लीक मामले से जुड़े हैं उनका कैबिनेट में डिस्कशन किया जाएगा। उन्होंने एक रूपरेखा बता दी है, लेकिन इससे भी अब सीजेपी जो है वो संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो आगे का रास्ता क्या है, आज क्या होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज भी लगता है संसद चल नहीं पाएगी।
5: देखिए, संसद के अंदर जो गतिरोध है वो बना रह सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक्स पर लिखा है और उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए, आप छात्रों की मांगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो नेहा कदम होते हैं, कल सोनम वांगचुक का जो है अनशन तोड़ा गया है, टूटा है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार सरकार की कोशिश है। पहले जो है वो फास्टैग कोर्ट बनाने की बात हो, देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो सामने आए जिसमें ये वो कहें कि कल कैबिनेट की बैठक में एक बहुत बड़ा बिल जो है वो लाया जा सकता है पेपर लीक मामले को लेकर, और फिर उसे संसद के इसी सत्र के दूसरे सप्ताह में जो है दोनों सदनों से पास कराया जाएगा का प्रयास किया जाएगा। और तीसरा, आज सीजेपी का जो है सेकेंड राउंड बातचीत जो है वो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सरकार एक कदम एक करके बात कर रही है। ये सही है कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपनी मांग पर हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन करना, एक बातचीत का क्रम जो है वो जारी रखा हुआ है सरकार ने, और सरकार की ये कोशिश है कि बातचीत के जरिए जो है कई चीजों को सुलझाया जा सकता है। सोनम वांगचुक के साथ जो है दो राउंड की मुलाकात हुई है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की, कल दूसरे राउंड की जब मुलाकात हुई सरकार की तरफ से उनको इंश्योर किया गया कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सुधार सरकार करना चाहती है, कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है, सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने का काम जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है जिससे आगे भविष्य में पेपर लीक ना हो। जिन लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी की, जिन्होंने पेपर लीक किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और छात्रों को लेकर सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। तो एक तरीके से सरकार की कोशिश है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। अब देखना यह है कि आज सीजेपी के साथ जो दूसरे राउंड की मुलाकात है उसमें क्या निकल कर आता है।
0: ठीक है, मेरे दो और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही पीयूष भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस बीच आपको ये बता दें कि अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने एक बयान जारी कर उन सवालों के जवाब दिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर वो कैसे मान गए, सुनिए वांगचुक ने क्या कुछ कहा।
6: अब आप कहेंगे जरूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं, फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से दो तीन हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को ना टाल कर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं। बल्कि दे देते इस्तीफा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता।
0: पीयूष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, सोनम वांगचुक ने तो अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन सीजेपी के प्रतिनिधित्व के साथ आज सरकार की बातचीत होनी है, क्या ये वेन्यू रहने वाला है? क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू की मांग की जा रही थी और लगातार ये भी मांग है कि प्रधान के इस्तीफे से कम नहीं बात बनेगी।
7: जी बिल्कुल नेहा, इसको लेकर लगातार सरकार और सीजेपी के जो नेता हैं उनके बीच में तल्खी बनी हुई थी। सीजेपी ने साफ कर दिया था कि हम जंतर मंतर के 700 मीटर के दायरे के बीच में कोई जगह जाते हैं जहां पर बातचीत हो, और वहां पर नहीं आएंगे जहां पर जो सरकार ऑफर कर रही है। इससे पहले सरकार ने साफ कह दिया था कि जेपी नड्डा के घर पर या फिर उनके मंत्रालय में ये बैठक होगी, लेकिन उस बात को नकार दिया गया था। अब कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर आ रही है। अब आज लगभग 12:30 बजे के आसपास कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये बैठक होने वाली है और ये दूसरे राउंड की वार्ता सरकार की तरफ से की जाएगी, जिसमें सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करके उनसे समझा जाएगा कि उनकी और क्या मांग है। आपको बता दें कि पिछले लगभग एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है जब सीजेपी के कार्यकर्ताओं का लगातार धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है और उनकी मुख्य मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आज जब बातचीत होगी तो सरकार जरूर ये बताएगी कि कैसे सरकार ने ना सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है बल्कि इसी के साथ साथ और भी कड़े कदम सरकार उठाने जा रही है। उसको लेकर कैबिनेट में चर्चा होने के साथ साथ एक मसौदा प्रधानमंत्री को मिल चुका है और इस पर चर्चा भी मंडे से होने जा रही है। तो जो कदम अब तक सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए उठाए हैं उन सभी चीजों पर बातचीत होगी। छात्रों को बताया जाएगा, सीजेपी को बताया जाएगा कि कैसे इसको लेकर सरकार काफी गंभीर है और आगे आने वाले समय में और कड़े कदम उठाने जा रही है। और इस बातचीत के बाद कहीं ना कहीं रास्ता खुलता हुआ नजर भी आएगा, क्योंकि एक तरफ एक जो मोर्चा था सोनम वांगचुक वाला उस पर सरकार ने कहीं ना कहीं फतेह पा ली है। अब सीजेपी के जो
0: ठीक है पीयूष, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही, लौटूंगी मैं आपके पास। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। अमित, जिस तरीके से कल हमने राहुल गांधी का आंदोलन देखा, उन्होंने जो लोग मारे पीटे गए हैं पुलिस द्वारा, उनका साफ तौर पर यह मांग है कि पुलिस उनसे माफी मांगे, साथ ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया ये शाम को चली, लेकिन सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन आज क्या मायने रखता है? कहां कहां किन किन शहरों में ये प्रदर्शन बुलाया गया है?
8: नेहा देखिए, सीजेपी ने अभी तक देशव्यापी प्रदर्शन का कोई कॉल दिया नहीं था आज की तारीख के पहले, और इसके बावजूद महाराष्ट्र हो या बिहार हो या झारखंड हो या कोई और राज्य हो, वहां पे थर्ड टियर सिटीज के अंदर भी बच्चे खुद ही स्वतः ऑर्गेनिक रूप से पहुंचकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और खासतौर पर यह तब हुआ जब 20 जुलाई के घटना के हजारों वीडियोज इंटरनेट में इंस्टाग्राम पे खासतौर पर फ्लड हो गया, जिसमें लाठीचार्ज दिख रहा है, पैलेट गन के इस्तेमाल के जो आरोप लग रहे थे वो वीडियोज सामने आने लगे, किस तरह से वो चलाया गया था, इंजरीज के वीडियोज सामने आने लगे। तो ऑटोमेटिकली जो बच्चों के अंदर गुस्सा है, छात्रों के अंदर गुस्सा है, वो अलग अलग राज्यों में और अलग अलग शहरों और टाउनशिप्स में फैल गया है। और आज इसलिए कॉल दिया है सीजेपी ने कि आज ऑर्गेनाइज तरीके से सब जगह पे ये प्रोटेस्ट हो, तो राज्यों की राजधानी में तो आपको छात्र और बच्चे दिखेंगे ही आंदोलन करते हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, बल्कि छोटे छोटे कस्बों में जो टाउन्स होते हैं, छोटे टाउन्स है वहां तक आपको ये प्रोटेस्ट फैलता हुआ दिखाई देगा आज, और पीसफुल प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया है। लेकिन उसी समय पे जो सीजेपी का डेलीगेशन है वो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलेगा। पिछली बार ये कहा गया था कि रिटर्न सबमिशन लेके नहीं आए थे, इस बार मुझे लगता है कि पूरा मसौदा तैयार करके वो जाएंगे। अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है पूरा धरना प्रदर्शन सोनम वांगचुक 26 दिन तक भूखे रहे, इसका कारण ये था कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, उनका इस्तीफा चाहिए, तो उस सैक्रिफाइस को वो खराब नहीं होने देंगे। और शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग पे अड़े हुए हैं, सीजेपी कह रही है नॉन नेगोशिएबल है, नंबर एक। नंबर दो, जो सरकार की तरफ से बात कही जा रही है कि सारी चीजें हमने ये बदलाव किए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेके आए हैं, तो उसमें भी सीजेपी की तरफ से ये राय है कि जी
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन में एक मोर्चे पर सीजेपी है, दूसरे मोर्चे पर सरकार और तीसरा मोर्चा विपक्ष का है। अपनी मांग को धार देने के लिए कल इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कल रात का घटनाक्रम।
9: एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए,
10: ये न चर्चा चाहते हैं नहीं हाउस को चलने देना चाहते हैं। हाउस इज अजोन।
2: प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन और संसद में रोजाना के शोर शराबे से बात नहीं बनी तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष ने कल गांधीगिरी का प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के करीब 120 सांसद दो बसों में भरकर राहुल गांधी के आवास से गांधी स्मृति पहुंचे। गांधी स्मृति में उन छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनकी जान नीट पेपर लीक की वजह से गई। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के सांसद पहले इंडिया गेट जाना चाहते थे लेकिन वहां अनुमति नहीं मिलने पर गांधी स्मृति का रुख किया।
11: जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया।
2: कांग्रेस नेताओं के अलावा इस मार्च में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार, टीएमसी, जेएमएम, आरजेडी, लेफ्ट और समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल रहे।
12: हमारे देश का मतलब क्या है, महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे, जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश में उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है।
2: पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विपक्ष की मोर्चाबंदी लगातार जारी है। पीएम आवास पर धरने से लेकर संसद के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट तक और अब गांधी स्मृति पर गांधीगिरी।
13: अगर मोदी जी भाजपा के लिए एक मंत्री की कुर्सी बड़ी है तो फिर बड़ी रखिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ही, उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये युवाओं की पुकार है, राजनीतिक लोगों की नहीं।
14: स्टूडेंट के लिए सरकार जागती नहीं है, अंधी है, पहली है, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। ये पूरे देश के बच्चों का, युवाओं का सवाल है। जिस तरह से ये हिटलर शाही कर रहे हैं, ये सहने योग्य नहीं है।
15: एक कहावत है, अकलमंद को इशारा काफी है। अगर इनकी अकल है तो ये इशारा समझेंगे, नहीं तो अगर बुद्धि मोटा ही रहेगा तो परिणाम भुगतना है।
10: ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं।
2: संसद के मानसून सत्र का आज पांचवा दिन है। अब तक चारों दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार के स्टैंड और विपक्ष के तेवर से लगता है कि आज भी गतिरोध बना रहेगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: नीट पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 27वें दिन भूख हड़ताल खत्म की। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों से हिंसा से दूर रहने की अपील भी की। उधर सोनम वांगचुक की इस अपील के बीच सीजेपी ने साफ कर दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता उनका आंदोलन जारी रहेगा।
2: सरकार के दिग्गज मंत्रियों से मुलाकात हुई, पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा मिला। 26 दिनों के बाद सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तमाम कदमों के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों का उबाल थमेगा? क्या जंतर मंतर पर जारी आंदोलन खत्म होगा? लेकिन सवाल का जवाब देर रात कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की पोस्ट में मिल गया, जिसमें उन्होंने लिखा, हमें बेहद खुशी है कि सोनम वांगचुक सर ने 26 दिनों के बाद अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर चल रहा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते।
16: सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
2: यानी सरकार की तमाम कोशिशों के बीच सीजेपी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से पीछे हटती नहीं दिख रही है और इसे लेकर आज देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी है। यहां अलग अलग शहरों में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज के बाद से कई शहरों में आक्रोश की तस्वीरें सामने आई हैं। छात्र सड़कों पर उतरे, विरोध किया और कई जगह पर इस प्रदर्शन के बीच पुलिस ने बल प्रयोग किया। लिहाजा सीजेपी के देशव्यापी विरोध को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। किसी भी बवाल को रोकने के लिए पुख्ता तैयारी है। उधर आज एक बार फिर सीजेपी के प्रतिनिधि और सरकार के बीच बातचीत होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बातचीत में शांति का कोई रास्ता निकले, लेकिन छात्रों का उबाल और तमाम शहरों में बवाल के बीच ये आसान नजर नहीं आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात बाढ़ और बारिश की करेंगे। गुजरात पानी पानी हो चुका है। दक्षिण गुजरात का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बाढ़ जैसे हालात ना हो। कई तीन दिन से, कहीं दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा और तेज हो रही है। गुजरात की कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। अहमदाबाद, नवसारी, वलसाड में बारिश में सबसे ज्यादा बर्बादी देखी जा रही है।
17: यह अहमदाबाद का आमली गांव है। सब कुछ डूबा हुआ सा नजर आ रहा है। लगातार बारिश हो रही है। लोग घुटनों तक के पानी में चलने को मजबूर हैं। बारिश भी कोई हल्की फुल्की नहीं, बहुत तेज, वो भी लगातार। पानी का प्रवाह देखिए, कैसे गाड़ियां उल्टी हुई हैं, बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़कों पर औंधी पड़ी हैं, बाइक्स तो पूरी डूब गई है। ये अहमदाबाद शहर का मुख्य इलाका है, मानिक बाग चौराहा। यहां भी सुबह से लगातार बारिश हुई तो पूरा इलाका ही डूब गया, कमर कमर तक पानी भर गया है। सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को हुई जिन्हें सुबह सुबह दफ्तर जाना था, घर से निकले तो पानी में फंस गए, गाड़ी ऊपर से खराब और हो गई।
18: अहमदाबाद का ये माणिक बाग इलाका, माणिक बाग चौराहा, वहां पे चारों तरफ पानी ही पानी है और जो भी सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले हुए लोग हैं, हर कोई इसी पानी में फंसा हुआ है, हर कोई परेशान है। तस्वीरों में आप देख लीजिए, लोगों के जो व्हीकल्स हैं बंद पड़ना शुरू हो चुके हैं और लोग कितनी मशक्कत से अपने जो व्हीकल्स हैं उसे इस पानी में से निकाल कर आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
17: दक्षिण गुजरात में बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। पिछले 24 घंटों में 213 तालुकाओं में व्यापक बारिश दर्ज की गई। वलसाड के उमरगाम में 35 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जबकि कपराड़ा में करीब 29 इंच, नानापोंढा में 25 इंच से ज्यादा और धर्मपुर में 19.5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। औरंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तापी में SDRF की टीम ही बाढ़ में फंस गई और स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। अब देखिए वलसाड़ का क्या हाल है। यहां लगातार मूसलाधार बारिश से हालात गंभीर हैं। मधुबन डैम का जलस्तर बढ़ा तो सभी 10 गेट खोल दिए गए। इसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। दमनगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। एहतियातन दमनगंगा नदी पर स्थित मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 के पुल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। ये भी वलसाड़ की तस्वीरें हैं और बहुत डरावनी तस्वीरें हैं। ये एक पुल है जिसके ऊपर से पूरा ट्रैफिक गुजर रहा है, ट्रक, बस, कारें, बाइक्स सब है। और नीचे देखिए नदी का पानी कितना ऊपर आ गया है, बिल्कुल पुल को छू रहा है। और ये नवसारी का वीडियो है जहां पिछले 3 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। नवसारी और डांग में सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई। अंबिका नदी खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर और कावेरी नदी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है। गुजरात से महाराष्ट्र हाईवे पर पानी भरने से यातायात पूरी तरह से बाधित है। वासंदा तालुका में पिछले 24 घंटों में 17 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और यह है सूरत का हाल। सूरत शहर के मध्य से बहने वाली तापी नदी पर बने बियर कम कॉजवे को एक बार फिर से बंद कर दिया गया। ये कॉजवे सूरत शहर के 2 इलाकों रानबेर और सिंगणपोर को जोड़ता है। मानसून के इस मौसम में तापी नदी का जलस्तर बढ़ने से बियर कम कॉजवे अपने खतरनाक स्तर 6 मीटर से ऊपर बह रहा है। कॉजवे पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
0: वहीं महाराष्ट्र में बारिश से राहत नहीं है, आफत बनती जा रही है बारिश। पालघर से लेकर वसई, भिवंडी और नासिक तक पानी का ऐसा कहर है कि सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, गांव का संपर्क टूट रहा है और नदियां खतरे के निशान से पार हैं। कई जगह लोगों की जिंदगी थमसी गई है।
17: ये पालघर जिले की तस्वीरें हैं जहाँ लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ सूर्या नदी उफान पर है। ये पूरा इलाके का एरियल व्यू है, देखिए कैसे बाढ़ के हालात है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लोगों से नदी, पुल और जलभराव वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचने की अपील की गई है। पालघर के कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा असर दहनु, तलासरी और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। अनेक सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। कई प्रमुख और ग्रामीण मार्गों पर पानी भर जाने से आवागमन ठप है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। दहानू के केटी नगर में हालात बेहद गंभीर है। यहां बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है और कई इमारतों के ग्राउंड फ्लोर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है। बाइक, कार, सब कुछ डूबी हुई नजर आ रही है। यही हाल मुंबई से सटे वसई विरार का भी है जहां लगातार दूसरे दिन बारिश तेज हुई। रात भर हुई बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए पालघर जिला कलेक्टर ने आज जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। ये ठाणे के भिवंडी की तस्वीरें हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। कामवारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नासिक में भी पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कल रात से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। वहीं नासिक आगरा हाईवे पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक बाधित हुआ है। एक शख्स यहां फंस भी गया था। गोदावरी नदी के किनारे ये व्यक्ति सुबह रामकुंड पर गांधी छतरी पर गया था, लेकिन तभी नदी का जलस्तर बढ़ गया और यह शख्स वहीं फंसा रह गया, जिसे बाद में निकाला गया।
0: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

सोना मांग चुके अनशन का दी एंड, वीडियो संदेश में बोले जिम्मेदारी तय करने का सरकार ने दिया भरोसा, लेकिन सीजेपी का आंदोलन रहेगा जारी, आदेश व्यापी प्रदर्शन की तैयारी। पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा आश्वासन, बोले सख्त सजा के प्रावधान वाला कानून लाएंगे, आज कैबिनेट में चर्चा, अगले हफ्ते संसद में बिल लाने की तैयारी, शिक्षा सचिव की छुट्टी। बीजेपी और केंद्र के बीच बातचीत का आज अहम राउंड, मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास का बयान, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी मुलाकात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं, दिल्ली में तीसरे दिन 17 मेट्रो स्टेशन बंद। आज पांचवें दिन हंगामे की भेंट चढ़ सकती है संसद, राहुल तीन मांगों पर अड़े, प्रधान का इस्तीफा, पुलिस पर एक्शन और माफी से कम मंजूर नहीं, सोनिया गांधी का लेख, आंदोलन दबाना चाहती है संवेदनहीन सरकार। गुजरात महाराष्ट्र बारिश का तांडव, वलसाड़ सूरत नवसारी समेत कई शहर जलमग्न, 22,000 लोगों के छूटे घर, 1200 का रेस्क्यू, आज भी तीन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट।

पूनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ा अनशन। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मुलाकात के बाद लिया फैसला। 28 जून से अनशन पर थे वांगचुक। वांगचुक ने बताया अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों से मुलाकात कर या पत्र लिखकर अनशन खत्म करने का किया था आग्रह। बोले हिंसा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने पर पीएम मोदी का संदेश। बोले डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार रखें दिनचर्या, जल्द अपना पुराना वजन हासिल करें। पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर बोले राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान हटाएं, छात्रों पर कार्रवाई करने वालों को सजा दें, माफी मांगे। अनशन तोड़ने से पहले सोनम वांगचुक और केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत का वीडियो आया सामने। पेपर लीक और परीक्षा सुधारों को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि शिक्षा से जुड़े सुधारों का समाधान खोजने के लिए विस्तृत चर्चा का भरोसा दे चुकी है सरकार। जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या मामलों में मुआवजे पर सरकार सकारात्मक है। सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से करेगा मुलाकात, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने पर अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया। बोले 26 दिन के संघर्ष के लिए आभार। सौरभ दास का दावा आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, सीजेपी भी होंगे शामिल। आज सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन, बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की अपील। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर वायरल पोस्ट पर पुलिस का खंडन। डीसीपी नई दिल्ली ने कहा पासपोर्ट रद्द करने का कोई आदेश नहीं। दिल्ली में आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद। राजीव चौक और मंडी हाउस पर जारी रहेगी इंटरचेंज की सुविधा। संजय सिंह का सरकार पर हमला। बोले सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ लेकिन छात्रों के मुद्दों पर आंदोलन जारी रहेगा। छात्र प्रोटेस्ट पर सलमान खान बोले पीएम ने सख्त कार्रवाई कर दिया भरोसा, घर लौटे छात्र। छात्र के समर्थन में आए सचिन तेंदुलकर, अपने पिता की सीख को याद करते हुए कहा असफलता स्वीकार्य है लेकिन नकल या छल स्वीकार्य नहीं है। सीजेपी प्रोटेस्ट पर बोले बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी का छात्रों पर लाठीचार्ज सही नहीं है, छात्राओं पर बल प्रयोग पीड़ादायक है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। बोली छात्रों की मांग अलग है, सरकार का जवाब अलग है, भरोसे के लिए सरकार को मंत्री का इस्तीफा लेना होगा। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले पोस्ट पर राहुल का पलटवार। बोले युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान आपने पहुंचाया, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने में बढ़ावा दिया। पीएम मोदी के पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने वाले ट्वीट पर सौरभ दास का बयान, कहा यह सिर्फ झांसा देने की कोशिश है, हमें जवाबदेही चाहिए। सीजेपी का नड्डा को जवाब। आशुतोष टांका ने कहा नड्डा के घर नहीं होगी बैठक, बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर या किसी बीच की जगह पर आए। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल का आप पर दोहरे मापदंड का आरोप। बोली दिल्ली में दिखावे के आंसू, पंजाब में पेपर लीक पर जीरो कार्रवाई। जेपी नड्डा का बयान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर केस नहीं होंगे, नीट पीड़ितों के लिए मुआवजे पर सरकार सकारात्मक। महुआ मोइत्रा का पीएम मोदी पर हमला। बोली धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें। सीजेपी का बयान सरकार से न्यूट्रल जगह पर होगी मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत चार मांगे रखने पर प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग। सीआर पाटिल का बयान नीट पेपर लीक पर होगी सख्त कार्रवाई, छात्रों के हितों की रक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता। केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, शिक्षा मंत्रालय के दोनों प्रमुख विभागों के सचिव बदले। नीत जोशी पंचायती राज मंत्रालय भेजे गए, नरेश पाल गंगवार और टी के अनिल कुमार को मिली नई जिम्मेदारी। ईरान अमेरिका तनाव हुई, तेहरान में हवाई खतरे को लेकर अलर्ट, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय। ईरान पर अमेरिकी हमले लगातार 13वीं रात जारी, एयर स्ट्राइक भी हुई, अमेरिकी सेना ने सैन्य ठिकानों पर फिर किए हमले। एआई पर ट्रंप शी की बड़ी बैठक, 24 सितंबर को अमेरिका आएंगे चीनी राष्ट्रपति। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने किर्गिस्तान पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। गाजा पर भूख हड़ताल का बड़ा संकट, साल के अंत तक करोड़ों लोग हो सकते हैं प्रभावित। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर, पुरी में बादल फटने से तबाही, डोडा में भूस्खलन से सड़कें बंद, श्रीनगर में झेलम खतरे के निशान से ऊपर। डोडा में भूस्खलन से सड़कें बंद, कई इलाकों में हालात बिगड़े। उफान पर है झेलम नदी, श्रीनगर के पास खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर। बारिश बनी आफत, मलबे और पानी में तेज बहाव में जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, प्रशासन निचले इलाकों को किया सतर्क। किश्तवाड़ में भारी बारिश से चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, जिससे रटले जल विद्युत परियोजना का कॉफर डैम टूटा। भारी जल प्रवाह से बड़ा खतरा, लोगों को सतर्क रहने की अपील। जम्मू कश्मीर NH44 पर खौफनाक मंजर, रामबन पहाड़ी से अचानक गिरे बड़े बड़े पत्थर, कई वाहन क्षतिग्रस्त। सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर NH44 लगातार भूस्खलन के चलते बंद, मलबा हटाकर जल्द से जल्द रास्ता खोलने की कोशिश में प्रशासन। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर, बिलासपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान, कई इलाकों में जल भराव। बिलासपुर में भारी बारिश से स्वार घाट का नाला उफान पर, रेलवे कंपनी कार्यस्थल मेला पूरी तरह जलमग्न। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, VIP इलाके डूबे, सड़क बाजार में जल भराव। हनुमानगढ़ में भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाके जलमग्न, गांव में 20 से 30 मकान क्षतिग्रस्त। अमृतसर में

बारिश से बाढ़ जैसे हालात, घर खेत सड़कें जलमग्न, जलभराव में डूबी धान की फसलें। महाराष्ट्र पालघर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सूर्या नदी में उफान से चारों तरफ सैलाब, घर सड़कें, खड़े वाहन जलमग्न। दक्षिण गुजरात मूसलाधार बारिश का कहर, खाड़ियों का जलस्तर बढ़ा, सूरत में सड़कों पर भारी जलभराव, घरों में पानी में तैर रहे घरेलू सामान। गुजरात के वलसाड जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों को आई भारी मुसीबत, एनडीआरएफ की नावों पर पहुंचना मुश्किल, रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का लिया जा रहा है सहारा। वलसाड में बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर रेस्क्यू, सलवाब में 24 घंटे से बिजली की पोल पर फंसे युवक को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात बाढ़ के हालात में डिप्टी सीएम हर्ष संघवी का पोस्ट, नवसारी वलसाड पहुंचकर लिया हालात का जायजा। रामबन के एनएच 44 बंद होने से फंसे यात्रियों के लिए राहत, बनिहाल से कटरा तक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर की बात, वलसाड में भारी बारिश को लेकर की समीक्षा। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ का कहर, नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर, 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। वलसाड लगातार मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर, मधुरन डैम में 10 गेट खोले गए, दमन गंगा में 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, हजारों लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर। भरूच में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर बहा सैलाब, आने वाले दिनों में रेड अलर्ट जारी, स्कूल कॉलेज में 2 दिन की छुट्टी। दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर की हत्या, कृष्णानगर में चाकू से हमला, वारदात के बाद इलाके में सनसनी। मुजफ्फरपुर बिजली ऑफिस में हंगामा, डेफरमेंट चार्ज को लेकर भड़के उपभोक्ता, तोड़फोड़ और पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा, पेराई से बड़ी कार्रवाई, अजनाल हमले आरोपी गिरफ्तार, नेपाल बॉर्डर से एसएसबी पुलिस ने वारिस पंजाब देश से जुड़े विक्रमजीत और साथियों को पकड़ा। बांदा में करंट से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत, कपड़े उठाने गए बेटे को बचाने के पहुंचे पिता की भी गई जान, मां झुलसी। गुजरात के घेड़ा मातर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पानी से भरे नाले में गिरी कार, 4 की मौत, 2 का रेस्क्यू। पालघर में बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी से गिरे घर में फंसे एक ही परिवार के 4 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। पालघर के वसई में बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने से सड़क किनारे भरे पानी में गिरी कार, स्थानीय लोगों ने 4 लोगों को बचाया सुरक्षित। पालघर में बाढ़ के बीच फंसे एक ही परिवार के 13 लोगों का रेस्क्यू, पुलिस इंस्पेक्टर ने रस्सी और ट्यूब की मदद से बचाया। गुजरात के आनंद में ताश के पत्तों की तरह गिरा 2 मंजिला जर्जर मकान, लाइव वीडियो आया सामने। जूनागढ़ के सासन में गिर में एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर आया शेर, लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। उदयपुर में 2 पड़ोसी के बीच मामूली बात को लेकर विवाद, हमले में तलवार से एक दूसरे पर वार। हैदराबाद के सिकंदराबाद में प्रॉपर्टी विवाद, बहू ने सास को चाकू से किया हमला, हत्या की कोशिश का वीडियो आया सामने। ओडिशा के रेंगनाल में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रही कार तालाब में गिरी, 5 की मौत। चंदौली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुर्गी दाने की बोरियों के बीच छिपी 15 लाख की प्रतिबंधित कोडीन का सिरप बरामद। उज्जैन में चाक विवाद, अपहरण का खुलासा, 10 लाख की फिरौती वसूलने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 10 आरोपी गिरफ्तार। पुरुलिया में लालटी मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी, खतरनाक रंग और केमिकल बरामद। गोरखपुर में काला हेलमेट पहनकर आए हमलावर, अधिशासी अभियंता पर बरसाए थप्पड़। धनबाद में सेप्टिक टैंक में सफाई करने उतरे 2 श्रमिकों की मौत, जहरीली गैस की चपेट में आने से घुटा दम। सहारनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ एसटी शीटर। वाराणसी में मां ने मोबाइल चलाने से बेटी को रोका तो लड़की ने लगाई फांसी, पुलिस ने शव बरामद कर फोरेंसिक टीम को भेजा। टॉक्सिक के नए गाने, मधोश का यूट्यूब पर कब्जा, 24 घंटे में 1.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज। बटवारा 1947 का पहला गाना रिलीज, कहा चले गए हो राम, गाने में अनुराधा पौडवाल की आवाज। काजल अग्रवाल शेयर स्तर पड़ेगी द इंडिया स्टोरी की एडवांस बुकिंग शुरू, सिनेमाघरों में कल रिलीज होगी फिल्म। फिल्म प्रलय में रणवीर के साथ नजर आएंगे एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन, ये कल्याणी का बॉलीवुड में है डेब्यू। संदीप रेड्डी वांगा के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म रोमांचकम का पहला रोमांटिक गाना राधा रमना लॉन्च।

तो जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। उरी में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है, जबकि डोडा में भारी बारिश और भूस्खलन से कई सड़कें बंद हैं। उधर श्रीनगर के पास झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है।

0: जम्मू कश्मीर में हालात क्या हैं, कैसे हैं, खतरा कितना है, संकट कितना बड़ा है, इन बहुत से सवालों के जवाब इन हाहाकारी तस्वीरों से मिल रहे हैं। ये रियासी का सलाल डैम है। तस्वीरें एक दिन पहले की हैं जब डैम के गेट खोलने पड़े। जम्मू के अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। 17 जुलाई से ही रियासी का इलाका मूसलाधार बारिश का सामना कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि चिनाब और अन्य नदी नालों का जलस्तर बेहिसाब बढ़ गया। स्थिति गंभीर होने के बाद सलाल डैम के गेट खोले गए। लगे हाथ बगलियार डैम के सभी गेट भी खोलने पड़े। अब NHPC सलाल की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि डेंजर लेवल पर पहुंच चुके चिनाब के जलस्तर को देखते हुए किनारे पर जाने से बचें।
1: देख सकते हैं कि डैम के सारे गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। भारी मानसून चल रहा है जिसकी वजह से नदियां नाले जो है उफान पर हैं। पानी काफी जमा होने के कारण जो है वो डैम के सारे गेट्स खोल दिए गए हैं। आपको बता दें रामबन जिला में स्थित बगलियार डैम के भी सारे गेट्स जो है वो खोल दिए गए हैं और एक चेतावनी जो है वो NHPC सलाल द्वारा जो है वो दी गई है कि चिनाब के नदी के किनारे अगर कोई भी माल मवेशी चराने जाता है तो किसी किस्म का हादसा ना हो, कोई भी इंसान जो है वो नदी के किनारे पर ना जाए।
0: राजौरी में लगातार बारिश के बाद से पहाड़ों पर सैलाब अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। एक दिन पहले डोडा में भूस्खलन की दर्दनाक घटना हुई। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर तबाही मचाते हुए गिरे। एक गाड़ी बोल्डर की चपेट में आ गई। गाड़ी का अगला हिस्सा मलबे से पूरी तरह तबाह हो गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे तबाह गाड़ी को डेंजर जोन से निकाला। उफनती नदियों का तांडव रिहायशी इलाकों में दिख रहा है। गुरेड में बदतर हालात की तस्वीरें आपके सामने हैं। वहां एक इलाके में भारी तबाही के बाद रेस्क्यू कर्मी लगातार बचाव कार्य में जुटे दिखे। संकट का दायरा काफी ज्यादा है। जम्मू से कश्मीर तक आफत ही आफत है। श्रीनगर के तेलबन इलाके की हालत आपके सामने है। वहां भी नदी नाले उफान पर हैं। संकट बेहिसाब बढ़ा हुआ है। बांदीपोरा में तो सैलाब ने एक महिला की जान ले ली। वहां रेस्क्यू टीम ने उफनती लहरों के बीच से काफी मशक्कत के बाद लाश को बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर पर मंडरा रहे ताजा संकट में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और ये खतरा अभी टला नहीं है।
2: जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी वर्षा हुई है और जिसने फ्लैश फ्लड्स और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स, लैंड सिंकिंग जगह जगह हो रही है। अभी तक इन घटनाओं में, फ्लड रिलेटेड घटनाओं में तकरीबन 17 लोगों के मरने की खबर है। यानी कि अगर ऐसी बारिश जो है चलती रही, जो प्रिडिक्शन है IMD की, तो फ्लड का खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उबाल पे है नदी नाले, चिनाब की कई सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहां पानी बहुत हाई लेवल उसका हो गया है। जेहलम की भी अगर आप बात करें तो दक्षिणी कश्मीर में फ्लड अलर्ट है। IMD ने बहुत भारी जो है बारिश की चेतावनी दी है। पहाड़ों पे बहुत तेज बारिश हो रही है और उससे जो फ्लैश फ्लड है उसका भी खतरा लगातार बना हुआ है।
0: बिगड़े हालात के बीच पूरे जम्मू कश्मीर में SDRF की अगुवाई में कई एजेंसियां बचाव अभियान में जुटी हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट और रियासी से गौरव पराशर के साथ मीर फरीद, श्रीनगर आज तक।
3: वक्त एक ब्रेक का हौसला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
6: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
7: वाह वाह वाह वाह।
6: सेबी और NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
8: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
9: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए. सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स. और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती.
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी हिंड बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
4: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।
3: आइए आइए चला

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है
2: सरकार. हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है
3: सरकार. तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए.
4: संसद में जिन भी मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे.
5: सदन में बहस के लिए तैयार है.
6: सरकार की ओर से अब तक किरेन रिजिजू, जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा खुलकर कह चुके हैं कि आइए छात्रों के मुद्दों पर बात करते हैं. लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ और अब प्रधानमंत्री मोदी खुद सामने आ गए हैं. पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा. इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे. विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. पीएम मोदी ने साफ किया कि पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे. फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस भेजकर जल्द से जल्द सजा दिलवाएंगे. लेकिन विपक्ष कह रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा. इधर पीएम का पोस्ट आया, उधर राहुल गांधी ने भी उसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिख दिया कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया. राहुल गांधी ने अपनी मांगें फिर दोहराई कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगें, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें. विपक्ष ने भी अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि वो पीछे हटेंगे नहीं, मुद्दे पर झुकेंगे नहीं. विपक्ष की मांग सिर्फ पेपर लीक पर चर्चा नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी है. खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के निष्पक्ष चर्चा हो ही नहीं सकती.
7: विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेल डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए.
6: फिलहाल सरकार इस मामले को जैसे तैसे करके रफा दफा करना चाहती है. लेकिन विपक्ष इस बार सरकार को हल्के में छोड़ने के मूड में नहीं है. आज तक ब्यूरो.
8: पीछे छे फुट वाली रखी पीछे दुणाली, आगे हैट पे लिखा था गुजर. बात करा दे दीदी तेवर से. मेरे निकले जान हुआ के तेवर से.
9: वाह, ये अलग लेवल पे भाई.
10: वाहन का क्या है? जब तक इस देश में एथनॉल है.
11: पानी हल्का गर्म है, मिर्ची अपने मुंह पे डाल लिया, हल्दी वो पानी उन्हें गिरा के रो रहा हो कि एक लाइक दे दो. हम उसको स्वाइप कर मिले तो लाते लात मारो कि क्या पागलपन कर रहा है भाई.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: 26 दिन बाद सोना मांग चुके अनशन का दी एंड। वीडियो संदेश में बोले, जिम्मेदारी तय करने का सरकार ने दिया भरोसा, लेकिन सीजेपी का आंदोलन रहेगा जारी। आज देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा आश्वासन, बोले सख्त सजा के प्रावधान वाला कानून लाएंगे। आज कैबिनेट में चर्चा, अगले हफ्ते संसद में बिल लाने की तैयारी। शिक्षा सचिव की छुट्टी, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित। सीजेपी और केंद्र के बीच बातचीत का आज अहम राउंड। मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास का बयान, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। दिल्ली में तीसरे दिन 17 मेट्रो स्टेशन बंद। आज पांचवें दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ सकती है संसद। राहुल गांधी 3 मांगों पर अड़े, प्रधान का इस्तीफा, पुलिस पर एक्शन और माफी से कम मंजूर नहीं। सोनिया गांधी का लेख, आंदोलन दबाना जानती है संवेदनहीन सरकार। और गुजरात, महाराष्ट्र और असम में बाढ़ बारिश का तांडव। वलसाड़, सूरत, नवसारी समेत कई शहर जलमग्न। 22,000 से ज्यादा लोगों के छूटे घर, 1200 का रेस्क्यू। आज भी 3 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ फिर से हाजिर है। आज फिर अगले एक घंटे तक पेपर लीक पर सरकार से लेकर विपक्ष और प्रदर्शनकारियों के एक्शन की बात होगी। हम बताएंगे कि तीनों मोर्चों पर क्या क्या हुआ। साथ ही बात होगी संसद की, जहां लगातार पांचवें दिन पेपर लीक पर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष और सरकार दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। दोनों एक दूसरे को चर्चा न चलने देने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बात होगी सीजेपी और सरकार की बातचीत की, जिसके लिए जगह तय हो गई है। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वार्ता हो सकती है। और साथ ही बताएंगे कि किन शर्तों के साथ सोनम वांगचुक ने तोड़ा अपना अनशन।

0: नीट पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया है, इसे लेकर संसद से सड़क तक संग्राम है। मॉनसून सत्र के पांचवें दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में टकराव के पूरे आसार हैं। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार कई मोर्चों पर एक्शन के साथ विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर कर रही है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक पर बयान दिया। उन्होंने देर रात वीडियो संदेश में न सिर्फ छात्रों के साथ खड़ा दिखने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने सरकार के एक्शन भी गिनाए। वहीं विपक्ष ने कल गांधीगिरी से सरकार को घेरा। आज सोनिया गांधी ने अखबार के संपादकीय में सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने, एनटीए की कार्यप्रणाली और छात्रों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर तीखा हमला बोला है। सरकार ने जहां एक तरफ विपक्ष पर बहस से भागने का आरोप लगाया है, वहीं दो दो मोर्चों पर बातचीत का चैनल भी खोला है। आज सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत होगी। उधर सरकार सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाकर एक मोर्चे पर जीत का दावा भी कर सकती है। तो आखिर क्या क्या होने वाला है आज संसद में? घमासान हो सकता है ये माना जा रहा है, क्योंकि कुछ देर में संसद की कार्रवाई शुरू होगी और जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है उसमें यही देखने को मिला है कि लगातार टकराव हुआ है। विपक्ष चाहता है चर्चा हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। उधर सरकार का कहना है कि आप बिना शर्तों के चर्चा करें। तो यही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक वीडियो अपील देर रात जारी की गई जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई की जा रही है। उधर राहुल गांधी ने यह मौका लिया गांधीगिरी करने का और अपनी बात को सामने रखने का। सोनिया गांधी ने भी एक संपादकीय लिखा है जिससे ये उन्होंने दावा किया है कि अब सरकार जो है उसके एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। तो आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ता ही जा रहा है। संसद की कार्रवाई भी कुछ देर में शुरू होने वाली है, तो आपको बताते हैं किस तरह से आर पार की लड़ाई है ये। तो पांचवें दिन भी संसद में लगातार अब यही माना जा रहा है कि हंगामा ही रहेगा, क्योंकि हम यही देखते आए हैं और कुछ देर में जब कार्रवाई शुरू होगी तो ये पता भी चल जाएगा। सरकार और विपक्ष में जबरदस्त गतिरोध है और दोनों अपने अपने बातों पे अड़े हुए हैं, यहां तक कि एक दूसरे के अगेंस्ट हमने देखा है विरोध प्रदर्शन भी करते आए हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि मैं बहुत से कदम उठा रहा हूं जिसमें एक सख्त कानून लाना भी शामिल है, लेकिन वहीं सोनिया गांधी ने भी एक संपादकीय लिखकर एक अटैक कर दिया प्रधानमंत्री पर और साथ ही सरकार पर, और वो कहती है कि किसान से लेकर छात्र सबको लेकर संवेदनहीन है ये सरकार, ये दावा वो कर रही है। उधर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने गांधीगिरी का सहारा लिया, उन्होंने मार्च किया और स्मृति वहां वो गए गांधी स्मृति तक और वहां पर उन्होंने अपने सांसदों और नेताओं के साथ बैठ करके अपनी जो बात है सामने रखी। उधर जो इस पूरे मामले के केंद्र में है वो है कॉकरोच जनता पार्टी, उसकी आज सरकार से बातचीत हो सकती है, इसके लिए जगह तय हो गई है और वो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, लेकिन किस वक्त होगी ये जैसे ही पता चलता है हम आपको अपडेट करेंगे। साथ ही एक और अहम कड़ी इसमें थी, सोनम वांगचुक, उनका अनशन अब खत्म हो चुका है और उनकी बातचीत हुई थी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से, उसके बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और एक वीडियो मैसेज भी जारी किया और इससे एक बात तो साफ है कि कई मोर्चों पर सरकार कारगर है, शुरू है, काम कर रही है, लेकिन फिर भी सीजेपी अभी मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कई बातें हैं, कई दावे हैं और कई मांगे हैं। तो हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कुछ देर में संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है, तो पांचवें दिन भी यही मान के चल रहे हैं कि संसद की कार्रवाई में कोई ना कोई अड़ंगा तो जरूर आएगा। सरकार और विपक्ष दोनों में जबरदस्त गतिरोध है, दोनों के अपने अपने विरोध है, अपने अपने मुद्दे हैं। विपक्ष चाहता है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, सरकार चर्चा के लिए कह रही है, लेकिन उसका कहना है कि कोई शर्त नहीं होनी चाहिए चर्चा के लिए। उधर नीट पेपर लीक पर जो घमासान मचा हुआ है उसके बीच प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने कहा पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, पेपर लीक लाखों छात्रों और उनके माता पिता के लिए बहुत दुखद है, इसलिए पेपर लीक की घटना के बाद से पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल में है। पीएम मोदी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है और संबंधित विभागों ने मसौदा भी भेज दिया है। इसमें तुरंत इंसाफ और कठोर सजा के प्रावधान हैं और आज इस पर कैबिनेट के बीच चर्चा होगी और सरकार जल्द से जल्द इस विधेयक को सदन में पारित कराने का प्रयास भी करेगी।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, जिस तरह का जवाब विपक्ष की तरफ से आया है मल्लिकार्जुन खड़गे का इस वीडियो को लेकर के, उससे क्या लगता है कि आज संसद में क्या रुख रहने वाला है विपक्ष का? क्या आज भी यही मान के चले सिर्फ बवाल ही होगा?
2: देखिए, गतिरोध बना हुआ है और विपक्ष भी चाहेगा कि इस गतिरोध को जल्दी ही ना खत्म किया जाए। विपक्ष चाहता है चर्चा हो, सरकार चाहती है चर्चा हो, लेकिन किस नियम के तहत चर्चा हो इसको लेकर अभी बातचीत नहीं हुई है और यही कारण है कि गतिरोध जो है संसद में बना है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विपक्ष इस बात को लेकर अड़ गया है कि शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि इस्तीफा नहीं हो सकता अभी, और जो भी चीजें हुई हैं गड़बड़ उनको सरकार जो है अपने एंगल से ठीक कर रही है। आज कैबिनेट के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है विधायक लाया जाएगा और इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जो है अगले ही सप्ताह संसद के इस मानसून सत्र में इसको दोनों ही सदनों से पास कराकर कानूनी रूप देने का काम जो है वो किया जाएगा। और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि शिक्षा के अंदर जो भी परिवर्तन होने हैं सिस्टम के अंदर वो किए जा रहे हैं, लेकिन जो मांगे हैं उन मांगों में से अधिकतर मांगों को लेकर आज सीजीपी जो है एक बार फिर से सरकार से मुलाकात करेगी और अपनी 3 मांगे जो पिछली बार थी क्या उन्हीं मांगों पर अडिग रहेगी या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कुछ और नई मांग लेकर जो है सीजीपी के प्रतिनिधि जो आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ संसद में गतिरोध बना है, ये गतिरोध खत्म करना जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों ही तरफ से कहा गया कि हम जो है वो चर्चा चाहते हैं, लेकिन चर्चा किस नियम के तहत हो इस पर बातचीत नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि राज्यसभा के अंदर जो है वंदे मातरम बिल इसको इंट्रोड्यूस जो है वो गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं आज, इसीलिए राज्यसभा में बीजेपी ने एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप नहीं इश्यू किया, लेकिन एक जो है मौखिक रूप से जो है अगर देखें तो ये कहा है कि सभी सांसदों
0: आप हमारे साथ बने रहे। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो संदेश में छात्रों को क्या कहा है।
1: हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा।
0: तो प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी ने अब निशाना साधा है। राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस पथेटिक आधी रात वाले वीडियो से उनकी इंटेलिजेंस का अपमान मत कीजिए। राहुल गांधी लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि प्रधान को बर्खास्त करें, छात्रों को पीटने वालों को सजा दें और माफी मांगें।

0: उधर सोनिया गांधी ने भी अखबार के संपादकीय में सरकार को घेर लिया है। सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने, एनटीए की कार्यप्रणाली और छात्रों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि सरकार असंवेदनशील है, फिर चाहे मामला किसानों का हो या फिर छात्रों का। तो आपको बता दें कि संपादकीय में उन्होंने सीधा निशाना साधा है सरकार पर और कहती हैं कि निरंकुशता, आत्ममुक्तता, ये दिक्कतें हैं सरकार की और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी से संकट और गहरा गया है। वो कहती हैं कि भारत के छात्रों ने मोदी सरकार को कार्यशैली उजागर कर दी है मोदी सरकार की। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज का। अमित, ये जो एडिटोरियल लिखा गया है सोनिया गांधी की तरफ से, इसका मैसेज क्या है? अगर इसका कोर मैसेज समझने की कोशिश करें तो वो क्या है?
1: देखिए अंजलि, आप स्ट्रैटेजी देखिए कांग्रेस पार्टी की कि इस हफ्ते कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है। बीते पूरा जो हफ्ता रहा, मानसून सत्र जब से शुरू हुआ, राहुल गांधी और जो पूरा विपक्ष है वो सरकार को घेरता है। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन के दिन सीधे प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, 3 घंटा धरना चलता है। कल देर शाम तक उन्होंने पूरी हेडलाइन बदल दी, नरेटिव बदल दिया जब वो विपक्षी सांसदों को लेकर पहुंच गए गांधी स्मृति। और आज सुबह सुबह सोनिया गांधी, जो कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है, उनका ये लेख आता है मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए। ये कहते हुए कि किस तरह से मोदी सरकार के समय जो पूरा शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रही हैं कि इस बात को लेके कोई ग्लानी नहीं है मोदी सरकार के अंदर, कि किस तरह से उन्होंने एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हुआ है। इसके पीछे जो कांग्रेस पार्टी का एक लार्जर नैरेटिव है, वही उसी बात को सोनिया गांधी का ये लेख आगे बढ़ाता है। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सांसद और विपक्ष के सांसद जब गांधी स्मृति जा रहे थे तो एक प्लकार्ड बस पे जगह जगह पोजिशन किया गया था, 152 leaks 0 convictions, 152 पेपर लीक हुए हैं और कन्विक्शन जीरो है। तो ये नैरेटिव पब्लिक के बीच बना रहे, इसकी वजह से अलग अलग तरीके के स्ट्रैटेजी को अपनाया जा रहा है, कभी धरना तो कभी गांधी स्मृति। और अब ये आर्टिकल सोनिया गांधी का एडिटोरियल छपा है, उसमें मोदी सरकार की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा पॉलिसी पे कई सारे अटैक्स हैं। तो आइडियोलॉजिकली भी सरकार को घेरने के लिए कई फ्रंट्स खोल दिए हैं विपक्ष ने।
0: जी अमित, आप हमारे साथ बने रहे। उधर विपक्ष ने अपनी धार तेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, संसद के साथ सड़क पर भी सरकार को घेरने की कोशिश जारी है। पीएम आवास पर धरने के बाद राहुल गांधी कल शाम 120 विपक्षी सांसदों के साथ बापू की शरण में पहुंचे। विपक्ष की मांग है कि छात्रों की मांग सरकार माने, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले। तो ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जब गांधी स्मृति पहुंचे विपक्ष के नेता।
2: जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को, यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे। 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे, सिम्बोलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है। वो शायद अब खोल रहे हैं।
3: हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश कि हमारी देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश में उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं।
4: मैडम,
3: आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए? क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रही कि न्याय मांग रही है।
4: ताकि
5: मोदी जी, भाजपा के लिए एक मंत्री की कुर्सी बड़ी है तो फिर बड़ी रखिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ही, उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये युवाओं की पुकार है, राजनीतिक लोगों की नहीं।
6: जितनी देर स्टूडेंट के लिए सरकार जागती नहीं है, अंधी है, बहरी है, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। ये पूरे देश के बच्चों का, युवाओं का सवाल है। जिस तरह से ये हिटलर शाही कर रहे हैं, ये सहने योग्य नहीं है।
7: एक कहावत है, अकलमंद को इशारा काफी है। अगर इनकी अकल है तो ये इशारा समझेंगे, नहीं तो अगर बुद्धि मोटा ही रहेगा तो परिणाम भुगतना है।
0: और रुक करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर का। आज एक अहम और सख्त फैसला लिया जा सकता है, ये पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है। सरकार ले सकती है एक बड़ा फैसला। दरअसल एक कानून लाने की कोशिश है जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी। सख्त सजा के लिए बिल लाएगी सरकार। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि ये आज ही हो सकता है कि इस कैबिनेट की बैठक में इसे लाया जाए और इसे मंजूरी भी दे दी जाए, ताकि जल्द से जल्द इसे संसद में भी लाया जा सके। तो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन की कोशिश होगी, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और जो सजा मिलेगी जिन लोगों को इसमें अपराधी माना जाता है, उनके खिलाफ सजा भी कड़ी की जाएगी। तो पेपर लीक को लेकर बड़ा फैसला है सरकार का। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, क्या क्या बातें हो सकती है इस बिल में, क्योंकि सभी छात्रों की नजरें इसी बात पे हैं कि ये बिल आखिर उनके लिए क्या लेकर आएगा।
1: देखिए, अभी तक जो इस बिल कानून के अंदर प्रोविज़न है वो 3 से 5 साल की सजा है, 10 लाख तक का जुर्माना है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। लेकिन अगर सामूहिक तौर पर एक कॉन्स्पेसी के तहत आप इसको पेपर लीक करते हैं तो अब वो सजा जो है वो 5 साल से 10 साल हो सकती है, और जो ममिनिमम फाइन है वो 1 करोड़ रुपए हो सकता है और उससे अधिक भी हो सकता है। तो और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट को जो है और ज़्यादा अधिकार जो है वो दिए जा सकते हैं। तो एक तरीके से पेपर लीक मामले में सरकार जो है गंभीर है। इस चीज़ को कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो जो जारी किया था उसमें साफ कर दिया था। उसके साथ साथ ये भी कहा था कि कल सरकार कैबिनेट में एक बड़ा कदम जो है वो लेने जा रही है, और उसके बाद पेपर लीक मामले में, और जब संसद का मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह होगा तो इस कानून को जो है, इस बिल को जो है वो दोनों ही सदनों से पास कराने का प्रयास करेंगे, और अगर पास होता है तो कानून का रूप ले लेगा। यानी कि कई अमेंडमेंट जो है वो पब्लिक पेपर जो अधिनियम है उसके अंदर जो है वो सरकार और लेकर आ रही है अमेंडमेंट्स, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट को और अधिकार देने की बात है। साथ ही साथ अगर पेपर लीक में कोई दोषी है तो वो 5 साल से 10 साल की सजा होगी, जो अब तक 3 से 5 साल थी, और 10 लाख तक का जुर्माना था। सर्विस प्रोवाइडर पर जो है वो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना था। अब अगर आप सामूहिक तौर पर एक साथ पेपर लीक के मामले में पाए जाएंगे तो मिनिमम सजा जो है वो 5 साल से 10 साल होगी, और 1 करोड़ रुपए जो है वो मिनिमम फाइन जो है आपके ऊपर होगा।
0: जी चलिए, मानसुक सरकार कह रही है कि कानून सख्त होगा, लेकिन क्या विपक्ष मानेगी? बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, आपको बता दें, सरकार अगर ऐसा सख्त बिल लाती है तो सूत्र कहते हैं कि कानून के मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो साथ आ सकती है और चर्चा में हिस्सा ले सकती है। तो बड़ी खबर है ये, क्योंकि अब तक जो रुख रहा है कांग्रेस का वो बिल्कुल अलग रहा है। आइए रुख करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, कांग्रेस तैयार है चर्चा के लिए, अगर ये सख्त कानून आता है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या ना हो।
4: देखिए, ये हमारे सूत्रों से खबर मिल रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कल कहा कि आज कैबिनेट में एक बिल लाया जाएगा जिसको मंजूरी देके यहाँ संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा जल्द से जल्द, उसको लेके गतिविधियां तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। तो विपक्ष का एक मानना है, खासतौर से कांग्रेस का, कि अगर छात्रों से रिलेटेड कोई बिल आता है तो कांग्रेस उस चर्चा में पार्टिसिपेट करेगी, उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगी, बाकी विपक्षी दलों से भी इस पर राय शुमारी होगी। लेकिन ये एक बड़ा डिपार्चर है, अगर आप देखें पिछला हफ्ता किस तरीके से बिल्कुल ही धुल गया, और ये मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो उसके बाद कुछ हो। हालांकि ये साफ नहीं है कि अगर बिल वो लाते हैं तो क्या उस वक्त भी कांग्रेस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेगी बिल के दौरान। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि अगर बिल संसद के पटल पे आता है तो कांग्रेस उसका बहिष्कार नहीं करेगी, उस चर्चा में पार्टिसिपेट करेगी। कांग्रेस का रुख क्या होगा ये बिल की बारीकियों को देखने के बाद ही वो बता सकेगी।
0: जी शुक्रिया मौसमी, बड़ी खबर ये, कांग्रेस का रुख थोड़ा सा नर्म होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो, Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
3: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
2: More top sports.
4: And he's gonna go! There's the tying goal!
2: And everything in between.
4: This game is over!
2: Upgrade now for the premium listening experience.
5: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
6: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
5: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
6: अर्ज किया है।
5: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
7: वाँ वाँ वाँ वाँ।
5: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
8: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
9: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
10: इन एसोसिएशन विद
11: सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
13: हमारे पीछे आप देखें और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है,
14: टियर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है और यहाँ पे टियर गैस का इस्तेमाल पुलिस करती हुई नजर आ रही है।
13: पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से टियर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
15: कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली। आज
16: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
17: In association with
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty।

प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद नए कानून में हो सकते हैं कई बदलाव। सजा सख्त करने के प्रावधान, बिल पर बहस में हिस्सा ले सकती है कांग्रेस। आज कैबिनेट में होगी मॉडल पर चर्चा। छब्बीस दिन बाद सोनम वांगचुक के अनशन का दी एंड। वीडियो संदेश में बोले, जिम्मेदारी तय करने का सरकार ने दिया भरोसा, लेकिन सीजेपी का आंदोलन रहेगा जारी। आज देशव्यापी प्रदर्शन की है तैयारी। सीजेपी और केंद्र के बीच बातचीत का आज

0: हो सकता है। सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून लाने जा रही है और ऐसे में पेपर लीक को लेकर सरकार सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, अपने वीडियो संदेश में भी किया। अब सूत्रों से खबर आ रही है कि सरकार काफी सख्त कानून लाएगी इस पर। आज कैबिनेट में इस पर मुहर भी लग सकती है और सरकार के लाए कानून के बाद विपक्ष भी संसद में बहस के लिए तैयार हो सकता है। कांग्रेस की तरफ से इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का रुख करते हैं। हिमांशु, सख्त प्रावधान क्या है, अब तक जो कानून था वो क्या है और कौन से बदलाव हो सकते हैं जिन्हें सख्त माना जाए?
1: देखिए, जो हमको अभी तक जानकारी मिल रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को जो है और ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं इस अमेंडमेंट बिल के अंदर। उसके साथ साथ जो है, जो अभी तक प्रोविजन थे, जो प्रावधान थे, उसमें 3 से 5 साल की सजा थी और 10 लाख रुपए तक का जो है वो जुर्माना था इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर। अगर आप जो है एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का जो है वो आपको जुर्माना था, लेकिन अब ये बढ़कर जो है वो 5 से 10 साल की सजा हो सकती है और 1 करोड़ पे जो है वो मिनिमम जो है वो जुर्माना हो सकता है और अधिक जुर्माना जो है और ज्यादा हो सकता है। उसकी जो सीमा है वो 3 करोड़ से 5 करोड़ तक जा सकती है। तो सरकार जो है सख्त कदम बनाना चाहती है जिससे पेपर लीक जो है भविष्य में ना हो। इस बात को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो मंगल मिलन, जो एनडीए का पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग था, उसमें ये साफ साफ कहा था कि सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही पेपर लीक हुआ, सरकार ने एक्ट किया, 13 लोगों को अरेस्ट किया और जो कुछ हुआ है, जिन लोगों ने किया है वो घोर पाप किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कल ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। उन्होंने जरूरी निर्देश जो है वो विभागों को दे दिए हैं और कल देर शाम तक जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया था। फिर देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वीडियो जारी करके बताया कि कल कैबिनेट के अंदर एक बिल लाया जाएगा, अमेंडमेंट बिल, जिसके अंदर पेपर लीक मामले में जो है और सख्त कानून जो है वो बनाए जाएंगे और अगर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जो है संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में जो है वो इस बिल को लोकसभा राज्यसभा से पास कराने का प्रयास जो है वो सरकार करेगी। अगर ये बिल पास हो जाएगा तो एक सख्त कानून जो है वो जो भी पेपर लीक के दोषी होंगे उनके ऊपर लागू हो जाएगा।
0: जी, तो कानून सख्त किया जाएगा, प्रावधान बदले जाएंगे। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उधर कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यदि सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून के लिए ये बिल लेकर आती है तो कांग्रेस चर्चा में हिस्सा ले सकती है। ये कांग्रेस के सूत्रों से खबर आ रही है। उसका कहना है कि सख्त कानून पर चर्चा होगी, छात्रों की जरूरतों को देखते हुए वो इस चर्चा में हिस्सा ले सकती है, लेकिन सवाल ये भी है कि कानून सख्त तो किया जाएगा, उसके क्रियान्वयन को लेकर क्या किया जाएगा। नया बिल लाया जाएगा, उस पर जो चर्चा होगी उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार नजर आ रही है कांग्रेस। ऐसे संकेत उसकी तरफ से आ रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। तो अगर ये कानून वाकई में आता है अगले हफ्ते, जैसे कि माना जा रहा है कि शायद ये सदन में पहुंच जाए, तो कांग्रेस की तरफ से अब थोड़ा अपना रवैया रुख नर्म होता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रही है कि वो चर्चा में हिस्सा लेगी, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि विपक्षी पार्टियों ने सदन में कोई चर्चा नहीं होने दी है। उन्होंने अब तक जो मांग की है वो ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, प्रधानमंत्री माफी मांगे और उसके बाद ही, और साथ में पुलिस पर भी कार्रवाई हो और उसके बाद ही कोई चर्चा होगी। लेकिन अब नए कानून में संशोधन की बात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस शायद कुछ नरम पड़े। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, चर्चा पर तैयार हो सकती है कांग्रेस, ये एक बड़ी खबर है, लेकिन कुछ बातें होंगी जिनको वो सामने रखना चाह रही होगी जिस वजह से वो तैयार हो रही है। किन बातों पर फोकस करेगी वो इस चर्चा में?
2: दरअसल टाइमलाइन इसे समझना जरूरी है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक का अनशन टूटा, प्रधानमंत्री ने कहा कि कैबिनेट में एक बिल लेके आएंगे और दूसरों की मांग है उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उसके एक कड़ा कानून लेके आएंगे, कैबिनेट भी तो विपक्ष ऐसा नहीं चाहता कि अगर छात्रों के हित में कुछ आ

0: में दर्ज करें तो इस नए बिल के मद्देनजर, हालांकि और किसी चर्चा के लिए इस नीट के पेपर लीक की चर्चा के लिए विपक्ष तैयार नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले हो फिर चर्चा हो, लेकिन नया बिल अगर आता है तो उसके लिए उसको लेकर अभी कांग्रेस का ये पक्ष है कि अगर नया बिल आया तो हम लोग उस चर्चा में हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है तो उसका बहिष्कार हम नहीं करेंगे। और जो भी कानून जो भी बिल लाती है सरकार उस पर हम एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए या बिल की बारीकियों को देखते हुए हम इस पूरे मसले पर अपनी रखेंगे।
1: जी बेहद सीमित स्कोप के साथ यहाँ पर साफ कर दिया है कांग्रेस ने कि वो चर्चा करेगी लेकिन सिर्फ इन संशोधनों पर। तो मौसमी जो रुख इस वक्त कांग्रेस का आ रहा है, अगर उसे राजनीतिक तौर पे देखें तो उसका आंकलन कैसे करेंगी, क्योंकि एक तरफ सरकार की तरफ से सीजेपी को भी पूरी तरह से इंगेज करने की कोशिश है, आज चर्चा हो सकती है, ऐसे में क्या विपक्ष चाहता है कि वो भी अपने आप को रेलेवेंट रखे इस मुद्दे पर?
0: मुझे लगता है कि अंजलि इसको इस तरीके से देखना है कि ये कोई संशोधन 2024 में कानून पारित हुआ था और उसको लेकर भी कांग्रेस का ये पक्ष है कि वो कानून पारित होने के बावजूद भी नतीजा ढाक के तीन पार था, कुछ पेपर लीक होते रहे। तो अब हम देखना चाहेंगे कि सरकार नए कौन से नए बिल की बात कर रही है, ऐसा क्या उसमें लाएगी जो पीछे वाले बिल में नहीं था, और क्या ये वाकई में पूरी शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाएगा इसको लेके, ताकि उसकी आलोचना अगर जरूरत है तो आलोचना की जाए और उसके अगर मंथन की जरूरत है तो मंथन किया जाए, क्योंकि हम छात्रों की आवाज बनना चाहते हैं। तो अगर नया बिल आता
1: जी
0: है तो उससे हम लोग उस पर हम लोग चर्चा में भाग लेंगे।
1: जी आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां अभी भी अड़ी हुई हैं और संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। हम लगातार देखते आए हैं कि संसद परिसर में बार बार विपक्षी पार्टियां आती हैं सुबह के वक्त और धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। तो एक बात साफ है कि सीमित स्कोप के साथ वो चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी खासतौर पर, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है उसे लेकर अड़ा हुआ है विपक्ष। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी का। मौसमी, ये साफ नजर आ रहा है विपक्ष की स्ट्रैटेजी में कि वो कंपार्टमेंटलाइज कर रही है चीजों को। एक तरफ संशोधन का मुद्दा है उस पर चर्चा करेगी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा कहीं पीछे नहीं होने देना चाहती।
0: बिल्कुल अंजलि, देखिए आपने इस बात को लेकर बिल्कुल सही समझा कि
1: जी मौसमी आपकी आवाज कट रही है, आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो संसद परिसर से आ रही है, जहां अब लगातार हम देख रहे हैं कि पांचवें दिन भी कांग्रेस जो है और विपक्षी पार्टियां जो है वो एक बार फिर से बैनर पोस्टर लेकर खड़ी हो गई हैं, और इस बार मैसेज संदेश और सटीक होता जा रहा है। पहले फिर भी नीट पेपर लीक और कुछ और बातें लिखकर वो खड़े होते थे, इस बार बड़ा सा बैनर छुपवा दिया है और उसमें सिर्फ एक बात कही जा रही है, बर्खास्त करो प्रधान को। तो इस्तीफा भी नहीं, अब डिसमिस है। तो यहां देखिए शब्दावली भी हल्की सी बदली हुई नजर आ रही है, बर्खास्तगी अब मांग रहे हैं, डिसमिस करने की बात कर रहे हैं। तो एक जो जिसे रिस्पेक्टफुल एग्जिट कहते हैं, यानी कि आप इस्तीफा दे करके अपने आप चले जाएं, अपने आप हट जाएं, उसकी जगह अब जो आज बैनर आज दिख रहा है उसमें लिखा है बर्खास्त करो प्रधान, डिसमिस प्रधान। तो शिक्षा मंत्री पर सीधा वार है कांग्रेस का, विपक्षी पार्टियों का आज संसद परिसर में।
2: आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे।
1: मल्लिकार्जुन खड़गे को
3: संसद
1: में आते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री का जो वीडियो मैसेज उन्होंने जारी किया है उसके बारे में वो ये कहते हैं कि घर पर बैठकर के इस वीडियो को जारी करने के बजाय वो संसद में आए, सदन में आए और अपनी बात कहें। तो ये बात कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और इस सब के बीच संसद के परिसर में जारी है ये प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं। कांग्रेसी सांसद अभी भी इस पूरे मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। तो कांग्रेस जो है इस वक्त एक ऐसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है जिसमें एक तरफ तो वो ये साफ कर रही है,
4: स्पेसिफिक डिमांड क्या है उस पे बोलिए ना। अब तो तीन स्पेसिफिक डिमांड है। आप मिडनाइट के बाद पोस्ट करते हैं उसमें भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं, आपका अहंकार आपको ले डूबेगा, आपके लोग आपके तथाकथित ब्रांड को उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है। यू आर विदाउट एनी कवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्लीज मार्क माई वर्ड्स।
1: तो विपक्षी पार्टियों ने अपना निशाना साधना शुरू कर दिया और सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर साध रहे हैं वो निशाना। रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, हमने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, हमने आरजेडी सांसद को सुना, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए। यहाँ एक रुख जो विपक्ष का ये भी दिख रहा है कि अगर संशोधन का बिल आता है संसद में तो वो चर्चा करेंगे। तो ऐसे में हिमांशु, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके लिए लेकर आ रहे हैं संसद परिसर में, जहां कुछ ही देर में उम्मीद ये है कि सदन की कार्रवाई शुरू हो। तो संसद में क्या आज कुछ बातचीत हो पाती है या आज भी भेंट चढ़ जाता है? और ये तस्वीरें सीधे प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं इस वक्त सदन में, संसद के परिसर में खड़ी हैं टीएमसी सांसद के साथ, और आज फिर एक बार फिर से नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है।
5: आजाद हिंदुस्तान में 14 साल में कभी आपने प्रधानमंत्री को देख सुना छात पर? 1,00,000 स्कूल बंद हुए, क्या हुआ? सारी कॉलेजेज बंद हो गई, कहीं भी कॉलेजेज में यूजीसी के तहत भर्ती नहीं हो रहा है, रेलवे भर्ती बंद है, बैंकिंग भर्ती बंद है। कभी आपने सुना अग्निपीर पर बोलते हुए? आप हालात आप देखो। और आप पॉलिसी की बात किया, आप धर्मेंद्र प्रधान की बात की, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? जब मनमोहन सिंह जी की अकाउंटेबिलिटी थी तो अब किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? अभी तो उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी होगी, बहुत क्लियर है। इसमें प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे आप हमको बताओ। प्रधानमंत्री जी के जब 1 करोड़ व्यूवर्स गिर गए उसके बाद वो नहीं याद आया, मिलियन व्यूवर्स गिर गए उनके, खत्म हो गए, लोग हट गए और लोग सुनना बंद कर दिया, तब उन्हें याद आ रहा है छात्र की, और कह रहे हैं कि मैं कानून तो पहले से भी था, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करने की धमकी है क्या? नियत इसकी सही है क्या? जब नियत ही सही नहीं हो, अच्छे आदमी इस कंट्री में ना हो, पॉलिसी ना हो, एक ऑटोनोमस बड़ी एग्जामिनेशन का और ना बने जो राजनीति से बिल्कुल दूर हो, कैलेंडर लागू ना हो, बिना पॉलिसी के आप 1,00,000 नौकरी, तो 1,00,000 की नौकरी को आप कैलेंडर में तय करो और 1,25,00,000 का एग्जामिनेशन दिला करके खत्म करो, और आप पूरी सरकार इस्तीफा दे।
1: तो सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, लगातार तस्वीरें आ रही हैं संसद से, कांग्रेस इस वक्त एक बार फिर से अपना प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। मांग उनकी साफ है कि वो चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जाएं, लेकिन एक और बात जो उन्होंने कही है वो ये कि जो संशोधन का बिल अगर संसद में आता है तो वो चर्चा में हिस्सा लेगी। तो इस संशोधन को लेकर के, इस बिल को सदन तक लाने के लिए सरकार की अब क्या कोशिश रहेगी?
6: देखिए, आज क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग है 1 बजे, और उस मीटिंग के अंदर जो है ये संशोधन बिल जो है वो उसको मंजूरी मिल सकती है। जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात जो वीडियो जारी किया था उसके बाद, और क्योंकि आज शुक्रवार है तो सोमवार से अगला जो मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू होगा उसमें सरकार ये कोशिश करेगी कि जो बिल है संशोधन बिल उसको दोनों ही सदनों से पास कराया जाए और उसको एक कानून जो है, सख्त कानून को जो है वो फिर से लागू कराने की कोशिश हो, जिसमें कई प्रोविजन जो है, जो प्रावधान है वो नए अमेंड किए जा सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट को जो है और ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं, उसके साथ साथ जो है वो जो सजा अभी तक 3 साल से 5 साल तक थी इंडिविजुअली किसी व्यक्तिगत पर वो, और उसके साथ साथ जुर्माना 10,00,000 था, अब वो जो है 5 से 10 साल होगी और 1 करोड़ पे मिनिमम जुर्माना जो है वो हो सकता है।
1: लेकिन हिमांशु, सवाल ये भी है जो कि सांसदों को पूछते हुए हमने सुना कांग्रेस के, और वो ये है कि कानून तो आपका 2024 का भी है, उसके क्रियान्वयन, उसको लागू करने को कैसे निश्चित किया जाएगा?
6: देखिए, जो कानून 2024 में है उसी के तहत जो है वो इन 13 लोगों पर एफआईआर हुई है जिनको अरेस्ट किया गया है नीट पेपर लीक मामले में, और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है कि जैसा प्रधानमंत्री ने कल सुबह ट्वीट करके एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी थी, और उसके बाद जो है देर रात तक जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी हो गया
1: जी।
6: देर रात प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि जो एग्जामिनेशन संशोधन बिल है उसमें और जो है अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे, संशोधन लाए जाएंगे और सख्त किया जाएगा इसको, जिससे कि लोगों के मन में डर
1: जी। मानशु, इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल गौतम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, सीधा आपके पास आ रहे हैं, ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कदम लिए जाएंगे, ये तो काफी गिनवा दिए हैं, लेकिन सवाल जो विपक्ष उठाता है वो ये कि ये कैसे तय किया जाएगा कि कानून अगर सख्त कर भी दिया जाता है तो उसका क्रियान्वयन सही तरीके से होगा या नहीं। और दूसरी बात, अब विपक्ष की तरफ से जो अटैक आ रहा है, जो हमला आ रहा है, वो बहुत तीखा आ रहा है और सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर आ रहा है, जो हमने देखा है आज सुबह जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान आए हैं उसमें।
7: बिल्कुल, देखिए विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि आप फर्स्ट एड की जगह सीधा सर्जरी करने की बात कर रहे हैं, जब लोग पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, जब लोग कन्विक्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में ट्रायल का या फास्ट ट्रैक करने का कोई फायदा नहीं है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, विपक्ष का ये आरोप है। और देखिए, अब अलग अलग स्ट्रैटेजी पे काम चल रहा है। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना, कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री का जो वीडियो है उसको पथेटिक बताया। लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो सड़क पर है, पिछले आप देखिए 72 घंटों के अंदर दो धरने हो चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है राहुल गांधी के थ्रू, सोनिया गांधी एक आर्टिकल लिख चुकी हैं, तो कुल मिलाकर जो प्रेशर है वो बढ़ाया जा रहा है, तापमान को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनको साफ तौर पर लगता है कि सरकार बैकफुट पर है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम सरकार को घेरेंगे उतना ही हमको फायदा होगा, और वो साथ ही साथ ये मैसेज भी दे रहे हैं कि छात्रों को कि देखिए हम आपके मुद्दे लेकर संसद के अंदर चर्चा भी चाहते हैं, इस्तीफा आप भी मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो भाग रही है अपनी जिम्मेदारी से।
1: तो कुल मिलाकर राहुल, ये जो दबाव बनाने की रणनीति है उसका एक एस्पेक्ट और है, वो है परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन करना। हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा संसद परिसर में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन पर दिखा रहे हैं रिपोर्ट।
8: इस वक्त हमारी मौजूदगी है संसद भवन में और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के बीच में विपक्ष का धरना प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ पर मूसलाधार बारिश के बीच में जो विपक्ष के सांसद हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए वो जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, वी वॉन्ट जस्टिस के नारे इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी यहाँ मौजूद है, बर्खास्त करो प्रधान, ये मांग लेकर यहाँ पर विपक्षी सांसद आए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो लगातार जो है विपक्ष का धरना धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ चल रहा है। इस वक्त मकर द्वार पर हमारी मौजूदगी है, संसद भवन में हमारी मौजूदगी है, और संसद नहीं चल पा रही है सिर्फ इसी मांग को लेकर जिसमें विपक्ष ने साफ कह दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी। हालांकि सरकार का यह मानना है कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है, और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक नया मसौदा लाने के साथ साथ यह ऐलान कर दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस पूरे मामले में सरकार सेटअप करेगी। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।
1: तो इस अहम मुद्दे पर बनी हुई हमारी नजर, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
13: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on Tune In. Plus, you can listen to Tune In on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on Tune In.

0: विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। आप इस तरह से करेंगे? जबरदस्ती बैठ जाएंगे? और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं, फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी? ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा, आप ही की उद्दंडता से चलेगा?
1: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है।

0: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: पीछे 6 फुट वाली रखी, पीछे दुणाली, आगे हैट पे लिखा था गुजर। बात करा दे दीदी तेवर से। मेरे निकले जानुआ के तेवर से।
1: वाह, ये अलग लेवल पे है भाई।
2: वाहन का क्या है? जब तक इस देश में एथनॉल है।
1: पानी हल्का गर्म है, मिर्ची अपने मुंह पे डाल लिया, हल्दी, वो पानी उन्हें गिरा के रो रहा हो कि एक लाइक दे दो। हम उसको स्वाइप कर मिले तो लात मारो कि क्या पागलपन कर रहा है भाई।

0: से जुड़ेंगे, पुराने लॉ में होंगे बदलाव, प्रारूपों पर आज कैबिनेट में चर्चा।
1: पीएम के नए कानून के ऐलान के बाद संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार, बिल पर बहस में हिस्सा ले सकती है कांग्रेस। आज भी संसद परिसर में विपक्ष का जबरदस्त विरोध और हंगामा।
0: सोनम वांगचू के अनशन का दिया एंड, वीडियो संदेश बोले जिम्मेदारी तय करने का सरकार ने दिया भरोसा, लेकिन सीजेपी का आंदोलन रहेगा जारी, आज देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी।
1: सीजेपी और केंद्र के बीच अहम बातचीत आज, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो सकती है मुलाकात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। दिल्ली में तीसरे दिन भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद।
0: और गुजरात, महाराष्ट्र और असम में बाढ़, बारिश का तांडव, वलसाड, सूरत, नवसारी समेत कई शहर जलमग्न, 22,000 से ज्यादा लोगों के घर छूटे, आज भी रेड अलर्ट, असम में 7 लाख से ज्यादा प्रभावित।

0: मैं इसका आज स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथ।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और कुछ ही देर में संसद की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन लगातार संसद जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये राज्यसभा की कार्रवाई इस वक्त शुरू होती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ लोकसभा में भी सभापति पहुंच चुके हैं। तो आज संसद में क्या होता है, क्या काम हो पाता है, कार्रवाई हो पाती है, क्या विपक्ष हंगामे से बचता है, ये अहम मुद्दा रहेगा।
2: माननीय सदस्यगण, ऐसे कारगिल दिवस विजय दिवस को हम 26 तारीख को मनाते हैं, लेकिन 26 तारीख को अवकाश होने के कारण मैं कारगिल दिवस विजय दिवस का मेंशन आज कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च नौचावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा।
3: Elected members, within the practices, procedures and conventions of the House and to enable them to make effective use of the various parliamentary devices available to members in the
2: Prashnakal. मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाब दे भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें, आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें, सदन संवाद, चर्चा, सहमति असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। हंगामे के चलते एक बार फिर से पांचवें दिन भी कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। सोमवार को मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, तब से एक भी दिन सुचारू रूप से संसद की दोनों सदन नहीं चली हैं। आज एक बार फिर से जब कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ ही मिनट बाद मौन रखने के बाद 26 जुलाई के शहीदों के लिए अब संसद को स्थगित करना पड़ा है।
1: आपको बता दें कि लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि नीट परीक्षा लीक पर चर्चा हो, लेकिन सभापति का कहना है कि नियम और कानून के तहत ही चर्चा की जाएगी, यानी कि प्रश्नकाल चल रहा है, बिजनेस जो पहले से संसद का तय है वो पहले किया जाएगा।
0: और वक्त हो गया है श्वेताकाश तक का।

0: नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का लगातार पांचवें दिन प्रदर्शन। संसद के मकर द्वार के बाहर जमकर नारेबाजी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, बड़े बड़े पोस्टर लेकर इस्तीफा दो के लगाए नारे। खड़गे ने दोबारा पीएम के वीडियो वाले संसद पर किया पलटवार, कहा जो बातें कहना चाहते हैं पीएम वो संसद में आके कहें। सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट या पेपर लीक मामले से जुड़ा कोई बिल लाती है तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री चर्चा के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार पेपर लीक और नकल के खिलाफ मौजूद कानून को और सख्त करने की तैयारी है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में हो सकते हैं संशोधन। पीएम मोदी के वीडियो वाले संदेश पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा संसद में आकर दे जवाब, संसद के बाहर एक तरफा मन की बात नहीं करनी चाहिए। खड़गे ने नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए विपक्ष की मांगों को दोहराते हुए कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर आइए तब होगी चर्चा, छात्रों से माफी की भी मांग दोहराई। जंतर मंतर लाठी चार्ज को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना, बोली हिंसा के जरिए आंदोलन को दबाना इस सरकार की आदत, शिक्षा व्यवस्था खराब करने का भी लगाया आरोप। सोनिया गांधी ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा उनके भविष्य की रक्षा करना हमारा नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक कर्तव्य, एनटीए पर भी जमकर साधा निशाना। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी पीएम मोदी के वीडियो पर तंज कसते हुए बोली स्पीच अच्छी है लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए।
1: अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने नया वीडियो जारी करते हुए कहा भूख हड़ताल कांड जवाबदेही की शुरुआत। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद थोड़ा अनशन, जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया फैसला, 28 जून से अनशन पर थे वांगचुक। वांगचुक ने बताया अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात कर या पत्र लिखकर अनशन खत्म करने का किया आग्रह, बोले हिंसा किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने पर पीएम मोदी का संदेश, बोले डॉक्टर से सलाह के अनुसार रखे दिनचर्या, जल्द अपना पुराना वजन हासिल करें। पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर बोले राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान हटाएं, छात्रों पर कार्रवाई करने वालों को सजा दें, माफी मांगे। अनशन तोड़ने से पहले सोनम वांगचुक और केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत का वीडियो भी सामने आया। पेपर लीक और परीक्षा सुधारों पर लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि शिक्षा जुड़े सुधारों का समाधान खोजने के लिए विस्तृत चर्चा का भरोसा दे चुकी है सरकार। जेपी नड्डा ने कहा नीट पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या मामलों में मुआवजा पर सरकार सकारात्मक है। सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से करेगा मुलाकात।
0: सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने पर अभिजीत दिपके की प्रतिक्रिया, बोले 26 दिन के संघर्ष के लिए आभार। सौरभ दास का दावा आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात, सीजेपी भी होगी शामिल। आज सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन, बड़ी संख्या में छात्रों से शामिल होने की अपील। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर वायरल पोस्ट पर पुलिस का खंडन, डीसीपी नई दिल्ली ने कहा पासपोर्ट रद्द करने का कोई आदेश नहीं। दिल्ली में आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद, राजीव चौक और मंडी हाउस पर जारी रहेगी इंटरचेंज की सुविधा। संजय सिंह का सरकार पर हमला, बोले सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ लेकिन छात्रों के मुद्दों पर आंदोलन जारी रहेगा। छात्र प्रोटेस्ट पर सलमान खान बोले पीएम ने सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा, घर लौटे छात्र। छात्रों के समर्थन में आए सचिन तेंदुलकर, अपने पिता की सीख को याद करते हुए कहा असफलता स्वीकार्य है लेकिन नकल या छल स्वीकार्य नहीं, छात्रों की समस्या का समाधान जरूरी। सीजेपी प्रोटेस्ट पर बोले बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, कहा छात्रों पर लाठीचार्ज सही नहीं, छात्राओं पर बल प्रयोग पीड़ादायक। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, बोली छात्रों की मांग अलग, सरकार का जवाब अलग, भरोसे के लिए सरकार को मंत्री का इस्तीफा लेना होगा।
1: पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले पोस्ट पर राहुल का पलटवार, बोले युवाओं के भविष्य से सबसे ज्यादा नुकसान आपने पहुंचाया है, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने में बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी के पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने वाले ट्वीट पर सौरभ दास का बयान, कहा यह सिर्फ झांसा देने की कोशिश है, हमें जवाब दे ही चाहिए। सीजेपी का नड्डा को जवाब, आशुतोष रांका ने कहा नड्डा के घर नहीं होती बैरक, बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर या किसी बीच की जगह पर आए। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल का आप पर दोहरे मापदंड का आरोप, बोली दिल्ली में दिखावे के आंसू, पंजाब के पेपर लीक की जीरो कार्रवाई। जेपी नड्डा का बयान, शांतिपुर प्रदर्शनकारियों पर केस नहीं होंगे, नीट पीड़ितों के लिए मुआवजे पर सरकार सकारात्मक। महुआ मोइत्रा का पीएम मोदी पर हमला, बोली धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें। सीजेपी का बयान, सरकार से न्यूट्रल जगह पर होगी मुलाकात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत चार मांगे रखेंगे। सीआर पाटिल का बयान, नीट पेपर लीक पर होगी सख्त कार्रवाई, छात्रों के हितों की रक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता। केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, शिक्षा मंत्रालय के दोनों प्रमुख विभागों के सचिव बदले, नीत जोशी पंचायती राज मंत्रालय भेजे गए, नरेश पाल गंगवार और टीके अनिल कुमार को मिली नई जिम्मेदारी।
0: पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में जंतर मंतर पर हो रहे छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, कांग्रेस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के पुतला जलाने की कोशिश की, इसी दौरान बीजेपी समर्थकों से हाथापाई हुई। समाजवादी पार्टी नेता दीपक रंजन ने बीजेपी के गुरु रविदास जयंती अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अब दलित समाज की चिंता करने का दिखावा कर रही है। सीएम योगी आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे समीक्षा बैठक, कांवड़ यात्रा, आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था पर जांच। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए बिहार पुलिस का बड़ा फैसला, सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। असम में बाढ़ का कहर जारी, करीब 7.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, मृतकों की संख्या 47 पहुंची। असम में बाढ़ की हालत गंभीर, 11 जिलों में लाखों लोग हुए प्रभावित, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। उधर उधमपुर में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, बरकुंडा इलाके में कई घर प्रभावित, प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया। उधमपुर में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा के कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना।
1: जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर, उरी में बादल फटने से तबाही, डोडा में भूस्खलन से सड़कें बंद, श्रीनगर में झेलम खतरे के निशान से ऊपर। डोडा में भूस्खलन से सड़कें बंद, कई इलाकों में हालात बिगड़े। उफान पर झेलम नदी, श्रीनगर के पास खतरे के निशान के ऊपर जलस्तर। बारिश बनी आफत, मलबे और पानी के तेज बहाव से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, प्रशासन निचले इलाकों को सतर्क किया। गुजरात के वलसाड़ जिले में भारी बारिश से बाढ़, लोगों को आई भारी मुसीबत। एनडीआरएफ की नावों का पहुंचना हुआ मुश्किल, रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। वलसाड़ में बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर रेस्क्यू,

0: दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर की हत्या, कृष्णानगर में चाकू से हमला, वारदात के बाद इलाके में सनसनी। मुजफ्फरपुर बिजली ऑफिस में हंगामा, डिफरमेंट चार्ज को लेकर भड़के उपभोक्ता, तोड़फोड़ और पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बहराइच में बड़ी कार्रवाई, अजनाला थाने पर हमले का आरोपी गिरफ्तार, नेपाल बॉर्डर से एसएसबी पुलिस ने वारिस पंजाब दे से जुड़े विक्रमजीत और साथियों को पकड़ा। बांदा में करंट से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत, कपड़े उठाने गए बेटे को बचाने में पहुंचे पिता और उनकी भी गई जान और मां भी झुलसी। गुजरात के खेड़ा मातर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पानी से भरे नाले में गिरी कार, चार लोगों की मौत, दो का रेस्क्यू। पालगढ़ में बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी से घिरे घर में फंसे एक ही परिवार के चार लोगों को बचाया गया सुरक्षित। पालघर के वसई में बड़ा हादसा टला, ब्रेक फेल होने से सड़क किनारे भरे पानी में गिरी कार, स्थानीय लोगों ने चार लोगों को बचाया सुरक्षित। पालघर में बाढ़ के बीच फंसे एक ही परिवार के 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया, पुलिस इंस्पेक्टर ने रस्सी और ट्यूब की मदद से बचाया। गुजरात के आणंद में ताश के पत्तों की तरह गिरा 2 मंजिला जर्जर मकान, लाइव वीडियो आया सामने, कोई हताहत नहीं। जूनागढ़ के सासन गिर में एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर आया शेर, लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन।
1: उदयपुर में दो पड़ोसियों में मामूली बात को लेकर विवाद, एक ने तलवार से दूसरे पर हमला किया, पड़ोसी की हत्या की। हैदराबाद में सिकंदराबाद में प्रॉपर्टी विवाद, बहू ने सास पर चाकू से हमला किया, हत्या की कोशिश का वीडियो आया सामने, हुई गिरफ्तार। उड़ीसा के ढेंकनाल में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रही कार तालाब में गिरी, 5 लोगों की मौत। चंदौली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुर्गी दाने की बोरियों के बीच छिपी 15 लाख की प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप बरामद। उज्जैन में हनी ट्रैप के बाद अपहरण, 10 लाख की फिरौती वसूलने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह में 10 आरोपी गिरफ्तार। पुरुलिया में मिलावटी मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी, खतरनाक रंग और केमिकल्स बरामद। गोरखपुर में काला हेलमेट पहनकर आए हमलावर, अधिशासी अभियंता पर बरसाए थप्पड़, ऑफिस में जमकर मारपीट। धनबाद में सेप्टिक टैंक में सफाई करने उतरे 2 श्रमिकों की मौत, जहरीली गैस की चपेट में आने से घुटा दम। सहारनपुर में पुलिस बदमाशों को मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ हिस्ट्री शीटर, 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज। वाराणसी में मां ने मोबाइल चलाने से बेटी को रोका तो लड़की ने लगाई फांसी, पुलिस ने शव बरामद कर फोरेंसिक टीम को भेजा। टॉक्सिक के नए गाने
0: मदहोश का यूट्यूब पर कब्जा, 24 घंटे में मिले 1.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज, गाने में तारा सुतारिया और यश की जबरदस्त केमिस्ट्री। बंटवारा 1947 का पहला गाना रिलीज, कहां चले गए हो राम गाने में अनुराधा पोडवाल की मखमली आवाज का जादू। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की द इंडिया स्टोरी की एडवांस बुकिंग शुरू, सिनेमाघरों में कल रिलीज होगी फिल्म। फिल्म प्रलय में रणवीर के साथ नजर आएंगी एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन, ये कल्याणी का बॉलीवुड में डेब्यू, तमिल फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्र का हिस्सा रही है कल्याणी। संदीप रेड्डी वांगा के प्रोडक्शन में बनी फिल्म रोमांचकम का पहला रोमांटिक गाना राधा रमना रिलीज, गाने को वासुकी वैभव ने दी अपनी आवाज। ईरान अमेरिका तनाव के बीच तेहरान में हवाई खतरे को लेकर अलर्ट, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम हुआ सक्रिय। ईरान का अमेरिका की लगातार 13वीं रात एयर स्ट्राइक जारी, अमेरिकी सेना ने सैन्य ठिकानों पर फिर किए हमले। एआई पर ट्रंप और शी की बड़ी बैठक, 24 सितंबर को अमेरिका आएंगे चीनी राष्ट्रपति। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने किर्गिस्तान पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। गाजा पर भूख का बड़ा संकट, साल के अंत तक करोड़ों लोग हो सकते हैं प्रभावित।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
1: नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है, सदन शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का हंगामा नहीं थमा जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई है।
0: तो ये तस्वीर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आज संसद परिसर में विपक्षी नेता पहुंचे, उन्होंने ये बैनर पोस्टर पकड़कर अपना विरोध जताया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता वहां एकजुट होकर खड़े हैं और बैनर छपवाया है शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने का, ये मांग अब उनकी है कि बर्खास्तगी हो, धर्मेंद्र प्रधान की। इस सब के बीच आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन चंद मिनटों बाद ही उसे स्थगित कर दिया गया 12 बजे के लिए।
3: सर, आपने हम सभापति जी 20 जुलाई सोमवार पे छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठी चढ़ाई, उससे मेरा मन दुखा।
4: नरेंद्र मोदी वीक है,
1: तो जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसका जायजा लिया मेरे सहयोगी पीयूष ने, देखिए उनकी ये रिपोर्ट।
5: इस वक्त हमारी मौजूदगी है संसद भवन में और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के बीच में विपक्ष का धरना प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ पर मूसलाधार बारिश के बीच में जो विपक्ष के सांसद हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए वो जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, वी वॉन्ट जस्टिस के नारे इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी मौजूद है, बर्खास्त करो प्रधान, ये मांग लेकर यहाँ पर विपक्षी सांसद आए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं प्रधान का इस्तीफा हो। तो लगातार जो है विपक्ष का धरना धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ चल रहा है। इस वक्त मकर द्वार पर हमारी मौजूदगी है, संसद भवन में हमारी मौजूदगी है, और संसद नहीं चल पा रही है सिर्फ इसी मांग को लेकर, जिसमें विपक्ष ने साफ कह दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक संसद नहीं चलेगी। हालांकि सरकार का यह मानना है कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है, और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक नया मसौदा लाने के साथ साथ ये ऐलान कर दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इस पूरे मामले में सरकार सेटअप करेगी। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।
0: और इसी विरोध के मुद्दे पर एक और रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र सिंह।
6: संसद भवन परिसर में लगातार पांचवें दिन यहां पर विपक्ष के सांसदों के द्वारा नीट पेपर लीक मामले को लेकर के यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां पर प्रदर्शन में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे जो सांसद हैं वो बर्खास्त करो प्रधान इस तरीके के पोस्टर लेकर के इनके हाथों में इस वक्त मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के संसद में चर्चा किया जाए, और सत्ता पक्ष की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि चर्चा की जाएगी। कल प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया कि ऐसे जो पेपर लीक मामले को लेकर के कड़े से कड़े कानून लाए जाएंगे, और आज कैबिनेट में उसको लेकर के एक बड़ा फैसला भी हो सकता है।
1: दिल्ली हाईकोर्ट सीजेपी विरोध प्रदर्शन जुड़ी दो अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के खिलाफ एनआईए जांच की मांग वाली पीआईएल पर सुनवाई को अब हाईकोर्ट राजी है, यानी कि जल्द इस पर अब सुनवाई हो सकती है। जनहित याचिका में सीजेपी के खिलाफ एनआईए की जांच की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ अवांछित तत्व इससे जुड़े हुए हैं जिसकी जांच होनी चाहिए।
0: तो ये याचिका नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए की जांच मांग कर रही और इसके लिए तैयार भी हो गया है दिल्ली का हाईकोर्ट। दो याचिका दायर की गई है और दोनों की सुनवाई के लिए तैयार है दिल्ली हाईकोर्ट। आपको बता दें इससे पहले भी कुछ याचिकाएं गई हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची हैं।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला, टिकते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर। इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: Hexa Organic Radiance.
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning. One heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
10: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
2: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se.
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
4: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: पेपर लीक पर पीएम के सख्त एक्शन वाले भरोसे के बाद नए कानून में हो सकते हैं कई बदलाव। सजा कड़ी करने के प्रावधान जुड़ेंगे, पुराने लॉ में होंगे बदलाव। प्रारूपों पर आज कैबिनेट में चर्चा।
1: पीएम के नए कानून के ऐलान के बाद संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार। बिल पर बहस में हिस्सा ले सकती है कांग्रेस। आज भी दोनों सदन 12 बजे तक स्थगित, बाहर जबरदस्त विरोध और हंगामा।
0: 26 दिन बाद सोनम वांगचुक के अनशन का दी एंड। वीडियो संदेश में बोले, जिम्मेदारी तय करने का सरकार ने दिया भरोसा, लेकिन सीजेपी का आंदोलन रहेगा जारी। आज देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी।
1: सीजेपी और केंद्र के बीच अहम बातचीत आज। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो सकती है मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं। दिल्ली में तीसरे दिन भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद।
0: और गुजरात, महाराष्ट्र, असम में बाढ़, बारिश का तांडव। वलसाड, सूरत, नवसारी समेत कई शहर जलमग्न। 22,000 से ज्यादा लोगों के छूटे घर। आज भी रेड अलर्ट। असम में 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का।
1: दिल्ली पुलिस ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द करके अगले आदेश तक इसे रद्द कर दिया है। सभी रैंक के अधिकारियों के लिए जारी किया गया यह आदेश सिर्फ इमरजेंसी हालात में किसी को छुट्टी दी जाएगी। प्रदर्शनों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द है, यानी पुलिसकर्मियों को अब सभी दिन काम करना होगा जब तक ये प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आ रही है।
2: आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में सुरक्षा बलों को जुटाया जा रहा है, दूसरे राज्यों से भी कई सुरक्षा बल पहुंचे हैं, पश्चिम बंगाल के सुरक्षा बल इस तरफ आए हैं और अब खबर आ रही है कि दिल्ली में सुरक्षा कर्मियों की कोई कमी ना हो इसलिए सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, यानी कि फुल फोर्स मौजूद रहेगी दिल्ली में, दिल्ली पे की सड़कों पे किसी तरह की अव्यवस्था ना हो इसके लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से, माफ कीजिएगा, यह आदेश जारी किया गया है कि सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है।
1: हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, सभी रैंक के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द है?
3: अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गई है। दरअसल जिस तरीके से 20 जुलाई को एक बड़े स्तर पर देखा गया कि छात्र और उनके समर्थन में कई सारे लोग उतर करके, कई युवा उतर के सामने आए और उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी

0: कार्यकर्ता जगह जगह पे हैं, उनसे कहा गया था कि वो लोग आएंगे आगे और प्रोटेस्ट करेंगे शिक्षा मंत्री के अगेंस्ट में, तो उसको देखते हुए भी ये तैयारी पुलिस की तरफ से पहले की गई थी।
1: जी शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो छात्रों के सवाल पर देश की संसद से सड़क तक बवाल है, संसद में लगातार गतिरोध है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए राहत की बात यह है कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने के लिए तैयार हो गए और आधी रात वांगचुक ने अनशन तोड़ने की खबर उनकी सामने भी आई, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया।
2: तो देर रात सोनम वांगचुक ने ऐलान कर दिया एक वीडियो संदेश के जरिए कि वो अपना अनशन तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने ताजा संदेश में नया कानून लाने और संसद में चर्चा कराने की बात कही। तो वहीं सवाल ये है कि क्या इससे आंदोलन पर उतरे छात्रों का आक्रोश थम जाएगा।

0: क्या आधी रात की इन तस्वीरों से छात्र आंदोलन की दिशा बदलेगी? गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से कल रात आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आईसीयू में बिस्तर पर सोनम वांगचुक लेटे हैं और उनके इर्द गिर्द उस सरकार के दो मंत्री खड़े हैं जिस सरकार से वो दो दो हाथ करते रहे। इन्हीं दो मंत्रियों की मौजूदगी में वांगचुक 26 दिनों से जारी अपना अनशन तोड़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि पेपर लीक केस में जिम्मेदारी तय होगी।
1: अब आप कहेंगे जरूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं, फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से दो तीन हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को ना टाल कर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं। बल्कि दे देते इस्तीफा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता।
0: तो सवाल है कि सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ देने से कोई बड़ा बदलाव होगा? केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों की इस जंग में कोई बड़ा मोड़ आएगा? इस अनशन के टूटते ही आधी रात को पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया। पीएम ने वांगचुक की अच्छी सेहत की कामना के साथ दो अहम वायदे किए।
2: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: तो अब स्थिति यह है कि अनशन तोड़ते हुए सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होगी, सरकार कह रही है सख्त सजा वाला कानून बनाएंगे। वांगचुक कह रहे हैं कि संसद में विस्तृत चर्चा होगी, सरकार कह रही है कि संसद में बिल लाएंगे, चर्चा कराएंगे। वांगचुक का यह भी कहना है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार की तरफ से वायदा तो नहीं, लेकिन सकारात्मक संदेश है। वांगचुक सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि वो भी इस पर विचार कर रही है। लेकिन असली अवरोध धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है। वांगचुक इस पर खामोश है, लेकिन सीजेपी मुखर है, इस मांग पर अड़ा है।
3: So tomorrow the discussion that has been called for, we are very happy that the government has acceded to our request that it be at a neutral venue, and Constitution Club of India has been chosen is what we've been told. It's great. We hope that the government comes with an open mind and it will listen to the people of this country who have been out on the road for so long.
0: तो अब लड़ाई के केंद्र में

0: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, इस पर क्या और कहां तक बात बनती है ये खुद में देखने वाली बात होगी। आज तक देरो।
1: और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, पहले आपका रुख करते हैं, क्योंकि क्या करता है विपक्ष इस पर सबकी नजर रहेगी। आज हमने संसद परिसर में देखा कि एक बार फिर से वो अपना बैनर लेकर खड़े हो गए, लेकिन चर्चा पर आने के लिए तैयार है। ऐसे में आपसे जानना चाह रहे हैं कि वांगचुक का लग रहा है कि विपक्ष भी थोड़ी नरम पड़ती नजर आ रही है।
2: देखिए अंजलि, सोनम वांगचुक ने जो अपना अनशन खत्म किया है उससे खासी खुश नहीं है कांग्रेस पार्टी। आपने बयान सुना होगा इमरान मसूद का, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अन्ना पार्ट टू है, कोई डील हो गई है, अब आप भी चुप हो जाएंगे। तो बहुत इंप्रेस नहीं है कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अनशन को तोड़ा गया है। उनको लगता है कि सरकार या ये जो प्रोटेस्ट है ये जब अपने पीक पर है, ठीक उसी समय पर आपने कॉल ऑफ कर दिया अपने अनशन को, जबकि सरकार दबाव में थी। जाहिर है सरकार को एक एस्केप रूट मिलेगा, उनको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, और जाहिर है अब वो वापस जो है वो आक्रामक होगी, फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी। जहां तक बात है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है उनके इस्तीफे पर। आज भी अगर आप देखें तो तमाम जो बयान है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का हो या अन्य सांसदों का हो, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनको जाना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वो कांग्रेस पार्टी का ये भी मानना है कि अगर सरकार कोई बिल लेकर आती है तो हम उस चर्चा में शामिल होंगे। यानी दो फ्रंट खोलने की कोशिश है। एक फ्रंट तो ये कि हम लगातार ये मांग करते रहे कि शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से उतरें, दूसरा ये कि सरकार अगर बिल लेकर आती है उसमें चर्चा करनी है, उस चर्चा में हम भाग लें और सरकार से तीखे सवाल पूछें, सरकार को अकाउंटेबल बनाएं। तो कई लेयर पर आप देखिए ये लड़ाई चल रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार दबाव बनाए हुए है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि देखिए जो छात्र हैं वो आंदोलित हैं और सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, इसीलिए हम आपका जो मुद्दा है उस संसद में उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमको वो भी अलाउ नहीं कर रही है। इसीलिए आप देखिए रोज प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना हो रहा है, प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो कुल मिलाकर दबाव जो बना हुआ है उसको मेंटेन करने की कोशिश है, सस्टेन करने की कोशिश है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में भी, या कम से कम इस सेशन के अंदर ऐसा लग रहा है कि समन्वय की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा डेफिसिट है सरकार के और विपक्ष के बीच में।
3: ठीक है, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कई लेयर्स पर बातचीत हो रही है, लेकिन क्या सोनम वांगचुक का अनशन एंड कराना एक वन अप कदम है सरकार के लिए? क्योंकि सोनम वांगचुक की जो मांगे थी कहीं ना कहीं उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं थी, और विपक्ष भी जब लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, एक बार भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जंतर मंतर वाले स्थल पर नहीं गए जहां सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। तो दो अलग अलग मोर्चों पर हम ये प्रदर्शन माने, और कहीं ना कहीं समन्वय की दोनों में कमी है।
4: देखिए बिल्कुल समन्वय की कमी है, और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने जो अपना अनशन तोड़ा है कल देर रात, और उन्होंने ये भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार की तरफ से उनको कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया, या तो वो लगातार जो है वो अनशन पे रहते और खत्म हो जाते, और सरकार के लिए ये हमारे लिए भी बेहतर है कि अगर इस्तीफा नहीं भी हो रहा है तो सरकार का नुकसान जो है वो होगा, सरकार का फायदा नहीं होगा। लेकिन सरकार के लिए एक बड़ा ये कह सकते हैं कि बड़ा जो है उनको रास्ता मिल गया, सोनम वांगचुक का जो इस्तीफा हो गया, जो इस प्रदर्शन के सबसे बड़े चेहरे थे उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। प्रदर्शन अभी जारी है, आज दूसरे राउंड की जो है वो बातचीत जो है सरकार सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे कर रही है। लेकिन एक तरफ सरकार बातचीत भी कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष के साथ अब दो दो हाथ के लिए सरकार तैयार है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जो है वो 26 दिन बाद जो है वो तोड़ दिया है। तो ऐसे में संसद में आज जो है वो वंदे मातरम बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद,
3: और वंदे मातरम बिल को पेश किया जाएगा, और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर बिल पेश किया जाता है तो उस पर चर्चा के लिए वो तैयार है। लेकिन इस बीच जो प्रदर्शन चल रहा है सीजेपी द्वारा, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है देखिए।
0: वांगचुक ने क्यों तोड़ा अनशन? 26 दिन बाद वांगचुक क्यों तैयार? अनशन के द एंड की इनसाइड स्टोरी। वो 28 जुलाई का वाकया था जब सोनम वांगचुक को पुलिस जंतर मंतर से ले गई वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग में भर्ती कराया गया। गिरती सेहत का हवाला देकर उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन परिजनों ने सवाल उठाए, सरकार की कोशिशों पर आशंका जताई। मामला कोर्ट तक पहुंचा। वांगचुक सफदरजंग से मेदांता शिफ्ट किए गए और 24 जुलाई की तारीख आते आते परिस्थिति बदल गई।
5: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए।
0: सहज सवाल उठता है कि आखिर ये तब्दीली कैसे आई, सरकार ने वांगचुक कंसन तोड़ने के लिए कैसे तैयार किया, इसके पीछे की एक्सक्लूसिव कहानी जान लीजिए। 23 जुलाई को अमित शाह, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बैठक हुई। बैठक 4 घंटे चली। वांगचुक को दिए जाने वाले प्रस्ताव फाइनल हुए। पहले वांगचुक की पत्नी से बात की गई, उन्हें सरकार का प्लान बताया गया। इसके बाद मेदांता अस्पताल में वांगचुक से नड्डा, जितेंद्र सिंह मिले। वांगचुक को बताया गया कि सरकार नया कानून बनाएगी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नया कानून बनाएगा। वांगचुक को यह भी बताया गया कि नए बिल पर आज ही कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी, अगले हफ्ते संसद में नया बिल पेश कर दिया जाएगा। वांगचुक को सरकार का प्रस्ताव सही लगा और वो अनशन तोड़ने पर राजी हो गए। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी रह गया है कि आखिर वांगचुक अब आगे क्या करेंगे। सूत्रों की माने तो इस बारे में भी वांगचुक ने अपना इरादा साफ कर दिया है। वांगचुक ने सरकार को बता दिया है कि अनशन तोड़ने के बाद वो लद्दाख चले जाएंगे। लद्दाख लौटने से पहले वो छात्रों से बात करेंगे, छात्रों को बताएंगे कि सरकार के आश्वासन पर भरोसा करें, ये भी बताएंगे कि असामाजिक तत्वों से प्रभावित वो ना हो। तो देखने वाली बात यह है कि अब वाकई में सोनम वांगचुक की क्या भूमिका रहती है। आज तक ब्यूरो।
1: तो सोनम वांगचुक ने भले ही अपना अनशन खत्म कर दिया हो, लेकिन इस पूरे मुद्दे में एक और मोर्चा है और वो है विपक्षी दलों का, और विपक्षी दल अपनी एक मांग पर अड़े हुए हैं लगातार, और वो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा।
6: जवाब दे भी तय कर, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान इस शोर को गौर से देखिए। विपक्ष की पूरी ताकत जिस एक मांग पर टिक गई है वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हर एक प्रदर्शन, हर एक धरना के बाद राहुल गांधी एक ही सवाल उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा।
7: दिस इज नॉट नेगोशिएबल फॉर श्योर, दिस 3 पॉइंट, दिस इज नॉट आवर डिमांड, दिस इज द स्टूडेंट्स डिमांड व्हिच वी आर फुली बैकिंग, दिस इज नॉट नेगोशिएबल।
8: 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए।
0: आधी रात को जब पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया तो जवाबी ट्वीट में भी राहुल गांधी की इस्तीफे वाली मांग मौजूद थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट में भी सारा जोर प्रधान के इस्तीफे पर ही था। तो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि प्रधान के इस्तीफे से कम पर बात बनने वाली नहीं।
9: सोनम सर ने अपना स्ट्राइक तोड़ दिया है तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
0: ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि प्रदर्शनकारी छात्र या विपक्ष के निशाने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों हैं, क्यों उनके इस्तीफे पर ही विपक्ष अड़ा है। केंद्र कह रहा है कानून बनेगा, यानी इसमें कोई अड़चन नहीं है। केंद्र कह रहा है संसद में बहस होगी, यानी इसमें भी कोई अड़चन नहीं। केंद्र कह रहा है मुकदमा हटाने पर विचार करेंगे, यानी यहां भी मतभेद नहीं है। केंद्र कह रहा है मुआवजा दिया जाएगा, तनातनी यहां भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये तमाम मोर्चे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। जीत या हार का आकलन इसी से होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का क्या होता है, क्योंकि भविष्य में इसी सवाल का जवाब जिंदा रह जाना है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: तो CJP का एक प्रतिनिधित्व आज सरकार से बातचीत करने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। यह बातचीत लगभग 12:30 बजे के बाद कभी भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि वो भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम की मांग पर नहीं मानेगा। सरकार CJP के बीच ये वार्ता होनी है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले में मना दिया है। सोनम वांगचुक ने कल देर रात अनशन अपना तोड़ दिया था, उसके बाद वीडियो अपील के जरिए युवाओं से कहा था कि वो आक्रोशित ना हो, हिंसा को ना अपनाएं, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते रहें।
1: तो सड़क से लेकर संसद तक घमासान चल रहा है। सड़क पर उतरे हैं सीजेपी के कार्यकर्ता और संसद के परिसर में, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कांग्रेस के सांसद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस दिन से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, उस दिन से लगातार हर दिन सुबह मकर द्वार के पास वो जुट जाते हैं और जैसे ही सदन की कार्रवाई स्थगित होती है, एक बार फिर से वो अपना प्रदर्शन करते हैं। तो आज भी यही देखने को मिला, जब एक बैनर लेकर वहां पर सांसद खड़े हो गए, तो सिर्फ कांग्रेस के सांसद नहीं, दूसरे विपक्षी दलों के सांसद भी वहां पर मौजूद नजर आए और उनके हाथ में जो बैनर था वो ये मांग कर रहा था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी हो, इस्तीफा ही नहीं वो कहते हैं बर्खास्त किया जाए, डिसमिस प्रधान का बैनर लेकर खड़े हैं। तो एक मांग जिससे अडिग है विपक्ष वो है धर्मेंद्र प्रधान का जाना तय हो।
3: हालांकि आज 2 बजे के बाद जो संसद में वंदे मातरम संशोधन बिल पेश किया जाएगा, उस चर्चा के लिए विपक्ष तैयार हो गया। उनका कहना है कि बिल पर अगर किसी तरह की चर्चा है तो उस पर हम भाग लेंगे, लेकिन आज देश भर में जो सीजेपी का प्रदर्शन है उसे ध्यान में रखते हुए सभी पुलिस वालों की छुट्टियां अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई हैं। दूसरे स्टेट से फोर्सेज री इंस्टेट की जा रही है दिल्ली में, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा व्यापक तौर पर प्रदर्शन चल रहा है। अब आपको यह भी बता दें कि शिक्षा सचिव विनीत जोशी की छुट्टी कर दी गई है, उनका इस्तीफा ले लिया गया है। उसके बाद नए जो शिक्षा सचिव हैं वो नरेश पाल गंगवार हैं, वो अब पदभार संभालेंगे। और देर रात जो प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश था उस पर भी राहुल गांधी ने पलटवार किया है।
1: तो लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो आज संसद परिसर में हुआ है उसकी, और वो है कि एक विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। वहीं सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी विपक्ष ने, आज फिर जब दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ ही मिनटों बाद उसे स्थगित करना पड़ा है। 12 बजे का वक्त मुकर्रर है जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होगी।
3: तो पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन में एक मोर्चे पर सीजेपी है, दूसरे मोर्चे पर सरकार और तीसरा मोर्चा विपक्ष का है। अपनी मांग को धार देने के लिए कल इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया।
10: एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए,
11: ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। हाउस इज अडजॉर्न्ड।
12: प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन और संसद में रोजाना के शोर शराबे से बात नहीं बनी तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष ने कल गांधीगिरी का प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के करीब 120 सांसद 2 बसों में भरकर राहुल गांधी के आवास से गांधी स्मृति पहुंचे। गांधी स्मृति में उन छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनकी जान नीट पेपर लीक की वजह से गई। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के सांसद पहले इंडिया गेट जाना चाहते थे लेकिन वहां अनुमति नहीं मिलने पर गांधी स्मृति का रुख किया।
13: जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया।
12: कांग्रेस नेताओं के अलावा इस मार्च में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार, टीएमसी, जेएमएम, आरजेडी, लेफ्ट और समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल रहे।
14: हमारे देश का मतलब क्या है, महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे, जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश में उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है।
12: पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विपक्ष की मोर्चाबंदी लगातार जारी है। पीएम आवास पर धरने से लेकर संसद के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट तक और अब गांधी स्मृति पर गांधीगिरी।
15: अगर मोदी जी भाजपा के लिए एक मंत्री की कुर्सी बड़ी है तो फिर बड़ी रखिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ही, उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये युवाओं की पुकार है, राजनीतिक लोगों की नहीं।
16: जितनी देर स्टूडेंट के लिए सरकार जागती नहीं है, अंधी है, पहली है, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। ये पूरे देश के बच्चों का, युवाओं का सवाल है। जिस तरह से ये हिटलर शाही कर रहे हैं, ये सहने योग्य नहीं है।
17: एक कहावत है, अकलमंद को इशारा काफी है। अगर इनकी अकल है तो ये इशारा समझेंगे, नहीं तो अगर बुद्धि मोटा ही रहेगा तो परिणाम भुगतना है।
11: ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं।
12: संसद के मानसून सत्र का आज पांचवा दिन है। अब तक चारों दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार के स्टैंड और विपक्ष के तेवर से लगता है कि आज भी गतिरोध बना रहेगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सीजेपी से मुलाकात होगी कुछ ही देर में, जेपी नड्डा की बैठक होगी, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि बैठक से पहले अमित शाह से भी जेपी नड्डा मुलाकात कर सकते हैं। तो अहम बैठक है, दोपहर 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक पहले से तय थी और कुछ ही वक्त बाद ये बैठक होगी।
3: क्या रणनीति रहने वाली है सरकार की सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर, कैसे इस आंदोलन पर ब्रेक लगाया जाए, ऐसे खत्म किया जाए, ये चर्चा भी इस बैठक में हो सकती है, क्योंकि जेपी नड्डा ही तमाम मुद्दों को हैंडल कर रहे हैं। इस वक्त हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, सीजेपी के साथ जो बैठक होनी है उसको लेकर ये अमित शाह और नड्डा जी की बैठक है?
18: बिल्कुल, गृहमंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो है मुलाकात कर रहे हैं, सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात से पहले, और रणनीति तय करेंगे कि किस तरीके से जो है बातचीत में क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, क्योंकि सीजेपी की ये मांग है कि जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा हो, तो उस मांग के अलावा बाकी जो मांगे हैं वो क्या रहेंगी, सरकार किस तरीके से अपनी चीजों को रखेगी, क्योंकि किसी जो मुलाकात में पूरी की तो उसमें जो
1: शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए हिमांशु। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट।
21: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
22: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
23: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
24: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
23: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
25: Williams keeps it. First down. Touchdown.
23: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
26: सवारी सोकुडो

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri, Hind Bade Aaram Se,
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो, क्या है वो स्टेप्स, मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको, फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे, आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे, भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे।
3: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पे चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोरा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।

0: पीछे 6 फुट वाली रखी, पीछे दुणाली आगे हैट पे लिखा था गुजर। बात करा दे दीदी तेवर से, मेरे निकले जानुआ के तेवर से।
1: वाह, ये अलग लेवल पे है भाई।
2: वाहन का क्या है? जब तक इस देश में एथनॉल है।
1: पानी हल्का गर्म है, मिर्ची अपने मुंह पे डाल लिया, हल्दी, वो पानी उन्हें गिरा के रो रहा हो कि एक लाइक दे दो। हम उसको स्वाइप कर मिले तो लाते लात मारो कि क्या पागलपन कर रहा है भाई।
3: भाई अरबी
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

पर पीएम के सख्त एक्शन वाले भरोसे के बाद नए कानून में हो सकते हैं कई बदलाव। सजा कड़ी करने के प्रावधान जुड़ेंगे, पुराने लॉ में होंगे बदलाव। प्रारूपों पर आज कैबिनेट में चर्चा। राज्यसभा में आज पेश होगा वंदे मातरम बिल। नित्यानंद राय रखेंगे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। पेपर लीक पर पीएम के ऐलान के बाद संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार। बहस में भाग ले सकती है कांग्रेस। छब्बीस दिन बाद सोनम वांगचुक के अनशन का दी एंड। वीडियो संदेश में बोले, जिम्मेदारी तय करने का सरकार ने दिया भरोसा, लेकिन सीजेपी का आंदोलन रहेगा जारी। आज देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी। थोड़ी देर में सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच अहम बातचीत। मीटिंग से पहले जेपी नड्डा की अमित शाह से मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है सीजेपी। दिल्ली पुलिस की छुट्टियां रद्द। तीसरे दिन भी 17 मेट्रो स्टेशन पर। और गुजरात, महाराष्ट्र और असम में बाढ़ बारिश का तांडव। वलसाड़, सूरत, नवसारी समेत कई शहर हुए जलमग्न। 22,000 से ज्यादा लोगों के छूटे घर। आज भी रेड अलर्ट। असम में 7 लाख से ज्यादा प्रभावित।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानशु दक्षित। सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा संसदीय कार्य मंत्री
1: एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं। आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी।
2: मेरी बात सुनने मैं समय दे रहा हूँ। मेरी बात सुनने राहुल जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है और उन्होंने आग्रह क्या किया है, उन्होंने आग्रह किया है कि आज इस जिस नीट की परीक्षा को लेकर के उस पर चर्चा आप चाहते हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही और आपने कैबिनेट की बात कही, तो उनका आग्रह है कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, मेरी बात सुन ले, चर्चा के लिए तैयार है, तो आप उस चर्चा के लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से अगर चर्चा करने की बात है तो मैं आप सबसे आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू काइंडली टेक योर सीट। मैं आप अपनी सीट पे जाएं, मैं राहुल जी को अलाउ करूँगा। आप काइंडली क्लियर द पैसेज, आप क्लियर करें। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ गया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और चाहे कानून लाने की बात हो, 13 लोग जेल में हैं, इस पर कोई राजनीति नहीं है और कोई सत्ता प्रतिपक्ष का सवाल नहीं। अगर आपकी भी चिंता है, आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार। आप कृपया बैठ जाएं। इंजीनियर राशिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुक जाइए राहुल जी, एक मिनट पेपर ले कर दे, फिर आप भी You are quite aware the procedure of the parliamentary practice. सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव की बात आती है। देखिए, स्थगन सबसे पहले हाउस में स्थगन प्रस्ताव के बारे में इस चेयर से दिया जाता है, तो पहले स्थगन प्रस्ताव का बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, काइंडली टेक योर सीट। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि जो भी माननीय सदस्यगण ने माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की। शुरू यहीं से होता है गौरव गोगोई जी, और अभी पटल पे पेपर रख लिए जाए, सभा पटल पर रखे जाने वाले जो पत्र आइटम नंबर 2 हम आपको देंगे सर, अब बैठ जाइए। अर्जुन मैं दूंगा पेपर रखने के बाद दूंगा कि अर्जुन राम मेघवाल जी, आइटम नंबर 3 श्री प्रताप राव जाधव जी। प्रताप राव जी,
3: मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम से सम्मुख नियोजित विषय के संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पे रखता हूँ।
2: आइटम नंबर 4 श्री शांतनु ठाकुर जी।
4: जस्ट सर, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name. That's real number 4 in today's
2: item United number 5, Sanjay Seth ji.
5: Sir, with your kind permission, rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business.
2: सभा की बैठकों में से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 23 जुलाई 2026 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित सदस्यों की सभा को बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप अनुमति प्रदान करती है? यदि हाँ, सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा। आइटम नंबर 7, श्री डॉक्टर अमर सिंह जी।
4: ऑनरेबल चेयरमैन सर, आई राइज टू ले ऑन द टेबल हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट शोइंग एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन कंटेन्ड इन द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी एज लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 7 इन टुडेज लिस्ट ऑफ बिजनेस। थैंक यू सर।
2: आइटम नंबर 8, श्री जियाउर रहमान जी। जियाउर रहमान जी
6: सर,
7: चेयरपर्सन सर, विथ योर काइंड परमिशन आई राइज टू अनाउंस द गवर्नमेंट बिजनेस ड्यूरिंग द वीक कमेंसिंग मंडे 27th July 2026 विल कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 कंसिडरेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस कैरिड ओवर फ्रॉम टुडेज ऑर्डर पेपर
2: में भी आपके
7: ऑन स्टेट्यूटरी रेजोल्यूशन सीकिंग दिस अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 नंबर 1 ऑफ 2026 एंड कंसिडरेशन एंड पासिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट बिल 2026 नंबर 2 कंसिडरेशन एंड पासिंग ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 आफ्टर इट इज इंट्रोड्यूस कंसिडर्ड एंड पास्ड बाई द राज्यसभा नंबर 3 consideration and passing of the micro small and medium enterprises development amendment bill 2026 after it is introduced considered and passed by the Rajya Sabha number 4 discussion on demand for access grant for the year 2022-23 and introduction consideration and passing of the related appropriation bill thank you sir
2: niyam 377 ke adhin jo mamle sabha patal par rakhne ke liye adhyaksh dwara ki jane liye hai उसमें माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं जो नियम 377 पे। और अगर आप नीट पे चर्चा चाहते हैं, अगर नीट पे तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, तो आप इसको नियमों में लिख के देंगे ना। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है तो आप इस नीट पे चर्चा के लिए अगर सरकार तैयार है तो आप इसको बिजनेस नहीं ये स्पीकर तय करेंगे, ये स्पीकर साहब तय करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, सरकार ने कह दिया विस्तार से, तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है नहीं तो निश्चित तौर से अब ये व्यवस्था स्पीकर साहब देंगे। और कोई भी हाउस का बिजनेस एनी एजेंडा ऑफ द हाउस विल बी डिसाइडेड ओनली बाय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। लेट्स यू ब्रिंग जस्ट एनी इन फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन टू द स्पीकर तभी होगा। तो आप इसको अब स्पीकर साहब छोड़िए, मैंने अगर सरकार तैयार है नहीं आगे तो सरकार अगर तैयार है इस पर तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें स्पीकर साहब से बात करें, नहीं स्पीकर साहब से बात करें और इस पर समझे नहीं इस पर आगे आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट। अरे आप क्या कर रहे हैं, अरे मैं चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो। आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है, उसको आप पास करने जाना चाहते हैं। ये नहीं दे सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।
0: तो देखिए जोरदार हंगामा हुआ और हंगामे के बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई, लोकसभा की कार्रवाई फिर से स्थगित हो गई है और पांचवें दिन हंगामा लगातार जारी रहा। जगदम्बिका पाल लगातार कोशिश कर रहे थे कि बातचीत हो, चर्चा हो, विपक्ष से आग्रह किया जा रहा था, किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री है उनकी तरफ से भी कहा गया, लेकिन विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा रहा। विपक्ष इस्तीफा इस्तीफा ये नारे लगाए जा रहे थे, इस्तीफा इस्तीफा की गूंज पूरे सदन में सुनाई दे रही थी। अब लोकसभा की कार्रवाई भारी हंगामे के चलते सोमवार तक स्थगित हो गई, यानी पांच दिन कुछ नहीं हुआ। जो छात्रों ने उम्मीद लगाई थी कि उनके मुद्दे उठाए जाएंगे, नीट पेपर लीक पर बात की जाएगी, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर बात की जाएगी, नहीं हुआ। सत्ता पक्ष विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि इस्तीफा दो, उससे कम में बात नहीं बनेगी, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उसके बाद बात। तो लोकसभा में क्या हुआ ये आपने देख लिया, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में उन्होंने अपनी बात रखी थी। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो सुना थे आपको।
6: थैंक यू वेरी मच सर, आपने हम सभापति जी 20 जुलाई सोमवार पे छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज उससे मेरा मन दुखा।
0: तो कांग्रेस जनता पार्टी के डेलीगेशन आज केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगा और इस मुलाकात से पहले गृह मंत्री अमित शाह से जेपी नड्डा की मुलाकात हो रही है और इसी मीटिंग में सीजेपी से बातचीत का प्रारूप तय हो सकता है, जिसके बाद जेपी नड्डा सीजेपी के डेलीगेशन से मिलने जाएंगे। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास के मुताबिक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह मुलाकात होगी। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने देर रात बताया कि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों से आज मुलाकात करेगी। वहीं अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक जंतर मंतर का सीजेपी का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, केंद्रीय मंत्रियों से आज सीजेपी का डेलीगेशन मुलाकात करेगा, लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, क्या खबर आ सकती है?
8: देखिए जो भी चीजें हैं उसको लेकर गृह मंत्री से मुलाकात हो रही है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की, क्योंकि पूरे किस तरीके से इस पूरे मैटर को देखना है उस किसके ऊपर चर्चा है और क्या चीजें अगर प्रोटेस्टर की रहेंगी उनकी क्या मांग रह सकती है और क्या सरकार की तरफ से कहा जाएगा, क्या एश्योरेंस दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीजें जो है इस बैठक में तय की जा रही है।
0: बिल्कुल, और ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि क्या कोई रास्ता निकल सकता है जो अभी तक कहीं दूर दूर तक दिखा नहीं, लेकिन एक उम्मीद की किरण अभी दिखाई दे रही है। तो वहीं संसद के अंदर हंगामा हुआ तो संसद के बाहर फिर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। विपक्ष के बहुत से सांसद प्रधान को बर्खास्त करो, बैनर और प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। सोमवार को शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में लगातार पांचवा दिन है जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने संसद के बाहर इस तरह का प्रदर्शन किया।
9: संसद भवन परिसर में लगातार पांचवें दिन यहां पर विपक्ष के सांसदों के द्वारा नीट पेपर लीक मामले को लेकर के यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां पर प्रदर्शन में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो है यहां पर प्रदर्शन कर रहे जो सांसद हैं वो बर्खास्त करो प्रधान इस तरीके के पोस्टर लेकर के इनके हाथों में इस वक्त मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के संसद में चर्चा किया जाए और सत्ता पक्ष की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि चर्चा की जाएगी। कल प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया कि ऐसे जो पेपर लीक मामले को लेकर के कड़े से कड़े कानून लाए जाएंगे और आज कैबिनेट में उसको लेकर के एक बड़ा फैसला भी हो सकता है।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट दिल्ली से ही। पेपर लीक पर संसद से सड़क तक जो घमासान मचा हुआ उसके बीच में पीएम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाने का ऐलान किया। आज उस कानून के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा होगी और सूत्रों की माने तो पेपर लीक और नकल के खिलाफ मौजूदा कानून को और सख्त करने की तैयारी है। सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन होने की संभावना है। आज कैबिनेट की बैठक में संशोधनों को मंजूरी मिल सकती है। मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान जोड़ा जा सकता है। कल देर रात पीएम ने वीडियो संदेश में बात कही थी कड़े कानून की।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक मामले में मिशन मूड पे हैं। कल उन्होंने सबसे पहले इसकी घोषणा की कि नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। फिर देर रात एक वीडियो जारी कर ये बताया कि कल कैबिनेट में पब्लिक एग्जाम कानून को और कड़ा और मजबूत बनाने के लिए जो है उसमें कई संशोधन लाए जाएंगे जिससे अपराधियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिले और कोई भी अपराधी पेपर लीक मामला जैसा करने के लिए फिर दोबारा भविष्य में ना सोचे।
0: तो पीएम मोदी ने अपने वीडियो संदेश में जहां पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बात कही, वहीं पेपर लीक का खुलासा होने के बाद से सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी।
11: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair.
15: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover interested in what's going on around the world?
16: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
15: Or want to catch your team's live play-by-play? It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
17: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
14: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: मामी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क, the mustard specialist since 1933.
5: सरसों
6: से देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
7: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
6: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दे, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
8: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
9: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
10: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
11: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी की तरफ से सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोला गया है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि पेपर लीक मामले पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा, शिक्षा मंत्री को जाना ही होगा। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि संसद में मुझे बोलने नहीं दिया गया, छात्रों की सभी मांगे पूरी होनी चाहिए।
1: कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पॉन्स दिया जाता है, तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन, एनी डिस्कशन बिफोर मिस्टर प्रधान इज सैक्ड। That's it.
0: और आइए अब आपके लिए चलते हैं यूपी एक्सप्रेस वे की ओर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
0: सीएम योगी आज यूपी में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांवड़ यात्रा और त्योहारों की तैयारियों का जायजा लेंगे। एसपी के गढ़ कन्नौज से बीजेपी का पीडीए प्लान, पिछड़ों और दलितों को साधने की मुहिम होगी शुरू, अगस्त में बड़े सम्मेलन से अभियान का आगाज संभव। लखनऊ में 2027 से पहले बीजेपी का दलित आउटरीच अभियान तेज, गुरु रविदास जयंती के जरिए घर घर पहुंचने की तैयारी, एससी वोट बैंक पर फोकस। एसपी का बीजेपी के दलित अभियान पर हमला, दीपक रंजन बोले दलितों की चिंता का दिखावा कर रही है बीजेपी, पीडीए के जरिए 2027 में सत्ता से बाहर होगी पार्टी। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी पीडीए की काट ढूंढने में परेशान है, लेकिन पीडीए परिवार एसपी के साथ रहेगा, बीजेपी को करेगा सत्ता से बाहर। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने महापुरुषों के नाम पर बने जिलों और संस्थानों के नाम बदले जाने का दलित समाज का अपमान बताया, पुराने नाम बहाल करने की मांग। कानपुर में बीजेपी का कॉरपोरेट स्टाइल चुनावी मैनेजमेंट, हर कार्यकर्ता का डिजिटल डैशबोर्ड तैयार, पल पल मॉनिटरिंग के लिए सरल ऐप से बूथ स्तर तक संगठन की गतिविधियों पर नजर। चंद्रशेखर आजाद 25 जुलाई को लखनऊ में पेपर लीक प्रदर्शन में शामिल होंगे, बोले शिक्षा व्यवस्था में सुधार तक जारी रहेगा आंदोलन। यूपी में बर्खास्त सिपाही सुनील शुक्ला को शंकराचार्य का ऑफर, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 1,00,000 रुपए मासिक वेतन पर साथ काम करने का प्रस्ताव दिया, बर्खास्तगी के बाद नौकरी का ऑफर दिया। लखीमपुर खीरी में कुल्हाड़ी लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा शख्स, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का दावा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, अखिलेश यादव ने छात्रों की मांग का किया समर्थन, यूनिवर्सिटी बचाने की मांग, छात्रों ने बताई अपनी परेशानियां। यूपी से राज्यसभा एसपी सांसद रामगोपाल यादव का बयान, पेपर लीक पर सरकार को घिरा, बोले कानून पहले से है, सजा कितनों को हुई। अयोध्या में संतों की बैठक, चंपत राय को मिली क्लीन चिट, चंदा चोरी के आरोपों पर संतों का समर्थन, ट्रस्ट के खाली पदों पर संतों की जगह देने की मांग, संत बोले अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश। कमल के आकार में बनेगी लखनऊ की नई विधानसभा, एनिमेटेड फोटो जारी, 200 एकड़ में भवन, जॉइंट सेशन के लिए 1,000 सदस्यों का हॉल, 5,000 प्लस गाड़ियों की पार्किंग का भी प्रावधान। गोमती नगर के सहारा शहर में बनेगी यूपी की नई विधानसभा, वर्ल्ड क्लास कैंपस में आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी असेंबली, अगले साल शुरू हो सकता है निर्माण, सीएम सलाहकार अवनीश अवस्थी ने साझा की जानकारी। कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सस्पेंड, नोटों की गड्डियों वाली वायरल फोटो और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद कार्रवाई, डीजीएमई ने जांच के आदेश दिए। झांसी में एलएलबी छात्र की गोली मारकर हत्या, रेस्टोरेंट में दोनों के साथ

जनता को पीट दिया। सहारनपुर में पुलिस बदमाश मुठभेड़, स्ट्रीट शीटर के पैर में लगी पुलिस की गोली, आरोपी घायल, 14 आपराधिक मुकदमों में दर्ज है बदमाश का नाम। वाराणसी में मोबाइल को लेकर मां ने टोका तो बेटी ने उठाया खौफनाक कदम, फांसी लगा कर दी जान, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की, फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य। चंदौली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुर्गीदाने की बेटियों के बीच बोरियों के बीच छिपी 15 लाख की कोडिन कफ सिरप बरामद, प्रतिबंधित दवा की तस्करी का खुलासा। सीतापुर में फर्जी टीईटी मार्कशीट पर बड़ा एक्शन, 7 शिक्षकों की सेवा समाप्त, केस दर्ज, बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की।

0: और अब बात उस वक्त की एक बड़ी खबर की करते हैं। पेपर लीक मामले पर बनाए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान पोस्ट के जरिए दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि नो फास्ट ट्रैक, बीजेपी गो बैक। ये सोशल मीडिया पोस्ट थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव की ओर से आया है। ये आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सरकार ने 4 हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन का फैसला किया था और दिल्ली में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बन भी गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने लिखा है कि जब बीमारी जड़ में है तो फल का इलाज करने से क्या फायदा होगा।
1: सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों का हित हो चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई, उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है, इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं, मैं शहीद का दर्जा दूंगी, बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्ते आए थे और पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो ज्यादतियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनली सब लोग जान गए हैं जो हालात हैं पूरे देश में।
2: देखिए, इधर उधर की बातें जो ये चल रही हैं, पहले जो हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड है वो पूरी की जाए, रेजिग्नेशन चाहिए सभी लोगों को, उस पर हम सभी लोग अटल हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड अटल है। और रही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात, तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, बहुत पहले से होना चाहिए। लेकिन जो रेप के उसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं उनमें कितनी अभी तक कार्रवाई हुई है, कितनी प्रगति हुई है, ये भी सोचने की बात है। तो सिर्फ एक झूठा दिलासा ना दें प्रधानमंत्री जी, जो स्टूडेंट्स की असल डिमांड है और जो रिफॉर्म एजुकेशन में होने चाहिए वो करने चाहिए उन्हें।
0: तो दिल्ली में चल रहे आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में भी बढ़ चढ़कर नजर आ रहा है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बावजूद सीजेपी का आंदोलन जारी है और देश भर के शहरों में प्रदर्शन का आह्वान किया गया। इसी कड़ी में यूपी के शहरों में भी प्रदर्शन की तैयारी है। हालांकि सोनम वांगचुक के अनशन से सरकार के एक्शन तक समाजवादी पार्टी के सवाल और जो मांगे हैं वो अब भी बरकरार हैं।

0: दिल्ली में 26 दिन से चल रहे सीजेपी के आंदोलन का प्रसार भले संसद के मॉनसून सत्र के बाद तेज हुआ है, लेकिन यूपी में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। खासकर दिल्ली में विपक्ष के विरोध में राहुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश डिंपल का उभर कर आया, जिन्होंने जोर शोर से सीजेपी के सवालों और मांगों को संसद तक पहुंचाने में मदद की।
1: हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि चर्चा हो उसके बाद।
2: ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है।
1: तो ये जो सरकार के पास बच्चे आए, तो सरकार अगर पहले ही फैसला ले लेते कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम सही करेंगे, रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाएंगे, तो बच्चे क्यों आते?
2: हम तो यूपी से हैं, यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है।

0: अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी।
1: दिल्ली के आंदोलन के साथ साथ यूपी के प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक और अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक समाजवादी पार्टी के युवा समर्थक सड़कों पर आए। हालांकि सरकार ने आंदोलनकारियों की चिंताओं की लाइन में एक के बाद एक कई फैसले किए हैं। खासकर नीट पेपर लीक के बाद सरकार ने तेजी से जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आंदोलन शुरू होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया। शिक्षा विभाग में बड़े बड़े अफसरों के तबादले हो गए और अब सख्त बिल लाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार के इन कदमों को नाकाफी बता रही है।
2: लॉ पहले से नहीं था क्या? ये अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए क्या लॉ पहले से नहीं था? इन्फोर्स करने वाली एजेंसी कौन है? किसी खिलाफ कार्रवाई हुई? किसी नीट का जो किंग पिन था उसको कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी? क्या कानून बनाएंगे स्टेंजन?
1: सरकार को उम्मीद है कि देर से ही सही, लेकिन सीजेपी के आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए जो चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की है वो कारगर हो सकती है। खासकर 23 जुलाई की रात सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने के बाद सरकार को थोड़ी उम्मीद जगी है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस अनशन वाली राजनीति को ही बेकार साबित कर रही है और अपनी मांगों पर अड़ी हुई है।
2: समाजवादी पार्टी कभी अनशन के पक्ष में नहीं रही। डॉक्टर लोहिया हमेशा इसका विरोध करते थे। जब लोगों ने ज्यादा कहा तो उन्होंने कहा आप क्रमिक अनशन कर सकते हो, 24 घंटे के लिए एक आदमी बैठे, फिर उसके बाद दूसरा आदमी 24 घंटे के लिए बैठे। आमरण अनशन करे तो एक हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि मैं आमरण अनशन बैठूंगा, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा अगर मांग न मानी जाए तो मर जाना, उठना नहीं। इस शर्त पर तो मैं लागू कर सकता, वरना आंदोलन समाजवादी पार्टी कभी भूख हड़ताल के अनिश्चितकालीन या आमरण अनशन के पक्ष में रही नहीं।
1: ये और बात है कि सोनम वांगचुक अनशन खत्म कर चुके हैं, लेकिन सीजेपी का आंदोलन अभी जारी है। सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने आह्वान किया है कि 24 जुलाई को देश भर के शहरों में विद्यार्थी प्रदर्शन करें और इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के युवा मोर्चा की ओर से जोर शोर से की जा रही है। खबर है कि लखनऊ में शाम 4 बजे विपक्षी दलों की ओर से सीजेपी के समर्थन में आंदोलन प्रदर्शन किया जाने वाला है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट पेपर लीक जांच को लेकर कहा गया है कि कड़ी नजर बनाए हुए हैं और केंद्र सरकार विस्तृत हलफनामा देगी सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद फिर इस केस को आगे देखेंगे। पेपर लीक रोकने के प्रस्ताव केंद्र बताएगा। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से?
4: कोर्ट ने सरकार से डिटेल्ड एफिडेविट मांगा है जिसमें यह बताया है कि अब तक पेपर लीक रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में इसे लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार क्या करने वाली है, इसके बारे में विशेष जानकारी दे। कोर्ट ने यह भी संकेत दिए कि वो इस मामले की क्लोजली मॉनिटरिंग करेगा, यानी बहुत नजदीकी से और बहुत लगातार इस पर निगरानी रखेगा। अगले हफ्ते इस मामले को सुनवाई के लिए लगाया गया है। तब तक केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार को एक एफिडेविट देना है जिसमें बताना है कि उसने अब तक इस मामले में लीक रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं।
3: हलफनामे की कोई टाइम लिमिट है क्या?
4: अगले हफ्ते से पहले तक उन्हें देना है। अगले हफ्ते इस मामले को सुनवाई के लिए लगाया गया है। जाहिर है एक हफ्ते में सरकार को हलफनामा देना होगा और इससे पहले भी सरकार ने सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने कहा कि सीरीज ऑफ एरर में दिखाई पड़ रही है, लिहाजा सरकार के लिए ये उचित है कि वो एफिडेविट हलफनामे के जरिए अपनी सारी जानकारियां दे। तो ऐसे में सरकार के लिए अगर हम देखें तो सरकार के लिए मुश्किलें संसद में भी बढ़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बढ़ी है, सड़क पर भी बढ़ी है, यानी हर तरफ सरकार अपने इस पेपर लीक मामले में सरकार के भी
3: का जो तो एक हफ्ते के अंदर हलफनामा सरकार को देना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए संजय। तो दिल्ली में चल रहे सीजेपी के आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सड़क पर उतर रही है। आज भी लखनऊ में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। सहयोगी हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। आशीष, आज लखनऊ में प्रदर्शन किया जाएगा, क्या प्रदर्शन होने वाला है और कौन लोग उसमें आ सकते हैं, क्या तैयारियां हैं?
5: हिमांशु, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के पास हूं और वहां पर अभी से छात्र सार इकट्ठा हो गए हैं और उनके हाथों में अपनी पंपलेट है। हालांकि पुलिस ने अपनी एक तैयारी कर रखी है कि किस तरीके से उनका जो परिवर्तन चौक से लेकर हजरतगंज तक ये पूरा इकट्ठा होना है और उसमें जो सीजेपी दिल्ली में कर रहा है, कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि छात्रों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसमें वो उसी बात पर अड़े हुए हैं। और अभी भी आप देखिए यहाँ पर सारे पंपलेट लेकर छात्र इकट्ठा हो गए हैं और धीरे धीरे करके इनकी जो स्ट्रेंथ है वो लगता बढ़ती जा रही है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और क्या कितना बड़ा प्रदर्शन है ये?
6: देखिए, जो 20 तारीख को दिल्ली के अंदर ब्रूटल लाठीचार्ज स्टूडेंट पे हुआ, उसके खिलाफ आज पूरे देश के छात्र नौजवान एकजुट हैं और उसी के खिलाफ आज नेशनल प्रोटेस्ट है। वहां से नेशनल कॉल दिया गया है कि देश भर में आज हर शहर हर गांव में प्रोटेस्ट है। हम लोग
5: कहां से कहां जाएंगे?
6: हम लोग परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक हमारा शांतिपूर्ण मार्च है और इसीलिए हमने शहीद स्मारक
5: चाहते क्या है फिर आप?
6: हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, अमित शाह इस्तीफा दें, जिनके इशारे पर ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ, जो सुसाइड किए छात्र उनको मुआवजा मिले और जो लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई।
5: क्या चाहते हैं आप लोग?
7: हम लोग की देखिए साफ साफ यही मांग है कि जो अभी वर्तमान में आपने देखा कि छात्रों पे बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया छात्र।
3: अच्छा आशीष ये बताइए, दिल्ली में तो सीजेपी से आंदोलन की बुनियाद है लेकिन यहाँ क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी, क्या यहाँ पर श्रेय लूटने की होड़ मची है?
7: करने गया था अगर छात्र
5: बिल्कुल देखिए ये छात्र तो कह रहे हैं कि वो छात्र हैं सिर्फ, उसमें कोई राजनीतिक रूप से चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो ऐसा नहीं जुड़ने की बात कह रहे हैं, क्योंकि जो छात्र हैं वो कह रहे हैं हम सिर्फ छात्र हैं और छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। आप लोग किसी पार्टी से हैं कि छात्र हैं?
8: नहीं नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं छात्र हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
5: इनको सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट,
3: ठीक है ये छात्र हैं और आज तैयारी कर चुके हैं प्रदर्शन की। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरह दिल्ली और लखनऊ में विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े सवाल को लेकर आंदोलन चल रहा है, वैसा ही एक आंदोलन यूपी के रामपुर में भी चल रहा है। रामपुर में समाजवादी पार्टी का भारी भरकम प्रतिनिधि दल विद्यार्थियों की आवाज उठाने के लिए जिला प्रशासन तक पहुंचा था। यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह प्रतिनिधि दल अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ढहाए जाने के विरोध में ज्ञापन देकर लौट गया है।
9: क्या आश्वासन दिया है? 45 विधायकों ने दिया है जी, और इनसे आग्रह किया है कि जो जौहर यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का आपने आदेश जारी किया उस पर पुनर्विचार करिए, क्योंकि शैक्षणिक संस्था है, यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इसको बर्बाद मत करिए।
3: समाजवादी पार्टी ने आजम खान की अली जौहर यूनिवर्सिटी को डहाने से बचाने की गुहार सरकार से लगाई और इसी बीच दिल्ली और लखनऊ में चल रहे आंदोलन से अलग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को अब अपने भविष्य पर खतरा मंडराता दिख रहा है। ये विद्यार्थी करीब एक हफ्ते से विश्वविद्यालय परिसर के गेट पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बात यूपी में चल रही चुनावी राजनीति पर बिछाए जा रहे बिसात की करते हैं। बीजेपी के खेमे से यह बड़ी खबर आ रही है, यूपी के कन्नौज से बीजेपी का बड़ा चुनावी अभियान शुरू होने वाला है। अगस्त के दूसरे हफ्ते में बीजेपी कन्नौज से पिछड़ा दलित अभियान शुरू करने वाली है। इस अभियान की शुरुआत में होने वाले सम्मेलन में खुद सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा यूपी बीजेपी के एससी एसटी और ओबीसी मोर्चे से जुड़े पदाधिकारियों के साथ अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है। यह अभियान अगस्त के दूसरे हफ्ते में समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले कन्नौज से शुरू होने वाला है। इसके लिए पार्टी जिला स्तर पर विशेष संपर्क अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें बीजेपी अखिलेश राज में पीडीए विरोधी फैसलों को मुद्दा बनाएगी। जैसे बीजेपी 13 अगस्त को अहिल्याबाई होलकर जयंती के मौके पर बिधुना स्थित कॉलेज का नाम बदलकर राम मनोहर लोहिया के नाम पर किए जाने के मामले को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में। इसके अलावा अंबेडकर मेडिकल कॉलेज नाम बदलने से लेकर गाजियाबाद में अंबेडकर को लेकर दिए गए आजम खान के बयान तक का जिक्र कर बीजेपी दलितों के प्रति समाजवादी पार्टी के नजरिए का प्रचार करेगी। समाजवादी सरकार में 50% नौकरी यादवों को दिए जाने का चुनावी मुद्दा भी बीजेपी उठाएगी। यहां
10: 2012 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने अपनी कैबिनेट में एक भी गैर यादव पिछड़े वर्ग को शामिल नहीं किया। जो भी थे, स्वयं अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, उनके चाचा कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव, बलराम यादव, अंबिका चौधरी, पारसनाथ जनम अंबिका चौधरी और राम गोविंद चौधरी, ये सभी केवल एक उनके समाज के थे। किसी भी पिछड़े वर्ग को न कुर्मी, न लोधी, न पाल, न प्रजापति, न चौरसिया, न किसी भी समाज को इन्होंने इस लायक नहीं समझा कि इनकी कैबिनेट में रखें। तो पहले तो ये माई फार्मूला बताते थे, अब जब पूरे पिछड़ों ने एकजुट होकर इनको ध्वस्त करना शुरू किया, तो अब ये गुमराह करने की जो राजनीति ला रहे हैं इसका हम पूरा पर्दाफाश एक एक चीजों का करेंगे।
3: अब देखिए बीजेपी के इस प्लान को लेकर समाजवादी पार्टी अब सवाल उठा रही है कि 12 साल केंद्र में 9 साल यूपी में डबल इंजन की सरकार ने पीडीए तबके के लिए क्या किया है, इसका हिसाब देना चाहिए ना कि 12 साल पहले के मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए।
11: अब 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रह ली और 12 साल से अधिक हो गए केंद्र में। अब भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने आखिर क्या किया पीडीए वालों के लिए, उन्होंने आखिर कैसे लोगों की जिंदगी बदली, कैसे बेरोजगारी दूर करी, कैसे महंगाई कम करी, कैसे लोगों को आवास दिए, कैसे लोगों की जिंदगी बदली, कैसे बेहतर स्वास्थ्य दिया, कैसे बेहतर शिक्षा दी, कैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, कैसे सुरक्षा दी, इस पर तो बात कर नहीं रहे। वो उन्हीं भावनात्मक मुद्दों पर टिके हुए हैं जो मुद्दे पिट चुके हैं।
3: दरअसल आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी हर समुदाय वर्ग के हिसाब से रणनीति बना रही है और इसमें दलित समुदाय के लिए भी खास रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें बीजेपी ने अब संत रविदास समरसता संकल्प अभियान चलाने का ऐलान किया। बीजेपी ने 25 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक संत रविदास समरसता संकल्प अभियान चलाने की घोषणा की है। 29 जुलाई को काशी से अभियान की शुरुआत होगी, जबकि सीर गोवर्धन की पवित्र मिट्टी गांव गांव पहुंचाई जाएगी।
12: भारतीय जनता पार्टी संत रविदास जी की जयंती को कैंपेन के तौर पर पूरे प्रदेश भर और देश भर में मना रही है। मकसद साफ है कि दलित वोट बैंक को, जो बहुजन समाज पार्टी का होता है, कहीं ना कहीं उसका दावा चंद्रशेखर रावत करते आए हैं, उस वोट बैंक को अपनी तरफ करना, इसी को लेकर कलश यात्रा अभियान शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, इसके साथ पंकज चौधरी स्टेट प्रेसिडेंट, सभी ने मिलकर इसकी कार्यशाली तैयार की है और ये पंजाब के जालंधर से शुरू होकर बनारस में इसकी एंड होगा, यानी कि इस महीने से शुरू होकर ये सीधे फरवरी तक चलेगा। तो एक बड़ा कैंपेन संत रविदास को लेकर और उनकी भूमिका को लेकर, महापुरुषों के सम्मान को लेकर, दलित वोट बैंक पर सीधा प्रभाव डालने के लिए इसको किया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
3: और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
15: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
16: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
17: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
18: Right field, and it will.
17: From the first pitch of the season to the stretch run.
18: And that's the ball game.
17: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
19: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
20: कुछ तो बात है इस दिल में।
21: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
22: विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे? और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी, ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा, आप ही की उद्दंडता से चलेगा?
23: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है, ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
1: Order for Jennifer C.
2: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
1: Yeah. Can you handle that much caffeine?
2: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
1: Oh, really? That's great.
2: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
1: Yeah, you just said that.
2: Did you say I just said that?
1: Yeah, I'm cutting you off.
2: I can't have any more? Why not?
3: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
4: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है. सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, अनुचित प्रयास कर रहा है. और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है. इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे.
7: ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है. ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है. आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें?
8: आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज. नहीं,
7: आपने समझौता क्यों कर लिया फिर?
8: हम लोग का बात भी सुनिए.
9: अखिलेश जी,
7: नहीं छात्र नौजवान क्या केवल?
9: अखिलेश जी एक मिनट.
7: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है. अध्यक्ष महोदय, ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं. हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए. छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे. और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाहर ले लेंगे. लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर. अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते. क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?

पेपर लीक पर पीएम के सख्त एक्शन वाले भरोसे के बाद नए कानून में हो सकते हैं कई बदलाव। सजा कड़ी करने के प्रावधान जुड़ेंगे। प्रारूपों पर आज कैबिनेट में चर्चा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगी सरकार। राज्यसभा में 2 बजे पेश होगा वंदे मातरम बिल। पेपर लीक पर पीएम के ऐलान के बाद संसद में गतिरोध कायम। राहुल का आरोप, लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। बीस दिन बाद सोनम वांगचुक के अनशन का दी एंड। वीडियो संदेश में बोले, जिम्मेदारी तय करने का सरकार ने दिया भरोसा। सीजेपी कर चुकी है देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान। सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच अहम बातचीत। मीटिंग से पहले जेपी नड्डा की अमित शाह से मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा है सीजेपी। दिल्ली पुलिस की छुट्टियां रद्द। तीसरे दिन भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद। और गुजरात, महाराष्ट्र, असम में बाढ़, बारिश का तांडव। वलसाड़, सूरत, नवसारी समेत कई शहर जलमग्न। 22,000 से ज्यादा लोगों के छूटे घर। आज भी रेड अलर्ट।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुका है। सरकार के साथ बातचीत 12:30 बजे के लिए तय थी, लेकिन अब 1 बजे के बाद भी ये बातचीत शुरू नहीं हुई है। हालांकि प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है, थोड़ी देर बाद ये बातचीत कभी भी शुरू हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं सीजेपी के प्रतिनिधि, सरकार के साथ आज ही ये बातचीत होनी है। हालांकि लगातार गतिरोध जारी है और सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन भी बुलाया गया है। सौरभ रॉय को आप देख रहे हैं, सौरभ रॉय पहुंच गए हैं यहां पर सीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। सरकार से पहले भी वो मुलाकात कर चुके हैं, इससे पहले उनकी मुलाकात जेपी नड्डा के साथ हुई थी। आज एक बार फिर उम्मीद यही जताई जा रही है कि जेपी नड्डा ही मुलाकात करने पहुंचेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एक न्यूट्रल वेन्यू को चुना गया है इस मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जंतर मंतर पर ही बातचीत हो सकती है, लेकिन इसके लिए इनकार कर दिया गया। और इस बैठक से पहले अमित शाह से जेपी नड्डा की मुलाकात हो चुकी है। अब केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेगा कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, कितनी देर में बातचीत शुरू होगी और सरकार की ओर से कौन आ रहा है?
1: देखिए नेहा, ये पता चल रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ साथ और सरकार के दो मंत्रियों के साथ उनकी बैठक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली है। हालांकि उससे पहले जो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि अब कितनी देर बाद जो है वो प्रतिनिधिमंडल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचता है, उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। क्योंकि लगातार जो सीजेपी के से जुड़े हुए लोग हैं उनकी मांग है कि जितने भी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज जो हुई है प्रोटेस्ट के दौरान, वो एफआईआर को वापस लेना चाहिए सरकार की तरफ से। इस तरीके की उनके द्वारा मांग रखी गई है। इसके साथ ही उनकी मांग अभी भी वैसे ही बरकरार है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के, जो कि वो लगातार इस प्रोटेस्ट के दौरान करते रहे हैं सीजेपी के द्वारा। तो सीजेपी अब जब यहां पर आती है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जो कि ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, उस दौरान उसका क्या रुख होता है ये देखना होगा। उससे पहले अगर देखा जाए तो सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन उनका था 26 दिनों तक लगातार उनका जो अनशन चल रहा था उसको उन्होंने कल रात में खत्म किया है। सरकार इस तमाम चीजों को लेकर के काफी राहत महसूस कर रही है, लेकिन सीजेपी के साथ जो बैठक होगी उसके बाद ही ये तय होगा।
2: नहीं है ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूर ही नहीं है।
3: तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है
2: प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा।
0: और अब रुख करेंगे नॉन स्टॉप 100 का।

लगातार पांचवें दिन संसद में पेपर लीक और दरमियान प्रधान घोटाले की मांग को लेकर जोरदार हंगामा। विपक्ष ने इस्तीफा के लगाए नारे। भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक ले स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक ले स्थगित। विपक्षी मांग पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया पलटवार। सदन में चर्चा को है तैयार सरकार, बस विपक्ष नई नई शर्तें ना रखे, देश में उनकी छवि खराब हो रही है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के पद से हटाने की मांग करते हुए कहा, छात्रों की मांग पर ध्यान दिए बिना वो सब कुछ लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर कसा तंज, कहा जब बीमारी रूट में है तो फ्रूट के इलाज से कोई मानने वाला नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, बीजेपी गो बैक। राहुल गांधी ने छात्रों की मांग के बारे में जानकारी देते हुए सदन में ना बोलने देने का आरोप लगाया। कहा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पहले हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का लगातार पांचवें दिन प्रदर्शन। संसद के मकर द्वार के बाहर जमकर नारेबाजी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है विपक्ष। बड़े बड़े पोस्टर लेकर इस्तीफा दो के नारे लगाए। खड़गे ने दोबारा पीएम के वीडियो वाले संसद के बयान पर किया पलटवार, कहा जो बातें कहना चाहते हैं पीएम संसद में आकर कहें। सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार स्टूडेंट प्रोटेस्ट या पेपर लीक मामले जुड़ा कोई बिल लाती है तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री चर्चा में हिस्सा लेगी। पीएम मोदी के वीडियो वाले संदेश पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार, कहा संसद में आकर दे जवाब। संसद के बाहर एक तरफा मन की बात नहीं करनी होती है। खड़गे की नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए विपक्षी मांगों को दोहराते हुए कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर आइए, तब होगी चर्चा। जंतर मंतर लाठीचार्ज को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर सारा निशाना। बोली हिंसा के जरिए आंदोलन को दबाना इस सरकार की आदत है। सोनिया गांधी ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा उनके भविष्य की रक्षा करना हमारा नैतिक राजनीतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। एनटीए पर भी जमकर सारा निशाना। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी पीएम मोदी के वीडियो पर तंज कसते हुए कहा उन्होंने स्पीच अच्छी है लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने नया वीडियो जारी करते हुए कहा भूख हड़ताल का अंत, जवाबदेही की शुरुआत। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ा अनशन। जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया फैसला। वांगचुक ने बताया अलग अलग राजनीतिक दलों के पैसे सांसदों से उनकी मुलाकात या पत्र लिखकर अनशन खत्म करने का किया था आग्रह। बोले हिंसा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। वांगचुक का अनशन खत्म होने पर पीएम मोदी का संदेश, बोले डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार रखें दिनचर्या, जल्द अपना पुराना वजन हासिल करें। पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर बोले राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, छात्रों पर कार्रवाई करने वालों को सजा दें, माफी मांगे। अनशन तोड़ने से पहले सोनम वांगचुक और केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत का वीडियो सामने आया। पेपर लीक और परीक्षा सुधारों को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि शिक्षा से जुड़े सुधारों का समाधान खोजने के लिए विस्तृत चर्चा का भरोसा दे चुकी है सरकार। जेपी नड्डा ने कहा नीट पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या मामलों से मुआवजे पर सरकार सकारात्मक। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही गड़बड़ियों पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। एनटीए की कार्यप्रणाली और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली पर स्पष्ट जवाब मांगा। अदालत ने कहा गलतियों की यह सिलसिला अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को। वांगचुक का अनशन खत्म होने पर अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया, बोले 26 दिन के संघर्ष के लिए आभार। सौरभ दास का दावा आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, सीजेपी होगी शामिल। आज सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन, बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की अपील। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर वायरल पोस्ट में पुलिस का खंडन। डीसीपी नई दिल्ली ने कहा पासपोर्ट रद्द करने का कोई आदेश नहीं है। दिल्ली में आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद। राजीव चौक और मंडी हाउस पर जारी रहेगी इंटरचेंज की सुविधा। संजय सिंह का सरकार पर हमला, बोले सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ लेकिन छात्रों के मुद्दों पर आंदोलन जारी रहेगा। छात्र प्रोटेस्ट पर सलमान खान, बोले पीएम ने सख्त कार्रवाई कर दिया भरोसा, घर लौटे छात्र। छात्रों के समर्थन में आए सचिन, अपने पिता की सीख को याद करते हुए कहा सफलता स्वीकार है लेकिन नकल या छल स्वीकार नहीं है। सीजेपी प्रोटेस्ट में बोले बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, कहा छात्रों पर लाठीचार्ज सही नहीं है, छात्राओं पर बल प्रयोग पीड़ादायक है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, बोली छात्रों की मांग अलग, सरकार का जवाब अलग, भरोसे के लिए सरकार को मंत्री का इस्तीफा लेना होगा। जेपी नड्डा का बयान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर केस नहीं होंगे, नीट पीड़ितों के लिए मुआवजे पर सरकार सकारात्मक। महुआ मित्रा का पीएम मोदी पर हमला, बोली धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें। सीजेपी का बयान सरकार ने न्यूट्रल जगह से होगी मुलाकात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत 4 मांगे रखेंगे। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग जारी रहेगी। सीआर पाटिल का बयान नीट पेपर लीक पर होगी सख्त कार्रवाई, छात्रों के हितों की रक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, शिक्षा मंत्रालय ने दोनों प्रमुख विभागों के सचिव बदले। नीट जोशी पंचायती राज मंत्रालय भेजे गए, नरेश पाल गंगवार और टीके अनिल कुमार को मिली नई जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में जंतर मंतर पर हो रहे छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, कांग्रेस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में निकाली रैली। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला जलाने की कोशिश की, इस दौरान बीजेपी समर्थकों से हाथापाई हुई। समाजवादी पार्टी के नेता
दीपक रंजन ने बीजेपी के गुरु रविदास जयंती अभियान पर निशाना साधते हुए कहा बीजेपी अब दलित समाज की चिंता करने का दिखावा कर रही है। सीएम योगी आज 8-9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे समीक्षा बैठक। कांवड़ यात्रा, आगामी त्योहार और कानून व्यवस्था पर जांच। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए बिहार पुलिस का बड़ा फैसला, सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गयी। सीएम योगी आज यूपी में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कांवड़ यात्रा और त्योहारों की तैयारियों का लेंगे जायजा। समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज से बीजेपी का पीडीएफ प्लान, पिछड़ों और दलितों को साधने की मुहिम होगी शुरू। अगस्त में बड़े सम्मेलन से अभियान का आगाज संभव। लखनऊ में 2027 से पहले बीजेपी का दलित आउटरीच अभियान तेज, गुरु रविदास जयंती के जरिए घर घर पहुंचने की तैयारी। एससी वोट बैंक पर फोकस। एसपी का बीजेपी के दलित अभियान पर अमला, दीपक रंजन बोले दलितों की चिंता का दिखावा कर रही बीजेपी, पीडीए के जरिए 2027 में सत्ता से बाहर होगी पार्टी। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी पीडीए की कार ढूंढने में परेशान है लेकिन पीडीए परिवार एसपी के साथ रहेगा, बीजेपी को करेगा सत्ता से बाहर। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने महापुरुषों के नाम पर बने जिलों और संस्थानों के नाम बदले जाने को दलित समाज का अपमान बताया, पुराना नाम बहाल करने की मांग उठाई। कानपुर में बीजेपी का कॉर्पोरेट स्टाइल चुनावी मैनेजमेंट, हर कार्यकर्ता का डिजिटल डैशबोर्ड तैयार, पल पल मॉनिटरिंग के लिए सरल ऐप से बूथ स्तर तक संगठन की गतिविधियों पर नजर। चंद्रशेखर आजाद 25 जुलाई को लखनऊ में पेपर लीक प्रदर्शन में होंगे शामिल, बोले शिक्षा व्यवस्था में सुधार तक जारी रहेगा आंदोलन। यूपी में बर्खास्त सिपाही सुनील शुक्ला को शंकराचार्य का ऑफर, अविप्तेश्वरानंद सरस्वती ने 1,00,000 रूपये मासिक वेतन पर साथ काम करने का प्रस्ताव दिया था, बर्खास्त के बाद दिया था नौकरी का ऑफर। लखीमपुर खीरी में कुल्हाड़ी लेकर डीएम दफ्तर पहुंचा शख्स, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का दावा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े, तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर निकालने को मजबूर हैं लोग। जामनगर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना लेकिन शहर से गांव तक बरसे बादल, किसानों के चेहरे खिले। नवसारी में बारिश थमने से रहा, शहर में उतरने लगा पानी, कई इलाकों में अभी जलभराव से यातायात सामान्य। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर, बाढ़ भूस्खलन से हाईवे बंद, जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर में मौसम बना आफत, भारी बारिश से उफान पर नदियां, फ्लैश फ्लड का खतरा। असम में बाढ़ का कहर जारी, 7.21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, मृतकों की संख्या 47। असम में बाढ़ से हालात गंभीर, 11 जिलों में लाखों लोग प्रभावित, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। उधमपुर में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, बरकुंडा इलाके में कई घर प्रभावित, प्रशासन ने राहत काम शुरू किया। उधमपुर में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर, उड़ी में बादल फटने से तबाही। डोडा में भूस्खलन से सड़कें बंद, कई इलाकों में हालात बिगड़े। उफान पर है झेलम नदी, श्रीनगर के पास खतरे के निशान के ऊपर जलस्तर। बारिश बनी आफत, मलबे और पानी के तेज बहाव से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, प्रशासन ने निचले इलाकों किया सतर्क। गुजरात के वलसाड जिले में भारी बारिश जैसे हालात, लोगों को आई भारी मुसीबत। एनडीआरएफ की नाव का पहुंचना हो मुश्किल, रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। वलसाड में बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर रेस्क्यू, सलवाव में 24 घंटे बिजली के पोल पर फंसे युवक को सुरक्षित बचाया गया। गुजरात बाढ़ जैसे हालात पर डिप्टी सीएम हर्ष संघवी एक्टिव, नवसारी वलसाड पहुंचकर लिया हालात का जायजा। रामबन के एनएच 44 बंद होने से फंसे यात्रियों के लिए राहत, बनिहाल से कटरा तक स्पेशल ट्रेन। दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर की हत्या, कृष्णनगर में चाकू से हमला, वारदात के बाद इलाके में सनसनी। मुजफ्फरपुर बिजली ऑफिस में हंगामा, डिफरमेंट चार्ज को लेकर भड़के उपभोक्ता, तोड़फोड़ और पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा। पेराई से बड़ी कार्रवाई, अजनाला थाना हमले में आरोपी गिरफ्तार, नेपाल बॉर्डर से एसएसबी पुलिस ने वारिस पंजाब देश से जुड़े विक्रमजीत और साथियों को पकड़ा। बांदा में करंट से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत, कपड़े उठाने गए बेटे को बचाने पहुंचे पिता की भी गई जान, मां झुलसी। गुजरात के खेड़ा मातर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पानी से भरे नाले में गिरी कार, चार की मौत, दो का रेस्क्यू। अलवर सड़क हादसे के बाद अस्पताल में बवाल, मृतका के परिजनों ने घायल युवकों की पिटाई की। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी विवाद गरमाया, सपा डेलीगेशन की कॉन्फ्रेंस वेले छात्रों का धरना जारी। भिवाड़ी में हथियारबंद बदमाशों का तांडव, पुलिस ने हथियार लहराकर ग्रामीणों को धमकाया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिजनौर में गवाही का खौफनाक बदला, दुष्कर्म केस के आरोपी ने महिला को मारी गोली। मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पुलिसकर्मी से बदसलूकी और बैरिकेड तोड़ने के वीडियो वायरल। आज है फिल्मी फ्राइडे, उत्तर दा पुत्र दुल्हनिया ले आएगी, द इंडिया स्टोरी, इश्कनामा समेत 8 फिल्में रिलीज।
रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर फैंस की बेकरारी जारी, ट्रेलर को करना पड़ेगा और इंतजार। रामायण सागर की रामायण वाली सीता दीपिका चिखलिया ने साई पल्लवी की तारीफ की, बोली बेहद टैलेंटेड है एक्ट्रेस। विजय सेतुपति का फिल्म जाना नायगन का बॉक्स ऑफिस में पहला दिन 41 करोड़ रुपए का कारोबार पहले ही किया। अजय देवगन की दमाल फौ की रफ्तार धीमी, 14 दिन बॉक्स ऑफिस में कमाए 2.5 करोड़ रुपए। ईरान अमेरिका तनाव के बीच तेहरान में हवाई खतरे को लेकर अलर्ट, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ईरान पर अमेरिका की लगातार 13वें रात एयर स्ट्राइक जारी, अमेरिकी सेना ने सैन्य ठिकानों पर फिर हमले किए। एआई पर ट्रंप शी की बड़ी बैठक, 24 सितंबर को अमेरिका आएंगे चीनी राष्ट्रपति। एशिया विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने किर्गिस्तान पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। गाजा पर भूख का बड़ा संकट, साल के अंत तक करोड़ों लोग हो सकते हैं प्रभावित। ज़ेलेंस्की ने रेथियन उपाध्यक्ष से की मुलाकात, यूक्रेन में पेट्रियट मिसाइल के संयुक्त उत्पादन पर हुई चर्चा। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में रूसी बम हमले में कम से कम 16 लोग घायल, गवर्नर ने गुरुवार को हमले में अस्पताल तबाह करने की बात कही। मैड्रिड में रिहायशी इलाके में आग पकड़कर काबू पाने की कोशिश जारी, कई घरों में आग के चलते काले धुएं का गुबार। फ्रांस के जंगल में आग का कहर, 10,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगह पर भेजे गए, आर्काशोन के पास पर्यटक प्रभावित। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बाढ़ का कहर, 46 की मौत, 100 से ज्यादा घायल, बुनियादी ढांचे से भारी नुकसान।

0: सरकार से बातचीत से पहले सीजीपी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने बड़ा बयान दिया है। दिपके ने कहा कि शिक्षा मंत्री रमेश प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार और सीजीपी के बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होने वाली है, उससे पहले दिपके ने यह बयान दिया है। अब से कुछ ही देर बाद यह बैठक शुरू होगी। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में जेपी नड्डा सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इधर सौरभ दास को आप देख सकते हैं, इससे पहले वाली वार्ता में भी सौरभ दास प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सीजेपी का दीपके का नहीं आना तय है। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सीजेपी का कहना है इससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर इस्तीफा नहीं होता है तो आंदोलन जारी रहेगा।
1: से कम कुछ मंजूरी नहीं है
2: तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है
1: प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दिपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है हमारा। जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं, और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा।
0: तो आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा, यह आंदोलन जारी रहेगा। अगर सोनम वांगचुक भी अपील करते हैं आंदोलन खत्म करने की, तब भी आंदोलन चलता रहेगा। और आज ही देशव्यापी आंदोलन का ऐलान सीजेपी कर चुकी है। अलग अलग राज्यों में यह आह्वान किया गया है। बीते 5 दिन से यह आंदोलन जारी है। लगातार जंतर मंतर पर सीजेपी धरने पर बैठी हुई है। उनका यह भी कहना है कि यह आंदोलन जब तक इस्तीफा नहीं आता तब तक खत्म नहीं होने वाला है। शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, कितनी देर में यह बैठक शुरू हो रही है?
3: क्लब में हूँ और यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा है उनका गाड़ियों का काफिला खड़ा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि विट्ठल हाउस जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से कनेक्टेड है वहाँ पर शुरू हो गई है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमने की गाड़ियां यहाँ पर देखी है, गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई है और विट्ठल हाउस और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है कनेक्टेड है। तो ये पता चला कि विट्ठल हाउस की तरफ से एंट्री हुई है और जेपी नड्डा के साथ सौरभ दास की मीटिंग और आशुतोष राम का भी बताया जा रहा है कि इसमें मौजूद है और मीटिंग शुरू हो गई है, ऐसी खबर हमको मिल रही है। हालांकि जो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, फोन कॉल ठीक से नहीं लग पा रहे हैं, तो जो हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेपी नड्डा का काफिला है और पता ये लग रहा है कि मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। दोनों ही पक्ष इसमें मौजूद है और ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है नेहा। लेकिन अहम दिन इसलिए क्योंकि सबकी नजर इस बैठक पर है, यहाँ से क्या तय होता है, क्या कंडीशन रखती है सीजेपी, क्या यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू होगा, स्टेन वे चल रहा है वो खत्म होता क्या होगा, तो कोई समाधान निकलता है या नहीं उस बैठक के बाद पता चलेगा और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं इस वक्त।
0: ठीक है, बने रहिए। इस बीच आपको बता दें कि आज ही ये बैठक होनी है, अब से कुछ ही देर बाद। लेकिन इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने उम्मीद जाहिर की कि इस बातचीत से कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा।
4: मैं खुश हूं कि कुछ तो बातचीत हो रही है और ये तफसील जो है मैं नहीं जानता, लेकिन उम्मीद रखता हूं कि कुछ रचनात्मक नतीजे पर हम निकलेंगे और नहीं निकलेंगे तो ये जो डेमोंस्ट्रेशन है ये जारी रहेगा।
0: और इस बीच आपको ये भी बता दें कि सरकार लगातार छात्रों और विपक्ष को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ना तो छात्र मान रहे हैं ना विपक्ष मान रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने फिर दोहराया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ भी कम मंजूर नहीं होगा।
5: अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है, जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो. सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी. और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स.
0: वहीं कल देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक के खिलाफ सरकार के कदमों की जानकारी देते हुए कठोर कानून बनाने का ऐलान किया है. लेकिन पीएम के इस आश्वासन के बावजूद विपक्ष अपने रुख पर कायम है,
6: क्योंकि केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार छात्रों के, बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित भी है, कार्यबद्ध भी है. किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें कठोरतम सजा होगी, ताकि कोई फिर ऐसा पेपर लीक जैसा अपराध ना कर सके.
7: जिन बातों को लेकर मांगी नहीं है देश में, उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं. और जो असली मांग लेकर जो आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर सारे विपक्षी पार्टी, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी जो है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, उन बातों का तो कहीं संज्ञान ही नहीं ले रहे प्रधानमंत्री जी. ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो. हमारी मांग है दिल्ली में पुलिस बर्बरता के पीछे जो जो अधिकारी और जो नेता जिम्मेदार हैं उनके पे कार्रवाई, और सरकार माफी मांगे. ये मांगे.
0: रुकिए, यहां शुरू से ब्रेक के लिए फोन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज.
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस. इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
10: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
4: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
5: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
6: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
7: Kuch to baat hai is dil mein.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri, Hind Bade Aaram Se,
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: Wait, lifestyle ke liye 10 alag pages kyu follow karna? Health, fitness, yoga, mental wellness, sab kuch ek hi jagah. Fit Tak. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade karo easy way. Watch only on Fit Tak YouTube.
3: हमारे पीछे आप देखें और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है
4: और टियर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है और यहाँ पे टियर गैस का इस्तेमाल पुलिस करती हुई नजर आ रही है।
3: पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तिथर बतर करने के लिए पुलिस की तरफ से टियर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
5: कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली। आज तक

0: पीछे 6 फुट वाली रखी, पीछे दूना लिया, आगे हैट पे लिखा था गुजर। बात करा दे दीदी तेवर से, मेरी निकले जान हुआ के तेवर से।
1: वाह, ये अलग लेवल पे भाई।
2: वाहन का क्या है? जब तक इस देश में एथेनॉल है।
1: पानी हल्का गर्म है, मिर्ची अपने मुंह पे डाल लिया, हल्दी वो पानी उन्हें गिरा के रो रहा हो कि एक लाइक दे दो, हम उसको स्वाइप कर मिले तो लात मारो कि क्या पागलपन कर रहा है भाई।

पेपर लीक पर पीएम के सख्त एक्शन वाले भरोसे के बाद नए कानून में हो सकते हैं कई बदलाव। सजा कड़ी करने के प्रावधान जुड़ेंगे। प्रारूप तय करने के लिए कैबिनेट की मीटिंग शुरू। राज्यसभा में 2 बजे पेश होगा वंदे मातरम बिल। पेपर लीक पर पीएम के ऐलान के बाद भी संसद में गतिरोध कायम। राहुल का आरोप, लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। बाद सोनम वांगचुक के अनशन का दी एंड। वीडियो संदेश में बोले जिम्मेदारी तय करने का सरकार ने दिया भरोसा। सीजेपी कर चुकी है देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान। सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच बातचीत शुरू। मीटिंग से पहले जेपी नड्डा की अमित शाह से मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रहा है सीजेपी। दिल्ली पुलिस की छुट्टियां रद्द। महाराष्ट्र और असम में बाढ़ बारिश का तांडव। वलसाड़, सूरत, नवसारी समेत कई शहर जलमग्न। 22,000 से ज्यादा लोगों के घर छूटे। आज भी रेड अलर्ट। असम में 7 लाख से ज्यादा प्रभावित।

नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सीजेपी और सरकार की बैठक शुरू हो गई है। सीजेपी की ओर से सौरभ राय इस एक और बड़ी बैठक। आपको बता दें कि पेपर लीक पर ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई, जिसमें कानून के प्रारूप में बदलाव पर यह अहम बैठक बताई जा रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, पेपर लीक पर चर्चा की जाएगी। इस बात के संकेत कई बार सरकार के अलग अलग लोगों ने दिए हैं कि ये बैठक जरूरी है, क्योंकि इसमें किस तरीके से और पारदर्शिता लाई जा सके, जो तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसको लेकर चर्चा संभव है। पुराने कानून को संशोधित कर सख्त किया जाएगा, इस पर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है और कानून के प्रावधानों पर भी चर्चा की जाएगी। अलग अलग मंत्री इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें कानून के प्रारूप में बदलाव पर चर्चा संभव है। ये शुरू हो चुकी है बैठक, जिसमें अहम तौर पर पेपर लीक पर चर्चा होगी। कानून को और कड़ा बनाने की तैयारी में है सरकार और इसके संकेत प्रधानमंत्री अपने संदेश के जरिए दे चुके हैं। कल देर रात उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने कहा कि और सख्त कानून लाए जाएंगे, जिससे और पारदर्शिता इन नियम और कानून में आ सके। कई कानून के ऐसे प्रारूप हैं जिसमें बदलाव किया जा सकता है। और दूसरी तरफ सरकार और सीजेपी की बैठक भी शुरू हो चुकी है। सीजेपी की ओर से सौरभ रॉय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पहले भी वो सरकार के साथ बातचीत कर चुके हैं। ये लगभग दूसरे राउंड की वार्ता आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू हो चुकी है। सीजेपी की बैठक इस वक्त भी जारी है, जिसमें अहम तौर पर प्रमुख तौर पर उनकी मांग है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को हटाना। हमारा आंदोलन अब आगे बढ़ चुका है।

0: की निगाहें इसी बैठक को लेकर के टिकी हुई हैं। जिस तरीके से जो दीपके की तरफ से ये बयान दिया गया बैठक से पहले, जब उनका प्रतिनिधिमंडल जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंच रहा था, उसी दौरान जंतर मंतर पर दीपके ने बयान दिया कि वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। तो इस तरीके की बात को लेकर के वो अड़े हुए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इस बैठक में जेपी नड्डा, उनके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं, और इस बैठक में किस तरीके से बातचीत होती है और क्या रुख लेकर के जो यहां प्रतिनिधिमंडल सीजेपी का आया है वो जंतर मंतर जाता है, उसके बाद किस तरीके का डिसीजन होता है। हालांकि सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, अभी जो कैबिनेट मीटिंग चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो सख्त कानून बनाने की बात प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है, उस सख्त कानून को लेकर के कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, इस पर बातचीत हो सकती है, और उसके बाद संसद के इसी दौरान जो सत्र चल रहा है उसमें इस बिल को लाया जा सकता है, और जिसमें सजा का प्राविधान जो है वो काफी कड़ा किया जा सकता है, जो पेपर लीक का मामला हुआ है। तो इस तरीके की बात सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सीजेपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दीपके, वो अभी भी अपनी बातों को लेकर के अड़े हुए हैं, तो अब समझौता होता है कि नहीं ये देखना होगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और अब आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश पर हमारी खास पेशकश।

0: और हम बात करेंगे बाढ़ और बारिश से जलमग्न देश की, क्योंकि देश के कई हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया और इस बार इतनी बारिश हो रही है कि सब कुछ ठप सा दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम तक एक जैसे हालात दिख रहे हैं। गुजरात में सबसे बुरे हालात है। अहमदाबाद, वलसाड, सूरत जैसे शहरों में जल प्रलय की स्थिति है। असम में 7 लाख लोगों के विस्थापित होने की खबर है। सबसे पहले बात गुजरात के वलसाड की करेंगे, जहां पिछले 36 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। आसमान से आई इस आफत की वजह से वलसाड पानी पानी हो चुका है। शहर के कई इलाकों में 3 फीट से अधिक पानी भर चुका है। कई जगहों पर गाड़ियां नाव की तरह बह रही हैं।
1: गुजरात में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। सूरत से वलसाड, नर्मदापुरम तक मूसलाधार बरसात हो रही है। गुजरात में इन दिनों बारिश नहीं, आफत बरस रही है। पिछले 24 घंटे की मूसलाधार बरसात में गुजरात के कई शहर पानी पानी हो गए हैं। घरों में पानी, बाजारों में पानी, सड़कों पर पानी, हाई राइज सोसाइटी में पानी, सिर्फ पानी और कुछ नहीं। ये तस्वीरें वलसाड की है। पुल के नीचे उफनती नदी को देखिए, ऊपर ट्रैफिक चल रहा है और नीचे मानो तबाही साथ साथ चल रही हो। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो पुल को ही बहा ले जाएगा। अब जरा आगे की तस्वीर देखिए, मकान डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरा है और कॉलोनी के अंदर मानो नदी बह रही हो। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, कुछ कारें पानी की तेज धार में बहने लगी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ये भी वलसाड है, गुजरात का वलसाड। गिन लीजिए इस हाई राइज इमारत की पार्किंग में कितनी गाड़ियां डूबी हैं। कॉलोनी में पानी कितना भरा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कॉलोनी के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। इसमें कई गाड़ियों की लाइट्स भी जल रही हैं। शायद इन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग भी हों, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हों। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से परेशान हैं। शहरों में जल निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों के घर बार सब डूब गए। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीर भी वलसाड की है। शहर के बीचों बीच मानो बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से बाजार भी डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते

0: हालात गंभीर बने हुए हैं। मधुबन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमनगंगा नदी में 2,59,734 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूबने लगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया।
1: मैं इस वक्त वलसाड़ जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहतर बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 48, मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ देख आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ है वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
0: अब जरा भरूच की तस्वीरें भी देखिए, जहाँ मूसलाधार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश नेत्रंग और अंकलेश्वर में हुई। भारी बारिश की वजह से भरूच शहर में कई जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। नेत्रंग में पानी की धार इतनी तेज थी कि मुख्य मार्ग के ऊपर से नदी बहने लगी। आज तक ब्यूरो।
2: अब आपको अहमदाबाद और सूरत की तस्वीर दिखाते हैं। अहमदाबाद में कल कुछ ही घंटे की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया। शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाके भी जलमग्न हो गए। सूरत में तीनों खाड़ियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं।

0: ये अहमदाबाद है, गुजरात का अहमदाबाद, जहाँ कुछ घंटे की बारिश ने सड़कों का ये हाल कर दिया। जहां तक नजर जाए देख लीजिए, सिर्फ पानी ही पानी के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ कोई नदी नहीं, यहाँ कोई तालाब नहीं, बल्कि यहाँ सड़क है और सड़क पर स्विमिंग पूल बन गया है। अहमदाबाद का अमली गांव सब कुछ डूबा हुआ सा नजर आ रहा है। लगातार बारिश हो रही है, लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर है। बारिश भी कोई हल्की फुल्की नहीं, बल्कि बहुत तेज, वो भी लगातार। पानी का प्रवाह देखिए, कैसे गाड़ियां उल्टी हुई हैं, बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़कों पर औंधी पड़ी हैं, बाइक्स तो पूरी डूबी हुई हैं।
1: मेरे आसपास में आप देख रहे हैं, कमर तक का पानी यहां पे भरा हुआ है, और मेरे पीछे की तरफ की आप कार भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से संपूर्ण जलमग्न है। कार के अलावा जो टू व्हीलर है, जो मोटरसाइकिल आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और ये अहमदाबाद का बोपल इलाके का आमली गाँव है। आमली गाँव के अंदर जो प्रवेश द्वार है उसकी भी मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ। कमर तक का पानी है, लोग कमर तक के पानी में से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों।
0: अहमदाबाद के आमली में एक तालाब बनवाया गया था ताकि बारिश के पानी का संरक्षण हो सके, लेकिन मानसून के दूसरे स्पेल में इतनी बारिश हुई तो तालाब की दीवार टूट गई है और उसमें गाड़ियां समा गई।
1: तस्वीरें आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो भी तस्वीर जिस तरफ भी आप अपनी नजर को दौड़ाएंगे, चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे ऑटो रिक्शा है, वो भी पूरी तरह से जलमग्न है। सामने की तरफ की मोटरसाइकिल की बात कर ले, चाहे कोई भी व्हीकल बात करे, ये बोपल में स्थित आमली की तस्वीरें हैं, और काफी चिंताजनक यहाँ के हालात यहाँ पे तस्वीरों में दिखाई भी पड़ रहे हैं।
0: अहमदाबाद का शहरी इलाका हो या फिर ग्रामीण, हर जगह एक जैसे हालात है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा रहा, लोगों के आशियाने डूब गए, अस्पताल भी पानी पानी हो गया।
1: अहमदाबाद पूरी तरह से लगभग जलमग्न है। फिलहाल हम एक ट्रैक्टर और ट्रॉली में बैठे हैं, लेकिन मैं मेरे पीछे की तरफ के गांव के हालात आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार की स्थिति है। जो बच्चे हैं वो यहाँ पे जरूर से मजा कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड की तस्वीर देखिए, प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, दरवाजा बंद कर दिया गया है, बच्चे अंदर खेल रहे हैं और पूरा आरोग्य केंद्र फिलहाल बंद है। बोपल आमली गांव के अंदर की तरफ जाने की ये तस्वीरें, बाहर आने का यही मार्ग है, लेकिन मार्ग पर कमर तक पानी है। और स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की, उनका कहना है कॉरपोरेशन हो चाहे यहाँ के विधायक, कोई यहाँ पे अभी तक देखने के लिए पहुंचा नहीं है, लेकिन यही स्थिति है। और लोगों का यही कहना है कि कई सालों से यहाँ पे इसी प्रकार की स्थिति होती है और लोग इसी परेशानियों के बीच रहने और जीने के लिए मजबूर भी है।
0: अब जरा अहमदाबाद शहर की तस्वीरें भी देखिए। यहाँ का मुख्य इलाका है मानिक बाग चौराहा, जहाँ मूसलाधार बारिश की वजह से कमर तक पानी भर गया था।
1: मेरे आसपास में आप देख रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई पड़ेगा। अहमदाबाद का ये मानिक बाग इलाका, मानिक बाग चौराहा, वहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी है, और जो भी सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले हुए लोग हैं, हर कोई इसी पानी में फंसा हुआ है, हर कोई परेशान है। तस्वीरों में आप देख लीजिए, लोगों के जो व्हीकल्स हैं बंद पड़ना शुरू हो चुके हैं, और लोग कितनी मशक्कत से अपने जो व्हीकल्स हैं उसे इस पानी में से निकाल कर आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: मानसून की भीषण दस्तक के साथ ही दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर है। बात अगर सूरत शहर की करें तो हर साल की तरह इस मानसून में भी शहर से गुजरने वाली खाड़ियां उफान मार रही हैं। खाड़ियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने के कारण बाढ़ जैसा पानी अब सीधे लोगों के रिहायशी इलाकों और घरों में घुस चुका है।
2: पिछले 24 घंटे से सूरत और ऊपरी सतह के इलाकों में हो रही बारिश के चलते खाड़ियों का जलस्तर बढ़ा है, तापी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, और इस वक्त हम खड़े हैं सूरत के पर्वतपाटिया गोड़द्रा को जोड़ने वाले रास्ते पर। यहां तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां आप देखेंगे तो सामान्य दिनों पर यहां पर वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं यहां पर महानगर पालिका का जो फायर विभाग है उसकी यहां पर बोट चलाई जा रही है, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी होती है, लोगों को रेस्क्यू किया जाए तो किया जा सकता है। पिछली बार हमने इस जगह पर देखा था कि पानी भरा था, उसके बीच में भी कई लोग फंसे हुए थे, ट्रैक्टर फंसे थे, वाहन फंसे थे, लेकिन इस बार जिस तरह से अलर्टनेस देखने की मिली है महानगर पालिका या पुलिस प्रशासन में, तो किसी भी व्हीकल को यहां पर नहीं रखा गया है जो कि यहां फंसा हो। तो एहतियात के तौर पर आप देखेंगे तो यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम को तैनात एडवांस में कर दिया गया है।
0: सूरत की दवार खाड़ी, मीठी खाड़ी और सीमाड़ा खाड़ी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। एहतियातन SDRF और NDRF की टीमें तैनात की गई है। अब तक 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है। अब जरा सावरकांठा की तस्वीरें भी देखिए। ये सावरकांठा का हिम्मत नगर है जो मॉनसून में हिम्मत हार चुका है। हिम्मत नगर का हाथमती ब्रिज स्विमिंग पूल बन गया है। नीचे नदी बह रही है और ऊपर पुल ही पूल जैसा दिख रहा है।
3: साबरकांठा में मॉनसून ने अचानक करवट ली है, आप देख सकते हैं। ये है साबरकांठा में हिम्मतनगर महसाना के बीच में आया हुआ पुल। ये ब्रिज पर पानी भरा हुआ है।
0: ये पुल साबरकांठा और महसाना को जोड़ता है। जब गुरुवार को बारिश शुरू हुई तो पुल पानी पानी हो गया। कई गाड़ियां खराब हो गई जिन्हें आसपास के लोगों ने धक्का लगाकर पुल पार कराया। सूरत से संजय सिंह राठौर और अहमदाबाद से अपील तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बात है महाराष्ट्र के पालघर की। यहां पर पिछले 24 घंटे मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश से जिंदगी ठप हो गई है। कल रात भर पालघर के प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को निकाला गया।
5: ये पालघर जिले की तस्वीरें हैं जहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। यहां सूर्या नदी उफान पर है। ये पूरा इलाके का एरियल व्यू है। देखिए कैसे बाढ़ के हालात हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लोगों से नदी पुल और जलभराव वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचने की अपील की गई है। पालघर के कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा असर दहनु तलासरी और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। अनेक सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। कई प्रमुख और ग्रामीण मार्गों पर पानी भर जाने से आवागमन ठप है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। दहनु के केटी नगर में हालात बेहद गंभीर है। यहां बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है और कई इमारतों के ग्राउंड फ्लोर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है। बाइक कार सब कुछ डूबी हुई नजर आ रही है। यही हाल मुंबई से सटे वसई विरार का भी है जहां लगातार दूसरे दिन बारिश तेज हुई। रात भर हुई बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए पालघर जिला कलेक्टर ने आज जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। ये ठाणे के भिवंडी की तस्वीरें हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। कामवारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नासिक में भी पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कल रात से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। वहीं नासिक आगरा हाईवे पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक बाधित हुआ है। एक शख्स यहां फंस भी गया था। गोदावरी नदी के किनारे ये व्यक्ति सुबह रामकुंड पर गांधी छतरी पर गया था, लेकिन तभी नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये शख्स वहीं फंसा रह गया, जिसे बाद में निकाला गया।
4: असम में बाढ़ ने तबाही मचाई। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। उनके अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है।
6: आसमानी आफत सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, मुसीबत पूर्वोत्तर में भी दस्तक दे चुकी है। असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घर जलमग्न हैं, सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं और लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को मजबूर हैं। कई परिवार अब भी बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। रास्ते बंद हैं, संपर्क टूट चुका है और खेत खलिहान भी पानी में डूब चुके हैं।
7: कोई सड़क और पुल डूबे हुए हैं, जिसमें उनके खेत और संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। आप देख रहे हैं, अभी हम हैं शिवसागर जिले के। सबसे ज्यादा असर हुआ है शिवसागर, सराइडो और जोरहाट में। देखने को कोई मिल रहा है। हजारों परिवार अपने घर छोड़कर राहत शिविर में राहत की।
4: इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर मोदी कैबिनेट की बैठक चल रही है जिसमें कठोर नकल माफिया कानून को लेकर चर्चा की जा रही है। सूत्रों की माने तो नकल माफिया पर 10 करोड़ जुर्माना और 10 साल जेल के प्रावधान पर यह चर्चा हो रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सख्त कानून बनाया जाएगा और नए कानून में 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पर अब कैबिनेट द्वारा विचार किया जा रहा है। जल्द कठोर कानून बनेगा नकल माफिया के खिलाफ। वक्त एक ब्रेक का उछला है, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
12: You hear it once and remember everything.
13: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
12: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
14: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
15: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
16: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
17: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
18: कुछ तो बात है इस दिल में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: Hey, it's your ceiling vent, so I'm dripping. Could be the rain, could be the upstairs bathroom. Yikes. You could hire the guy your neighbor recommended, but I'm pretty sure that's just his cousin. Do we know if he's licensed, or does he just own a ladder?
1: Listen to your home. Go with Thumbtack. Upload a photo or voice note, and we'll diagnose your project and match you with the right pro for the job. Thumbtack. We know homes. Hire the right pro today.
2: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
3: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
2: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
4: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
5: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क.
6: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना.
7: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933. बरसों से सरसों.
8: कुछ तो बात है इस दिल में.
9: वांगचुक ने क्यों तोड़ा अनशन? 26 दिन बाद वांगचुक क्यों तैयार? अनशन के द एंड की इनसाइड स्टोरी. जब सोनम वांगचुक को पुलिस जंतर मंतर से ले गई, वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग में भर्ती कराया गया. गिरती सेहत का हवाला देकर उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन परिजनों ने सवाल उठाए, सरकार की कोशिशों पर आशंका जताई. मामला कोर्ट तक पहुंचा. वांगचुक सफदरजंग से मेदांता शिफ्ट किए गए और 24 जुलाई की तारीख आते आते परिस्थिति बदल गई.
10: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए.
9: सहज सवाल उठता है कि आखिर ये तब्दीली कैसे आई? सरकार ने वांगचुक को अनशन तोड़ने के लिए कैसे तैयार किया? इसके पीछे की एक्सक्लूसिव कहानी जान लीजिए. 23 जुलाई को अमित शाह, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बैठक हुई. बैठक 4 घंटे चली. वांगचुक को दिए जाने वाले प्रस्ताव फाइनल हुए. पहले वांगचुक की पत्नी से बात की गई, उन्हें सरकार का प्लान बताया गया. इसके बाद मेदांता अस्पताल में वांगचुक से नड्डा, जितेंद्र सिंह मिले. वांगचुक को बताया गया कि सरकार नया कानून बनाएगी. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नया कानून बनाएगा. वांगचुक को यह भी बताया गया कि नए बिल पर आज ही कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी. अगले हफ्ते संसद में नया बिल पेश कर दिया जाएगा. वांगचुक को सरकार का प्रस्ताव सही लगा और वो अनशन तोड़ने पर राजी हो गए. लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी रह गया है कि आखिर वांगचुक अब आगे क्या करेंगे? सूत्रों की माने तो इस बारे में भी वांगचुक ने अपना इरादा साफ कर दिया है. वांगचुक ने सरकार को बता दिया है कि अनशन तोड़ने के बाद वो लद्दाख चले जाएंगे. लद्दाख लौटने से पहले वो छात्रों से बात करेंगे. छात्रों को बताएंगे कि सरकार के आश्वासन पर भरोसा करें. ये भी बताएंगे कि असामाजिक तत्वों से प्रभावित वो ना हो. तो देखने वाली बात यह है कि अब वाकई में सोनम वांगचुक की क्या भूमिका रहती है. आज तक ब्यूरो.
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

पेपर लीक पर पीएम के सख्त एक्शन वाले भरोसे के बाद नए कानून में हो सकते हैं कई बदलाव। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का हो सकता है प्रावधान। कैबिनेट में हो रही है चर्चा। बीजेपी और केंद्र सरकार के बीच आधे घंटे से चल रही है बातचीत। मीटिंग से पहले जेपी नड्डा की अमित शाह से हुई मुलाकात। नई दिल्ली स्टेशन समेत 18 मेट्रो स्टेशन बंद। दिल्ली पुलिस की छुट्टियां रद्द। पेपर लीक पर संसद में कायम गतिरोध के बीच राज्यसभा में पेश होने वाला है वंदे मातरम बिल। थोड़ी देर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रखेंगे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।

संसद से सड़क तक विपक्ष का भारी हंगामा, राहुल का आरोप, सदन में बोलने से रोका गया, प्रधान के इस्तीफे तक नहीं चलने देंगे पार्लियामेंट, सोमवार तक लोकसभा स्थगित, सरकार बोली सख्त कानूनों पर चर्चा में शामिल हो विपक्ष। और गुजरात, महाराष्ट्र और असम में बाढ़, बारिश का तांडव, वलसाड, सूरत, नवसारी समेत कई शहर जलमग्न, 22,000 से ज्यादा लोगों के छूटे घर, आज भी रेड अलर्ट, असम में 7,00,000 से ज्यादा प्रभावित,

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज गए हैं, न्यूज़ रूम लाइव में एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर है। जमकर हंगामा इस वक्त हो रहा है संसद में, सदन में। पिछले कुछ दिनों से हंगामा लगातार जारी है। क्या क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो विपक्ष वर्सेस सरकार, लेकिन सीधे आपके लिए चलते हैं। राज्यसभा वंदे मातरम बिल पेश हो रहा है।
1: CPM Dr. John Britas, number 2 Sriman A. Rahim, and number 3 Dr. V. Sivadasan, and also honorable member Sriman Santosh Kumar P. from CPI opposing the introduction of the prevention of insults to honor amendment bill 2026. As per rule 6-7 and practices in this regard, the mover of the motion for introduction of the bill and those who are opposing are permitted to state their grounds very briefly. Then the chair has no option but to put the question for the decision of the house. Accordingly, I will allow Dr. John Britas, leader of CPM, and then Sriman Santosh Kumar P. from CPI, to speak very briefly, 1 minute, followed by minister who is introducing the bill. Additionally, the introduction of the bill can be opposed on the grounds of legislative competence or its accountability, its constitutionality. We should keep in mind that the parent bill of this amendment bill, prevention of insults to honor, to national honor bill, has already been cleared by this house in 1971. In 1971, this parent bill has been already cleared. I again request the honorable members to speak very briefly, as we will have full discussion at the consideration of a stage of the at the consideration stage of the bill. Dr. John Britas, for 1 minute.
2: Sir, these are my objection at the introductory stage. Parliament cannot rewrite a constitutional supplement to ordinary legislation. The bill entirely relies upon Dr. Rajendra Prasad's statement, but it suppresses the most important sentences. It suppresses the crucial constitutional context in which the statement was made. Therefore, not a constitutional provision, not a resolution, not even an assembly decision. Parliament cannot elevate a presidential statement into constitutional test 76 years later.
1: Thank you.
2: Sir, 30 seconds. It will, in fact, dishonor the decision of the Constitution, Constitutional Assembly, and framers of the Constitution. The Constituent Assembly, after nearly 3 years of exhaustive deliberation, consciously refrain from placing national song and national anthem on the same constitutional footing. Had the former framers intended both to enjoy identical legal consequences, they would have expressed.
1: Thank you.
2: So provided. So my contention is that they cannot manufacture patriotism and nationalism through a piece of legislation. Their intention is to polarize the society.
1: Thank you.
2: They should
1: ever know. No, it's over. Sir, you have taken more time. Sriman Santosh Kumar P. Sriman Santosh Kumar P.
3: Sir, the intention is very clear at this point of time. This is to distract the public attention from the ongoing student agitation demanding Mr. Dharmendra Pradhan's resignation.
1: Please.
3: So the intention is very clear.
1: Sir,
3: the core point is that Vande Mataram should unite Indians, it should not divide us. And the leaders of India's freedom movement, including Rabindranath Tagore, had understood this. That is why it was confined to two stanzas only.
1: Thank
3: and
1: you.
3: These people who betrayed India's freedom movement.
0: और देखिए, अब आपको खबरों के बारे में बताते हैं। दो बड़ी बैठक आज चल रही है और उन दो बड़ी बैठक पर पूरे देश भर की नजर इस वक्त टिकी हुई है। एक तरफ है सीजेपी और सरकार, जहां पर जेपी नड्डा हैं, जितेंद्र सिंह हैं और सीजेपी के जो उनको लीड कर रहे हैं वो हैं। दूसरी कैबिनेट की बैठक चल रही है, सख्त कानून पर मोहर लगने वाली है। ऐसी बात यहां पर कही जा रही है कि अगर कोई पेपर लीक करेगा साथ पुश्तों उसकी कांप जाएंगी। ऐसा सरकार का कहना है कि हम ऐसा सख्त कानून यहां पर बनाने वाले हैं। तो जो हंगामा पिछले काफी वक्त से चल रहा है, इन दो बैठकों पर सबकी नजर इस वक्त टिकी हुई है। आधा घंटा इससे ज्यादा वक्त हो चुका है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक तरफ सीजेपी, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के नुमाइंदे, केंद्रीय मंत्री बात कर रहे हैं, एक समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक, सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक जारी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में यह बैठक है और आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो चला है और लोगों को तो उम्मीद यही है कि एक सार्थक परिणाम निकल के सामने आए और एक समाधान निकल कर सामने आए, ये आम जनता चाहती है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से ये गतिरोध की स्थिति बनी आ रही है। जंतर मंतर पर जो हुआ पिछले कुछ दिनों में ये सभी ने देखा, तो ऐसे में बहुत सी उम्मीदें हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में जो ये बैठक चल रही है। लेकिन अभिजीत दीप के जो सीजेपी को लीड कर रहे हैं, चलिए उनकी बात सुनाएंगे। लेकिन एक बार फिर आपको राज्यसभा लिए चलते हैं।
1: दो दिन फेवर विल पी से आई, दो जगह विल पी से नो। आई थिंक द आइज हैबिट श्री नित्यानंद राय
4: माननीय महोदय, मैं विधेयक प्रस्थापित करता हूँ।
1: यू इंट्रोड्यूस द बिल। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी जगह बैठे बहस चलने दें। प्लीज द हाउस स्टैंड्स एडजर्न टू मीट एट 11 AM ऑन मंडे द 27 जुलाई 2026।
0: तो देखिए, ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि राज्यसभा कल तक के लिए, सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सोमवार को अब राज्यसभा की कार्रवाई होगी। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सोमवार तक की कर दिया गया स्थगित। अब हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, वंदे मातरम को लेकर जो अधिनियम यहां पर लाया गया, उसको लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ?
5: देखिए, राज्यसभा के अंदर जो है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है। अब सोमवार को जो है इसको पासिंग एंड कंसिडरेशन के लिए जो है उस सदन के अंदर रखा जाएगा और जब पूरी चर्चा हो जाएगी, इस बिल के लिए 4 घंटे का समय जो है एलोकेट किया गया है। अगर सदन के अंदर हंगामा नहीं होगा तो इस पूरे बिल पर चर्चा के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस पूरी चर्चा का जो जवाब देंगे और उसके बाद बिल को पास करने के लिए सदन के सामने रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है सदन के अंदर, उसके बाद ये साफ है कि सोमवार को भी जो है वो सदन में इसी तरीके से जो है हंगामा चलता रहेगा जब तक ये तय नहीं हो जाएगा कि नीट पेपर लीक मामले पर सदन लोकसभा और राज्यसभा में कब चर्चा होगी। तो इसके लिए सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर ये तय किया जाएगा कि कितने घंटे की चर्चा होगी, किस दिन ये चर्चा होगी और किस नियम के तहत चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी चीज ये है, आज कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक के अंदर जो है वो प्राइवेट एग्जामिनेशन बिल जो है उसमें कई संशोधन आएंगे, जिसमें माफियाओं के खिलाफ जो है वो एक बड़ा संशोधन लाया जा रहा है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास कई अधिकार होंगे, लीगल बैकिंग होगी, जिसमें 3 महीने के अंदर ही फास्ट ट्रैक कोर्ट को ये इंश्योर करना होगा कि उसकी जांच भी हो जाए, उस पर फैसला भी आ जाए। उसके साथ साथ जो कड़ा प्रोविजन है उसमें जो है 10 साल की सजा का प्रोविजन है माफियाओं के खिलाफ और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रोविजन रखा गया है।
0: हिमांशु, एक बात बताइए, क्योंकि हमने ये पहले देखा है, प्रियंका गांधी की तरफ से बयान आया है कि पिछले काफी लंबे वक्त से वंदे मातरम पर सदन में बात हुई, अब सरकार चाहती है फिर से इस पर बात हो, नीट पेपर लीक पर बात नहीं करना चाहते। तो सोमवार को जो गतिरोध है, क्या सोमवार तक आपको लगता है कि चीजें बहुत कुछ सुधर सकती है और इसी वंदे मातरम पर चर्चा हो सकती है?
5: कि ऐसा कई बार होता है संसद के अंदर, जब इस तरीके का गतिरोध होता है और बिल लाया जाता है तो उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये भी तय किया जाता है कि इस बिल को सोमवार लेना है, मंगलवार को इसको सदन में जो है पास करने के लिए रखना है या फिर चर्चा पहले करनी है। तो वो सारी चीजें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक बैक चैनल के थ्रू जो है वो बातचीत होती है।
0: उम्मीद है सोमवार को होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच ये भी आपको बता दें, आज के दिन दो बड़ी बैठक और उन दो बड़ी बैठक पर सब आपकी नजर है? देखिए फिर से आपको बता दें, एक तरफ क्या सीजेपी और दूसरी तरफ सरकार, ये आमने सामने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, एक समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी बैठक कैबिनेट की बैठक जहां पर सख्त कानून पर मोहर लगाए जाने की बात की जा रही है। सख्त कानून किस पर? कि अगर पेपर लीक होता है तो उसके बाद सख्त कानून वहां पर बनाया जाए और पेपर लीक में जो भी शामिल है ऊपर से लेकर नीचे तक उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो वहीं ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, और बड़ी खबर जो अभी आ रही है सख्त नकल कानून को लेकर मोदी कैबिनेट की बैठक जारी और नए कानून में 10 करोड़ जुर्माना 10 साल तक की जेल ये प्रावधान हो सकता है, जो सूत्रों से खबर आ रही है। नकल माफिया के खिलाफ कठोर कानून बनेगा जो अभी जानकारी मिल पा रही है, और सरकार बहुत स्पष्ट कर चुकी है कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, सख्त कानून बनाएंगे। तो ऐसे में ये खबर आ रही है कि नए कानून में पेपर लीक माफिया पर 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना लग सकता है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने में फैसला सुनाएगा। देखिए कई राज्यों में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑलरेडी बन भी चुका है, दिल्ली महाराष्ट्र की बात की जा रही है, महाराष्ट्र में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं। तो अब सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट है, कल पीएम मोदी की तरफ से कहा गया था, किरण रिजिजू की तरफ से भी बयान सामने आया था, अब कैबिनेट की बैठक भी चल रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून लाने जा रही है और आज की बैठक में बिल के प्रावधानों पर मोहर लग सकती है, यानी ठप्पा लग सकता है। अगर पेपर लीक में कोई शामिल है, माफिया शामिल है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो 10 करोड़ जुर्माना 10 साल की जेल। तो इस एक बैठक के बारे में हमने बताया, लेकिन जो दूसरी बैठक जिस पर सभी की नजर है वो कौन सी बैठक है? एक तरफ सीजेपी और दूसरी तरफ बीजेपी यानी सरकार, और यहां पर उम्मीद की जा रही है कि एक समाधान निकाला जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में यह बैठक चल रही है, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले दीप के क्या कह रहे थे वो सुनते हैं।
6: इस्तीफे से कम कुछ मंजूरी नहीं है,
7: तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम मानसुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है
6: प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीप के या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है हमारा। जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं, और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा।
0: तो देखिए अभिजीत दीप के अपना मन बना चुके हैं, और जो बैठक इस वक्त चल रही है उस बैठक पर हमारे सहयोगी जितेंद्र नजर बनाए हुए। जितेंद्र ये बताइए, देशवासियों को उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में जो बैठक चल रही है उससे एक स्थायी समाधान निकल आए, क्या उम्मीद जताई जा रही है?
8: देखिए हिमांशु, करीब 45 मिनट हो चुका है इस बैठक का, और इस बैठक में केंद्र सरकार के 2 महत्वपूर्ण मंत्री और इसके साथ साथ जो सीजेपी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल आया उसके साथ ही बैठक चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक से पहले ही अभिजीत दीपके का जो बयान आया है उस बयान से वो साफ जाहिर हो रहा है कि वो लोग चाहते क्या है। दरअसल उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो लोग जब तक केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तब तक वो लोग इससे कम में मानने वाले नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो लगातार इस बात को लेकर के पेपर लीक को लेकर के सवाल उनके द्वारा खड़ा किया गया कि सख्त कानून नहीं है, केंद्र सरकार कैबिनेट बैठक हो रही है और वो ये चाह रहे हैं कि एक सख्त कानून बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाए और कैबिनेट से आज उस पर जो है एक तरीके का अनुमोदन भी मिल सकता है। तो इस तरीके की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि अभिजीत दीपके का जो बयान आया है, इस बयान के बाद उनका जो प्रतिनिधि मंडल आया है वो किस तरीके से यहाँ पर मिलता है और उस समाधान की ओर किस तरीके का रास्ता जाता है, क्योंकि जंतर मंतर पर अभी भी जो है वो युवा वहां पर जुटे हुए हैं, सीजेपी से जुड़े हुए लोग वो भी जुटे हुए हैं, तो स्थिति किस तरीके की बनती है ये देखना होगा, क्योंकि अभी जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ देर बाद मीडिया को भी संबोधन किया जाएगा और जानकारी दी जाएगी कि इस बैठक के बाद नतीजा क्या निकला, लेकिन जिस तरीके के बयान लगातार आ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अभी भी सीजेपी के जो रुख हैं वो कड़क बने हुए हैं।
0: 45 मिनट हो चुके हैं, कितनी लंबी और जा सकती है अभी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज तक पर आपको सारी जानकारी हम देंगे। मानसू मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहा था हमने आपसे 2 बड़ी बैठकें कैबिनेट की बैठक हिमांशु मिश्रा की, उस पर नजर लगातार बनी हुई है। हिमांशु आपके पास और क्या जानकारी आ पा रही है उस बैठक से जुड़ी हुई जहां पर पेपर लीक को लेकर और सख्त कानून बनाने पर मोहर लग रही है?
5: देखिए बिल्कुल, पेपर लीक से को लेकर जो कानून है उसको और ज्यादा सख्त बनाने के लिए जो है कुछ संशोधन उस कानून में लाए गए हैं, जिनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि माफियाओं के खिलाफ जो है वो 10 साल की सजा का प्रावधान रखा जाएगा, उसके साथ साथ जो है 10 करोड़ रुपए का जुर्माने की बात है, और साथ ही में 3 महीने के अंदर जो है फास्टैग कोर्ट के अंदर आपको इन्वेस्टिगेट भी करना है और उसके साथ साथ जो है सजा यानी फैसला भी सुनाना होगा। तो एक तरीके से और कड़ा कानून जो है वो बनाया जा रहा है पेपर लीक मामले को लेकर, चाहे वो नीट का मामला हो या किसी भी तरीके का पेपर लीक का मामला हो, उसमें सरकार किसी भी तरीके से ये चाहती है कि इतनी कड़ी सजा हो जिससे जो भी अपराधी है वो इस तरीके के से जो है पेपर लीक या कानून तोड़ने का काम जो है वो भविष्य में ना करे।
0: बात बताइए, जो कैबिनेट की बैठक चल रही है तो उनकी नजर सीजेपी और बीजेपी की सरकार की बैठक को लेकर भी होगी कि वहां पर बातचीत में क्या कुछ होता है सीजेपी की तरफ से और क्या शर्तें यहां पर रखी जाती हैं, वहां पर कुछ समाधान निकल पाता है कि नहीं निकल पाता, तो उस बैठक का असर इस कैबिनेट बैठक में कुछ हो सकता है?
5: देखिए, उस बैठक का कैबिनेट की बैठक के अंदर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो भी पेपर लीक मामले के ऊपर सरकार को फैसला लेना है, जो भी पब्लिक एग्जाम अधिनियम है उसके अंदर जो नए संशोधन होने हैं उसको लेकर जो है वो चर्चा कैबिनेट में होगी। ये जो बैठक चल रही है इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होगी, अगर कुछ हुआ तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो कहा जा सकता है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी तरीके की चर्चा जो है वो जो बैठक इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर सीजेपी के प्रोटेस्टर्स के प्रतिनिधियों और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच में चल रही है उसको लेकर किसी भी तरीके की चर्चा जो है वो कैबिनेट में हो।
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, ये तो 2 बैठकें चल रही हैं, सबकी नजर इन बैठकों पर है, लेकिन ये बात भी आज देखी गई कि संसद में जमकर हंगामा, गजब हंगामा इस वक्त चला। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और मानसून सत्र का 5वां दिन था, लेकिन जैसा पहला दूसरा तीसरा चौथा रहा वैसा ही 5वां रहा, यानी जहां कार्रवाई शुरू होती है हंगामा होता है फिर स्थगित कर दिया जाता है। अब सोमवार तक के लिए बात टल गई है, विपक्ष कह रहा है इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जब भी कोई बात आती है पीछे से एक आवाज आती है इस्तीफा, और इस्तीफा किसका? धर्मेंद्र प्रधान का। अब सरकार ये कह रही है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, और विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार हमें बोलने नहीं दे रही, राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं।
9: अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है, तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है, जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी, और थर्ड दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट।
10: राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग, मैं फिर से आंदोलन करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे, आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया कल भी, आज सुबह में केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपी हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया, और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोना मांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है, तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, ये आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं।
11: उन्होंने आग्रह किया है कि आज इस जिस नीट की परीक्षा को लेकर के उस पर चर्चा आप चाहते हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही और आपने कैबिनेट की बात कही, तो उनका आग्रह कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, मेरी बात सुन ले, चर्चा के लिए तैयार है, तो आप उस चर्चा के लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से अगर चर्चा करने की बात है तो मैं आप सबसे आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू काइंडली टेक योर सीट। मैं आप अपनी सीट पे जाए, मैं राहुल जी को अलाउ करूँगा, आप काइंडली क्लियर द पैसेज, आप क्लियर करें। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आ गया कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और चाहे कानून लाने की बात हो, 13 लोग जेल।
0: ये देखिए, इस वक्त हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए कि एक तरफ जितेंद्र सिंह, दूसरी तरफ जेपी नड्डा और यहां पर सौरभ दास आपको दिखाई देंगे, यानी 2-2 बैठक चल रही है। सीजेपी की तरफ से दो प्रतिनिधि और सरकार की तरफ से जेपी नड्डा हैं और जितेंद्र सिंह हैं। और आप देखिए कि डायरी में नोट भी किया जा रहा है, मतलब जो सीजेपी की तरफ से मांग है वो स्पष्ट तरीके से रखी गई है और यहां पर बातचीत चल रही है। और इस बैठक पर देश भर की नजर है, जंतर मंतर पर जो छात्र इस वक्त जुटे हुए हैं, कई दिनों से जुटे हुए हैं, उन सबकी नजर इस वक्त इस बैठक पर है, जहां पर ये चार लोग तय कर रहे हैं कि जो आंदोलन है वो जारी रहेगा या फिर शांति समझौता हो सकता है, किसी मुद्दे पर बात बन सकती है। क्योंकि सीजेपी की तरफ से तो बहुत स्पष्ट कह दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से तो कम कुछ मंजूर ही नहीं है, अब यहां पर बातचीत की कोशिश की जा रही है, फुल एक्शन, सरकार की दो बड़ी मीटिंग और उन मीटिंगों पर चर्चा की जा रही है इस वक्त। इंस्टीट्यूशन क्लब के वीपी हाउस की ये जो तस्वीर है, ये देखिए बहुत खास तस्वीर है, क्योंकि इस बैठक पर ये चार लोग क्या फैसला लेते हैं, चार लोगों में क्या सहमति बनती है या नहीं बनती है, इस पर देश की नजर है। जितेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, जितेंद्र इन तस्वीरों में दिख रहा है कि सीजेपी की तरफ से जो डेलीगेट है, सीजेपी की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी मांग दे दी है।
8: बिल्कुल, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि लगातार ये लोग ये कह रहे हैं कि उनकी मांगों को लेकर के एक बार सरकार का जो प्रतिनिधि मंडल है, यानी कि सरकार के जो दो मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं साफ दिखाई पड़ रहे हैं, उनके सामने वो अपनी पूरी मांग रखना चाहते हैं। सरकार की तरफ से जिस तरीके से इनको बुलाया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, लगभग 45 मिनट
0: मीटिंग खत्म हो गई है और जो भी मांग थी वो यहाँ पर दे दी गई है सरकार के जो मंत्री थे उनको। अब आगे बताइए और क्या जानकारी आपके पास आ रही है।
8: मीटिंग आप
0: जी
8: रहे हैं, इसमें सरकार के दो बड़े मंत्री जो कि जेपी नड्डा, इसके साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, उनको ये पूरा कार्यभार सौंपा गया है और लगातार वो चाहे सोनम वांगचुक से बातचीत करने की हो या फिर जो ये पूरा सीजेपी का डेलीगेशन मिलने के लिए आया था, दो लोग इसमें शामिल थे, उन लोगों से बातचीत करने का पूरा जिम्मा सरकार के इन दो मंत्रियों को दिया गया। और लग ये रहा है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने कल करीब 12:30 बजे के आसपास उन्होंने अपना अनशन तोड़ा था और उसके बाद उन्होंने जो बातें रखी थी लिखित तौर पर, उन्होंने जो बातें सरकार की तरफ से उनको चाहिए थी वो सरकार की तरफ से दिया गया। अब इन्होंने किस तरीके से अपनी मांगे रखी हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के देखना होगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद यहां पर एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनके द्वारा किया जाएगा, जिसमें तमाम जानकारियां दी जाएंगी कि किस तरीके से सरकार ने जो इनको पूरा रास्ता दिया और उसके बाद इन्होंने जो जो अपनी मांगे रखी उसको लेकर के किस तरीके का कदम आगे सरकार के द्वारा बढ़ाया जाएगा।
0: यही सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई समाधान निकल सके। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
12: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
15: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
3: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
4: वाह वाह वाह वाह।
3: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
5: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
6: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
7: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

पेपर लीक पर पीएम के सख्त एक्शन वाले भरोसे के बाद नए कानून में हो सकते हैं कई बदलाव। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का हो सकता है प्रावधान। कैबिनेट में हो रही है चर्चा। सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच बातचीत खत्म। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ हुई बैठक। सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली समेत 18 मेट्रो स्टेशन बंद। दिल्ली पुलिस की छुट्टियां रद्द। पेपर लीक पर संसद में कायम गतिरोध के बीच राज्यसभा में पेश हुआ वंदे मातरम बिल। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रखा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव। सोमवार को चर्चा। संसद से सड़क तक विपक्ष का भारी हंगामा। राहुल का आरोप सदन में बोलने से रोका गया। प्रधान के इस्तीफे तक नहीं चलने देंगे पार्लियामेंट। सोमवार तक लोकसभा स्थगित। सरकार बोली सख्त कानूनों पर चर्चा में शामिल हो विपक्ष। और गुजरात महाराष्ट्र और असम में बाढ़ बारिश का तांडव। वलसाड़ सूरत नवसारी समेत कई शहर हुए जलमग्न। 22,000 से ज्यादा लोगों के घर छूटे। आज भी रेड अलर्ट। असम में 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित।

0: देखिए, एक तरफ छात्र, दूसरी तरफ सरकार, जमकर हंगामा। आप सब लोग देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कैसे हंगामा इस वक्त चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हुआ, संसद में क्या हुआ, छात्रों को लेकर कैसे गतिरोध बना हुआ, ये सबने देखा। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आई, और वो अच्छी खबर ये कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा दिलाते हैं कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा, संसद में बातचीत भी की जाएगी विपक्ष को साथ में लेकर, अनशन खत्म हो गया है। लेकिन क्या बातचीत से हल निकलेगा, क्योंकि आज बहुत अहम दिन था। सीजेपी की ओर से सौरभ दास और रंका ये मिलते हैं जेपी नड्डा से और जितेंद्र सिंह से, एक बैठक होती है और उस बैठक पर देश भर की नजर होती है कि आज बैठक में क्या हुआ, क्या कोई समाधान आज इस बैठक में निकल पाया कि नहीं निकल पाया। करीब 50 मिनट से एक घंटे तक ये बैठक चलती है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में। और जब बैठक खत्म हुई उस वक्त ये देखिए, ये एक चिट्ठी सौंपी गई, और ये चिट्ठी सौंपी गई है सौरभ दास और रंका की तरफ से, जो कि सीजेपी के डेलीगेशन थे। जितेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बैठक हो चुकी है, करीब एक घंटे की ये बैठक चली, लेकिन इस बैठक में हुआ क्या, कब तक ये सबके सामने आ जाएगा?
1: देखिए हिमांशु, आपसे थोड़ी देर बाद कुछ चीजें निकल करके सामने आएंगी कि किस तरीके से बैठक में जो सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल गया था सरकार के दोनों मंत्रियों से बातचीत करने के लिए, उन्होंने अपनी क्या क्या मांगे रखी हैं। हालांकि अगर पहले की बात करें तो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। इसके साथ ही दीपके ने जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है, उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन चल रहा है, जो प्रदर्शन उनका हो रहा है जंतर मंतर पर, वो पूरे देशव्यापी हो चुका है और अभी भी ये जारी रहेगा, वो इस प्रदर्शन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन ये देखना होगा कि जो उन्होंने अपना पत्र दिया है उसमें

0: मंत्री जेपी नड्डा की मुलाकात जो प्रतिनिधि मंडल है उससे पहले भी हो चुकी है। ये दूसरे दौर की जो बैठक करीब एक घंटे तक चली और काफी लंबी बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब
1: चलिए इंतजार कर लेते हैं कि कितनी देर तक ये पता चलता है कि इस बैठक से क्या हुआ, क्या कोई स्थायी समाधान निकला है नहीं निकला। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सार्वजनिक परीक्षा कानून में संशोधन को मंजूरी मिल गई है, यानी अगर पेपर लीक में कोई शामिल पाया जाता है तो कड़ी सजा उसको दी जाएगी। सार्वजनिक परीक्षा कानून में संशोधन को मंजूरी मिली है, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना। ये बात कही गई थी कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा, पेपर लीक संशोधन कानून को मंजूरी दी गई है, कैबिनेट में मंजूरी मिली है। और ये देखिए कैबिनेट की वो बैठक की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब लोगों के मन में ये सवाल है, सरकार ने कहा था कि हम और सख्ती दिखाएंगे, पेपर लीक कानून संशोधन करेंगे और वो हो गया, लेकिन इस सख्ती के बाद क्या कोई समाधान निकल पाएगा? छात्रों के अंदर जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, क्या वो गुस्सा शांत हो पाएगा और सरकार उसमें कामयाब हो पाएगी? एक रिपोर्ट आपके सामने।
2: छात्र जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं दिख रहे। उधर संसद में विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। दोनों जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन का एक ही मुद्दा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार सीजेपी और प्रदर्शनकारी छात्रों से संवाद कर शांति का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इस बीच सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए अब कड़े कानून लाने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक को लेकर सरकार पहले जो बिल लाई थी उसी में संशोधन कर प्रावधानों को और भी ज्यादा कड़ा करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित नए संशोधन के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले को 5 से 10 साल की कैद की सजा हो सकती है, जबकि पुराने बिल में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था। बिल में प्रावधान ये भी है कि अगर पेपर लीक में कोचिंग सेंटर या कोचिंग सेंटर से जुड़ा शिक्षक शामिल पाया गया तो कोचिंग को भी बंद किया जा सकता है। साथ ही पेपर लीक के मामले के तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं।
3: फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: उधर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि पेपर लीक पर सरकार की ओर से सख्त कदम उठाया गया और कड़ा कानून लाया गया तो कांग्रेस भी चर्चा में शामिल हो सकती है। हालांकि पेपर लीक को लेकर सरकार को घेर रहा विपक्ष अपने तेवर कम करने को तैयार नहीं है। संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान के इस शोर को गौर से सुनिए। विपक्ष की पूरी ताकत जिस एक मांग पर टिक गई है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हर एक प्रदर्शन, हर एक धरने के बाद राहुल गांधी एक ही सवाल उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा।
4: मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो।
2: एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात कही थी और देर रात वीडियो जारी कर कड़े एक्शन का भरोसा दिया।
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए।

0: गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
1: लेकिन इस भरोसे के बीच ना ही विपक्ष का हंगामा थम रहा है, ना ही छात्रों का प्रदर्शन खत्म होता दिख रहा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल होगा कि सरकार के नए बिल में कड़े प्रावधान का विपक्ष और प्रदर्शनकारी छात्रों पर क्या असर होगा? क्या नए बिल से हंगामा और विरोध प्रदर्शन शांत होगा? आज तक ब्यूरो।
2: प्रयास अब बहुत सारे किए जा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। सरकार की तरफ से बातचीत की बात कही गई है, आंदोलन को लेकर सख्त कानून की बात कही गई है, और ये भी पेपर लीक में अगर माफिया शामिल होते हैं या फिर कहीं पर भी पेपर लीक होता है तो 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ के प्रावधान की बात यहां पर की गई है। हालांकि कानून पहले भी था, बातचीत का रास्ता अपनाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ गए हैं। यानी अब ये देखा जा रहा है कि कैसे भी इन छात्रों से बात की जाए। लेकिन अब तक आंदोलन का क्या स्वरूप रहा, वो एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं।
3: नीट पेपर लीक पर सवाल, जंतर मंतर समेत कई शहरों में छात्रों के उबाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और संसद से लेकर सड़क तक बवाल के बीच जब देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से ये तस्वीरें सामने आई तो इस पूरे आंदोलन के बीच अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम माना गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से मुलाकात के लिए पहुंचे, उनकी मांगों पर चर्चा की, पेपर लीक मामले में एक्शन का भरोसा दिया, जिसके बाद वांगचुक ने बीते 26 दिनों से जारी अपना अनशन खत्म कर दिया। साथ ही सरकार के इस कदम को जवाबदेही की पहली शुरुआत बता दिया। इस अनशन के टूटते ही आधी रात को ही पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया। पीएम ने वांगचुक की अच्छी सेहत की कामना के साथ छात्रों को भी पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा भरोसा दिया।
0: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: साफ है कि नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच अब सरकार एक्शन मोड में है। सीजेपी और प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। दो मंत्रियों का अस्पताल जाकर वांगचुक का आंदोलन खत्म कराना इन प्रयासों की अहम कड़ी है। लेकिन सवालों की सुई अब भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आकर अटकी हुई है, क्योंकि भले ही सरकार की पहल के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन अनशन खत्म करने के बाद उनके बयानों में कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग का जिक्र नहीं था। अब विपक्ष भी सवाल कर रहा है कि आखिर जिन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक ने अपना आंदोलन शुरू किया उसका क्या हुआ? आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार की ओर से कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा?
4: सबकी अपील थी कि वो अपना अनशन खत्म करें। उनका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है, लेकिन जो आंदोलन के मुद्दे हैं, इस देश के करोड़ों युवाओं के मुद्दे हैं, उस मुद्दे का क्या हुआ? मुसद्दा तो मिल गया नरेंद्र मोदी जी को, कह रहे हैं हमें मुसद्दा मिल गया, मेरे ख्याल से वो मसौदा कहना चाह रहे होंगे। लेकिन जो डिमांड थी आंदोलनकारियों की, उसमें से कौन सी डिमांड उनकी पूरी हुई, ये महत्वपूर्ण है।
5: सोनम वांगचुक जी ने अनशन
6: मीटिंग जो है वो नीचे है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पीछे सर। मीटिंग में क्या क्या तय होगा, क्या चर्चा हुई आज हमें सरकार ने सेकेंड राउंड ऑफ लॉकडाउन हम लोगों की मांग।
7: वार्तालाप करने के लिए, लेकिन इस बार कोई नहीं। यहाँ पे जंतर मंदिर में हमारी आज हम यहाँ पे आए
8: जेपी नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है,
9: दैनिक सवेरा भाई साहब,
8: हमारे जो तीन मेन डिमांड है वो रखे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, और या तो धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर टू, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिसके बच्चे नीट एस्पिरेंट सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर थ्री, जो FIRs फाइल हुए हैं हमारी जानकारी के हिसाब से 11 FIRs फाइल हुए हैं, उन 11 FIRs की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करो, वो हमारा थर्ड मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें प्रॉब्लम
10: सरकार की क्या बात है सरकार,
8: है कि कानून कैसे बदलने चाहिए, संस्थान जैसे MPA कैसे बदलने चाहिए, वो सजेशन भी हम लोगों ने उसको उस लेटर में अटैच करके दिया, जिसमें सरकार ने बोला कि वो सोच विचार करेंगी। लेकिन वो बात की बात है, जो हमारी मेन डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है।
10: और रिजाइन
8: साथ हमने एक और चीज रिजाइन का हम लोग बोल साथ साथ एक और चीज हुआ है, हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा, एंड दिल्ली पुलिस को वो बोलेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अब हम बताएंगे कि क्या
10: हुआ, मत मारो धक्का मत मारो,
7: सरकार से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटिमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटिमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है, सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे, और जल्द ही कांग्रेस जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे, और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे।
10: आपने सरकार को कोई मोहलत दी है, टाइम दिया है क्या, टाइम दिया क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए?
7: सरकार ने कॉम्पनसेशन पे
9: और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर सरकार ने फिर से समय मांगा है, कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनल स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा।
2: तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीजेपी की तरफ से तीन मुख्य मांगे रखी गई सरकार के आगे। सबसे पहले नॉन निगोशिएबल वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और ये कहा गया कि ये प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। दूसरी जो मांग मानी गई वो थी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए जिन छात्रों की जान गई है, और तीसरा जितने भी छात्र जिन पर केस दर्ज वो सब वापस लिए जाए। अब इसमें से जो कहा गया है अभी तक जो बयान सीजेपी की तरफ से आया है, दो शर्तों पर, दो मांगों पर सरकार की तरफ से सहमति है और कल तक का वक्त सरकार की तरफ से है। सरकार अब कल दोपहर में जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे को लेकर जो मांग है, जो मुख्य मांग है, उसको लेकर सरकार अब कल तक अपना रुख बहुत स्पष्ट कर सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और अंका की तरफ से ये जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि तीन मुख्य मांग रखी गई थी जिनमें से दो मुख्य मांग पर सरकार की सहमति बनी है, सरकार को उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है उस पर कहा गया है कि विचार किया जाएगा। और सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि देश भर में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे छात्रों की तरफ से और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो ये प्रदर्शन बढ़ते चले जाएंगे, छात्रों पर जो FIR है वो रद्द होनी चाहिए। तीसरी मांग थी सरकार को, उस पर दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ का मुआवजा जो मांगा गया था उस पर सरकार को दिक्कत नहीं है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा जो पहली मांग थी उस पर कल तक के लिए वक्त सरकार की तरफ से लिया गया।

0: जितेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त में जितेंद्र, सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और रंका की तरफ से कहा गया तीन शर्तें थी, दो में सरकार को दिक्कत नहीं है, सहमति है, लेकिन एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बात वहीं पर अड़ी हुई है। जितेंद्र आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा जुड़ेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र सिंह से, जो इस मीटिंग जो बैठक चल रही थी उसको कवर कर रहे थे। देखिए बड़ी बात है क्योंकि कोशिश यहां पर यही की जा रही है कि एक स्थायी समाधान निकाला जा सके। सौरभ दास और रंका ये सीजेपी की तरफ से थे और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही एक समाधान निकल सकता है और कल का इंतजार किया जा रहा है जब ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी कल सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब आ सकता है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है।
4: ला भाई मेरा बैट,
2: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
12: इन एसोसिएशन विद
13: सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
15: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
16: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट।
1: ये समझाना चाहता हूँ, पैलेट गन कब लगी है? पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के, ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है, और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है, इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जाने। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है, इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से।
2: आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे, लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए, उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुई। हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो आपको बताएंगे।
3: सर उनकी अभी तो आवाज़ नहीं आ रही
1: है। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए, यही मैसेज है। हाँ, हरियाणा
4: दो मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे कल दोपहर में इस पे बात करेंगे।
1: हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है, जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर, ही हैज टू बी रिमूव्ड, ही इज ए सिंबल ऑफ द कोलैप्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, ही हैज टू गो, ही इज द रीजन माय ब्रदर हैज गॉट शॉट, ही इज द रीजन थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर आउटसाइड, ही हैज टू गो। थैंक यू, थैंक यू जी। यस, 1 सेकेंड, यू प्लीज प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, प्लीज ये कुछ कहना चाहते हैं।
5: मेरा नाम साहिल है। मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।
6: शाबाश। हरियाणा
5: हरियाणा से
7: नरेंद्र मोदी।

0: और देखिए हम आपको बता दें कि राहुल गांधी अब से थोड़ी देर पहले लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए कुछ छात्रों पर जो पुलिस कार्रवाई थी उसमें लाठीचार्ज की गई, पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया गया। ऐसे एक छात्र से बातचीत भी उन्होंने कराई मीडिया से और कहा गया कि देखिए इस छात्र पर भी पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था जिस पर उसकी आंख को भी नुकसान हुआ। पैलेट गन के पीड़ित छात्र को लेकर खुद अपने साथ आए थे राहुल गांधी। प्रदर्शन के दौरान छात्र को पैलेट गन के इस्तेमाल से चोट भी लगी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, देखिए ये तो कई बार सामने चीजें आई थी कि देखिए पुलिस की कार्रवाई में कई छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया, उनको नुकसान भी पहुंचा, उनको वो घायल भी हुए। और ऐसे ही एक छात्र को राहुल गांधी आज लेकर आए थे जिसमें साफ तौर पर उस छात्र को लेकर इंसाफ की मांग कर रहे थे कि ऐसे छात्रों पर जो इंजर्ड हुए उन पर उनको मदद दी जाए और इस पर कार्रवाई की जाए।
1: देखिए अभी हम 10 जनपद पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देखिए राहुल गांधी पीछे आपको नजर आ रहे होंगे जो कि साहिल से बात कर रहे हैं। महज 2-4 मिनट की प्रेस मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि जो पैलेट गन का सबूत है मैं आपको देता हूँ और आपको बताता हूँ कि उनको कब पैलेट गन लगी, जब वो भारत का तिरंगा दिखा रहे थे। ये तस्वीर 10 जनपद पर आप देख रहे हैं जहाँ पे राहुल गांधी अभी भी उस छात्र से बात कर रहे हैं जो काफी उनके हाथ में, पीठ में और आंख में भी इंजरी थी। राहुल गांधी का कहना एक बार दोबारा उन्होंने ये मांग दोहरा दी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम में कुछ नहीं मांगेंगे क्योंकि छात्र भी यही मांग रहे हैं। और अभी इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ 10 जनपद पे मौजूद हैं, उनके इर्द गिर्द साहिल और उनके परिवार के कुछ लोग भी खड़े हुए हैं और यहाँ पे मीडिया में उन्होंने एक बार फिर से उस वक्त जब एक तरफ सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत हो रही थी उसी के ठीक बाद यहाँ 10 जनपद पे राहुल गांधी एक पीड़ित के साथ बात करते हुए अभी यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं। और हालांकि साहिल ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस
0: अपने लिए इंसाफ की बात कही,
1: इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद बोला। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पे मौजूद 10 जनपद पर।
0: एक और बात मौसमी, क्योंकि आप वहाँ मौजूद है, हम देख रहे हैं कि एक तरफ सीजेपी की भी बैठक हुई है खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर, जहां पर कहा गया कि दो मुद्दों पर बातचीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सीजेपी भी अड़ा हुआ है, कांग्रेस भी अड़ी हुई है। लेकिन एक और पहलू है जिसमें अब कांग्रेस से मांग कर रही है कि खासतौर पर जो छात्रों पर बर्बरता हुई है उस मुद्दे को लेकर भी बहुत प्रमुखता से उठाया जा रहा है।
2: मैडम
1: बिल्कुल, देखिए अब मसला आ गया है इस बात को लेके कि पुलिस जो बर्बरता पुलिस ने की है उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं। और पीछे जूम इन करिए जरा विनोद और आप दिखाइए कि किस तरीके से इसको लेके राहुल गांधी बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने गांधी स्मृति पर श्रद्धांजलि दी, कहा कि आप देश के भविष्य पर लाठी और बंदूक।
0: बिल्कुल मौसमी, आप जिस राहुल गांधी के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से आपको बीच में रोककर वो सुना देते हैं अपने दर्शकों की आखिरकार राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था।
3: आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं यह समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना, ये देखिए ये है पैलेट गन।
0: देखिए हम राहुल गांधी की बातें आपको सुना रहे थे जो साफ तौर पर छात्रों पर हुए बर्बरता के मुद्दे को भी उठा रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 100 शहर से 100 बड़ी खबरें।

सीजेपी और सरकार के बीच लगभग एक घंटे चली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। इस बैठक में जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह भी हुए शामिल। दीपके बोले कि प्रधान के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सीजेपी ने कहा कि तीन मांगे रखी गई थी, जिसमें दो मुद्दों पर सहमति बन गई है। सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार का रुख बताया कि कल दोपहर 2 बजे तक मांगा है वक्त, हिरासत के लिए गए प्रदर्शनकारियों को छोड़ने की अपील की गई है। बीजेपी ने नीट पेपर लीक केस में सुसाइड करने वाले के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे देने की भी मांग की है। सीजेपी और सरकार के बीच हुई बैठक के बाद जेपी नड्डा का बयान, बोले कि सीजेपी ने तीन मांगे रखी, कल फिर होगी बातचीत। पेपर लीक और नकल के खिलाफ मौजूदा कानून हुआ सख्त। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी मिली है। पेपर लीक माफियाओं पर गिरेगी गाज, अब पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का लगेगा जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के बार बार हो रही गड़बड़ियों पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई और एनटीए की कार्यप्रणाली और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली पर भी स्पष्ट जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि गलतियों का यह सिलसिला अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 को होगी। वक्त पर बात मत करिए टिप्पणी पर सीजीआई की सफाई, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई याचिका दायर ही नहीं की गई थी, एक वकील ने केवल एक पत्र लिखा है। लगातार 5वें दिन भी संसद में पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा। विपक्ष ने इस्तीफा के लगाए नारे। भारी हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही वंदे मातरम बिल पेश होने के बाद हुई स्थगित। विपक्ष की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया पलटवार, कहा कि सदन में चर्चा को तैयार है सरकार, बस विपक्ष नई शर्तें रख रहा है, इससे देश में सभी खराब हो रही है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटाने की मांग करते हुए कहा कि छात्रों की मांग पर ध्यान दिए बिना वे सब कुछ लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो मैसेज पर तंज कसा है, कहा है कि जब बीमारी रूट में हो तो फ्रूट के इलाज से कोई नहीं मानने वाला। राहुल गांधी ने छात्रों की मांग के बारे में जानकारी देते हुए सदन में ना बोलने का आरोप लगाया, कहा है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पहले हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का लगातार 5वें दिन भी प्रदर्शन, संसद में मकर द्वार के बाहर जमकर किनारेबाजी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है विपक्ष, बड़े बड़े पोस्टर लेकर इस्तीफा दो के नारे भी लगाए गए। खड़गे ने दोबारा प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो वाले संसद पर किया है पलटवार, कहा कि जो बातें कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी वो संसद में आकर गए। सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार स्टूडेंट प्रोटेस्ट या पेपर लीक मामले से जुड़ा कोई बिल लाती है तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री चर्चा में हिस्सा लेगी। पीएम मोदी के वीडियो वाले संदेश पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा कि संसद में आकर दे जवाब, संसद के बाहर एक तरफा मन की बात नहीं करनी होती। खड़गे ने नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए विपक्ष की मांगों को दोहराते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर आइए तब होगी चर्चा, छात्रों से माफी की भी मांग दोहराई गई है। जंतर मंतर लाठीचार्ज को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को जमकर साधा है निशाना, बोली हिंसा के जरिए आंदोलन को दबाना इस सरकार की आदत है, शिक्षा व्यवस्था खराब करने का भी आरोप लगाया। सोनिया गांधी की छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि उनके भविष्य की रक्षा करना हमारा नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक कर्तव्य, एनटीए पर भी जमकर साधा निशाना। शिवसेना यूबीटी ने प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो पर तंज कसते हुए कहा कि स्पीच अच्छा है लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अनशन खत्म करने के बाद सोना वांगचू ने नया वीडियो जारी करते हुए कहा कि भूख हड़ताल का अंत है, जवाबदेही की शुरुआत है। सोना वांगचू के 26 दिनों के बाद तोड़ा है अपना अनशन जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मुलाकात के बाद लिया है फैसला, 28 जून से अनशन पर थे वांगचू। वांगचू ने बताया कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात या पत्र लिखकर अनशन खत्म करने का आह्वान आग्रह किया था, बोले कि हिंसा की कीमत भी स्वीकार नहीं है। सोना वांगचू का अनशन खत्म करने पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, बोले कि डॉक्टरों की सलाह पर अनुसार रखे अपनी दिनचर्या, जल्द अपना पुराना वजन हासिल करें। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो मैसेज पर बोले राहुल गांधी, धर्मेंद्र प्रधान हटाए
छात्रों पर कार्रवाई करने वालों को सजा दे, माफी मांगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, अब सभी पुलिस कर्मियों को छुट्टियां रद्द कर दी गई, सिर्फ इमरजेंसी हालात में छुट्टियों की सुविधा है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया, इंटरचेंज की भी अब नहीं कर सकेंगे यात्री। पेपर लीक पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा कदम, नागपुर और औरंगाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट को गठित किया गया। लगातार दूसरे दिन भी लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिया है धरना, पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में भी जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, कांग्रेस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में रैली भी निकाली।

0: सीएम योगी आज यूपी में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कावड़ यात्रा और त्योहारों की तैयारी का जायजा भी लेंगे। एसपी के गढ़ कन्नौज में बीजेपी का पीडीए प्लान, पिछड़ों और दलितों को साधने की मुहिम होगी शुरू। अगस्त में बड़े सम्मेलन में अभियान का आगाज किया जाएगा। लखनऊ में 2027 से पहले बीजेपी का दलित आउटरीच अभियान तेज, गुरु रविदास जयंती के जरिए घर घर पहुंचने की तैयारी। एससी वोट बैंक पर है फोकस। एसपी का बीजेपी के दलित अभियान पर हमला, दीपक रंजन बोले हैं कि दलितों की चिंता का दिखावा कर रही है बीजेपी, पीडीए के जरिए 2027 में सत्ता से बाहर होगी पार्टी। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी का बीजेपी पर हमला, बोले कि बीजेपी पीडीए की काट ढूंढने के परेशान है, लेकिन पीडीए परिवार एसपी के साथ रहेगा, बीजेपी को करेगा सत्ता से बाहर। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने महापुरुषों के नाम पर बने जिलों और संस्थानों के नाम बदलने जाने का दलित समाज का अपमान बताया है। पुराने नाम बहाल करने की उठाई मांग। कानपुर में बीजेपी का कॉरपोरेट स्टाइल चुनावी मैनेजमेंट, हर कार्यकर्ता का डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया गया, पल पल की मॉनिटरिंग के लिए बूथ स्तर पर संगठन की गतिविधियों पर भी नजर होगी। चंद्रशेखर आजाद 25 जुलाई को लखनऊ में पेपर लीक प्रदर्शन में होंगे शामिल, बोले शिक्षा व्यवस्था में सुधार ताकि जारी रहेगा आंदोलन। यूपी में बर्खास्त सिपाही सुनील शुक्ला को शंकराचार्य का ऑफर, अभी मित्रेशानंद सरस्वती ने 1,00,000 रुपए मासिक वेतन के साथ साथ काम करने का पर रखने का प्रस्ताव भी दिया। लखीमपुर खीरी में कुल्हाड़ी लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा शख्स, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का दावा किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े हैं, तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर है लोग। जामनगर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, शहर में गांव तक बरसे हैं बादल, किसानों के चेहरे पर खिले। नवसारी में बारिश थमने की से राहत मिली, शहर में उतरने लगा है पानी, कई इलाकों में अब भी जल भराव से यातायात हो रहा है सामान्य। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर, बाढ़ भूस्खलन से हाईवे बंद हो गया, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जम्मू कश्मीर में मौसम बना आफत, भारी बारिश के उफान पर नदियां, फ्लैश फ्लड का खतरा भी मंडरा रहा है। असम में बाढ़ का कहर अब भी जारी है, 7.21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, मृतकों की संख्या 47 हो चुकी है। असम में बाढ़ के हालात गंभीर हो गए, 11 जिलों में लाखों लोग प्रभावित हैं, कई नदियों खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उधमपुर में भी बादल फटने से फ्लैश फ्लड आ गया है, बरकुंडा इलाके में भी कई घर प्रभावित हुए, प्रशासन ने राहत कार्य जारी रखा है। उधमपुर में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए, प्रभावित परिवार को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में डोडा में कई इलाकों में तेज बारिश और लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर जारी है, उरी में बादल फटने से तबाही मची है। डोडा में भी भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं, कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। उफान पर झेलम नदी श्रीनगर के पास खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। बारिश बनी आफत, मलबे और पानी के तेज बहाव में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, प्रशासन ने निचले इलाकों को किया है सतर्क। गुजरात के वलसाड जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लोगों को आई है भारी मुसीबतें। एनडीआरएफ की नावों तक पहुंचना हुआ मुश्किल, रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। वलसाड में बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर रेस्क्यू, सलवाब में 24 घंटे में बिजली के पोल पर फंसे युवक को सुरक्षित बचाया गया। गुजरात में बाढ़ के हालातों पर डिप्टी सीएम हर्ष संघवी का एक्टिव हो गए हैं, नवसारी वलसाड पहुंचे कर लिया है हालातों का जायजा। रामबन के NH 44 बंद होने से फंसे यात्रियों के लिए राहत, बनिहाल में कटरा तक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच तेहरान में हवाई खतरों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम हुआ है सक्रिय। ईरान पर अमेरिका की लगातार 13वीं रात भी एयर स्ट्राइक्स जारी रखी गई है, अमेरिका ने सेना ने सैन्य ठिकानों पर फिर से हमले शुरू किए। एआई पर ट्रंप और शी जिनपिंग की बड़ी बैठक, 24 सितंबर को अमेरिका जाएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। एसयू विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने किर्गिस्तान पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। गाजा पर भूख का बड़ा संकट, साल के अंत तक करोड़ों लोग हो सकते हैं प्रभावित। जेलेंस्की ने रेथियन उपाध्यक्ष से में की है मुलाकात। यूक्रेन में पेट्रियट मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन पर चर्चा की गई है। यूक्रेन ने ज़ापोरिज़्या पर रूसी बम हमले में कम से कम 16 लोगों के घायल होने की बात कही है। गवर्नर ने गुरुवार को हमले में अस्पताल तबाह होने की बात कही थी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में रिहायशी इलाकों में आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। कई घरों में आग के चलते काले धुएं के गुब्बार आसमान में नजर आ रहा है। फ्रांस के जंगलों में भी आग का कहर जारी है। 10,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं और इसके अलावा पास के पर्यटक स्थल भी प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बाढ़ का कहर, 46 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर की हत्या, कृष्णनगर में चाकू से हमला कर वारदात को दिया गया अंजाम, इलाके में सनसनी है। मुजफ्फरपुर में बिजली ऑफिस में हंगामा, डिफरेंडम चार्ज और को लेकर भड़के उपभोक्ता, तोड़फोड़ और पथराव भी किया गया। बहराइच में बड़ी कार्रवाई है, अजनाला में थाने में हमले का आरोपी गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर से एसएसबी पुलिस ने वारिस पंजाब दे से जुड़ी विक्रमजीत और साथियों को गिरफ्तार किया है। बांदा में करंट से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। कपड़े उतारने गए बेटे को बचाने पहुंचे पिता को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गुजरात के खेड़ा में मातम हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पानी से भरे नाले में गिरी कार, 4 लोगों की मौत, 2 रेस्क्यू किए गए। अलवर सड़क हादसे के बाद अस्पताल में बवाल, मृतकों के परिजनों ने घायल युवक की पिटाई की। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी विवाद पर करवाया सपा डेलीगेशन के पहुंचने से पहले छात्रों का धरना जारी है। भिवाड़ी में हथियारबंद बदमाशों का तांडव, बदमाशों ने हथियार लहराकर ग्रामीणों को धमकाया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बिजनौर के गवाही का खौफनाक बदला, दुष्कर्म केस में आरोपी ने महिला को मारी 2 गोलियां। मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा, पुलिसकर्मी से बदसलूकी और बैरिकेडिंग तोड़ने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। और आज है फिल्मी फ्राइडे, उत्तरदा पुत्र, दुल्हनिया ले जाएंगे, द इंडियन स्टोरी, इश्कनामा समेत 8 फिल्में होंगी रिलीज। रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर फैंस को बेकरारी से जारी है, ट्रेलर्स का करना पड़ेगा और इंतजार। रमन सागर की रामायण वाली सीता, दीपिका चिखलिया ने साई पल्लवी की तारीफ की है, बोली बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस है। विजय सेतुपति की फिल्म जन नायक आयगान को बॉक्स ऑफिस पर जलवा है, पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 41 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। अजय देवगन की धमाल 4 की रफ्तार धीमी हो गई, 14वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए करीब 2.40 करोड़ रुपए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सीजेपी और सरकार के बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो गई। इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल थे, वहीं सीजेपी की तरफ से इसमें सौरभ दास और आशुतोष रांका मौजूद थे। बैठक के बाद सीजेपी के प्रतिनिधियों ने बताया कि 2 मुद्दों पर सरकार के साथ सहमति बन गई है। सरकार छात्रों पर केस हटाने पर विचार करेगी, साथ ही मृतक छात्रों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने पर भी सहमति बन गई है। लेकिन तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत थी या फिर जो सबसे बड़ी शर्त थी वो थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उस पर कल तक समय मांगा गया है।
2: जेपी नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है,
3: दैनिक सवेरा भाई साहब,
2: हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, और या तो धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना, नंबर 2 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन, एंड नंबर 3 जो FIR फाइल हुए हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हम दे एंड उनको विड्रॉ कर, वो हमारा रिकॉर्ड मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें प्रॉब्लम
3: सरकार
2: ये बोला गया
3: क्या कर रहे हैं भाई,
2: नंबर थ्री डिमांड है कॉम्पेंसेशन और एफ आई आर रिकॉर्ड और गारंटी का, उससे सरकार पॉजिटिव है। आज भाई आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे, लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए, उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको
0: बताएंगे। आपने सरकार के दोनों मंत्रियों और सीजेपी के प्रतिनिधियों को सुना, कल पर नजर रहूंगी जब दोनों के बीच में मुख्य बिंदु को लेकर यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Hexa Organic, Radiance.
5: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
6: How they looked after game one.
7: I mean, they were frustrated.
5: The Daily.
8: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
5: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
9: Skin and Nourished Hair, pure Ayurvedic beauty.
10: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
11: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se.
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
4: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
2: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

पेपर लीक पर पीएम के सख्त एक्शन वाले भरोसे के बाद नए कानून में होंगे कई बदलाव। 10 साल की सजा, 10 करोड़ तक के जुर्माने का हो सकता है प्रावधान। कैबिनेट से मिली मंजूरी, अब संसद में आएगा बिल। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के सामने सीजेपी ने रखी 3 मांगे। प्रधान का इस्तीफा, पीड़ितों को मुआवजा और छात्रों से केस वापस लेने की डिमांड पर विचार कर रही है सरकार। कल दोपहर तक आएगा जवाब। पैलेट गन से घायल छात्र को लेकर सामने आए राहुल गांधी, कहा युवक ने गवाई एक आंख, बंद हो इनसे मारपीट, सरकार से सभी डिमांड पूरी करने की मांग।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। क्या दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था? इस सवाल पर आज राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया। राहुल गांधी उस युवा को मीडिया के सामने लेकर आए जिसके बारे में उनका कहना था कि वो पुलिस के पैलेट गन से जख्मी हुआ है। राहुल ने मीडिया के सामने उस युवा के शरीर पर लगे जख्म दिखाए और दावा किया कि पैलेट गन की वजह से आंख की रोशनी भी चली गई। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए।
1: आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते

0: चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कांग्रेस जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी।
1: आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच सुधार के दृष्टि से परीक्षा हुई। हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा
2: केंद्र सरकार अब पेपर लीक के खिलाफ बेहद सख्त कानून लाकर छात्रों के गुस्से को शांत करने की कोशिश में है। नए बिल में पेपर लीक माफिया को कड़ी सजा का प्रावधान जोड़ने पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्र बताते हैं कि नए कानून में पेपर लीक माफिया पर 1 से 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये बिल अब अगले हफ्ते संसद में आएगा और फिर इस पर चर्चा होगी।
3: छात्र जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं दिख रहे। उधर संसद में विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। दोनों जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन का एक ही मुद्दा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार सीजेपी और प्रदर्शनकारी छात्रों से संवाद कर शांति का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इस बीच सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए अब कड़े कानून लाने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक को लेकर सरकार पहले जो बिल लाई थी उसी में संशोधन कर प्रावधानों को और भी ज्यादा कड़ा करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित नए संशोधन के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले को 5 से 10 साल की कैद की सजा हो सकती है, जबकि पुराने बिल में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था। साथ ही दोषी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जबकि पहले बिल में भारी जुर्माने का प्रावधान नहीं था। नए बिल में प्रावधान ये भी है कि अगर पेपर लीक में कोचिंग सेंटर या कोचिंग सेंटर से जुड़ा शिक्षक शामिल पाया गया तो कोचिंग को भी बंद किया जा सकता है। साथ ही पेपर लीक के मामले के तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं।
4: फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: उधर सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि पेपर लीक पर सरकार की ओर से सख्त कदम उठाया गया और कड़ा कानून लाया गया तो कांग्रेस भी चर्चा में शामिल हो सकती है। हालांकि पेपर लीक को लेकर सरकार को घेर रहा विपक्ष अपने तेवर कम करने को तैयार नहीं है। संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान के इस शोर को गौर से सुनिए। विपक्ष की पूरी ताकत जिस एक मांग पर टिक गई है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हर एक प्रदर्शन, हर एक धरने के बाद राहुल गांधी एक ही सवाल उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा।
5: मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ जो ऑपोजिशन का स्टांस है,

0: तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो।
1: एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात कही थी और देर रात वीडियो जारी कर कड़े एक्शन का भरोसा दिया।
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
1: लेकिन इस भरोसे के बीच ना ही विपक्ष का हंगामा थम रहा है, ना ही छात्रों का प्रदर्शन खत्म होता दिख रहा है। ऐसे में यह बड़ा सवाल होगा कि सरकार के नए बिल में कड़े प्रावधान का विपक्ष और प्रदर्शनकारी छात्रों पर क्या असर होगा? क्या नए बिल से हंगामा और विरोध प्रदर्शन शांत होगा? आज तक ब्यूरो।
3: पेपर लीक के मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम है। मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में टकराव रहा। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा है। सरकार ने विपक्ष पर बहस से भागने का आरोप लगाया है और इस गतिरोध में आज भी संसद की कार्रवाई नहीं हो पाई।

0: अभी
1: रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है, जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स।
2: राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग। मैं फिर से आंदोलन करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे, आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया कल भी, आज सुबह में केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपी, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोना मांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, ये आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी एक बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं।
3: इस बीच सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया लेकिन सियासी बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोनम वांगचुक की तुलना अन्ना हजारे से की तो बीजेपी ने वांगचुक के अपमान का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाया है कि वांगचुक को डराया धमकाया गया।
4: ये अन्ना पार्ट टू, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे, ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था, कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ?
5: कांग्रेस क्रेडिट की लड़ाई में कितना नीचे गिर सकती है? कांग्रेस के युवराज 21 दिन विदेश में रहे, कभी सोनम वांगचुक के पास गए नहीं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे गए नहीं। इनफैक्ट आज जब सरकार ने प्रोटेस्टर्स से बात की, सोनम वांगचुक से बात की, सोनम वांगचुक का फास्ट खुलवाया, पूरा देश इसके लिए खुश है। सोनम वांगचुक की मांग थी पार्लियामेंट में चर्चा हो, तो पार्लियामेंट की चर्चा से भी राहुल गांधी भाग रहे हैं और उन्होंने अपने नेता इमरान मसूद को बोला है कि सोनम वांगचुक को गालियां दे, अपमानित करे। और सोनम वांगचुक को अपमानित करने वाले बयान इमरान मसूद ने दिए, बोला है कि सोनम वांगचुक डील मेकर है, डील कर दिया। उनकी तुलना अन्ना हजारे से करते हुए दोनों अन्ना हजारे और सोनम वांगचुक की जो है अपमान के शब्द बोले। अब क्या सीजेपी इसका समर्थन करती है?
3: छात्रों के सवाल पर देश की संसद से सड़क तक बवाल है, संसद में लगातार गतिरोध है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए राहत की बात यह है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। आधी रात वांगचुक के अनशन तोड़ने की खबर आई, इसके थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया। पीएम मोदी ने इस संदेश में सख्त कानून का वायदा किया। इसी सिलसिले में आज कैबिनेट की बैठक भी हुई जिसमें नए बिल को मंजूरी दे दी गई।

0: क्या आधी रात की इन तस्वीरों से छात्र आंदोलन की दिशा बदलेगी? गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से कल रात आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आईसीयू में बिस्तर पर सोनम वांगचुक लेटे हैं और उनके इर्द गिर्द उस सरकार के दो मंत्री खड़े हैं जिस सरकार से वो दो दो हाथ करते रहे। इन्हीं दो मंत्रियों की मौजूदगी में वांगचुक 26 दिनों से जारी अपना अनशन तोड़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि पेपर लीक केस में जिम्मेदारी तय होगी।
1: अब आप कहेंगे जरूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं, फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से दो तीन हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को ना टाल कर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं। बल्कि दे देते इस्तीफा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता।
0: तो अब सवाल है कि सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ देने से कोई बड़ा बदलाव होगा? केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों की इस जंग में कोई बड़ा मोड़ आएगा? इस अनशन के टूटते ही आधी रात को पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया। पीएम ने वांगचुक की अच्छी सेहत की कामना के साथ दो अहम वायदे किए।
2: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: तो अब स्थिति यह है कि अनशन तोड़ते हुए सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होगी, सरकार कह रही है सख्त सजा वाला कानून बनाएंगे। वांगचुक कह रहे हैं कि संसद में विस्तृत चर्चा होगी, सरकार कह रही है कि संसद में बिल लाएंगे, चर्चा कराएंगे। वांगचुक का ये भी कहना है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार की तरफ से वायदा तो नहीं, लेकिन सकारात्मक संदेश है। वांगचुक सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि वो भी इस पर विचार कर रही है। लेकिन असली अवरोध धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है। वांगचुक इस पर खामोश है, लेकिन सीजेपी मुखर है, इस मांग पर अड़ा है।
3: So tomorrow the discussion that has been called for, we are very happy that the government has acceded to our request that it be at a neutral venue, and Constitution Club of India has been chosen is what we've been told. It's great. We hope that the government comes with an open mind and it will listen to the people of this country who have been out on the road for so long.
0: तो अब लड़ाई के केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, इस पर क्या और कहां तक बात बनती है ये खुद में देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।
4: अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
7: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
8: Sanitary Solutions. Hexa.
9: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
10: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
11: कुछ तो बात है इस तेल में।
12: अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है, जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर should apologize to the students. These are the three conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
1: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: जवाब दे भी तय कर पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
6: संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान इस शोर को गौर से देखिए। विपक्ष की पूरी ताकत जिस एक मांग पर टिक गई है वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हर एक प्रदर्शन हर एक धरना के बाद राहुल गांधी एक ही सवाल उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा।
7: दिस इज नॉट नेगोशिएबल फॉर श्योर। दिस 3 पॉइंट दिस इज नॉट आवर डिमांड। This is the students' demand, which we are fully backing. This is not negotiable under any circumstances.
8: 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं।
6: आधी रात को जब पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया तो जवाबी ट्वीट में भी राहुल गांधी की इस्तीफे वाली मांग मौजूद थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट में भी सारा जोर प्रधान के इस्तीफे पर ही था। तो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि प्रधान के इस्तीफे से कम पर बात बनने वाली नहीं।
9: सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का उसे हम वेस्ट नहीं जाने लेंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
6: ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि प्रदर्शनकारी छात्र या विपक्ष के निशाने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों हैं? क्यों उनके इस्तीफे पर ही विपक्ष अड़ा है? केंद्र कह रहा है कानून बनेगा यानी इसमें कोई अड़चन नहीं है। केंद्र कह रहा है संसद में बहस होगी यानी इसमें भी कोई अड़चन नहीं। केंद्र कह रहा है मुकदमा हटाने पर विचार करेंगे यानी यहाँ भी मतभेद नहीं है। केंद्र कह रहा है मुआवजा दिया जाएगा, तनातनी यहाँ भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये तमाम मोर्चे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। जीत या हार का आकलन इसी से होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का क्या होता है, क्योंकि भविष्य में इसी सवाल का जवाब जिंदा रह जाना है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
12: इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के सख्त एक्शन वाले भरोसे के बाद नए कानून में होंगे कई बदलाव। 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का हो सकता है प्रावधान। कैबिनेट में मिली मंजूरी, अब संसद में आएगा बिल। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात में सीजेपी ने रखी 3 मांगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ितों को मुआवजा और छात्रों से केस वापस लेने की भी डिमांड। कल दोपहर तक सरकार देगी जवाब। पैलेट गन में घायल छात्र को लेकर सामने आए राहुल गांधी, कहा युवक ने गवाई अपनी एक आंख, बंद हो इसमें मारपीट। प्रधान को कहा आपराधिक शिक्षा मंत्री। सीजेपी के प्रदर्शन की एनआईए से जांच की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज कर, वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन के खिलाफ पेटीशन पर भी सोमवार को होगी सुनवाई। गुजरात, महाराष्ट्र और असम में बाढ़ बारिश का तांडव। वलसाड़ और सूरत, नवसारी समेत कई शहरों में जलमग्न। 22,000 से ज्यादा लोगों के छूटे अपने घर। असम में 7,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अमेरिका ईरान के तनाव का चरम, 13वें दिन भी जंग भीषण। ट्रंप के P-1 बम वर्षकों ने मचाई तबाही, ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन पर पलटवार। ट्रंप को ईरान के विदेश मंत्री की चेतावनी, महंगा पड़ेगा बेकाबू आक्रमण। अमेरिका का ऐलान, ईरान की जब्त संपत्ति से जहाजों पर हमले की भरपाई। भड़के अराग्ची, जब्त संपत्ति को हाथ लगाया तो कायम होगी खतरनाक मिसाल। अमेरिका ने अहवास, बंदर अब्बास समेत ईरान के कई शहरों को दहलाया। ईरानी सेना के कमांड सेंटर, ड्रोन ठिकानों और एयर डिफेंस पर वार।
1: पहला फैसला एक रेलवे प्रोजेक्ट है, कर्नाटका में और आंध्रा को कनेक्ट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है उसकी।
2: क्या क्या हुआ ऑडियो? नमस्कार मित्रों,
3: आज और देखिए आपको
2: ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है।
1: चेक कर लो ना,
2: इज इट ओके?
1: चेक करो, चेक।
3: बैठक के बाद लगातार अब केंद्रीय मंत्री वैष्णव ब्रीफ करते हुए मीडिया को, और ये कहा जा रहा था कि मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा।
2: आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है,
3: और ये कैबिनेट की मीटिंग का ब्रीफ देते हुए केंद्रीय मंत्री।
1: यहाँ से चेक, ये वाला ठीक है? ठीक नहीं हुआ है पूरा।
2: ठीक है, हेलो,
1: इस माइक से बोल लेते हैं।
2: जी सर, आप आए।
1: कॉर्डलेस बंद कर ले।
3: और कैबिनेट की में पेपर लीक को लेकर जो सख्त कानून है उसको लेकर मंजूरी मिली है, शायद उसी को लेकर भी ब्रीफ किया जाए।
1: कॉर्डलेस बंद है,
2: बाकी लोग कॉर्डलेस बंद करिए सारे लोग।
1: बस ये ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन भी। साथियों नमस्ते, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में दो बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है। पहला है आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई है, आज अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना। मैं दोनों स्कीम्स पे, दोनों पॉइंट्स पे आता हूं। पहला प्रोजेक्ट है जो कि अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बिल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ, अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। देर आर स्टील प्लांट्स, देर आर पावर प्लांट्स, देर आर सीमेंट प्लांट्स, एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है। दैट्स वाई इफ यू रिकॉल कुछ ही महीनों पहले एक कैबिनेट का अप्रूवल हुआ था फ्रॉम बिल्लारी टू होसपेट थर्ड एंड फोर्थ लाइन। आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी DPR अंडर प्रिपरेशन है। यानी गुंतकल से लेके ऑल द वे टू हुबली एंड बियॉन्ड दैट हुबली से अंकोला की न्यू लाइन, ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर्स का, 1264 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा, कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है. करीब करीब 80% ऑफ द लैंड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट, बाकी 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी. तो प्रोजेक्ट काफी तेजी से हो जाएगा. लॉन्ग लीड आइटम केवल वेदवती रिवर पे ब्रिज है, मेगा ब्रिज है, बाकी सारे के सारे आइटम्स इसमें बहुत स्पीड से हो जाएंगे. जैसा आप जानते हो, अगर रेलवे से किसी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करें तो हाईवे के कंपैरिजन में 89% लेस CO2 एमिशंस होते हैं, यानी इट इज 89% लेस पॉल्यूटिंग कंपेयर टू हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन. सेकेंडली, कॉस्ट वाइज इट इज सिग्निफिकेंटली लेसर कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन. कॉस्ट कम है, पॉल्यूशन भी कम है. दैट्स वाई दुनिया में बहुत सारे देशों ने रेलवे को प्रायोरिटी दी है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से कंप्लीट रेलवे सेक्टर को ओवरहॉल करने का, ट्रांसफॉर्म करने का लगातार प्रयास चल रहा है. जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे इज नाउ 99.6% इलेक्ट्रीफाइड, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क भारत बन गया है. और परसेंटेज टर्म्स में देखो तो स्विट्जरलैंड के बाद में सेकेंड नंबर पे है. स्विट्जरलैंड इज 100% और इंडिया इज 99.6%. हालांकि स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क इज जस्ट अबाउट 5,000 किलोमीटर्स, 5,000 किलोमीटर उनका रेलवे नेटवर्क है, और भारत का 135,000 किलोमीटर का ट्रैक किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है. तो कंपैरिजन अगर करो, और उसके बाद में चाइना आता है नंबर 3 पे. चाइना इज अबाउट 80% के आसपास है, और उसके बाद में फिर कई कंट्रीज आती हैं. तो ओवरऑल आर कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन वेरी गुड. और अभी तो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन हैज डन वेरी वेल. एज ऑल ऑफ यू अवेयर, पिछले 17 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन जींद से इनॉग्रेट की थी. कल या रादर आज सुबह तक इसके 1,000 किलोमीटर्स फ्लॉलेस कंप्लीट हो गए. 1,000 किलोमीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन रनिंग विदाउट एनी इश्यूज. शुरू का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन के कॉमर्शियल रन में, तो वी आर वेरी विजिलेंट ओवर ईच एंड एवरी पैरामीटर. वी आर मेजरिंग अबाउट सम 130-odd पैरामीटर्स कंटिन्यूअसली हम मेजर कर रहे हैं उसमें. कैसा उसका बिहेवियर है, किस तरह के उसके पैरामीटर्स के वैल्यूज आ रहे हैं, वो सब चीज़ें मेजर कर रहे हैं. तो इस प्रोजेक्ट से 16 मिलियन टन जो एक्स्ट्रा कार्गो आएगा, दैट इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 27 लाख ट्रीज. यानी 27 लाख ट्रीज अगर हम लगाते, उससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता, कम होता, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होता, उतना इस रेलवे लाइन के बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से कम होगा. सो दैट्स वाई इट इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 27 लाख ट्रीज. 31 लाख ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा, और 149 करोड़ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बचेगी. सेकेंड मैं पॉइंट आता हूं, भव्य रसायन स्कीम. हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी में देर आर सर्टन इंडस्ट्रीज विच आर फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज.
3: चलिए, कैबिनेट ब्रीफिंग के ऊपर हमारी नजर बनी रही है. हम आपको इससे तमाम मिली बड़े अपडेट आपसे साझा करेंगे, लेकिन वक्त अब इस समय उस खबर का है जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया. जी हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में लगातार ईरान पर होते हमले को. दरअसल 13वें दिन भी अमेरिका ने लगातार ईरान पर बड़े हमले किए. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां ईरान पर एक बड़े हमले के संकेत दिए, वहीं दूसरी तरफ पेंटागन और सेंटकॉम ने भी सेनाएं लगातार 13वीं रात भी लगातार ईरान के सैन्य कमांड सेंटरों, ड्रोन ठिकानों पर मिसाइलें बरसाती रही. ईरान के कई शहरों पर जिसमें अहवाज, बंदर अब्बास, तेहरान समेत कई शहरों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई, जिसमें जान माल का नुकसान भी हुआ. दूसरी ओर ईरान ने भी झुकने के से साफ इंकार कर दिया. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी आक्रामकता की उसे कीमत चुकानी पड़ेगी. खबरें ये भी हैं कि ईरान इराक के जरिए आए अमेरिकी सीज़फ़ायर प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर चुका है. यही नहीं, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर धमाके भी सुनाई दिए, और रेड सी में भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों के पास और ज्यादा मदद भेजी है. मदद के तौर पर सैन्य सलाहकार और मिसाइलों की एक लंबी चौड़ी फेरिस्त या फिर एक बड़ी लंबी खेप भी भेजी गई. यानी आप मानिए कि लगातार इन खबरों के बीच में ये खबरें को विस्तार। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान की इस्लामिक सेना IRGC ने खाड़ी देशों में लोगों को एक चेतावनी जारी की है। उसने कहा है कि लोग उन ठिकानों से दूर रहे जहां अमेरिकी सैन्य तैनात है या फिर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है। उसने कहा है कि वो तुरंत उस जगहों से 500 मीटर दूर चले जाएं। ईरान ने भी ये कहा है कि उसकी ये चेतावनी उन लोगों की सुरक्षा को लेकर है जो वहां पर रहते हैं। IRGC ने ये चेतावनी दिया है कि खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर तुरंत किसी भी भीषण हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अब ईरान भी अमेरिका के सैन्य बेसिस पर जो मिडल ईस्ट में अलग अलग देशों में मौजूद हैं उन पर बड़े हमले कर सकता है। और ईरानी सेना ने अपने बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन थंडर में 24वें चरण के तहत बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेसों पर ठिकानों पर जबरदस्त पलटवार किया। ईरान ने दावा किया है कि उसने इन हमलों के लिए अपने आराश सोसाई ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ईरान ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस में ईंधन टैंक, गोदाम, बैरक को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन में अल अजराक बेस को भी एयरक्राफ्ट हैंगर और मेंटेनेंस शेड पर बड़े हमले किए हैं। इसका दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान ने इन हमलों को अपने परमाणु सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी कार्रवाई और एयर स्ट्राइक का सीधा जवाब बताया। ईरान ने इन हमलों के बाद बहरीन के सायरन बजने की खबरें भी लगातार सामने आई। हालांकि अमेरिका या जॉर्डन की ओर से अब तक इसको लेकर किसी बड़े नुकसान को लेकर पुष्टि नहीं की गई है। और ईरान ने सवेरा होते ही हमलों का अगला चरण शुरू कर दिया है। ईरान की धमकी यानी IRGC ने अपने बड़े सैन्य ऑपरेशन लाइटनिंग के 25वें चरण का भी एक वीडियो जारी किया है। इन तस्वीरों में ईरानी सेना की ओर से अमेरिका की ओर और उसके ठिकानों की ओर लगातार ताजा हमलों में मिसाइल और सुसाइड ड्रोन के इस्तेमाल को दिखाया गया है। IRGC ने दावा किया है कि इस चरण में दुश्मन के रडार सिस्टम्स और एयर डिफेंस नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया गया है और इसमें IRGC को सफलता भी हासिल हुई है। 25वें चरण की ये तस्वीरें ऐसे समय पर सामने आई है जब मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर भारी दबाव बनाने के लिए एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर लगातार 13वीं रात भी बड़े हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की फोर्स ने कल रात भी ईरान के अहम ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, तटीय निगरानी साइट और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाया ताकि हॉर्मुज में गुजरने वाले आम नागरिकों और कमर्शियल जहाजों के लिए ईरान में होने वाले खतरों को कम किया जा सके। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के IRGC के हालिया हमलों के बावजूद ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग आने जाने के लिए खुला है। कमर्शियल जहाज अमेरिका की सेना की मदद से इस स्टेट से यानी जल मध्य डमरू से लगातार गुजर रहे हैं और उन्हें वहीं इस समय मध्य पूर्व में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए जा चुके हैं जो ईरान के खिलाफ अभियान में सक्रिय रूप निभा रहे हैं। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने राजधानी तेहरान के आसमान में दुश्मन के हवाई हमलों को विफल किया है और खतरों को सफलतापूर्वक उनका सामना भी किया है। दरअसल तेहरान के ऊपर संदिग्ध हवाई गतिविधियों के बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने तुरंत एक्टिव होते हुए कई लगातार शेल्स को दागा, मिसाइलें दागी गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान के विभिन्न हिस्सों में धमाके तेजी से की आवाजें सुनाई दी गई और एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हमले में ही इंटरसेप्ट किया, उन्हें नुकसान पहुंचाया और उन्हें नष्ट भी कर दिया। इस घटना को हाल ही में अमेरिकी सैन्य अभियानों और मिसाइल हमलों के जवाब में तेहरान की हाई अलर्ट स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा। और अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण सैन्य टकराव के बीच अब दोनों देशों में शीर्ष नेतृत्व आमने सामने आ गया। एक तरफ जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े सैन्य हमले की चेतावनी दी है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने पलटवार करते हुए अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने बयान को आपको दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आक्रामक रुख अपनाते हुए क्या कुछ कहा आपको बता दे। सबसे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनाते हैं। ईरान पर बड़े भयानक हमले पर विचार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इन बयानों को लगातार देते आए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो तेहरान को साइकोलॉजिकली प्रेशर भी डाल सके। तेहरान में अभी पूरा खामियाजा नहीं भुगता है। उन्होंने कहा कि जो हमने अटैक किए हैं उसका पूरा खामियाजा भी ईरान ने नहीं भुगता है। यानी इस बयान को इस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है कि अब शायद ईरान पर और ज्यादा भीषण हमले कर सकते हैं। जहाजों पर हमले का हर्जाना ईरान से वसूला जाएगा। वो कहा कि ईरान अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जो उनकी एसेट्स हैं उनको जो डिफ्रीज किया गया है उन्हीं से लगातार उन जहाजों की भरपाई की जाएगी, उस नुकसान की भरपाई की जाएगी जो लगातार ईरान के अटैक की वजह से दुनिया भर को हुई है। अमेरिकी कब्जे में ईरानी संपत्ति से ये भरपाई की जाएगी। दरअसल ये एक तरीके का संकेत है कि अगर ये अटैक नहीं रुके तो फिर अमेरिका और सैंक्शंस लागू करेगा, लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाएगा और ईरान की जो एसर्ट्स हैं जिनको डिफ्रीज करने की मांग ईरान कर रहा था उन्हीं के इन असर्ट से उस भरपाई को किया जाएगा। लेकिन अब अब्बास अराक्ची ने यानी ईरान ने कैसे उसका पलटवार किया ये भी आपको दिखाते हैं। दरअसल सैयद अब्बास अराक्ची जो उनके विदेश मंत्री है उनकी तरफ से कहा गया अनावश्यक आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल अब ईरान ये फोकस करके बैठा है कि अगर कोई भी आक्रामकता कोई भी उसके ऊपर अटैक होता है तो उसकी भरपाई ना सिर्फ अमेरिका बल्कि मिडल ईस्ट के तमाम देशों को चुकानी पड़ेगी, या तो अमेरिकी बेसिस पर अटैक करके या दूसरी तरफ से। बेकाबू आक्रामकता युद्ध को और ज्यादा भड़काएगी। दरअसल अब इस पॉसिबिलिटी में ये देखा जा रहा है कि क्या ये युद्ध एक कदम और आगे बढ़ेगा, क्या मिडल ईस्ट तक ही सीमित रहेगा या फिर ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने कहा कि सैन्य दबाव से ईरान को झुकाने की सोच भारी भूल है। दरअसल ये बात ईरान ने प्रूव भी कर दिया। ईरान लगातार ये मानता है कि अमेरिका को जितने ज्यादा अपने बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल किया स्ट्राइक्स की उससे ईरान दबने वाला नहीं है। ईरान ने और ज्यादा प्रभावी तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। भावी शांति समझौते के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी आप कह सकते हैं कि ईरान अभी अमेरिका को चेता रहा है कि आप जितना ज्यादा हम पर स्ट्राइक करेंगे हमारी अगली शर्तें जो होंगी आपके साथ नेगोशिएशंस में और ज्यादा कड़ी हो जाएंगी। ईरान संपत्ति से वसूली को तो उन्होंने कहा है कि अराजकता फैल जाएगी, यानी अगर हमारी संपत्ति का इस्तेमाल किया गया या हमारे पैसों का इस्तेमाल किया गया भरपाई के लिए तो फिर व्यवस्था और ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा आप कह सकते हैं कि खतरनाक हो जाएगी। यानी अमेरिका और ईरान के बीच में अब उस एसर्ट्स को लेकर वाल पलटवार हो रहा है जो लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो ईरान पर विनाशकारी हमले करने वाले। इसी के तहत अमेरिका मध्य पूर्व में सेना मेडिकल स्टाफ और हथियार तेजी से भेज रहा है ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ हमले से ज्यादा विकल्प मिल सके। और एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी बताया है कि अमेरिकी सेना ने मंगलवार को ईरान में IRGC के ठिकानों पर हमले करने के लिए B-1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। ये B-1 बॉम्बर्स लगातार B-2 बॉम्बर्स से पुराने आप कह सकते हैं कि उसका एक रूप है। B-1 बॉम्बर्स जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। ईरान के साथ लड़ाई फिर से शुरू होने के बाद ये पहली बार था जब अमेरिका ने B-1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल दिया। B-1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य अभियान के भीषण होने का संकेत भी माना जा रहा है, खास तौर पर इस वजह से क्योंकि ये 2000 पाउंड से के 2 दर्जन बम अपने साथ ले जा सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो 75,000 टन की है। B-1 बॉम्बर्स ने UK के एक एयरबेस से अपना मिशन शुरू किया और ऑनलाइन प्लेन ट्रैकिंग वेबसाइट्स पर इसको दिखाया भी गया। कई वेबसाइट्स ने इसको ट्रैक भी किया। हालांकि B-1 बॉम्बर्स जो है वो टारगेट और उस पर हमले में हुए नुकसान अब तक तस्वीरें सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान इराक बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि मंगलवार रात हुए हमले में जैसी तबाही मची है उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल उसी जगह पर किया गया है। और देखिए ये बताया जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस में कम से कम 7 B-1 बॉम्बर्स को ने उड़ान भरी थी। ईरान ने B-1 से जुड़ी हुई बमबारी के बाद ब्रिटेन को बड़ी धमकी दी। ईरान ने की सेना IRGC ने UK के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर हमले का एक जायज टारगेट घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि अमेरिकी सेना ने इस बेस को इस्तेमाल ईरानी इलाके में लंबी दूरी के B-1 बॉम्बर से लैस बॉम्बर ऑपरेशन में शुरुआत के लिए इस्तेमाल किया है। द टाइम्स के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी है कि ब्रिटेन का ये एयरबेस हमलों के लिए एक जायज टारगेट होगा। यानी ईरान की तरफ से स्पष्ट किया गया कि जिस भी बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया जाएगा ईरान भी उस पर रिटेलिएटरी अटैक करेगा, क्योंकि US ने इस बेस का इस्तेमाल B-1 बॉम्बर के अटैक के लिए किया है। इसलिए IRGC की तरफ से कहा गया कि US ने ब्रिटेन की जमीन से B-1 बॉम्बर्स की तैनाती का फैसला इसलिए किया क्योंकि हिंद महासागर में नेवल क्रूज मिसाइल का स्टॉक अब खत्म हो गया, यानी अब वो यूरोप के इन इलाकों से यूरोप के अलग अलग देशों से ईरान पर हमले कर रहे हैं। इसीलिए अब जो बड़ी चेतावनी है वो यूके को यानी ब्रिटेन को भी दी गई है। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते और आपको बताता है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जिस बम वर्षक से तबाही मचाई आखिरकार उस B-1 बॉम्बर का अंतर क्या है? यानी अब से पहले हम B-2 बॉम्बर्स के बारे में सुनते थे लेकिन अब B-1B लांसर या B-2 बॉम्बर्स के अंदर अंतर क्या है? आप सबसे पहले आप देखिए जो है वेरिएबल स्पिन विंग, इसमें सुपरसोनिक होते हैं, B-1 बॉम्बर की हम बात कर रहे हैं, और फ्लाइंग विंग सबसोनिक विमान होते हैं। दरअसल इन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा फर्क अगर आपको आम बात में समझाओ, आम चीजों में समझाओ, तो इनकी पेलोड कैपेसिटी। B-2 बॉम्बर के अंदर आप मैक्सिमम 40 से 45,000 टन का पेलोड ले सकते हैं लेकिन B-1 बॉम्बर के अंदर आप उस कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल एक कन्वेंशनल वॉरफेयर के तौर पे भी देखा जाता है। अब कम ऊंचाई पर आवाज से तेज उड़ान भर सकता है। इसकी जो स्पीड है 1.5 या 1.7 मैक बताई जाती है, वहीं B-2 बॉम्बर्स की स्पीड 1 मैक के करीब बताई जाती है। आवाज की गति से धीमी उड़ान भर सकता है। अब रडार को चकमा देने के लिए B-2 बॉम्बर्स बहुत ज्यादा सक्षम है, इसलिए इसे एडवांस बॉम्बर माना जाता है। लेकिन जब आप B-1 बॉम्बर की कहते हैं तो रडार को चकमा देने में यह सक्षम नहीं है, कन्वेंशनल बॉम्बर इसको माना जाता है। अब भारी पेलोड से भारी विनाशकारी क्षमता इसके पास है, 75,000 मैं आपको बता रहा हूं पेलोड कैपेसिटी। सबसे उन्नत स्टेल्थ बॉम्बर है, भारी बम की क्षमता है, लेकिन एक मिडल ईस्ट के आप कहते हैं मिडल लेवल के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि जब B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल अगर अमेरिका कर रहा है तो इसकी चेतावनी साफ है कि जो उनका जो सेंट्रल एरिया है तेहरान का उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उन माउंटेन्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है जहां पर उनके न्यूक्लियर आप कह सकते हैं एनरिचमेंट साइट्स हैं। चलिए अब हम भी आपको ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में ये गतिरोध और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Hexa Organic Radiance.
7: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
8: The climate disaster related death rate. Tornadoes, hurricanes.
7: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
9: Williams keeps it. First down. Touchdown.
7: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
10: Skin and Nourished Hair. Pure Ayurvedic Beauty.
11: Papa. सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
12: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
11: छक्का,
12: सब कैशलेस हो गया
11: है। हाँ ला भाई मेरा बैट,
13: वो अभी तो ठीक हुआ तू
14: चार्ज हुआ यार।
15: बैट किसका है?
16: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
6: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
7: कुछ तो बात है इस तेल में।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: Papa. सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: In association with
8: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: हमारे पीछे आप देखें, और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है,
10: टियर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है, और यहाँ पे टियर गैस का इस्तेमाल पुलिस करती हुई नजर आ रही है।
9: पीछे संसद का पूरा मार्ग है, और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से टियर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
11: कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज।
12: मैं जानता हूँ कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के सख्त एक्शन वाले भरोसे के बाद नए कानून में होंगे कई बदलाव। 10 साल की सजा, 10 करोड़ के जुर्माने का हो सकता है प्रावधान। कैबिनेट से मिली मंजूरी, अब संसद में आएगा बिल। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात में सीजेपी ने रखी अपनी तीन मांगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ितों को मुआवजा और छात्रों से केस वापस लेने की डिमांड। कल दोपहर तक सरकार देगी जवाब। पैलेट गन से घायल छात्र को लेकर सामने आए राहुल गांधी, कहा युवक ने गवाई अपनी एक आंख बंद हो, इसमें मारपीट। प्रावधान का को कहा आपराधिक शिक्षा मंत्री। सीजेपी के प्रदर्शन की एनआईए से जांच की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज। वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन के खिलाफ पिटीशन पर सोमवार को होगी सुनवाई। हिमाचल के पांगी में किलाड़ उदयपुर मार्ग पर चलती गाड़ी के ऊपर गिरी चट्टान, 13 लोगों की मौत, 2 बचे।

कुदरत का कहर, डूबे गांव, शहर परेशान। वलसाड़ में डूबी कारें, डूब रहे मकान। अहमदाबाद में बारिश से मचा कोहराम। पालघर में बाढ़ से भारी नुकसान। असम में बाढ़, बारिश ने ली कई जान। पहाड़ों में बादल फटने से त्राहिमाम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक नदियों में उफान। कुदरत का कहर किसी को नहीं बख्श रहा। पानी के रौद्र रूप के सामने जो भी आ रहा है सब तिनके की तरह बहता जा रहा है। घर भी, दुकान भी, सड़क भी, दफ्तर भी, कार भी और इंसान भी।

रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। रणभूमि के इस हिस्से में बात करेंगे उस भूमि की जो डूब चुकी है और तमाम उम्मीदों को से डुबो रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई राज्यों में, कई जिलों में इसमें बाढ़ जैसे बुरे हालात बने हुए हैं। लोगों के घर डूब चुके हैं, खेत खराब हो चुके हैं और मकान दुकान सब पानी में डूब चुके हैं और पहाड़ों में बादल फटने से मलबे और पानी का सैलाब तबाही मचा रहा है। तो मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर है। जगह जगह पर लगातार हो रही बारिश की वजह से कई बांधों पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनके गेट खोलने के लिए मजबूरी सामने आ रही, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और ज्यादा मंडराने लगा है। कश्मीर में उरी में बादल फटने से बाढ़ तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। तो अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा में

0: 47 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आप मान के चलिए कि इस समय असम के अंदर क्या ताजा हालात होंगे, 7.5 यानी कि 7,21,000 से ज्यादा लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि गुजरात की तबाही की तस्वीरें भी। अहमदाबाद में भी लेकर वलसाड तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, निचले इलाकों में तेजी से पानी भर रहा है और रिहायशी इलाकों में भी रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का प्रहार इतना कोहराम मचा रहा है कि कारें डूबती हुई नजर आ रही है, सड़कें टूट रही हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और बांध के गेट खोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में जलमग्न होने की आशंका और ज्यादा प्रबल होती जा रही है। हमारी टीम गुजरात के अलग अलग इलाकों में मुश्किल खड़े कर देने वाली मॉनसून की रिपोर्टिंग लगातार भेज रही है। आपको पूरे राज्य की तस्वीर दिखाते हैं और ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं।
1: आसमानी आफत से पानी पानी गुजरात, अहमदाबाद से लेकर वलसाड तक सैलाब ही सैलाब। जहां तक नजर डालो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके तेजी से डूबते जा रहे हैं। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ और बारिश ने जीना दूभर कर दिया। गांव हो या शहर, मोहल्ले हो या हाई राइज बिल्डिंग, सब परेशान है, सब बेहाल है और रोजमर्रा की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। गुजरात के वलसाड़ की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से सुर्खियां बटोर रही है। एक सोसाइटी की पार्किंग में कई गाड़ियां छत तक डूब गईं। 5-5 फीट तक भरे पानी में फंसी गाड़ियों की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निचले इलाकों में पानी कितनी तेजी से भरा है। वलसाड़ में चारों तरफ यही हाल है। नदियों में बारिश के पानी की वजह से बहाव इतना तेज है कि आसपास के लोगों में खौफ पैदा हो गया। वलसाड़ की ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। पुल के नीचे बहते पानी की धार जैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। निचली कॉलोनियों में इतना पानी भर चुका है कि घरों से लेकर गाड़ियां तक पानी में कई कई फीट तक डूबे दिख रहे हैं। यह हालात गिने चुने कुछ इलाकों के नहीं, करीब करीब पूरे जिले में लगातार हो रही बारिश ने हर इलाके में पानी भर दिया। इसकी बड़ी वजह मधुबन बांध भी है, जिस पर दबाव कम करने के लिए उसके सभी 10 गेट खोलने पड़े और लाखों क्यूसेक पानी तेजी से निचले इलाकों में भरता जा रहा है।
2: मैं इस वक्त वलसाड जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहतर बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 48, मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ देखे आप देख सकते हैं जो गाड़ियां है वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
1: और अब गुजरात के अहमदाबाद पर एक नजर डालिए। बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया है। अहमदाबाद के आमली गांव में तो आपदा ऐसी बरसती है कि घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं, गाड़ियां डूबी हुई और हर जगह पानी भर गया है।
3: मेरे आसपास में आप देख रहे हैं कमर तक का पानी यहाँ पे भरा हुआ है और मेरे पीछे की तरफ की आप कार भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से संपूर्ण जलमग्न है। कार के अलावा जो टू व्हीलर है, जो मोटरसाइकिल आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और ये अहमदाबाद का बोपल इलाके का आमली गांव है। आमली गांव के अंदर जो प्रवेश द्वार है उसकी भी मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ। कमर तक का पानी है, लोग कमर तक के पानी में से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों।
1: ये बदतर हालात इस तालाब की दीवार टूटने की वजह से पैदा हुए। तालाब में भरा पानी आसपास के इलाकों में फैल गया और लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।
3: मेरे आसपास की भी तस्वीरें आप यहां पे देख लीजिए। यहां पे जो भी तस्वीर जिस तरफ भी आप अपनी नजर को दौड़ाएंगे चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी आपको दिखाई पड़ेगा। यहां पे ऑटो रिक्शा है वो भी पूरी तरह से जलमग्न है। सामने की तरफ की मोटरसाइकिल की बात कर ले चाहे कोई भी व्हीकल बात करे, ये बोतल में स्थित आमली की तस्वीरें हैं।
0: और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़े, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। कहा जा रहा है कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। देखिए हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि आज भी जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि सरकार का मानना है कि इस्तीफा सबसे आसान काम होगा। ऐसे में ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इस्तीफा मतलब जिम्मेदारी से भागना होगा। ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को बता दें कि सरकार एनटीए में समस्याओं का पता लगा रही है, लेकिन इस बीच ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। पेपर लीक में शामिल कई गैंग पर कार्रवाई हुई है।

0: और इसको लेकर सरकार और भी मंथन कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो खबर सामने आ रही है, जो अपडेट मिल रहा है वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। आपको बता दें कि आज सीजेपी और सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, जिसमें सीजेपी की तरफ से फिर एक बात इस बात को दर्शाया गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही उनकी प्रमुख मांग है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्या, आज मीटिंग होती है, कल तक सरकार को जवाब देना था, लेकिन इस बीच ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने वाला है।
1: जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो हमें पता चला है वो ये है, एक बड़ा बयान इस समय सरकार की तरफ से आया है और वो बयान ये है कि पार्टी इस समय जो है खड़ी है मजबूती के साथ धर्मेंद्र प्रधान के पीछे। और देखिए इस्तीफे की अगर बात करें तो इस्तीफा जो है कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इस्तीफा बहुत ही आसान है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि इस्तीफे से ज्यादा इस समय जो जरूरत है वो है कि सिस्टम को ठीक किया जाए और उसमें सरकार लग गई है। और आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों के अंदर ये जो बिल है ये तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ और कई सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई जो है तेजी से की जाएगी। सरकार का ये मानना है कि ये जो मैंडेट उनको मिला है ये लोगों ने उनको दिया है और सरकार जो है इस समय एक लिस्ट बना रही है जो प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द रिजोल्व किया जाएगा।
0: बिल्कुल ऐश्वर्या, ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है, खबर इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी जब मीटिंग हुई थी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ सीजेपी की, तब ये कहा गया था कि उनकी प्राइमरी या सबसे इंपॉर्टेंट मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो आगे अपने प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। तो ऐसे में ये कितना ज्यादा आप कह सकते हैं कि बड़ी खबर के तौर पर देखा जा रहा है?
1: देखिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष जो है, खासतौर से अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम मानेंगे नहीं जब तक कि इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन सरकार इस चीज को लेकर क्लियर है कि देखिए सबसे ज्यादा जरूरत जो थी वो ये थी कि सिस्टम को ठीक किया जा सके। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को ठीक किया गया है और आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी किया और वीडियो के बाद जो बदलाव है वो भी किए गए। सरकार का ये कहना है कि ये जो बिल है ये मोदी सरकार ही लेके आई थी 2024 में और इसके बाद ये देखा गया कि किस तरीके से इसका बहुत फायदा भी हो। और अब आगे जो देखने वाली बात वो है कि मंडे को जो पहली चीज 11 बजे जो की जाएगी वो है ये जो नया अमेंडमेंट बिल है इसको टेबल किया जाए।
0: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी, देखिए बता रही है कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सरकार की तरफ से साफ संकेत दे दिए जा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। अब आगे खबरों में बढ़ते हैं। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जबरदस्त हंगामा हुआ था जिसमें कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए थे। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कहते हैं कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था, तो फिर सवाल यह है कि उपद्रव करने वाले लोग कौन थे?
2: अपने हक के लिए सड़क पर उतरे छात्रों का प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन के बीच कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई है जब प्रदर्शनकारियों का एक जत्था पुलिस वालों पर टूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को घेर कर पीटा, घायलों में से एक एसीपी रोहित भी हैं। सुनिए एसीपी ने क्या बताया।
3: जैसे ही भीड़ ने हमें जाते हुए देखा तो हम पार्क होटल के आसपास पहुंचे ही थे कि उन्होंने जो है हमारे ऊपर बोटल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर उन्होंने हमारे ऊपर पत्थर वगैरह फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर भीड़ में से ही कुछ ही लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि मारो इनको मारो, तो फिर जो हमारे स्टाफ कर्मी थे उनको उन्होंने घेर लिया और मारना स्टार्ट कर दिया था।
2: रोहित के अलावा इंस्पेक्टर नंद किशोर के साथ भी यही हुआ। इनके साथ जो हुआ इन्हीं के मुंह से सुनिए।
4: स्टूडेंट्स नहीं थे, उनके हाथ में सिर्फ लाठियां थी, डंडे थे और पत्थर थे, किसी के हाथ में नुकीली चीज चाकू टाइप से थे।
5: नुकीली चीजें भी थी चाकू टाइप?
4: हाँ सर, और कुछ ने लोगों ने कड़े पहने हुए थे, उन्होंने वो हाथ में बना के उसको पंच बना लिया, तो वो लोग मेरे पर मेरे पास आए और बोलने लगे कि हमारे पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और पुलिस हमारे पर बर्बरता कर रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाता हूं आगे, मैं मना करता हूं, ऐसा ना हो, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूं। तो इतने में पीछे से सर जितने भी थे उसमें 150-150 लोग थे, उन्होंने मेरे पर सर अटैक कर दिया।
2: जहां कल बवाल हुआ था वहां आज का हाल देखिए। ये तस्वीरें दोपहर 3 बजे की हैं।
6: अभी की ताजा स्थिति है कि नारेबाजी हो रही है, एक तरफ आरएएफ की टीम है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त कभी कभी ऐसी तस्वीर होती है, लेकिन देर शाम होते होते यहां पर भीड़ उग्र हो जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं।
2: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी कह रहे हैं कि यह मूवमेंट शांति से ही चलेगा, हिंसा से नहीं।
7: Peace and non-violence is our biggest strength. ये मूवमेंट, ये प्रोटेस्ट जो एक मेरा सस्टेन करा है, एक मेरा जो चला है वो इसीलिए चला है कि चूंकि पीस और नॉन वायलेंस की फाउंडेशन पर बना हुआ है और आगे जाकर भी उसी पर चलेगा। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भी गर्व होगा कि इतने सालों बाद भी इस देश का सत्याग्रह हो रहा है।
2: तो फिर अब सवाल यही है कि अगर छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर बवाल करने वाले लोग कौन हैं? हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन इस बीच एक दुखद खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल एक पहाड़ दरकने से लगातार एक गाड़ी पर गिरा। हिमाचल के पांगी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, चलती गाड़ी के ऊपर चट्टान गिर गई जिसमें 13 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। हिमाचल के पांगी में भीषण सड़क हादसे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक चलती गाड़ी के ऊपर ये चट्टान गिरी जिसमें 13 लोगों की मौत की खबर अभी सामने आ रही है। हिमाचल के पांगी में ये बड़ा भीषण हादसा हुआ है और पांगी में किलाड़ उदयपुर मार्ग पर ये हादसा हुआ है, जहां की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि चलती गाड़ी के ऊपर पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से लगातार एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। और देखिए, आपको यह भी बता दें कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक सड़क मार्गों में से एक माना जाता है जहां से ये गाड़ी गुजर रही थी। और उसी बीच कहा जा रहा है कि जब ये गाड़ी चलती गाड़ी यहां से गुजर रही थी तो चट्टान का एक बड़ा हिस्सा आकर इस गाड़ी पर गिर गया जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
11: After multiple assassination attempts, they can't even get...
12: They're reliable.
13: Always when I need them.
10: To live sports action.
14: One-hand jam by LeBron on the break.
15: That's another three, Steph Curry.
10: And your favorite music.
16: Well, the dawn begins to crack.
10: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
17: Sokudo.

0: विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे? और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं, फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी? ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा, आप ही की उद्दंडता से चलेगा?
1: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या, ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Schwarber
4: to right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
4: And that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान इस शोर को गौर से देखिए। विपक्ष की पूरी ताकत जिस एक मांग पर टिक गई है वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हर एक प्रदर्शन, हर एक धरना के बाद राहुल गांधी एक ही सवाल उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा।
6: दिस इज नॉन नेगोशिएबल फॉर श्योर। These 3 points, this is not our demand. This is the students' demand, which we are fully backing. This is not negotiable under any circumstance.
7: 22 lakh jitne vidyarthiyon ke exam ho jaye.
5: Aadhi raat ko jab PM Modi ka video sandesh aaya, to jawabi tweet mein bhi Rahul Gandhi ki istifa wali mang maujood thi. Congress adhyaksh Mallikarjun Kharge ke tweet mein bhi sara zor pradhan ke istifa par hi tha. तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि प्रधान के इस्तीफे से कम पर बात बनने वाली नहीं।
8: सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
5: ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि प्रदर्शनकारी छात्र या विपक्ष के निशाने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों हैं, क्यों उनके इस्तीफे पर ही विपक्ष अड़ा है। केंद्र कह रहा है कानून बनेगा, यानी इसमें कोई अड़चन नहीं है। केंद्र कह रहा है संसद में बहस होगी, यानी इसमें भी कोई अड़चन नहीं। केंद्र कह रहा है मुकदमा हटाने पर विचार करेंगे, यानी यहाँ भी मतभेद नहीं है। केंद्र कह रहा है मुआवजा दिया जाएगा, तनातनी यहाँ भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये तमाम मोर्चे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। जीत या हार का आकलन इसी से होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का क्या होता है, क्योंकि भविष्य में इसी सवाल का जवाब जिंदा रह जाना है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।

इस्तीफा नहीं देंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार की दलील, त्याग पत्र देना मतलब जिम्मेदारी से भागना, व्यवस्था में खामियों को जल्द होगा समाधान।

सख्त एक्शन वाले भरोसे के बाद नए कानून में होंगे कई बदलाव। 10 साल सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का हो सकता है प्रावधान। कैबिनेट से मिली मंजूरी, अब संसद में आएगा बिल। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात में सीजेपी ने रखी 3 मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ितों को मुआवजा और छात्रों से केस वापस लेने की डिमांड। कल दोपहर तक सरकार देगी जवाब। पैलेट गन से घायल छात्र को लेकर सामने आए राहुल गांधी, कहा युवक ने गवाई एक आंख, बंद हो इनसे मारपीट, प्रधान को कहा आपराधिक शिक्षा मंत्री। हिमाचल के पांगी में किलाड़ उदयपुर मार्ग पर चलती गाड़ी के ऊपर गिरी चट्टान, 13 लोगों की मौत, 2 बचे।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। देश आज प्रधान का समाधान खोज रहा है और सरकार समस्या का समाधान खोज रही है। और आज की ताजा खबर, अभी की ताजा खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। सरकारी सूत्रों के हवाले से दरअसल ये खबर दी जा रही है कि इस्तीफा दे देना जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेना कितना आसान लगा रहा है। सरकार का मानना है कि उन्हें परफॉर्म करने के लिए जनादेश मिला है और वो करके दिखाएगी। सूत्रों का कहना है कि एनटीए के अंदर के समस्याओं को भी सूची बनाई जा रही है और उन पर समाधान किया जा रहा है। पेपर लीक माफिया पर भी जबरदस्त एक्शन चल रहा है जो आगे और भी गंभीर होगा। लेकिन किसी भी हालत में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। और जो कारण सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। सरकार इतने दावे कर रही है लेकिन जंतर मंतर पर बैठे सीजेपी के नौजवान प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। संसद में खड़े विपक्षी दल के नेता प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। शहर शहर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू हो चुकी है और इसी मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन में पिछले 5 दिन की संसदीय कार्यवाही पूरी तरीके से धुल गई है। सड़क पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, दर्जनों पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंच चुके हैं। धरना, प्रदर्शन, झड़प, नारेबाजी, तमाम घटनाओं के बाद अब बात फिर वहीं की वहीं फंसी हुई है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। इसी सवाल के जवाब की तलाश में सीजेपी के प्रतिनिधि आज दूसरी बार केंद्र सरकार तक अपनी फरियाद लेकर पहुंच गए। सरकार ने कल तक का वक्त भी मांग लिया है। कल दोपहर के बाद पता चलेगा कि धर्मेंद्र प्रधान पर सरकार का रुख क्या होगा, क्योंकि सीजेपी कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है, यानी उस पर चर्चा नहीं हो सकती। वैसे सीजेपी और सोनम वांगचुक दोनों ने कह दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, लेकिन सरकार और वैकल्पिक फैसले भी ले रही है। कल ही रात उच्च शिक्षा विभाग और स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव बदल डाले गए, लेकिन सीजेपी को उसमें भी एक शिकायत है कि करप्शन के आरोपी जो अफसर है उन्हें शिक्षा विभाग में अब बैठा दिया गया है। उधर सीजेपी के आह्वान के बाद प्रधान के इस्तीफे की मांग पर देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, पुणे में हो रहा है, सभी जगह पर बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आज के दंगल में हम उसी से सबसे जुड़े सबसे बड़े सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि क्या प्रधान का समाधान देश को मिल पाएगा। चर्चा से पहले आपको हम सीजेपी के चीफ अभिजीत दिपके के पास लिए चलते हैं जो इस वक्त जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। और अभिजीत दिपके बार बार ये साफ कर रहे हैं कि वो अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अभिजीत दिपके इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिजीत, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। पहला सवाल यही है कि आंदोलन के मुद्दे अब क्या है अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। फिलहाल तो सरकार मना कर रही है लेकिन अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या यह आंदोलन थमेगा?
1: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो ये था कि जिन बच्चों ने सुसाइड करी उनके परिवारों को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके साथ 20 जुलाई को जो हुआ, जिस ब्रूटैलिटी के साथ पुलिस ने बच्चों के सर फोड़े, लड़कियों को पीटा है, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक और डिमांड ऐड करी है कि जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, एक तो उसकी वजह से पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में जिन बच्चों के ऊपर झूठे केसेस लगाकर उनको डिटेन या अरेस्ट किया गया था वो सारे केसेस वापस लिए जाने चाहिए।
0: लेकिन अब विपक्षी पार्टियां भी आपको सपोर्ट कर रही है क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता आपके यहां पर दिखे, राहुल गांधी वहां पर एक अलग प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं?
1: मैं सभी विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो उन सभी ने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को बाजू में रखकर स्टूडेंट्स के साथ एक साथ आए और जो उन्होंने समझा कि जो देश का मुद्दा है, जो भविष्य का मुद्दा है इस देश का, उसके लिए वो सब साथ में आकर हमारे साथ खड़े रहे, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: लेकिन सोनम वांगचुक अब जो है उन्होंने तो अपना अनशन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कहा है कि वो मांग उन्होंने पुश नहीं की, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने वो मांग पुश नहीं की है। तो क्या अब आपके रास्ते अलग हो चुके हैं, उस पर आपका क्या कहेंगे आप?
1: इससे मुझे बहुत ही राहत और खुशी मिली है। हम खुद सोनम सर से बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, आगे का प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और कल जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वॉज वेरी रिलीव्ड और बहुत जरूरी भी था क्योंकि सोनम सर की जान जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए। और 26 दिनों तक उन्होंने जो दर्द सहा है, जो सैक्रिफाइस किया है अपने हेल्थ का, आई थिंक इससे ज्यादा कोई और कुछ कर नहीं सकता था इस मूवमेंट के लिए। अपनी जान को एक तरीके से दांव पर लगाकर सोनम सर ने इस देश की जनता को जागरूक किया है।
0: ठीक है, लेकिन आगे का प्लान क्या, क्योंकि आंदोलन तो पूरा पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आसपास नजर आ रहा है, लेकिन आगे क्या प्लान होगा, क्या कुछ और भी मुद्दे हैं उसको भी आप उठाने की कोशिश करेंगे?
1: अभी तो ये आंदोलन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, और मुझे लगता है इसमें सरकार की भी भलाई है कि जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो आज जो देश में लाखों के नंबर्स में स्टूडेंट्स और युवा सड़कों पर उतरे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे, तो सरकार की भलाई भी इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए।
0: लेकिन दो राउंड आपकी बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ में, आपका प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलकर आया हुआ है, आज भी जो बातचीत हुई है क्या आप उससे संतुष्ट है? क्या
1: संतुष्ट हूँ ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी जस्ट डायलॉग शुरू ही हुआ है, मोस्टली उन्होंने कहा कि वो दो डिमांड्स पर अग्री कर रहे हैं, बट उस पर भी उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई दिया नहीं है, उन्होंने कल फिर से डायलॉग के लिए बुलाया है तो हम फिर से डायलॉग के लिए जाएंगे, बट हमारी प्राइमरी डिमांड जो है उससे हम पीछे नहीं हटने वाले, दैट इज द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर।
0: लेकिन एक और इस बीच जो चीज हुई है वो एजुकेशन सेक्रेटरी जो है उनका तबादला कर दिया गया, उनके जगह पर दो नए एजुकेशन सेक्रेटरी आएंगे, एक हायर एजुकेशन के लिए, एक प्राइमरी एजुकेशन और बाकी इसके लिए आएंगे, तो अब आप करप्शन का मुद्दा उठा रहे, कह रहे हैं कि भाई उनमें जो एक सेक्रेटरी है वो करप्शन में लिप्त है, ये मुद्दा आप कहां से उठा रहे, क्या यही मुद्दा रहेगा आप इसके आगे?
1: क्योंकि मुझे पता चला है कि उनके ऊपर ऑलरेडी करप्शन के बहुत सारे एलिगेशन थे, एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उन्होंने करप्शन किया हुआ था, तो एक तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है, करप्ट लोगों को ये सरकार प्रमोट कर रही है, तो ये क्या हो रहा है? हम बोल रहे कि कॉन्क्रीट एक्शन ले लो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, आप जो कर रहे हो वो ये करोगे और करप्ट लोगों को प्रमोट कर रहे हो, सो दिस इज नॉट राइट।
0: तो सरकार ने, धन्यवाद अभिजीत, आपने हमसे बात की इसके लिए, तो अभिजीत दिपके यहां पर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उनका आंदोलन चलता रहेगा और फिलहाल वो जिस तरीके से बातचीत हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है, यानी सरकार के सामने चुनौती अभी भी बाकी है। इस पर हम चर्चा करेंगे, दंगल में हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं।
2: पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं,
3: पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की कहानी 27वें दिन तक आ चुकी है, संसद में सियासत की कहानी के भी 5 दिन गुजर गए, मामला पेपर लीक के खिलाफ एक्शन और जवाबदेही का है, इधर नौजवान जंतर मंतर पर जमे हैं, उधर शहर शहर आंदोलन की चिंगारी फैल चुकी है। पेपर लीक के मुद्दे को साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक संगठित अपराध को दुर्घटना समझने वाली सरकार ने यूं तो नीट पेपर लीक के बाद कार्रवाई कर दी थी, नीट पेपर लीक का पता चलते ही सरकार ने गिरफ्तारी भी की, दोबारा परीक्षा भी कराई, संसद शुरू हुई, हंगामा बढ़ा तो तेज सुनवाई का वादा कर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिए, लेकिन पिछले 24 घंटे में सरकार ज्यादा संजीदा हो गई। पिछले 24 घंटे में 5 बड़े फैसले और डेवलपमेंट हुए, मेदांता में भर्ती सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हुआ, आंदोलन के बाद पहली बार पीएम मोदी का बयान आया, रातों रात शिक्षा विभाग के अफसर बदले गए, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन अधिनियम बिल कैबिनेट में मंजूर हुआ और सीजेपी से सरकार की अगले दौर की बातचीत हुई, सीजेपी ने सरकार के सामने अपनी वही 3 मांगे दोहराई जिनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक से पीड़ित मृतकों के परिवार को मुआवजा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापसी शामिल है।
4: अब की बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त।
5: सरकार आ गया है ये बोला गया, ये क्या कर रहे हैं भाई, नंबर 3 डिमांड है कॉम्पेंसेशन और एफआईआर और गारंटी का।
3: बैठक में शामिल जेपी नड्डा ने बताया कि सीजेपी से 2 घंटे की बातचीत हुई, 3 मांगे और 5 सुधारों के सुझाव की चर्चा हुई है।
6: हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा
7: वो आप इस्तीफा करा लो, दोबारा शपथ करा दे, विपक्ष क्या कर लेगा? अगर मान लीजिए आज इस्तीफा करा लें, 15 दिन बाद फिर शपथ दिला दी किसी दूसरे विभाग की, विपक्ष क्या कर लेगा? लेकिन कम से कम कमी तो स्वीकार करें कि हाँ गलती हुई है।
3: सीजेपी की 3 मांगे पहले दिन से सार्वजनिक है और आंदोलन खत्म करने के लिए 5 सुधार भी सुझाए गए। जिसमें परीक्षा केंद्रों पर एडवांस डिजिटल लॉक्स और हार्डवेयर सुरक्षा का उपयोग का सुझाव है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की निगरानी के लिए एक नए स्वतंत्र और पारदर्शी रेगुलेटरी बॉडी के गठन का प्रस्ताव है। परीक्षा कराने वाली एनटीए जैसी एजेंसी की जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव है। विद्यार्थियों की शिकायत और धांधली की खबरों की तुरंत जांच के लिए एक फास्ट ट्रैक शिकायत निवारण प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है और पेपर लीक रोकने में नाकाम अफसरों पर कठोर दंडात्मक कानून लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें केंद्रीय कैबिनेट ने पांचवें प्रस्ताव पर एक्शन भी ले लिया। कैबिनेट ने पेपर लीक के दोषी को 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने के प्रावधान वाले सार्वजनिक परीक्षा संशोधन अधिनियम बिल को मंजूर कर लिया है। दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन से सरकार डील कर रही है, लेकिन विपक्ष इस आंदोलन का अब अधिकतम फैलाव कर रहा है। एक तरफ शहर शहर प्रदर्शन कराए जा रहे हैं, कोलकाता में तो लेफ्ट छात्र संगठनों ने नया मोर्चा खोला, दूसरी ओर सीजेपी ने अफसरों के तबादले से संतोष जारी कर अब पूरे सिस्टम के करप्शन का सवाल करना शुरू कर दिया, और तीसरी ओर राहुल गांधी अब प्रदर्शनकारियों पर हुए अत्याचार का सवाल उठाने लगे।
8: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना, ये देखिए ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है।
3: उधर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट भी अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: तो एक बात तो साफ है कि सरकार फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बातचीत करने को तैयार नहीं नजर आ रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से सरकार खबर दे रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, कारण भले जो भी दे रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रतिनिधि मंडल सीजेपी की तरफ से मिलने गया था उनको उनके तरफ से कहा गया है कि हम कल तक आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दिपके, थोड़ी देर पहले जो उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में यही होगा कि क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे, चरण सिंह सप्रा कांग्रेस के तरफ से और विपक्ष के तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगी। तीन सवाल इस पैनल के सामने, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अभिजीत दिपके को भी सुना होगा जिनके साथ मैंने थोड़ी देर पहले बातचीत की है। पहला सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देने के पीछे सरकारी सूत्रों की दलील जो दी जा रही है वो सही है? क्योंकि दलील ये दी जा रही है कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उसे जिम्मेदारी से भागना कहा जाएगा, क्या यह दलील सही है? दूसरा सवाल, क्या पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सियासत से प्रेरित है? क्योंकि विपक्ष भी इसी मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है और बार बार यह कह रहा है कि पहले पर्चा फिर चर्चा, तो क्या यह सियासत से प्रेरित मांग है? और तीसरा सवाल, सीजेपी का आंदोलन परीक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार या करप्शन के खिलाफ है? क्योंकि अब मामला करप्शन का भी उठ रहा है, जिन्हें शिक्षा सचिव के रूप में अब नियुक्त किया गया है उन पर करप्शन के आरोप है, ऐसा सीजेपी का कहना है, और जिसके चलते जो सरकार कर रही है वो लीपापोती है, यह भी कहने की उनकी कोशिश है। शुरुआत करते हैं तो इनसेना जी, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देना चाहते या फिर सरकार ने यह फैसला किया है कि जिम्मेदारी से भागना होगा इस्तीफा देना, तो सूत्रों के हवाले से खबर क्यों आ रही है? आप अधिकृत तौर पर बता दीजिएगा कि किसी भी हालत में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, जो प्रतिनिधि मंडल सरकार से आकर मिल रहा है उन्हें बता दीजिएगा कल तक का समय क्यों मांग रहे हैं।
9: साहिल जी नमस्ते, सबको नमस्ते। देखिए, अगर सरकार के तरफ से औपचारिक सूचना नहीं आई है तो इसका अर्थ है कि हम पूरी तरह से डिस्कशन के लिए तैयार हैं, और डिस्कशन में मेरे ख्याल से विपक्ष के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। जिस एजुकेशन मिनिस्टर की देख रेख में ये पूरा जो है ये पेपर लीक हुआ है, आप उनसे सवाल जवाब नहीं करना चाहते पार्लियामेंट के अंदर, आप उनको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहते। अगर इतनी अंडर कॉन्फिडेंट है हमारी ओपोजिशन, मेरे ख्याल से एक बहुत सुनहरा अवसर है उनके पास, और इनको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। अगर उस सवाल जवाब के बाद तब भी उनको लगता है कि वो उनका सवाल जवाब नहीं दे पाए, तब आप मांगिए। लेकिन मानव सोच के तीन पड़ाव होते हैं, तीन चरण में आप उनको देख सकते हैं। एक एक जो होता है, कुछ लोग केवल व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ इवेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ जो है व्यवस्थागत सुधार के बारे में करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि विपक्ष सामने आए और लॉन्ग टर्म व्यवस्थागत सुधार के बारे में खुलकर चर्चा हो, जिससे कि यह समस्या दोबारा कभी उत्पन्न ही ना हो। विपक्ष से भागता है। आप खुद सोचिए कि विपक्ष ने 10 बार यह तो मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान जी छोड़ दे अपना पद, लेकिन क्या एक सुझाव, एक ढंग का सुझाव इस विपक्ष से आया है? अगर इस पूरे डिस्कशन के बाद भी विपक्ष को लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ही दोषी हैं, तो वो बिल्कुल मांगे इस्तीफा। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त हमें डिस्कशन से भटकना नहीं चाहिए, और दूसरा, थोड़ा सा विपक्ष को अपने गिरबान में भी झांक कर देखना चाहिए। 3 दिन पहले झारखंड में एक बड़ा स्कैम हुआ है पेपर लीक का। क्या हेमंत सोरेन जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है? पंजाब में इसी सप्ताह खबर आई है जो पंजाब केमिस्ट एंट्रेंस एग्जाम का स्कैम है, जिसमें कि पेन ड्राइव में और पेन्स में जो है कैमरा फिक्स किए गए थे। उसमें तो अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक को आप बना दीजिए एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब का, अभिजीत डिपके को बना दीजिए चीफ मिनिस्टर पंजाब का। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, ये स्टूडेंट के कॉज को बहुत ज्यादा हार्म करता है।
10: तो इन सेना विपक्ष को 2 मिनट के लिए हम दरकिनार कर देते हैं, भूल जाइए कि विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है या विपक्ष इस बात को मांग को लेकर अड़ा हुआ है, ठीक है। पहले मुद्दा किसने उठाया था? सोनम वांगचुक और सीजेपी ने, कांग्रेस जनता पार्टी ने। अभिजीत दीपके और उनके सहयोगी वहां पर अनशन के लिए बैठे हुए थे, आंदोलन के लिए बैठे हुए थे जंतर मंतर पर। 3 मांगे उन्होंने आज की तारीख में रखी, लेकिन पहली उनकी ओरिजिनल मांग थी कि जो इसके लिए जिम्मेदार है वो इस्तीफा दे, जिन्होंने वादा किया था कि हम किसी भी तरीके से पेपर लीक नहीं होने देंगे, क्योंकि एनटीए का जो निर्माण किया गया वो यही कहकर किया गया कि राज्यों में जो परीक्षाएं होती है उसमें पेपर लीक की संभावना होती है, इसीलिए हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो फुल प्रूफ हो, और इसीलिए एनटीए का निर्माण किया गया था। लेकिन हुआ क्या, एनटीए में हर साल करीब करीब उसके बावजूद भी पेपर लीक होता रहा है। अब ऐसे में सवाल जो ये संस्था चला रहे हैं, जो ये पूरा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं, और सरकार ने वहां पर जो सेक्रेटरी है उनको तो बदल दिया। अगर आप उनको बदल रहे हैं तो उनके जो मुखिया है, उनके जो प्रमुख है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, यह सवाल अभिजीत दीपके यहां पर उठा रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने यही मुद्दा रखा हुआ है, जवाब इसका चाहिए।
9: साहिल जी, जैसा आपने कहा, फिलहाल सबको अलग कर देते, सिर्फ मैं सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूं। अगर इस्तीफा नहीं हुआ है तो यह भी संभव है कि कुछ बहुत बड़े जो व्यवस्थागत सुधार पर काम चल रहा है पिछले 2 महीने से, वो सामने आने वाला है। देखिए, दिस ये सरकार जो है ना, एक एक सरप्राइज करने की क्षमता रखती है जो इस विपक्ष में नहीं है। इस विपक्ष की सोच जहां खत्म होती है, समाप्त होती है, वहां से हमारी सोच शुरू होती है। तो आप 1 हफ्ते रुकिए, आप देखिए कि पिछले 2 महीने में क्या क्या काम हुए हैं। 40 दिन के अंदर त्वरित तरीके से त्रुटि मुक्त री एग्जाम भी हुआ। यह भी निर्णय लिया गया कि अगले साल पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट में नीट एग्जाम होगा। 13 लोग गिरफ्तार हुए, और अब उन 13 लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए उस लॉ के तहत पनिश किया जाएगा जो लॉ हमने लाया था 2024 में, जो पहला एंटी कॉपिंग लॉ है, और वो भी अमेंड करके उसको और ज्यादा खौफनाक बनाया जा रहा है, जिसमें संभवतः 10 साल की सजा का भी प्रावधान होगा। तो इतना सब कुछ पिछले 2 महीने में हो रहा है। यह कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये लोगों को बस गुमराह करना है। देखिए, स्थिति पिछले 18 घंटे में बिल्कुल बदल गई है।
10: तो गुमराह कौन कर रहा है? सीजेपी गुमराह कर रही है? नहीं, गुमराह कौन कर रहा है? सीजेपी गुमराह कर रही है?
9: राहुल गांधी?
10: नहीं, तो अभी अभिजीत दीपके भी कह रहे थे कि हम संतुष्ट नहीं है, लीपापोती चल रही है, तो सीजेपी भी कह रही है।
9: नहीं, सीजेपी के साथ आज बहुत अच्छा संवाद हुआ है।
10: कह रहे थे
9: सीजेपी के साथ आज बहुत अच्छा संवाद हुआ है। जो संवाद अभी होने वाला है वो सीधा सीधा संवाद स्टूडेंट्स और सरकार के बीच में हुआ है, होने वाला है। जो पार्टियां बिचौली बनने का काम कर रही थी, अब उनका कोई स्थान नहीं रहेगा, और इसलिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है ये उन पार्टियों के लिए जिन्होंने स्टूडेंट्स का उपयोग किया है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पिछले 4।
10: ठीक है, तो विपक्षी पार्टियां बिचौलिया है, आप बिचौलिया है, डायरेक्टली संवाद हो रहा है सीजेपी के साथ में, जिनकी मांग अभी भी वही कायम है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उसके बाद ही बात आगे करेंगे, ये बात वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप बिचौलिए हैं। चरण सिंह सप्रा,
11: देखिए साहिल जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कहीं सरकार एक सरप्राइज देने वाली है। हाँ बिल्कुल, सरकार सरप्राइज ही दे रही है। सरकार ये कह रही है कि हमारी जो नैतिक जवाबदारी है वो बड़ा शून्य है। ये सरप्राइज है इस देश के लिए, 140 करोड़ जनता के लिए सरप्राइज है कि इस सरकार की कोई नैतिक जवाबदारी नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, ये सरकार जो है वो राजीनामा लेगी नहीं, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया है, यानी बता दिया है कि ये निरंकुश सरकार है, ये निर्लज सरकार है, ये निर्दयी सरकार है, ये इन्होंने अब खुद ही बता दिया है सरप्राइज वाली बात बोल करके। अच्छा, अगर सरप्राइज बता रहे भाई, ये आग तो आपकी लगाई हुई है ना, ये आग आपने लगाई है और आप अभी बुखलाए भी हुए हो, बुखला करके इस आग को भी आपने ही बुझाना है। हो क्या रहा साहिल जी, ये सारी देश को पता है, सारे छात्रों को पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो वेंटिलेटर पर है, और छात्रों और विपक्ष चाहता है कि एक मेजर सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, वो एक फर्स्ट एड का डिब्बा लेकर के आईसीयू की परिक्रमा कर रहे हैं, वहां पर आईसीयू की परिक्रमा हो रही है फर्स्ट एड बॉक्स से, ये चीजें हो रही है। आज देश को ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, देश को फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, फास्ट ट्रैक नियत चाहिए। इनकी नीति और नियत दोनों में खोट है, हमें एक अच्छी जांच चाहिए, यही छात्र मांग कर रहे हैं ना, और इनकी नियत और नीति में खोट है, इसके लिए छात्रों का एक ट्रस्ट डेफिसिट बन गया है, ट्रस्ट डेफिसिट है,
10: ठीक है,
11: छात्र इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और हो क्या रहा, प्रदर्शन हो रहा है,
10: एक जगह आपके लिए भी बनता है,
11: 20 शहरों में प्रदर्शन हो रहा है, 20 शहरों में।
10: जो मुद्दा तुहिन सेना अभी उठा रहे थे, एक सवाल आपके लिए भी बनता है, तुहिन सेना एक मुद्दा उठा रहे थे, और मेरे ख्याल से आज भी जब पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू हुई तब बार बार आपके सामने यही प्रस्ताव रखा गया कि चर्चा करते हैं, आइए बैठते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, समय तय करते हैं और पूरा एक चर्चा करेंगे इस पर कि कैसे इस पे सुधार किया जाए, क्योंकि मामला देश के सामने गंभीर है। सरकार को भी तब समझ में आया जब 20 तारीख को बड़ी संख्या में दिल्ली की सड़कें जाम हो गई, वहां पर छात्र उतर कर सामने आ गए, और उसके बाद सरकार को पता चला कि इसमें सचमुच में उनके पीछे लाखों की संख्या में छात्र और युवा लोग वहां पर खड़े, तब जाकर सरकार ने कार्यवाही शुरू की है। यानी सरकार अगर कह भी रही है कि हमने फटाफट काम करना शुरू किया है, तो वो 20 तारीख के बाद शुरू हुआ है, 20 तारीख के पहले कोई उनसे बातचीत भी नहीं कर रहा था। लेकिन आपसे भी सवाल है, क्यों नहीं आप सदन चलने देते, क्यों आप इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, चर्चा शुरू करिए। तू इनसे ना कह रहे हैं कि सवाल पूछने का मौका मिलेगा आपको धर्मेंद्र प्रधान का, पार्लियामेंट से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। यही दलील तो आपकी, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तब कांग्रेस के तरफ से भी यही दलील दी जा रही थी कि भाई सदन चलने दीजिए, चर्चा वहां पर करिए, आप क्यों नहीं सदन चलने दे रहे।
11: देखिए, अगर सरकार को 20 तारीख तक यही नहीं पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, अगर ग्राउंड की पल्स नहीं पता है, छात्रों की पल्स नहीं पता चलती है, तो मैं खुलेआम कहना चाहूंगा कि ये नालायक सरकार है, और नालायक सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कैसी बातें करते हैं वहां पर, मैं आपको एक सिलसिलेवार अगर क्रोनोलॉजी भी बताऊं तो व्यापम का जो घोटाला था, व्यापम का घोटाला क्या था, यही पेपर लीक का घोटाला था मेडिकल स्टूडेंट्स का, उसमें क्या कोई नतीजा निकला, उसकी और इसकी क्रोनोलॉजी एक है। क्या पहले ये इनकार करते हैं पेपर लीक हुआ ही नहीं, इस तरह से इनकार करते हैं, यहां भी इन्होंने इनकार किया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में, इन्होंने इनकार किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, फिर ये उसके बाद में एक मिनट में सवाल पे भी आता हूं, फिर ये लीपा पोती करते हैं और फिर ये इंसाफ का इंतजार कराते हैं, यही अभी भी हो रहा है। हाँ, सवाल आपका ये है कि भाई आप सेशन क्यों नहीं चलने देते, भाई ये हम जनता की मांग कर रहे हैं, आज छात्रों के ऊपर जिस तरह से 20 तारीख को इन्होंने लाठियां चलाई है, जिस तरह से टियर गैस चलाए गए हैं, पैलेट गन चलाए गए हैं, जिस तरह से पैलेट गन का मुझे बताइए, पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी उस आरपीएफ के अधिकारी को, उस पैलेट गन को आर्मरी से इश्यू किसने किया, उस पैलेट गन को चलाने का आदेश देने वाला कौन है, ये सारी चीजों की तहकीकात होनी चाहिए। क्या छात्र निहत्ते छात्र जो है 19 साल 20 साल के छात्रों पर आप पैलेट गन चलाते हो, लड़कियों के कपड़े फाड़ते हो, लड़कियों को डंडे से मारते हो, मोलेस्टेशन वहां पर होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है, ये आपकी विचारधारा है,
10: आपको
11: ये सिखाया जाता
10: है, मिलाकर नजर ही आ रहा है कि मांगे कुछ और हो रही है और सरकार फुलफिल किसी और चीज का कर रही है। यानी विपक्ष और सीजेपी मांग कर रही है कि हमें तो चाहिए एप्पल, आप देने की कोशिश कर रहे हैं ऑरेंज, तो उनका कहना है कि भाई एप्पल ऑरेंज का खेल नहीं चलेगा, जो हम मांग रहे हैं उसमें से कुछ तो ठीक करिए।
9: साहिल जी,
10: देखिए पैलेट गन की तस्वीर है, और ये जो व्यक्ति है जिनको राहुल गांधी लेकर आकर खड़े हुए थे, उनका नाम भी साहिल है, और वो कह रहे हैं कि पुलिस भर्ती की परीक्षा देकर वो आए थे और उसके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे।
9: नहीं, अगर कोई भी तो सरकार
10: की तरफ से आप कदम आगे बढ़ाएंगे ना विपक्ष की मांग पर।
9: देखिए साहिल जी, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, कोई भी पुलिसकर्मी अगर बेवजह उसने इस तरह का इसकी हरकत की है तो उसके खिलाफ जांच होगी, एक्शन ली जाएगी। लेकिन हमने भी कई वीडियोस देखे हैं, आपके पत्रकार को मारा गया है, हमने भी कई वीडियोस देखे हैं जहां की एक आरएएफ के जवान को सारी जांच होगी, हर हर हर जगह जहां पे हिंसा का गलत प्रयोग हुआ है बिना मतलब बेवजह।
11: मेरा सवाल उससे बड़ा है,
9: आपके बीच में मैं बोलता हूँ, ये क्या तरीका है?
11: आर्मरी से किसने दी?
9: कोई भी कहीं पर भी अगर बेवजह हिंसा का इस्तेमाल हुआ है तो उसकी जांच की जाएगी। साहिल जी, मैं सवालों का जवाब देना,
10: लेकिन मुझे बताइए, तुहिन सिन्हा एक मिनट,
11: तो अमित शाह ने जवाब देना चाहिए।
10: सप्रा जी एक मिनट तुहिन सिन्हा, क्या पैलेट गन चलाने की इजाजत दी गई थी? पैलेट गन चलाने की इजाजत, एक मिनट सप्रा जी, एक मिनट,
9: देखिए
10: इजाजत दी गई थी, पैलेट गन चलाने की इजाजत दी गई थी?
11: तो डिनाई किया था, पुलिस
9: ने
11: डिनाई किया कि पैलेट,
9: बिल्कुल नहीं दी गई थी। और इसकी जांच होगी, किस परिस्थिति में हुई और क्यों हुई और किसको किसने मैंडेट दिया, ये सब की जांच होगी। क्या हम इससे भाग रहे हैं? हर जगह जहां हिंसा का प्रयोग हुआ है,
11: छात्रों के
9: मत बोलिए ना सप्रा जी, हर जगह जहां पर हिंसा का प्रयोग हुआ है वो अरे
11: मतलब
9: जिसको घसीट कर मार रहे थे कुछ गुंडे,
11: ये
9: उसके भी विश्लेषण हमने देखे हैं।
10: सप्रा जी एक मिनट, ठीक है,
9: टाइम्स नाउ के पत्रकार जिस प्रकार से मारा गया उसके भी विश्लेषण हमने देखे हैं, हर जगह जहां हिंसा का
10: प्रयोग हुआ है। जरा सप्रा जी को शांत करिए प्लीज, इस तरीके से नहीं होगा, मामला गंभीर है, आप इस तरीके से चर्चा मत करिएगा। सप्रा जी, मैं आपको भी समय दे रहा हूँ, उनको भी समय दे रहा हूँ। तो इनसे ना जी, मेरा स्पेसिफिक सवाल एक बार फिर, आपने कहा कि पुलिस
9: मैं,
10: एक मिनट सप्रा जी, एक मिनट, मैं उसी में आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस वालों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, जिस तरीके से पुलिस वालों पर हमले किए गए 20 तारीख के बाद में, वो सही नहीं है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप कार्रवाई करेंगे उस पर, ठीक है, मैं मानता हूं। आप मैं ये भी मानता हूं कि वहां पर पत्रकारों को जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चलिए वो भी मैं मानता हूं। लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि जिसने पैलेट गन चलाने के आदेश दिए हैं उनको इस सर्विस से निकाल दिया जाएगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा? जो पुलिसकर्मी वहां पर सादे देश में यानी अपना यूनिफॉर्म पहने बिना वहां पर लाठी चार्ज कर रहे थे, जिनकी तस्वीरें वहां पर घूम रही है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? उन पर
9: मैंने स्पष्ट कहा है साहिल जी, मैंने स्पष्ट, अरे मैंने
10: आप वादा करते हैं,
9: मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है जांच होगी। राहुल गांधी के वीडियो को आधार पे नहीं होगा, राहुल गांधी बहुत सारे फेक वीडियोस बनाते हैं, जांच होगी। अगर अगर कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है,
10: राहुल गांधी का वीडियो नहीं है,
9: लेकिन राहुल गांधी
10: इंडिया टुडे की स्टोरी है, जहां पर
9: राहुल गांधी,
10: जहां पर अस्पताल के कागज भी हमने दिखाए हुए हैं, वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा, पैलेट गन चलता है कहां पर, आपको पता है? तुहिन सिन्हा जी,
9: मैंने बहुत,
10: क्या इस पर कार्रवाई होगी?
9: मुझे पता नहीं आपको क्यों मेरी बात नहीं समझ, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि जांच के उपरांत अगर वो पुलिस दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगी। मैं जरा आपसे 30 सेकंड और ले लूं, देखिए आज की तारीख में आज जो बातचीत हुई है सरकार और सीजेपी के बीच, उस पर भी मैं कह दूं कि सीजेपी की आज क्रेडिबिलिटी कांग्रेस पार्टी से अधिक है। उन्होंने तीन तीन जो है डिमांड्स रखे हैं, उस पर विचार हो रहा है, हमने कब मना किया, और कल भी संभवतः बातचीत होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आग लगाने का काम कर रही थी, अब इनका काम खत्म हो गया है। राहुल गांधी जो अपने रहस्यमय विदेशी यात्रा के कारण अपने ही तीन रैलीज को कैंसिल करते हैं, स्टूडेंट रैलीज को कैंसिल करते हैं, आज अगर मखरमच्छी आंसू मारे, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के पास कम से कम कुछ आइडियाज तो है कांग्रेस पार्टी का, सिवाय इसके कि आप इस्तीफा दीजिए, कोई आइडियाज नहीं है इनके पास। और तब भी मैं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में आइए, हमें आपकी प्रतीक्षा, इस बार हम आपको जाने नहीं देंगे। आपने इसी तरह से
10: तीन डिमांड पर चर्चा होगी, वो कह रहे
9: हैं, सप्रा जी हम तो थ्रेड बेयर कह चुके हैं।
11: देखिए देखिए साहिल जी, ये राहुल जी पर आरोप लगाते हैं, नरेंद्र मोदी क्या घड़ियाली आंसू रात को 1 बजे बाहर हैं भाई, वो अपना वीडियो जारी करके क्या हो रहा है ये सारी चीजें, और पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी, एक बात, पैलेट गन आर्मरी से इश्यू कैसे हुई, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए से इंक्वायरी होनी चाहिए, और अमित शाह ने इसकी नैतिक जवाबदारी लेनी चाहिए, अमित शाह ने राजीनामा देना चाहिए।
10: चलिए
11: छात्र के
10: चर्चा आगे बढ़ाएंगे,
11: क्या ये
10: क्योंकि मामला
11: पत्थरबाज थे, आप क्या कहना क्या चाहते हैं, क्या इनके पाकिस्तान से लिंक है, आपने किस तरह से पैलेट गन चलाई, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको, नहीं तो
10: इस बार कोई लिंक नहीं चल पाया
11: पड़ेगा। ठीक,
10: अगर लिंक की बात होती तो सरकार वहां पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठती, सूत्रों के हवाले से चीजें भूल जाइए। सप्रा जी एक मिनट,
9: पार्लियामेंट में हम प्रतीक्षा
10: करने आगे मुद्दा
9: बढ़ने वाले हैं, पार्लियामेंट में आएंगे सोमवार को,
10: उम्मीद वही है कि पार्लियामेंट के भीतर भी चर्चा होगी, लेकिन सप्रा जी एक मिनट तो सिन्हा जी, मुझे आशुतोष जी के पास जाना है क्योंकि आपने कारण सुने, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से कारण दिए गए हैं। कारण ये दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उसका मतलब ये निकाला जाएगा कि वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, इसके लिए अपने पद पर बने रहेंगे। हालांकि इस बात की किसी भी तरीके से आधिकारिक पुष्टि नहीं है, किसी भी तरीके से सरकार की तरफ से इसका कोई बयान नहीं दिया गया है। जो सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मिला था उनके सामने जेपी नड्डा सिर्फ इतना कह चुके हैं कि कल 2 बजे हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से एक खबर।
12: ये बार बार पेपर लीक का सवाल खड़ा किया जा रहा है, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, जब पेपर लीक को लेकर पूरे देश के अंदर हंगामा मचा हुआ है, उस वक्त भी उत्तराखंड की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुए हैं 2 सब्जेक्ट के। आप सोच लीजिए, उत्तराखंड में भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कैसे मान लिया जाए कि ये संजीदा है पेपर लीक के मसले को लेकर? जब इतने बड़े आंदोलन के बाद भी अगर पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, इसका मतलब ये पेपर लीक के पीछे कुछ बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली लोग इन्वॉल्व हैं। अन्यथा इतनी हिम्मत तो कम से कम नहीं होती कि जब यहां आंदोलन पर बैठे हुए हैं लोग, तब वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान को लेके जो एक चिंता पैदा हो गई भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको इस बात का पूरा एहसास है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो फिर ये यहीं पे नहीं रुकने वाला, फिर अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाएगा और फिर देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस है वो सीधे सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करती, जो देश के गृहमंत्री हैं। अगर उनकी मौजूदगी में, उनके गृहमंत्री रहते हुए अगर पैलेट गन चल रही है, लाठियों में कीलें लगी हुई हैं, छात्रों और बच्चियों के साथ एक तरीके से बदसलूकी की जा रही है, उनको जानवरों की तरह पीटा जा रहा है, तो यह मसला सिर्फ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का नहीं है, यह मसला दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का सिर्फ नहीं है, यह मसला अमित शाह तक भी जाता है। और अगर आप जंतर मंतर पे जाएं तो आपको इस बात का अंदाजा होगा, वहां लोगों के अंदर नाराजगी धर्मेंद्र प्रधान को लेके कम है, अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके ज्यादा है, क्योंकि हर आदमी यह जानता है कि यह वो सरकार है जहां परिंदा भी पर नहीं मानता अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से इशारे नहीं होते। तो धर्मेंद्र प्रधान तो एक प्यादा है, अभी सिर्फ इतनी सी जरूरत है कि सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, और अगर आज ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, तो इतने सालों से वो शिक्षा मंत्री क्या सो रहे थे क्या? वो इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार क्या हो सकता है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद पेपर लीक हो रहे हैं और आपके हाथ में कुछ भी नहीं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान के भी हाथ बंधे हुए हैं, ये कहीं और से संचालित हो रहा है, ये पेपर लीक रुकने वाला नहीं है।
10: तो इनसे ना जवाब दीजिए।
9: देखिए, ये सवाल जो है
10: स्नोबॉल इफेक्ट कहा जाता है, स्नोबॉल इफेक्ट, उससे उसके डर के वजह से सरकार इसमें हाथ नहीं डाल रही है, ये आरोप है।
9: मैंने देखिए, आशुतोष जी को भी मैं वही कहूंगा कि सोच के तीन जो है चरण होते हैं। अगर पहला तो इस्तीफा हो जाता मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज 2.5 महीने में वही व्यक्ति जो है व्यवस्थागत सुधार के में पूरी तरह से जुटा हुआ है, आप सुनना नहीं चाहते उसको पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, आज से 3 साल पहले एक रेल हादसा हुआ था, अगर हम आनंद फानंद में रेलवे मंत्री का इस्तीफा लेते, आज जो रेल रिफॉर्म्स आप देख रहे हैं, और रेल रिफॉर्म्स के बारे में आशुतोष जी को बहुत भली बात पता है, जिस पैमाने में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जिस प्रकार से टिकटिंग में हर प्रकार से रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्या वो संभव होता? तो देखिए, जो व्यक्ति अगर शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, जो कि आपको डिस्कशन के बाद एक नया स्वरूप हो सकता है मिले, आप डिस्कशन के उपरांत जो है निश्चित रूप से दोबारा ये मांग रखिए और तब जो है ये दोबारा डिस्कस करिए, इस्तीफा होना चाहिए नहीं, लेकिन आज अगर आप पूरे डिस्कशन को
10: ठीक है, नहीं आशुतोष इसका जवाब देंगे, लेकिन एक बात मुझे क्लेरिफिकेशन दे दीजिएगा, क्योंकि कल रात को अचानक खबर आई जिसका मैंने जिक्र भी किया कि एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया, क्या इसका मतलब हम ये निकालकर चले कि ये जवाबदेही फिक्स करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई कि अधिकारी जो है उनकी जिम्मेदारी थी ठीक से ये काम करने की, जो दरअसल एनटीए में काम कर चुके हैं, वो एनटीए के डायरेक्टर रह चुके हैं, वो सीबीएसई के डायरेक्टर रह चुके हैं, और फिर भी वो पेपर लीक नहीं रोक पाए, इसके लिए उनका तबादला कर दिया गया, क्या ये हम मानकर
9: चले?
10: इस पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है?
9: आपको पूरी आजादी है कि आप उसको इंटरप्रेट करिए, क्योंकि उसी समय दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत त्वरित नोटिफिकेशन भी आ गया कि जो फास्ट ट्रैक करने का हमने निर्णय लिया था वो भी नोटिफाई हो गया, और प्रधानमंत्री ने
10: मुंबई में भी बनाया, अब नागपुर में भी बनाया। मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट पे नहीं जा रहा हूं, मैं जवाबदेही फिक्स करने की बात कर रहा हूं, क्या इसका मतलब निकाला जाना चाहिए? साहेब, या फिर ये तबादले का क्या मतलब है, क्या इसका मतलब निकाला जाना चाहिए?
9: आप उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऐसे बहुत निर्णय होने वाले हैं अगले कुछ दिन में, आप प्रतीक्षा करिए, ऐसे निर्णय होंगे जिसकी कल्पना ये विपक्ष नहीं कर सकती है और ये सुधार अब नहीं रुकेगा। विपक्ष जो है तैयार होकर डिस्कशन के लिए आए, बस हम इतना चाहते हैं।
12: साहिल,
10: ठीक है आशुतोष।
12: साहिल देखिए, ढाई महीने से सरकार क्या सो रही थी क्या? तब फैसले क्यों नहीं हुए, तब रिफॉर्म क्यों नहीं हुए? आप सो रहे थे? ये लड़के दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे थे, ये लड़के जयपुर गए, पुणे गए, तब तो सरकार को ध्यान नहीं पड़ा। अब सरकार को ध्यान पड़ रहा है। अब सरकार देखिए, असल बात क्या है, ये सरकार अपने आप को संसद के प्रति जवाबदेह नहीं मानती। अगर जवाबदेह मानती तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज नहीं, इस आंदोलन शुरू होने के पहले से होगा। जैसे कि मनमोहन सिंह की सरकार में इस्तीफे हुए, यहां तो राजनाथ सिंह सीधे कहते हैं हम इस्तीफे क्यों दें, हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। तो ये जो जवाबदेह सरकार होती संसद के प्रति, वो संसद के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती है और अगर कहीं गलत होता है तो उसके लिए जवाबदेही होती है। मैं मनमोहन सिंह की सरकार में एक दिन में 3 मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ था, उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ था, केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था। यहां बता दिए किसका इस्तीफा हुआ, नहीं इस्तीफा हुआ, क्योंकि ये सरकार, और कह रहे हैं इसका मतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान इनके यहां सबसे काबिल मंत्री हैं, अगर वो इस्तीफे दे देंगे तो रिफॉर्म रुक जाएगा। अगर सबसे काबिल मंत्री का यह हाल है कि इस देश के अंदर पेपर लीक हो जा रहा, रुक नहीं रहा है, तो इनके बाद जो आएगा उसका तो और भी बुरा हाल होगा। ये सरकार कहना चाहती है,
10: अगर ये सरकार कहना चाहती है पेपर लीक के बाद में, तुहिन सेना आपको याद होगा तब यह खबर बताई गई थी कि खुद प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप इस पूरे बात को। अगर प्रधानमंत्री को इसमें दखलंदाजी देनी पड़ रही है तो मंत्री का क्या काम, ये बात भी तो सवाल उठता है ना वहां पर।
9: देखिए,
10: जिस बात को लेकर सरकार कह रही है कि हमने ठीक काम किया, पेपर लीक के बाद हमने तुरंत परीक्षा करवाई और बहुत अच्छे तरीके से करवाई, लेकिन यह भी खबर आपने दी थी कि प्रधानमंत्री को खुद उसको देखना पड़ रहा है, ये भी आपने कहा था, आपको याद होगा।
9: देखिए साहिल जी, प्रधानमंत्री नहीं, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हमने अपनाया था। ये हमारे लिए प्रतिष्ठा का भी और जिम्मेदारी का विषय था कि 40 दिन के अंदर किस तरह त्वरित तरीके से, त्रुटि मुक्त तरीके से एग्जाम हो। देखिए, कोई भी एग्जाम पेपर लीक पूरे तरह से जो है ना, आज जो है

0: डिसरप्ट करना भी एक डेमोक्रेटिक कार्य है। अब भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत तकलीफ हो रही। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, भारतीय जनता पार्टी तुहिन सिन्हा आपकी इस पूरी बातचीत में वो जो है बच्चों के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते, वहां पे जो काकरोच का आंदोलन उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, पूरी बातचीत को वो डिरेल करके एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि दरअसल विपक्ष विपक्ष
1: पूरे मामले
0: है हिम्मत है हिम्मत भारतीय जनता पार्टी
1: पूरे मामले के सेंटर में कोई है तो वो आम स्टूडेंट है कि जो आज सड़क पर यहां पर दिखाई दे रहा है, और उसकी ताकत अगर नहीं दिखाई देती तो हो सकता है कि सरकार इस बातचीत के लिए भी तैयार नहीं होती, हो सकता है कि विपक्ष जो आम तौर पर सड़क की लड़ाई करने से परहेज करता था वो सड़क पर आज दिखाई नहीं देता। तो ये विपक्ष के साथ साथ सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है कि आखिरकार उस युवक ने सड़क पर उतर कर दिखा दिया है कि हम जेंजी जरूर है लेकिन सड़क पर उतर कर हमारी हक की लड़ाई भी हम लड़ सकते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन दीप्ति तनेजा, पांच चीजें सीजेपी के सुझाव दिए गए हैं, आप प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर, पांच सुझाव दिए गए हैं, पांचों सुझाव हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। पहला सुझाव है कि परीक्षा केंद्रों पर एडवांस डिजिटल लॉक्स हार्डवेयर सुरक्षा का उपयोग का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की निगरानी के लिए एक नए स्वतंत्र पारदर्शी रेगुलेटरी बॉडी के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। परीक्षा कराने वाली एनटीए जैसी एजेंसी की जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव दिया गया है, और विद्यार्थियों की शिकायत धांधली की खबरों की तुरंत जांच का प्रस्ताव, और आखिर में पेपर लीक रोकने में नाकाम अफसरों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रस्ताव दिया गया। ये पांचों प्रस्तावों को आप किस तरीके से देखती है, क्या आपको लगता है कि ये लागू होने चाहिए? राजनीति दूर रख दीजिएगा।
2: जी नमस्कार साहिल जी, आपने बहुत ही बढ़िया एक सवाल पूछा है और इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि बिल्कुल इन पांचों मुद्दों पर, इन पांचों बिंदुओं पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बखूबी बात तो ये है कि इन पे ऑलरेडी सरकार की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है। जिस तरीके की ये बातचीत बाकी चल रही है कि जिस तरीके से दीपके कह रहे हैं, जो आपने ये जहां पे मुद्दा उठा है कि धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन, ये इन पांचों डिमांडों से पहले जो प्री डिमांड की तरह रखा जा रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉजिंग ऑल द पॉलिटिक्स। ये जो पांचों बिंदु हैं, ये पांचों बिंदु तो अगर हम राधाकृष्णा रिपोर्ट पे जाएं, जो 2024 में पेपर लीक हुआ, जिसके बाद वो रिफॉर्म्स भी आए, जो एक्ट भी बनाया गया है सरकार के द्वारा, तो वो जो राधाकृष्णा रिफॉर्म्स थे उसको एक कदम आगे बढ़ाने की बात है ये, जिसके तहत था कि आप सरकारी स्कूलों में ना करके, प्राइवेट स्कूलों में ना करके सरकारी स्कूलों में डिजिटल तरीके से जो एग्जाम करेंगे। क्योंकि अगर हम समझे साहिल कि इस समय जो ये पेपर लीक हुआ है,
1: आपको याद होगा कि सरकार ने 2024 में भी एक कानून पास कराया था और उसके बाद कहा था कि अब किसी की हिम्मत नहीं होगी, इतना कड़ा कानून हम ला रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इसके बाद पेपर लीक कराएं। लेकिन क्या हुआ, दोबारा पेपर लीक हुआ, आप उसे और कड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कल क्या हुआ है, 2024 के पेपर लीक में जिनको गिरफ्तार किया गया था, सीबीआई जाकर आज अदालत में कह रही कि इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इनके खिलाफ हम मामला नहीं चला सकते। पता है आपको?
2: जी मुझे ये बात पता है।
1: सही है ना बात तुहिन सिन्हा जी? सवाल यही है, सिस्टम की गड़बड़ी है, एग्जामिनेशन सिस्टम की गड़बड़ी है कि किसकी गड़बड़ी है और कैसे फिक्स होगा?
3: वो किसी भी केस में हो सकता था, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ साहिल जी, कि जब पूरे देश में,
1: मुझे दीप्ति तनेजा जी को पूछा, आपके पास आता हूँ उसके बाद, पहले दीप्ति तनेजा जी बोलेंगी उसके बाद आपके पास आता हूँ। जी
2: देखिए, वो जो लागू हुआ था, जिस आप 2024 के जो कानून की बात कर रहे हैं, उस कानून को भी कितना ज्यादा समर्थन मिला था, कितने अधमरे तरीके से वो पास हुआ था, वो सब इतिहास में दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है साहिल जी, क्योंकि उस चीज को विपक्ष ने तब भी बहुत सीरियसली नहीं लिया था, और उसी के तहत जितने भी अधिनियम बने तभी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की और उसी में सुधार लाने की अब बात हो रही है। बात यह है कि इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खेला नहीं जा सकता। अभी आशुतोष जी बात कर रहे थे उत्तराखंड की, प्रॉब्लम तो यही है ना कि चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, जो अपने आप में एक बहुत दुखद बात है, और उसको आगे इम्प्रोवाइज करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान
1: अभी तस्वीर चलाई थी पैलेट गन की,
2: वो सियासत है।
1: आप सही कह रही है, आप सही कह रही है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी राजनीति या खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, बात मैं मानता हूं। 2023 का राजस्थान का चुनाव का प्रचार मैंने देखा हुआ है, और उस चुनाव प्रचार में हर मंच से, किसकी सरकार थी बताने की जरूरत नहीं है, अशोक गहलोत की सरकार थी, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, हर मंच से राजस्थान के पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया था तुहिन सिन्हा जी, आपको भी याद होगा। और आज की स्थिति में अगर पेपर लीक के आंकड़े निकाले तो उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का नंबर आता है, ये स्थिति है आज इस देश में, और उसके ये सब चीज से बचने के लिए एक नेशनल एजेंसी बनाने की बात चली थी, यानी अगर नेशनल एजेंसी बनाएंगे तो कोई पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं रुक पाया। आशुतोष जी जवाब दीजिए, उसके बाद तुहिन सिन्हा।
0: देखिए साहिल, अभी

0: अभी दीप्ति जी ने कहा, दरअसल मेरा नाम लेके उन्होंने कहा, तो इसलिए मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जमाने में अधमरे तरीके से कानून बनता है। अब आप समझ लीजिए कि सरकार की सेंसिटिविटी कितनी है, सरकार कितनी सीरियस है। आप कानून बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं संसद के साथ, आप अधमरा कानून बना रहे हैं। और उसके बाद राधा कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट जो 2024 में आ गई, अभी तक सरकार ने क्यों नहीं लागू की? किसने रोका था सरकार को? विपक्ष ने रोका था, राहुल गांधी ने रोका था, अखिलेश यादव ने रोका था, किसने रोका था? 26 आ गया, 2002 साल हो चुके हैं। तो ये मजाक बंद होना चाहिए, राष्ट्रीय चैनल पे इस तरीके के मजाक बंद होना चाहिए, और सरकार का इस तरीके से डिफेंस भी बंद होना चाहिए। अगर सरकार जिम्मेदार सरकार होती तो अब तक कड़े कानून लाके इन सब जो जो जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर रोक लग गई होती। लेकिन जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, जब छात्रों पर लाठियां चल रही हैं, पैलेट गन चल रहे हैं, तब भी उत्तराखंड के अंदर वहां पेपर लीक हो रहा है, और वहां डबल इंजन की सरकार, बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है।
1: मामला
0: तो
1: बदल गया है,
0: कौन
1: मामला
0: मेरा
1: बदल गया
0: रिस्पॉन्स,
1: है। तू इनसे ना,
0: मेरा रिस्पॉन्स
1: हाँ
0: नहीं
1: जी,
0: जी,
1: दीप्ति
0: नहीं
1: खरेरिया
0: देखिए
1: जी, आप पहले
0: मामला
1: रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद
0: देखिए
1: चलेंगे। जी,
0: आशुतोष जी,
1: एक एक
0: बड़ा
1: मिनट, वो
0: अफसोस हुआ
1: रिस्पॉन्ड करना
0: जिस
1: चाहती है, उनका नाम लिया गया इसके लिए,
0: जी जी
1: प्लीज।
0: आशुतोष जी, मैंने
1: हाँ
0: बात करी थी कोई और आपने
1: आशुतोष जी,
0: जवाब दिया कोई और। मैं आपकी बात कर रही थी कि आप केवल क्यों उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, आप झारखंड की, आप पंजाब की, आप बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? खैर, उस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर गए।
1: ठीक है,
0: अगेन, जो आपने अधमरे
1: फेयर
0: की बात
1: इनफ।
0: करी, मैं यहाँ सियासत नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये अधमरे, जिस दिन ये कानून की बात हो रही थी, तो विपक्ष की तरफ से कितने लोग उस समय संसद में मौजूद थे? क्या आपको मुझे वो मेमोरी रिफ्रेश करने की जरूरत है? सर, हम पूरा भारत जानता है कि क्यों
1: नहीं,
0: ये
1: लेकिन
0: अधमरा
1: सरकार
0: कानून,
1: अगर
0: और
1: रिस्पॉन्सिव
0: अगर ये
1: है,
0: नहीं
1: दीप्ति
0: होता।
1: तनेजा,
0: जी
1: मैडम अगर सरकार रिस्पॉन्सिव है, ये डिबेट पे आप भी शामिल हुई थी जब पहली पिछली बार एनटीए में जो पेपर लीक हुआ था, उसमें राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें नहीं लागू की गई ना, 24
0: सर,
1: के
0: लागू
1: पेपर
0: तो
1: लीक के बाद ही बनी थी। स्टैंडिंग
0: सर,
1: कमेटी का रिपोर्ट था, पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट था, उसके आधार पर ही बनाई गई थी, लेकिन नहीं लागू की गई
0: बिल्कुल
1: थी। कई
0: सर,
1: सारी जो
0: लागू
1: उनकी
0: की गई
1: सिफारिशें
0: है
1: थी वो वैसी की वैसी दरी की दरी रह गई थी।
0: सर, सारी सिफारिशें नहीं, काफी हद तक वो लागू की गई है। फीजिबिलिटी देख देख के जो जो लागू होनी
1: ठीक है,
0: चाहिए, ये
1: चलिए
0: जो इस बार पब्लिक
1: तो
0: स्कूल्स
1: इनसे
0: में
1: ना,
0: हुआ है, प्राइवेट में नहीं, वो
1: चरण सिंह
0: राधाकृष्णा
1: सप्रा,
0: की
1: 30 सेकंड
0: रिपोर्ट का
1: आपके
0: भी
1: पास,
0: मुद्दा सर।
1: विपक्ष मुद्दा क्या इस्तीफे तक जारी रखेगा? 30 सेकंड आपके पास, आखिर के 30 सेकंड तो इनसे ना, चलिए 1 मिनट बचाए मेरे पास।
2: बिल्कुल
0: आपने सवाल
2: बिल्कुल,
0: किस
2: इसको
0: तरह किया?
2: इस्तीफे तक जारी रखेगा, क्योंकि ये आज का मामला नहीं है। ये पिछले 12 वर्षों से 152 पेपर लीक होते हैं, 24 छात्रों की आत्महत्या हो जाती है, 7.5 करोड़ छात्र इसमें इफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इस सरकार को कुछ नहीं पता लगता। इस सरकार को 20 तारीख के बाद में समझ में आता है
1: ठीक
2: कि
1: है,
2: इसमें
1: तू
2: कोई
1: इनसे ना,
2: एक्शन लेने का है। जब इस
1: लास्ट
2: तरह
1: 30
2: की
1: सेकंड,
2: सरकार
1: तू
2: आती
1: इनसे
2: है,
1: ना,
2: निश्चित रूप से
1: देखिए
2: वैसे
1: साहिल
2: शिक्षण
1: जी, ठीक है
2: मंत्री
1: सप्रा जी
2: का
1: प्लीज,
2: और
1: बस
2: प्रधानमंत्री का
1: साहिल
2: दोनों का
1: जी, एक
2: राजीनामा होना
1: बहुत,
2: चाहिए।
1: यहाँ
2: मैडम
1: एक बहुत विशाल अंतर है कांग्रेस के विपक्ष के अप्रोच में और हमारे अप्रोच में इस पूरी समस्या से डील करने में। हमारा कोई नेता प्रियंका गांधी की तरह भाषण नहीं देता है कि अशोक गहलोत रोक रोक नहीं पा रहे हैं, क्या करिए, छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं कि हम पूरी तरह, एक बात तो साफ नजर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे या देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने उन्हें कहा है कि इस्तीफा नहीं देना है। हालांकि इसका जवाब कल दोपहर को 2 बजे तक सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को सरकार की तरफ से देना है। सरकार ने अधिकृत तौर पर इस पर अपनी भूमिका अभी तक रखी नहीं है, उसका इंतजार होगा। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आशा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंड बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।

0: less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
1: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
2: सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद सीजेपी के जो समर्थन में छात्र हैं, वो बड़ी संख्या में, ये सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं।
3: इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। यहां इस वक्त गहमा गहमी भी है, किस तरह से लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और जंतर मंतर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
4: तमाम जो छात्र हैं वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं और पुलिस के द्वारा यहां पर इनको रोका जा रहा है।
5: तमाम प्रदर्शनकारियों का हुजूम यहाँ पे है जो नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडर बैठ गए हैं।
7: राहुल गांधी को अब यहाँ से उठा लिया गया है सात लोक कल्याण मार्ग से। वो पिछले कई घंटों से यहाँ पर बैठे थे, वो राहुल गांधी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं।

0: छात्र जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं दिख रहे। उधर संसद में विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। दोनों जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन का एक ही मुद्दा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार सीजेपी और प्रदर्शनकारी छात्रों से संवाद कर शांति का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इस बीच सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए अब कड़े कानून लाने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक को लेकर सरकार पहले जो बिल लाई थी उसी में संशोधन कर प्रावधानों को और भी ज्यादा कड़ा करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित नए संशोधन के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले को 5 से 10 साल की कैद की सजा हो सकती है, जबकि पुराने बिल में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था। बिल में प्रावधान ये भी है कि अगर पेपर लीक में कोचिंग सेंटर या कोचिंग सेंटर से जुड़ा शिक्षक शामिल पाया गया तो कोचिंग को भी बंद किया जा सकता है। साथ ही पेपर लीक के मामले के तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। उधर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि पेपर लीक पर सरकार की ओर से सख्त कदम उठाया गया और कड़ा कानून लाया गया तो कांग्रेस भी चर्चा में शामिल हो सकती है। हालांकि पेपर लीक को लेकर सरकार को घेर रहा विपक्ष अपने तेवर कम करने को तैयार नहीं है। संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान के इस शोर को गौर से सुनिए। विपक्ष की पूरी ताकत जिस एक मांग पर टिक गई है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हर एक प्रदर्शन, हर एक धरने के बाद राहुल गांधी एक ही सवाल उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा।
1: मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो।
0: एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात कही थी और देर रात वीडियो जारी कर कड़े एक्शन का भरोसा दिया। लेकिन इस भरोसे के बीच ना ही विपक्ष का हंगामा थम रहा है, ना ही छात्रों का प्रदर्शन खत्म होता दिख रहा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल हुआ कि सरकार के नए बिल में कड़े प्रावधान का विपक्ष और प्रदर्शनकारी छात्रों पर क्या असर होगा। क्या नए बिल से हंगामा और विरोध प्रदर्शन शांत होगा? आज तक ब्यूरो।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: इस्तीफा नहीं देंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार की दलील, त्याग पत्र देना मतलब जिम्मेदारी से भागना, व्यवस्था में खामियों का जल्द होगा समाधान। जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह से मुलाकात में सीजेपी ने रखी तीन मांगे, आज तक से बोले अभिजीत दीप के, प्रधान के इस्तीफे से काम मंजूर नहीं, कल दोपहर तक सरकार देगी जवाब। पेपर लीक पर पीएम के सख्त एक्शन वाले भरोसे के बाद नए कानून में होंगे कई बदलाव, 10 साल सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का हो सकता है प्रावधान, कैबिनेट से मिली मंजूरी, अब संसद में आएगा बिल। पैलेट गन से घायल छात्र को लेकर सामने आए राहुल गांधी, कहा युवक ने गवाई एक आंख, बंद हो इनसे मारपीट, प्रधान को कहा आपराधिक शिक्षा मंत्री। हिमाचल के पांगी में चलती गाड़ी के ऊपर गिरी चट्टान, 13 लोगों की मौत, 2 की बची जान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं
3: है। सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा, सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
4: कॉम्पेंसेशन एंड FIRs का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी FIRs फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया।
5: धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा।
6: वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एनी डिस्कशन बिफोर मिस्टर प्रधान इज सैक्ड।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज मुद्दा बड़ा है, मुद्दा गंभीर है, मुद्दा देश से जुड़ा हुआ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे उन तमाम छात्रों से जुड़ा हुआ है, उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है जो पेपर लीक की वजह से प्रभावित हुए हैं, और वो तमाम छात्र जो ये मानते हैं कि पेपर लीक रुकना चाहिए। और इसीलिए पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसके बाद से सरकार एक्टिव हुई है, और कैबिनेट की बैठक में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट से पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा के प्रावधान वाले बिल को मंजूरी मिल भी गई है। अब वो राष्ट्रपति के लिए, उनके अनुमोदन के लिए आगे जाएगा, उसके बाद से वो एक कानून का स्वरूप लेगा और उसके बाद इसको एनएक्ट कर दिया जाएगा। अब ये प्रावधान क्या क्या है इसमें, 3 महीने के अंदर सजा की बात है, 10 करोड़ जो जुर्माना है और 10 साल की सजा का प्रावधान है। इससे पहले कल आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो आया जिसे प्रदर्शनकारी छात्रों से संवाद की सबसे बड़ी पहल माना जा सकता है। जेन जी को सीधे कनेक्ट करने वाला एक सेल्फी मोड में पीएम ने वीडियो छात्रों के साथ शेयर किया है और कहा है, वादा किया है कि मैं इसको रोकूंगा जो पेपर लीक हो रहा है। उधर आज सरकार ने सीजेपी के प्रतिनिधियों की बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कायम रखी है। कल फिर सीजेपी के प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिलने वाले हैं और माना जा रहा है कि जो मांगे इनकी तरफ से हैं उसको लेकर सरकार अपना पक्ष कल साफ करेगी। इस बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की शर्त पूरी होने से पहले भूख हड़ताल तोड़ने वाले सोनम वांगचुक कांग्रेस नेताओं इमरान मसूद और राशिद अलवी के निशाने पर आए, तो कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सड़क से संसद तक सरकार को घेरने में है। आज कांग्रेस कल देश भर में कह रही है कि हम कैंडल मार्च निकालेंगे और सत्याग्रह करेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, आप देख रहे हैं, वो लगातार एक्टिव है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष के इस विरोध के बावजूद सरकार प्रदर्शनकारियों को मना सकेगी? क्या सख्त कानून और फास्ट ट्रैक सजा से पेपर लीक पर छात्रों को इंसाफ मिल सकेगा? उनका भरोसा क्या जगेगा? प्रधानमंत्री का जेन जी मोड मानेंगे प्रदर्शनकारी? यही आज हल्ला बोल का विषय। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ आप दोनों का स्वागत है। हमारे साथ अमित जमई जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और खास मेहमान प्रोफेसर अंशु जोशी जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स बन गए। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार से सीजेपी के जो प्रतिनिधि है फिर मिले हैं, और अब जो 3 मांगे उनकी हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुआवजा मिले उनको, जिन बच्चों की जान गई है, जिन छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन हुआ है उनके सारे केसेस वापस लिए जाएं, और तीसरा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब सरकार कह रही है कि हम कल इस पर फाइनल बात कहेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
0: बीती आधी रात को जैन जी के फेवरेट सेल्फी मोड में जारी हुआ पीएम नरेंद्र मोदी का ये वीडियो संदेश पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों को भरोसा दिलाने का सबसे बड़ा प्रयास है।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वीडियो में प्रधानमंत्री ने जैसा वादा किया था, कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन एक्ट 2024 में बदलाव के मसौदे को मंजूरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक बिल के प्रावधानों के मुताबिक पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए 3 महीने में जांच और फैसला सुनाया जाएगा। पेपर लीक के दोषियों को 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपयों का जुर्माना भरना होगा। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ सरकार की दूसरे राउंड की बातचीत भी हुई। केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात के बाद सीजेपी ने कहा कि पेपर लीक पर खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवारों को एक एक करोड़ रुपयों का मुआवजा और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर सरकार सकारात्मक है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जवाब देने के लिए सरकार ने कल तक का समय मांगा है।
2: सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास् ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे।
0: सीजेपी के साथ कल एक और राउंड की बातचीत होने की पुष्टि सरकार की ओर से भी की गई है।
3: हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको
0: कल रात को जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी थी। भूख हड़ताल तोड़ने के लिए वांगचुक ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की शर्त को मुद्दा नहीं बनाया। वांगचुक ने नए वीडियो में इस पर सफाई दी है।
4: अब आप कहेंगे जरूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को ना टाल कर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं। बल्कि दे देते इस्तीफा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता।
0: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने सीजेपी के प्रदर्शन को शक्ति दी, लेकिन भूख हड़ताल तोड़ने के बाद कांग्रेस की ओर से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
5: अन्ना पार्ट टू, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे, ये कुछ नहीं है। इसके अलावा हमें तो पहले दिन से पता था, कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां?
6: उन्होंने अपना फास्ट तोड़ दिया बीजेपी के नेताओं के कहने की वजह से। इसमें मुझे बड़ी साजिश की बू आती है। सरकार ने दबाव बनाया है, डराया है, क्या कारण है, क्यों तोड़ा गया है, जबकि कोई भी डिमांड नहीं मानी गई। इस सवाल का ज्यादा सही जवाब तो सोनम वांगचुक ही दे सकते हैं।
0: इस बीच कांग्रेस समेत विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद और संसद के बाहर हंगामा जारी रखा। उधर राहुल गांधी ने 20 जुलाई को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से पैलेट गन का इस्तेमाल किए जाने के आरोपों को भी उठाया।
7: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
0: पेपर लीक के खिलाफ बना माहौल विपक्ष को संजीवनी दे गया है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की दखल के बावजूद विपक्ष सरकार को घेरने का एक मौका नहीं गंवा रहा। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और प्रदीप भंडारी जी, पहला सवाल आप ही से। देखिए, आपके सामने जनता है, और ये दुर्भाग्य की बात है कि देश की संसद के जरिए बच्चों तक उनकी जो मुद्दे हैं वो सुन तो सके कि हमारे नेता क्या बोल रहे हैं, वो संवाद नहीं हो पा रहा है संसद में। तो ये आपके लिए मौका है, आप बताइए देश को और यहां पर जो छात्र बैठे हैं उनको कि वो क्यों आप पर भरोसा करें, क्योंकि बार बार बार बार पेपर लीक हुआ है, बार बार बच्चे प्रभावित हुए हैं, और ये भी एक सच्चाई है कि कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली इसकी वजह से, कौन जवाब दे?
8: देखिए अंजना जी, मैं खुद युवा हूं और मैं इस देश के युवा को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का इंटेंट युवाओं की बात को सुनना, युवाओं की बात और एस्पिरेशंस को आगे ले जाना और उनकी कंसर्न्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। पिछले कई दिनों से जब राहुल गांधी जी भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, समाजवादी पार्टी भी प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी, सोनम वांगचुक जी युवाओं की बात को आगे लेकर जा रहे थे। आप सभी इसको सोचिए, उनकी तीन बातें कल थी। पहली कि जितने भी छात्र नीट के इसमें जिनके जान गई है उनको एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए, साथ में संसद के अंदर चर्चा हो, और तीसरा कि जब संसद के अंदर चर्चा हो और साथ में एडिक्वेट कंपनसेशन हो, कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर पे कोई भी केस ना हो। तीनों की तीनों मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मांग ली और पीएम के वीडियो में वो स्पष्ट है। अब दुनिया भर में पेपर लीक को रोकने के लिए एक डेटरेंट की बात होती है। चाइना के अंदर 5 से 7 साल सजा है, यूनाइटेड स्टेट्स में 5 से 7 साल सजा है। आप सभी एक कहते हैं कि देश के अंदर केस चलता रहता है पर सजा नहीं होती। इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कैबिनेट में 3 महीने के अंदर अगर कोई भी पेपर लीक करता है उसका कन्विक्शन, मैं कन्विक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ ट्रायल ही नहीं, 10 करोड़ तक का उसको पेनल्टी और 10 साल की सजा। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा डेटरेंट है। अब रेजिग्नेशन और नॉन रेजिग्नेशन की जो बात है, अगर हम चर्चा पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ इसी बात पे करेंगे कि रेजिग्नेशन होना चाहिए तभी, तो पेपर लीक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, आप सभी मानते हैं पेपर लीक भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, तब तो फिर पंजाब के अंदर 2 दिन पहले एक पेपर लीक हुआ, हम आप सब में से ही कई छात्र पंजाब के वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने कोई रेजिग्नेशन नहीं देखा। कल ही कर्नाटका के अंदर एक पेपर लीक हुआ, 80 लाख की ब्राइब दी गई, हमने रेजिग्नेशन नहीं देखा। प्रियंका वाड्रा जी का जो सहयोगी है वो 2005 के अंदर अरेस्ट हुआ है पेपर लीक के अंदर, और उनका सहयोगी बना फिर रहा था और कांग्रेस में नेशनल सेक्रेटरी था। ये सब राजनीतिक बात है, आप भी कहेंगे मैं भी कहूंगा।
0: उत्तराखंड में भी लीक हुआ है।
8: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बिल्कुल
8: मैं कह रहे वाला
0: छोड़िए मत,
8: नहीं मैं नहीं छोड़ रहा, उधर भी लीक हुआ है, तो ये एक पैनोरमिक समस्या है। तो क्या सिर्फ अगर रेजिग्नेशन नॉन रेजिग्नेशन से ही अगर संसद के अंदर चर्चा होगी तो फिर इन सभी सरकारों को वॉक द टॉक करके पहले अपनी बात पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, फिर आगे बात होनी चाहिए। और 10 सेकंड में एक और स्टेक होल्डर जो सीजेपी के लोग हैं, जो उसको हम मानते हैं आम आदमी पार्टी के एक्सटेंडेड फ्रंट, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में रह चुके, उनकी भी 3 में से 2 मांगों के अंदर हमने इन प्रिंसिपल बात करी है, पर हम लोकतंत्र के अंदर जहां आप सभी के वोट से हमें भी वोट मिले, कुछ वोट इन्हें भी मिले, देश का युवा चाहता है संसद में बहस हो और फिर संसद के बाद देश का युवा निर्णय कर ले किसको क्या करना है, क्योंकि हमारी नीति और नियत युवाओं के प्रति है। वापस से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।
0: ठीक है अभय जी, अब आपके पास ये सवाल है कि आप समाधान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ इसके लिए आप पॉलिटिकली फायदा उठाएं, क्योंकि मौका है, छात्र निकले हुए हैं, क्योंकि समाधान तो यही है ना कि व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। वो कह रहे हैं कि इस्तीफे पर क्यों अड़े हैं, बातचीत क्यों नहीं करते देश की संसद में।
9: जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। क्या कह रहे थे छात्र प्रधानमंत्री जी, एक बार उठाकर तो देखिए। अभी 8 दिन पहले पार्लियामेंट में आपने जवाब दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई डेडलाइन नहीं होती। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में बनाई, क्या कन्विक्शन रेट है बताइए ना, 81% क्रिमिनल्स को के साथ प्रोसिक्यूशन खड़ा है, सिर्फ 19% है उनका कन्विक्शन का रेट। प्रधानमंत्री जी मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अक्टूबर 5, 2023 को भी आपने यही बात की जोधपुर की एक रैली में कि मैं पेपर लीक करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, कड़ा कानून हमने बना दिया है। आपने जुलाई 2, 2024 को भी यही बात कही, लोकसभा में कही, उसके बाद आपने फरवरी 10, 2024 को यही बात कही प्रधानमंत्री जी, उसके बाद जयपुर 17, 2024 दिसंबर को, तो तारीख पर तारीख प्रधानमंत्री जी देते हैं आप। आप बताइए छात्रों को, सिर्फ पेपर लीक एक मसला नहीं है, पूरे विश्व में एक उदाहरण बताइए कि छात्रों ने अगर न्याय की मांग की हो तो बर्बरता से पैलेट गन से मारा। ये कश्मीर की बहस में कहते थे आतंकवादियों पर पैलेट गन चला रहे, अरे हमारे छात्र आतंकवादी नहीं है,
8: नहीं है,
9: डंडों में कील लगाकर बर्बरता से मारा। प्रधानमंत्री जी आप दम साधे होट सीए देख रहे टेलीविजन पर, आपने एक वीडियो डाला अंजना जी ने बोला। प्रधानमंत्री जी मेरे को, मुझे दुख हुआ, मेरे देश का प्रधानमंत्री जी को इतना ज्ञान नहीं कि जो रिजल्ट 16 तारीख को आया बोले 19 तारीख को नीट का रिजल्ट आया, जिसको परिणामों का पता नहीं वो चिंता नहीं करता, उसको सिर्फ अपने राजनीतिक दल की जीत और हार के परिणामों से चिंता है। प्रधानमंत्री जी एक के बाद 152 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए, आप जानते हैं भारत का इतिहास साक्षी है एक घोटाला कैसा हुआ, डीमेट का एक घोटाला था भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह घोटाला घोटाला इतना बड़ा है कि हमारे पास स्टाफ भी नहीं है कि हम उसकी जांच कर पाए। 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला था, एक घोटाला, एक स्कैम ऐसा था जो बिहार में सजा हो, जिसको हुई 2020 में जेल से छूटा, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में, फिर उसने स्कैम किया। प्रधानमंत्री जी कहां डिटरेंट की बात कर रहे थे, कौन सा भय है बताइए ना। सत्ता की सरपरस्ती में आप अपराधियों को पनाह देते हैं, एक कन्विक्शन बता दीजिए। 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, एक के बाद एक, और आज की बात नहीं है, जब से आपने शपथ ली प्रधानमंत्री जी उसके बाद से पेपर लीक होना प्रारंभ हो गए। आप 2015 से मेरे पास सूची पड़ी है, 10वीं और 12वीं के CBSE के पेपर लीक हुए, SSC के पेपर लीक हुए, नीट के पेपर। बिहार में क्या हुआ? बिहार में तो यह हुआ कि पुलिस ने पकड़ा कि 68% जो पेपर प्रश्न पत्र है वो नीट की एग्जाम के हैं। ये पकड़ा, ये रिकॉर्ड पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कह दिया नहीं नहीं परीक्षा निरस्त नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अरे सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है साहब, जो तुम शपथ पत्र देते हो वही सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, वो प्रोसिक्यूशन जो तुम्हारा जो शपथ पत्र देगा वही निर्णय लेगा। इस देश के भविष्य को बेचने वाली सरकार को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तीन मांगे हमारी, प्रधानमंत्री जी क्या तकलीफ है, आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेते प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी क्या तकलीफ, क्षमा मांगिए ना प्रधानमंत्री जी। आपने इतना बड़ा वीडियो डाला, छात्रों से क्षमा मांगी, आपके गृह मंत्री जी ने बर्बरता से पिटवाया छात्रों को, आपने टेलीविजन पर नहीं देखा।
0: ठीक है, पैलेट गन्स पर उनका सवाल है, पैलेट गन के उस पर भी आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, क्या आपने देरी की जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आई, बच्चों से पहले बात कर लेते तो ये हालत तो नहीं होती।
8: चलिए मैं सबका जवाब दूंगा, मुझे इस पीड़ा इस बात की भी आप सभी करिएगा, जितनी बार इनने बीजेपी कांग्रेस की नाम ली उससे आधे बार भी इनने युवा की बात नहीं की, ना इनने युवा के रिफॉर्म की बात करी। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी मकसद राजनीतिक है, और क्रेडिट होल्ड की मैं इनके साथ वापस से बात नहीं करूंगा, मैं युवाओं की बात करूंगा। मैं युवाओं की बात, पहले अंजना जी ने जो पार्ट किया कि भाई पैलेट गन की बात है, किसी को दिल्ली के अंदर पैलेट गन चलाने का अधिकार नहीं है। देखिए सब युवा मानेंगे कि ACP भगत, आप सबके पिताजी भी कोई ना कोई प्रोफेशन के अंदर है, उनके भी बच्चे और माताजी हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं, उनको कुछ लंपेन एलिमेंट्स में, स्टूडेंट्स ने नहीं, कुछ असामाजिक तत्वों ने पकड़ा और दो स्टूडेंट्स ने उनकी जान बचाई, और वो दो स्टूडेंट्स को आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज वो देश के सामने एक मिसाल है कि स्टूडेंट का एक प्रोटेस्ट के अंदर भी व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो हम जांच करेंगे कि अगर आज तक या किसी के पास ऐसे कोई तथ्य है जो ये बात कर रहे हैं, ऑफिशियली कोई पैलेट गन की बात नहीं, पर होगा तब भी जांच होगी। अंजना जी,
0: RML की तरफ से लिखा हुआ है बाकायदा उनके भाई, और हमने ऑनर दिखाया,
8: बिल्कुल आपने
0: ऑनर दिखाया, तो आप दिखाइए,
8: आपने बिल्कुल नहीं आपने दिखा है, दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टैंड, कल भी उन्होंने कहा था कोई पैलेट गन नहीं, अगर कुछ ऐसा है तो जरूर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं 10 सेकंड बात करूंगा, मैं छात्रों से वापस से कहना चाहता हूं, हम सब चाहते क्या है, हम सब भले भाजपा हो कांग्रेस हो, चाहते क्या है कि हम चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, और आप सभी इस देश के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म हो। जब 15 दिन, जब 20 दिन तक राहुल गांधी इस देश में नहीं थे, इस देश में जब 15 दिन तक राहुल गांधी इस देश के अंदर नहीं थे, तब सोनम वांगचुक आप सबकी बात उठा रहे थे, जिस दिन से जब सोनम वांगचुक, और उनके खुद का कल का बयान है कि भाई चर्चा तो करो संसद में, अगर संसद निर्णय करता है जो अभय जी कहते हैं तो हम संसद के निर्णय को मानेंगे, पर चर्चा से क्यों भाग रहे हो? चर्चा की अकाउंटेबिलिटी आपकी भी हमारी भी है कि ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा नहीं है, क्या पंजाब का बच्चा बच्चा नहीं है, क्या कर्नाटका का बच्चा बच्चा नहीं है? अरे हर छात्र छात्र है, मेरी और आपकी तो सत्ता आएगी जाएगी पर ये छात्र आगे रहेगा, और छात्र की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे बड़ी बात है कि छात्र को रिफॉर्म चाहिए। अभय जी मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, मुझे गाली बकनी है बको, भाजपा को जो बोलना है बोलो, पर छात्रों की बात करो। छात्रों की बात तभी होगी जब 3 महीने के अंदर देश के अंदर कन्विक्शन होगा, ट्रायल नहीं कन्विक्शन, पहली बार ऐसा हुआ है, तब होगी जब मैं और आप संसद में बैठकर ये बोलेंगे कि ये कमी है इसको मिलकर सुधारें, तब नहीं होगी कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल क्रेडिट की लड़ाई के अंदर हो जाए, इसको छोड़ो 1 महीने बाद कर लेना, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है।
0: एक सवाल है मेरा आपसे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात आप कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ऐलान रेप और पॉक्सो के लिए भी किया गया, निर्भया कांड में 7 साल लगे, मुझे एक सॉलिड जवाब चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये कोर्ट बिठा देने से और 3 महीने में हो जाएगा नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन बहुत मैटर करता है, और यही वजह है कि सिर्फ 2 केसेस में कन्विक्शन हुआ है, कैसे होगा ये, क्या व्यवस्था है, क्या ये सिर्फ अभी मतलब जिसको कहते हैं ना फायर फाइटिंग टेक्निक है?
8: फायर फाइटिंग टेक्निक इसलिए नहीं है कि अलग से एक जज का अपॉइंटमेंट ऑलरेडी किया गया और लॉ के अंदर अमेंडमेंट किया है कि विद इन 3 months कन्विक्शन हैज टू हैपन. तो जब लॉ के अंदर अमेंडमेंट है तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी बाध्य है कि 3 महीने के अंदर कन्विक्शन होगा. निर्भया केस में लॉ में अमेंडमेंट नहीं था कि 3 महीने में कन्विक्शन होना चाहिए.
9: छात्रों आप गूगल करके देखिएगा, 8 दिन पहले तक सोनम वांगचुक को यह चीनी एजेंट बता रहे
8: कोई नहीं.
9: और आज सोनम वांगचुक
2: 2007 में आपने एनएसए के अंदर उनको अंदर डाल दिया था. 2007 में आपने उनको एनएसए के अंदर अंदर डाल दिया था. आपकी सरकार क्या कह रही थी 2007 में? आपको क्या कह रही थी?
10: बनाएगी फिर सोनम वांगचुक भी नींद
2: जिन्होंने आपकी आवाज उठाई उन तक को डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर गए. कर रहे हो अबे भाई, आपको अपना राजनीतिक कोर्ट में कहना उसको वोट लेना देना नहीं है. पर सोनम वांगचुक को आप बदनाम करना चालू हो गए क्योंकि उन्होंने छात्रों की बात
9: रोज आत्महत्या कर रहे हैं पिछले 10 साल से. 40 विद्यार्थी रोज सुसाइड कर रहे हैं
2: जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब.
0: एक बार फिर ये कहते हुए कि देखिए आज बात छात्रों की कीजिए, पार्टी के लिए चालाकी से फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए. दोनों के लिए कह रही हूँ भंडारी जी, आपके लिए भी और आपके लिए भी. अभय दुबे जी, अमित जमाई जी, अब अमित जमाई जी को बोलिए. अमित जमाई जी,
10: 47% रिटेंशन रेट है स्कूल का सरकार की सत्ता.
0: अमित जमाई जी, अमित जमाई जी माइक उठाइए ना.
11: देखिए
10: कॉलेज ऑप्टी नहीं कर रहे क्योंकि अफोर्डेबल नहीं.
11: देखिए देखिए
0: समाधान क्या है, समाधान पर फोकस करना जरूरी है या नहीं.
11: समाधान जो है, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अब उनके कार्यकाल में तकरीबन 20 पर्चे लीक हुए, पुलिस फोर्स से लेकर लेखपाल से लेकर शिक्षकों से लेकर काफी पर्चे लीक हुए. आप मुख्यमंत्री जी जानते ही, हमारी बर्बाद कर देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, यूपी के बाहर निपटवा देंगे, न जाने क्या क्या करवा देंगे. एसटीएफ को जांच हुआ, जो पर्चा कंपनी जहां छपती थी वो गुजराती कंपनी थी, विनीत आर्या उसका मालिक था, उसको इतना समय दिया गया कि वो अमेरिका भाग सके. आज तक किस फास्ट्रैक कोर्ट के जरिए आप उसको अमेरिका से वापस लाएंगे? बहुत बड़े बड़े मेहमान तो पहले ही से बाहर है. तो सीधी सी बात है कि सरकार शिक्षा में इंटरेस्टेड नहीं. अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे अपने कार्यकाल में, अंजना जी मैं तारीफ की बात नहीं कह रहा हूं, 12 विश्वविद्यालय बनाए उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर.
0: पेपर लीक कितने हुए?
11: हर साल 2 विश्वविद्यालय.
0: पेपर लीक कितने
11: हर साल? पेपर लीक के बहुत कोई बड़ी घटना कंटिन्यूअस नहीं हुई, और जो घटना हुई उस पर कार्रवाई हुई. लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर बच्चे सोल्यूशन पूछा जा रहा है, जब आपको याद है, आप तो बड़ा पार्लियामेंट आपने कवर किया है, मनमोहन सिंह जी के समय पे सुषमा जी, आडवाणी जी अलग अलग समय पे एलओपी रहे. क्या ये बात सही नहीं कि हर दिन संसद चलने के पहले उन दोनों का आपस में टेलीफोनिक बातचीत भी होती थी? लेकिन आज के जो चाणक्य हमारे गृहमंत्री हैं, भारत के गृहमंत्री, इतना अहंकारी इंसान तो भारत में आज तक किसी ने देखा ही नहीं. अरे एलओपी आदरणीय राहुल जी को फोन लगाओ,
8: मैं जवाब
11: बच्चों के. अच्छा चलो उनसे बात मत करो, अखिलेश जी से बात मत करो, सीधे जाओ जंतर मंतर. जो बच्चियां जिनको पीटा गया, आपने एक वीडियो चल रहा है कि डंडे से उसके बैग पे एक बहन के मारा जा रहा, कपड़े फाड़ने का झूठ परमिशन दिल्ली पुलिस को किस पुलिस की ट्रेनिंग में दिया गया?
9: क्या बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हैं.
11: हमारी बेटी के कपड़े फाड़े गए,
9: क्या सबने टेलीविजन पर देखा? क्या बात करते हो आप?
8: मैं जवाब दूंगा.
11: आप कह रहे हो वो सारे बच्चे
0: प्रदीप जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बच्चों के साथ पुलिस की ज्यादतियां हुई है. आप नहीं इनकार कर सकते?
2: नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा.
0: बच्चों के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके लिए कौन? और देखिए इस बच्चे ने कुछ देर पहले एक सवाल किया था जब आप लोग नहीं पहुंचे थे. उसने सवाल बड़ा सही किया था कि अगर हम लोग ये आंदोलन नहीं करते तो आप लोग कुछ नहीं करते, बस टेलीग्राम बैन करके और चुप रह जाते. मतलब एक बच्चों में जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है, यू हैव टू एड्रेस.
11: अंजना जी 10
0: बाद वो आंदोलन पर उतरते हैं.
11: अंजना जी
0: ऐसा करती है?
11: अंजना जी 10 सेकंड मुझे पूरी बोलिए. देखिए समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सब की जिम्मेदारी कि आप उनको अकाउंटेबल बनाइए. लेकिन आज प्रधानमंत्री की सरकार है, हम किसे पूछेंगे? अखिलेश तो जिम्मेदार है.
8: जवाब दे,
11: जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है. एक आखिरी बात, आप कह रहे हो ये कौन सा देश है जो अपने देश के नागरिकों भविष्य के ऊपर पैलेट गन से हमला करता हो?
8: मैं जवाब देता हूं,
11: ये कौन सा पुलिस है? ये गृहमंत्री अमित शाह जी का पुलिस हमारे लोगों पे, छात्रों पे पैलेट गन से हमला करते हो? क्या दिल्ली कश्मीर है? क्या हमारे बच्चे आतंकवादी हैं?
12: कोई नहीं आतंकवादी है, कोई नहीं आतंकवादी।
11: आरएसएस के नेता ने कहा ये जितने बच्चे हैं इनके पीछे सीआईए है।
12: किसी ने नहीं,
11: आप लोग पीछे सीआईए है?
12: नहीं है,
11: विदेशी ताकत है।
12: चलो,
11: अरे ट्रम्प साहब तो पहले ही आपके पापा हैं।
12: चलो,
11: फोन लगाइए, पूछ लीजिए विदेशी ताकत है, किसकी ताकत है।
12: चलो,
13: आप वापस से इनकी स्पीच में उठा के देखिए, जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सपा की बात करी उतनी बार इनकी शब्द के व्याकरण में युवा तक नहीं है। इससे वापस से इनकी मंशा साफ हो जाती है।
14: बीच में बीच में बीच में देखो, अबे युवाओं की बात है, नॉर्मल है। मुझे बच्चों के सवाल भी लेने हैं, बच्चों के सवाल भी लेने हैं।
15: एक स्वर में शेम शेम करना, अगर आपने देखा है तो
13: मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। रुक जाओ,
11: विश्वविद्यालय
13: मैंने दो वीडियो देखे।
14: अरे हो गया गुरुदेव, प्लीज
13: मत करो, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं भी चैनल
14: बारी बाकी सारी
13: मैं एक एक कर बात करना चाहता हूं।
14: जल्दी मुझे सवाल लेने हैं, जल्दी।
13: तीन पत्रकारों को किस तरीके से, स्टूडेंट्स ने नहीं, कुछ असामाजिक
14: उनके लिए आप चिंता मत कीजिए।
13: सुनिए,
14: उनके लिए मत कीजिए चिंता, आप बच्चों पर बताइए कि बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ।
13: बच्चों के साथ में हूँ,
14: किसी के खिलाफ हिंसा गलत है,
13: किसी भी, अगर प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई इनोसेंट पीसफुल प्रोटेस्टर के साथ गलत है, अगर कोई आरएफ के जवान के साथ गलत है, हिंसा सही नहीं है।
15: वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने पत्थर चलाए,
13: और स्टूडेंट्स की हम इज्जत करते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए एक संजना जिन्होंने कहा एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, दिसंबर 2013, अप्रैल 2014, जून 2014, मई 2015, मई 2016, मई 2016, नवंबर 2016 में यूपीएससी यूपी के अंदर पेपर लीक लीक लीक हुए। इन्होंने कुछ समय के लिए पेपर लीक का आरोप
14: किया, उन्होंने मना किया ही नहीं, उन्होंने कहा छोटे मोटे लीक हुए थे। हाँ चलिए, पर उनकी सरकार चली गई है। भंडारी जी कहाँ हैं आप? सरकार को जनता ने बाहर कर दिया, अब आप सरकार है।
13: हाँ जिम्मेदारी पर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी।
14: जल्दी से फिर मुझे सवाल लेने बच्चों,
15: देखिए कब हटेगा इतना बताओ,
13: आज आप बताओ पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर कब हटेगा, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर कब हटेगा, ये बताओ।
14: बोले
13: हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में है।
15: नरेंद्र मोदी को भी बता देना,
13: 15 दिन के लिए बैठ कर जाओ, कर्नाटक का बच्चा बच्चा नहीं है, पंजाब का बच्चा बच्चा नहीं है, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा।
16: सुनिए, बहुत गंभीर बात है, सास पतोह की तरह झगड़ा मत कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर आप बैठे हैं, सुनिए ध्यान से, पानी, अरे सुनिए ना भाई, महत्वपूर्ण बात पर बात कर रहे हैं।
14: ये महिलाओं के स्टीरियोटाइपिंग से जुड़ा है, प्लीज ऐसा मत बोलिए।
16: नहीं, मैं आगे बोल रहा हूँ,
14: ससुर और दामाद नहीं लड़ते।
16: अच्छा ठीक है, यही बात कर लेते हैं,
14: प्लीज स्टॉप दिस,
16: इसी पर बात कर लेते हैं।
14: स्टीरियोटाइपिंग की वो लड़ती रहती है।
16: पानी का पाइप लीक हो या क्वेश्चन पेपर लीक हो, हर लीक इम्पोर्टेंट है। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कल मध्य रात्रि जब पूरा विपक्ष सोया हुआ था तो प्रधानमंत्री ने छात्रों और नौजवानों के साथ सीधा संवाद किया है।
15: अच्छा।
16: और मैं बीच में तोक नहीं रहा था दुबे जी,
15: अच्छा बोला,
16: तोका तोकी कीजिएगा तो फिर हम भी तोकेंगे, रुक जाइए।
14: प्रधानमंत्री
16: बहुत गंभीर विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, देश के बच्चों के भविष्य का मामला है, आपको टीआरपी की चिंता हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने छात्रों नौजवानों को आदर्श करते हुए देश में पेपर लीक के संदर्भ में गंभीर बात कही है। रुकिए मिस्टर दुबे, रुकिए,
14: रुकिए, बात है ये, प्लीज
16: राहुल गांधी की तरफ इन मौसम बरसात मत कीजिए। रुकिए,
15: छात्रों को रोक रोक के बर्बरता से मार रहे हैं।
16: देखिए भाई, छात्र नौजवानों के आर में किसी प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र को नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए आदरणीय सोनम वांगचुक जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिन अनशन किया। विपक्ष के सभी बड़े नेता, चाहे श्रीमान राहुल जी हों, श्रीमान अखिलेश जी हों और एक हमारे प्रदेश के श्रीमान तेजस्वी जी हों, जो आज तक किस देश में हैं पता नहीं है। पार्लियामेंट के 24 घंटा पहले राहुल जी और अखिलेश जी की लैंडिंग होती है और उनके परिवार के प्रतिनिधि जाकर के सोनम जी और सीजेपी के लोगों से मिलते हैं और एक बड़ा पॉलिटिकल स्क्रिप्ट पे राजनीतिक ड्रामा, देश की मजबूत सरकार जिसको छात्रों और नौजवानों ने समर्थन देके 2014 में लाया, मोदी जी को अगर किसी ने प्रधानमंत्री बनाया तो आप छात्रों ने और हम नौजवानों ने बनाया, तो क्या मोदी जी अपने आधार वोट के खिलाफ जाएंगे? कल 12 बजे रात को जब राहुल जी सो रहे थे, अखिलेश जी सो रहे थे और तेजस्वी जी खो रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों के लिए और छात्रों के लिए, आप लोगों को जोहा है, जोहा समझते हैं, खोजा है, ये भोजपुरी का शब्द है, और हम लोग बहुत ज्यादा माँ बेटी की इज्जत करते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, प्रधानमंत्री कठोर कार्रवाई करेंगे, कोई नेतागिरी का पार्ट नहीं बनना है, देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास रखिए। बाबूजी नाराज होते हैं तो पड़ोसी के घर में हम लोग जाते हैं कि बाबूजी से लड़के फिर बाबूए जी के साथ रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री से विद्यार्थियों ने संवाद किया है, प्रधानमंत्री ने संवाद को समझ के
17: रुकिए
16: अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे कि नहीं, अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे कि नहीं, देंगे इस्तीफा अखिलेश यादव, रुकिए चुपचाप।
17: अरे गलती
16: नेतागिरी करते हैं, अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे, सुनिए कहे देंगे, सुनना पड़ेगा। अरे पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं,
14: पेपर लीक
16: देश का विद्यार्थी पार्लियामेंट में, देश के शिक्षा मंत्री सुनिए ना अंजना जी,
15: बाबू
14: रुकिए हुआ है,
16: रुकिए गंभीर बात है, अरे रुकिए गंभीर बात है
14: रोहित जी,
16: अरे रुकिए ना,
14: अरे पेपर लीक
16: रुकिए तो,
14: अरे पेपर
16: क्या करेगी, पाइप लीक हुआ है, हम तो कहिए रहे पेपर लीक हुआ है, रुकिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, सुनिए
15: बाबूजी के स्वभाव का पता
16: लगता है, दादाजी के पास में जाइएगा,
15: बाबू कितना गुस्से में,
16: बाबूजी राहुल गांधी खोज रहे हैं,
15: बाबूजी का सुनिए कितना गुस्से में है,
16: फालतू बात
15: ये देखिए,
16: बताइए ना बिन मौसम बरसा,
15: बाबूजी ने वीडियो जारी कर दिया, बाबूजी का बाबू को देख लिया,
16: चुप रहिए, सुनिए सुनिए अंजना जी, बहुत गंभीर बात है, वहां बहुत जल्दी है, मैं हम भी हैं, देखिए बहुत बड़ी साजिश है, देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही के तहत देश के पार्लियामेंट को बोलेंगे, तब ना देश का विद्यार्थी जानेगा कि नीट का पेपर चपरासी लीक किया,
17: कब कोचिंग वाला लीक किया,
16: जब अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे, मांगो इस्तीफा अखिलेश यादव का। अरे विद्यार्थी लोग सुनिए, हम भी 36 साल के जवान हैं, आप लोग 18-20 साल के हैं, आपसे डबल हम हैं, हमसे डबल बाकी लोग हैं, सुनिए इस्तीफा मांगिए राहुल गांधी का, इस्तीफा मांगिए अखिलेश का,
14: मतलब आप तो उल्टी ही गंगा बहा रहे हैं। अरे गुरु इधर देखिए,
16: घर के पैसा से,
14: अरे उल्टी गंगा बहाइएगा,
16: अरे पार्लियामेंट चलेगा तब ना शिक्षा मंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री बोलेंगे, और सुनिए झारखंड तेलंगाना तमिलनाडु
14: अरे सुनिए आप उल्टी गंगा बहा रहे, चुप हो जाइए, उल्टी गंगा बहा रहे हैं,
18: मैं जरा
14: उल्टी गंगा बहा रहे हैं, चलिए बोलिए बोलिए मैम। अरे रोहित जी माइक नीचे हो गया, उल्टी गंगा बहा रहे हैं,
18: प्रोग्राम इज अबाउट टू ओवर, मैं दो मिनट अपनी बात रख लूं, प्लीज आप बीच में मत बोलिएगा,
14: हाँ ठीक है, बारी बारी
18: आप भी मत बोलिए,
14: बारी बारी
18: बोलेंगे, आप ही बोल लीजिए फिर,
15: अरे प्रोडक्शन पानी लाओ भाई,
19: पानी नीचे,
15: शांत शांत गदरदारी।
14: अच्छा देखिए विषय बहुत गंभीर है, इसको हल्का मत बनाइए प्लीज, चलिए
18: से आप लोग इसका मजाक बना रहे हैं ना, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये जो सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इनके फ्यूचर से जुड़ा हुआ मुद्दा ही है, आप शिक्षा का जिस तरह से मजाक बना रहे हैं, ये मजाक का, हंसने का, ताली बजाने का, ताली पिटवाने का मुद्दा नहीं है, पेपर लीक एक बहुत ही सीरियस इशू है, लेकिन पेपर लीक हमारे देश में क्यों होते हैं, आज से तो नहीं हो रहे, बहुत वर्षों से हो रहे हैं, तो इसका कारण समझने की जरूरत है। और मैं अगले दो मिनट का समय चाहूंगी अंजना जी, कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूं, अपने देश में 25 करोड़ स्कूली बच्चे हैं और 4.5 करोड़ हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, और यदि आप इसकी स्केल देखेंगे, इन आंकड़ों को देखेंगे, तो स्लोवाकिया, मालडोवा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे कई देश हैं जिनकी जो कुल जनसंख्या है उनकी दोगुनी या तिगुनी ये आंकड़ा है। अब इस स्केल पे जब हम स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित कराते हैं तो इसमें लूपहोल्स निकल के आते हैं, और इन लूपहोल्स को हमको दूर करना पड़ेगा, इसमें स्टूडेंट्स का भी योगदान होना चाहिए, प्रोफेसर्स का भी योगदान होना चाहिए, सारे एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स का योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। और रही बात इस्तीफे की, तो 2006 से लेकर के 2014 तक, तब जबकि कांग्रेस की सरकार थी, अमित जी बीच में मत बोलिएगा प्लीज, तब 60 पेपर लीक्स हुए, लेकिन उस समय के किसी भी राज्य के शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। तो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने के लिए जो प्रोटेस्ट किया गया, उसमें नारे या जिस तरह के पोस्टर्स दिखाए गए, आप सब अग्री होंगे कि क्या यदि आपके हाथ में वैसे गालियों भरे पोस्टर पकड़ा दिए जाए तो आप उनको लेकर के खड़े होंगे,
15: तो क्या मारेंगे छात्रों को,
18: क्या आप ऐसे पोस्टर
15: लेकर
18: राहुल गांधी
14: अब आप लोग सब चुप हो जाइए, अब कोई नहीं बोलेगा, अब एक सेकंड, अब कोई नहीं बोलेगा, बच्चे बोलेंगे। चलिए
19: मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट था तो इसमें हिंदूज गॉड को क्यों मॉक किया गया, उनको क्यों अब्यूज किया गया, और फिर आप बोलते हो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बल्कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज उसमें खुद इन्वॉल्व करी एक पीसफुल प्रोटेस्ट को। सोनम सर खुद वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्टूडेंट्स भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें रिलीजन लाने का कोई मतलब नहीं था।
18: नाम और सवाल का गाने गा रहे हैं, सीता का पति अनीता के पति का फायदा कह रहे हैं, भारत माता का बाप कौन है, इसका नीट पेपर लीक से क्या लेना देना था, ये मेरा भी प्रश्न है।
19: ठीक है मैम, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ वो 2024 में भी तो हो सकता था, अभी एसएससी के जो पेपर्स हुए वहां पे भी स्टूडेंट्स ने बहुत मार खाया, और इसके बाद अभी नीट का पेपर लीक हुआ, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो अभी क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया, आज के 10 साल पहले भी ला सकते थे, हम 12 साल पहले आपको चूज करके लेके आए थे सरकार में, तो तब आपने क्यों नहीं किया।
18: ये तो 2006 से भी हो सकता था, 2004 से भी हो सकता था।
14: आइए जल्दी आइए,
18: एग्जैक्टली, तो आप आगे आ जाइए, कोर्ट एटलीस्ट आया ना,
14: बारी बारी से, एक सेकंड, लड़ाई नहीं, सारे सवाल लेंगे एक साथ, पहले छात्रों को बोल लेने दीजिए क्योंकि आज इनका मुद्दा है।
19: अगर सरकार ने 3 महीने की गारंटी ली है तो अगर वो पूरा नहीं कर पाई तो जवाबदेही कैसे देगी?
14: 3 महीने में अगर आपने कहा है, वादा किया है तो।
20: मेरे 2 क्वेश्चन हैं दोनों साइड से। पहला तो बीजेपी से कि माना हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा है पर हर साल 150 बच्चे मरे, ये तो पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई तरीका नहीं हुआ। और दूसरा है कांग्रेस से, इन टोटल अभी देश में 10 से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड का फॉरेस्ट बचाने का हो या वेस्ट बंगाल का टीचर्स का, तो क्या वो बस पीआर के लिए इसी वाले प्रोटेस्ट पे क्यों फोकस कर रही है, बाकियों का क्या?
14: ठीक है, और इधर से आइए, जल्दी आइए आप।
19: मैम माय क्वेश्चन इज कि दोनों साइड्स एज आई हैव ऑब्जर्व, ये दोनों के दोनों साइड्स जो हैं इनमें से कोई अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा है,
14: फुटबॉल खेलते हैं सामने आके।
19: एग्जैक्टली, दे आर प्लेइंग द ब्लेम गेम, वो इनको ब्लेम कर रहे हैं, ये इनको ब्लेम कर रहे
14: हैं, बीच-बीच में चिल्लाते हैं गोल।
19: एग्जैक्टली, व्हाट आई बिलीव इज जेन ज़ी इज बीइंग यूज्ड, कोई भी जेन ज़ी के साथ नहीं है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है।
14: और किसी को आइए आगे आइए।
21: मैम आप बोलिए 60 पेपर लीक हुआ बट रिजाइन किसी ने नहीं दिया है, बट इस बार भी तो आप लोग नहीं दे रहे हैं रिजाइन, तो इलेक्शन फिर आने वाला है।
18: तो मैं कह रही हूँ बेटा कि क्या इस्तीफा
14: अकाउंटेबिलिटी,
21: एक अकाउंटेबिलिटी तो है,
18: कैसे, कैसे?
21: जब भी तो गलती करता है मैम, कोई अगर टीचर गलती करता है तो उसको डायरेक्टर रिजाइन ले लेता उससे, तो आप गलती कर रहे हो तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिजाइन ले पा रहे हैं?
18: प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन,
19: आप सब सवाल उठाए जा रहे हैं छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए, क्या रोड मैप है और ये प्रोटेस्ट कैसे रुकेगा, और छात्रों को जो मारा जाए उसका जिम्मेदार कौन है?
22: मेरा सवाल कांग्रेस है, जैसा कि सर आप बोल रहे हैं कि गलती हुई, ठीक है, अगर कल को आपकी सरकार बनती

0: पेपर्स तो कैट और सीए भी करवाता है ना, तो उनके तो लीक्स नहीं होते। फिर गवर्नमेंट इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो तो प्राइवेट ही है, लेकिन गवर्नमेंट खुद फिर क्यों नहीं करवाती है इसको?
1: वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल।
2: मैम ये पेपर लीक की प्रॉब्लम है वो 12 साल से नहीं चल रही है, वो 12 साल से पहले भी हो रही थी, ये बहुत पहले की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे राजनीतिक दौर से बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है स्टूडेंट के बेसिस पे।
3: मैम ये बोल रहे हैं कि आज तक कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन एनडीए का ही सरकार था जो नीतीश कुमार थे रेलवे मिनिस्टर, जब रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो आज धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं लेना चाहते हैं या अपने कुर्सी से प्यार है?
1: दो तीन सवाल और उसके बाद से आप लोग जवाब दीजिएगा।
4: मैम जैसे कि
1: मैंने पकड़ा हुआ बेटा,
4: मैम जैसे कह रही थी कि वो इस्तीफा क्यों देंगे, तो जब कोई स्टूडेंट एक ही गलती 3 बार करता है तो उसे भी तो स्कूल से निकाल दिया जाता है ना,
5: रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता
4: exactly.
5: है। रिस्ट्रिकेट करेगी जनता।
1: आई आई
6: मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चों को मारा नहीं गया है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी कहाँ थे जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जब बच्चों को मारा गया, जब बहुत वायरल हो गया सब कुछ,
7: बात पहले भी की जा सकती थी,
6: डिसीजन नहीं लिया गया ना सर, अब लेने का फायदा नहीं है, अब आ रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना सर, पहले होना चाहिए था।
8: और अभी जो भी हमारे पीएम ने बोला है कि ये कोर्ट्स आएंगे और ये सब चीज़ें सुधार आएंगी, हम कैसे विश्वास कर लें कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली सुधरेंगी? अभी आपसे बोला जा रहा था तो आपने भी डिनाई किया है कि मारा नहीं गया है, जो कि सरासर झूठ बोल रहे हो आप लोग। मारा गया है सबको पता है, इंस्टाग्राम पे और सारी जगहों पे प्रूफ्स हैं हमारे पास, तो आप भी झूठ बोल रहे हो। तो
9: मैम अकाउंटेबिलिटी की बात सर ने की, तो अकाउंटेबल होने के लिए आपको संसद जैसे हम मंदिर मानते हैं वहाँ पर हमें प्रेजेंट भी तो होना पड़ेगा, वो तो खुद प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें?
1: ठीक,
10: मेरा पक्ष दोनों तरफ से, ये मैटर नहीं करता कि इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं, इस समय रेवोल्यूशन आना चाहिए और पेपर लीक होना बंद होना चाहिए।
1: और उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? एक आखिरी सवाल,
11: इस प्रोटेस्ट के रिजल्ट में 20 दिन क्यों लग गए, इतना लंबा टाइम क्यों लिया, जब पता था न्यूज चल रही है सब जगह, तो सोनम वांगचुक 20 दिन तक भूखे हैं, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर वो हॉस्पिटल में चले गए।
1: चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, जो इनका सवाल है वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, इतनी देर क्यों कर दी हुजूर आते आते?
12: प्रोटेस्टर्स पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार पीसफुली जंतर मंतर पे दिया गया था। जिस दिन प्रोटेस्टर्स ने ऑफिशियली कहा कि वो सरकार के साथ मिलना चाहते हैं, एक नहीं एक ही दिन के अंदर सरकार 2 बार मिली। सोनंग वांगचुक जी की जब तबियत, और हाईकोर्ट ने कहा कि सोनंग वांगचुक जी की राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार सरकार को है, तब जाकर सरकार 20 दिन बाद आई। हम कांग्रेस की सरकार नहीं है कि मिडनाइट के अंदर लाठी चार्ज कर दें और जिस तरीके से सबको हटाए, सबको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है। और मेरी बात नहीं तो आप सोनंग वांगचुक जी की बात सुनिए, जो उन्होंने कल कहा कि मेरी जो तीनों बात थी वो तीनों बात मान ली गई है, और सबसे महत्वपूर्ण संसद में चर्चा होनी चाहिए, हम सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आप भी कल को जाके सांसद बनेंगे, एमएलए बनेंगे, हम सब अकाउंटेबल संसद और लेजिस्लेटर्स को है, यही हमारा संविधान सिखाता है। अब आपने बात करी शिक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी की, आप सभी याद करिए रीनीट का एग्जामिनेशन विद इन 49 डेज हुआ, जिसमें से आप में से कोई गरीब मां का बेटा, कोई दूसरा व्यक्ति, 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया, 22 लाख बच्चे अपियर किया, 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया, 55% उसमें महिलाएं हैं। तो वही पूरे हमने उस गलती से सीखा, वही शिक्षा मंत्री के अंडर में रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई और होल ऑफ गवर्नमेंट से हुआ। अब बात करते हैं राजनीति नहीं है, अगर आप सभी कहते हैं कि चर्चा, मैं कह रहा हूं चर्चा हो उसका संसद निर्णय ले ले, पर अगर अकाउंटेबिलिटी हम सब कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन पे होती है, तो हम सबको यह कहना चाहिए कि पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार नहीं है, हमारे अंडर नहीं आता, वहां के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं, हमारे अंडर नहीं आता, वहां के भी इसको इस्तीफा देना चाहिए। परसों पंजाब के अंदर हमारे अंडर नहीं आता, पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी देना चाहिए। और कल कर्नाटक हमारे अंदर नहीं आता, वहां 80 लाख की ब्राइब हो रही है, वहां के भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं वॉट अबाउट ही नहीं कर रहा,
1: कर रहे हैं
12: मापदंड, नहीं नहीं
1: अंजना जी, मापदंड
12: मापदंड जवाबदेही बराबर होनी चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
1: सरकार इसलिए थोड़ी सौंपी थी कि आप बताओगे वहां क्या कर रहे हो, कांग्रेस को हटा दिया
12: अंजना जी,
1: 12 साल हो गए,
12: यहां सब यहां कहीं भाजपा नहीं है। हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई, तभी हमने रीनीट का एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कराया, तभी हमने 3 महीने के अंदर कन्विक्शन का रेट लाया, लीगली हमने अमेंड करा, ये हम लोग अकाउंटेबल अब संविधान को हमेशा रह रहे हैं। अगर हम नहीं डिलीवर करेंगे तो हमसे कोर्ट सवाल पूछेगा, ऐसे ही सरकार चलती है। और एक और ये सप्पा कह रहे थे, आप सभी युवाएं कर लीजिए, देश में पेपर लीक के खिलाफ पहला कानून कब बना? 70 साल से था, पहले से समस्या चली आ रही थी, नहीं कर कब बना, हम लेके आए, उसके बाद भी दिक्कत हुई।

0: कुछ प्रोफेसर्स ने, इन्विजिलेटर्स ने पेपर लीक किया, वो सबके सब जेल के अंदर है। शिक्षा मंत्री ने डायरेक्ट लिया, उसके किसी व्यक्ति ने नहीं किया, उसने खुद ने आइडेंटिफाई किया कि भाई एक इन्विजिलेटर ने पेपर लीक किया, मैं खुद सीबीआई ऑर्डर करूंगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये बात है। ये मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा, आप मुझे सोल्यूशन दीजिए। सोल्यूशन इस्तीफे नॉन इस्तीफे नहीं, सोल्यूशन रिफॉर्म है। सोल्यूशन ज्यादा टाइम बाउंड सजा है। सोल्यूशन 50,000 की सीट को बढ़ा के 1.5 लाख नीट की सीट करना है, जिससे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। सोल्यूशन की बात करें, जिसने स्टूडेंट पे लाठी चला उस पे कार्रवाई होगी, जिसने पीसफुल पे,
1: कब होगी
0: मैं बता
1: नहीं, अज्ञात नाम से, अननोन नाम से कई बच्चों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
0: ऑलरेडी हो गया,
1: कितने कितने पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ?
0: अंजना जी,
1: कौन करेगा पुलिस वालों के खिलाफ?
0: अंजना जी, एक
1: प्रदीप जी, लेट्स बी रियलिस्टिक।
0: अंजना जी, बहुत रियलिस्टिक है
1: क्या?
0: अभी मैं बता रहा हूँ, अभी वहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं और कई लंपन एलिमेंट्स हैं जो संसद उखाड़ फेंक देंगे, उमर खालिद के नारे, प्रधानमंत्री जी वाली, कई दो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सोनम वांगचुक जी ने भी कहा वायलेंस नहीं है, हम सब ने देखा वायलेंस हुआ है, एक बार ये पूरी की चीज को करने दीजिए, अपने आप कार्रवाई होगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसने कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी एक्ट कर गलती करी है, उस पर एक्शन होगा, पर जिसने साथ में पत्रकारों को भी पीटा है, जिसने आरएएफ के जवान को भी पीटा है, वो स्टूडेंट नहीं है, वो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का फायदा उठा के असामाजिक हमें स्वीकारना होगा।
1: प्रदीप जी,
2: आदरणीय सोनम वांगचुक,
1: पार्लियामेंट में पूछ रहे थे कि पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी,
2: उसका भी आदरणीय सोनम वांगचुक जी 6 महीने बाद जेल से छूटे हैं, किसने जेल में डाला, क्या कह रहे थे तब ये?
0: उनका कल का बयान क्या था?
2: क्या कह रहे थे कि चीनी एजेंट है ये चीनी? देखिए चुप रहिए, आपके बीच में नहीं
0: बयान किया है।
2: उस बिटिया ने पूछा कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं आप जाते हैं, राहुल गांधी पार्लियामेंट, राहुल गांधी जी गए थे लोकसभा अध्यक्ष के पास कि अध्यक्ष जी आप बात चर्चा तो कराइए, उनने कहा यहाँ नहीं बैठेंगे, सरकार से पूछकर बैठेंगे। तो राहुल गांधी जी बैठ गए प्रधानमंत्री जी की आवाज के बाहर, प्रधानमंत्री जी की आवाज के बाहर बैठ गए,
0: ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट,
2: प्रधानमंत्री का घर जो लोक कल्याण मार्ग है वो
0: प्रधानमंत्री का मार्ग, प्रधानमंत्री के रेजिडेंस के सामने
2: करेंगे,
0: पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं हो सकती?
2: प्रधानमंत्री जी,
0: पार्लियामेंट हमारे स्टूडेंट्स की है, युवाओं की है, पार्लियामेंट में
2: वीडियो बना रहे प्रधानमंत्री,
0: अरे पार्लियामेंट में चर्चा करो।
2: उनका प्रवक्ता क्या कह रहा है? एक बिटिया को देखा हमने कि उसने ऐसी जगह डंडा मारा जिसको मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता।
0: गलत है,
2: माँ की
0: गलत है, पर साथ में मुझे
2: झूठ बोलते हो आप,
0: नहीं आप झूठ बोल रहे हो, वहाँ पे आप मुझे बताओ,
2: पूरे देश ने देखा,
0: पूरे देश ने देखा, पंजाब से लेकर कर्नाटक में इस
2: बात का,
0: जिस बच्चे के खिलाफ
1: अंजना जी, बिल्कुल ये बात सही है, ये बात सही है, संसद में चर्चा होनी चाहिए और वहाँ पर सभी लोग, कम से कम नेता सामने आए, वो अकाउंटेबल रखे पूरे सिस्टम को, और जो उपाय हो सकते हैं वो भी बताइए, और अपने अपने नेता का खूब महिमा मंडन कीजिए, अपनी पार्टी का चालाकी से फायदा भी निकालिए, लेकिन बच्चों का मुद्दा है, पेपर लीक भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है, इस बात को मत भूलिएगा, और इस बार तो बच्चे उतरे हैं, भूलने नहीं देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद खासतौर पर उन बच्चों का जो हमारे साथ इस चर्चा में आ जाए हैं, एक बार उनको दिखा दीजिए, क्योंकि ये बच्चे और उनकी आवाज ही इस देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
2: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
1: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है, पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
3: वाह वाह वाह वाह।
1: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
4: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: पापा,
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ,
8: टाटा
9: AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
5: Kuch to baat hai is dil mein.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
9: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
10: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमाक, the mustard specialist since 1933.
5: सरसों
6: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स 11 बिलियन व्यूज 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड रीजनल और हाइपर लोकल रीच हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
9: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ, ओले ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
4: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टेलिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार. अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या. रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.
3: सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद सीजेपी के जो समर्थन में छात्र हैं, वो बड़ी संख्या में, ये सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं.
4: इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं. यहां इस वक्त गहमा गहमी भी है. किस तरह से लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और जंतर मंतर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं.
5: तमाम जो छात्र हैं वो पहुंच चुके हैं. तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं और पुलिस के द्वारा यहां पर इनको रोका जा रहा है.
6: तमाम प्रदर्शनकारियों का हुजूम यहाँ पे है जो नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है.
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडर बैठ गए हैं.
8: राहुल गांधी को अब यहाँ से उठा लिया गया है सात लोक कल्याण मार्ग से. वो पिछले कई घंटों से यहाँ पर बैठे थे. वो राहुल गांधी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस शो में। अगले आधे घंटे में हम दिन भर की सभी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस्तीफा नहीं देंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सरकार के सूत्रों से खबर, एनडीए में सुधारों को लेकर रात 8 बजे शिक्षा मंत्रालय करेगा बड़ा ऐलान। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात में सीजेपी ने रखी अपनी 3 मांगे। आज तक से बोले अभिजीत दीप के, प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं, कल दोपहर तक सरकार देगी जवाब। पेपर लीक पर सख्त कानून का मसौदा कैबिनेट में स्वीकृत, अब 10 वर्ष तक सजा, 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान, सोमवार को संसद में पेश हो सकता है संशोधन विधेयक। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को पीएम मोदी की सलाह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय होने की बात कही, केंद्र के कामों पर रील पोस्ट कर युवाओं से सीधा जुड़ने का दिया सुझाव। हिमाचल के बांगी में चलती गाड़ी के ऊपर गिरी चट्टान, 13 की मौके पर मौत, 2 की बची जान। इस शो की शुरुआत हम इस समय की एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। एनटीए में सुधारों को लेकर आज रात 8 बजे बड़ा ऐलान शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया जा सकता है, ऐसी खबर आ रही है। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि एनटीए को लेकर ही ये सारा बवाल है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एनटीए को लेकर बड़ा सुधार किया जा रहा है। रात 8 बजे शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा ऐलान होगा। उस ऐलान में देखिए एनटीए में क्या, किस तरह के बदलाव किए जाते हैं, किस तरह का सुधार किया जाता है, क्या ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाता है, ये सारी बातें जो हैं वो रात 8 बजे पता चलेंगी। शिक्षा मंत्रालय एक बड़ा ऐलान करेगा। उस ऐलान में शिक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए इंतजाम हो सकते हैं, सुचारू रूप से इम्तहान कराने को लेकर बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहां जिन्हें दूर किया जा सकता है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधे। जितेंद्र, क्या उम्मीद करें हम, क्या कुछ सुधारों वाले ऐलान हो सकते हैं एनटीए में?
1: बिल्कुल सही, 8 बजे एक बड़ा ऐलान जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एनटीए को लेकर के किया जा सकता है, क्योंकि जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है।
0: हमारा संपर्क हमारे संवाददाता जितेंद्र से टूट गया है, लेकिन 8 बजे आज बस लगभग अब से 1 घंटे बाद ये ऐलान होगा। और इस देश में इम्तहान परीक्षा करवाने वाली एजेंसी को लेकर वो ऐलान हो सकता है। एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करते हैं जितेंद्र, सुन पा रहे हैं जितेंद्र हमें? जितेंद्र, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है?
1: जिस तरीके से
0: जी बताइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही, जिस तरीके
0: तकनीकी खराबी है, फिर से इंटरनेट की परेशानी के कारण जितेंद्र से बात नहीं हो पा रही है। आगे बढ़ते हैं। सरकार लगातार गतिरोध समाप्त करने के प्रयास में लगी हुई है, और इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। वहीं सरकार पूरी तरह से शिक्षा मंत्री के बचाव में है।
2: नीट पेपर लीक पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी की नाराजगी खत्म करने की कोशिशों की यह तस्वीर है, जहां आज सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच करीब 10 मिनट की बैठक चली। सीजेपी ने सरकार के आगे 3 शर्त फिर दोहराई। पहली शर्त, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी शर्त, पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। तीसरी शर्त, प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई FIR वापस ली जाए।
3: उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई, उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच सुधार हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे।
2: सूत्रों की माने तो सरकार दूसरी और तीसरी शर्त के लिए तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार सहमत नहीं है। तीनों शर्तों पर फैसले के लिए सरकार ने कल तक का वक्त मांगा, लेकिन सीजेपी इस्तीफे पर अड़ा हुआ।
3: धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या क्या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटिमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटिमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक।
2: सरकार ने कल 3 बजे एक बार फिर सीजेपी के प्रतिनिधियों को बैठक के लिए बुलाया है। वहीं सीजेपी की ओर से कहा गया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो प्रदर्शन और बड़ा होगा।
3: हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कांग्रेस जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा।
2: बहरहाल अब पूरी खींचतान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आकर रुक गई है, जिससे कांग्रेस पार्टी समझौता करने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: तो बस अब से लगभग 1 घंटे बाद एक बड़ा ऐलान होने वाला है और यह ऐलान एनडीए में सुधारों को लेकर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से होने वाला है। हमारी एक साथी संवाददाता मारिया शकील हमारे साथ है। मारिया, क्या उम्मीद करें, क्या कुछ हो सकता है इस ऐलान में?
4: जी, तो सरकार की ये कोशिश है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका कंप्लीट ओवरहॉल हो और इसकी तैयारी रीनीट एग्जामिनेशन की सफलता के बाद शुरू कर दिया था सरकार ने, और अभी कुछ ही देर में ये अनाउंसमेंट होगा कि लगभग 50 के करीब जो ऑफिशियल्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको हटाया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास प्रूफ है और डिटेल्स हैं कि ये पदाधिकारी रिस्पॉन्सिबल थे बहुत सारे लेवल में। जो एक जो ओवरऑल एक सेंस है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, जो सिस्टम बच्चों को बार बार फेल कर रहा है, उसका ओवरऑल की जरूरत है, और इसीलिए हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 50 ऐसे ऑफिशियल हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनको हटाने की तैयारी सरकार कर रही है।
0: बहुत धन्यवाद मारिया। मारिया शकील संवाददाता हमारी। एनटीए में सुधारों को लेकर जो ऐलान बस सबसे कुछ देर में यानी कि 8 बजे तक होना है, उस पर दे रही थी जानकारी। सरकार का पूरा जोर अब पेपर लीक के सिस्टम को ठीक करने पर है, जिसके द्वारा सरकार छात्रों का विश्वास जीतना चाहती है, और ऐसे में पेपर लीक को लेकर सख्त कानून की तैयारी है जिस पर जल्द ही मुहर लग सकती है।
5: एक ओर सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है तो वहीं दूसरी ओर सरकार पेपर लीक के नए संशोधन की बात कर रही है। पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक को लेकर सरकार पहले जो बिल लाई थी उसी में संशोधन कर प्रावधानों को और भी ज्यादा कड़ा करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित नए संशोधन के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने वालों को 5 से 10 साल की कैद की सजा हो सकती है, जबकि पुराने बिल में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था। साथ ही दोषी पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जबकि पहले बिल में भारी जुर्माने का प्रावधान नहीं था। नए बिल में प्रावधान ये भी है कि अगर पेपर लीक में कोचिंग सेंटर या कोचिंग सेंटर से जुड़ा शिक्षक शामिल पाया गया तो कोचिंग को भी बंद किया जा सकता है। साथ ही पेपर लीक के मामले के तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं।
6: फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
5: इस बीच 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के हायर एजुकेशन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वो मौजूदा सचिव विनीत जोशी की जगह लेंगे। वहीं सरकार का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सरकार स्वीकार नहीं करेगी। सरकार का मानना है कि इस्तीफा इस समस्या का समाधान नहीं है। जनता ने सरकार को जनादेश दिया है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था में सुधार करेगी। आज तक ब्यूरो।
0: पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। पीयूष, क्या कुछ चल रहा है? सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से मिल चुकी है, आगे किस तरफ जाता हुआ अब हम ये पूरा मामला पीयूष देख सकते हैं?
7: जी बिल्कुल सैयद, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार इस पूरे मसले को लेकर काफी गंभीर है। लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है। दूसरे राउंड की वार्ता सीजेपी के साथ सरकार ने कर ली है और कल संभवतः सरकार एक लिखित जवाब है वो सीजेपी के लोगों को देगी। इसमें यह समझने की बेहद जरूरत है कि जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है उसको लेकर सरकारी सूत्रों ने यह साफ कर दिया है कि अगर इस्तीफा होता है तो वो कहीं ना कहीं दर्शाएगा कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस वक्त जरूरत यह है कि सिस्टम को ठीक किया जाए, सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और जो कमियां हैं उनको दूर कर बेहतर चीजों को सामने लाया जाए। और सूत्र ये बता रहे हैं इस वक्त कि लगभग 8 बजे के आसपास एक बड़ा फैसला सरकार लेने वाली है एनटीए को लेकर, और जल्द लगभग 47 ऐसे अधिकारी हैं शिक्षा मंत्रालय के अंदर जिनके ऊपर गाज गिर सकती है। आप देख रहे हो कि किस तरह के कदम सरकार उठाने जा रही है, लेकिन एक बात साफ है, सरकार समन्वय बिठाना चाहती है, समस्या को सुलझाना चाहती है, साथ साथ जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे लगातार बातचीत करना चाहती है।
0: बहुत धन्यवाद पीयूष, बड़ी बात आपने ये बताई कि 47 अधिकारी शिक्षा मंत्रालय के हटाए जा सकते हैं। सरकार सख्त कानून का विश्वास दे रही है तो वहीं सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। ऐसे में अब सीजेपी का क्या रुख? सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से ये आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत।
8: पहला सवाल यही है कि आंदोलन के मुद्दे अब क्या है? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, फिलहाल तो सरकार मना कर रही है, लेकिन अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या यह आंदोलन थमेगा?
9: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो ये था कि जिन बच्चों ने सुसाइड करी उनके परिवारों को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके साथ 20 जुलाई को जो हुआ, जिस ब्रूटैलिटी के साथ पुलिस ने बच्चों के सर फोड़े, लड़कियों को पीटा है, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक और डिमांड ऐड करी है कि जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है एक तो उसकी वजह से पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ में जिन बच्चों के ऊपर झूठे केसेस लगाकर उनको डिटेन या अरेस्ट किया गया था वो सारे केसेस वापस लिए जाने चाहिए।
8: लेकिन अब विपक्षी पार्टियां भी आपको सपोर्ट कर रही है क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता आपके यहां पर दिखे, राहुल गांधी वहां पर एक अलग प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं?
9: मैं सभी विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो उन सभी ने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को बाजू में रखकर स्टूडेंट्स के साथ एक साथ आए और जो उन्होंने समझा कि जो देश का मुद्दा है, जो भविष्य का मुद्दा है इस देश का, उसके लिए वो सब साथ में आकर हमारे साथ खड़े रहे, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
8: लेकिन सोनम वांगचुक अब जो है उन्होंने तो अपना अनशन वापस ले लिया है, उन्होंने कहा है कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कहा है कि वो मांग उन्होंने पुश नहीं की, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने वो मांग पुश नहीं की है, तो क्या अब आपके रास्ते अलग हो चुके हैं? उस पर आपका क्या कहेंगे आप?
9: इससे मुझे बहुत ही राहत और खुशी मिली है। हम खुद सोनम सर से बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, आगे का प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और कल जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वॉज वेरी रिलीव्ड, और बहुत जरूरी भी था क्योंकि सोनम सर की जान जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए। और 26 दिनों तक उन्होंने जो दर्द सहा है, जो सैक्रिफाइस किया है, अपने हेल्थ का, आई थिंक इससे ज्यादा कोई और कुछ कर नहीं सकता था इस मूवमेंट के लिए। अपनी जान को एक तरीके से दांव पर लगाकर सोनम सर ने इस देश की जनता को जागरूक किया है।
8: ठीक है, लेकिन आगे का प्लान क्या, क्योंकि आंदोलन तो पूरा पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आसपास नजर आ रहा है, लेकिन आगे क्या प्लान होगा, क्या कुछ और भी मुद्दे हैं उसको भी आप उठाने की कोशिश करेंगे?
9: अभी तो ये आंदोलन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, और मुझे लगता है इसमें सरकार की भी भलाई है कि जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो आज जो देश में लाखों के नंबर्स में स्टूडेंट्स और युवा सड़कों पर उतरे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो फिर वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। तो सरकार की भलाई भी इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए।
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामे की कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक कहते हैं कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, तो फिर सवाल यह है कि उपद्रव करने वाले आखिर ये लोग हैं कौन?
10: अपने हक के लिए सड़क पर उतरे छात्रों का प्रदर्शन जारी है, और इस प्रदर्शन के बीच कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। जब प्रदर्शनकारियों का एक जत्था पुलिस वालों पर टूट पड़ा था, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों को घेर कर पीटा। घायलों में से एक एसीपी रोहित भी है, सुनिए एसीपी ने क्या बताया।
11: जैसे ही भीड़ ने हमें जाते हुए देखा तो हम पार्क होटल के आसपास पहुंचे ही थे कि उन्होंने जो है हमारे ऊपर बॉटल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर उन्होंने हमारे ऊपर पत्थर वगैरह फेंकना स्टार्ट कर दिया, फिर भीड़ में से ही कुछ ही लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि मारो इनको मारो, तो फिर जो हमारे स्टाफ कर्मी थे उनको उन्होंने घेर लिया और मारना स्टार्ट कर दिया था।
10: रोहित के अलावा इंस्पेक्टर नंद किशोर के साथ भी यही हुआ, इनके साथ जो हुआ इन्हीं के मुंह से सुनिए।
12: स्टूडेंट्स नहीं थे, उनके हाथ में सर लाठियां थी, डंडे थे और पत्थर थे, किसी के हाथ में नुकीली चीज चाकू टाइप से थे,
13: नुकीली चीजें भी थी चाकू टाइप।
12: हाँ सर, और कुछ ने लोगों ने कड़े पहने हुए थे, उन्होंने वो हाथ में बना के उसको पंच बना लिया, तो वो लोग मेरे पास आए और बोलने लगे कि हमारे पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और पुलिस हमारे पर बर्बरता कर रही है। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ आगे, मैं मना करता हूँ, ऐसा ना हो, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तो इतने में पीछे से सर जितने भी थे उसमें 150-150 लोग थे, उन्होंने मेरे पर सर अटैक कर दिया।
10: कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दिपके भी कह रहे हैं कि ये मूवमेंट शांति से ही चलेगा, हिंसा से नहीं।
14: पीस एंड नॉन वायलेंस इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ये मूवमेंट, ये प्रोटेस्ट जो एक महीना सस्टेन करा है, एक महीना जो चला है वो इसीलिए चला है, पीस और नॉन वायलेंस की फाउंडेशन पर बना हुआ है और आगे जाकर भी उसी पर चलेगा। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भी गर्व होगा कि इतने सालों बाद भी इस देश का सत्याग्रह हो रहा है।
10: अब सवाल यही कि अगर कुछ छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर बवाल करने वाले लोग कौन हैं? हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली से शुरू हुए प्रदर्शन की आग अब हमारे देश के अलग अलग शहरों में दिखाई दे रही है। लखनऊ से कोलकाता तक, मुंबई से भोपाल तक छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं।
5: पेपर लीक को लेकर दिल्ली से शुरू हुई चिंगारी की तस्वीर अब देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है।
15: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर आज SFI द्वारा बुलाई गई छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता में आयोजन किया गया, जहां सियालदा से लेकर धर्मतला जो सेंट्रल कोलकाता का इलाका है यहां पर आज ये रैली हुआ हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में लोग जो हैं, जो खासकर छात्र छात्राएं हैं, वो हाथ में तिरंगा लिए, SFI के फ्लैग लिए यहां आ पहुंचे हैं, अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
5: लखनऊ में भी प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
16: जंतर मंतर में प्रदर्शन के बाद कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी प्रदर्शन किया जा रहा है, वो भी कई छात्रों के द्वारा, क्योंकि आज कॉल किया गया था और कॉल करने के बाद आज परिवर्तन चौक पर जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं। यहां पर कई जो प्रदर्शन में अपील की गई थी उसके बाद लोग यहां पर पहुंचे हैं। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से लोग पहुंचे हुए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है, क्या लिखा है?
17: इसमें इलाज लिखा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आज हम लोग शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं और हम लोग भगत सिंह को भी मानते हैं। अगर गांधी जी की तरीके से हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग भगत सिंह बनने पे उतरेंगे और सड़कों पे इससे भी बड़ा आंदोलन होगा।
5: भोपाल में भी छात्रों ने मोर्चा संभाला और पेपर लीक को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया।
18: भोपाल के नीलम पार्क में इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए छात्र हैं, वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं रुकी हुई है वो होनी चाहिए, वक्त पर नतीजे घोषित होने चाहिए, वक्त पे भर्तियां निकलनी चाहिए। ये बताइए जो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं जिसके बाद आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए?
19: सर वो सब गलत है, जो भी शिक्षा को लेके जो भी है ये कोई भी मतलब ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जो लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के स्टूडेंट ही भविष्य है आगे चल के।
5: हैदराबाद की सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सवाल यही है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा।
20: आज बीआरएस का यूथ विंग ने हैदराबाद के धरना चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं मेरे ठीक बिल्कुल पीछे भारी संख्या में यहां पर बीआरएस के लीडर्स, युवा छात्र के संगठन और साथ ही बीआरएस का युवा मोर्चा यहां पर जमा हुए हैं।
21: स्टूडेंट्स का एजुकेशन का मामला है तो मैं पूर्वों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन है इसको सुधारना एक युवा का काम है। युवा जब तक नहीं जागेगा ये एजुकेशन सिस्टम सेट नहीं होगा।
5: अब सरकार के सामने चुनौती इस गुस्से को शांत करने की है, छात्रों के इस भरोसे को जीतने की है जो लगातार पेपर लीक के मामलों के बाद खो चुका है। आज तक ब्यूरो।
0: कारोबार के दौरान बिकवाली के दबाव के बीच घरेलू शेयर बाजार आज लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 332 अंक टूटकर 76,060 और निफ्टी 102 अंक की गिरावट के साथ 23,767 पर बंद हुआ। कच्चे तेल के दामों में उछाल आया है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते घरेलू शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार में कमजोरी के बावजूद रुपए में मजबूती देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 96.57 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। कच्चे तेल के बढ़ते दाम के दबाव के बावजूद आरबीआई के दखल से रुपया संभल कर मजबूती के साथ बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा और सोना 1,848 रुपए प्रति 10 ग्राम टूटकर 1,42,757 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी 2,924 रुपए गिरकर 2,19,556 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों के ऊंचे बने रहने की आशंकाओं के बीच मुनाफा वसूली से घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में हमें गिरावट देखने को मिली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
23: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
24: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
25: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
26: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville.
27: Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had.
26: And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast,
27: in the TuneIn app,
26: or at TuneIn.com.
28: सवारी सोकुडो।
29: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
30: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाम।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
3: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
2: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दे, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
4: सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
5: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ओ ला ला भाई मेरा बैट,
8: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
9: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
10: ओ ला बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
13: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
14: कुछ तो बात है इस दिल में।
15: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: नहीं, तो घर स्ट्रॉन्ग
18: नहीं।
19: एकदम सॉलिड। लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
20: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
22: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
2: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
3: चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
8: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
9: कुछ तो बात है इस तेल में।
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
12: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
13: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स,

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुझे पैरालिसिस हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा प्यार में पागल हो गई थी किसी के एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टेड थी उस इंसान के अंदर. तो फिर वापस से मुझे एक बार और स्ट्रोक आया था जनवरी में बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ओनली. आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड्स. इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं. माय वेट वाज 52 एंड विद इन 7 डेज माय वेट गोज 85. सो इट्स अ ट्रिजेमिनल न्यूरोलॉजिया. मुझे डॉक्टर ने ही बताया.
2: हाँ
1: ये सलमान खान को भी बीमारी है. वो भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि उनको भी है. सडन अटैक्स आते हैं यहाँ पे. मतलब ऐसा लगता है कि कुछ करंट लग गया है. दिस इज अ सुसाइडल डिजीज.
3: सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद सीजेपी के जो समर्थन में छात्र हैं वो बड़ी संख्या में, ये सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं.
4: इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं. यहां इस वक्त गहमा गहमी भी है. किस तरह से लोग सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और जंतर मंतर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं.
5: तमाम जो छात्र हैं वो पहुंच चुके हैं. तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं और पुलिस के द्वारा यहां पर इनको रोका जा रहा है.
6: तमाम प्रदर्शनकारियों का हुजूम यहाँ पे है जो नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तिथर बतर करने के लिए पुलिस की तरफ से टियर गैस का इस्तेमाल हो रहा है.
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडर बैठ गए हैं.
8: राहुल गांधी को अब यहाँ से उठा लिया गया है 7 लोक कल्याण मार्ग से. वो पिछले कई घंटों से यहाँ पर बैठे थे. वो राहुल गांधी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

नहीं देंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सरकार के सूत्रों से खबर, एनटीए में सुधारों को लेकर 8 बजे बड़ा ऐलान शिक्षा मंत्रालय करेगा। हटाए जा सकते हैं 47 अधिकारी। जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह से मिलने में सीजेपी ने रखी अपनी 3 मांगे। आज तक से बोले अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं, कल दोपहर तक सरकार देगी जवाब। पेपर लीक पर सख्त कानून का मसौदा कैबिनेट में मंजूर। 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, सोमवार को संसद में पेश हो सकता है संशोधन विधेयक। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को पीएम मोदी की सलाह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय होने की कही बात, केंद्र के कामों पर रील पोस्ट कर युवाओं से सीधे जुड़ने का दिया सुझाव। हिमाचल के पांगी में चलती गाड़ी के ऊपर गिरे पहाड़ से 13 लोगों की मौके पर मौत, 2 की बची जान।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। विशेष में आज बात सोनम वांगचुक की, जिन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। लेकिन उनके अनशन खत्म करने से आंदोलन पर क्या फर्क पड़ा, क्योंकि आंदोलन कहीं से भी रुका नहीं। अभी भी प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हैं। सरकार से बातचीत हो रही है, सरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा बाकी सारी मांगे मान रही है। लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि पूरी बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी है। अब सोनम वांगचुक आगे क्या करेंगे?
1: अन्ना पार्ट टू, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे।
2: उन्होंने अपना फास्ट तोड़ दिया बीजेपी के नेताओं के कहने की वजह से। इसमें मुझे बड़ी साजिश की बू आती है।
3: 27 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया तो एक नया राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। सरकार को लगता है कि सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाकर उन्होंने पहली जीत हासिल की। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर आंदोलन करने वालों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। विपक्ष को लगता है कि सोनम वांगचुक ने बिना कोई मांग माने हुए अपना अनशन क्यों तोड़ा। कांग्रेस के सांसद तो सोनम वांगचुक पर सरकार से कोई डील करने का आरोप भी लगा रहे हैं। तो सच्चाई क्या है? रात को अचानक खबर आती है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया, और इसके कुछ देर बाद ये वीडियो आया जिसमें केंद्र सरकार के दो दो मंत्री सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में सूप पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। अस्पताल के आईसीयू में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। लेकिन सवाल ये उठे कि क्या सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर जाकर छात्रों के बीच में अपना अनशन तोड़ना चाहिए था। यह कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने बिना किसी आश्वासन के अपना अनशन क्यों खत्म किया। लेकिन हकीकत यह है कि सोनम वांगचुक को सरकार ने तीन आश्वासन दिए हैं। पहला, छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, आत्महत्या करने वाले नीट छात्रों को मुआवजा मिलेगा। और तीसरा, कि परीक्षा व्यवस्था पर पूरी चर्चा के बाद जवाबदेही तय होगी। लेकिन फिर सोनम वांगचुक से यह भी पूछा जा रहा है कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। इस पर वांगचुक का जवाब है कि अगर सरकार इस्तीफा नहीं लेगी तो छात्रों से ज्यादा सरकार को ही राजनीतिक नुकसान होगा। जिस तरह से छात्रों का गुस्सा है, देश भर में अब ये प्रदर्शन चल रहा है, उसे देखते हुए तो सोनम वांगचुक का यह तर्क सही लगता है। क्योंकि सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ने के बाद भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, और मांग सिर्फ एक है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक आंदोलन चलेगा।
4: अब आप कहेंगे जरूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा। और संसद के फर्श पर तो इस पे

0: है लद्दाख में कैसे सालों जीवन भर उन्हें FIR के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, इसकी मुझे खुशी है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूँगा, जो कि हमारी संसद है, वहाँ पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस हो।
1: लेकिन सोनम वांगचुक का ऐसे अनशन तोड़ना उन पार्टियों को धोखेबाजी लग रहा है जिन्हें इस आंदोलन के बहाने कुछ राजनीतिक फायदा दिख रहा था। कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री का घर घेरा, गुरुवार को फिर गांधी स्मृति भवन तक मार्च निकाला, ये दिखाने की कोशिश की कि विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है, और रात को अचानक सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। अब कांग्रेस इसे डील बता रही है।
2: अन्ना पार्ट टू, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे, ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था, कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना आप डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ?
3: बस क्रेडिट की लड़ाई में कितना नीचे गिर सकती है? कांग्रेस के युवराज 21 दिन विदेश में रहे, कभी सोनम वांगचुक के पास गए नहीं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे गए नहीं। इनफैक्ट आज जब सरकार ने प्रोटेस्टर्स से बात की, सोनम वांगचुक से बात की, सोनम वांगचुक का फास्ट खुलवाया, पूरा देश इसके लिए खुश है। सोनम वांगचुक की मांग थी पार्लियामेंट में चर्चा हो, तो पार्लियामेंट की चर्चा से भी राहुल गांधी भाग रहे हैं, और उन्होंने अपने नेता इमरान मसूद को बोला है कि सोनम वांगचुक को गालियां दे, अपमानित करे। और सोनम वांगचुक को अपमानित करने वाले बयान इमरान मसूद ने दिए, बोला है कि सोनम वांगचुक डील मेकर है, डील कर दिया। उनकी तुलना अन्ना हजारे से करते हुए दोनों अन्ना हजारे और सोनम वांगचुक की जो है अपमान के शब्द बोले। अब क्या CJP इसका समर्थन करती है?
1: कांग्रेस के नेता यही नहीं रुक रहे, डील या अन्ना पार्ट टू से आगे वो साजिश की भी बात कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सोनम वांगचुक ने सरकार के डर की वजह से अपना अनशन खत्म किया है।
4: अच्छा है, उनकी जिंदगी की देश को जरूरत है, लेकिन बड़ा सवाल है, 26 दिन वो लगातार भूख हड़ताल पर रहे और आज भी सरकार ने कोई डिमांड, कोई मुतालबा उनका नहीं माना। उन्होंने अपना फास्ट तोड़ दिया बीजेपी के नेताओं के कहने की वजह से। इसमें मुझे बड़ी साजिश की बू आती है। सरकार ने दबाव बनाया है, डराया है, क्या कारण है, क्यों तोड़ा गया है? जबकि कोई भी डिमांड नहीं मानी गई, ये कह देना कि हम विचार करेंगे, हमने देखा है कि ये सरकार विचार करने के नाम पे देश के लोगों को धोखा देती है। इस सवाल का ज्यादा सही जवाब तो सोनम वांगचुक ही दे सकते हैं कि उन्होंने बगैर डिमांड के माने हुए फास्ट को क्यों तोड़ा है।
1: लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो के तर्क में भी दम है। उनका मानना है कि आज जो पूरा देश आंदोलित है वो सोनम के अनशन की वजह से ही हो पाया है, और ये सरकार के लिए भी एक वेकअप कॉल है, क्योंकि आक्रोश बहुत ज्यादा है।
5: इससे पूरा देश जाग गया है, इससे पूरा देश, और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि एजुकेशन का नीट का जो पेपर लीक हुआ वो जस्ट एक सिम्टम था, उसके पीछे जो कॉजेस थे वो हर सिस्टम में थे, एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म में भी, बाकी भी अगर आप देखिए जुडिशरी, मीडिया, तो एक आम आदमी अपनी कॉमन जिंदगी में ये ब्रोकन सिस्टम्स को रोज एक्सपीरियंस करता है। इसलिए ये जो हमें राष्ट्र भर से समर्थन मिला ये उसका प्रतीक है, और हमें ये हम आशा करते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए भी एक वेकअप कॉल हो। अभी तक शायद उनको इतना पता ना हो कि देश उनसे इतना उम्मीद करता है और नाराज है, तो इसीलिए ये हर एंगल से ये जैसे सक्सेसफुल आंदोलन रहा, तो इसकी वजह से सोनम ने कल अपना फास्ट ब्रेक किया।
1: मौसमी सिंह के साथ राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।

इस समय हम आपको बता दें कि बड़ी खबर ये आ रही है, एनटीए के आउटसोर्सिंग सिस्टम में बदलाव होगा और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश में बदलाव होगा। कई सारे बदलाव की तैयारी में सरकार इस समय है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इन बदलावों की तैयारी की जा रही है। 47 अधिकारी हटाए जा सकते हैं, खबर ये भी आ रही है। तो कई सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जो एनटीए में बदलाव के तौर पर देखे जा रहे हैं और एक महीने के अंदर ये सब कुछ होगा। जितने भी बाहर से लोग आए हैं एनटीए में काम करने के लिए, जिन भी लोगों को बाहर से लगाया गया, आउटसोर्स किया गया है, उन्हें हटाया जाएगा। शेष मैच के लिए बस इतना है, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जवाब दे भी तय कर पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान इस शोर को गौर से देखिए। विपक्ष की पूरी ताकत जिस एक मांग पर टिक गई है वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हर एक प्रदर्शन हर एक धरना के बाद राहुल गांधी एक ही सवाल उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा।
3: दिस इज नॉट नेगोशिएबल फॉर श्योर। दिस थ्री पॉइंट दिस इज नॉट आवर डिमांड। दिस इज द स्टूडेंट्स डिमांड व्हिच वी आर फुली बैकिंग। दिस इज नॉट नेगोशिएबल।
4: 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए।
2: आधी रात को जब पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया तो जवाबी ट्वीट में भी राहुल गांधी की इस्तीफे वाली मांग मौजूद थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट में भी सारा जोर प्रधान के इस्तीफे पर ही था। तो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि प्रधान के इस्तीफे से कम पर बात बनने वाली नहीं।
5: सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते।
2: ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि प्रदर्शनकारी छात्र या विपक्ष के निशाने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों हैं, क्यों उनके इस्तीफे पर ही विपक्ष अड़ा है। केंद्र कह रहा है कानून बनेगा यानी इसमें कोई अड़चन नहीं है। केंद्र कह रहा है संसद में बहस होगी यानी इसमें भी कोई अड़चन नहीं। केंद्र कह रहा है मुकदमा हटाने पर विचार करेंगे यानी यहां भी मतभेद नहीं है। केंद्र कह रहा है मुआवजा दिया जाएगा, तनातनी यहां भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये तमाम मोर्चे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। जीत या हार का आकलन इसी से होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का क्या होता है, क्योंकि भविष्य में इसी सवाल का जवाब जिंदा रह जाना है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।

0: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
1: La Que Buena.
0: ESPN Radio.
2: We know LeBron has to be the best player on the planet to
0: get The Daily.
3: From the New York Times, I'm Katrin Ben Holt, and this is The Daily.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है, तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर should apologize to the students. These are the three conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it.
2: के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं, बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी कि बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्ते आए थे। और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो जातियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए।
3: ये तो जब ये पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तब प्रधानमंत्री की नींद खुली है। आज भी हम ये कहेंगे कि सदन में आने से पहले उनको अपने मंत्री का इस्तीफा लेकर आना चाहिए, फिर चर्चा करवानी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व है उनको मिलनी चाहिए।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब से कुछ क्षणों में खबरदार लेकर हमारी साथी श्वेता सिंह होंगे आपके साथ, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: इस्तीफा नहीं देंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सरकार के सूत्रों से खबर, एनटीए में सुधारों को लेकर रात 8 बजे शिक्षा मंत्रालय करेगा बड़ा ऐलान, हटाए जा सकते हैं 47 अधिकारी। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात में सीजेपी ने रखी 3 मांगे। आज तक से बोले अभिजीत दिपके, प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं, कल दोपहर तक सरकार देगी जवाब। पेपर लीक पर सख्त कानून का मसौदा कैबिनेट में मंजूर, 10 साल तक सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान, सोमवार को संसद में पेश हो सकता है संशोधन विधेयक। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को पीएम मोदी की सलाह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहे सक्रिय, केंद्र के कामों पर रील पोस्ट कर युवाओं से सीधा जुड़ने का सुझाव दिया। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, अहमदाबाद और सूरत में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू, असम में 47 लोगों की जान गई।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach in association with
2: Bharat ki apni electric sawari Sokudo,
1: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले हम शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर इस समय की ब्रेकिंग न्यूज से करने जा रहे हैं। एनटीए में फेरबदल होगा, एनटीए से अधिकारियों की छुट्टी होगी, ये खबर आ रही थी। और अब हम आपको तय तौर पर बता सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में बड़े बदलाव की खबर। सीजेपी का प्रदर्शन एक तरफ चल रहा है, सरकार का बड़ा फैसला दूसरी तरफ आ गया है। एनटीए से 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में यह बड़ा बदलाव, 47 अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। पिछले 20 घंटों में बहुत कुछ छात्र आंदोलन को लेकर हुआ है, अगले 24 घंटे भी बहुत अहम है, लेकिन उस सब के बीच रात 8 बजे एनटीए में बदलाव की बात थी। और देखिए, लगभग 2 मिनट पहले यह बड़ी खबर एनटीए से जुड़ी हमारे सामने है। एनटीए के 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया है, सरकार का यह बड़ा फैसला है। कांग्रेस जनता पार्टी और कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष का की मांग रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो परीक्षा का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो उसका ढांचा है, उसमें बदलाव करेंगे, नियमों में बदलाव करेंगे, कानून में बदलाव करेंगे, और उसी के तहत ये बड़ा एक्शन हम देख रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है इस समय। ऐश्वर्या, हालांकि हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा, लेकिन सरकार का ये कदम क्या बताता है और इन 47 अधिकारियों को हटाने के पीछे का कारण क्या दिया जा रहा है?
1: देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सरकार 2-3 चीजों को लेकर बहुत क्लियर है। सरकार का ये कह रहा है कि इस समय जो जरूरत है वो है कि आप एनटीए को पूरा क्लीन अप करें, आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कि आगे आने वाले समय में एक भी पेपर लीक, कितना बड़ा कितना भी छोटा हो, पेपर लीक ना हो सके। और यही कारण है कि अब जो आप देख रही हैं वो है एक कंप्लीट ओवरहॉल, एक कंप्लीट क्लीनअप। सरकार का ये भी मानना है कि अगर इस्तीफा होता है इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कोई भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा है, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो धर्मेंद्र प्रधान, चाहे वो पूरी की पूरी सरकार हो, या आपको देखने को मिल रहा है जिस तरीके से क्लीनअप है। आप ये भी देखेंगे कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर और भी क्लीनअप होगा, क्योंकि जो जांच हो रही थी वो जांच इस चीज को लेके हो रही थी कि आखिरकार ये जो पेपर लीक है ये हुआ तो हुआ कैसे, कौन कौन से वो लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। क्योंकि देखिए, पेपर लीक हुआ ये है सत्यता, तो कहीं ना कहीं से पेपर लीक हुआ, कोई ना कोई लोग थे जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे, कौन थे वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, पूरी की पूरी जांच जो है वो हो चुकी है। और इसी का नतीजा जो है वो अब आपको सामने नजर आ रहा है। 47 लोगों को हटा दिया गया है और ओवरहॉल किया जाएगा, क्लीनअप सिस्टम को पूरी तरीके से किया जाएगा। और इस समय जो कोशिश है सरकार की वो ये है कि आप एक लीक प्रूफ सिस्टम बनाए श्वेता, यानी कि अब से जितने भी एग्जामिनेशन हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उसके अंदर ये संभावना ही ना हो किसी भी तरीके से पेपर लीक।
0: और एक और स्पष्ट इस बात को मैं समझ लेना चाह रही हूं ऐश्वर्या आपसे, कि ये जो एक्शन है अफसरों के खिलाफ, मतलब उन्हें हटा दिया गया है या केवल सस्पेंड किया गया है, यानी कि यहां से हटे कोई दूसरी जिम्मेदारी आगे दी जाएगी, क्या हुआ है?
1: नहीं श्वेता, यहां से हटे हैं तो उनको हटा दिया गया है, क्योंकि फिर से आप अकाउंटेबिलिटी से भागते हुए नजर आएंगे अगर ऐसा होता है कि आपको यहां से हटाया गया और किसी और पोस्ट के ऊपर भेज दिया गया। देखिए, जांच पहले दिन से चल रही थी और सरकार को दो काम उस समय करने थे, एक तो जांच करनी थी, उन लोगों तक पहुंचना था, और दूसरा ये मेक श्योर करना था कि दोबारा जो नीट का एग्जामिनेशन है वो नीट का एग्जामिनेशन फुल प्रूफ होना चाहिए। वो सरकार ने किया, लगभग 22 लाख लोगों ने जो एग्जामिनेशन है उसको दिया, एकदम फुल प्रूफ तरीके से किया गया। अब आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया है, अब आपने जो रास्ता दिखाया है कि हम इस रास्ते पे चलेंगे, आपको उस रास्ते पे चलकर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये सवाल था कि कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं होगा, तो ये जो स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया गया है ये पूरी की पूरी जांच के बाद लिया गया है, और सरकार इससे एक बहुत बड़ा मैसेज सेंड करना चाहती है श्वेता। सरकार ये बताना चाहती है कि इस तरीके की चीजें मोदी सरकार के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाए।
0: और कानूनी कार्रवाई भी होगी इन जिनको हटाया गया है उनके विरुद्ध?
1: जी बिल्कुल, अगले आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से कार्रवाई होगी, और जो कार्रवाई होगी उसको भी बताया जाएगा कि एग्जैक्टली क्या कार्रवाई हुई है। क्योंकि इस समय देखिए, एक एग्जाम्पल सेट करने की भी जरूरत है कि जो लोग इस पोजिशन पे आएंगे या जो लोग ऐसी पोजिशन पे ऑलरेडी बैठे हैं उन तक एक मैसेज जाने की भी जरूरत है कि आप इन चीजों को हल्के में ना लें। अगर कहीं पर भी आपको खुद कोई लीकेज नजर आता है तो आप सरकार के सामने आए, जो सिस्टम है उनको बताएं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि गड़बड़ तो थी पेपर लीक तो हुआ था, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, और यही थी सत्यता जिसकी वजह से डे वन से जांच हुई और जांच का जो निष्कर्ष है वो अब सामने आपको देखने को मिला।
0: लेकिन अभी देखना होगा कि इस डिसीजन को और इस बात को कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, इस चीज को कैसे लेंगे जो आंदोलनकारी हैं। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता, ये बड़ी जानकारी हमें दे रही थी। अगले 24 घंटे भी बहुत अहम है, लगातार सरकार फैसले ले रही है। गुरुवार रात 11:52 पर वीडियो संदेश जारी किया गया प्रधानमंत्री ने, जिसमें कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून लाने जा रही है। इसके कुछ ही देर बाद रात में 12:30 केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के अस्पताल में 26 दिन से अनशन करते सोनम वांगचुक से मिलते हैं। उन्हें लिख कर देते हैं कि छात्रों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और संसद में छात्रों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया। आज दिन में 12:30 मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। पेपर लीक के दोषियों को और भी सख्त कानूनी सजा 3 महीने के तय समय में दिलाने वाला बिल अगले हफ्ते संसद में पेश होगा। आज ही 12:30 जंतर मंतर पर चलते धरने की अगुवाई करने वाले सीजेपी के सौरभ दास आशुतोष रंका से सरकार के 2 मंत्री मुलाकात करते हैं। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है। अब कल दोपहर फिर मुलाकात होनी है, सवाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी मांग को लेकर है, जिस पर न सीजेपी पीछे हट रही है न विपक्ष, इसीलिए जंतर मंतर पर धरना जारी है, संसद ठप चल रही है।
2: नहीं नहीं, इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है।
3: 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है, किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी होगा? जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं, जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी।
4: उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है,
5: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग in the march to the parliament on July 20, 2026.
3: बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के 2 प्रतिनिधि पहुंचे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। 2 घंटे बातचीत चली, 3 मांग 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की 2 मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा।
6: नंबर 1 क्या है, सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
7: हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बात मिलेंगे और फिर हमारे जो
8: हमारे आंदोलन के जो सबसे 2 बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि 1 तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
3: अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहां प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को दुख पहुंचा है।
9: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को यह भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है।
10: आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपी, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोना मांगचंद जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है, तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
11: पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन, एनी डिस्कशन।
3: यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर यह आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा। दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी।
12: हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस, जिस दिन कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं, साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए, अंदर क्या हुआ, नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पर लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है।
13: सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त की। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
14: छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी संवेदना की भावना के साथ प्रयत्नशील है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया, तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से, हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ।
0: यानी सरकार के सूत्र कहते हैं कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दोबारा नीट परीक्षा बिना किसी लीक के कराए जाने पर तारीफ भी की थी। सरकार का मानना है कि काम होगा लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने से। अगर अकाउंटेबिलिटी की ही बात है तो फिर काम होगा दोषियों को तय समय में सजा दिलाने वाली व्यवस्था को बनाने से। इसीलिए कल रात प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी किया, आज कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दिलाई जो अगले हफ्ते पेश होगा।
15: क्या छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था, क्या वो पास हुआ है बिल जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे?
16: नेक्स्ट, मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में
17: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
3: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा।
18: नेक्स्ट,
3: असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
9: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेगी और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
9: पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
3: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।
18: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
0: कल ही शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव बदले गए। विनीत जोशी की जगह नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव बने जो पहले पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव थे। हालांकि उन पर पुराने आरोपों की लिस्ट विपक्ष के नेता गिनाने लगे तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या केवल सख्त कानून बनाने से ही पेपर लीक को रोका जा सकता है। अगर हाँ तो फिर बिल तो 2024 नीट पेपर लीक के बाद भी आया, तब के बिल और अब के बिल में क्या फर्क है। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 देश का पहला सेंट्रल एंटी पेपर लीक कानून है। इसे 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू किया गया था। इसका मकसद एंट्रेंस एग्जाम में पेपर लीक, नकल और परीक्षा घोटालों पर रोक लगाना है। 2024 में लागू हुए इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई गिरोह शामिल है तो उसके लिए 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी अगर पेपर लीक में दोषी हो तो उसके लिए 1 करोड़ जुर्माना, परीक्षा की पूरी लागत वसूल करना और अगले 4 साल कोई परीक्षा न करवाने जैसी सजा शामिल है। जबकि अब जो नए बिल को मंजूरी दी गई है इसमें 10 साल की सजा, 10 करोड़ तक के जुर्माने के साथ 3 महीने में जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाने वाली बात अहम है।
19: देश का युवा सड़क पर है और वो कह रहा है कि सरकार हमारी नहीं।
20: आज तो बात हुई है, आज ही बात हुई है, फिर ये भी कहा उन्होंने, खुद ने कहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन ने कहा है कि सरकार के मंत्री मिले और कल भी मिलेंगे, लगातार बात हो रही है, उसे पहले भी मिले। सरकार तो संवेदनशील है, उनकी बात भी सुन रही है और आपने देखा भी होगा कि तो एक बड़ा विषय था।
19: पर सर कानून बदलने की बात हो रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हो रही है, लेकिन जो क्राइम हो चुका अब नए कानून को बदल के जो क्राइम हो चुका उस पर कैसे फर्क पड़ेगा।
20: अपराध करने से लोग डरते हैं, यही तो दुष्प्रेस है। आप देखिए किसी ने अपराध किए, समय पे सजा मिले और जो जांच है वो भी समय पे हो और स्मृति ट्रायल हो, यही तो ये चाह रहे हैं, यही तो डिमांड है उनकी, सजा मिले, यही इसी काम में लगे हुए।
0: सरकार सख्त फैसले ले रही है, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने लगे हैं, लेकिन क्या इससे भी पेपर लीक रुक जाएगा? कुछ आशंकाएं एक्सपर्ट्स के मन में हैं, जो कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियमित ट्रायल कोर्ट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेजी से केस का निपटारा तो होता है, लेकिन सजा दिलाने की दर निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। पश्चिम बंगाल में 2024 में फास्ट ट्रैक मामलों में से सिर्फ 2% मामलों में ही सजा हुई, जो देश में सबसे कम है। जम्मू कश्मीर में यह दर 4.5%, आंध्र प्रदेश में 5.2% रही। यहां तक कि दिल्ली की फास्ट ट्रैक स्पेशल अदालतों ने भी केवल 8.6% मामलों में सजा सुनाई। आप कहेंगे सजा तो सबूतों के आधार पर सुनाई जाती है और तभी तो शंका पैदा होती, क्योंकि एक तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में 31 दिसंबर 2025 तक 2,45,579 मामले लंबित हैं, दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जैसे सीबीआई, उसी में करीब 15% पद खाली है। दावा होता है कि सबूतों के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट लगती आ रही है, जिस पर कोर्ट तक चिंता जता चुके हैं।
1: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे।
21: और प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले, ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटास करने का कोई जरूरत नहीं है, समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
22: सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों का हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं, उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो फिर वो उनके जो मेल अकाउंट से सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स, तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को।
23: युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए, विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी। हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं।
24: जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना CRPF लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
0: चिंता तो बहुत से लोग CJI के 2 बयान को लेकर भी जता चुके हैं। देश में मुख्य न्यायाधीश के एक कथित बयान से जुड़कर शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी के उठाए गए मुद्दे की चर्चा पूरे देश में है। छात्रों के इस प्रदर्शन को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने CJP की याचिका नहीं ठुकराई। उन्होंने आज तक से कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट याचिका दाखिल नहीं हुई थी, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे 7 दिन हर देशवासी के लिए खुला है। कल जब प्रधानमंत्री ने आधी रात को 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया तो प्रधानमंत्री के बयान के साथ ही उनके वीडियो फॉर्मेट की चर्चा होने लगी, क्योंकि यह पारंपरिक सरकारी संबोधन जैसा नहीं था। न खास प्रोडक्शन टीम का आधार, न भारी भरकम बैकग्राउंड, केवल मोबाइल फोन से रिकॉर्ड, कैमरे से सीधा संवाद और जेंजी फ्रेमिंग, क्योंकि वर्टिकल फ्रेम में वीडियो रिकॉर्ड करके PM ने पोस्ट किया। यह ऐसा वीडियो था जिस फॉर्मेट में इंस्टाग्राम रील या स्टोरी देखने की आदत नई पीढ़ी को है। जो युवा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो युवा सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर लगातार सिस्टम और सरकार पर सवाल नए नए तरीकों, मीम्स, जेंजी स्टाइल वाले शब्दों, पोस्टर के साथ उठा रहे हैं। क्या उन तक अपनी बात, अपने फैसले, अपनी सोच को पीएम उन्हीं के स्टाइल में पहुंचा रहे थे? पीएम ने आज की कैबिनेट बैठक में भी बहुत अहम बात इसी जेंजी को लेकर कही है। युवा वर्ग जो इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहता है, इससे जुड़ाव को लेकर आज की कैबिनेट बैठक में पीएम ने पूछा कि उनके कितने सहयोगी वास्तव में इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। आगे उन्होंने सलाह दी कि प्रत्येक मंत्री को इस प्लेटफॉर्म पर सक्रिय होना चाहिए। पीएम ने कहा कि केवल सरकार की तरफ से किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों को पोस्ट करना ही नहीं, बल्कि मंत्रियों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं के साथ एक बहुत ही इंटरैक्टिव जुड़ाव रखना होगा। जेन जी यानी 1997 से 2012 के बीच जिनका जन्म होता है, यानी ये अभी 14 साल से 29 साल के बीच के युवा हैं, जो सोशल मीडिया पर अभी सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, यानी जिस डिजिटल स्पेस में संगठित आईटी सेल से ज्यादा व्यक्तिगत क्रिएटिविटी असर डालती है। अगर देश के युवा वोटर की बात करें तो 18 से 29 साल का युवा 22% है। इनकी तादाद वोटर के रूप में 21,59,00,000 है। ये वो वर्ग है जो अपने अधिकारों को लेकर अब लगातार संवेदनशील हो रहा है, जो अपनी आवाज उठाता है, विरोध करता है, सवाल पूछता है। नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा सियासी विवाद पेलेट गन के इस्तेमाल के आरोप से छिड़ता दिख रहा है। राहुल गांधी आज साहिल नाम के छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, दावा किया कि साहिल पर पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। इस आधार पर राहुल ने सरकार पर, देश के भविष्य छात्रों पर पेलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस इस दावे को पहले खारिज कर रही है।
2: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
4: सरकार ने कहा है कि कोई पेलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, ये है पैलेट गन।
2: अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए, दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
4: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
2: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी।
4: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है।
2: साहिल लोचाब नाम का यह नौजवान दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
5: मेरा नाम साहिल है। मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।
2: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही, लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया।
6: मैं था साहिल, तो देख के सारे में नाम ब्लड लग रहे हैं, नाम लग रहे हैं।
7: कटा हुआ था छर्रे? क्या
6: छर्रे? छर्रे छर्रे नहीं, यहाँ पे पूरे मुंह पे, आंखों के अंदर, पूरे पूरे देख के घबरा गए हम तो भाई क्या है क्या नहीं है ये चीज। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज, उन्होंने कहा कि आंख में लड़के आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
7: यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है, क्या है?
6: यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने, बंद करते ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं करा।
7: ऑपरेशन हो गया या कब?
6: एक ऑपरेशन हो गया सुबह हुआ था पेशेंट, रात को।
7: आज हुआ है?
6: कल सुबह हुआ था, और मैं रात को लगे थे 1 बजे कराने की, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन, और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद।
7: आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे,
6: मगर 1-2% चांस है।
7: निशान देख पा रहे थे?
6: निशान देखे हैं मैंने, आँखों में भी देखे हैं, आंखों की जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं या दोनों
7: तरफ शरीर से जो निकले थे छर्रे वो आप देख पाए थे जो निकाला गया?
6: नहीं, नहीं देखा।
7: डॉक्टर ने आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या, क्या लगा इसके शरीर में?
6: बस हाँ पूछा था हमने, सिर्फ इतना बताया था वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने कि वहाँ
7: क्या लगा शरीर में, क्या चोट है
6: ये पता, हमें खुद पता नहीं चला क्या ये छर्रे छर्रे छर्रे छह क्या, हम दूसरों को क्या बताए।
2: आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन के हैं इस पर वो कुछ नहीं कहते।
8: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास उसी के नंबर से, उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
10: तो क्या उस समय का क्या माहौल था घर का?
8: घर में तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कॉन्टेक्ट किया उनसे तो इलाज के लिए फिर ले गए।
10: क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको क्या पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या?
8: मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्त के जरिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा, मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में, जिस चीज के भी हों।
2: पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है। पेपर लीक मामले के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से जुड़े एक और विवाद से आपको खबरदार करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने अपने छात्रों और स्टाफ को जंतर मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी, तो इस पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए समय आने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय कर लेने की बात कही।
11: तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है, सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरह देश के कई बड़े शिक्षा संस्थान निशाने पर है। वजह जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई छात्रों को एडवाइजरी है, जिसमें छात्रों से विरोध प्रदर्शनों से बचने की सलाह दे दी गई। जेएनयू की एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल न होने, न ही वहां जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रों को जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह दी गई। चेतावनी ये दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही यूनिवर्सिटी के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी छात्रों से जंतर मंतर से दूर रहने की अपील करते हुए इससे पढ़ाई लिखाई और करियर के मौकों पर बुरा असर पड़ने को लेकर चेताया है। कहा है कि जंतर मंतर पर किसी भी तरह की गैर कानूनी भीड़ या प्रदर्शन के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
12: एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर ऐसा कुछ गाइडलाइन है, मैनेजर जैसे अभी हमने कहा कि हमारे जानकारी में नहीं है, अच्छा। तो मेरे ख्याल से अच्छा है और हम सब स्टूडेंट्स को इसको देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि वहाँ पे नहीं जाना है, बचना है या ऐसा कुछ, तो हम उससे एग्री करते हैं।
13: गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सब अच्छा से किए सब होगा सही, बाकी सब तो बोल रही है।
25: लोग अगर जाएं कहीं तो हम लोग प्रिकॉशन लें, जैसे हम लोग आराम से जाएं, सेफ पीस आंदोलन, पीस मूवमेंट करें, ठीक है, जो भी प्रोटेस्ट करना है पीसफुली करें, आराम से जाए, वहाँ बैठे बात करें, जिससे भी बात करें, कोई ऑफिशियल से एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आराम से बात करें, अच्छे से बात करें, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, हम लोग यही कर सकते हैं। और
2: चर्चा अब ये छिड़ गई कि ये छात्रों को सलाह दी जा रही है या फिर उनको कार्रवाई का डर दिखाकर जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने से DU और JNU की तरफ से रोका जा रहा है। जेएनयू की पहचान भारत में छात्र आंदोलनों के सबसे अहम केंद्रों में से एक के तौर पर रही है। दशकों से इस कैंपस में शिक्षा नीति और कैंपस के कामकाज से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक के मुद्दों पर प्रदर्शन होते आए, जिससे विरोध प्रदर्शन इसकी सार्वजनिक पहचान का एक खास हिस्सा बने। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब छात्रों को चेताया तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए लिखा है कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई, समय आने पर आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं AIU ने छात्रों से विरोध प्रदर्शन के बजाय परीक्षाओं पर ध्यान देने को कहा है। IIT रुड़की ने भी छात्रों और स्टाफ को सलाह दी, हालांकि बाद में कहा गया कि ऐसे निर्देश हर साल जारी होते हैं।
0: इस बीच बड़ी खबर आ रही है आपको हम दे दें, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उनका इस्तीफा मंत्रिमंडल से मंजूर हो गया है। राष्ट्रपति ने रवनीत बिट्टू का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का इस्तीफा मंजूर हो गया है। रेल राज्य मंत्री थे रवनीत सिंह बिट्टू। कांग्रेस जनता पार्टी की अपील पर आज देश भर में छात्रों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल में प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं का गुस्सा शिक्षा की बदहाल व्यवस्था पर फूटा। प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकी गई हैं।
3: घर से पता गया है? घर पे नहीं बोला?
9: नहीं।
3: घर पे क्या बोला है?
9: अभी जाकर बता देंगे, अभी पता नहीं था।
3: हाँ।
9: ये प्रोटेस्ट हो रहा है।
3: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? कॉकरोच देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
9: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए, हम उनको जानते भी नहीं थे।
2: लखनऊ के परिवर्तन चौक पर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कई छात्राएं घर पर बताकर भी नहीं आई। उनका कहना था कि वो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही हैं, आगे नीट परीक्षा देनी है। अगर बार बार पेपर लीक होता रहेगा तो मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा?
14: जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक धरना चलना चाहिए। पिछले 12 साल में 152 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई है। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ लिटरली खेला जा रहा है।
9: हमारी भी मांग वही है जो बाकी स्टूडेंट्स की है, जैसे कि पहले तो हमें हमसे माफी मांगनी चाहिए जैसा बर्ताव हमारे साथ किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो रिजाइनेशन नहीं देंगे आंदोलन तो।
2: लखनऊ में इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी लखनऊ में परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक मार्च करते हुए पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए।
3: ये जितने स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, एक वाइट टर्न दिखाई सामने, ये कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो आपने एक तरफ देखा दिल्ली में, तो दूसरी तरफ देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में। अगले दो दिन फिर प्रोटेस्ट है। अब देखना यह है कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या ये जारी रहेगा और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, इस पर नजर फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि जो गूंज जंतर मंतर से उठी थी वो अब राजधानी पहुंच चुकी है।
2: छात्रों का ऐसा ही प्रदर्शन कोलकाता में भी हुआ है, जहां एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने सीजेपी के आंदोलन का समर्थन करते हुए कोलकाता में सड़कों को जाम कर दिया।
15: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर आज एसएफआई द्वारा बुलाई गई छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता में आयोजन किया गया, जहां सियालदा से लेकर धर्मतला जो सेंट्रल कोलकाता का इलाका है, यहां पर आज ये रैली हुआ हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में लोग जो हैं, जो खासकर छात्र छात्राएं हैं, वो हाथ में तिरंगा लिए, एसएफआई के फ्लैग लिए यहां आ पहुंचे हैं, अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन निकाला। इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे भी शामिल होते हैं।
16: लेकिन ये जन की बात है, ये अब दिल्ली वालों को सुनना होगा। मैं तमाम देशभक्तांना सांगतोय कि दिल्ली मध्ये या पद्धतीने, बेछूट पद्धतीने।
2: भोपाल में पेपर लीक के मुद्दे पर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और पेपर लीक को

0: धरना चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं मेरे ठीक बिल्कुल पीछे भारी संख्या में यहाँ पर बीआरएस के लीडर्स, युवा छात्र के संगठन और साथ ही बीआरएस का युवा मोर्चा यहाँ पर जमा हुए हैं।
1: स्टूडेंट्स का एजुकेशन का मामला है तो मैं पूर्वों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन है इसको सुधारना एक युवा का काम है। युवा जब तक नहीं जागेगा ये एजुकेशन सिस्टम सेट नहीं होगा।
2: नीट पेपर लीक मामले ने शिक्षा की बदहाली को उघाड़ कर रख दिया है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि पेपर लीक के खिलाफ अब छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है।
3: फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी लेने के फर्जीवाड़े के खिलाफ हम लगातार सरकारों को खबरदार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में फर्जी डिग्री के सहारे डॉक्टर बनने के बाद अब टीचर बनने के खेल का खुलासा हुआ है। राजगढ़ में फर्जी मार्कशीट के दम पर सरकारी शिक्षक बनने का खेल सालों तक चलता रहा। 2007 से 2013 के बीच कथित तौर पर फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्तियां हुई। इस मामले का खुलासा होते ही राजगढ़ से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया है, लेकिन खबरदार करता सवाल यह है कि इस पूरे खेल के पीछे कौन कौन अफसर थे जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों को सरकारी नौकरी का टिकट बना दिया।
2: सुनील प्रजापति, नियुक्ति साल 2012 में होती है। फर्जी डिग्री से ऐसे सरकारी टीचर बने जो अब तक 37 लाख रुपए सैलरी और भत्ता ले चुके हैं। हेमंत शर्मा 2013 में टीचर फर्जी डिग्री से बन गए, अब तक 35 लाख रुपए सैलरी और भत्ता ले चुके हैं। रमेश चंद्र यादव 2013 में फर्जी डिग्री लगाकर सरकारी नौकरी हासिल की, 35 लाख रुपए सैलरी भत्ते में अब तक ले लिया। भारत सिंह यादव फर्जी डिग्री से 2014 में सरकारी टीचर बन गए, 32 लाख रुपए अब तक वेतन भत्ता उठा लिया। एक मामला साल 2007 का भी, जिसमें बने सिंह लवंशी ने फर्जी डिग्री लगाकर सरकारी नौकरी हासिल की, अब तक 40 लाख रुपए सैलरी और भत्ता मिला है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी लेने वालों के खिलाफ खबरदार करना जरूरी हो गया है। तस्वीरों में दिख रहे इन सभी टीचर पर आरोप है, इन्होंने फर्जी मार्कशीट से सरकारी नौकरी हासिल की है, ईमानदार छात्रों बेरोजगारों का हक मारा है, बच्चों और सरकारी सिस्टम को धोखा दिया है, और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश की सरकारी व्यवस्था की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी है। इस महीने की शुरुआत में आज तक नहीं आपको फर्जी डिग्री के सहारे डॉक्टर बनने के गोरख धंधे से खबरदार किया था, अब राजगढ़ में फर्जी मार्कशीट के दम पर सरकारी टीचर बनने का सच सामने आया है।
4: जब जांच हुई समिति के माध्यम से भी हमने इनकी जांच करवाई और इनको एक अंतिम सुनवाई का मौका भी दिया जिसमें कि ये लोग अपने जो बात है वो रख सके, परंतु इनकी बात जो है हमें संतोषप्रद नहीं लगी, तो इस माध्यम से जो इन्होंने नौकरियां प्राप्त की थी उस संदर्भ में इन 9 लोगों की सेवाएं जो समाप्त कर दी गई।
2: आज तक के पास उन मार्कशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो इन फर्जी टीचर ने इस्तेमाल करके सरकारी विभागों को न सिर्फ चूना लगाया है बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया है। आप देखिए कैसे इन आरोपी टीचर्स ने कई साल तक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की मार्कशीट से लेकर कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी तक की फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया है और नौकरी ले ली है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी सोते रहे। अगर शिक्षा विभाग को पिछले साल नवंबर में शिकायत नहीं मिलती तो इस मामले का सिरा कभी ना खुलता। चिंता की बात यह कि शिक्षा विभाग की नींद टूटने से खुलासा नहीं हुआ बल्कि पिछले साल नवंबर में एक शिकायत मिलने से उनकी नींद टूटी है, फिर जाकर एक जांच समिति बनी जिसने आरोपों को सही बताते हुए 9 टीचर की नौकरी खत्म कर दी और 8 टीचर को गिरफ्तार किया गया।
5: कुछ जो शिक्षक है वो सन 2011-12-13 में फर्जी जो अंक सूची है डीएड की उसको लगाकर ये नौकरी कर रहे थे। हमने 8 लोगों के विरुद्ध में अपराध दर्ज किया है जिसमें से 7 की गिरफ्तारी कर ली है।
2: मध्य प्रदेश में जाली डिग्री के सहारे सरकारी नौकरी पाने का ये कोई पहला मामला नहीं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने आरोपियों को नौकरी पर रखते हुए डिग्री की सही से जांच नहीं करवाई। सवाल है कि क्या ये चूक उस वक्त के अधिकारियों की मिलीभगत से हुई? सवाल कई हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री गलती मानने की बजाय एक सांस में शिक्षा विभाग और अपने अधिकारियों को क्लीन चिट देने लगते हैं।
6: विभाग हमेशा पूरी सतर्कता के साथ चीजों को करता है।
7: सवाल यह है कि जब इनकी नियुक्तियां हुई थी तो क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि वहीं पे इनको रोका जा सके, वहीं पे पकड़ा जा सके? इतने सालों की नौकरी के बाद अगर

0: शिकायत हुई है तब एक्शन हो रहा है, अगर शिकायत नहीं होती तो इसका मतलब ये आगे भी नौकरी कर रहे होते।
1: आज से 6-8 साल 10 साल पहले 15 साल पहले इस तरह ऑफलाइन सिस्टम था, लोग स्कैन कर लेते थे और जांच का कोई सीधा मैकेनिज्म नहीं था।
0: क्या जांच के दायरे में माध्यमिक शिक्षा मंडल के कर्मचारी अधिकारी भी रहेंगे उस वक्त जो कार्यरत थे, कि कहीं ऐसा तो नहीं उनकी मिलीभगत से भी कुछ हुआ हो, क्या इस एंगल पर भी जांच रहेगी विभाग की?
1: नहीं, मुझे नहीं लगता कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को इस तरह ही गलती करेगा। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल बड़ा मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से फुल प्रूफ सिस्टम है।
2: मंत्री जी की आपने बात सुन, अब आप तय करिए, अगर सिस्टम ही इतना फुल प्रूफ होता तो राजगढ़ के ये नौ टीचर फर्जी डिग्री दिखाकर नौकरी कैसे पा जाते? अब तो सवाल है कि जब गलती कोई स्वीकार नहीं करेगा तो आगे ऐसा नहीं होगा, ऐसे दावों पर भरोसा कैसे किया जाए?
3: जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है दूसरों को पढ़ा रहा है। यहाँ पटवारी फर्जी भर्ती कांड, यहाँ कांस्टेबल फर्जी भर्ती कांड, यहाँ व्यापम का फर्जी भर्ती कांड, यहाँ MBBS में फर्जी भर्तियाँ, ये हो क्या रहा? मध्य प्रदेश तो ये फर्जीवाड़ा का केंद्र बिंदु बन गया है।
2: फिलहाल 9 शिक्षकों की नौकरी जा चुकी है, वो गिरफ्तार हुए, पर इस फर्जीवाड़े में क्या आरोपी शिक्षक ही दोषी है? या वो अफसर खोजे नहीं जाएंगे जिनकी मिलीभगत से ये सब हुआ है?
4: ये खुलासा सिर्फ कुछ फर्जी शिक्षकों की कहानी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की सरकारी भर्ती सिस्टम की नाकामी का आईना है। सवाल ये है कि जिन मार्कशीटों को अब जांच में फर्जी पाया गया, वो नियुक्ति के समय सरकारी जांच के सिस्टम में पास कैसे हो गई? अगर शिकायत नहीं होती तो क्या ये फर्जी शिक्षक आज भी सरकारी खजाने से वेतन ले रहे होते? सवाल अब यही है कि इस खेल में कौन कौन से लोग शामिल थे जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों को सरकारी नौकरी का टिकट बना दिया। राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
5: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर गया
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर गया करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
3: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
4: समझकर इन्वेस्ट कर। एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: पापा।
8: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट,
9: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
10: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
14: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
15: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
16: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
17: कुछ तो बात है इस तेल में।
18: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
18: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर क्या
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: We are over, Jimmy.
7: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
8: अनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
12: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
13: In association with
14: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: क्योंकि केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार छात्रों के बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित भी है, कार्यबद्ध भी है। किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें कठोरतम सजा होगी ताकि कोई फिर ऐसा पेपर लीक जैसा अपराध ना कर सके।
16: जिन बातों को लेकर मांगी नहीं है देश में, उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और जो असली मांग लेके जो आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर सारे विपक्षी पार्टी, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी जो है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, उन बातों का तो कहीं संज्ञान ही नहीं ले रहे प्रधानमंत्री जी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। हमारी मांग है दिल्ली में पुलिस बर्बरता के पीछे जो जो अधिकारी और जो नेता जिम्मेदार हैं उनके पे कार्रवाई, और सरकार माफ़ी मांगे। ये मांगे

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: देश के अलग अलग राज्यों में बारिश की वजह से स्थिति बेहाल है। जम्मू कश्मीर, असम, इन राज्यों के बारे में आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है। गुजरात में भी बारिश और बाढ़ से जो हालात हैं वो बहुत बिगड़ गए हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेपर लीक के खिलाफ चल रहे घमासान में कल रात नया मोड़ आ गया। सोनम वांगचुक ने सरकार के लिखित आश्वासन के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अनशन खत्म होने से आंदोलन खत्म होगा या फिर कहानी का असली ट्विस्ट आना अभी बाकी है। एक तरफ सोनम वांगचुक का ये कहना कि वो सरकार को डिक्टेट कैसे कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहना, यह बताता है कि आंदोलन क्या आप दो राह पर खड़े हैं। इधर सरकार का रुख साफ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शायद ही हो, जवाबदेही तय होगी ये सरकार कह रही है। और जवाबदेही के नाम पर इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त कर दिए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। शनिवार को सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तीसरे दौर की बैठक होनी है, लेकिन टेबल टॉक से इतर असली लड़ाई सड़कों पर जेन जी युवाओं का दिल जीतने की है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात लगभग 11:52 पर मोबाइल के फ्रंट कैमरे से जो 2:55 का वीडियो संदेश जारी किया, उसका संदेश साफ था। फ्रेंड्स शब्द के साथ जेन जी मोड में वीडियो जारी किया करना सीधे उन युवाओं से संवाद की कोशिश थी जो बिना किसी राजनीतिक झंडे के सिर्फ अपने भविष्य पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से भी इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने, रील्स बनाने, युवाओं तक पहुंच बनाने के, उनसे संपर्क साधने का निर्देश दिया है। हालांकि रास्ता इतना आसान नहीं है। जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट शटडाउन, पुलिस की फेशियल रिकॉग्निशन वैन पर विवाद और धरने के आसपास कई झड़पों ने तनाव को बढ़ा दिया है। इसीलिए सवाल उठता है कि सरकार की पहल और प्रधानमंत्री के वादे से आंदोलनकारियों के इरादे बदलेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम आपको पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स बताना चाहते हैं। इनमें पहला और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सरकार अब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पूरे ढांचे को बदलने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनटीए के 47 कर्मचारियों और अधिकारियों को हटाया जा सकता है और इनमें से कुछ पर कार्रवाई की जा सकती है। अभी कुछ देर पहले आई जानकारी के मुताबिक डिसमिसल यानी नौकरी से 47 लोगों को हटा दिया गया है। तो आप सोचिए, 47 लोगों की सस्पेंशन नहीं है, बर्खास्तगी है, पद से नौकरी से हटाया गया है। यह भी खबर है कि अगले एक महीने के अंदर एनटीए का पुनर्गठन करने की तैयारी है। एनटीए कई कामों के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहती है, लेकिन अब इस व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। सरकार चाहती है कि एक ऐसा लीक प्रूफ परीक्षा सिस्टम बनाया जाए जिसमें पेपर लीक या परीक्षा में धांधली की गुंजाइश कम से कम हो। तो एनटीए में बदलाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला है। एनटीए से 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं, और जिस एनटीए पर लगातार ये सवाल बच्चे पूछ रहे थे, हम लोग भी आज तक पर पूछ रहे थे कि आखिर एनटीए को क्यों नहीं डिसॉल्व किया जा रहा है, एनटीए के अधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है। एनटीए वही एजेंसी है जो 15 से 20 वर्षीय स्तर की जितनी भी परीक्षाएं है वो कराती है। तो सोचिए आप, 15 से 20 राष्ट्रीय स्तर की नेशनल लेवल के एग्जाम्स कराने की जिम्मेदारी एनटीए की, उसके पेपर्स बार बार लीक हो रहे हैं जो एग्जाम्स वो कराती है। एनटीए पर एक्शन जरूरी था। इनमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रवेश के लिए जेईई मेन की परीक्षा शामिल है, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नीट यूजी की परीक्षा, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो दाखिले के लिए सीयूईटी की परीक्षा होती है वो भी शामिल है। यानी ये जो सारी परीक्षाएं होती हैं उन्हें कराने वाली एजेंसी कौन, यही एनटीए। सरकार अब लीक प्रूफ बनाने के लिए इन अधिकारियों को वहां से हटा रही है, और ये बहुत पहले करने की जरूरत थी। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि 26 दिनों के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को लिखित आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार सकारात्मक है और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत हुई, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने यह कहा है कि वो कल इस पर विचार करके जवाब देगी, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि वो इस इस्तीफे को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं जोड़ना चाहती। ये उनके लिए एक प्री रिक्विजिट है। चौथा बड़ा अपडेट भी इसी से जुड़ा है जो हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा दे रहे हैं। उन्होंने सूत्रों के हवाले से बताया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार की यह भी सोच है कि जिम्मेदारी से भागने के बजाय व्यवस्था को सुधारना जरूरी है, और अब जनता ने उसे काम करने का जनादेश दिया है, तब इस्तीफे की मांग स्वीकार नहीं होगी। अगर यह खबर सही निकलती है जो हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा दे रहे हैं, तो इससे बड़ा सवाल यही पैदा होगा कि सरकार आंदोलन को खत्म करने का रास्ता फिर कैसे निकालेगी। और पांचवा बड़ा अपडेट, आज भी दिल्ली मेट्रो ने जंतर मंतर के आसपास 17 मेट्रो स्टेशन को बंद रखा, और अब तो सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया है। देखिए,
1: इसको बंद किया गया है, और इसी तरह से लगभग 17 मेट्रो स्टेशन हैं दिल्ली के जिनको इस वक्त एहतियात के तौर पर बंद रखा गया है।
2: 17 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जिनके गेट बंद कर दिए गए सुबह 7:30 बजे, और ये वो मेट्रो स्टेशन हैं जो नई दिल्ली इलाके के हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से शुरू होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, मंडी हाउस और झंडेवाला तक का ये जो पूरा रूट है इस पर बंद है।
0: इसके पहले कल रात सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपने अनशन को खत्म किया। ये वही अनशन है जिसने जंतर मंतर का विरोध प्रदर्शन भारत के जेन जी युवाओं तक पहुंचाया। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। 17 जुलाई को गूगल पर सोनम वांगचुक का सर्च इंटरेस्ट जानते हैं कितना था? 80, जबकि जंतर मंतर का सर्च इंटरेस्ट 5, कॉकरोच जनता पार्टी का सिर्फ 4 और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सर्च इंटरेस्ट सिर्फ 5 था। इससे यह पता चलता है कि लोग इस विरोध प्रदर्शन से पहले गूगल पर सिर्फ सोनम वांगचुक के बारे में सर्च कर रहे थे। बाद में जब 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, तब भी यह उत्सुकता बनी रही। उस दिन 18 जुलाई को गूगल पर सोनम वांगचुक का सर्च इंटरेस्ट देखिए सबसे ऊपर 100 दर्ज हुआ, 100। इसके बाद बड़ी संख्या में युवा छात्र जंतर मंतर पहुंचे। आप यहां देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर के मंच पर सोनम वांगचुक की एक तस्वीर भी लगाई है और संविधान की कॉपी उसके सामने रखी हुई है, और फिर हर धर्म की किताब है। यही नहीं, पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने अब भी अपने एक्स अकाउंट की डीपी पर सोनम वांगचुक की इस तस्वीर को लगाया हुआ है, जिसमें लिखा है आई सपोर्ट सोनम। अब जानते हैं ये अहम क्यों है। ये इसलिए अहम है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने सोनम वांगचुक को इस आंदोलन का चेहरा बनाया है। लेकिन कल जब सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को खत्म किया, तब इस दौरान सोनम वांगचुक के जिक्र में जो उन्होंने बात कही उसमें कॉकरोच जनता पार्टी या नेताओं का नाम नहीं था। जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया, तब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और वीडियो हमारे पास आया, वो 14:10 का था। इतने बड़े वीडियो में सोनम वांगचुक ने 5 से ज्यादा बार प्रदर्शनकारियों का जिक्र किया, पेपर लीक की बात की, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी या नेताओं का नाम उसमें नहीं लिया गया है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने आज सुबह 7:24 पर एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार चाहती थी कि वो अपना अनशन खत्म कर दे। विपक्ष के 60 से ज्यादा सांसदों ने भी चिट्ठी लिखकर अनशन खत्म करने की अपील की थी, और वो उनसे मिलने भी आए थे। उन्हीं की अपील पर और सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन के आधार पर वो अपना अनशन खत्म कर रहे हैं। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि कॉकरोच जनता पार्टी इस पर क्या कह रही है। पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्य सुधीर सांगवान का आरोप है कि सरकार ने सोनम वांगचुक को मैनिपुलेट किया है। जंतर मंतर पर कुछ लोग इस तरह के पोस्टर्स भी लेकर आए हैं जिनमें यह लिखा है कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए कहा था, लेकिन सरकार ने सोनम वांगचुक को ही आंदोलन से हटा दिया। यहां यह भी देखना होगा कि जब से सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती है, तब से कॉकरोच जनता पार्टी के एक भी नेता ने अभी तक उनसे मुलाकात नहीं की है। इस पर पार्टी का कहना है कि उन्होंने अपने लोगों को सोनम वांगचुक से मिलने के लिए अस्पताल भेजा था, लेकिन पुलिस ने अंदर जाने दिया ही नहीं। अब कल भी जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया, तब उनके साथ लद्दाख एपेक्स बोर्ड के कई मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन वहां कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि दिखा नहीं। अब सवाल यही है कि क्या उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई या वो गए ही नहीं। कल जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार के लिखित आश्वासन को पढ़कर सुनाया तब सोनम वांगचुक ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, आई एम नो वन टू डिक्टेट। उन्होंने शब्दशः कहा कि पूरा विश्वास है कि उचित समय आने पर, यानी अभी नहीं तो आगे चलकर, पेपर लीक के मामले में मंत्रालय और मंत्री के स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाएगी, लेकिन वो किसी को आदेश नहीं दे रहे। यानी उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो सरकार या मंत्रियों को आदेश दे, बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। सरकार खुद ही इस बारे में सोचे कि वो जवाबदेही तय कैसे करेगी, और उनके इस बयान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले ये हिस्सा सुन।
3: Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent meat paper leaks.
4: I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time, and no one to dictate, you will take accountability in the ministry, with the minister also. As a responsibility, and I'm sure you are already considering. So, with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast.

0: ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि सरकार ने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कैसे कराया। कई लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं, क्या सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी विचार किया था। तो इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, यानी पर्दे के पीछे क्या हुआ, वो भी आज समझिए। 22 तारीख की चर्चा के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी शर्तों पर सरकार से लिखित आश्वासन मांगा था, जिस पर सरकार ने यह रणनीति बनाई कि वो बिना देर किए सोनम वांगचुक से अपना संवाद जारी रखेगी। इसके लिए 23 जुलाई को एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए। आपको यकीन नहीं होगा कि यह बैठक लगभग 4 घंटे चली, और हमें ये जानकारी हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने दी है। उस सूत्रों के हवाले से बताते हैं कि इस बैठक में सरकार ने 2 बातों पर विशेष जोर दिया। पहला, सोनम वांगचुक की सेहत, सोनम वांगचुक की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, और दूसरा, उनकी ओर से उठाई गई मांगों पर सरकार सकारात्मक रुख अपनाए। यानी सरकार ने यह संकेत दिया कि वो केवल अनशन खत्म कराने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि उनकी मांगों पर भी बातचीत के लिए तैयार है। इस बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक की पत्नी से फोन पर बात की। उन्हें यह भरोसा दिलाया कि सरकार सोनम वांगचुक द्वारा उठाए गए मुद्दों पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है और सोनम वांगचुक अपने अनशन को खत्म कर दे। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोनों गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। वहां सोनम वांगचुक भर्ती हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सरकार की ओर से दिया गया जो आश्वासन पत्र है, लेटर, अश्योरेंस लेटर जिसे कहते हैं, वो सोनम वांगचुक को पढ़कर सुनाया और फिर सौंप दिया। और यहां हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार ने कल रात को सोनम वांगचुक से ऑफ रिकॉर्ड कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी बात की। उन्होंने ये बताया कि आज सरकार इस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने वाली है, और इसी के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई और सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद अपना अनशन खत्म किया। यहां यह भी खबर है कि सोनम वांगचुक ने सरकार से ये इच्छा जताई है कि वो लद्दाख लौटने से पहले जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहते हैं, और संभव है कि वो वहां छात्रों से शांतिपूर्ण आंदोलन की वो बात करें, सरकार के लिखित आश्वासनों पर भी चर्चा कर सकते हैं। यहां ये भी देखिए कि सरकार ने सोनम वांगचुक की जो शर्तें मानी हैं, उनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का प्रत्यक्ष जिक्र नहीं है। इसमें लिखा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, परीक्षा सुधार के लिए नया कानून लाया जाएगा, पेपर लीक की जवाबदेही के लिए संसद में चर्चा कराई जाएगी। यहां इस शर्त का मतलब यही है कि सरकार संसद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन इस्तीफा होना ही चाहिए, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि आपने वर्बली सुना, सोनम वांगचुक ने साफ साफ कहा है कि उस मंत्रालय में जवाबदेही तय होगी, और उस वक्त आप देख रहे हैं कि चर्चा इस मुद्दे पर हो रही है, और उसी अनशन के तोड़ने के पहले एक कमिटमेंट है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, और उन्होंने कहा है कि वो सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने से खुश हैं, लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। हालांकि सोनम वांगचुक ने क्या कहा है वो भी सुनिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे, और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा, और वो संसद में इस मुद्दे पर, नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं, फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है।
0: हालांकि यहाँ पर दो और सवाल पूछे जा रहे हैं जो अब हम आपको दिखाने। पहला सवाल ये कि क्या सोनम वांगचुक कांचन खत्म होने के बाद जंतर मंतर पर भीड़ कम हुई है, और दूसरा सवाल ये है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी। इनमें पहले सवाल जवाब का जवाब तो यह है कि कल जब जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों को यह खबर मिली कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है, तब वहां प्रदर्शनकारियों ने बहुत जश्न मनाया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा सुबह हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जंतर मंतर मौजूद थे, उनका कहना था कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद भी जंतर मंतर पर वैसी ही भीड़ मौजूद है। उल्टा कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने मंच से ऐलान किया है कि और लोग जंतर मंतर पहुंचे ताकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। देखिए,
2: यहाँ पर इतने दिनों से जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। रियली वांट टू थैंक यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। सरकार आज हमें बातचीत करने के लिए बुला रही है, वो सिर्फ आप ही लोगों की वजह से बुला रही है। इसमें हम लोगों ने कुछ अलग नहीं करा है, ये आप लोगों की मेहनत है, ये आप लोगों का संघर्ष है। देश भर में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जादू उन लोगों का है जो सरकार कभी सुनने को तैयार नहीं होती थी, वो आज खुद से कहती आओ बात करो। तो आप सब लोगों को सलाम है, बस थोड़ी और देर की बात है, आप लोग यही बने रहिए, यही डटे रहिए, बिना इस्तीफा लिए हम यहां से नहीं जाएंगे।
0: सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के सिर्फ 12 घंटे बाद केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी से भी बात की है। ये बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई जो करीब 2 घंटे तक चली। इनमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए, और ये वही दोनों नेता हैं जो कल रात सोनम वांगचुक से भी मिले थे, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका इस बैठक के लिए मौजूद रहे, जो पहले भी मिल चुके थे। सरकार का कहना है कि 2 घंटे चली इस बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी ने कुल 3 मांगे और शिक्षा व्यवस्था में 5 बड़े सुधार का मुद्दा उठाया। सरकार ने भी कहा कि वो इनमें से 2 मांगे मानने के लिए तैयार है। इनमें पहली मांग है नीट पेपर लीक के पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना, और दूसरी मांग है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना। अब ये दोनों वही मांगे हैं जिन पर सोनम वांगचुक को भी सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है, और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी को भी इन मांगों पर सहमति देना सरकार के लिए मुश्किल नहीं रहा होगा। दोनों पक्षों के बीच सारी बातचीत यहीं फंसी रही कि कॉकरोच जनता पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। अब पार्टी ने कहा है कि अगर मगर बंद कीजिए, और उनकी मांग है कि बिना शर्त हटाया जाए शिक्षा मंत्री को, और शर्त नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन खत्म नहीं होगा और इस बातचीत का कोई फायदा भी नहीं रहेगा। अब सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तीसरी बैठक कल होनी है, शनिवार को, और ये बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के मुताबिक सरकार ने यह बताने के लिए कल तक का वक्त मांगा है कि क्या वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राजी है या नहीं है। देखिए,
3: आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए।
2: नंबर 1 क्या है, सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
3: उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के लिए चुनाव हुई।
2: अब अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले एक दिन में दो दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह।
3: कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो
2: हम काफी क्लोज आ चुके हैं, मुझे लगता है कि इस्तीफा लोड हो ही रहा है, इस्तीफा लोड हो रहा है, क्योंकि सरकार भी समझ चुकी है इतने सारे युवा कह रहे, लाखों करोड़ों युवा अगर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको इग्नोर करके तो अब चलेगा नहीं।
0: आज हुई इस बातचीत और सोनम वांगचू के अनशन के बाद अब बड़ा सवाल ये कि कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा। आपने सुना कि अगर एक दो दिन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो 20 जुलाई की ही तरह फिर से मार्च का आह्वान करेंगे। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 20 जुलाई के बाद से कनॉट प्लेस और संसद के मार्ग के इलाकों में लगातार हिंसा उपद्रव हुआ है। अब देखिए, दावा है कि कल रात भी जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया तब भी संसद मार्ग पर इकट्ठा हुए कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग के साथ तोड़फोड़ की, शांति भंग करने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शनकारी इन दावों को गलत बता रहे हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा कारणों से जंतर मंतर के पास इंटरनेट को बंद कर दिया गया और बाद में ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा जहां आज इस पर सुनवाई हुई। यहां ये समझना जरूरी है कि सरकार ने जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं क्यों बंद की। इसके पीछे तीन वजह बताई जा रही है। पहला, ये पब्लिक ऑर्डर यानी मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा है पब्लिक सेफ्टी। और तीसरा बड़ा कारण, किसी अपराध के लिए उकसावे को रोकना। यहां आपको ये रिपोर्ट भी देखनी चाहिए जो राइजिंग रिप्रेशन मीट्स ग्लोबल रेजिस्टेंस द्वारा की जाती है और इसके मुताबिक दुनिया में इंटरनेट शटडाउन यानी इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के सबसे ज्यादा मामले म्यांमार के बाद भारत में दर्ज होते हैं। और अब भी जिस तरह से उपद्रव हिंसा की घटनाएं जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में हुई हैं, उन्हें सरकार रोकने के लिए ऐसे कड़े कदम उठा रही है जिन पर अब कई लोग विवाद भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक फैसला है जंतर मंतर के आसपास फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वैन तैनात करने का। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने इसका एक वीडियो जारी किया और यह आरोप लगाया कि पुलिस प्रदर्शनकारियों के लाइव चेहरे स्कैन कर रही है, उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि पुलिस ने इन आरोपों को गलत बताया है, भ्रामक बताया है। पुलिस का कहना है कि इन कैमरों को लगाने का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों की जासूसी करना नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, सर्विलेंस है। यानी जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में कोई असामाजिक तत्व हो, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हों, अपराधी हो, किसी गलत उद्देश्य से शामिल होने वाले लोग हो जो कि उत्पात करें, शांति भंग ना हो, इसलिए यह निगरानी की जा रही है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पुलिस का कहना है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले भी बड़े आयोजनों में त्योहारों के दौरान सुरक्षा के लिए किया जाता रहा है। और इनमें 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड, 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस समारोह और होली, दिवाली और ईद जैसे त्योहारों पर उसने इन कैमरों का इस्तेमाल किया है। लेकिन पुलिस का आरोप है कि इस बार कुछ प्रदर्शनकारी जानबूझकर इन पर विवाद खड़ा कर रहे हैं और अब ये मामला भी दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया है। देखिए,
4: क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन इससे पहले पुलिस हटा रही है यहाँ से हम लोगों को। जल्दी देखिए आप, फोटोज आ रहे हैं सबके, सबका नाम आ रहा है, सबकी डिटेल्स आ रहे हैं, लड़कियों के भी फोटोज हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा स्क्रूटनी है दिल्ली पुलिस की। यहाँ पर देखिए डिटेल्स हमें नजर आ रहे हैं, नाम भी पढ़ पा रहे हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पर लड़कियां जो भी इस कैमरे के सामने आ रहे हैं उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ सामने आपको लैपटॉप पे स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। तो ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगा रखा है, मतलब हद है। अब तो प्रोटेस्टर्स कहीं पर भी सेफ नहीं है, उनकी डिटेल्स नहीं कर सकते और उसका मिसयूज कभी भी किया जा सकता है।
0: और आज की एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने उन सभी खबरों को गलत बताया है जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका को सुनने से मना कर दिया। ये वही मामला है जिसमें जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी और ये एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के सामने इस मामले का जिक्र करते हुए पुलिस कार्रवाई के वीडियो दिखाने का अनुरोध किया था और दावा यह किया गया था कि उस दिन मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए इन वीडियोस को देखने से इनकार कर दिया कि उनका समय बर्बाद न किया जाए। लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश इन दावों को गलत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उस दिन पुलिस की कार्रवाई पर कोई औपचारिक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई ही नहीं थी, सिर्फ एक पत्र के जरिए ये मामला बताया गया है और इसीलिए ये कहना गलत है कि कोर्ट ने किसी याचिका को सुनने से मना किया। यहां हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उस वक्त इन खबरों को लेकर देश में कई लोगों ने मुख्य न्यायाधीश के प्रति नाराजगी जताई। 22 जुलाई को गूगल पर सबसे ज्यादा इसी खबर को सर्च किया गया था, लेकिन जब इन दावों का मुख्य न्यायाधीश ने खुद खंडन किया, इसलिए हमें लगता है कि जब इस खबर का खंडन आ चुका है तो ये आपको बताना जरूरी है, पता होना चाहिए।
5: One in, and other issue has been with regard to the comments that have been made. A lot is being said about you being misquoted. There's a lot being said.
6: Yes,
5: about
6: I
5: the
6: said
5: court
6: in the morning. I said in the comments. Court. I said very firmly in the court that I have been misquoted. Unfortunately, the correct reporting is not being made. Somebody start making mention of listing of a matter which he has never filed. So what to do with that kind of case? So I had to tell them that please don't waste your time and my time, because you don't file the case, what I'm going to hear? I can hear only when you file a petition. Therefore, I had to advise the counsel, the young lawyers, they should learn it, they should understand the seriousness of the court proceeding. These are very solemn proceedings in nature, and they should respect the procedure that has been laid down under the rules. So this is how I commented.
0: आज एक और बड़ी खबर का खंडन हुआ, जिसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दावा किया था। आज खुद उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल बताते हुए एक प्रदर्शनकारी कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर आए। उन्होंने दावा किया कि वो इस आंदोलन के लिए पुलिस की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं और बाकायदा अभिजीत दिपके ने मंच से इस प्रदर्शनकारी के लिए तालियां बजवाई। लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस का इस पर एक बड़ा बयान आया है। पुलिस का कहना है कि उसका जो कांस्टेबल इस विरोध प्रदर्शन के लिए इस्तीफा देने की बात कह रहा है, वो साल 2025 से ही एक आपराधिक मामले में आरोपी बनने के बाद निलंबित चल रहा है, सस्पेंशन ऑर्डर। आरोप है कि हरिद्वार में जब एक विधवा महिला की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हुई, तब शेर सिंह नाम के इस व्यक्ति ने गुंडों की मदद की और इस जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए अपराधियों का साथ दिया और इन्हीं आरोपों के बाद उसे पुलिस विभाग ने निलंबित कर दिया। लेकिन आज यही निलंबित पुलिसकर्मी इस आंदोलन में पहुंचा और अभिजीत दिपके के साथ खड़े होकर यह ऐलान कर दिया कि वो इस आंदोलन के लिए अपनी पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देगा। यहां लोगों को यह भी समझना होगा कि ऐसा संभव है कि अभिजीत दिपके को इस पुलिसकर्मी के निलंबन और आपराधिक मुकदमे के बारे में शायद पता ना, क्योंकि उसने ये बताया होगा कि वो सहर्ष आकर इस्तीफा देना चाहता है, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना पड़ेगा। पहले सुनिए।
7: क्रांति कभी बम और पिस्तौलों से नहीं आती है, अहिंसा नहीं करनी है, इन गुंडों को हम देख लेंगे। क्रांति आती है विचारों से, और विचार तो कभी मरते नहीं। आपका जो हरे हक अधिकार छीन करके जो बागी बनाना चाहते हो, अगर हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से शेर सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है।
8: वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है।
0: इन सब के बीच सरकार की पूरी कोशिश यही है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन को जल्द से जल्द खत्म कराना चाहती है। इसके लिए आज बातचीत भी हुई सोशल और कल रात 11:52 पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश भी मीडिया पर पोस्ट किया। ये वीडियो इसलिए अलग था क्योंकि इसे मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे या सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पर हर दिन लगभग 9.5 करोड़ तस्वीरें और वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, जिनमें फ्रंट कैमरे से बनाए गए वीडियोस, खींची गई तस्वीरें, सेल्फी ज्यादा होती है और ये फ्रेम सबसे ज्यादा जेन जी युवाओं में लोकप्रिय है। अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को भी देखेंगे तो इसमें ज्यादातर प्रदर्शनकारियों ने इसी फ्रंट कैमरे में अपने वीडियोस रिकॉर्ड किए, सरकार के प्रति नाराजगी जताई। और अब माना जा रहा है कि इस चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक बयान या भाषण देने के बजाय जेन ज़ी युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये वीडियो इस तरह से बनाया है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने संबोधन की शुरुआत मेरे प्यारे देशवासियों या मित्रों से करते हैं। इस बार उन्होंने फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया, जो ज्यादा जेन ज़ी वर्ड माना जाता है। रिसर्च गेट के अध्ययन में बताया गया है कि जेन ज़ी पीढ़ी के युवा बातचीत की शुरुआत अक्सर गाइज और फ्रेंड्स जैसे शब्दों से करते हैं, और हो सकता है कि इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने मित्रों की जगह फ्रेंड्स शब्द का इस्तेमाल किया। इसके पीछे कारण यही है कि प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार से नाराज माने जा रहे हैं। जेन ज़ी युवाओं के साथ एक उन्हीं के अंदाज में संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। रात को जिस वक्त इस वीडियो को अपलोड किया गया, वो टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये वीडियो रात को 11:52 पर अपलोड किया, और अलग अलग रिसर्च बताती है कि जो जेन ज़ी पीढ़ी के युवा हैं, वो रात के वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि इनमें 91% जेन ज़ी युवा रात को सोने से पहले सोशल मीडिया पर काफी वक्त ऑनलाइन बिताते हैं, और इसी चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये वीडियो रात में अपलोड किया। इसके अलावा 2:55 का वीडियो था। इंस्टाग्राम पर हर दिन औसतन 7,37,000 रील्स अपलोड होती हैं, जिनमें 3 मिनट से कम वाली रील्स को एंगेजमेंट के लिहाज से बेहतर माना जाता है, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो 3 मिनट से छोटा रखा गया, और ऐसा क्यों किया गया ये भी समझिए। अब तक सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक के साथ जो बातचीत का रास्ता खोला, लेकिन जो जेन ज़ी युवा इस आंदोलन से जुड़े हैं उनसे सरकार का कोई संवाद नहीं हुआ। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इस आंदोलन में आए सभी युवा किसी पार्टी या संगठन से तो जुड़े हुए हैं नहीं। इनमें बहुत से युवा ऐसे हैं जो सिर्फ अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर आए हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं। वो किसी राजनीतिक दल, किसी कार्यकर्ता से नहीं जुड़े हुए हैं। वो अपनी परेशानी, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से बात करेगी या सिर्फ सोनम वांगचुक से, तो फिर ये नाइंसाफी होगी और आंदोलन को खत्म करने की कोशिश शायद ही मुमकिन हो पाए। लेकिन युवाओं के मन में जो सवाल है, जो नाराजगी है, उसका समाधान नहीं होगा, और मुझे लगता है कि उसी के लिए एक कोशिश की गई है। आज की युवा पीढ़ी अलग तरीके से सोचती है। वो जरूरी नहीं कि किसी पार्टी के साथ खड़ी हो, वो ऐसा भी मुमकिन है कि किसी एक पार्टी का समर्थन करती हो लेकिन उसकी कुछ नीतियों के खिलाफ हो, वो किसी मुद्दे को सही मानकर खुद उससे जुड़ जाती है। सोशल मीडिया के दौर में हजारों युवा बिना किसी संगठन का हिस्सा बने भी किसी आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं, और इन युवाओं की नाराजगी सिर्फ किसी एक व्यक्ति या संगठन से नहीं है। उनके मन में कई सवाल हैं, जैसे क्या सरकार उनकी बात सुन रही है, उनके भविष्य की चिंता की जा रही है, क्या फैसले लेते समय युवाओं की आवाज शामिल है। इसीलिए समाधान सिर्फ नेताओं से बातचीत करने से नहीं निकलेगा, सरकार को उन युवाओं से भी सीधा संवाद करना होगा जो आंदोलन में शामिल है, और इसीलिए पीएम का ये वीडियो संदेश जो है माना जा रहा है कि उसी तरफ एक कोशिश है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आंदोलन को खत्म करने के लिए किस तरह की कोशिश सरकार जो कर रही है, तो कुछ फैसले भी लिए जा रहे हैं और पीएम ने भी संवाद में क्या कहा है, सुन लीजिए।
9: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया, और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जेंजी युवा आबादी भारत में रहती है। भारत की कुल आबादी में 50 करोड़ यानी 35% अकेले जेंजी युवा हैं, जो 10 से 29 साल के हैं। और इसीलिए जिस देश में युवा आबादी का इतना बड़ा हिस्सा हो और वो युवा पेपर लीक से संघर्ष कर रहे हों, उन युवाओं को सुरक्षित भविष्य देना, उनकी समस्याओं को जानना, उनका समाधान करना बहुत जरूरी है और ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी भी है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इसके लिए वो कई कोशिशें कर रही है। आज कैबिनेट की बैठक में एक नए बिल को मंजूरी दी गई जिसमें पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक अब पेपर लीक के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि मौजूदा कानून में दोषियों के लिए 3-5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी और ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई होगी। और तीसरा, आज सरकार ने शिक्षा सचिव को उनके पद से हटा दिया है। ये इस मामले में सरकार की ओर से पहली बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई है। सरकार का कहना है कि वो आगे और भी कड़े कदम उठाएगी। हालांकि प्रदर्शनकारी जो हैं वो यही कह रहे हैं कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने तक डटे रहेंगे और जंतर मंतर खाली नहीं होगा। अब आपको संसद का हंगामा, शोर, नारेबाजी दिखाते हैं जिसकी वजह से संसद में मानसून सत्र का 5वां दिन भी बवाल की भेंट चढ़ गया। नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष के तेवर इतने तल्ख रहे कि लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सदन में सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग गूंजती रही। सुबह की शुरुआत संसद के मकर द्वार पर विपक्ष के जोरदार प्रदर्शन से, शक्ति प्रदर्शन के साथ हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बर्खास्त करो प्रधान को ये नारा वहां लगा। पोस्टर्स के साथ विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो आर पार के मूड में है। इसके बाद जैसे ही सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने करगिल विजय के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन श्रद्धांजलि के तुरंत बाद सदन में नारेबाजी शुरू हो गई। स्पीकर बिरला ने भरोसा दिया कि नियमों के तहत बहस होगी लेकिन हंगामा थमा नहीं और कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दोपहर 12 बजे जब दोबारा सदन बैठा तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मोर्चा संभाला। रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सरकार बहस के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा से लगातार भागकर देश को गलत संदेश दे रहा है। विपक्ष का एक ही सुर था, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तब शोर शराबा इतना बढ़ा, राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब वो अपना पक्ष रख रहे थे तब उनका माइक बंद कर दिया गया। इस तरह 5वें दिन प्रश्नकाल नहीं हुआ। इस पूरे हफ्ते में एक बार भी प्रश्नकाल पूरा नहीं

0: और राज्यसभा में भी बहस और नारेबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सिर्फ 10 से 15 मिनट का कामकाज क्या शोर शराबा हुआ और राज्यसभा की कार्यवाही को पहले दोपहर तक और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
1: प्रश्नकाल, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें।
2: सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया, मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूँ।
3: आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार, आप कृपया बैठ जाएं। इंजीनियर राशिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुक जाइए। राहुल जी एक मिनट पेपर ले कर दे, फिर आप मुझे सरकार ने कह दिया विस्तार से। अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है, स्पीकर साहब से बात करें और इस पे समझे नहीं, इस पे आगे
4: जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग।
5: सर, अपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है।
0: पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 19 साल के छात्र साहिल लजाब के मीडिया के सामने लेकर आए। दावा किया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई है।
6: ये है पेलेट गन, इसको कहते हैं पेलेट गन। इसको इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये तीन मांगे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए और ये मांगे पूरी कीजिए, यही मैसेज है।
0: सीआरपीएफ सूत्रों के मुताबिक इस बात की जांच चल रही है कि क्या वाकई में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। आरएएफ भी सीआरपीएफ का हिस्सा है, इसकी तैनाती जंतर मंतर और दूसरे आसपास के इलाकों में हुई थी। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगा है। अब सऊदी अरब के शाही परिवार से जुड़ी हुई एक खबर आपको बताते हैं। पिछले साल 25 नवंबर को लंदन के एक होटल में सऊदी अरब के प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद की मौत हो गई थी। उनकी मौत के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। 29 साल के सऊदी प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद की मौत शराब, पार्टी, ड्रग्स और एंटी एंग्जाइटी दवाओं के कॉकटेल की वजह से बताई जा रही है। पिछले साल अब्दुल्ला बिन फहद का शव लंदन के मैरियट होटल के एक लग्जरी रूम में मिला था। उनके शव का पता तब चला जब होटल रूम की सफाई करने वाले ने उन्हें बाथरूम फ्लोर पर गिरा पाया। अब्दुल्ला बिन फहद की मौत के करीब 8 महीने तक चली जांच के बाद ये जानकारियां अब सामने आई हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ड्रग्स होते हैं, उनका नाम ही पार्टी ड्रग्स होता है, शराब, डिप्रेशन और इनसे जुड़ी हुई दवाइयों के एक साथ लेने की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। जांच में पता चला कि सऊदी प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद ने 19 नवंबर को होटल में चेक इन किया, एक हफ्ते के लिए रूम बुक किया। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से पता चला है कि अब्दुल्ला बिन फहद के खून में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा थी। रिपोर्ट के मुताबिक उनके 100 ml खून में करीब 222 mg अल्कोहल था, जो सामान्य व्यक्ति को बेहोश करने जितनी मात्रा हो सकती है। इसके अलावा उनके शरीर में गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट मिला था, जिसे पार्टी ड्रग्स कहते हैं। इसके साथ साथ शरीर से कई अन्य नशीले पदार्थों की अलग अलग मात्रा भी मिली है। यही नहीं, जांचकर्ताओं को उनकी शरीर से एंटी एंग्जाइटी पिल्स की मात्रा भी मिली। सोचिए, कॉकटेल सबका। माना जा रहा है कि अत्यधिक शराब पीने, कई तरह के नशीले पदार्थ का सेवन करने और उसके बाद एंटी एंग्जाइटी दवाएं खाने की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। एजेंसियों को अपने जांच में

आत्महत्या से जुड़ा कोई संकेत नहीं मिला है। इसीलिए वो ये मान रहे हैं कि उनकी मौत ज्यादा मात्रा में कई तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करने की वजह से हुई है। जांच में पता चला है कि सऊदी प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद का इलाज भी चल रहा था और रहमटन के प्रायोरी क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा था। अब इस क्लिनिक में डिप्रेशन एंग्जाइटी के मरीजों का इलाज होता है। पिछले साल अगस्त में वो इस क्लिनिक में इलाज के लिए आए थे। वो यहाँ पर अपनी शराब और जो अन्य नशाएं थी वो छुड़वाने के लिए पहुंचे थे। इस क्लिनिक के डॉक्टर्स का कहना है कि सऊदी प्रिंस ने अपना इलाज ठीक से करवाया था, उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रेगुलर कंसल्टेशन बंद कर दी, फिर से रिलैप्स हुआ। सऊदी प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद की मौत पर हुए इस खुलासे ने सबको हैरान कर दिया। वो हैरान इसलिए हैं क्योंकि इस्लामिक नियमों के हिसाब से शराब पीना प्रतिबंधित है और इसी वजह से सऊदी अरब में आम नागरिकों के लिए शराब खरीदना, रखना, पीना प्रतिबंधित है। ये नियम शाही परिवार पर भी लागू है। हालांकि माना जाता है कि सऊदी के नागरिक विदेशी धरती पर शराब पीने या रखने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि उन देशों में वहां का कानून लागू होता है। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
2: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है, तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर should apologize to the students. These are the three conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it.
5: के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं, मैं शहीद का दर्जा दूंगी बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्थे आए थे। और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो ज्यादतियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए।
6: ये तो जब ये पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तब प्रधानमंत्री की नींद खुली है। आज भी हम ये कहेंगे कि सदन में आने से पहले उनको अपने मंत्री का इस्तीफा लेकर आना चाहिए, फिर चर्चा करवानी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व है उनको मिलनी चाहिए।
7: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उनपे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उनपे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे।
8: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पे चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोरा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
10: और इसी के साथ आज के लिए रहिए, सुरक्षित रहिए और हकीकत को तलाश करना पड़ता है। अफवाहें तो आपकी फीड में घूमती ही रहती हैं। नमस्कार।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, हटाए गए एनटीए के 47 अफसर, पुलिस एक्शन भी संभव, सूत्रों के अनुसार इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। पेपर लीक पर सख्त कानून का मसौदा कैबिनेट में मंजूर, 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान, सोमवार को संसद में पेश हो सकता है संशोधन विधेयक। नड्डा और जितेंद्र सिंह की मुलाकात में सीजेपी ने रखी अपनी मांगे, आजतक से बोले अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं, कल दोपहर तक सरकार देगी अपना जवाब। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, सोशल मीडिया पर 2400 घंटे रहेगी निगरानी, ड्रोन सीसीटीवी से पेट्रोलिंग, सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में टीडीपी का आत्मघाती हमला, आर्मी कैंप में ब्लास्ट से 17 जवानों की मौत, 2 हमलावर ढेर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, पर आप देख रहे हैं दस तक। आंदोलन का जंतर मंतर, वही जंतर मंतर जहां से उठने वाली आवाज सीधे सत्ताधीशों और सत्ता प्रतिष्ठान के कानों तक पहुंचती है। जंतर मंतर आज लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा मंच माना जाता है, और इसी मंच ने इतिहास के कई ऐसे आंदोलनों को आवाज दी जिन्होंने हमारे देश की राजनीति और समाज को नई दिशा दी और कई सारे नए नायक भी दिए। इस बार परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर जंतर मंतर से शुरू हुए आंदोलन ने सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके को युवाओं के बीच एक प्रमुख चेहरा बना दिया है। वांगचुक युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दों पर 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे। अनशन वांगचुक ने तब तोड़ा जब सरकार ने उनकी मांगे मानने के लिए हामी भरी और सरकार को मजबूर होना पड़ा। सरकार ने लिखित आश्वासन दिया कि नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। कितना ये बाद में तय करेंगे। परिजनों और प्रदर्शन कारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। परीक्षा प्रणाली में सुधार के मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी। हालांकि जंतर मंतर से उठी एक मांग अभी भी अधूरी है। इस मांग को लेकर अभिजीत दीपके की अगुवाई में युवा छात्र अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इनकी मांगे क्या हैं? इनकी सबसे प्रमुख मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दीपके ने घोषणा की है कि इस मांग के पूरा होने तक शांतिपूर्ण आंदोलन उनका जारी रहेगा। तो आज हम इस आंदोलन के इन दोनों प्रमुख चेहरों की कहानी आपको बताएंगे। सबसे पहले अभिजीत दीपके की बात।
1: तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी अपने घरों से निकलिए, आइए जंतर मंतर।
2: हमारी प्राइमरी डिमांड जो है उसे हम पीछे नहीं रखने वाले, दैट इज द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर।
1: ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सरकार नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और सभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
3: नाम अभिजीत दीपके, छात्रों के लिए उम्मीदों का चेहरा, कद काठी छोटी लेकिन कंधों पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी। 30 साल के इस नौजवान ने दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन की ऐसी अलग जगाई। देश के अलग अलग हिस्सों में नौजवान अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतर आए। आंदोलन 6 जून को इसी जंतर मंतर से शुरू होता है। मांग यही कि लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मद्देनजर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ताकि युवाओं के भविष्य के साथ होते खिलवाड़ को लेकर जवाबदेही तय की जाए।
1: मेरे साथ सैकड़ों और लोग थे जो यही जंतर मंतर की सड़कों पर सोए। हम किस लिए सो रहे थे सड़कों पर? हम सड़कों पर इस देश के भविष्य के लिए सो रहे थे। हम सड़कों पर उन बच्चों के लिए सो रहे थे जिनको आत्महत्या करनी पड़ी थी धर्मेंद्र प्रधान के फेलियर की वजह से। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी उन लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, नाउ और नेवर, अगर आज आप लोग बाहर नहीं निकले तो इस देश में जो एक उम्मीद जगी है, इस देश में जो एक उम्मीद जगी है सिस्टम को बदलने की, इस देश में जो एक उम्मीद जगी है अकाउंटेबिलिटी लाने की, वो उम्मीद मर जाएगी।
3: दीपके ने जंतर मंतर से यही नारा बुलंद किया, अभी नहीं तो कभी नहीं। शुरुआत में कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रखने वाले दीपके के आंदोलन और उनके आंदोलन के मकसद को लेकर सवाल उठे। उनके आंदोलन के भविष्य को लेकर तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म रहा, क्योंकि अमेरिका से लौटे दीपके का चेहरा नया था और छात्रों का भरोसा जीतना मुश्किल। लेकिन उनके एक विचार ने देश की परीक्षा प्रणाली में छल वाले छेद के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन को आकार दे दिया। सोचिए, एक व्यंगात्मक ऑनलाइन पहल से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी बेहद कम वक्त में लाखों युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गई। मानो छात्रों की जिन आवाजों को सिस्टम ने अब तक अनसुना कर रखा था, उन्हीं आवाजों को एक चेहरा मिल गया और कॉकरोच जनता पार्टी की शक्ल में एक बड़ा मंच। डिजिटल अभियान से दीपके धीरे धीरे सड़कों तक पहुंचे और फिर दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए आंदोलन का चेहरा बन गए। छात्रों की आवाज बनकर दीपके अकेले निकले, लेकिन छात्र उनके साथ जुड़ते गए, कारवा बनता गया। 28 जून को जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से सोनम वांगचुक जुड़ते हैं। इसके बाद छात्रों के लिए लड़ी जा रही लड़ाई के लिए जन समर्थन बढ़ता ही जाता है। जंतर मंतर की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगती है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय करने की उनकी मांग को वांगचुक की भूख हड़ताल से ताकत मिलती है। लोगों को भरोसा हुआ, अभिजीत दीप के बहुत अनुभवी भले ना हो लेकिन वो छात्रों की जायज मांग को उठाने के लिए जंतर मंतर पर हैं। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होनी थी। देश की सरकार तक छात्रों की मांगों को पहुंचाने के लिए दीपके ने संसद मार्च की घोषणा की, लेकिन मार्च से ठीक चंद घंटे पहले जंतर मंतर पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। तारीख 18 जुलाई सुबह के वक्त बिना वर्दी के दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पहुंची और भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अपने साथ ले गई। हवाला, भूख हड़ताल से बिगड़ी उनकी सेहत का दिया। सोनम अब जंतर मंतर से हॉस्पिटल पहुंच गए। बहुत लोगों को लगा छात्रों के लिए किया गया आंदोलन अधूरा रह जाएगा। यही वो वक्त था जब मंच पर दीप के फूट फूट कर रोए, लेकिन ये आंसू आंदोलन छोड़ने के लिए नहीं भाए, आंदोलन को किसी भी कीमत पर अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकले। 20 जुलाई को संसद मार्च निकलता है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव होता है, लेकिन दीपके के आंदोलन से छात्रों की आवाज ने सरकार के दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी तो युवाओं की मांगे घर घर पहुंच गईं। सड़क से संसद तक युवाओं का मुद्दा फैल गया जो अब तक सिस्टम की प्राथमिकता में नहीं था।
4: अब मिलकर के समय तय करें, नियम हम जैसे चेयर से रूलिंग देंगे मानने के दौरान है, और कितना लंबा चर्चा करना है जैसे चेयर से तय करेंगे, हम 100% सरकार तैयार है चर्चा के।
5: ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। ये इनका रवैया
4: नीट एग्जामिनेशन के बारे में आर रूल्स 267 कहते हैं, यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए।
3: जंतर मंतर की आवाज लोकतंत्र के मंदिर में गूंजने लगी। सरकार परीक्षा प्रणाली और युवाओं के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट और नया कानून बनाने का ऐलान कर दिया।
6: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: केंद्र सरकार का ऐलान भी दीपके की मांगों की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। पहले दिन से अब तक दीपके की मांग यही है, आंदोलन तब खत्म होगा जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा।
2: अभी जस्ट डायलॉग शुरू ही हुआ है, मोस्टली उन्होंने कहा है कि वो दो डिमांड्स पर अग्री कर रहे हैं, बट उस पर भी उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई दिया नहीं है। उन्होंने कल फिर से डायलॉग के लिए बुलाया है तो हम फिर से डायलॉग के लिए जाएंगे, बट हमारी प्राइमरी डिमांड जो है उससे हम पीछे नहीं हटने वाले, दैट इज द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर।
3: यह आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा इसका रोड मैप अभिजीत दीपके ने सरकार और देश के युवाओं के सामने रख दिया। अब इसी आंदोलन की आवाज देश के तमाम हिस्सों में गूंजती हुई आपको सुनाई दे रही है, मतलब आधी लड़ाई जीत चुके दीपके अभी अपने पैर पीछे नहीं खींचेंगे। अब केंद्र सरकार के पाले में है, क्या तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या फिर आंदोलन जारी रहेगा। जंतर मंतर की जमीन से अभिजीत दीपके ने आंदोलन की लंबी लकीर खींच दी, वही लकीर जिसे देश के युवा अपने भविष्य की तकदीर मानने लगे, तो यही लकीर सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीर बन चुकी है। ये इतिहास तय करेगा कि अभिजीत दीपके आंदोलन के एक बड़े नेता हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पेपर लीक और देश की शिक्षा प्रणाली के मुद्दे को अभिजीत दीपके ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया है।
0: अभिजीत दीपके के बाद बात सोनम वांगचुक की। जब जंतर मंतर पर आंदोलन के नायकों की बात होगी तो सोनम वांगचुक का नाम ऊपर आएगा, क्योंकि नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन में अगर तेजी आई तो सोनम वांगचुक के अनशन शुरू करने के साथ अब 26 दिन बाद सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है तो सवाल यही है कि अब आंदोलन का क्या होगा और जिन शर्तों पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा है उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शर्त क्यों नहीं आई, क्योंकि जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अब सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान पर क्या कहा और इस पर आंदोलन में आगे क्या होगा।
7: वांगचुक ने 26 दिन बाद अनशन तोड़ा, अब आंदोलन का क्या होगा। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। सोनम वांगचुक ने शर्तों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शर्त क्यों नहीं रखी। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोला। वांगचुक की जिन शर्तों को सरकार ने माना क्या आंदोलन का मकसद पूरा हो गया। रात के 12:30 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल के अंदर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाते हैं। इस वक्त अस्पताल में लद्दाख की एपेक्स बॉडी के 4 शीर्ष नेताओं की मौजूदगी भी रहती है, जबकि इससे ठीक पहले पीएम मोदी पेपर लीक को लेकर एक वीडियो जारी करते हैं और सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी देते हैं। अब बात टाइमिंग की आती है, आधी रात में सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाना, इसे किस तरह से देखा जाए। क्या जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर सरकार पर भारी दबाव के तौर पर, या फिर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाने की बड़ी और कामयाब कोशिश के तौर पर, आज हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने क्या कहा।
8: आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा।
7: सोनम वांगचुक ने सरकार से जिन शर्तों पर लिखित आश्वासन लेकर अनशन तोड़ा है वो शर्तें भी आपको बताते हैं। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और मार्च में शामिल लोगों पर कोई नया पुलिस केस या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। पेपर लीक के तनाव के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संसद में खुली चर्चा करने का लिखित आश्वासन
8: उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे उन पर कोई कानूनी कार्रवाई FIR इत्यादि नहीं करेंगे। जो पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा उनके घरों को। और तीसरा ये कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में पूरी तरह से वार्ता होगी, बहस होगी कि आगे से ऐसा ना हो और जो हुआ है उस पे पूरी जवाबदेही हो।
7: अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सोनम वांगचुक न सिर्फ जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के सूत्रधार हैं, बल्कि पेपर लीक के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन के बड़े नायक भी हैं। तो फिर क्या इन्हीं 3 शर्तों के साथ आंदोलन सिमट जाएगा, क्योंकि 20 जून से शुरू हुआ ये आंदोलन 28 जून से सोनम वांगचुक के अनशन शुरू होने के बाद और तेज होता है। जंतर मंतर पर छात्रों से लेकर सेलिब्रिटीज और बड़ी हस्तियों का तांता लगना शुरू होता है और 18 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक के अनशन के 21वें दिन उन्हें मंच से उठाकर ले जाती है तो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों में एक आक्रोश सा भर जाता है। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत देव के अनशन शुरू करते हैं। जब सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती रहते हैं तो सीजेपी और प्रदर्शनकारी उनकी रिहाई की मांग करते हैं, साथ ही नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। और 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से संसद चलो मार्च शुरू होता है और इस मार्च में होता है छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों की इस भिड़ंत के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और भी तेज हो जाती है और साथ में विपक्ष भी इस विरोध प्रदर्शन के साथ जुड़ जाता है। भले ही सोनम वांगचुक अस्पताल में रहते हैं लेकिन विरोध प्रदर्शन में सोनम वांगचुक का नाम और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग गूंजती है। इसके बाद सरकार की सीजेपी और सोनम वांगचुक से बात शुरू होती है। सीजेपी की मांग में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे ऊपर रहता है जबकि सोनम वांगचुक की अनशन खत्म करने की शर्तों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हट जाता है। अब सवाल यही है कि वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से लिखित आश्वासन क्यों नहीं दिया। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है और इसका जवाब खुद सोनम वांगचुक ने दिया है।
8: अब आप कहेंगे जरूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर दोस्तों मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है, अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को ना टाल कर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं। बल्कि दे देते इस्तीफा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता।
7: तो सुना आपने, सोनम वांगचुक कहते हैं कि उनका दिमाग अलग तरह से चलता है। आखिर सोनम वांगचुक के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वांगचुक ने जो शर्तें सरकार से बनवाई हैं, वो सिर्फ अनशन खत्म करने के लिए हैं? क्या इस आंदोलन में वांगचुक को जो करना था वो कर चुके हैं? अब वांगचुक की पत्नी को भी सुनिए।
9: हमारे लिए ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने, जो कि दोनों जो सरकार है और जो अपोजिशन है, सब ने मिल के ये डिसीशन लिया है कि एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस पर डिस्कशन इस मॉनसून सेशन में होगी और आगे भी ये रिफॉर्म्स जारी रहेंगे। ये नंबर वन है, ये तो इमीडिएट सक्सेस है। और सेकंड सक्सेस ये है कि इससे पूरा देश जाग गया है।
7: गीतांजलि कहती है कि देश जाग गया है, तो क्या सोनम वांगचुक पेपर लीक और देश के शिक्षा तंत्र के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए मैसेज दे चुके हैं?
0: और आइए अब हम आपको कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ आज तक की बातचीत सुनवाते हैं। हमारे साथी साहिल जोशी ने अभिजीत से बात की है।
10: पहला सवाल यही है कि आंदोलन के मुद्दे अब क्या है? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, फिलहाल तो सरकार मना कर रही है, लेकिन अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या यह आंदोलन थमेगा?
11: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो ये था कि जिन बच्चों ने सुसाइड करी उनके परिवारों को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके साथ 20 जुलाई को जो हुआ, जिस ब्रूटैलिटी के साथ पुलिस ने बच्चों के सर फोड़े, लड़कियों को पीटा है, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक और डिमांड ऐड करी है कि जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, एक तो उसकी वजह से पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में जिन बच्चों के ऊपर झूठे केसेस लगाकर उनको डिटेन या अरेस्ट किया गया था वो सारे केसेस वापस लिए जाने चाहिए।
10: लेकिन अब विपक्षी पार्टियां भी आपको सपोर्ट कर रही है क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता आपके यहां पर दिखे, राहुल गांधी वहां पर एक अलग प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं?
11: मैं सभी विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो उन सभी ने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को बाजू में रखकर स्टूडेंट्स के साथ एक साथ आए और जो उन्होंने समझा कि जो देश का मुद्दा है, जो भविष्य का मुद्दा है इस देश का, उसके लिए वो सब साथ में आकर हमारे साथ खड़े रहे, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
10: लेकिन सोनम वांगचुक अब जो है उन्होंने तो अपना अनशन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कहा है कि वो मांग उन्होंने पुश नहीं की, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने वो मांग पुश नहीं की है। तो क्या अब आपके रास्ते अलग हो चुके हैं, उस पर आपका क्या कहेंगे आप?
11: इससे मुझे बहुत ही राहत और खुशी मिली है। हम खुद सोनम सर से बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, आगे का प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और कल जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वॉज वेरी रिलीव, और बहुत जरूरी भी था क्योंकि सोनम सर की जान जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए। और 26 दिनों तक उन्होंने जो दर्द सहा है, जो सेक्रीफाइस किया है अपने हेल्थ का, आई थिंक इससे ज्यादा कोई और कुछ कर नहीं सकता था इस मूवमेंट के लिए। अपनी जान को एक तरीके से दांव पर लगाकर सोनम सर ने इस देश की जनता को जागरूक किया है।
10: ठीक है, लेकिन आगे का प्लान क्या, क्योंकि आंदोलन तो पूरा पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आसपास नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या प्लान होगा, क्या कुछ और भी मुद्दे हैं उसको भी आप उठाने की कोशिश करेंगे?
11: अभी तो ये आंदोलन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, और मुझे लगता है इसमें सरकार की भी भलाई है कि जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो आज जो देश में लाखों के नंबर्स में स्टूडेंट्स और युवा सड़कों पर उतरे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। तो सरकार की भलाई भी इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए।
10: लेकिन दो राउंड आपकी बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ में, आपका प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलकर आया हुआ है, आज भी जो बातचीत हुई है क्या आप उससे संतुष्ट है? क्या
11: संतुष्ट हूँ ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी जस्ट डायलॉग शुरू ही हुआ है। मोस्टली उन्होंने कहा है कि वो दो डिमांड्स पर अग्री कर रहे हैं, बट उस पर भी उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई दिया नहीं है। उन्होंने कल फिर से डायलॉग के लिए बुलाया है तो हम फिर से डायलॉग के लिए जाएंगे, बट हमारी प्राइमरी डिमांड जो है उससे हम पीछे नहीं हटने वाले, दैट इज द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर।
10: लेकिन एक और इस बीच जो चीज हुई है वो एजुकेशन सेक्रेटरी जो है उनका तबादला कर दिया गया, उनके जगह पर दो नए एजुकेशन सेक्रेटरी आएंगे, एक हायर एजुकेशन के लिए, एक प्राइमरी एजुकेशन और बाकी इसके लिए आएंगे। तो अब आप करप्शन का मुद्दा उठा रहे, कह रहे हैं कि भाई उनमें जो एक सेक्रेटरी है वो करप्शन में लिप्त है, ये मुद्दा आप कहां से उठा रहे, क्या यही मुद्दा रहेगा आप इसके आगे?
11: क्योंकि मुझे पता चला है कि उनके ऊपर ऑलरेडी करप्शन के बहुत सारे एलिगेशन है, एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उन्होंने करप्शन किया हुआ था, तो एक तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है, करप्ट लोगों को ये सरकार प्रमोट कर रही है, तो ये क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं कि कॉन्क्रीट एक्शन ले लो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, आप जो कर रहे हो वो ये करोगे और करप्ट लोगों को प्रमोट कर रहे हो, सो दिस इज नॉट राइट।
0: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे ईरान घात लगाकर करेगा अमेरिका पर वार, ट्रंप को देगा बड़ा घाव, कैसे ये आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए दस्तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
15: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
16: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं, गोल्डी हिंग कण कण में जान।
17: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
18: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
17: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
18: अर्ज किया है
17: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं। सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
19: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
20: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
21: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
22: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
23: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
24: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
25: Kuch to baat hai is dil mein.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: पापा,
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
3: माँ भी हमेशा P-Mark mustard oil में ही खाना बनाती थी.
4: कुछ तो बात है इस दिल में.
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933.

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को RDX रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर.
3: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.

0: वांगचुक ने क्यों तोड़ा अनशन, 26 दिन बाद वांगचुक क्यों तैयार, अनशन के द एंड की इनसाइड स्टोरी। जब सोनम वांगचुक को पुलिस जंतर मंतर से ले गई, वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग में भर्ती कराया गया। गिरती सेहत का हवाला देकर उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन परिजनों ने सवाल उठाए, सरकार की कोशिशों पर आशंका जताई, मामला कोर्ट तक पहुंचा। वांगचुक सफदरजंग से मेदांता शिफ्ट किए गए और 24 जुलाई की तारीख आते आते परिस्थिति बदल गई।
1: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए।
0: सहज सवाल उठता है कि आखिर ये तब्दीली कैसे आई, सरकार ने वांगचुक कंसन तोड़ने के लिए कैसे तैयार किया, इसके पीछे की एक्सक्लूसिव कहानी जान लीजिए। 23 जुलाई को अमित शाह, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बैठक हुई। बैठक 4 घंटे चली। वांगचुक को दिए जाने वाले प्रस्ताव फाइनल हुए। पहले वांगचुक की पत्नी से बात की गई, उन्हें सरकार का प्लान बताया गया। इसके बाद मेदांता अस्पताल में वांगचुक से नड्डा, जितेंद्र सिंह मिले। वांगचुक को बताया गया कि सरकार नया कानून बनाएगी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नया कानून बनाएगा। वांगचुक को यह भी बताया गया कि नए बिल पर आज ही कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी, अगले हफ्ते संसद में नया बिल पेश कर दिया जाएगा। वांगचुक को सरकार का प्रस्ताव सही लगा और वो अनशन तोड़ने पर राजी हो गए। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी रह गया है कि आखिर वांगचुक अब आगे क्या करेंगे। सूत्रों की माने तो इस बारे में भी वांगचुक ने अपना इरादा साफ कर दिया है। वांगचुक ने सरकार को बता दिया है कि अनशन तोड़ने के बाद वो लद्दाख चले जाएंगे। लद्दाख लौटने से पहले वो छात्रों से बात करेंगे, छात्रों को बताएंगे कि सरकार के आश्वासन पर भरोसा करें, ये भी बताएंगे कि असामाजिक तत्वों से प्रभावित वो ना हो। तो देखने वाली बात यह है कि अब वाकई में सोनम वांगचुक की क्या भूमिका रहती है। आज तक ब्यूरो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। ईरान अमेरिका युद्ध का सायरन अब यूरोप में बजने लगा है। ईरान ने ब्रिटेन पर हमले की धमकी दी है, ऐलान किया है कि ब्रिटेन के एयरबेस का इस्तेमाल उनके खिलाफ अमेरिका कर रहा है। ऐसे में ब्रिटेन को ईरान की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरी तरफ ईरान ने सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों के आसपास रहने वाले नागरिकों को उन इलाकों को छोड़ देने की चेतावनी दी है। मतलब यही है कि यह युद्ध अब मिडिल ईस्ट तक सीमित न रहेगा। अमेरिका ईरान युद्ध अब पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकता है। तो क्या ईरान के प्लान यूरोप को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दी?
5: अमेरिका को ईरान की सबसे बड़ी धमकी। यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर करेगा हमला। ब्रिटेन पर ईरान ने हमले की चेतावनी दी है। जर्मनी की एडवाइजरी, नागरिक छोड़े ईरान। क्या ट्रंप के ऐलान से बौखला गया ईरान? मिडल ईस्ट और यूरोप में हाई अलर्ट जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी दी है। ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना की पूरी तैयारी है, सिर्फ सेना को उनके फैसले का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ सबसे बड़े हमले की मंजूरी दे सकते हैं।
6: डूइंग वेरी वेल अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. If we did all this that I'm talking about your data centers, isn't that important? When they start blowing away communities one by one, we cannot let them ever even think about having a nuclear weapon, and that's exactly what's happening. They'll never have a nuclear weapon under the
5: Trump ki isi dhamki ke baad ab Europe mein yuddh ka siren bajne laga hai. IRGC ki taraf se jari bayan mein ye kaha gaya hai ki duniya bhar mein jahan jahan Ameriki sainya thikane hain, wo sabhi sainya thikane ab Iran ke nishane par hain. America ne apne vaadon ko toda aur aakhirkar 21 July ko adhikarik taur par samjhauta radd kar diya aur yuddh phir se shuru kar diya. दुश्मन को एहसास हो गया कि वो सैन्य अभियानों के जरिए हमारी सशस्त्र सेनाओं पर काबू नहीं पा सकता। अमेरिका ने पुलों, जहाजों, रेलवे को निशाना बनाया और नागरिकों की हत्या की। ऐसे अपराधों के जारी रहने की स्थिति में हमारा मकसद अपराधियों से बदला लेना होगा। इसीलिए हम उन देशों की आम जनता को चेतावनी देते हैं जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन इलाकों से तुरंत दूर हट जाएं जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, खासकर 500 मीटर के दायरे में। अभी तक ईरान सिर्फ मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। कुवैत से लेकर बहरीन तक, जॉर्डन से लेकर यूएई तक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का बारूदी पलटवार जारी है। बीते 72 घंटों में ईरान की तरफ से दी गई ये तीसरी धमकी है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका में 9/11 जैसे हमले की धमकी दी थी। अगर युद्ध जारी रहा तो हम ऐसे ऑपरेशन चलाएंगे कि अमेरिका पछताएगा, अमेरिका में राष्ट्रीय शोक की नौबत आ जाएगी। माना जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का बदला लेने के लिए ईरान की तरफ से 9/11 हमले जैसे प्लान को अंजाम दिया जा सकता है। ईरान की तैयारी अमेरिका के एटमी सेंटरों पर हमले की भी है। ईरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि उसके परमाणु सेंटर पर हमला हुआ तो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी हमले होंगे। अगर ईरान की परमाणु सुविधाओं को फिर से निशाना बनाया जाता है तो ईरानी अपनी निवारक नीति और आंख के बदले आंख के सिद्धांत के तहत अज्ञात स्थानों से अमेरिकी परमाणु स्थलों पर विनाशकारी हमले करेगा। अमेरिका को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। अब ईरान ने यूरोप में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले की चेतावनी दी है। ईरान ऐसा कर भी सकता है क्योंकि मार्च में ईरान ने डिएगो गार्सिया द्वीप पर अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य ठिकाने पर दो मिसाइलें दागी थीं। हालांकि मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंचने में नाकाम रही थीं। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान के पास लंबी दूरी की ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो यूरोप को निशाना बना सकती हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान यही कहता आया है कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर रखी है जिसके तहत उनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक सीमित है। इसका मतलब है कि ईरान की मिसाइलों की पहुंच में इजराइल तो है लेकिन यूरोप नहीं। लेकिन एक ईरानी सांसद दावा कर चुका है कि IRGC ने एक अंतर बहुत BPA बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। तो क्या ईरान की ये वही मिसाइल है जिसके इस्तेमाल की धमकी वो दे रहा है? ऐसे में संभव है कि ईरानी सेना यूरोप में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए। हम निश्चित रूप से नए उपाय अपनाएंगे। हमने नए परिदृश्यों का अनुमान लगाया है और उन पर काम किया है और हम निश्चित रूप से दुश्मन को युद्ध जारी रखने से रोकने के लिए नए तरीके अपनाएंगे। ईरान के पास दूसरी रणनीतियां हैं जिनका खुलासा उचित समय पर किया जाएगा और युद्ध विराम की अवधि का उपयोग करके युद्ध की तैयारी में सुधार करने के बाद उसकी वायु सेना और वायु रक्षा प्रणाली बेहतर ढंग से तैयार है। यानी दुश्मन जमीन से आक्रमण करता है तो उसकी भेद्यता हवाई या लंबी दूरी के हमलों की तुलना में कहीं अधिक होगी। जमीनी अभियानों से ईरानी सेना को हताहत करने से ज्यादा अवसर मिलेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा जनशक्ति डेटा केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2025 तक अमेरिका के करीब 68,000 सैनिक यूरोप में मौजूद सैन्य ठिकानों पर स्थायी रूप से तैनात हैं। जर्मनी, इटली और ब्रिटेन में सैनिकों की सबसे बड़ी मौजूदगी है। जर्मनी यूरोप का वही देश है जहां अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। जर्मनी के रामस्टीन के पास एयरबेस में 1952 से ही सैनिक तैनात हैं। दक्षिणी जर्मनी में US आर्मी गैरिसन यूरोप में तैनात सेनाओं के लिए एक प्रमुख ट्रेनिंग सेंटर है। इटली, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही इटली में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं जिनमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना के जवान शामिल हैं। DMDC के आंकड़ों के मुताबिक 2025 के अंत तक इटली के विसेंजा, एवियानो, नेपल्स और सिसिली

0: बंद कर दिया है। सिर्फ आपातकाल सेवाओं के लिए दूतावास खुला रहेगा, जबकि जर्मनी ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। जर्मनी के एक्शन के पीछे ईरान की धमकी को देखा जा रहा है, क्योंकि अब ईरान ने मिडल ईस्ट में अमेरिकी कंपनियों के दफ्तरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। IRGC ने दावा किया है कि बहरीन में अमेज़न के डेटा सेंटर पर दूसरी बार हमला हुआ है। ये तब है जब ट्रंप बार बार दावा कर चुके हैं कि ईरान की सैन्य ताकत को तबाह कर चुके हैं।
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: भले ही बीते 13 दिन से ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य अभियान जारी हो, लेकिन ईरान भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं है। अब ईरान की धमकी के बाद पूरे यूरोप पर युद्ध का साया मंडराने लगा है, क्योंकि यूरोप पर ईरान ने हमला किया तो ये युद्ध मिडल ईस्ट से निकलकर यूरोप तक फैल जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन और रूस को धमकी दी है और कहा है कि अगर चीन और रूस ईरान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। तो एक धमकी देते हुए ट्रंप ने चीन और रूस को यहाँ पर चेताया है कि अगर आप इस युद्ध में ईरान को हथियार दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि चीन और रूस इस में शामिल हैं, इस विवाद में, इस संघर्ष में और इस युद्ध में वो शामिल हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच तेज होते युद्ध के बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जी हां, रॉयटर्स के हवाले से यह खबर आई कि ईरान ने एक सीक्रेट कार्गो फ्लाइट के द्वारा IRGC के टॉप कमांडर, मिसाइल्स, ड्रोन्स और दूसरे हथियारों के साथ साथ फंड जुटाने के लिए भारी संख्या में सोना यमन भेज दिया है और इसका उद्देश्य है लाल सागर में हूती विद्रोहियों की पकड़ मजबूत बनाने के लिए। और यही नहीं, ये सब यमन पहुंचते ही हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में तेल के जहाजों की नाकेबंदी करने के निर्देश भी जारी उन्हें कर दिए गए हूतियों को। आखिर क्या है ईरान का मिशन यमन, दिखाते हैं आप।
0: अमेरिकी हमले जारी, ईरान ने शुरू की सीक्रेट तैयारी। क्या है ईरान का मिशन यमन, लाल सागर में बड़ा ऑपरेशन? ईरान ने यमन भेजे IRGC कमांडर, मिसाइल, ड्रोन और सोना। हूती विद्रोहियों के साथ ईरान का अब तक का सबसे बड़ा मिशन। हुर्मुज़ के बाद बाब अल मंदेब को बंद करने का तेहरान प्लान।

जब ईरान पर अमेरिका पिछले 13 दिन से लगातार और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दे दी है। ईरान ने प्लान बी पर भी काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यमन के हुती विद्रोहियों ने रेड सी में सऊदी अरब के दो तेल टैंकर एनसेलिया और डेला पर बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। संगठन का कहना है कि दोनों जहाजों में आग लग गई। ये भी बता दें कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहे कम से कम 10 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। अब ये जहाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा सफर तय कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि लाल सागर में हूती विद्रोही कैसे पावरफुल हो रहे हैं, तो चलिए इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। मिडल ईस्ट के बारूदी आसमान के बीच तेहरान से उड़ी एक रहस्यमयी उड़ान ने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि 13 जुलाई को ईरान की वाहन एयर के एक विमान ने तेहरान से यमन के लिए उड़ान भरी। आधिकारिक तौर

0: पर कहा गया कि इस फ्लाइट में आयतुल्लाह खामिनई के जनाजे से लौट रहे यमन के नागरिक और प्रतिनिधि मंडल सवार थे, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस विमान में केवल आम नागरिक नहीं थे, बल्कि इसमें सवार थे ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के 10 से 21 सीनियर सैन्य कमांडर और रणनीतिकार। इनके साथ मौजूद था शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों का जखीरा। ड्रोन्स के आधुनिक कलपुर्जे और हूती अभियानों की फंडिंग के लिए भेजा गया भारी मात्रा में सोना। यानी ईरान ने हूती विद्रोहियों को ट्रेनिंग और दिशा देने के लिए IRGC के टॉप कमांडर्स यमन भेजे। रेड सी में तबाही मचाने के लिए ईरान ने यमन पहुंचाए एडवांस मिसाइल और ड्रोन पार्ट्स। युद्ध की फंडिंग के लिए तेहरान से सीक्रेट फ्लाइट के जरिए यमन भेजा गया भारी मात्रा में सोना। सूत्रों की माने तो ईरान का सीक्रेट विमान मूल रूप से यमन की राजधानी सना में उतरने वाला था, लेकिन जैसे ही सऊदी समर्थित यमन की सरकार को इसकी भनक लगी, उन्होंने सना एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसके बाद विमान का रूट बदलकर उसे लाल सागर के तटीय शहर हुदैदा में लैंड कराया गया। यमन उतरते ही IRGC के इन कमांडरों ने हुती विद्रोहियों को नए मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कमांडरों के पहुंचते ही महज 3 दिनों के भीतर तेहरान से हूती विद्रोहियों को सख्त फरमान जारी किया गया। अगर अमेरिका ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो हूती विद्रोही तुरंत लाल सागर के मुख्य तेल बार को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच खबर ये भी है कि तेहरान ने यमन के हूती विद्रोहियों से अल मंदेब स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने को कहा है। आखिर अल मंदेब इतना अहम क्यों है? ये महज 20 से 26 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। अरबी में इसका मतलब होता है आंसुओं का दरवाजा, और इस वक्त ये सचमुच वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आंसुओं की वजह बनता दिख रहा है। दुनिया का लगभग 10 से 12% तेल यानी रोजाना 80 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अगर एशिया और यूरोप के बीच सफर करने वाले जहाजों के लिए ये रास्ता बंद हो जाता है तो उन्हें पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। इससे न केवल जहाजों का समय 10 से 14 दिन तक बढ़ जाएगा, बल्कि शिपिंग कॉस्ट और ईंधन की दरें आसमान छूने लगेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ अगर ईरान अपने सहयोगी हूती विद्रोहियों के जरिए इस अल मंदेब के दरवाजे को भी ताला लगा देते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। भले ही ईरान यमन में IRGC कमांडर मिसाइल ड्रोन्स और दूसरे हथियार पहुंचाने की बात नकार रहा है, लेकिन सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि रेड सी को निशाना बनाकर ईरान अब अमेरिका और उसके सहयोगियों पर चौतरफा दबाव बनाने की फिराक में है। ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ी तबाही की घड़ी साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
6: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
8: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
9: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
10: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
11: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
7: सोलह साल पहले एक धमाका क्या थी, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को आरडीएक्स रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर।
8: क्योंकि केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार छात्रों के बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित भी है, कार्यबद्ध भी है, किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें कठोरतम सजा होगी ताकि कोई फिर ऐसा पेपर लीक जैसा अपराध ना कर सके।
9: जिन बातों को लेकर मांगी नहीं है देश में उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और जो असली मांग लेकर जो आंदोलन चल रहा है जिसको लेकर सारे विपक्षी पार्टी विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी जो है छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, उन बातों का तो कहीं संज्ञान ही नहीं ले रहे प्रधानमंत्री जी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, हमारी मांग है दिल्ली में पुलिस बर्बरता के पीछे जो जो अधिकारी और जो नेता जिम्मेदार हैं उनके पे कार्रवाई, और सरकार माफी मांगे, ये मांगे।
10: विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। आप इस तरह से करेंगे? जबरदस्ती बैठ जाएंगे? और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं, और फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा, आप ही की उद्दंडता से चलेगा?
11: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है।

0: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क और
2: मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: छात्र जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं दिख रहे। उधर संसद में विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। दोनों जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन का एक ही मुद्दा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार सीजेपी और प्रदर्शनकारी छात्रों से संवाद कर शांति का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इस बीच सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए अब कड़े कानून लाने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक को लेकर सरकार पहले जो बिल लाई थी उसी में संशोधन कर प्रावधानों को और भी ज्यादा कड़ा करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित नए संशोधन के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले को 5 से 10 साल की कैद की सजा हो सकती है, जबकि पुराने बिल में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था। बिल में प्रावधान ये भी है कि अगर पेपर लीक में कोचिंग सेंटर या कोचिंग सेंटर से जुड़ा शिक्षक शामिल पाया गया तो कोचिंग को भी बंद किया जा सकता है। साथ ही पेपर लीक के मामले के तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। उधर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि पेपर लीक पर सरकार की ओर से सख्त कदम उठाया गया और कड़ा कानून लाया गया तो कांग्रेस भी चर्चा में शामिल हो सकती है। हालांकि पेपर लीक को लेकर सरकार को घेर रहा विपक्ष अपने तेवर कम करने को तैयार नहीं है। संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान के इस शोर को गौर से सुनिए। विपक्ष की पूरी ताकत जिस एक मांग पर टिक गई है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हर एक प्रदर्शन, हर एक धरने के बाद राहुल गांधी एक ही सवाल उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा।
8: मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो।
7: एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात कही थी और देर रात वीडियो जारी कर कड़े एक्शन का भरोसा दिया। लेकिन इस भरोसे के बीच ना ही विपक्ष का हंगामा थम रहा है, ना ही छात्रों का प्रदर्शन खत्म होता दिख रहा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल हुआ कि सरकार के नए बिल में कड़े प्रावधान का विपक्ष और प्रदर्शनकारी छात्रों पर क्या असर होगा। क्या नए बिल से हंगामा और विरोध प्रदर्शन शांत होगा? आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पीएम मोदी के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, हटाए गए एनटीए के 47 अफसर, पुलिस एक्शन भी संभव। सूत्रों के अनुसार इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। पेपर लीक पर सख्त कानून का मसौदा कैबिनेट में स्वीकृत, 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान, सोमवार को संसद में पेश हो सकता है संशोधन विधेयक।

पी का डेलीगेशन आज तक से बोले अभिजीत दीप के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ भी कम मंजूर नहीं। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश, सोशल मीडिया पर 2400 घंटे रहेगी निगरानी, ड्रोन सीसीटीवी से पेट्रोलिंग, सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में टीडीपी का आत्मघाती हमला, आर्मी कैंप में ब्लास्ट में 17 जवानों की मौत, दो हमलावर ढेर।

0: ये वक्त वारदात का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई, वो हम आपको बता दें। सोनम वांगचुक ने एक नया वीडियो जारी किया है। उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। सरकार के सामने अपनी मांगे रखी थी। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे थे और गुरुग्राम के, लेकिन नया वीडियो सुनिए पहले आप।
1: 22वें दिन मेरे में थी वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा। आपको नहीं मालूम है दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद, क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फोन करके या पोस्ट दिखा कर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं आपने देखा होगा, क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठ कर डील करना पड़ता? धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं आप में से ज्यादातर पर, क्योंकि फिजिकली लड़ के, झगड़ के, हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती ने।
0: सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया है। वो परेशान हैं क्योंकि उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आपने अपना अनशन खत्म किया है तो क्या डील हुई है, क्या शर्तें मानी गई हैं, क्या बातचीत हुई है, केंद्रीय मंत्रियों के हाथों जूस पीकर आपने अपना अनशन क्यों खत्म किया, और वो उससे आहत हैं, वीडियो जारी किया। देखिए वारदात हमारे साथी शम्स ताहिर खान के साथ।
2: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक सिया और सोनम को छोड़ दें तो हाल के वक्त में जितनी भी पत्नियों ने अपने पति के कत्ल किए हैं, उन सब के कत्ल करने के तरीके और आइडिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर उन्हें यह कातिल आइडिया आता कहाँ से? अब इस सवाल का जवाब तो नहीं मालूम, लेकिन इसी बीच हरियाणा के रेवाड़ी की एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने का जो तरीका अपनाया, वो कातिल आइडिया हाल के वक्त में न इससे पहले कभी देखने को मिला न ही सुनने को।
3: दौर सोशल मीडिया का है और खबरें पत्नी या मंगेतर के हाथों मारे जा रहे पतियों की सुर्खियों में, खासकर जब से पुणे की सिया की कहानी सामने आई, सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड ऐसे वीडियो या रील्स की बाढ़ सी आ गई।
4: मैंने अपने पति को रात में सोते हुए ही हमेशा के लिए सुला दिया।
3: रील बनाने वाले चुन चुन कर ऐसे कातिल कैरेक्टर को एक ही फ्रेम में कैद करने पर तुले हुए हैं। ऐसे ज्यादातर रील या वीडियो में जो चेहरे सबसे नुमाया है वो है मुस्कान, सोनम, निकिता, प्रियंका, सिया और रूबी। बेशक ये सारे वीडियो या रील मजाक में बनाए गए हैं, लेकिन जाने अनजाने इस रील में एक बेहद खास बात छुपी है। इनमें से एक दो को छोड़ दें तो बाकी जितने भी ये चेहरे आप देख रहे हैं उन सब के कत्ल का अंदाज और आइडिया एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। किसी ने कत्ल करने के बाद पति को नीले ड्रम में डाल दिया, किसी ने इंग्लिश स्टाइल में प्रपोज करने के नाम पर जिंदा जला दिया, किसी ने कत्ल के बाद पति को बाथरूम में दफना कर ऊपर टाइल्स लगा दिया, किसी ने सारा ठीकरा चोर के सिर फोड़ कर खुद ही पति को निपटा दिया। बस एक सोनम और सियाही अकेली ऐसी थी जिन्होंने कत्ल का बिल्कुल एक जैसा तरीका अपनाया। पति और मंगेतर को ऊंचाई से खाई में धक्का देने का तरीका, यानी साफ है पहले सोनम ने अपने पति को हनीमून पर धक्का दिया था, इसीलिए कह सकते हैं कि सिया ने अपने मंगेतर केतन को धक्का देने के लिए सोनम के कत्ल के तरीके की कॉपी की। अब जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से पति कत्ल हो रहे हैं, ऐसे में जाहिर है कत्ल के तरीके के आइडिया भी शायद कम पड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि कत्ल के बाद पुलिस से बचने के लिए अब ऐसे पति पत्नी और प्रेमी नए नए आइडिया पर काम करने लगे हैं। इसकी सबसे ताजा मिसाल है हरियाणा के रेवाड़ी की ये तनु। ये वो सबसे ताजा ताजा और नई नई पत्नी है जिसने अपने पति का कत्ल किया है। लेकिन पति का कत्ल करने के लिए इसने जो आइडिया अपनाया, इससे पहले देश में किसी भी पत्नी ने इस आइडिया के साथ कत्ल नहीं किया। हालांकि ऐसे न जाने सैकड़ों हजारों मर्डर केस हुए होंगे जिनमें कत्ल को खुदकुशी दिखाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फॉरेंसिक रिपोर्ट ने आखिर में भेद खोल दिया। लेकिन तनु अपने पति मोनू को इस तरह मारना चाहती थी कि चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसमें कहीं से भी कत्ल की बात आए ही नहीं, मौत बस खुदकुशी ही कहलाए। जानते हैं फिर इसके लिए तनु ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किस आइडिया पर काम किया, तो चलिए बताता हूं। तनु को अपने पति मोनू को ऐसी मौत देनी थी जिससे ये लगे कि उसने पानी में कूदकर खुदकुशी कर ली। अब मोनू को न तो
0: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और वीडियो संदेश जारी किया है। एक संदेश आप कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुन चुके हैं, देख चुके हैं, सुनिए।
5: मौका मिल गया है, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया है, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया है, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका
0: बहुत ही छोटा सा वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद थैंक यू बोलते हुए, बेहद छोटा, कल जो वीडियो मैंने डाला उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने बहुत ही सकारात्मक सुझाव मुझे दिए हैं। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता। पीयूष, क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या समझे हम?
6: इसमें कोई दोहराई नहीं है सगेर की। प्रधानमंत्री का ये अटेम्प्ट है कि जल्द से जल्द यंगस्टर्स तक पहुंचा जाए, यूथ जनरेशन तक पहुंचा जाए, युवाओं तक भी बात पहुंचाया जाए, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है वो और जो छोटे छोटे रील्स हैं, छोटे छोटे चंक्स हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों तक जल्दी पहुंच रहे हैं। तो इस माध्यम से प्रधानमंत्री ने आज कैबिनेट मीटिंग में भी अपने जो सहयोगी हैं, जो उनके कलीग्स हैं, उनसे ये कहा था कि कितने जो है आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हैं और कितने लोग आपको रील्स बनाते हैं। और इसके बाद ये भी कहा गया कि वो ज्यादा इंट्रैक्शन के लिए ये रील्स बनाएं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएं, उन्होंने क्या काम किया उसके बारे में बताएं, और वही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने लगभग एक से डेढ़ मिनट का एक छोटा वीडियो बनाया था और उसको इंस्टाग्राम पर डाला था और फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई थी। और आज उसी बात को जो उसका रिस्पॉन्स आया उसको लेकर प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 1 मिलियन फॉलोवर्स और प्रधानमंत्री के ऐड हुए इंस्टाग्राम में उनके एक छोटे से रील बनाने के बाद। तो उसी लिए प्रधानमंत्री ने थैंक यू फ्रेंड्स का एक मैसेज दिया है और ये मैसेज दरअसल युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। एक चीज और आप नोटिस करेंगे कि अमूमन जो प्रधानमंत्री अपना भाषण शुरू करते हैं तो वो कहते हैं दोस्तों, भाइयों, बहनों, लेकिन अब प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। कल फ्रेंड्स बोला था और आज थैंक यू फ्रेंड्स, यानी सीधा युवा पीढ़ी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश।
0: तो ये युवाओं से कनेक्शन है, युवाओं को थैंक यू है, और ये बेहद संदेश, छोटा वीडियो संदेश है पीयूष, मतलब इसमें कोई बात नहीं है, कोई सलाह नहीं है, कोई कल की बात नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ थैंक यू कहा है और सकारात्मक सुझाव मुझे मिले हैं, इसके अलावा एक बात के अलावा कुछ नहीं, ऐसा क्यों पीयूष?
6: वो इसलिए क्योंकि पिछले, जैसा हमने बताया कि पिछले 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री के 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स ऐड हो गए हैं और उसका बड़ा कारण ये रहा है कि प्रधानमंत्री ने कल एक अपना संदेश फास्टैग को जाने के बाद सरकार ने कही वो छोटे से रील, छोटे चंक के माध्यम से बताया था। प्रधानमंत्री ने भी बताया था कि कैबिनेट इसको लेके फैसले लेने वाला है, तो अपनी बात कम शब्दों में रखी थी और उसका काफी असर होता हुआ दिखा और लोगों ने इस बात को।
0: इसका मतलब ये हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी अपने मंत्रियों से, अपने नेताओं से, कि वो आए, इंस्टाग्राम पर आए, खूब रील्स बनाएं, पोस्ट करें, बताएं, लोगों के बीच जाएं, छात्रों के बीच जाएं, तो क्या अब ये उन्हें भी एक संदेश है कि देखो मैं भी कर रहा हूं?
6: जी बिल्कुल बिल्कुल। आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो सूत्रों ने यह दावा किया कि प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान अपने मंत्रियों से, जो कलीग्स हैं, उनसे बात करते हुए पूछा कि कितने आप लोग जो है वो इंस्टाग्राम पर हैं। और उसके बाद जिस चीज़ का जो रिस्पॉन्स आया उस पर प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये जो सोशल मीडिया है और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से लोगों तक और आसानी तक पहुंचा जा सकता है। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर हम जो धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और जो युवाओं ने अपनी मांग रखी है उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा जो आप वीडियो और ट्वीट देखेंगे वो इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स पर है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो या फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर भी, छोटे छोटे फ्रेंड्स का बिजनेस है। तो कोशिश यही की जा रही प्रधानमंत्री के द्वारा कि अपने,
0: पीयूष एक बात आपको और बता दें, आप अपनी बात पूरी जरूर कीजिएगा लेकिन अपने दर्शकों को भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बहुत छोटा सा थैंक यू वीडियो है ये 8 मिनट में 25 लाख लोग इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। इंस्टा पर जबरदस्त देखा गया है सिर्फ 8 मिनट, 8 मिनट हुए हैं अभी। पीयूष से हम बात कर रहे हैं, आपको ये वीडियो आज तक पर हमने भी दिखाया और उसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच 8 से 9 मिनट में, एक आध मिनट और मान लीजिए आप जब से हम बात कर रहे हैं आपसे हो गया होगा, तो इन 8-9 मिनटों में 25 लाख लोगों ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो देखा है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से, अपने नेताओं से ये अपील की है। उन्होंने कहा है कि आप भी रील्स बनाइए, वीडियोस बनाइए, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाइए, सरकार के अपने कामों को लोगों को बताइए, छात्रों को बताइए आप क्या काम कर रहे हैं, आप जमाने के साथ चलिए, आप छात्रों के साथ चलिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों के आगे निकलकर फ्रेंड्स यानी कि वो छात्रों को भी यहां संबोधित कर रहे हैं। तो क्या पीयूष हम ये माने कि प्रधानमंत्री छात्रों से ही बात कर रहे हैं?
6: जी बिल्कुल, सीधा संवाद छात्रों से, सीधा संवाद देश की युवा पीढ़ी से। और जैसा आपने खुद बताया 2.5 मिलियन व्यूज इन 8 मिनट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप सोचिए कि कल प्रधानमंत्री ने जब अपना मैसेज इंस्टाग्राम पर दिया था जिसमें उन्होंने फास्टे फूड की बात की थी, तो ओवरनाइट यानी सिर्फ रात रात में ही 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स प्रधानमंत्री के बढ़ गए थे। यानी कि युवा जो है इनके संदेश को, प्रधानमंत्री के संदेश को बहुत सकारात्मक तौर पर देख रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है संयोग की
0: जी।
6: तो देश के नेता का, देश के प्रधानमंत्री का मैसेज है, उनकी बात है, वो युवा पीढ़ी तक पहुंचे। एक कारण एक और से बहुत बड़ा है कि इंस्टाग्राम के माध्यम से कुछ गलत बातें, अफवाहें और लोगों को भड़काने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन अब किसी माध्यम का बेहतर उपयोग प्रधानमंत्री करते हुए।
0: अच्छा, पीयूष ये बताइए
6: जी,
0: पीयूष देखिए आपसे हम बात कर रहे हैं, 2 मिनट हमने आपसे बात की और 8 मिनट की बात हमने कही थी, 8 मिनट में 25 लाख थे, 10 मिनट अभी हुए हैं इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर डाले हुए और ये संख्या कहीं ज्यादा हो गई है, 55 लाख। आप अंदाजा लगाइए 2 मिनट के अंदर 25 लाख से ज्यादा, या आप यूं कह सकते हैं कि 30 लाख लोगों ने सिर्फ 2 मिनट में और ये वीडियो देख लिया है। और इसकी संख्या 10 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बेहद छोटे से वीडियो संदेश जिसमें उन्होंने थैंक यू बोला है, छात्रों को थैंक यू बोला है और जिन लोगों ने उन्हें इस वीडियो पर रिएक्ट किया जो कल उन्होंने बनाया था और उस पर अपने कमेंट्स दिए हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि आपके सकारात्मक सुझाव मुझे मिले हैं और आपके इन सकारात्मक सुझावों के लिए बहुत धन्यवाद। कल देर रात मैंने आपसे बात की थी और उसके बाद पीयूष आप सोचिए ये जिस तेजी से वायरल हो रहा है, 10 मिनट में 55 लाख, इसे हम क्या समझें? पीयूष
6: देखिए, सीधा सीधा संदेश यही है कि युवा लगातार प्रधानमंत्री के मैसेज को देख रहा है, उनकी बात को समझ रहा है और जो सही बात है जो सरकार पूरे मामले के लेकर कदम उठा रही है उसको भी जानने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जरूर कोशिश की गई है कि नीट के पत्र को लेकर कुछ भ्रांतियां चलाई जाए, देश के खिलाफ बात की जाए, सरकार पर जो सरकार कदम उठा रही है वो बातें लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन अब इस माध्यम के इंस्टाग्राम और छोटे रील्स और टाइम्स के माध्यम से सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, अपनी बात युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार इसके व्यूज बढ़ रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 10 मिनट के अंदर 55 लाख लोगों का देखना और इसी के साथ साथ फॉलोअर्स का जो लगातार बढ़ना ये दर्शाता है कि कैसे प्रधानमंत्री के मैसेज को न सिर्फ बहुत पॉजिटिव तौर पर रिसीव किया जा रहा है बल्कि उनको और जानने के लिए लगातार युवा उनको फॉलो कर रहा है, उनको सब्सक्राइब कर रहा है ताकि उनसे इंटरेक्ट कर सके, उनसे आगे अपनी बात और हो सके। सीधा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री युवा पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। दरअसल आज के टाइम पर ये भी कहा जाता है कि लोग जो है वो छोटे छोटे रील्स और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स पर खबर भी देख लेते हैं, उस पर जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। तो अब सीधी साफ जानकारी आप प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम हैंडल के पास प्राप्त कर सकते हैं, क्या सरकार ने काम किए, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, क्या पॉलिसी रही, किस विभाग ने क्या काम किया, उस सारा इस तरह के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंच सकती है। और इसी माध्यम का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी के साथ लगातार उसका कनेक्शन बना दिया।
0: आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पीयूष, अब ये सीधा संवाद है, यहाँ बीच में कोई नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे युवाओं के बीच पहुंच रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कल एक वीडियो संदेश डाला और आज थैंक यू बोलते हुए उस वीडियो संदेश पर कि उसका इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव रिजल्ट उन्हें देखने को मिला कि उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, बहुत ही हमें लगता है 30 सेकंड 40 सेकंड का ये वीडियो है और जिसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि कल मैंने देर रात आपको एक वीडियो शेयर किया था, आपसे बात करने का मुझे मौका मिला था और इस दौरान आपके मेरे वीडियो पर आपने बहुत सारे सकारात्मक सुझाव हमें दिए हैं और इन सुझावों के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल आधी रात वाले इंस्टाग्राम वीडियो के पीयूष, राजनीतिक संकेत क्या है?
6: देखिए, इस वीडियो के राजनीतिक संकेत ये हैं कि जो सरकार ने नीट रिपब्लिक होने के बाद काम किए, उसके बाद सरकार ने जो फास्टेस्ट कोर्ट बनाने की अनाउंसमेंट की, अवमन क्या होता था सही, क्योंकि हमको दरअसल जानकारियां मिलती थी, प्रेस रिलीज आती थी, पीआईबी सरकारी तंत्र उसके माध्यम से पता चलता था, उस पर खबरें होती थी, खबरें छपती थी, लोगों तक बात पहुंचती थी। अब इसका राजनीतिक फायदा हमको ये नजर आ रहा है और दिख भी रहा है कि प्रधानमंत्री ने वो सारी चीजें बीच से हटा दिए, वो सीधा युवाओं तक इन छोटे रिलीज तक पहुंच रहे हैं और इससे फायदा जरूर ये होगा कि जो सही बात और जो कदम सरकार उठा रही है वो सीधे सीधे युवाओं के फोन में छोटी सी वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगा, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर भी जब छोटे छोटे चंक्स आते हैं तो आजकल युवा पीढ़ी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बड़ा सा कोई वीडियो देखे, तो इसके चंक्स के माध्यम से वो प्राप्त कर लेंगे और प्रधानमंत्री ने इसका सीधा उपयोग करते हुए अपनी बात युवाओं तक पहुंचाने का एक माध्यम अब निकला है।
0: पीयूष, हम लगातार आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बार हम फिर से अपने दर्शकों को, आज तक जिन लोगों ने अभी खोला है टीवी, उन्हें हम ये बता दें कि ये वीडियो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत छोटा सा इंस्टाग्राम पर आया है, अभी मुश्किल से 10-12 मिनट हो गए होंगे, 11-12 मिनट हुए हैं, 55 लाख से ज्यादा व्यूज उसे मिल चुके हैं, यानी कि जबरदस्त वायरल हो रहा है। हम वो वीडियो सुनाएं, उससे पहले बस 30 सेकंड में आपको बता दें कि कल रात भी 11:52 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वीडियो अपलोड किया था और आज भी देर रात, इसका मतलब भी समझेंगे, लेकिन पहले वो सुनिए पूरा का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो।
5: जो थैंक यू दोस्तों, अर्थ आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। विभागों को बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, अर्थ आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, अर्थ आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार,
0: देखिए मुश्किल से 7-8 छोटे छोटे सेंटेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कहे हैं। हम पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता से बात करें, वो लगातार हमारे साथ हैं, उससे पहले हम आपको कुछ बातें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद दिला दें। ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह का वीडियो संदेश आया, पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर राष्ट्र को संबोधित किया है, और चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे कोरोना के दौरान दिए गए उनके संबोधन हो, या परिसीमन विधेयक हो, देर रात वो बोलते हुए नजर आए, लेकिन ये बेहद, आज का जो वीडियो है बेहद छोटा सा है, थैंक यू बोलते हुए छोटे छोटे सेंटेंस है, भाषा बिल्कुल अलग है, अंग्रेजी के सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया, ऐसा लग रहा है कि यूथ को वो यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, और यूट्यूब इंस्टा जो सोशल मीडिया हैं वहाँ देखिए दोनों वर्टिकल फॉर्मेट में शूट किए गए ये वीडियो हैं। मित्रों की जगह उन्होंने फ्रेंड्स शब्द कहा है। इंस्टाग्राम पर ये वीडियो 55 लाख 10 मिनट में 55 लाख व्यूज ले चुका था, वर्टिकल फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया गया है, दोनों कल का वीडियो आज का वीडियो ये दोनों आप यहां पर देख रहे हैं। इस वीडियो का बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत भी है, संदेश भी है, युवाओं से कनेक्ट भी है, और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से भी कहा था, अपने नेताओं से भी कहा था, पहले भी वो घोषणाएं करते रहे हैं, सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए अपने सांसदों से भी पहले अपील कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा था कि आप वीडियोज बनाएं, इंस्टाग्राम पर आए, रील्स बनाएं, एक्टिव हो जाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश काफी प्रभावी हो रहा है, युवाओं के बीच पहुंच रहा है, और लाखों लाख व्यूज इसे लगातार मिल रहे हैं। मुश्किल से अभी हम कह सकते हैं कि 14-15 मिनट हुए होंगे इससे बेहद छोटे से एक शॉर्ट वीडियो को डालने पर, और 55 लाख क्रॉस कर चुका है, 55 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। हम रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, मुंबई मेट्रो लेकर कुछ ही पलों में दोबारा आपके साथ होंगे। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।

0: पीएम मोदी ने आज फिर से जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद। कल देर रात भी जारी किया था एक वीडियो संदेश। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, बोले सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार। पीएम मोदी के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, हटाए गए एनटीए के 47 अफसर, पुलिस एक्शन संभव, सूत्रों के अनुसार इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। पेपर लीक पर सख्त कानून का मसौदा कैबिनेट में स्वीकृत, 10 वर्ष तक सजा, 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान, सोमवार को संसद में पेश हो सकता है संशोधन विधेयक। कल दोपहर 3:30 बजे नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिलेगा सीजेपी डेलीगेशन, आज तक से बोले अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई मेट्रो की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले आज फिर से एक वीडियो संदेश जारी किया है और लोगों का आभार व्यक्त किया है। कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव के लिए कहा है धन्यवाद, कहा कल मैंने एक वीडियो जारी किया था, आपसे बात की थी, आपने जबरदस्त उस पर मुझे सुझाव दिए हैं, आपके सकारात्मक सुझाव मुझे मिले हैं और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आइए सुनवाते हैं आप।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी, ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद छोटा सा वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्टिकल फॉर्मेट में ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इंस्टाग्राम का इस्तेमाल इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कर रहे हैं क्योंकि जितने भी छात्र जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, बल्कि वो सिर्फ नहीं, देश भर के छात्र इंस्टाग्राम पर हैं। इंस्टाग्राम युवाओं का प्लेटफॉर्म है, छात्रों का प्लेटफॉर्म है, कौन ऐसा है जो आज इंस्टाग्राम पर नहीं है? ये सिर्फ प्रदर्शनकारियों का नहीं है, बल्कि हमारे देश में जितने भी युवा हैं, छात्र हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम का जबरदस्त इस्तेमाल किया है और अपना ये वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें छात्रों की चिंता है और उन्होंने छात्रों की बात को बेहद बेहद गंभीरता से लिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले सोनम वांगचुक ने भी वीडियो संदेश जारी किया। प्रधानमंत्री से पहले अनशन तोड़ने पर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक ने निशाना साधा और कहा कि दिल्ली की गर्मी में 26 दिन तक अनशन करने के बाद भी अगर मुझे सफाई देनी पड़ रही है कि मेरी सरकार से क्या डील हुई, तो ये शर्म की बात है। सुनिए, इनका वीडियो भी आप सुनिए और देखिए।
3: दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूं। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था, मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है, बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखा कर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं आपने देखा होगा, क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठ कर डील करना पड़ता? धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं।
0: मुंबई में भी आज कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक मामले में प्रदर्शन किया। उनके समर्थन में शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और कांग्रेस की यूथ विंग ने भी सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़ी कार्रवाई के विश्वास और भरोसे के बाद नीट परीक्षा कराने वाली एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि सूत्रों से हमें यह खबर मिली है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे।
4: मुंबई में पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन को शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और कांग्रेस की यूथ विंग का भी जबरदस्त समर्थन मिला।
5: जय भवानी, जय भवानी, वंदे, वंदे।
4: शिवाजी पार्क में मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा के पास मंच बनाया गया। पार्क में आक्रोशित छात्रों के साथ हजारों लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। इस प्रदर्शन की अगुवाई उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे ने की। इस दौरान राज ठाकरे के बेटे अमित भी मौजूद रहे। जूनियर ठाकरे छात्रों में जोश भरते नजर आए।
6: कोई भी आप किसी को धमकाएगा नहीं, नहीं तो हम कल जिसने उस महिला को छेड़ा है, हाथ लगाया, उसके घर जाएंगे। वर्दी का काम होता है तिरंगे का रक्षण करना। जिस जिसके हाथ में तिरंगा है, देश प्रेम है, कोई किसी को लाठी नहीं मारेगा। भारत माता की, वंदे, वंदे।
7: अरे जंतर मंतर में इंटरनेट बंद है, उनका वीडियो कैसे देखेंगे? सब जगह तो इंटरनेट बंद करके रखा है, कैसे देखेंगे पीएम का वीडियो? नक्कीच आणि अजून आंदोलनाला जास्ती प्रतिसाद मिळत आहे जर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा नाही झाला उद्यापर्यंत। तुम्ही बघाल मुंबईमध्ये ठिकठिकाणी महाराष्ट्रभरात आंदोलन होते।
4: प्रदर्शन में शामिल छात्र कई अनोखे पोस्टर लेकर पहुंचे। ऐसे ही पोस्टर को देखिए जिसमें धुरंधर फिल्म के डायलॉग की तर्ज पर लिखा था, छात्र घायल हैं, इसीलिए सरकार के लिए घातक है।
8: एक महीना निकल गया, सरकार अब जागी है, लेकिन जब भी जागी है तो सरकार ने ये तय करना चाहिए, इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। ये देश का भवितव्य है, देश का भविष्य, जिनको लग रहा है हमारा भविष्य पूरे अंधकार में है, उनको आश्वस्त करना जरूरी है। उनके लिए सिर्फ आश्वस्त करने से ही नहीं चलेगा कि उनके लिए क्या हो रहा है, ये उनके सामने आना चाहिए। उनके साथ, ये बच्चों के साथ, उनके माता पिता है, पूरा परिवार है, पूरा देश है।
4: दादर के शिवाजी पार्क में उद्धव और आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में सामूहिक राष्ट्रगान गाया गया। इस कार्यक्रम में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा भी शामिल हुए। सोशल मीडिया पर राष्ट्रगान कार्यक्रम में पहुंचने की अपील करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रणय अहिरे को मुंबई पुलिस ने घर जाकर हिरासत में ले लिया।
9: पर आज ऐसे जो मेरे साथ हुआ और अन्य स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ, ऐसा फील हो रहा है कि डेमोक्रेसी कहाँ पर है। क्योंकि मैं सो रहा था, सुबह के 8 बजे के करीब सो रहा था, तो मेरे घर पे पुलिस आ जाती है। मेरी मॉम पैनिक हो जाती है कि अचानक मेरे घर पे पुलिस कैसे आ गए, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है पुलिस स्टेशन में जाने का और ये सब। तो माई मॉम गॉट स्कैर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर बाद में मेरी माँ मुझे उठाने के लिए आ गई कि डर डर के मुझे उठा रही थी कि ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार घर वालों के अंदर बच्चों के अंदर खौफ फैलाना चाहती है क्या। सोते हुए मुझे उठाया गया, मुझे वैसे ही पुलिस स्टेशन में लेके गए।
4: जिसके बाद एमएनएस नेता संदीप देशपांडे उन्हें छुड़वाने वडाला पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने पूछा कि क्या राष्ट्रगान गाने के लिए भी पुलिस की मंजूरी लेनी होगी।
10: सीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को मुंबई में डिटेन कर लिया गया था और यहाँ वडाला पुलिस स्टेशन में उनको रखा गया था। अब पुलिस स्टेशन में यहाँ पर जब उनके भी कार्यकर्ता आए, लेकिन साथ ही एमएनएस के नेता भी आए, उनसे जानते हैं संदीप देशपांडे अब क्यों आए यहाँ।
11: मुझे सुबह प्रणय गुडे

0: ये अभी तक तो हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ऐसे ही एक पोस्ट उन्होंने आज डाली कि शाम को 4 बजे जो जनगणमन का प्रोग्राम हमने आयोजित किया
1: नेशनल एंथम
0: का, तो उसके लिए सब लोग आओ। अभी ये पोस्ट डालना कोई गुनाह है क्या है? तो यही पोस्ट उन्होंने डाली थी, तो उसके लिए उनको लेके आए इधर। तो मेरा पुलिस स्टेशन से यही सवाल था कि क्या अब लोकशाही खत्म हो चुकी है?
2: वहीं मुंबई के दादर में प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस वाले पर महिला आंदोलनकारी से छेड़खानी का आरोप लग रहा है। वायरल वीडियो पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने पुलिस कमिश्नर से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि मुंबई पुलिस ने सफाई में कहा है कि इस वीडियो को गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है, जबकि पुलिस लड़की के आगे खड़े पुरुष प्रदर्शनकारी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मुंबई के चेंबूर में सीजेपी के समर्थन में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रखने की हुंकार भरी।
3: मैं टेलर की बेटी हूँ और ये जो घोटाला हो रहा है, मुझे भी आगे जाके नीट देनी है। मेरे माँ बाप हमेशा टेंशन में रहते हैं कि कहीं मैं ऐसा गलत कदम ना उठा लूंगी आगे में। वो मुझे इतना पढ़ाते, इतना लिखाते, कर्ज लेकर पढ़ाते वो मुझे। मैं आज सरकारी स्कूल की स्टूडेंट हूँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रही हूँ, और ये जो मोदी जी और यहाँ की गवर्नमेंट जो ये घोटाला कर रही है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ये जो कर रहे हैं, नीट पेपर लीक कर रहे, पहले नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद री नीट भी लीक हुआ, वो क्यों नहीं कर पा रहे, इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहे? हमारी जिंदगी क्या मामूली जिंदगी है? वो 30 बच्चों की तो जिंदगी थी, वो क्या मामूली जिंदगी है? यहाँ पे एक इंसान की जिंदगी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और वो 30 बच्चों की जान लेकर के बैठे।
2: इधर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्रियों की जगह अगर वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के हाथ से अनशन तोड़ते तो उनका कद और बढ़ जाता।
4: विनती इसलिए करते थे कि हजारों की लाखों की संख्या में बच्चे आए, पूरा विपक्ष सड़क पर उतरा, मोदी जी के ऑफिशियल रेसिडेंस को भी राहुल गांधी के नेतृत्व में घेर लिया, सबको अरेस्ट किया। कल रात को पूरा विपक्ष राजघाट पर गया, वहां भी आंदोलन हो गया। मुंबई जैसे शहर में आंदोलन हो रहा है, आज भी आदित्य ठाकरे जी आंदोलन करेंगे, परसों रविवार को राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का बड़ा आंदोलन चलेगा। हम सभी ने इस आंदोलन को देश भर में ताकत दी है, हम सभी ने। वो बच्ची नेहा जिसने आपके साथ 20-22 दिन तक उसी मंच पर अनशन किया है, ऐसे किसी एक के हाथ से अगर आप अनशन छोड़ देते तो आप ज्यादा तेजस्वी हो जाते।
5: देखिए, देश की जो युवा है वो वर्तमान है, भविष्य नहीं। उन्होंने इश्यूज रेज किया, गवर्नमेंट ने डायलॉग किया, पॉलिसी सॉल्यूशंस आते हैं पार्लियामेंट और कोर्ट्स में। जब कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज उठाती है, साइंटिस्ट हो, गवर्नमेंट हो, लोकल रिप्रेजेंटेटिव, सभी साथ में बैठ के एक लीगल लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन निकाले तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बच्चों के एक एक मांग का ना सिर्फ सुधार लेकिन सॉल्यूशन भी। तो ये प्रेशर जब बनता है तो वो संवैधानिक रूप से पिटिशनर्स हो या कॉलेजेस में डिबेट्स हो या फिर मॉनसून सत्र में पार्लियामेंट में चर्चा हो, चर्चा संवाद से ही सॉल्यूशंस। देश के हर एक नागरिक खुश हैं कि सोनम वांगचुक ने उनके फास्ट को खत्म किया है और एक टाइमलाइन के निमित्त ये सभी मुद्दे का समाधान जरूर मिलेगा।
2: छात्र आंदोलन पर जहां विपक्ष बीजेपी सरकार को नाकाम बताते हुए निशाना साध रहा है, वहीं बीजेपी का आरोप है कि मूर्छित से पड़े विपक्ष को छात्र आंदोलन में अपने लिए संजीवनी नजर आ रही है, इसीलिए बीजेपी छात्रों के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े कर रही है। आज तक ब्यूरो।
6: मुंबई के साथ पुणे में भी कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक केस में जबरदस्त प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट और लाल महल इलाके में हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। नीट पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग दोहराई।

0: सरकार सख्त कानून का भरोसा दे रही है तो वहीं सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। ऐसे में अब कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रुख है? सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से हमारे साथी साहिल जोशी ने बात की।
1: पहला सवाल यही है कि आंदोलन के मुद्दे अब क्या है? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, फिलहाल तो सरकार मना कर रही है, लेकिन अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या यह आंदोलन थमेगा?
2: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो ये था कि जिन बच्चों ने सुसाइड करी उनके परिवारों को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके साथ 20 जुलाई को जो हुआ, जिस ब्रूटैलिटी के साथ पुलिस ने बच्चों के सर फोड़े, लड़कियों को पीटा है, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक और डिमांड ऐड करी है कि जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, एक तो उसकी वजह से पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ में जिन बच्चों के ऊपर झूठे केसेस लगाकर उनको डिटेन या अरेस्ट किया गया था वो सारे केसेस वापस लिए जाने चाहिए।
1: लेकिन अब विपक्षी पार्टियां भी आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता आपके यहां पर दिखे, राहुल गांधी वहां पर एक अलग प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं?
2: मैं सभी विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो उन सभी ने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को बाजू में रखकर स्टूडेंट्स के साथ एक साथ आए, और जो उन्होंने समझा कि जो देश का मुद्दा है, जो भविष्य का मुद्दा है इस देश का, उसके लिए वो सब साथ में आकर हमारे साथ खड़े रहे, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: लेकिन सोनम वांगचुक अब जो है उन्होंने तो अपना अनशन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कहा है कि वो मांग उन्होंने पुश नहीं की, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने वो मांग पुश नहीं की है, तो क्या अब आपके रास्ते अलग हो चुके हैं? उस पर आपका क्या कहेंगे आप?
2: इससे मुझे बहुत ही राहत और खुशी मिली है। हम खुद सोनम सर से बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, आगे का प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और कल जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वॉज वेरी रिलीव्ड, और बहुत जरूरी भी था, क्योंकि सोनम सर की जान जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए। और 26 दिनों तक उन्होंने जो दर्द सहा है, जो सैक्रिफाइस किया है अपने हेल्थ का, आई थिंक इससे ज्यादा कोई और कुछ कर नहीं सकता था इस मूवमेंट के लिए। अपनी जान को एक तरीके से दांव पर लगाकर सोनम सर ने इस देश की जनता को जागरूक किया है।
1: ठीक है, लेकिन आगे का प्लान क्या, क्योंकि आंदोलन तो पूरा पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आसपास नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या प्लान होगा? क्या कुछ और भी मुद्दे हैं उसको भी आप उठाने की कोशिश करेंगे?
2: अभी तो ये आंदोलन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, और मुझे लगता है इसमें सरकार की भी भलाई है कि जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो आज जो देश में लाखों के नंबर्स में स्टूडेंट्स और युवा सड़कों पर उतरे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। तो सरकार की भलाई भी इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए।
1: लेकिन 2 राउंड आपकी बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ में, आपका प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलकर आया हुआ है, आज भी जो बातचीत हुई है क्या आप उससे संतुष्ट है? क्या
2: संतुष्ट हूँ ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी जस्ट डायलॉग शुरू ही हुआ है। मोस्टली उन्होंने कहा कि वो 2 डिमांड्स पर अग्री कर रहे हैं, बट उस पर भी उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई दिया नहीं है। उन्होंने कल फिर से डायलॉग के लिए बुलाया तो हम फिर से डायलॉग के लिए जाएंगे, बट हमारी प्राइमरी डिमांड जो है उससे हम पीछे नहीं हटने वाले, दैट इज द रिजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर।
1: लेकिन एक और इस बीच जो चीज हुई है वो एजुकेशन सेक्रेटरी जो है उनका तबादला कर दिया गया, उनके जगह पर 2 नए एजुकेशन सेक्रेटरी आएंगे, एक हायर एजुकेशन के लिए, एक प्राइमरी एजुकेशन है और बाकी इसके लिए आएंगे। तो अब आप करप्शन का मुद्दा उठा रहे, कह रहे हैं कि भाई उनमें जो एक सेक्रेटरी है वो करप्शन में लिप्त है, ये मुद्दा आप कहां से उठा रहे? क्या यही मुद्दा रहेगा आप इसके आगे?
2: क्योंकि मुझे पता चला है कि उनके ऊपर ऑलरेडी करप्शन के बहुत सारे एलिगेशन है, एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उन्होंने करप्शन किया हुआ था, तो एक तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है, करप्ट लोगों को ये सरकार प्रमोट कर रही है, तो ये क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं कि कॉन्क्रीट एक्शन ले लो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, आप जो कर रहे हो वो ये करोगे और करप्ट लोगों को प्रमोट करो, सो दिस इज नॉट राइट।
0: करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिस पर हंगामा हो गया। क्या है पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं।

0: देखिए 13 साई फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता संजय मिश्रा साई बाबा के किरदार में नजर आ रहे हैं, लेकिन शूटिंग के दौरान संजय मिश्रा साई बाबा की समाधि के चबूतरे पर बैठे, जो शूटिंग का हिस्सा नहीं था, जिस पर साई बाबा मंदिर ट्रस्ट के साथ शिरडी के लोगों ने कड़ा एतराज जताया है। कहा जा रहा है कि साई बाबा की समाधि पर पुजारी के अलावा कोई नहीं बैठ सकता, यहां तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इस चबूतरे पर नहीं बैठ सकते। ऐसे में संजय मिश्रा का वहां बैठना विवाद का विषय बन गया।
1: कल जो प्रकार शिरडी में हुआ है, बाबा के पैरों के पास कोई कलाकार आके बैठा है और एक बार ने बार बार बैठा है, जहां पे भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठ सकता, भारत का राष्ट्रपति नहीं बैठ सकता, वहां पे ऐसी कौन सी वजह आ गई और उसके वजह से उनको वहां पे बिठाया गया। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा था, गांव में इतना बवाल हुआ और इसके वजह से गार्डियन मिनिस्टर को संयुक्तिक बैठक बुलानी पड़ी और उस संयुक्तिक बैठक में गार्डियन मिनिस्टर को आदेश देने पड़े क्या इस चीज की पूरी इंक्वायरी हो और इंक्वायरी का पूरा अहवाल जनता के सामने चले जाए। अगर ये लोकल आदमी कोई करता तो उसके ऊपर ये मंदिर वाले कुछ FIR दर्ज कर सकते थे।
0: शिरडी साईं बाबा मंदिर में ये विवाद 22 जुलाई की दोपहर 3:30 बजे हुआ, जिसके बाद शिरडी के हजारों लोगों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। मामला बढ़ा तो अहिल्यानगर जिले के संरक्षक मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल को मंदिर पहुंचना पड़ा। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जांच के आदेश दिए।
2: घटना जो है दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना तो नहीं होनी चाहिए, लोगों का काफी रोष है उसके बारे में। संस्था के सीओ ने चलते उसका अभी पूरी जांच करने के आदेश दिए हैं। जो लोग उसमें अगर शामिल हैं, लोगों ने उसमें वहाँ रहते हुए उन्होंने कार्रवाई, उन्होंने वो जो बात हुई है उसको रोकने की आवश्यकता थी। फिर भी अगले आगे ऐसी घटना न होए, इसकी भी अभी कुछ हम नियमावली कर रहे हैं और जो घटना हुई है उसकी भी जांच के आदेश दिए।
0: साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के सीईओ ने भी कहा है कि यह घटना जानबूझकर नहीं हुई, गलती से हुई है, इसीलिए फिल्म निर्देशक को विवादित सीन फिल्म से हटाने के निर्देश दिए गए।
3: 13 साई चित्रपट का शूटिंग जो है वो शिरडी में चालू था। इस शूटिंग के दरमियान मंदिर में जब शूटिंग चालू थी तो चित्रपट के जो कलाकार जो है मिश्रा जी, वो गलती से जो है, जानबूझ के नहीं लेकिन गलती से जो है, वो समाधि के ऊपर बैठे थे। तो वो सीन जब हमें ध्यान में आया तो उनके साथ और जो डायरेक्टर जो है उनको बुला के वो सीन जो है वो निकला है और उन्होंने जो है वो रिटर्न में भी दे रहे हैं, वो गलती से हो गया करके। वो सीन भी जो है वो कभी उनके जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दी थी उसमें नहीं था, लेकिन गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं हो।
0: अभिनेता संजय मिश्रा भी मान रहे हैं कि उनसे अनजाने में गलती हुई है, इसलिए विवाद पर विराम लगना चाहिए। नितिन मिराणे, शिरडी आज तक।
4: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, बोले सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, हटाए गए एनटीए के 47 अधिकारी, पुलिस एक्शन संभव, सूत्रों के अनुसार इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। आज दोपहर 3:30 नड्डा और जितेंद्र सिंह से फिर मिलेगा सीजेपी का डेलीगेशन। आजतक से बोले अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़ी स्थिति, अहमदाबाद सूरत में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया, असम में 61 लोगों की मौत।

0: रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। स्वागत है आपका। मध्य रात्रि के 12 बजने वाले हैं और ये समय है देश और दुनिया की 100 महत्वपूर्ण खबरों का। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कल के वीडियो संदेश पर इस वीडियो में आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे कल के वीडियो संदेश पर आपके सकारात्मक सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो के बाद इसमें उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवा।
1: थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: आप इस वीडियो को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्टिकल फॉर्मेट में ये वीडियो बनाया है, बिल्कुल जैसे आम इंस्टाग्राम यूज करने वाले आप लोग बनाते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, वो बड़ी खबर ये है कि कल जो वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। 24 घंटों में इंस्टाग्राम रील को 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रील, प्रधानमंत्री की रील ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखे जाने का एक रिकॉर्ड बनाया है। और इंस्टाग्राम पर अभी तक ये सबसे ज्यादा देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में किसी भी वीडियो को 24 घंटे में 30 करोड़ से अधिक लोगों ने नहीं देखा है जिस वीडियो को देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का वीडियो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ने बनाया वो भी सिर्फ 10 मिनट में 55 लाख व्यूज को क्रॉस कर गया था। और अगर अब चेक किया जाए तो वो भी लाखों लाख लोगों तक पहुंच रहा है। एकदम युवाओं से, यूथ से, जेंजी से कनेक्ट करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आइडिया। इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में बना रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से जिससे एक आम इंस्टाग्राम यूजर वीडियो बनाता है, बिल्कुल उसी तरह से। और वर्ल्ड रिकॉर्ड, देश और दुनिया की 100 महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाते हैं नॉनस्टॉप 100 में। Presented.

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, दो बड़े निर्णय पर मुहर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। केंद्र सरकार के कर्नाटक आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात, 1264 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को दी स्वीकृति। कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच बल्लारी गुंतकल रेल नेटवर्क पर जल्द बिछाई जाएगी तीसरी और चौथी लाइन, इससे 99 गांवों की रेल कनेक्टिविटी होगी बेहतर। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, बल्लारी गुंतकल खंड पर डबल रेल लाइन से कर्नाटक आंध्र में संपर्क और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को पीएम की सलाह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहिए, केंद्र के कामों पर रील बनाइए, पोस्ट कीजिए, युवाओं से जुड़िए। पीएम मोदी के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, हटाए गए एनटीए के 47 अफसर, पुलिस कार्रवाई भी है संभव। शिक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव, एनटीए ने भर्ती के लिए जारी किया विज्ञापन, 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर, 16 युवा प्रोफेशनल्स की होगी भर्ती। पेपर लीक पर सख्त कानून का मसौदा कैबिनेट में स्वीकृत, 10 वर्ष तक सजा, 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान, सोमवार को हो सकता है पेश संशोधन विधेयक। सूत्रों के हवाले से मिली खबर, इस्तीफा नहीं देंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूरी पार्टी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी। सरकार की दलील, इस्तीफा देने का मतलब जिम्मेदारी से भागना है, व्यवस्था में खामियों का जल्द हम समाधान करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन के मामले में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सोमवार को होगी सुनवाई। पेपर लीक के विरोध में आज कांग्रेस का देशव्यापी मार्च, सभी को शामिल होने की अपील। सरकार के सामने सीजेपी ने रखी 3 मांगे, बोले पीड़ितों को मुआवजा, छात्रों से केस वापस लेने पर सहमति, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विचार, आज आएगा सरकार का जवाब। जेपी नड्डा बोले, सीजेपी ने 3 मांगे रखी, 5 सुझाव दिए, आंतरिक चर्चा करने के बाद सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ आज एक और हम बैठक करेंगे। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर सीजेपी का बड़ा ऐलान, अभिजीत दीप के बोले, सबूत जुटाने, पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए लॉन्च होगी वेबसाइट, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर हम मानेंगे नहीं। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए बड़ा एक्शन लिया, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। दिल्ली पुलिस की सख्त चेतावनी, जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर अफवाहें न फैलाएं, अगर किया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र पर बरसी ममता बनर्जी, एक्स पर पोस्ट किया, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए इतनी बेताब क्यों है सरकार। राहुल का हमला, बोले धर्मेंद्र प्रधान एक आपराधिक शिक्षा मंत्री, बर्बाद कर दी देश की शिक्षा व्यवस्था, उनके कारण हजारों छात्र सड़क पर, दे इस्तीफा। पैलेट गन से घायल छात्र को सामने लेकर आए राहुल, बोला युवक ने गवाई अपनी एक आंख, बंद हो युवाओं से मारपीट, सरकार ने सभी मांगे पूरी करने की मांग की। जंतर मंतर प्रदर्शन पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान, बोले विदेशी शक्तियों के इशारे पर जंतर मंतर पर हो रहा है प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामले पर शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस एक साथ, आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे ने शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली निकाली। मुंबई में सीजेपी प्रदर्शन को भारी समर्थन, आजाद मैदान समेत कई जगहों पर जुटे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में आगामी फिल्म 13 साईं की शूटिंग, अभिनेता संजय मिश्रा के समाधि चबूतरे पर बैठने का वीडियो सामने आने पर भारी विवाद। शिरडी के लोगों ने इस मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की, हंगामा किया। अहिल्याबाई नगर जिले के संरक्षक मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल मंदिर पहुंचे, घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा, विधानसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी। सीएम योगी ने यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, सुरक्षा सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता बताई। सीएम योगी के पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर 2400 घंटे रहेगी निगरानी, ड्रोन सीसीटीवी से होगी पेट्रोलिंग, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
चढ़ावा चोरी पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर जी का आरोप, श्री राम मंदिर में चोरी नहीं दलाली और कमीशन खोरी भी हुई, एसआईटी जांच पर सवाल। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी कार्रवाई के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, धक्का मुक्की के दौरान इंस्पेक्टर ने निकाली पिस्टल, वीडियो वायरल, केस दर्ज। इस बार सहारनपुर में कांवड़ यात्रा पर एटीएस का पहरा, तीन कंपनी पीएसी आरपीएफ के साथ सादे कपड़ों में तैनात रहेगी पुलिस। अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं। धार भूशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड के बोकारो बाल सुधार गृह में फ्लू का प्रकोप, 20 बाल बंदी संक्रमित। बिहार सरकार ने 19 खिलाड़ियों को दी नौकरी की सौगात, सीएम सम्राट चौधरी ने बांटे नियुक्ति पत्र। नागपुर में स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भर्ग वस्त्र का प्रदर्शन, 10 सेकंड में 64 रॉकेट दागता है। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए क्षमताओं का किया गया परीक्षण, भारतीय सेना के प्रतिनिधिमंडल के सामने। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई, सराफा मार्केट में लालबाग के राजा की भारी डिमांड। कटरा में पुलिस की बड़ी सफलता, वैष्णो देवी शिवकेड़ी में गुम 206 मोबाइल फोन लौटाए। कड़ी सुरक्षा के बीच पुरी में यात्रा का शुभारंभ, लाखों लोग भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में शामिल। रामबन उधमपुर जिले में कई जगहों पर भूस्खलन, कीचड़ घिसकने से पत्थर गिरने से रास्ता बंद। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बीच फटा बादल, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी में बहे मासूम का 4 दिन बाद शव बरामद। रुद्रप्रयाग के कालीशिला में हार्ट अटैक से अचेत हुए गुजरात के श्रद्धालु का सफल रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से बचाया गया। सूरत में बाढ़ बारिश से तबाही, पूरा इलाका डूबा। गुजरात के औरंगाबाद नदी की बाढ़ में पर्यटकों की बस फंसी, 15 से 17 नागरिकों समेत 35 को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के नवसारी में बाढ़ के बीच मेघार गांव में इंडियन कोस्ट गार्ड का बचाव अभियान, लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बनासकांठा में पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश, सभी कुछ डूबा हुआ नजर आया। भाबर दियोदर में 11 इंच से अधिक बारिश, कई इलाकों में लोग जबरदस्त परेशान। सूरत में बाढ़ बारिश का कहर, खाड़ी का पानी, रिहायशी इलाकों में 300 से ज्यादा लोग परिवार प्रभावित। साबरकांठा में भारी बारिश, बाढ़ पानी में बाइक फंसे दो युवकों को ग्रामीणों ने बचाया। पंचमहल में बारिश के बीच पावागढ़ पहाड़ियों का बदला दृश्य, झरने का सा दृश्य बना। जामनगर में भारी बारिश से बाढ़ नदी में फंस गई कार, स्थानीय लोगों ने बचाया। अंबाजी नगर में मूसलाधार बारिश से बाजार जलमग्न, वाहन बहे। पालघर के वसई में तेज बारिश, आंधी से गिरा बड़ा पेड़, बिजली के खंभे तार सब गिरे। हिमाचल के पांगी में भीषण लैंडस्लाइड, एक का चलती कार पर गिरा, 13 लोगों की मौत, 2 बचे। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद आग, 2 की मौत, 2 लापता। बागपत में केले के मोलभाव को लेकर फल विक्रेता और पिता पुत्र में जमकर झड़प। मोतिहारी में कुछ युवकों को रील बनाना भारी पड़ा, ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीटा। मेरठ में जगन्नाथ शोभा यात्रा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 1 की मौत, 10 घायल। सहारनपुर में मंदिर चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बाल सुधार गृह से 3 बालिग हुए फरार, खिड़की तोड़कर भागे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर 2 करोड़ रुपए की सोने की और डायमंड की ज्वेलरी बरामद, 2 गिरफ्तार। सासाराम में पुलिस बैरक की छत पर बीएसएपी जवान ने की आत्महत्या, अपने हथियार से गोली मार ली। मध्य प्रदेश के पन्ना में मोबाइल कवर की डिलीवरी को लेकर विवाद, लेकिन 1 मिलने पर वीडियो वायरल। जालना में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 किलो से ज्यादा गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार। आसनसोल में रामपुर चेक पोस्ट पर रिश्वत के आरोप में 2 इंस्पेक्टर सस्पेंड। बेगूसराय में एसी का पानी गिरने और मकान का छज्जा निकालने को लेकर विवाद, पड़ोसियों में मारपीट। बागपत में युवक को घर बुलाकर हत्या कर दी गई, 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बालोद में शादी में आई इंजीनियरिंग की छात्रा की सड़क हादसे में मौत, 5 घायल। ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है विक्रांत मैसी की मुसाफिर कैफे। सरकारी स्कूलों की चरमराती व्यवस्था को दिखाती वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय हुई रिलीज। थिएटर्स में रिलीज होने के सिर्फ 21 घंटे बाद ओटीटी पर आई तेलुगु फिल्म नागबंधम। मेकर्स ने डाली राजकुमार राव की प्रहार की रिलीज, पहले 7 अगस्त को होनी थी रिलीज। सैयारा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन करेंगे आहान पांडे, नई फिल्म जल्द आएगी। घरों की बिक्री और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च को लेकर बायर्स की निराशा घटने का नाइट फ्रैंक का दावा, कमजोर सेंटिमेंट्स के बावजूद ये भरोसा। सरकार ने साफ कर दिया, सरकारी तेल कंपनियों का प्रीमियम पेट्रोल पहले की तरह महंगा रहेगा। सीसीआई की सख्ती के बाद इंडिगो ने संकट में एयरपोर्ट स्लॉट छोड़ने का बड़ा निर्णय लिया। अडानी ग्रुप ने एयरलाइन बिजनेस में एंट्री की खबरों से इनकार करते हुए सरकार से नियमों में छूट मांगने की रिपोर्ट को गलत बताया।
AI के बढ़ते इस्तेमाल से अमेज़न और मेटा ने पिछले 10 महीनों में करीब 40,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ईरानी सेना ने बहरीन जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। ईरान की सेना खाड़ी देशों में रह रहे लोगों को चेता रही है अमेरिकी ठिकानों से दूर रहें। ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, कहा पहले से भी बड़ा हम हमला करेंगे। ईरान की रफ्तार से इसराइल अमेरिका हैरान, बुनियादी ढांचों को कर रहा है फिर से बनाने का काम। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के कीव में 6 की मौत। रूस की ई कॉमर्स कंपनी वाइल्ड बेरीज पर यूक्रेन ने फिर से किया हमला, गोदामों को किया तबाह। फिलीपींस की नौसेना ने चीनी नौसेना पर अपने जहाज पर हमला करने का आरोप लगाया। वेस्ट बैंक में गोलीबारी में 4 फिलिस्तीनी और 1 इजरायली नागरिक की हुई मौत। चीनी राष्ट्रपति जाएंगे अमेरिका, खुद ट्रंप ने दी जानकारी, कहा 24 सितंबर को आएंगे। फ्रांस के जंगलों में भीषण आग, बड़े पैमाने पर रेस्क्यू, लेकिन आग से 10,000 हेक्टेयर जंगल हुआ खाक।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेपर लीक के खिलाफ चल रहे घमासान में कल रात नया मोड़ आ गया। सोनम वांगचुक ने सरकार के लिखित आश्वासन के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अनशन खत्म होने से आंदोलन खत्म होगा या फिर कहानी का असली ट्विस्ट आना अभी बाकी है। एक तरफ सोनम वांगचुक का ये कहना कि वो सरकार को डिक्टेट कैसे कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहना, यह बताता है कि आंदोलन क्या दो राह पर खड़े हैं। इधर सरकार का रुख साफ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शायद ही हो, जवाबदेही तय होगी ये सरकार कह रही है। और जवाबदेही के नाम पर इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त कर दिए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। शनिवार को सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तीसरे दौर की बैठक होनी है, लेकिन टेबल टॉक से इतर असली लड़ाई सड़कों पर जेन जी युवाओं का दिल जीतने की है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात लगभग 11:52 पर मोबाइल के फ्रंट कैमरे से जो 2:55 का वीडियो संदेश जारी किया, उसका संदेश साफ था। फ्रेंड्स शब्द के साथ जेन जी मोड में वीडियो जारी किया करना सीधे उन युवाओं से संवाद की कोशिश थी जो बिना किसी राजनीतिक झंडे के सिर्फ अपने भविष्य पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से भी इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने, रील्स बनाने, युवाओं तक पहुंच बनाने के, उनसे संपर्क साधने का निर्देश दिया है। हालांकि रास्ता इतना आसान नहीं है। जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट शटडाउन, पुलिस की फेशियल रिकॉग्निशन वैन पर विवाद और धरने के आसपास कई झड़पों ने तनाव को बढ़ा दिया है। इसीलिए सवाल उठता है कि सरकार की पहल और प्रधानमंत्री के वादे से आंदोलनकारियों के इरादे बदलेंगे। कल रात सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपने अनशन को खत्म किया। ये वही अनशन है जिसने जंतर मंतर का विरोध प्रदर्शन भारत के जेन जी युवाओं तक पहुंचाया। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। 17 जुलाई को गूगल पर सोनम वांगचुक का सर्च इंटरेस्ट जानते हैं कितना था? 80, जबकि जंतर मंतर का सर्च इंटरेस्ट 5, कॉकरोच जनता पार्टी का सिर्फ 4 और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सर्च इंटरेस्ट सिर्फ 5 था। इससे यह पता चलता है कि लोग इस विरोध प्रदर्शन से पहले गूगल पर सिर्फ सोनम वांगचुक के बारे में सर्च कर रहे थे। बाद में जब 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, तब भी ये उत्सुकता बनी रही। उस दिन 18 जुलाई को गूगल पर सोनम वांगचुक का सर्च इंटरेस्ट देखिए सबसे ऊपर 100 दर्ज हुआ, 100। इसके बाद बड़ी संख्या में युवा छात्र जंतर मंतर पहुंचे। आप यहां देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर के मंच पर सोनम वांगचुक की एक तस्वीर भी लगाई है और संविधान की कॉपी उसके सामने रखी हुई है और फिर हर धर्म की किताब है। यही नहीं, पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने अब भी अपने एक्स अकाउंट की डीपी पर सोनम वांगचुक की इस तस्वीर को लगाया हुआ है जिसमें लिखा है आई सपोर्ट सोनम। अब जानते हैं ये अहम क्यों है। ये इसलिए अहम है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने सोनम वांगचुक को इस आंदोलन का चेहरा बनाया है। लेकिन कल जब सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को खत्म किया, तब इस दौरान सोनम वांगचुक के जिक्र में जो उन्होंने बात कही उसमें कॉकरोच जनता पार्टी या नेताओं का नाम नहीं था। जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया तब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और वीडियो हमारे पास आया, वो 14:10 का था। इतने बड़े वीडियो में सोनम वांगचुक ने 5 से ज्यादा बार प्रदर्शनकारियों का जिक्र किया, पेपर लीक की बात की, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी या नेताओं का नाम उसमें नहीं लिया गया है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने आज सुबह 7:24 पर एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार चाहती थी कि वो अपना अनशन खत्म कर दे। विपक्ष के 60 से ज्यादा सांसदों ने भी चिट्ठी लिखकर अनशन खत्म करने की अपील की थी और वो उनसे मिलने भी आए थे। उन्हीं की अपील पर और सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन के आधार पर वो अपना अनशन खत्म कर रहे हैं। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि कॉकरोच जनता पार्टी इस पर क्या कह रही है। पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्य सुधीर सांगवान का आरोप है कि सरकार ने सोनम वांगचुक को मैनिपुलेट किया है। जंतर मंतर पर कुछ लोग इस तरह के पोस्टर्स भी लेकर आए हैं जिनमें यह लिखा है कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए कहा था, लेकिन सरकार ने सोनम वांगचुक को ही आंदोलन से हटा दिया। यहाँ ये भी देखना होगा कि जब से सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती हैं, तब से कॉकरोच जनता पार्टी के एक भी नेता ने अभी तक उनसे मुलाकात नहीं की है। इस पर पार्टी का कहना है कि उन्होंने अपने लोगों को सोनम वांगचुक से मिलने के लिए अस्पताल भेजा था, लेकिन पुलिस ने अंदर जाने दिया ही नहीं। अब कल भी जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया, तब उनके साथ लद्दाख एपेक्स बोर्ड के कई मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन वहां कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि दिखा नहीं। अब सवाल यही है कि क्या उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई या वो गए ही नहीं। कल जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार के लिखित आश्वासन को पढ़कर सुनाया, तब सोनम वांगचुक ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, आई एम नो वन टू डिक्टेट। उन्होंने शब्दशः कहा कि पूरा विश्वास है कि उचित समय आने पर, यानी अभी नहीं तो आगे चलकर, पेपर लीक के मामले में मंत्रालय और मंत्री के स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाएगी, लेकिन वो किसी को आदेश नहीं दे रहे। यानी उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो सरकार या मंत्रियों को आदेश दे, बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। सरकार खुद ही इस बारे में सोचे कि वो जवाबदेही तय कैसे करेगी, और उनके इस बयान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले ये हिस्सा सुन।
1: Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent meat paper leaks.
2: I'm sure that the children have been demanding at the suitable time, and no one will dictate. You will take accountability in the ministry with the minister also. As a responsibility, and I'm sure you're already considering. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast.

0: ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि सरकार ने सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कैसे करा है। कई लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं। क्या सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी विचार किया था? तो इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, यानी पर्दे के पीछे क्या हुआ, वो भी आज समझिए। 22 तारीख की चर्चा के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी शर्तों पर सरकार से लिखित आश्वासन मांगा था, जिस पर सरकार ने यह रणनीति बनाई कि वो बिना देर किए सोनम वांगचुक से अपना संवाद जारी रखेगी। इसके लिए 23 जुलाई को एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए। आपको यकीन नहीं होगा कि यह बैठक लगभग 4 घंटे चली और हमें ये जानकारी हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने दी है। उस सूत्रों के हवाले से बताते हैं कि इस बैठक में सरकार ने दो बातों पर विशेष जोर दिया। पहला, सोनम वांगचुक की सेहत, सोनम वांगचुक की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, और दूसरा, उनकी ओर से उठाई गई मांगों पर सरकार सकारात्मक रुख अपनाए। यानी सरकार ने यह संकेत दिया कि वो केवल अनशन खत्म कराने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि उनकी मांगों पर भी बातचीत के लिए तैयार है। इस बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक की पत्नी से फोन पर बात की। उन्हें यह भरोसा दिलाया कि सरकार सोनम वांगचुक द्वारा उठाए गए मुद्दों पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है और सोनम वांगचुक अपने अनशन को खत्म कर दे। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोनों गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। वहां सोनम वांगचुक भर्ती हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सरकार की ओर से दिया गया जो आश्वासन पत्र है, लेटर, अश्योरेंस लेटर जिसे कहते हैं, वो सोनम वांगचुक को पढ़कर सुनाया और फिर सौंप दिया। और यहां हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार ने कल रात को सोनम वांगचुक से ऑफ रिकॉर्ड कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी बात की। उन्होंने ये बताया कि आज सरकार इस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने वाली है और इसी के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई और सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद अपना अनशन खत्म किया। यहां यह भी खबर है कि सोनम वांगचुक ने सरकार से ये इच्छा जताई है कि वो लद्दाख लौटने से पहले जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहते हैं और संभव है कि वो वहां छात्रों से शांतिपूर्ण आंदोलन की वो बात करें, सरकार के लिखित आश्वासनों पर भी चर्चा कर सकते हैं। यहां ये भी देखिए कि सरकार ने सोनम वांगचुक की जो शर्तें मानी हैं उनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का प्रत्यक्ष जिक्र नहीं है। इसमें लिखा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, परीक्षा सुधार के लिए नया कानून लाया जाएगा, पेपर लीक की जवाबदेही के लिए संसद में चर्चा कराई जाएगी। यहां इस शर्त का मतलब यही है कि सरकार संसद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन इस्तीफा होना ही चाहिए, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि आपने वर्बली सुना, सोनम वांगचुक ने साफ साफ कहा है कि उस मंत्रालय में जवाबदेही तय होगी और उस वक्त आप देख रहे हैं कि चर्चा इस मुद्दे पर हो रही है और उसी अनशन के तोड़ने के पहले एक कमिटमेंट है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, और उन्होंने कहा है कि वो सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने से खुश हैं, लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। हालांकि सोनम वांगचुक ने क्या कहा है वो भी सुनिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे, और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर, नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही, अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं, फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है।
0: हालांकि यहाँ पर दो और सवाल पूछे जा रहे हैं जो अब हम आपको दिखाना। पहला सवाल ये कि क्या सोनम वांगचुक कांचन खत्म होने के बाद जंतर मंतर पर भीड़ कम हुई है, और दूसरा सवाल ये है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी। इनमें पहले सवाल जवाब तो यह है कि कल जब जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों को यह खबर मिली कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है, तब वहां प्रदर्शनकारियों ने बहुत जश्न मनाया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा सुबह हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जंतर मंतर मौजूद थे, उनका कहना था कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद भी जंतर मंतर पर वैसी ही भीड़ मौजूद है। उल्टा कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने मंच से ऐलान किया है कि और लोग जंतर मंतर पहुंचे ताकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। देखिए
2: यहाँ पर इतने दिनों से जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। रियली वांट टू थैंक यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। सरकार आज हमें बातचीत करने के लिए बुला रही है, वो सिर्फ आप ही लोगों की वजह से बुला रही है। इसमें हम लोगों ने कुछ अलग नहीं करा है, ये आप लोगों की मेहनत है, ये आप लोगों का संघर्ष है। देश भर में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जादू उन लोगों का है जो सरकार कभी सुनने को तैयार नहीं होती थी, वो आज खुद से कहती आओ बात करो। तो आप सब लोगों को सलाम है, बस थोड़ी और देर की बात है, आप लोग यही बने रहिए, यही डटे रहिए, बिना इस्तीफा लिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
0: सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के सिर्फ 12 घंटे बाद केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी से भी बात की है। ये बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई जो करीब 2 घंटे तक चली। इनमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए, और ये वही दोनों नेता हैं जो कल रात सोनम वांगचुक से भी मिले थे, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका इस बैठक के लिए मौजूद रहे, जो पहले भी मिल चुके थे। सरकार का कहना है कि 2 घंटे चली इस बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी ने कुल 3 मांगे और शिक्षा व्यवस्था में 5 बड़े सुधार का मुद्दा उठाया। सरकार ने भी कहा कि वो इनमें से 2 मांगे मानने के लिए तैयार है। इनमें पहली मांग है नीट पेपर लीक के पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना, और दूसरी मांग है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना। अब ये दोनों वही मांगे हैं जिन पर सोनम वांगचुक को भी सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है, और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी को भी इन मांगों पर सहमति देना सरकार के लिए मुश्किल नहीं रहा होगा। दोनों पक्षों के बीच सारी बातचीत यहीं फंसी रही कि कॉकरोच जनता पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। अब पार्टी ने कहा है कि अगर मगर बंद कीजिए, और उनकी मांग है कि बिना शर्त हटाया जाए शिक्षा मंत्री को, और शर्त नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन खत्म नहीं होगा और इस बातचीत का कोई फायदा भी नहीं रहेगा। अब सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तीसरी बैठक कल होनी है, शनिवार को, और ये बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के मुताबिक सरकार ने यह बताने के लिए कल तक का वक्त मांगा है कि क्या वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राजी है या नहीं है। देखिए,
3: आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए।
2: नंबर 1 क्या है, सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
3: उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के लिए सुझाव हुए।
2: अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले एक दिन में दो दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह।
3: हमने आपको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो
2: हम काफी क्लोज आ चुके हैं, मुझे लगता है कि इस्तीफा लोड हो ही रहा है, इस्तीफा लोड हो रहा है, क्योंकि सरकार भी समझ चुकी है इतने सारे युवा कह रहे, लाखों करोड़ों युवा अगर देश भर में प्रदर्शन कर रहे तो इनको इग्नोर करके तो अब चलेगा नहीं।
0: आज हुई इस बातचीत और सोनम वांगचुक के अनशन के बाद अब बड़ा सवाल ये कि कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा। आपने सुना कि अगर एक दो दिन में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो 20 जुलाई की ही तरह फिर से मार्च का आह्वान करेंगे। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 20 जुलाई के बाद से कनॉट प्लेस और संसद के मार्ग के इलाकों में लगातार हिंसा उपद्रव हुआ है। अब देखिए, दावा है कि कल रात भी जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया तब भी संसद मार्ग पर इकट्ठा हुए कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग के साथ तोड़फोड़ की, शांति भंग करने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शनकारी इन दावों को गलत बता रहे। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा कारणों से जंतर मंतर के पास इंटरनेट को बंद कर दिया गया और बाद में यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा जहां आज इस पर सुनवाई हुई। यहां यह समझना जरूरी है कि सरकार ने जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं क्यों बंद की। इसके पीछे तीन वजह बताई जा रही है। पहला, ये पब्लिक ऑर्डर यानी मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा है पब्लिक सेफ्टी। और तीसरा बड़ा कारण, किसी अपराध के लिए उकसावे को रोकना। यहां आपको ये रिपोर्ट भी देखनी चाहिए जो राइजिंग रिप्रेशन मीट्स ग्लोबल रेजिस्टेंस द्वारा की जाती है और इसके मुताबिक दुनिया में इंटरनेट शटडाउन यानी इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के सबसे ज्यादा मामले म्यांमार के बाद भारत में दर्ज होते हैं। और अब भी जिस तरह से उपद्रव हिंसा की घटनाएं जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में हुई हैं, उन्हें सरकार रोकने के लिए ऐसे कड़े कदम उठा रही है जिन पर अब कई लोग विवाद भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक फैसला है जंतर मंतर के आसपास फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वैन तैनात करने का। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने इसका एक वीडियो जारी किया और यह आरोप लगाया कि पुलिस प्रदर्शनकारियों के लाइव चेहरे स्कैन कर रही है, उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि पुलिस ने इन आरोपों को गलत बताया है, भ्रामक बताया है। पुलिस का कहना है कि इन कैमरों को लगाने का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों की जासूसी करना नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, सर्विलेंस है। यानी जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में कोई असामाजिक तत्व हो, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हो, अपराधी हो, किसी गलत उद्देश्य से शामिल होने वाले लोग हो जो कि उत्पात करें, शांति भंग ना हो, इसलिए यह निगरानी की जा रही है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पुलिस का कहना है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले भी बड़े आयोजनों में त्योहारों के दौरान सुरक्षा के लिए किया जाता रहा है और इनमें 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड, 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस समारोह और होली, दिवाली और ईद जैसे त्योहारों पर उसने इन कैमरों का इस्तेमाल किया है। लेकिन पुलिस का आरोप है कि इस बार कुछ प्रदर्शनकारी जानबूझकर इन पर विवाद खड़ा कर रहे हैं और अब ये मामला भी दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया है। देखिए,
4: क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन इससे पहले पुलिस हटा दी यहाँ से हम लोगों को। जल्दी देखिए आप, फोटोज आ रहे हैं सबके, सबका नाम आ रहा है, सबकी डिटेल्स आ रहे हैं, लड़कियों के भी फोटोज हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा स्क्रूटनी है दिल्ली पुलिस की। यहाँ पर देखिए डिटेल्स हमें नजर आ रहे हैं, हम नाम भी पढ़ पा रहे हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पर लड़कियां जो भी इस कैमरे के सामने आ रहे हैं उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ सामने आपको लैपटॉप पे स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। तो ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगा रखा है, मतलब हद है। अब तो प्रोटेस्टर्स कहीं पर भी सेफ नहीं है, उनकी डिटेल्स नहीं कर सकते और उसका मिसयूज कभी भी किया जा सकता है।
0: और आज की एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने उन सभी खबरों को गलत बताया है जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका को सुनने से मना कर दिया। ये वही मामला है जिसमें जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी और ये एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के सामने इस मामले का जिक्र करते हुए पुलिस कार्रवाई के वीडियो दिखाने का अनुरोध किया था और दावा यह किया गया था कि उस दिन मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए इन वीडियोस को देखने से इनकार कर दिया कि उनका समय बर्बाद न किया जाए। लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश इन दावों को गलत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उस दिन पुलिस की कार्रवाई पर कोई औपचारिक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई ही नहीं थी, सिर्फ एक पत्र के जरिए यह मामला बताया गया है और इसीलिए ये कहना गलत है कि कोर्ट ने किसी याचिका को सुनने से मना किया। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि उस वक्त इन खबरों को लेकर देश में कई लोगों ने मुख्य न्यायाधीश के प्रति नाराजगी जताई। 22 जुलाई को गूगल पर सबसे ज्यादा इसी खबर को सर्च किया गया था, लेकिन जब इन दावों का मुख्य न्यायाधीश ने खुद खंडन किया, इसलिए हमें लगता है कि जब इस खबर का खंडन आ चुका है तो ये आपको बताना जरूरी है, पता होना चाहिए।
5: One in and other issue has been with regard to the comments that have been made. A lot is being said about you being misquoted. There's a lot being said.
6: Yes,
5: about
6: I
5: the
6: said in the morning. I said in the
5: comments.
6: Court. I said very firmly in the court that I have been misquoted. The unfortunately, the correct reporting is not being made. Somebody start making mention of listing of a matter which he has never filed. So what to do with that kind of case? So I had to tell them that please don't waste your time and my time, because you don't file the case, what I'm going to hear? I can hear only when you file a petition. Therefore, I had to advise the counsel, the young lawyers, they should learn it, they should understand the seriousness of the court proceeding. These are very solemn proceedings in nature, and they should respect the procedure that has been laid down under the rules. So this is how I commented.
0: आज एक और बड़ी खबर का खंडन हुआ, जिसे लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दावा किया था। आज खुद उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल बताते हुए एक प्रदर्शनकारी कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर आए। उन्होंने दावा किया कि वो इस आंदोलन के लिए पुलिस की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं और बाकायदा अभिजीत दिपके ने मंच से इस प्रदर्शनकारी के लिए तालियां बजवाई। लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस का इस पर एक बड़ा बयान आया है। पुलिस का कहना है कि उसका जो कांस्टेबल इस विरोध प्रदर्शन के लिए इस्तीफा देने की बात कह रहा है, वो साल 2025 से ही एक आपराधिक मामले में आरोपी बनने के बाद निलंबित चल रहा है, सस्पेंशन ऑर्डर। आरोप है कि हरिद्वार में जब एक विधवा महिला की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हुई, तब शेर सिंह नाम के इस व्यक्ति ने गुंडों की मदद की और इस जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए अपराधियों का साथ दिया और इन्हीं आरोपों के बाद उसे पुलिस विभाग ने निलंबित कर दिया। लेकिन आज यही निलंबित पुलिसकर्मी इस आंदोलन में पहुंचा और अभिजीत दिपके के साथ खड़े होकर यह ऐलान कर दिया कि वो इस आंदोलन के लिए अपनी पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देगा। यहां लोगों को यह भी समझना होगा कि ऐसा संभव है कि अभिजीत दिपके को इस पुलिसकर्मी के निलंबन और आपराधिक मुकदमे के बारे में शायद पता ना, क्योंकि उसने ये बताया होगा कि वो सहर्ष आकर इस्तीफा देना चाहता है, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना पड़ेगा। पहले सुनिए।
7: क्रांति कभी बम और पिस्तौलों से नहीं आती है।

0: छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है, उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है।
1: इन सब के बीच सरकार की पूरी कोशिश यही है कि वो कांग्रेस जनता पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन को जल्द से जल्द खत्म कराना चाहती है। इसके लिए आज बातचीत भी हुई सोशल और कल रात 11:52 पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश भी मीडिया पर पोस्ट किया। ये वीडियो इसलिए अलग था क्योंकि इसे मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे या सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पर हर दिन लगभग 9.5 करोड़ तस्वीरें और वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, जिनमें फ्रंट कैमरे से बनाए गए वीडियोस, खींची गई तस्वीरें, सेल्फी ज्यादा होती हैं। और ये फ्रेम सबसे ज्यादा जेन जी युवाओं में लोकप्रिय है। अगर आप कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को भी देखेंगे तो इसमें ज्यादातर प्रदर्शनकारियों ने इसी फ्रंट कैमरे में अपने वीडियोस रिकॉर्ड किए, सरकार के प्रति नाराजगी जताई। और अब माना जा रहा है कि इस चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक बयान या भाषण देने के बजाय जेन जी युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये वीडियो इस तरह से बनाया है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने संबोधन की शुरुआत मेरे प्यारे देशवासियों या मित्रों से करते हैं। इस बार उन्होंने फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया, जो ज्यादा जेन जी वर्ड माना जाता है। रिसर्च गेट के अध्ययन में बताया गया है कि जेन जी पीढ़ी के युवा बातचीत की शुरुआत अक्सर गाइज और फ्रेंड्स जैसे शब्दों से करते हैं, और हो सकता है कि इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने मित्रों की जगह फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया। इसके पीछे कारण यही है कि प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार से नाराज माने जा रहे जेन जी युवाओं के साथ एक उन्हीं के अंदाज में संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। रात को जिस वक्त इस वीडियो को अपलोड किया गया, वो टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह वीडियो रात को 11:52 पर अपलोड किया, और अलग अलग रिसर्च बताती है कि जो जेन जी पीढ़ी के युवा हैं वो रात के वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि इनमें 91% जेन जी युवा रात को सोने से पहले सोशल मीडिया पर काफी वक्त ऑनलाइन बिताते हैं, और इसी चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह वीडियो रात में अपलोड किया। इसके अलावा 2:55 का वीडियो था। इंस्टाग्राम पर हर दिन औसतन 7,37,000 रील्स अपलोड होती है, जिनमें 3 मिनट से कम वाली रील्स को एंगेजमेंट के लिहाज से बेहतर माना जाता है। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो 3 मिनट से छोटा रखा गया, और ऐसा क्यों किया गया ये भी समझिए। अब तक सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सोनम वांगचुक के साथ जो बातचीत का रास्ता खोला, लेकिन जो जेन जी युवा इस आंदोलन से जुड़े हैं उनसे सरकार का कोई संवाद नहीं हुआ। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इस आंदोलन में आए सभी युवा किसी पार्टी या संगठन से तो जुड़े हुए हैं नहीं। इनमें बहुत से युवा ऐसे हैं जो सिर्फ अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर आए हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं। वो किसी राजनीतिक दल, किसी कार्यकर्ता से नहीं जुड़े हुए हैं। वो अपनी परेशानी, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं से बात करेगी या सिर्फ सोनम वांगचुक से, तो फिर ये नाइंसाफी होगी और आंदोलन को खत्म करने की कोशिश शायद ही मुमकिन हो पाए। लेकिन युवाओं के मन में जो सवाल है, जो नाराजगी है, उसका समाधान नहीं होगा, और मुझे लगता है कि उसी के लिए एक कोशिश की गई है। आज की युवा पीढ़ी अलग तरीके से सोचती है। वो जरूरी नहीं कि किसी पार्टी के साथ खड़ी हो, वो ऐसा भी मुमकिन है कि किसी एक पार्टी का समर्थन करती हो लेकिन उसकी कुछ नीतियों के खिलाफ हो, वो किसी मुद्दे को सही मानकर खुद उससे जुड़ जाती है। सोशल मीडिया के दौर में हजारों युवा बिना किसी संगठन का हिस्सा बने भी किसी आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं, और इन युवाओं की नाराजगी सिर्फ किसी एक व्यक्ति या संगठन से नहीं है। उनके मन में कई सवाल हैं, जैसे क्या सरकार उनकी बात सुन रही है, उनके भविष्य की चिंता की जा रही है, क्या फैसले लेते समय युवाओं की आवाज शामिल है। इसीलिए समाधान सिर्फ नेताओं से बातचीत करने से नहीं निकलेगा, सरकार को उन युवाओं से भी सीधा संवाद करना होगा जो आंदोलन में शामिल है। और इसीलिए पीएम का ये वीडियो संदेश जो है, माना जा रहा है कि उसी तरफ एक कोशिश है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आंदोलन को खत्म करने के लिए किस तरह की कोशिश सरकार जो कर रही है, तो कुछ फैसले भी लिए जा रहे हैं और पीएम ने भी संवाद में क्या कहा है, सुन लीजिए।
2: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों

0: विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जेंजी युवा आबादी भारत में रहती है। भारत की कुल आबादी में 50 करोड़ यानी 35% अकेले जेंजी युवा हैं, जो 10 से 29 साल के हैं और इसीलिए जिस देश में युवा आबादी का इतना बड़ा हिस्सा हो और वो युवा पेपर लीक से संघर्ष कर रहे हों, उन युवाओं को सुरक्षित भविष्य देना, उनकी समस्याओं को जानना, उनका समाधान करना बहुत जरूरी है और ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी भी है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इसके लिए वो कई कोशिशें कर रही है। आज कैबिनेट की बैठक में एक नए बिल को मंजूरी दी गई जिसमें पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक अब पेपर लीक के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि मौजूदा कानून में दोषियों के लिए 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी और ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई होगी। और तीसरा, आज सरकार ने शिक्षा सचिव को उनके पद से हटा दिया है। ये इस मामले में सरकार की ओर से पहली बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई है। सरकार का कहना है कि वो आगे और भी कड़े कदम उठाएगी। हालांकि प्रदर्शनकारी जो हैं वो यही कह रहे हैं कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने तक डटे रहेंगे और जंतर मंतर खाली नहीं होगा। अब आपको संसद का हंगामा, शोर, नारेबाजी दिखाते हैं जिसकी वजह से संसद में मानसून सत्र का 5वां दिन भी बवाल की भेंट चढ़ गया। नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष के तेवर इतने तल्ख रहे कि लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सदन में सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग गूंजती रही। सुबह की शुरुआत संसद के मकर द्वार पर विपक्ष के जोरदार प्रदर्शन से, शक्ति प्रदर्शन के साथ हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बर्खास्त करो प्रधान को ये नारा वहां लगा। पोस्टर्स के साथ विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो आर पार के मूड में है। इसके बाद जैसे ही सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने करगिल विजय के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन श्रद्धांजलि के तुरंत बाद सदन में नारेबाजी शुरू हो गई। स्पीकर बिरला ने भरोसा दिया कि नियमों के तहत बहस होगी, लेकिन हंगामा थमा नहीं और कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दोपहर 12 बजे जब दोबारा सदन बैठा तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मोर्चा संभाला। रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सरकार बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से लगातार भागकर देश को गलत संदेश दे रहा है। विपक्ष का एक ही सुर था, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तब शोर शराबा इतना बढ़ा, राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब वो अपना पक्ष रख रहे थे तब उनका माइक बंद कर दिया गया। इस तरह पांचवें दिन प्रश्नकाल नहीं हुआ। इस पूरे हफ्ते में एक बार भी प्रश्नकाल पूरा नहीं हुआ है। प्रश्नकाल मतलब जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनको सदन में उठाना है, जिससे मंत्री को जवाब देना होता है, ये नहीं हो रहा है। खैर, सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि कैबिनेट आज ही पेपर लीक पर नए सख्त कानून को मंजूरी देगी, लेकिन विपक्ष बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं और लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर राज्यसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक किसी भी चर्चा का कोई मतलब नहीं है। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने तीखा एतराज जताया। नड्डा ने विपक्ष के इस रवैये को बहुत गैर जिम्मेदाराना बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है, बहस से भाग रहा है। हंगामे के बीच विपक्षी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बार बार सांसदों से अपील की, सीट पर लौटिए, व्यवस्था बनाए रखिए, लेकिन विपक्षी सांसद टस्सेमस नहीं हुए और राज्यसभा में भी बहस और नारेबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सिर्फ 10 से 15 मिनट का कामकाज क्या शोर शराबा हुआ और राज्यसभा की कार्यवाही को पहले दोपहर तक और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
2: प्रश्नकाल मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें।
3: सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया, मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूँ।
4: आपकी भी चिंता है तो सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार, आप कृपया बैठ जाएं। इंजीनियर राशिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुक जाइए। राहुल जी एक मिनट, पेपर लेकर दे, फिर आप भी बोलिए। सरकार ने कह दिया विस्तार से, तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है स्पीकर साहब से बात करें और इस पे समझे नहीं, इस पे आगे
5: जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग।
6: सर, अपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है।
1: पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 19 साल के छात्र साहिल रजाब के मीडिया के सामने लेकर आए। दावा किया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान उन पर सुरक्षा बलों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई है।
7: ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये तीन मांगे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए और ये मांगे पूरी कीजिए, यही मैसेज है।
1: सीआरपीएफ सूत्रों के मुताबिक इस बात की जांच चल रही है कि क्या वाकई में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। आरएएफ भी सीआरपीएफ का हिस्सा है, इसकी तैनाती जंतर मंतर और दूसरे आसपास के इलाकों में हुई थी। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पेलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगा है। अब सऊदी अरब के शाही परिवार से जुड़ी हुई एक खबर आपको बताते हैं। पिछले साल 25 नवंबर को लंदन के एक होटल में सऊदी अरब के प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद की मौत हो गई थी। उनकी मौत के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। 29 साल के सऊदी प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद की मौत शराब पार्टी ड्रग्स और एंटी एंग्जाइटी दवाओं के कॉकटेल की वजह से बताई जा रही है। पिछले साल अब्दुल्ला बिन फहद का शव लंदन के मैरियट होटल के एक लग्जरी रूम में मिला था। उनके शव का पता तब चला जब होटल रूम की सफाई करने वाले ने उन्हें बाथरूम फ्लोर पर गिरा पाया। अब्दुल्ला बिन फहद की मौत के करीब 8 महीने तक चली जांच के बाद ये जानकारियां अब सामने आई हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ड्रग्स होते हैं, उनका नाम ही पार्टी ड्रग्स होता है, शराब डिप्रेशन और इनसे जुड़ी हुई दवाइयों के एक साथ लेने की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। जांच में पता चला कि सऊदी प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद ने 19 नवंबर को होटल में चेक इन किया, एक हफ्ते के लिए रूम बुक किया। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से पता चला है कि अब्दुल्ला बिन फहद के खून में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा थी। रिपोर्ट के मुताबिक उनके 100 ml खून में करीब 222 mg अल्कोहल था, जो सामान्य व्यक्ति को बेहोश करने जितनी मात्रा हो सकती है। इसके अलावा उनके शरीर में गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट मिला था, जिसे पार्टी ड्रग्स कहते हैं। इसके साथ साथ शरीर से कई अन्य नशीले पदार्थों की अलग अलग मात्रा भी मिली है। यही नहीं, जांचकर्ताओं को उनकी शरीर से एंटी एंग्जाइटी पिल्स की मात्रा भी मिली। सोचिए कॉकटेल सबका। माना जा रहा है कि अत्यधिक शराब पीने, कई तरह के नशीले पदार्थ का सेवन करने और उसके बाद एंटी एंग्जाइटी दवाएं खाने की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। एजेंसियों को अपनी जांच में आत्महत्या से जुड़ा कोई संकेत नहीं मिला है, इसीलिए वो ये मान रहे हैं कि उनकी मौत ज्यादा मात्रा में कई तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करने की वजह से हुई है। जांच में पता चला है कि सऊदी प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद का इलाज भी चल रहा था और रहमटन के प्रायोरी क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा था। अब इस क्लिनिक में डिप्रेशन एंग्जाइटी के मरीजों का इलाज होता है। पिछले साल अगस्त में वो इस क्लिनिक में इलाज के लिए आए थे। वो यहाँ पर अपनी शराब और जो अन्य नशाएं थी वो छुड़वाने के लिए पहुंचे थे। इस क्लिनिक के डॉक्टर्स का कहना है कि सऊदी प्रिंस ने अपना इलाज ठीक से करवाया था, उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रेगुलर कंसल्टेशन बंद कर दी, फिर से रिलैप्स हुआ। सऊदी प्रिंस अब्दुल्ला बिन फहद की मौत पर हुए इस खुलासे ने सबको हैरान कर दिया। वो हैरान इसलिए है क्योंकि इस्लामिक नियमों के हिसाब से शराब पीना प्रतिबंधित है और इसी वजह से सऊदी अरब में आम नागरिकों के लिए शराब खरीदना रखना पीना प्रतिबंधित है। ये नियम शाही परिवार पर भी लागू है। हालांकि माना जाता है कि सऊदी के नागरिक विदेशी धरती पर शराब पीने या रखने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि उन देशों में वहां का कानून लागू होता है। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो आपकी फीड में घूमती ही रहती हैं। नमस्कार।
8: एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए लोगों का आभार व्यक्त किया है। अपने कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया है। छोटा सा वीडियो और इंस्टाग्राम पर लाखों लाख व्यूज।
0: थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
8: सरकार और सीजेपी के बीच दो राउंड की बातचीत हो चुकी है, आज तीसरे दौर की वार्ता है। शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास आशुतोष रांका से सरकार के दो मंत्री मुलाकात कर चुके हैं, ये मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा हैं। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, वहीं सरकार ने इस पर विचार करने के लिए आज तक का समय मांगा है। अब आज दोपहर फिर से मुलाकात होगी। सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी मांग को लेकर है, जिस पर ना सीजेपी पीछे हट रही है ना विपक्ष, और इसीलिए जंतर मंतर पर धरना भी चल रहा है, जारी है और संसद ठप है।
9: मैंने इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है।
10: 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है, किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी होगा? जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं, जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी।
11: उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है,
12: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग इन द मार्च टू द पार्लियामेंट ऑन जुलाई 2026।
10: बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के दो प्रतिनिधि पहुंचे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। दो घंटे बातचीत चली, 3 मांग 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की 2 मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा।
13: नंबर 1 क्या है, सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
14: हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो
15: हमारे आंदोलन के जो सबसे 2 बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
10: अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहां प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को दुख पहुंचा है।
0: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को यह भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है।
16: आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपी, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है, तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
17: पहली मांग करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एनी डिस्कशन।
10: यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर यह आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा। दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी।
18: हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस, जिस दिन कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं, साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए, अंदर क्या हुआ, नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पे लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है।
10: सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
19: छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी संवेदना की भावना के साथ प्रयत्नशील है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया, तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ।
20: सरकार के सूत्र ये कहते हैं कि केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दोबारा नीट परीक्षा बिना किसी लीक के कराए जाने की तारीफ भी की। सरकार का मानना है कि काम होगा लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने से, और अगर अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो फिर काम होगा दोषियों को तय समय में सजा दिलाने वाली व्यवस्था को बनाने से। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया, कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को स्वीकृति भी दिलाई जो अगले सप्ताह पेश होगा।
21: छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था क्या वो पास हुआ है बिल जो प्रधानमंत्री बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे?
22: नेक्स्ट,
23: मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में
24: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
10: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा। असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
0: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
10: पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
0: पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
10: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं। जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है, जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।
2: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
20: सरकार सख्त है, निर्णय ले रही है। एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने लगे हैं, लेकिन क्या इससे भी पेपर लीक रुक पाएगा?
3: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे।
4: और प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले, ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटास करने का कोई जरूरत नहीं है, समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए इस पे ध्यान देना चाहिए।
5: सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों का हित हो चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं, उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो फिर वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को।
22: युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए, विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी? हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं।
25: जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना CRPF लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
20: नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैलेट गन के इस्तेमाल का भी है। राहुल गांधी आज साहिल नाम के छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, दावा किया कि साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इस आधार पर राहुल ने सरकार पर देश के भविष्य यानी कि छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है, वो कह चुकी है कि हम लोग पैलेट गन का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, हमारे पास है ही नहीं।
26: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
27: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, ये है पैलेट गन।
26: अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए, दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
27: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
26: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी।
27: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं।
26: साहिल लोचाप नाम का यह नौजवान दिल्ली के निजामगढ़ का रहने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
1: मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।
26: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही, लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया।
6: मैं था साहिल तो देख के सारे में
7: कटा हुआ था छर्रे, क्या
6: छर्रे छर्रे छर्रे यहाँ पे पूरे मुंह पे आंखों के अंदर पूरी देख के घबरा गए, क्या है क्या नहीं है। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज़ है, उन्होंने कहा कि आँख में जा रहे आँखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
7: यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है, क्या है?
6: यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया तो डॉक्टर ने, बंदो घटे ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं करा।
7: ऑपरेशन हो गया या कब?
6: एक ऑपरेशन हो गया, सुबह हुआ था ऑपरेशन, रात को।
7: आज हुआ है?
6: कल सुबह हुआ था, और मैं रात को लगे थे 1 बजे कराने की, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन, और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद।
7: आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे,
6: एक 2% चांस है।
7: निशान देख पा रहे तो उसके
6: निशान देखे हैं मैंने, आंखों में भी देखे हैं, आंखों के जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं दोनों तरफ।
7: शरीर से जो निकले थे छर्रे वो आप देख पाए थे, जो निकाला गया?
6: नहीं, नहीं दिखा।
7: डॉक्टर ने, आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है, क्या लगा इसके शरीर में?
6: बस हाँ पूछा था हमने, सिर्फ इतना बताया था वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने कि
7: क्या लगा है शरीर में, क्या चोट है
6: ये पता, हमें खुद पता नहीं चला क्या ये छर्रे छर्रे छर्रे छे छे छे, क्या हम दूसरों को क्या बताए।
26: आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की, जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए, 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन के हैं इस पर वो कुछ नहीं कहते।
8: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास, उसी के नंबर से उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए हैं, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
9: तो क्या उस समय का क्या माहौल था घर पर?
8: घर में तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कॉन्टेक्ट किया उनसे तो इलाज के लिए फिर ले गए।
9: क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको क्या पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या?
8: मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्त के जरिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा, मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में, जिस चीज के भी हों।
26: पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है।
11: पेपर लीक मामले के विरोध में हो रहे प्रदर्शन से जुड़े एक और विवाद से आइए हम आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने अपने छात्रों और स्टाफ को जंतर मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है डीयू यानी कि, तो इस पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए समय आने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय करने की बात कही है।
12: तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है, सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान।
26: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरह देश के कई बड़े शिक्षा संस्थान निशाने पर हैं। वजह जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई छात्रों को एडवाइजरी है, जिसमें छात्रों से विरोध प्रदर्शनों से बचने की सलाह दे दी गई। जेएनयू की एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल न होने न ही वहां जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रों को जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह दी गई। चेतावनी ये दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही यूनिवर्सिटी के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी छात्रों से जंतर मंतर से दूर रहने की अपील करते हुए इससे पढ़ाई लिखाई और करियर के मौकों पर बुरा असर पड़ने को लेकर चेताया है। कहा है कि जंतर मंतर पर किसी भी तरह की गैर कानूनी भीड़ या प्रदर्शन के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
13: एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर ऐसा कुछ गाइडलाइन है, मैनेजर जैसे अभी हमने कहा कि हमारे जानकारी में नहीं है, तो मेरे ख्याल से अच्छा है और हम सब स्टूडेंट्स को इसको देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि वहाँ पे नहीं जाना है, बचना है या ऐसा कुछ, तो हम उससे एग्री करते हैं।
14: गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सब अच्छा से किए, सब होगा सही, बाकी सब तो गुड है।
15: लोग अगर जाएं कहीं तो हम लोग प्रिकॉशन लें, जैसे हम लोग आराम से जाएं, सेफ पीस आंदोलन पीस मूवमेंट करें, ठीक है, जो भी प्रोटेस्ट करना है पीसफुली करें, आराम से जाएं, वहाँ बैठे बात करें, जिससे भी बात करें, कोई ऑफिशियल से एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आराम से बात करें, अच्छे से बात करें, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, हम लोग यही कर सकते हैं। और
26: चर्चा अब ये छिड़ गई कि ये छात्रों को सलाह दी जा रही है या फिर उनको कार्रवाई का डर दिखाकर जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने से डीयू और जेएनयू की तरफ से रोका जा रहा है। जेएनयू की पहचान भारत में छात्र आंदोलनों के सबसे अहम केंद्रों में से एक के तौर पर रही है। दशकों से इस कैंपस में शिक्षा नीति और कैंपस के कामकाज से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक के मुद्दों पर प्रदर्शन होते आए, जिससे विरोध प्रदर्शन इसकी सार्वजनिक पहचान का एक खास हिस्सा बने। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब छात्रों को चेताया तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए लिखा है कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई, समय आने पर आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं AIU ने छात्रों से विरोध प्रदर्शन की बजाय परीक्षाओं पर ध्यान देने को कहा है। IIT रुड़की ने भी छात्रों और स्टाफ को सलाह दी, हालांकि बाद में कहा गया कि ऐसे निर्देश हर साल जारी होते हैं।
20: आक्रोश जनता पार्टी की अपील पर देश भर में छात्रों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल में प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं का गुस्सा शिक्षा की बदहाल व्यवस्था पर फूटा।
16: से पता गया है? घर पे नहीं बोला
17: है? नहीं।
16: घर पे क्या बोला है?
17: अभी जाकर बता देंगे, अभी पता नहीं था।
16: हाँ।
17: कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
16: अच्छा, अब रास्ते से निकले, देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
17: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए, हम उनको जानते भी नहीं थे।
26: लखनऊ के परिवर्तन चौक पर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कई छात्राएं घर पर बताकर भी नहीं आई। उनका कहना था कि वो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही है, आगे नीट परीक्षा देनी है, अगर बार बार पेपर लीक होता रहेगा तो मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा।
18: जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक धरना चलना चाहिए। पिछले 12 साल में 152 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई है, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ लिटरली खेला जा रहा है।
17: हमारी भी मांग वही है जो बाकी स्टूडेंट्स की है, जैसे कि पहले तो हमें हमारे हमसे माफी मांगनी चाहिए जैसा बर्ताव हमारे साथ किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, और दूसरी बात दिल्ली पुलिस कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो रिजाइनेशन नहीं देंगे आंदोलन।
26: लखनऊ में इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी लखनऊ में परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक मार्च करते हुए पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए।
16: ये जितने स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, एक वाइट टर्न दिखाई सामने, ये कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो आपने एक तरफ देखा दिल्ली में, तो दूसरी तरफ देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में। अगले दो दिन फिर प्रोटेस्ट है। अब देखना यह है कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या ये जारी रहेगा, और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, इस पर नजर फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि जो गूंज जंतर मंतर से उठी थी वो अब राजधानी पहुंच चुकी है।
26: छात्रों का ऐसा ही प्रदर्शन कोलकाता में भी हुआ है, जहां एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने सीजेपी के आंदोलन का समर्थन करते हुए कोलकाता में सड़कों को जाम कर दिया।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर आज एसएफआई द्वारा बुलाई गई छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता में आयोजन किया गया, जहां सियालदा से लेकर धर्मतला जो सेंट्रल कोलकाता का इलाका है यहां पर आज ये रैली हुआ हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में लोग जो हैं, जो खासकर छात्र छात्राएं हैं, वो हाथ में तिरंगा लिए, एसएफआई के फ्लैग लिए यहां आ पहुंचे हैं, अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
26: मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन निकाला। इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे भी शामिल होते हैं।
2: लेकिन ये जन की बात है, ये आप दिल्ली वालों को सुनना होगा। मैं तमाम देशभक्तांना सांगतोय की दिल्ली मध्ये या पद्धतीने बेछूट पद्धतीने।
26: भोपाल में पेपर लीक के मुद्दे पर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और पेपर लीक को सिस्टम का लीकेज बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। इसमें वो छात्र छात्रा भी शामिल होते हैं जिनकी परीक्षाएं वर्षों से लटकी हुई हैं।
3: भोपाल के नीलम पार्क में इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए छात्र हैं, वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं रुकी हुई है वो होनी चाहिए, वक्त पर नतीजे घोषित होने चाहिए, वक्त पे भर्तियां निकलनी चाहिए। ये बताइए जो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं, जिसके बाद आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए?
10: सर वो सब गलत है, जो भी शिक्षा को लेके जो भी है, ये कोई भी मतलब ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जो लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के स्टूडेंट ही भविष्य है आगे चल के।
26: हैदराबाद की सड़कों पर भी नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश दिखा। पुराने हैदराबाद में इकट्ठा हुए लोग और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया।
19: जब बीआरएस का यूथ विंग ने हैदराबाद के धरना चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया, आप देख सकते हैं मेरे ठीक बिल्कुल पीछे भारी संख्या में यहां पर बीआरएस के लीडर्स, युवा छात्र के संगठन और साथ ही बीआरएस का युवा मोर्चा यहां पर जमा हुए हैं।
21: स्टूडेंट्स का एजुकेशन का मामला है तो मैं पूर्वों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन है इसको सुधारना एक युवा का काम है, युवा जब तक नहीं जागेगा ये एजुकेशन सिस्टम सेट नहीं होगा।
26: नीट पेपर लीक मामले ने शिक्षा की बदहाली को उघाड़ कर रख दिया है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि पेपर लीक के खिलाफ अब छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है।
20: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, बोले सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, हटाए गए एनटीए के 47 अधिकारी, पुलिस एक्शन संभव, सूत्रों के अनुसार इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। आज दोपहर 3:30 बजे नड्डा और जितेंद्र सिंह से फिर मिलेगा सीजेपी का डेलीगेशन। आजतक से बोले अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़ी स्थिति, अहमदाबाद सूरत में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया, असम में 61 लोगों की मौत। एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए लोगों का आभार व्यक्त किया है। अपने कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया है। छोटा सा वीडियो और इंस्टाग्राम पर लाखों लाख व्यूज।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: सरकार और सीजेपी के बीच दो राउंड की बातचीत हो चुकी, आज तीसरे दौर की वार्ता है। शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास आशुतोष रांका से सरकार के दो मंत्री मुलाकात कर चुके हैं, ये मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा हैं। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, वहीं सरकार ने इस पर विचार करने के लिए आज तक का समय मांगा है। अब आज दोपहर फिर से मुलाकात होगी। सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी मांग को लेकर है, जिस पर ना सीजेपी पीछे हट रही है न विपक्ष, और इसीलिए जंतर मंतर पर धरना भी चल रहा है, जारी है और संसद ठप है।
2: मैंने इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है।
3: 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है, किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी होगा? जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं, जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी।
4: उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है,
5: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग in the march to the parliament on July 20, 2026.
3: बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के दो प्रतिनिधि पहुंचे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। दो घंटे बातचीत चली, 3 मांग 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की दो मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा।
6: नंबर एक क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर वन डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
7: हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा
8: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
3: अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहां प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को
1: कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को यह भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है।
9: आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपी हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोना मांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है, तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
10: पहली मांग करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया हमारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी, और थर्ड दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। We are not going to have any conversation, any discussion.
3: यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर ये आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा। दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी।
11: हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस जिस दिन कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं, साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए, अंदर क्या हुआ, नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी इन्होंने स्पष्ट तौर पर लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है।
12: सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त की। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
13: छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी संवेदना की भावना के साथ प्रयत्नशील है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया। तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ।
0: सरकार के सूत्र ये कहते हैं कि केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दोबारा नीट परीक्षा बिना किसी लीक के कराए जाने की तारीफ भी की। सरकार का मानना है कि काम होगा लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने से, और अगर अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो फिर काम होगा दोषियों को तय समय में सजा दिलाने वाली व्यवस्था को बनाने से। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया, कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को स्वीकृति भी दिलाई जो अगले सप्ताह पेश होगा।
14: छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था क्या वो पास हुआ है बिल जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे?
15: नेक्स्ट,
16: मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में
17: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
3: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा।
18: नेक्स्ट,
3: असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
1: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेगी, और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
1: पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
3: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन

0: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
1: सरकार सख्त है, निर्णय ले रही है, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने लगे हैं, लेकिन क्या इससे भी पेपर लीक रुक पाएगा?
2: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे।
3: और प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले, ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटास करने का कोई जरूरत नहीं है, समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए इस पे ध्यान देना चाहिए।
4: सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों का हित हो चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं, उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स, तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को।
5: युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, न कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए, विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी? हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं।
6: जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है, किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना CRPF लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
1: नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैलेट गन के इस्तेमाल का भी है। राहुल गांधी आज साहिल नाम के छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, दावा किया कि साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इस आधार पर राहुल ने सरकार पर देश के भविष्य यानी कि छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है, वो कह चुकी है कि हम लोग पैलेट गन का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, हमारे पास है ही नहीं।
7: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
8: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना, ये देखिए ये है पैलेट गन, ये है पैलेट गन।
7: अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए, दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
8: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
7: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली

0: में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी।
1: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है।
0: साहिल लोचाप नाम का ये नौजवान दिल्ली के निजफगढ़ का रहने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
2: मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।
0: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही, लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया।
3: कटा हुआ था छर्रे, क्या
4: यहाँ पे पूरे मुंह पे आंखों के अंदर पूरे देख के घबरा गए हम तो, भाई क्या है क्या नहीं है ये चीज। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज है, उन्होंने कहा कि आंख में जा रखे आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
3: यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है क्या है?
4: यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने, बस ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं।
3: ऑपरेशन हो गया या कब?
4: एक ऑपरेशन हो गया था, सुबह हुआ था ऑपरेशन, रात को।
3: आज हुआ है?
4: कल सुबह हुआ था और रात को लगे थे 1 बजे करने की टाइम, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन। और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद।
3: आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे,
4: नो करें 1-2% चांस है।
3: निशान देख पा रहे तो उसके
4: निशान देख रहे थे, निशान देखे हैं हमने, आंखों में भी देखे हैं, आंखों भी जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं यहाँ दोनों तरफ।
3: शरीर से जो निकले थे छर्रे वो आप देख पाए थे? जो निकाला गया?
4: नहीं दिखा।
3: डॉक्टर ने, आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है, क्या लगा इसके शरीर में?
4: बस हाँ पूछा था हमने, सिर्फ इतना बताया था वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने कि
3: क्या लगा है शरीर में, क्या चोट है नहीं
4: पता। ये पता हमें खुद पता नहीं चला क्या ये चले चले चले छे छे छे क्या, हम दूसरों को क्या बताएं।
0: आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की, जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन की है इस पर वो कुछ नहीं कहते।
5: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास, उसी के नंबर से। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
6: तो क्या उस समय का क्या माहौल था घर का?
5: घर में तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कांटेक्ट किया उनसे तो इलाज के लिए फिर ले गए।
6: क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको क्या पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या?
5: मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्तों के जरिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा, मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में, जिस चीज के भी हों।
0: पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है।
7: पेपर लीक मामले के विरोध में हो रहे प्रदर्शन से जुड़े एक और विवाद से आइए हम आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने अपने छात्रों और स्टाफ को जंतर मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है। डीयू यानी कि, तो इस पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए समय आने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय करने की बात कही है।
8: तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है, सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरह देश के कई बड़े शिक्षा संस्थान निशाने पर हैं। वजह जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई छात्रों को एडवाइजरी है, जिसमें छात्रों से विरोध प्रदर्शनों से बचने की सलाह दे दी गई। जेएनयू की एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल न होने, न ही वहां जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रों को जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह दी गई, चेतावनी ये दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही यूनिवर्सिटी के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी छात्रों से जंतर मंतर से दूर रहने की अपील करते हुए इससे पढ़ाई लिखाई और करियर के मौकों पर बुरा असर पड़ने को लेकर चेताया है। कहा है कि जंतर मंतर पर किसी भी तरह की गैर कानूनी भीड़ या प्रदर्शन के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
9: एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर ऐसा कुछ गाइडलाइन है, मैनेजर जैसे अभी हमने कहा कि हमारे जानकारी में नहीं है, तो मेरे ख्याल से अच्छा है और हम सब स्टूडेंट्स को इसको देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि वहाँ पे नहीं जाना है, बचना है या ऐसा कुछ, तो हम उससे एग्री करते हैं।
10: गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सब अच्छा से किए, सब होगा सही, बाकी सब तो गुड ही है।
11: लोग अगर जाएं कहीं तो हम लोग प्रिकॉशन लें, जैसे हम लोग आराम से जाएं, सेफ पीस आंदोलन, पीस मूवमेंट करें, ठीक है, जो भी प्रोटेस्ट करना है पीसफुली करें, आराम से जाए, वहाँ बैठे बात करें, जिससे भी बात करें, कोई ऑफिशियल से एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आराम से बात करें, अच्छे से बात करें, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, हम लोग यही कर सकते हैं। और
0: चर्चा अब ये छिड़ गई कि ये छात्रों को सलाह दी जा रही है या फिर उनको कार्रवाई का डर दिखाकर जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने से डीयू और जेएनयू की तरफ से रोका जा रहा है। जेएनयू की पहचान भारत में छात्र आंदोलनों के सबसे अहम केंद्रों में से एक के तौर पर रही है। दशकों से इस कैंपस में शिक्षा नीति और कैंपस के कामकाज से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक के मुद्दों पर प्रदर्शन होते आए, जिससे विरोध प्रदर्शन इसकी सार्वजनिक पहचान का एक खास हिस्सा बने। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब छात्रों को चेताया तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए लिखा है कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई, समय आने पर आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं AIU ने छात्रों से विरोध प्रदर्शन की बजाय परीक्षाओं पर ध्यान देने को कहा है। IIT रुड़की ने भी छात्रों और स्टाफ को सलाह दी, हालांकि बाद में कहा गया कि ऐसे निर्देश हर साल जारी होते हैं।
7: आक्रोश जनता पार्टी की अपील पर देश भर में छात्रों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल में प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं का गुस्सा शिक्षा की बदहाल व्यवस्था पर फूटा।
12: पता गया है? घर पे नहीं बोला?
13: नहीं।
12: घर पे क्या बोला है?
13: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
12: जब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए। आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
13: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहां तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ के परिवर्तन चौक पर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कई छात्राएं घर पर बताकर भी नहीं आई। उनका कहना था कि वो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही है, आगे नीट परीक्षा देनी है। अगर बार बार पेपर लीक होता रहेगा तो मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा?
14: जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक धरना चलना चाहिए। पिछले 12 साल में 152 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ लिटरली खेला जा रहा है।
13: हमारी भी मांग वही है जो बाकी स्टूडेंट्स की है, जैसे कि पहले तो हमें हमसे माफी मांगनी चाहिए जैसा बर्ताव हमारे साथ किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो रिजाइनेशन नहीं देंगे आंदोलन।
0: लखनऊ में इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी लखनऊ में परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक मार्च करते हुए पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए।
12: ये जितने स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, एक वाइट टर्न दिखाई सामने, ये कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो आपने एक तरफ देखा दिल्ली में, तो दूसरी तरफ देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में। अगले दो दिन फिर प्रोटेस्ट है। अब देखना यह है कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या ये जारी रहेगा और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, इस पर नजर फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि जो गूंज जंतर मंतर से उठी थी वो अब राजधानी पहुंच चुकी है।
0: छात्रों का ऐसा ही प्रदर्शन कोलकाता में भी हुआ है, जहां SFI के कार्यकर्ताओं ने CJP के आंदोलन का समर्थन करते हुए कोलकाता में सड़कों को जाम कर दिया।
15: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर आज SFI द्वारा बुलाई गई छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता में आयोजन किया गया, जहां सियालदा से लेकर धर्मतला जो सेंट्रल कोलकाता का इलाका है यहां पर आज ये रैली हुआ हो रहा है और आप देख सकते कि हजारों के तादाद में लोग जो हैं, जो खासकर छात्र छात्राएं हैं, वो हाथ में तिरंगा लिए, एसएफआई के फ्लैग लिए यहां आ पहुंचे हैं, अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
0: मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन निकाला। इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे भी शामिल होते हैं।
16: लेकिन ये जन की बात है, ये अब दिल्ली वालों को सुनना होगा। मैं तमाम देशभक्तांना सांगतोय की दिल्ली मध्ये या पद्धतीने, बेछूट पद्धतीने।
0: भोपाल में पेपर लीक के मुद्दे पर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और पेपर लीक को सिस्टम का लीकेज बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। इसमें वो छात्र छात्रा भी शामिल होते हैं जिनकी परीक्षाएं वर्षों से लटकी हुई हैं।
17: भोपाल के नीलम पार्क में इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए छात्र हैं, वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं रुकी हुई है वो होनी चाहिए, वक्त पर नतीजे घोषित होने चाहिए, वक्त पे भर्तियां निकलनी चाहिए। ये बताइए जो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं जिसके बाद आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए?
18: सर वो सब गलत है, जो भी शिक्षा को लेके जो भी है, ये कोई भी मतलब ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जो लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के स्टूडेंट ही भविष्य है आगे चल के।
0: हैदराबाद की सड़कों पर भी नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश दिखा। पुराने हैदराबाद में इकट्ठा हुए लोग और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया।
19: जब बीआरएस का यूथ विंग ने हैदराबाद के धरना चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया, आप देख सकते हैं मेरे ठीक बिल्कुल पीछे भारी संख्या में यहां पर बीआरएस के लीडर्स, युवा छात्र के संगठन और साथ ही बीआरएस का युवा मोर्चा यहां पर जमा हुए हैं।
20: स्टूडेंट्स का एजुकेशन का मामला है तो मैं पूर्वों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन है इसको सुधारना एक युवा का काम है। युवा जब तक नहीं जागेगा ये एजुकेशन सिस्टम सेट नहीं होगा।
0: नीट पेपर लीक मामले ने शिक्षा की बदहाली को उघाड़ कर रख दिया है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि पेपर लीक के खिलाफ अब छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है।
7: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, बोले सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, हटाए गए एनटीए के 47 अधिकारी, पुलिस एक्शन संभव, सूत्रों के अनुसार इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। आज दोपहर 3:30 बजे नड्डा और जितेंद्र सिंह से फिर मिलेगा सीजेपी का डेलीगेशन। आजतक से बोले अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़ी स्थिति, अहमदाबाद सूरत में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया, असम में 61 लोगों की मौत। एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए लोगों का आभार व्यक्त किया है। अपने कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया है। छोटा सा वीडियो और इंस्टाग्राम पर लाखों लाख व्यूज।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: सरकार और सीजेपी के बीच दो राउंड की बातचीत हो चुकी, आज तीसरे दौर की वार्ता है। शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास आशुतोष रांका से सरकार के दो मंत्री मुलाकात कर चुके हैं, ये मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा हैं। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, वहीं सरकार ने इस पर विचार करने के लिए आज तक का समय मांगा है। अब आज दोपहर फिर से मुलाकात होगी। सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी मांग को लेकर है, जिस पर ना सीजेपी पीछे हट रही है न विपक्ष, और इसीलिए जंतर मंतर पर धरना भी चल रहा है, जारी है और संसद ठप है।
2: मैंने इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है।
3: 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है, किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी होगा? जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं, जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी।
4: उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है,
5: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग in the march to the parliament on July 20, 2026.
3: बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के दो प्रतिनिधि पहुंचे, सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। 2 घंटे बातचीत चली, 3 मांग 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की 2 मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा।
6: नंबर एक क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर वन डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
7: हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हमारे जो
8: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
3: अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहां प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को दुख पहुंचा है।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को यह भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है।
9: आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपी हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोना मांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है, तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
10: पहली मांग करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी, और थर्ड दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एनी डिस्कशन।
3: यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर यह आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा। दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी।
11: हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस जिस दिन कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं, साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए, अंदर क्या हुआ, नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी इन्होंने स्पष्ट तौर पर लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है।
3: सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त की। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
12: छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी संवेदना की भावना के साथ प्रयत्नशील है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया, तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ।
0: सरकार के सूत्र ये कहते हैं कि केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दोबारा नीट परीक्षा बिना किसी लीक के कराए जाने की तारीफ भी की। सरकार का मानना है कि काम होगा लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने से, और अगर अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो फिर काम होगा दोषियों को तय समय में सजा दिलाने वाली व्यवस्था को बनाने से। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया, कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को स्वीकृति भी दिलाई जो अगले सप्ताह पेश होगा।
13: छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था क्या वो पास हुआ है बिल जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे?
0: नेक्स्ट।
14: मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, और पेपर लीक में
15: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
3: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा। असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
1: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
1: पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
3: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है, जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।
1: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है, और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
0: सरकार सख्त है, निर्णय ले रही है, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने लगे हैं, लेकिन क्या इससे भी पेपर लीक रुक पाएगा?
16: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे।
17: अब प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले, ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटाक्ष करने का कोई जरूरत नहीं है, समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
18: सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों का हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं, उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट, और उसके बाद वो फिर वो उनके जो मेल अकाउंट से सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को।
19: युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए, विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी। हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं।
20: जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना CRPF लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
0: नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैलेट गन के इस्तेमाल का भी है। राहुल गांधी आज साहिल नाम के छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, दावा किया कि साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इस आधार पर राहुल ने सरकार पर देश के भविष्य यानी कि छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है, वो कह चुकी है कि हम लोग पैलेट गन का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, हमारे पास है ही नहीं।
21: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
22: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, ये है पैलेट गन।
21: अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए, दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
22: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
21: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी।
22: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है।
21: साहिल लोचाप नाम का ये नौजवान दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
23: मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूं, इनकलाब जिंदाबाद।
21: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही, लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया।
24: मैं था साहिल, तो देख के सारे में नाम ब्लड लग रहे हैं,
25: कटा हुआ था छर्रे, क्या
24: छर्रे छर्रे छर्रे यहाँ पे पूरे मुंह पे आंखों के अंदर पूरी देख के घबरा रहे हैं, भाई क्या क्या नहीं है ये चीज। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज, उन्होंने कहा कि आंख में लड़के आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
25: यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है, क्या है?
24: यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया, तो डॉक्टर ने बंद करते ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं करा।
25: ऑपरेशन हो गया या कब?
24: एक ऑपरेशन हो गया, सुबह हुआ था ऑपरेशन, रात को।
25: आज हुआ है?
24: कल सुबह हुआ था, और मैं रात को लगे थे 1 बजे कराने की, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन, और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद।
25: आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे,
24: एक दो % चांस है।
25: निशान देख पा रहे? तो
24: निशान देखे हमने, आंखों में भी देखे हैं, आंखों के जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं या दोनों
25: तरफ शरीर से जो निकले थे छर्रे वो आप देख पाए थे जो निकाला गया?
24: नहीं, नहीं देखा।
25: डॉक्टर ने आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है, क्या लगा इसके शरीर में?
24: बस हाँ पूछा था हमने, सिर्फ इतना बताया था वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने कि वहाँ
25: क्या लगा है शरीर में, क्या चोट है
24: ये पता, हमें खुद पता नहीं चला क्या ये छर्रे छर्रे छर्रे छे छे छे क्या, हम दूसरों को क्या बताएं।
21: आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन के हैं इस पर वो कुछ नहीं कहते।
2: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास उसी के नंबर से, उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए हैं, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
4: तो क्या उस समय का क्या माहौल था घर पर?
2: घर में तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कॉन्टेक्ट किया उनसे तो इलाज के लिए फिर ले गए।
4: क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको क्या पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या?
2: मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्त के जरिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा, मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में जिस चीज के भी हों।
21: पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है।
0: आक्रोश, जनता पार्टी की अपील पर देश भर में छात्रों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल में प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं का गुस्सा शिक्षा की बदहाल व्यवस्था पर फूटा।
5: से पता गया है? घर पे नहीं बोला?
6: नहीं।
5: घर पे क्या बोला है?
6: अभी जाकर बता देंगे, अभी पता नहीं था ये प्रोटेस्ट हो रहा है।
5: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
6: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
21: लखनऊ के परिवर्तन चौक पर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कई छात्राएं घर पर बताकर भी नहीं आई, उनका कहना था कि वो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही है, आगे नीट परीक्षा देनी है, अगर बार बार पेपर लीक होता रहेगा तो मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा।
7: जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक धरना चलना चाहिए। पिछले 12 साल में 152 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ लिटरली खेला जा रहा है।
6: हमारी भी मांग वही है जो बाकी स्टूडेंट्स की है, जैसे कि पहले तो हमें हमारे हमसे माफी मांगनी चाहिए जैसा बर्ताव हमारे साथ किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, और दूसरी बात दिल्ली पुलिस कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो रिजाइनेशन नहीं देंगे आंदोलन तो।
21: लखनऊ में इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी लखनऊ में परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक मार्च करते हुए पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए।
5: ये जितने स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं, लड़के हैं लड़कियां, एक वाइट टर्न दिखाई सामने, ये कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो आपने एक तरफ देखा दिल्ली में और दूसरी तरफ देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में। अगले दो दिन फिर प्रोटेस्ट है, अब देखना ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या ये जारी रहेगा और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, इस पर नजर फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि जो गूंज जंतर मंतर से उठी थी वो अब राजधानी पहुंच चुकी है।
21: छात्रों का ऐसा ही प्रदर्शन कोलकाता में भी हुआ है, जहां एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने सीजेपी के आंदोलन का समर्थन करते हुए कोलकाता में सड़कों को जाम कर दिया।
8: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर आज एसएफआई द्वारा बुलाई गई छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता में आयोजन किया गया, जहां सियालदा से लेकर धर्मतला जो सेंट्रल कोलकाता का इलाका है यहां पर आज ये रैली हुआ हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में लोग जो हैं, जो खासकर छात्र छात्राएं हैं, वो हाथ में तिरंगा लिए एसएफआई के फ्लैग लिए यहां आ पहुंचे हैं, अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
21: मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन निकाला, इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे भी शामिल होते हैं।
9: पर, लेकिन ये जन की बात है, ये अब दिल्ली वालों को सुनना होगा। मैं तमाम देशभक्तांना सांगतोय की दिल्ली मध्ये या पद्धतीने बेछूट पद्धतीने।
21: भोपाल में पेपर लीक के मुद्दे पर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और पेपर लीक को सिस्टम का लीकेज बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। इसमें वो छात्र छात्रा भी शामिल होते हैं जिनकी परीक्षाएं वर्षों से लटकी हुई हैं।
10: भोपाल के नीलम पार्क में इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो युवा है, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए छात्र हैं, वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं रुकी हुई है वो होनी चाहिए, वक्त पर नतीजे घोषित होने चाहिए, वक्त पे भर्तियां निकलनी चाहिए। ये बताइए, जो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं जिसके बाद आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए?
11: सर वो सब गलत है, जो भी शिक्षा को लेके जो भी है, ये कोई भी मतलब ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जो लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के स्टूडेंट ही भविष्य है आगे चल के।
21: हैदराबाद की सड़कों पर भी नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश दिखा। पुराने हैदराबाद में इकट्ठा हुए लोग और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया।
12: आज बीआरएस का यूथ विंग ने हैदराबाद के धरना चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं मेरे ठीक बिल्कुल पीछे भारी संख्या में यहां पर बीआरएस के लीडर्स, युवा छात्र के संगठन और साथ ही बीआरएस का युवा मोर्चा यहाँ पर जमा हुए हैं।
13: स्टूडेंट्स का एजुकेशन का मामला है तो मैं पूर्व से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन है इसको सुधारना एक युवा का काम है। युवा जब तक नहीं जागेगा ये एजुकेशन सिस्टम सेट नहीं होगा।
21: नीट पेपर लीक मामले ने शिक्षा की बदहाली को उघाड़ कर रख दिया है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि पेपर लीक के खिलाफ अब छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, बोले सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, हटाए गए एनटीए के 47 अधिकारी, पुलिस एक्शन संभव, सूत्रों के अनुसार इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। आज दोपहर 3:30 नड्डा और जितेंद्र सिंह से फिर मिलेगा सीजेपी का डेलीगेशन। आज तक से बोले अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़ी स्थिति, अहमदाबाद सूरत में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया, असम में 61 लोगों की मौत। एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए लोगों का आभार व्यक्त किया है। अपने कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया है। छोटा सा वीडियो और इंस्टाग्राम पर लाखों लाख व्यूज।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: सरकार और सीजेपी के बीच दो राउंड की बातचीत हो चुकी, आज तीसरे दौर की वार्ता है। शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास आशुतोष रांका से सरकार के दो मंत्री मुलाकात कर चुके हैं, ये मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा हैं। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, वहीं सरकार ने इस पर विचार करने के लिए आज तक का समय मांगा है। अब आज दोपहर फिर से मुलाकात होगी। सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी मांग को लेकर है, जिस पर न सीजेपी पीछे हट रही है न विपक्ष, और इसीलिए जंतर मंतर पर धरना भी चल रहा है, जारी है और संसद ठप है।
2: मैंने इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है।
3: 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है, किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी होगा? जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं, जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी।
4: उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है,
5: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग in the march to the parliament on July 20, 2026.
3: बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के दो प्रतिनिधि पहुंचे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। दो घंटे बातचीत चली, 3 मांग 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की दो मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा।
6: नंबर एक क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर वन डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
7: हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा,
8: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
3: अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहाँ प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को दुख पहुँचा है।
1: मैं जानता हूँ कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को यह भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है।
9: आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपी, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोना मानसिंह जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है, तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
10: पहली मांग करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी, और थर्ड दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the three conditions. We are not going to have any conversation, any discussion.
3: यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर ये आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा। दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी।
11: हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस जिस दिन कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं, साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए, अंदर क्या हुआ, नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पर लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है।
3: सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त की। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
12: छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी संवेदना की भावना के साथ प्रयत्नशील है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया, तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ।
0: सरकार के सूत्र ये कहते हैं कि केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दोबारा नीट परीक्षा बिना किसी लीक के कराए जाने की तारीफ भी की। सरकार का मानना है कि काम होगा लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने से, और अगर अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो फिर काम होगा दोषियों को तय समय में सजा दिलाने वाली व्यवस्था को बनाने से। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया, कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को स्वीकृति भी दिलाई जो अगले सप्ताह पेश होगा।
13: छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था क्या वो पास हुआ है बिल जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे?
0: नेक्स्ट।
14: मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, और पेपर लीक में
15: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
3: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा।
0: नेक्स्ट।
3: असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
1: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
1: पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
3: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है, जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।
1: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है, और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
0: सरकार सख्त है, निर्णय ले रही है, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने लगे हैं, लेकिन क्या इससे भी पेपर लीक रुक पाएगा?
16: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने दो उनको, रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे।
17: और प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया,

0: जी रात को क्यों बोले, ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटाक्ष करने का कोई जरूरत नहीं है। समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों का हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं, उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद उनके जो मेल अकाउंट से सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स, तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को।
2: युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए, विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी। हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं।
3: जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना CRPF लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
4: नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैलेट गन के इस्तेमाल का भी है। राहुल गांधी आज साहिल नाम के छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, दावा किया कि साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इस आधार पर राहुल ने सरकार पर देश के भविष्य यानी कि छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है, वो कह चुकी है कि हम लोग पैलेट गन का इस्तेमाल करते ही नहीं है, हमारे पास है ही नहीं।
5: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
6: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, ये है पैलेट गन।
5: अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए, दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
6: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
5: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी।
6: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है।
5: साहिल लोचाप दाम का ये नौजवान दिल्ली के निजामगढ़ का रहने वाला है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
7: मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूं, इनकलाब जिंदाबाद।
5: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया।
8: मैं था साहिल तो देख के सारे में नाम ब्लड लग रहे
9: हैं, कटा हुआ था छर्रे, क्या
8: छर्रे छर्रे छर्रे यहाँ पे पूरे मुंह पे आंखों के अंदर पूरे देख के घबरा गए, क्या है क्या नहीं है ये चीज, फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज़ है, उन्होंने कहा कि

0: आंख में जाकर आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
1: यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है, क्या है?
0: यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया, तो डॉक्टर ने बंद करते ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं करा।
1: ऑपरेशन हो गया या कब?
0: एक ऑपरेशन हो गया, सुबह हुआ था ऑपरेशन, रात को।
1: आज हुआ है?
0: कल सुबह हुआ था, और मैं रात को लगे थे 1 बजे कराने के टाइम, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन, और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद।
1: आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे,
0: नो करे 1-2% चांस है।
1: निशान देख पा रहे थे उसके?
0: निशान देखे हमने, आंखों में भी देखे हैं, आंखों में जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं दोनों
1: तरफ। शरीर से जो निकले थे छर्रे वो आप देख पाए थे, जो निकाला गया?
0: नहीं, नहीं दिखा।
1: डॉक्टर ने, आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है, क्या लगा इसके शरीर में?
0: बस हाँ पूछा था हमने, से भी इतना बताया था वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने कि वहाँ
1: क्या लगा है शरीर में, क्या चोट है, नहीं
0: पता। ये पता हमें खुद पता नहीं चला क्या ये क्या, हम दूसरों को क्या बताएं।
2: आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की, जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन के हैं इस पर वो कुछ नहीं कहते।
3: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास, उसी के नंबर से। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए हैं, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
4: तो क्या उस समय का क्या माहौल था घर का?
3: घर में तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कॉन्टेक्ट किया उनसे तो इलाज के लिए फिर ले गए।
4: क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको क्या पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या?
3: मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्त के जरिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा, मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में, जिस चीज के भी हों।
2: पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है।
5: पेपर लीक मामले के विरोध में हो रहे प्रदर्शन से जुड़े एक और विवाद से आइए हम आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने अपने छात्रों और स्टाफ को जंतर मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है, डीयू यानी कि। तो इस पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए समय आने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय करने की बात कही है।
6: तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है, सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरह देश के कई बड़े शिक्षा संस्थान निशाने पर हैं। वजह जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई छात्रों को एडवाइजरी है, जिसमें छात्रों से विरोध प्रदर्शनों से बचने की सलाह दे दी गई। जेएनयू की एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल न होने, न ही वहां जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रों को जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह दी गई। चेतावनी ये दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही यूनिवर्सिटी के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी छात्रों से जंतर मंतर से दूर रहने की अपील करते हुए इससे पढ़ाई लिखाई और करियर के मौकों पर बुरा असर पड़ने को लेकर चेताया है। कहा है कि जंतर मंतर पर किसी भी तरह की गैर कानूनी भीड़ या प्रदर्शन के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
7: एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर ऐसा कुछ गाइडलाइन है, मैनेजर जैसे अभी हमने कहा कि हमारे जानकारी में नहीं है, अच्छा। तो मेरे ख्याल से अच्छा है, और हम सब स्टूडेंट्स को उसको देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि वहाँ पे नहीं जाना है, बचना है या ऐसा कुछ, तो हम उससे एग्री करते हैं।
8: गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सब अच्छा से किए, सब होगा सही, बाकी सब तो बोल रही है।
9: लोग अगर जाएं कहीं तो हम लोग प्रिकॉशन लें, जैसे हम लोग आराम से जाएं, सेफ पीस आंदोलन, पीस मूवमेंट करें, ठीक है, जो भी प्रोटेस्ट करना है पीसफुली करें, आराम से जाए, वहाँ बैठे बात करें, जिससे भी बात करें, कोई ऑफिशियल से एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आराम से बात करें, अच्छे से बात करें, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, हम लोग यही कर सकते हैं। और
2: चर्चा अब ये छिड़ गई कि ये छात्रों को सलाह दी जा रही है या फिर उनको कार्रवाई का डर दिखाकर जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने से डीयू और जेएनयू की तरफ से रोका जा रहा है। जेएनयू की पहचान भारत में छात्र आंदोलनों के सबसे अहम केंद्रों में से एक के तौर पर रही है। दशकों से इस कैंपस में शिक्षा नीति और कैंपस के कामकाज से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक के मुद्दों पर प्रदर्शन होते आए, जिससे विरोध प्रदर्शन इसकी सार्वजनिक पहचान का एक खास हिस्सा बने। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब छात्रों को चेताया, तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए लिखा है कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई, समय आने पर आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं AIU ने छात्रों से विरोध प्रदर्शन की बजाय परीक्षाओं पर ध्यान देने को कहा है। IIT रुड़की ने भी छात्रों और स्टाफ को सलाह दी, हालांकि बाद में कहा गया कि ऐसे निर्देश हर साल जारी होते हैं।
5: आक्रोश जनता पार्टी की अपील पर देश भर में छात्रों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल में प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं का गुस्सा शिक्षा की बदहाल व्यवस्था पर फूटा।
10: से पता गया है? घर पे नहीं बोला
11: है? नहीं।
10: घर पे क्या बोला है?
11: अभी जाकर बता देंगे, अभी पता नहीं था।
10: हाँ।
11: ये प्रोटेस्ट हो रहा है।
10: अच्छा, अब रास्ते से निकले, देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
11: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए, हम उनको जानते भी नहीं थे।
2: लखनऊ के परिवर्तन चौक पर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कई छात्राएं घर पर बताकर भी नहीं आई। उनका कहना था कि वो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही है, आगे नीट परीक्षा देनी है। अगर बार बार पेपर लीक होता रहेगा तो मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा?
12: जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक धरना चलना चाहिए। पिछले 12 साल में 152 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ लिटरली खेला जा रहा है।
11: हमारी भी मांग वही है जो बाकी स्टूडेंट्स की है, जैसे कि पहले तो हमें हमसे माफी मांगनी चाहिए जैसा बर्ताव हमारे साथ किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो रिजाइनेशन नहीं देंगे आंदोलन।
2: लखनऊ में इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी लखनऊ में परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक मार्च करते हुए पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए।
10: ये जितने स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, एक वाइट टर्न दिखाई सामने, ये कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो आपने एक तरफ देखा दिल्ली में, तो दूसरी तरफ देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में। अगले दो दिन फिर प्रोटेस्ट है। अब देखना यह है कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या ये जारी रहेगा और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, इस पर नजर फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि जो गूंज जंतर मंतर से उठी थी वो अब राजधानी पहुंच चुकी है।
2: छात्रों का ऐसा ही प्रदर्शन कोलकाता में भी हुआ है, जहां SFI के कार्यकर्ताओं ने CJP के आंदोलन का समर्थन करते हुए कोलकाता में सड़कों को जाम कर दिया।
13: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर आज SFI द्वारा बुलाई गई छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता में आयोजन किया गया, जहां सियालदा से लेकर धर्मतला जो सेंट्रल कोलकाता का इलाका है, यहां पर आज ये रैली हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में लोग जो हैं, जो खासकर छात्र छात्राएं हैं, वो हाथ में तिरंगा लिए, SFI के फ्लैग लिए यहां आ पहुंचे हैं, अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन निकाला। इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे भी शामिल होते हैं।
14: लेकिन ये जन की बात है, ये अब दिल्ली वालों को सुनना होगा। मैं तमाम देशभक्तांना सांगतोय कि दिल्ली मध्ये या पद्धतीने बेछूट पद्धतीने।
2: भोपाल में पेपर लीक के मुद्दे पर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और पेपर लीक को सिस्टम का लीकेज बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। इसमें वो छात्र छात्रा भी शामिल होते हैं जिनकी परीक्षाएं वर्षों से लटकी हुई हैं।
15: भोपाल के नीलम पार्क में इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए छात्र हैं, वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं रुकी हुई है वो होनी चाहिए, वक्त पर नतीजे घोषित होने चाहिए, वक्त पे भर्तियां निकलनी चाहिए। ये बताइए जो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं, जिसके बाद आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए?
16: सर वो सब गलत है, जो भी शिक्षा को लेके जो भी है, ये कोई भी मतलब ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जो लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के स्टूडेंट ही भविष्य है आगे चल के।
2: हैदराबाद की सड़कों पर भी नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश दिखा। पुराने हैदराबाद में इकट्ठा हुए लोग और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया।
17: जब बीआरएस का यूथ विंग ने हैदराबाद के धरना चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया, आप देख सकते हैं मेरे ठीक बिल्कुल पीछे भारी संख्या में यहां पर बीआरएस के लीडर्स, युवा छात्र के संगठन और साथ ही बीआरएस का युवा मोर्चा यहां पर जमा हुए हैं।
18: स्टूडेंट्स का एजुकेशन का मामला है तो मैं पूर्वों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन है इसको सुधारना एक युवा का काम है, युवा जब तक नहीं जागेगा ये एजुकेशन सिस्टम सेट नहीं होगा।
2: नीट पेपर लीक मामले ने शिक्षा की बदहाली को उघाड़ कर रख दिया है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि पेपर लीक के खिलाफ अब छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, बोले सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, हटाए गए एनटीए के 47 अधिकारी, पुलिस एक्शन संभव, सूत्रों के अनुसार इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। आज दोपहर 3:30 नड्डा और जितेंद्र सिंह से फिर मिलेगा सीजेपी का डेलीगेशन। आजतक से बोले अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़ी स्थिति, अहमदाबाद सूरत में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया, असम में 61 लोगों की मौत। एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए लोगों का आभार व्यक्त किया है। अपने कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया है। छोटा सा वीडियो और इंस्टाग्राम पर लाखों लाख व्यूज।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: सरकार और सीजेपी के बीच दो राउंड की बातचीत हो चुकी, आज तीसरे दौर की वार्ता है। शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास आशुतोष रांका से सरकार के दो मंत्री मुलाकात कर चुके हैं, ये मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा हैं। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, वहीं सरकार ने इस पर विचार करने के लिए आज तक का समय मांगा है। अब आज दोपहर फिर से मुलाकात होगी। सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी मांग को लेकर है, जिस पर ना सीजेपी पीछे हट रही है न विपक्ष, और इसीलिए जंतर मंतर पर धरना भी चल रहा है, जारी है और संसद ठप है।
2: मैंने इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है।
3: 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है, किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी होगा? जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं, जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी।
4: उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है,
5: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग in the march to the parliament on July 20, 2026.
3: बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के दो प्रतिनिधि पहुंचे, सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। दो घंटे बातचीत चली, 3 मांग 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की दो मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा।
6: नंबर एक क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर वन डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
7: हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा।
8: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
3: अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहां प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को दुख पहुंचा है।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को यह भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है।
9: आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपी हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोना मांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है, तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
10: पहली मांग करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी, और थर्ड दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एनी डिस्कशन।
3: यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर यह आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा। दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी।
11: हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस जिस दिन कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं, साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए, अंदर क्या हुआ, नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी इन्होंने स्पष्ट तौर पे लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है।
3: सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त की। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
12: छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी संवेदना की भावना के साथ प्रयत्नशील है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया, तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ।
0: सरकार के सूत्र ये कहते हैं कि केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दोबारा नीट परीक्षा बिना किसी लीक के कराए जाने की तारीफ भी की। सरकार का मानना है कि काम होगा लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने से, और अगर अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो फिर काम होगा दोषियों को तय समय में सजा दिलाने वाली व्यवस्था को बनाने से। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया, कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को स्वीकृति भी दिलाई जो अगले सप्ताह पेश होगा।
13: छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था क्या वो पास हुआ है बिल जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे?
0: नेक्स्ट।
14: मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, और पेपर लीक में
15: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
3: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा। नेक्स्ट। असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
1: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
1: पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
3: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है, जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।
1: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है, और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
0: सरकार सख्त है, निर्णय ले रही है, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने लगे हैं, लेकिन क्या इससे भी पेपर लीक रुक पाएगा?
16: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे।
17: और प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले, ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटास करने का कोई जरूरत नहीं है, समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
18: सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों का हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं, उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो फिर वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को।
19: युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए, विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी। हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं।
20: जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना CRPF लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
0: नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैलेट गन के इस्तेमाल का भी है। राहुल गांधी आज साहिल नाम के छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, दावा किया कि साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इस आधार पर राहुल ने सरकार पर देश के भविष्य यानी कि छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है, वो कह चुकी है कि हम लोग पैलेट गन का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, हमारे पास है ही नहीं।
21: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
22: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, ये है पैलेट गन।
21: अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए, दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
22: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
21: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी।
22: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है।
21: साहिल लोचाप नाम का ये नौजवान दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
23: मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूं, इनकलाब जिंदाबाद।
21: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही, लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया।
24: मैं था साहिल, तो देख के सारे में नाम ब्लड लग रहे
25: हैं, कटा हुआ था छर्रे, क्या
24: छर्रे छर्रे छर्रे यहाँ पे पूरे मुंह पे आंखों के अंदर पूरी पूरे देख के घबरा गए हम, क्या है क्या नहीं है ये चीज। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज, उन्होंने कहा कि आंख में लड़के आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
25: यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है, क्या है?
24: यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया, तो डॉक्टर ने बंद करते ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं करा।
25: ऑपरेशन हो गया या कब?
24: एक ऑपरेशन हो गया, सुबह हुआ था ऑपरेशन, रात को।
25: आज हुआ है?
24: कल सुबह हुआ था, और मैं रात को लगे थे 1 बजे कराने की, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन, और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद।
25: आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे,
24: एक दो % चांस है।
25: निशान देख पा रहे? तो
24: निशान देखे हमने, आंखों में भी देखे हैं, आंखों के जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं या दोनों
25: तरफ शरीर से जो निकले थे छर्रे वो आप देख पाए थे जो निकाला गया?
24: नहीं, नहीं देखा।
25: डॉक्टर ने आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है, क्या लगा इसके शरीर में?
24: बस हाँ पूछा था हमने, सिर्फ इतना बताया था वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने कि वहाँ
25: क्या लगा है शरीर में, क्या चोट है
24: ये पता, हमें खुद पता नहीं चला क्या ये छर्रे छर्रे छर्रे छर्रे क्या, हम दूसरों को क्या बताएं।
21: आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन के हैं इस पर वो कुछ नहीं कहते।
2: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास उसी के नंबर से, उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए हैं, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
4: तो क्या उस समय का क्या माहौल था घर का?
2: घर में तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कॉन्टेक्ट किया उनसे तो इलाज के लिए फिर ले गए।
4: क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको क्या पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या?
2: मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्त के जरिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा, मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में जिस चीज के भी हों।
21: पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है।
0: आक्रोश, जनता पार्टी की अपील पर देश भर में छात्रों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल में प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं का गुस्सा शिक्षा की बदहाल व्यवस्था पर फूटा।
5: से पता गया है? घर पे नहीं बोला?
6: नहीं।
5: घर पे क्या बोला है?
6: अभी जाकर बता देंगे, अभी पता नहीं था ये प्रोटेस्ट हो रहा है।
5: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
6: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहां तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
21: लखनऊ के परिवर्तन चौक पर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कई छात्राएं घर पर बताकर भी नहीं आई, उनका कहना था कि वो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही है, आगे नीट परीक्षा देनी है, अगर बार बार पेपर लीक होता रहेगा तो मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा।
7: जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक धरना चलना चाहिए। पिछले 12 साल में 152 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ लिटरली खेला जा रहा है।
6: हमारी भी मांग वही है जो बाकी स्टूडेंट्स की है, जैसे कि पहले तो हमें हमारे हमसे माफी मांगनी चाहिए जैसा बर्ताव हमारे साथ किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, और दूसरी बात दिल्ली पुलिस कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो रिजाइनेशन नहीं देंगे आंदोलन तो।
21: लखनऊ में इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी लखनऊ में परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक मार्च करते हुए पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए।
5: ये जितने स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं, लड़के हैं लड़कियां, एक वाइट टर्न दिखाई सामने, ये कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो आपने एक तरफ देखा दिल्ली में और दूसरी तरफ देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में। अगले दो दिन फिर प्रोटेस्ट है, अब देखना ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या ये जारी रहेगा और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, इस पर नजर फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि जो गूंज जंतर मंतर से उठी थी वो अब राजधानी पहुंच चुकी है।
21: छात्रों का ऐसा ही प्रदर्शन कोलकाता में भी हुआ है, जहां एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने सीजेपी के आंदोलन का समर्थन करते हुए कोलकाता में सड़कों को जाम कर दिया।
8: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर आज एसएफआई द्वारा बुलाई गई छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता में आयोजन किया गया, जहां सियालदा से लेकर धर्मतला जो सेंट्रल कोलकाता का इलाका है यहां पर आज ये रैली हुआ हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में लोग जो हैं, जो खासकर छात्र छात्राएं हैं, वो हाथ में तिरंगा लिए एसएफआई के फ्लैग लिए यहां आ पहुंचे हैं, अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
21: मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन निकाला, इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे भी शामिल होते हैं।
9: सकता, लेकिन ये जन की बात है, ये अब दिल्ली वालों को सुनना होगा। मैं तमाम देशभक्तांना सांगतोय की दिल्ली मध्ये या पद्धतीने बेछूट पद्धतीने।
21: भोपाल में पेपर लीक के मुद्दे पर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और पेपर लीक को सिस्टम का लीकेज बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। इसमें वो छात्र छात्रा भी शामिल होते हैं जिनकी परीक्षाएं वर्षों से लटकी हुई हैं।
10: भोपाल के नीलम पार्क में इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए छात्र हैं, वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं रुकी हुई है वो होनी चाहिए, वक्त पर नतीजे घोषित होने चाहिए, वक्त पे भर्तियां निकलनी चाहिए। ये बताइए जो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं जिसके बाद आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए?
11: सर वो सब गलत है, जो भी शिक्षा को लेके जो भी है ये कोई भी मतलब ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जो लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के स्टूडेंट ही भविष्य है आगे चल के।
21: हैदराबाद की सड़कों पर भी नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश दिखा। पुराने हैदराबाद में इकट्ठा हुए लोग और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया।
12: आज बीआरएस का यूथ विंग ने हैदराबाद के धरना चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं मेरे ठीक बिल्कुल पीछे भारी संख्या में यहां पर बीआरएस के लीडर्स, युवा छात्र के संगठन और साथ ही बीआरएस का युवा मोर्चा यहाँ पर जमा हुए हैं।
13: स्टूडेंट्स का एजुकेशन का मामला है तो मैं पूर्व से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन है इसको सुधारना एक युवा का काम है, युवा जब तक नहीं जागेगा ये एजुकेशन सिस्टम सेट नहीं होगा।
21: नीट पेपर लीक मामले ने शिक्षा की बदहाली को उघाड़ कर रख दिया है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि पेपर लीक के खिलाफ अब छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, बोले सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार।

0: प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, हटाए गए एनटीए के 47 अधिकारी, पुलिस एक्शन संभव। आज दोपहर 3:30 नड्डा और जितेंद्र सिंह से फिर मिलेगा सीजेपी का डेलीगेशन। आज तक से बोले अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़ी स्थिति, अहमदाबाद सूरत में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया, असम में 61 लोगों की मौत। एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए लोगों का आभार व्यक्त किया है। अपने कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया है। छोटा सा वीडियो और इंस्टाग्राम पर लाखों लाख व्यूज।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: सरकार और सीजेपी के बीच दो राउंड की बातचीत हो चुकी, आज तीसरे दौर की वार्ता है। शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास आशुतोष रांका से सरकार के दो मंत्री मुलाकात कर चुके हैं, ये मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा हैं। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं सरकार ने इस पर विचार करने के लिए आज तक का समय मांगा है। अब आज दोपहर फिर से मुलाकात होगी। सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी मांग को लेकर है, जिस पर ना सीजेपी पीछे हट रही है न विपक्ष, और इसीलिए जंतर मंतर पर धरना भी चल रहा है, जारी है और संसद ठप है।
2: मैंने इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है।
3: 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है, किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी होगा? जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं, जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी।
4: उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है,
5: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग in the march to the parliament on July 20, 2026.
3: बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के दो प्रतिनिधि पहुंचे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। दो घंटे बातचीत चली, 3 मांग 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की दो मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा।
6: नंबर 1 क्या है, सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
7: हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा
8: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
3: अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहाँ प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को दुख पहुँचा है।
1: मैं जानता हूँ कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को यह भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है।
9: आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपी हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोना मानसिंह जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है, तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
10: पहली मांग करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी, और थर्ड दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एनी डिस्कशन।
3: यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर यह आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा। दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी।
11: हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस जिस दिन कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं, साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए, अंदर क्या हुआ, नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी इन्होंने स्पष्ट तौर पे लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है।
12: सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त की। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
13: छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी संवेदना की भावना के साथ प्रयत्नशील है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया, तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ।
0: सरकार के सूत्र ये कहते हैं कि केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दोबारा नीट परीक्षा बिना किसी लीक के कराए जाने की तारीफ भी की। सरकार का मानना है कि काम होगा लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने से, और अगर अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो फिर काम होगा दोषियों को तय समय में सजा दिलाने वाली व्यवस्था को बनाने से। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया, कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को स्वीकृति भी दिलाई जो अगले सप्ताह पेश होगा।
14: छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था क्या वो पास हुआ है बिल जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे?
0: नेक्स्ट,
15: मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में
4: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
3: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा।
0: नेक्स्ट,
3: असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
1: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
1: पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
3: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।
1: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
0: सरकार सख्त है, निर्णय ले रही है, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने लगे हैं, लेकिन क्या इससे भी पेपर लीक रुक पाएगा?
16: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे।
17: और प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले, ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटास करने का कोई जरूरत नहीं है, समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए इस पे ध्यान देना चाहिए।
18: सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों का हित हो चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं, उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स, तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को।
19: युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए। विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी।

0: रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना CRPF लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
1: नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैलेट गन के इस्तेमाल का भी है। राहुल गांधी आज साहिल नाम के छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, दावा किया कि साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इस आधार पर राहुल ने सरकार पर देश के भविष्य यानी कि छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है, वो कह चुकी है कि हम लोग पैलेट गन का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, हमारे पास है ही नहीं।
2: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
3: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, ये है पैलेट गन।
2: अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए, दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
3: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
2: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी।
3: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है।
2: साहिल लोचाप नाम का ये नौजवान दिल्ली के निजफगढ़ का रहने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
4: मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।
2: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही, लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया।
5: मैं था साहिल, तो देख के सारे में नाम ब्लड लग रहे हैं, नाम लग रहे हैं।
6: कटा हुआ था छर्रे, क्या
5: छर्रे छर्रे छर्रे यहाँ पे पूरे मुंह पे, आंखों के अंदर, पूरी पूरे देख के घबरा गए हम, तो भाई क्या क्या नहीं है ये चीज। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज़ है, फिर उन्होंने कहा कि आंख में जाकर आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
6: यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है, क्या है?
5: यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया, डॉक्टर ने बस घटिया ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं करा।
6: ऑपरेशन हो गया या कब?
5: एक ऑपरेशन हो गया था, सुबह हुआ था ऑपरेशन, रात को।
6: आज हुआ है?
5: कल सुबह हुआ था, और मैं रात को लगे थे 1 बजे कराने की टाइम, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन, और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद।
6: आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे,
5: एक 2% चांस है।
6: निशान देख पा रहे तो उसके
5: निशान देखे थे, निशान देखे हैं मैंने, आंखों में भी देखे हैं, आंखों के जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं दोनों।
6: शरीर से जो निकले थे छर्रे वो आप देख पाए थे, जो निकाला गया?
5: नहीं देखा।
6: डॉक्टर ने, आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है, क्या लगा इसके शरीर में?
5: बस हाँ पूछा था हमने, सिर्फ इतना बताया वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने कि वहाँ
6: क्या लगा है शरीर में, क्या चोट है
5: ये पता, हमें खुद पता नहीं चला क्या ये छर्रे छर्रे छर्रे छे छे छे, क्या हम दूसरों को क्या बताए।
2: आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की, जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए, 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन के हैं इस पर वो कुछ नहीं कहते।
7: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास, उसी के नंबर से। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल

0: हो गए हैं, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
1: तो क्या उस समय का क्या माहौल था घर का?
0: घर में तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कांटेक्ट किया उनसे तो इलाज के लिए फिर ले गए।
1: क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको क्या पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या?
0: मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्त के जरिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा, मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में, जिस चीज के भी हों।
2: पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है।
3: पेपर लीक मामले के विरोध में हो रहे प्रदर्शन से जुड़े एक और विवाद से आइए हम आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने अपने छात्रों और स्टाफ को जंतर मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है डीयू यानी कि। तो इस पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए समय आने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय करने की बात कही है।
4: तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है, सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरह देश के कई बड़े शिक्षा संस्थान निशाने पर हैं। वजह जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई छात्रों को एडवाइजरी है, जिसमें छात्रों से विरोध प्रदर्शनों से बचने की सलाह दे दी गई। जेएनयू की एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल न होने न ही वहां जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रों को जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह दी गई। चेतावनी ये दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही यूनिवर्सिटी के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी छात्रों से जंतर मंतर से दूर रहने की अपील करते हुए इससे पढ़ाई लिखाई और करियर के मौकों पर बुरा असर पड़ने को लेकर चेताया है। कहा है कि जंतर मंतर पर किसी भी तरह की गैर कानूनी भीड़ या प्रदर्शन के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
5: एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर ऐसा कुछ गाइडलाइन है, मैनेजर जैसे अभी हमने कहा कि हमारे जानकारी में नहीं है, अच्छा। तो मेरे ख्याल से अच्छा है और हम सब स्टूडेंट्स को इसको देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि वहाँ पे नहीं जाना है, बचना है या ऐसा कुछ, तो हम उससे एग्री करते हैं।
6: गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सब अच्छा से किए, सब होगा सही, बाकी सब तो बोल रही है।
7: लोग अगर जाएं कहीं तो हम लोग प्रिकॉशन लें, जैसे हम लोग आराम से जाएं, सेफ पीस आंदोलन, पीस मूवमेंट करें, ठीक है, जो भी प्रोटेस्ट करना है पीसफुली करें, आराम से जाए, वहाँ बैठे बात करें, जिससे भी बात करें, कोई ऑफिशियल से एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आराम से बात करें, अच्छे से बात करें, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, हम लोग यही कर सकते हैं। और
2: चर्चा अब ये छिड़ गई कि ये छात्रों को सलाह दी जा रही है या फिर उनको कार्रवाई का डर दिखाकर जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने से डीयू और जेएनयू की तरफ से रोका जा रहा है। जेएनयू की पहचान भारत में छात्र आंदोलनों के सबसे अहम केंद्रों में से एक के तौर पर रही है। दशकों से इस कैंपस में शिक्षा नीति और कैंपस के कामकाज से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक के मुद्दों पर प्रदर्शन होते आए, जिससे विरोध प्रदर्शन इसकी सार्वजनिक पहचान का एक खास हिस्सा बने। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब छात्रों को चेताया, तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए लिखा है कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई, समय आने पर आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं एआईयू ने छात्रों से विरोध प्रदर्शन की बजाय परीक्षाओं पर ध्यान देने को कहा है। आईआईटी रुड़की ने भी छात्रों और स्टाफ को सलाह दी, हालांकि बाद में कहा गया कि ऐसे निर्देश हर साल जारी होते हैं।
3: आक्रोच जनता पार्टी की अपील पर देश भर में छात्रों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल में प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं का गुस्सा शिक्षा की बदहाल व्यवस्था पर फूटा।
8: से पता गया है? घर पे नहीं बोला?
9: नहीं।
8: घर पे क्या बोला है?
9: अभी जाकर बता देंगे, अभी पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
8: अच्छा, आप रास्ते से निकले, देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? कॉकरोच देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
9: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए, हम उनको जानते भी नहीं थे।
2: लखनऊ के परिवर्तन चौक पर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कई छात्राएं घर पर बताकर भी नहीं आई। उनका कहना था कि वो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही हैं। आगे नीट परीक्षा देनी है। अगर बार बार पेपर लीक होता रहेगा तो मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा।
10: जब तक इस्तीफा नहीं दे देती है तब तक धरना चलना चाहिए। पिछले 12 साल में 152 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ लिटरली खेला जा रहा है।
9: हमारी भी मांग वही है जो बाकी स्टूडेंट्स की है, जैसे कि पहले तो हमें हमसे माफी मांगनी चाहिए जैसा बर्ताव हमारे साथ किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो रिजाइनेशन नहीं देंगे आंदोलन।
2: लखनऊ में इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी लखनऊ में परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक मार्च करते हुए पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए।
8: ये जितने स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं, लड़के हैं लड़कियां, एक वाइट दिखाई सामने, ये कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो आपने एक तरफ देखा दिल्ली में और दूसरी तरफ देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में। अगले दो दिन फिर प्रोटेस्ट है। अब देखना यह है कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या ये जारी रहेगा और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, इस पर नजर फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि जो गूंज जंतर मंतर से उठी थी वो अब राजधानी पहुंच चुकी है।
2: छात्रों का ऐसा ही प्रदर्शन कोलकाता में भी हुआ है, जहां SFI के कार्यकर्ताओं ने CJP के आंदोलन का समर्थन करते हुए कोलकाता में सड़कों को जाम कर दिया।
11: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर आज SFI द्वारा बुलाई गई छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता में आयोजन किया गया, जहां सियालदा से लेकर धर्मतला जो सेंट्रल कोलकाता का इलाका है यहां पर आज ये रैली हुआ हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में लोग जो हैं, जो खासकर छात्र छात्राएं हैं, वो हाथ में तिरंगा लिए SFI के फ्लैग लिए यहां आ पहुंचे हैं, अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन निकाला। इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे भी शामिल होते हैं।
12: लेकिन ये जन की बात है, ये आप दिल्ली वालों को सुनना होगा। मैं तमाम देशभक्तांना सांगतोय की दिल्ली मध्ये या पद्धतीने बेछूट पद्धतीने।
2: भोपाल में पेपर लीक के मुद्दे पर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और पेपर लीक को सिस्टम का लीकेज बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। इसमें वो छात्र छात्रा भी शामिल होते हैं जिनकी परीक्षाएं वर्षों से लटकी हुई हैं।
13: भोपाल के नीलम पार्क में इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए छात्र हैं, वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं रुकी हुई है वो होनी चाहिए, वक्त पर नतीजे घोषित होने चाहिए, वक्त पे भर्तियां निकलनी चाहिए। ये बताइए जो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं, जिसके बाद आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए?
14: सर वो सब गलत है, जो भी शिक्षा को लेके जो भी है, ये कोई भी मतलब ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जो लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के स्टूडेंट ही भविष्य है आगे चल के।
2: हैदराबाद की सड़कों पर भी नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश दिखा। पुराने हैदराबाद में इकट्ठा हुए लोग और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया।
15: आज BRS का यूथ विंग ने हैदराबाद के धरना चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं मेरे ठीक बिल्कुल पीछे भारी संख्या में यहां पर BRS के लीडर्स, युवा छात्र के संगठन और साथ ही BRS का युवा मोर्चा यहाँ पर जमा हुए हैं।
16: स्टूडेंट्स का एजुकेशन का मामला है तो मैं पूर्व से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन है इसको सुधारना एक युवा का काम है। युवा जब तक नहीं जागेगा ये एजुकेशन सिस्टम सेट नहीं होगा।
2: नीट पेपर लीक मामले ने शिक्षा की बदहाली को उघाड़ कर रख दिया है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि पेपर लीक के खिलाफ अब छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, बोले सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, हटाए गए एनटीए के 47 अधिकारी, पुलिस एक्शन संभव, सूत्रों के अनुसार इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। आज दोपहर 3:30 बजे नड्डा और जितेंद्र सिंह से फिर मिलेगा सीजेपी का डेलीगेशन। आजतक से बोले अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़ी स्थिति, अहमदाबाद सूरत में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया, असम में 61 लोगों की मौत। एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए लोगों का आभार व्यक्त किया है। अपने कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया है। छोटा सा वीडियो और इंस्टाग्राम पर लाखों लाख व्यूज।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: सरकार और सीजेपी के बीच दो राउंड की बातचीत हो चुकी, आज तीसरे दौर की वार्ता है। शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास आशुतोष रांका से सरकार के दो मंत्री मुलाकात कर चुके हैं, ये मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा हैं। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, वहीं सरकार ने इस पर विचार करने के लिए आज तक का समय मांगा है। अब आज दोपहर फिर से मुलाकात होगी। सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी मांग को लेकर है, जिस पर ना सीजेपी पीछे हट रही है न विपक्ष, और इसीलिए जंतर मंतर पर धरना भी चल रहा है, जारी है और संसद ठप है।
2: मैंने इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है।
3: 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है, किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी होगा? जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं, जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी।
4: उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है,
5: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग in the march to the parliament on July 20, 2026.
3: बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के दो प्रतिनिधि पहुंचे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। दो घंटे बातचीत चली, 3 मांग 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की दो मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा।
6: नंबर एक क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर वन डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
7: हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो
8: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
3: अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहां प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को दुख पहुंचा है।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को यह भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है।
9: आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपी हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोना मांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है, तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
10: पहली मांग करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी, और थर्ड दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एनी डिस्कशन।
3: यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर ये आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा। दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी।
11: हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस जिस दिन कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं, साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए, अंदर क्या हुआ, नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी इन्होंने स्पष्ट तौर पे लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है।
12: सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त की। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
13: छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी संवेदना की भावना के साथ प्रयत्नशील है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया, तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ।
0: सरकार के सूत्र ये कहते हैं कि केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दोबारा नीट परीक्षा बिना किसी लीक के कराए जाने की तारीफ भी की। सरकार का मानना है कि काम होगा लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने से, और अगर अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो फिर काम होगा दोषियों को तय समय में सजा दिलाने वाली व्यवस्था को बनाने से। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया, कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को स्वीकृति भी दिलाई जो अगले सप्ताह पेश होगा।
14: छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था क्या वो पास हुआ है बिल जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे?
0: नेक्स्ट,
15: मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में
16: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
3: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा।
0: नेक्स्ट,
3: असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
1: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
1: पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
3: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है, जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।
1: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है, और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
0: सरकार सख्त है, निर्णय ले रही है, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने लगे हैं, लेकिन क्या इससे भी पेपर लीक रुक पाएगा?
17: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे।
18: और प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है? ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले। ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटास करने का कोई जरूरत नहीं है। समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
19: सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं, उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट, और उसके बाद वो फिर वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को।
20: युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए, विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी। हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं।
21: जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना CRPF लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
0: नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैलेट गन के इस्तेमाल का भी है। राहुल गांधी आज साहिल नाम के छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, दावा किया कि साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इस आधार पर राहुल ने सरकार पर देश के भविष्य यानी कि छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है, वो कह चुकी है कि हम लोग पैलेट गन का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, हमारे पास है ही नहीं।
22: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
23: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, ये है पैलेट गन।
22: अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए, दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
23: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
22: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी।
23: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है।
22: साहिल लोचाप नाम का ये नौजवान दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
24: मेरा नाम साहिल है, मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।
22: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही, लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया।
25: मैं था साहिल, तो देख के सारे मेरे नाम ब्लड लग रहे हैं,
26: कटा हुआ था छर्रे, क्या
25: छर्रे यहाँ पे पूरे मुंह पे आंखों के अंदर पूरे देख के घबरा गए, क्या है क्या नहीं है ये चीज। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज, उन्होंने कहा कि आंख में लड़के आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
26: यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है, क्या है?
25: यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया, तो डॉक्टर ने बंद करते ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं करा।
26: ऑपरेशन हो गया या कब?
25: एक ऑपरेशन हो गया, सुबह हुआ था ऑपरेशन, रात को।
26: आज हुआ है?
25: कल सुबह हुआ था, और मैं रात को लगे थे 1 बजे कराने की, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन, और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद।
26: आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे,
25: नो करें, 1-2% चांस है।
26: निशान देख पा रहे? तो
25: निशान देखे हैं मैंने, आंखों में भी देखे हैं। आंखों के जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं या दोनों
26: तरफ शरीर से जो निकले थे छर्रे वो आप देख पाए थे जो निकाला गया?
25: नहीं, नहीं देखा।
26: डॉक्टर ने आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या, क्या लगा इसके शरीर में?
25: बस हाँ पूछा था हमने, सिर्फ इतना बताया था वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने कि वहाँ
26: क्या लगा है शरीर में, क्या चोट है
25: ये पता, हमें खुद पता नहीं चला क्या ये छर्रे छर्रे छर्रे क्या, हम दूसरे क्या बताए।
22: आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन के हैं इस पर वो कुछ नहीं कहते।
2: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास उसी के नंबर से, उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
4: तो क्या उस समय का क्या माहौल था घर पर?
2: घर में तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कॉन्टेक्ट किया उनसे तो इलाज के लिए फिर ले गए।
4: क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको क्या पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या?
2: मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्त के जरिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा, मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में जिस चीज के भी हों।
22: पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है।
0: आक्रोश, जनता पार्टी की अपील पर देश भर में छात्रों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल में प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं का गुस्सा शिक्षा की बदहाल व्यवस्था पर फूटा।
5: से पता गया है?
6: नहीं।
5: घर पे नहीं बोला है?
6: नहीं।
5: घर पे क्या बोला है?
6: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
5: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
6: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए, हम उनको जानते भी नहीं थे।
22: लखनऊ के परिवर्तन चौक पर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कई छात्राएं घर पर बताकर भी नहीं आई, उनका कहना था कि वो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही है, आगे नीट परीक्षा देनी है, अगर बार बार पेपर लीक होता रहेगा तो मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा।
7: जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक धरना चलना चाहिए। पिछले 12 साल में 152 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ लिटरली खेला जा रहा है।
6: हमारी भी मांग वही है जो बाकी स्टूडेंट्स की है, जैसे कि पहले तो हमें हमसे माफी मांगनी चाहिए जैसा बर्ताव हमारे साथ किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, और दूसरी बात दिल्ली पुलिस कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो रिजाइनेशन नहीं देंगे आंदोलन तो।
22: लखनऊ में इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी लखनऊ में परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक मार्च करते हुए पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए।
5: ये जितने स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं, लड़के हैं लड़कियां, एक वाइट रंग दिखाई सामने, ये कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो आपने एक तरफ देखा दिल्ली में, और दूसरी तरफ देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में। अगले दो दिन फिर प्रोटेस्ट है, अब देखना ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या ये जारी रहेगा, और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है इस पर नजर फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि जो गूंज जंतर मंतर से उठी थी वो अब राजधानी पहुंच चुकी है।
22: छात्रों का ऐसा ही प्रदर्शन कोलकाता में भी हुआ है, जहां SFI के कार्यकर्ताओं ने CJP के आंदोलन का समर्थन करते हुए कोलकाता में सड़कों को जाम कर दिया।
8: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर आज SFI द्वारा बुलाई गई छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता में आयोजन किया गया, जहां सियालदा से लेकर धर्मतला जो सेंट्रल कोलकाता का इलाका है यहां पर आज ये रैली हुआ हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में लोग जो है, जो खासकर छात्र छात्राएं हैं, वो हाथ में तिरंगा लिए, SFI के फ्लैग लिए यहाँ आ पहुंचे हैं, अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
22: मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन निकाला, इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे भी शामिल होते हैं।
9: सकता, लेकिन ये जन की बात है, ये अब दिल्ली वालों को सुनना होगा। मी तमाम देशभक्तांना सांगतोय की दिल्ली मध्ये या पद्धतीने बेछूट पद्धतीने।
22: भोपाल में पेपर लीक के मुद्दे पर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और पेपर लीक को सिस्टम का लीकेज बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। इसमें वो छात्र छात्रा भी शामिल होते हैं जिनकी परीक्षाएं वर्षों से लटकी हुई हैं।
10: भोपाल के नीलम पार्क में इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए छात्र हैं, वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं रुकी हुई है वो होनी चाहिए, वक्त पर नतीजे घोषित होने चाहिए, वक्त पे भर्तियां निकलनी चाहिए। ये बताइए जो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं जिसके बाद आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए?
11: सर वो सब गलत है, जो भी शिक्षा को लेके जो भी है ये कोई भी मतलब ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जो लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के स्टूडेंट ही भविष्य है आगे चल के।
22: हैदराबाद की सड़कों पर भी नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश दिखा। पुराने हैदराबाद में इकट्ठा हुए लोग और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया।
12: जब बीआरएस का यूथ विंग ने हैदराबाद के धरना चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया, आप देख सकते हैं मेरे ठीक बिल्कुल पीछे भारी संख्या में यहां पर बीआरएस के लीडर्स, युवा छात्र के संगठन और साथ ही बीआरएस का युवा मोर्चा यहां पर जमा हुए हैं।
13: स्टूडेंट्स का एजुकेशन का मामला है तो मैं पूर्व से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन है इसको सुधारना एक युवा का काम है, युवा जब तक नहीं जागेगा ये एजुकेशन सिस्टम सेट नहीं होगा।
22: नीट पेपर लीक मामले ने शिक्षा की बदहाली को उघाड़ कर रख दिया है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि पेपर लीक के खिलाफ अब छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, बोले सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, हटाए गए एनटीए के 47 अधिकारी, पुलिस एक्शन संभव, सूत्रों के अनुसार इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। आज दोपहर 3:30 नड्डा और जितेंद्र सिंह से फिर मिलेगा सीजेपी का डेलीगेशन। आज तक से बोले अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़ी स्थिति, अहमदाबाद सूरत में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया, असम में 61 लोगों की मौत। एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए लोगों का आभार व्यक्त किया है। अपने कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया है। छोटा सा वीडियो और इंस्टाग्राम पर लाखों लाख व्यूज।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: सरकार और सीजेपी के बीच दो राउंड की बातचीत हो चुकी, आज तीसरे दौर की वार्ता है। शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास आशुतोष रांका से सरकार के दो मंत्री मुलाकात कर चुके हैं, ये मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा हैं। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, वहीं सरकार ने इस पर विचार करने के लिए आज तक का समय मांगा है। अब आज दोपहर फिर से मुलाकात होगी। सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी मांग को लेकर है, जिस पर ना सीजेपी पीछे हट रही है न विपक्ष, और इसीलिए जंतर मंतर पर धरना भी चल रहा है, जारी है और संसद ठप है।
2: मैंने इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट।
3: 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है, किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी होगा, जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं। जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी।
4: उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है,
5: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग in the march to the parliament on July 20, 2026.
3: बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के दो प्रतिनिधि पहुंचे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। दो घंटे बातचीत चली, 3 मांग 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की दो मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा।
6: नंबर एक क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर वन डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
7: हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा आज करेंगे वो आपको बताएंगे।
8: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
3: अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहां प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को दुख पहुंचा है।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को यह भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है।
9: आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपी हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोना मांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है, तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
10: पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन, एनी डिस्कशन।
3: यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर ये आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा। दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी।
11: हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस जिस दिन कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं, साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए, अंदर क्या हुआ, नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पे लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है।
12: सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त की। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
13: छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी संवेदना की भावना के साथ प्रयत्नशील है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया, तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ।
0: सरकार के सूत्र ये कहते हैं कि केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दोबारा नीट परीक्षा बिना किसी लीक के कराए जाने की तारीफ भी की। सरकार का मानना है कि काम होगा लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने से, और अगर अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो फिर काम होगा दोषियों को तय समय में सजा दिलाने वाली व्यवस्था को बनाने से। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया, कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को स्वीकृति भी दिलाई जो अगले सप्ताह पेश होगा।
14: छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था क्या वो पास हुआ है बिल जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे?
0: नेक्स्ट,
15: मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में
16: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
3: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा। असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
1: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
1: पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
3: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है, जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।
1: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
0: सरकार सख्त है, निर्णय ले रही है, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने लगे हैं, लेकिन क्या इससे भी पेपर लीक रुक पाएगा?
17: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे।
18: अब प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले, ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटाक्ष करने का कोई जरूरत नहीं है, समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए इस पे ध्यान देना चाहिए।
19: सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं, उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो फिर वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को।
20: युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए, विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी। हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं।
21: जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना CRPF लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
0: नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैलेट गन के इस्तेमाल का भी है। राहुल गांधी आज साहिल नाम के छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, दावा किया कि साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इस आधार पर राहुल ने सरकार पर देश के भविष्य यानी कि छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है, वो कह चुकी है कि हम लोग पैलेट गन का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, हमारे पास है ही नहीं।
22: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
23: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन।

0: करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
1: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
0: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी।
1: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं।
0: साहिल लोचाप नाम का यह नौजवान दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
2: मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।
0: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही, लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया।
3: मैं था साहिल, तो देख के सारे मेरे नाम ब्लड लग रहे हैं,
4: नाम कटा हुआ था। छर्रे क्या
3: छर्रे यहाँ पे पूरे मुंह पे, आंखों के अंदर पूरे देख के घबरा गए, क्या है क्या नहीं है ये चीज। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज, उन्होंने कहा कि आंख में जाकर आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
4: यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है, क्या है?
3: यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने, बंद करते ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं करा।
4: ऑपरेशन हो गया या कब?
3: एक ऑपरेशन हो गया, सुबह हुआ था ऑपरेशन, रात को।
4: आज हुआ है?
3: कल सुबह हुआ था, और मैं रात को लगे थे 1 बजे कराने की, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन, और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद।
4: आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे,
3: नो करें 1-2% चांस है।
4: निशान देख पा रहे थे उसके?
3: निशान देखे हैं मैंने, आंखों में भी देखे हैं, आंखों के जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं दोनों
4: तरफ। शरीर से जो निकले थे छर्रे वो आप देख पाए थे? जो निकाला गया?
3: नहीं देखा।
4: डॉक्टर ने, आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या, क्या लगा इसके शरीर में?
3: बस हाँ पूछा था हमने, सिर्फ इतना बताया था वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने कि वहाँ
4: क्या लगा है शरीर में, क्या चोट है नहीं
3: पता। ये पता हमें खुद पता नहीं चला क्या ये छे क्या, हम दूसरों को क्या बताएं।
0: आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की, जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए, 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन के हैं इस पर वो कुछ नहीं कहते।
5: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास, उसी के नंबर से। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
6: तो क्या उस समय का क्या माहौल था घर पर?
5: घर में तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कांटेक्ट किया उनसे, तो इलाज के लिए फिर ले गए।
6: क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको क्या पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या?
5: मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्त के जरिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा, मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में, जिस चीज के भी हों।
0: पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है।
7: पेपर लीक मामले के विरोध में हो रहे प्रदर्शन से जुड़े एक और विवाद से आइए हम आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने अपने छात्रों और स्टाफ को जंतर मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है डीयू यानी कि। तो इस पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए समय आने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय करने की बात कही है।
8: तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है, सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरह देश के कई बड़े शिक्षा संस्थान निशाने पर है। वजह जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी।

0: यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई छात्रों को एडवाइजरी है, जिसमें छात्रों से विरोध प्रदर्शनों से बचने की सलाह दे दी गई। जेएनयू की एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल न होने न ही वहां जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रों को जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह दी गई। चेतावनी ये दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही यूनिवर्सिटी के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी छात्रों से जंतर मंतर से दूर रहने की अपील करते हुए इससे पढ़ाई लिखाई और करियर के मौकों पर बुरा असर पड़ने को लेकर चेताया है। कहा है कि जंतर मंतर पर किसी भी तरह की गैर कानूनी भीड़ या प्रदर्शन के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
1: एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर ऐसा कुछ गाइडलाइन है, मैनेजर जैसे अभी हमने कहा कि हमारे जानकारी में नहीं है, तो मेरे ख्याल से अच्छा है और हम सब स्टूडेंट्स को इसको देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि वहाँ पे नहीं जाना है, बचना है या ऐसा कुछ, तो हम उससे एग्री करते हैं।
2: गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सब अच्छा चाहिए, सब होगा सही, बाकी सब तो गुड ही है।
3: लोग अगर जाएं कहीं तो हम लोग प्रिकॉशन लें, जैसे हम लोग आराम से जाएं, सेफ पीस आंदोलन पीस मूवमेंट करें, ठीक है, जो भी प्रोटेस्ट करना है पीसफुली करें, आराम से जाएं, वहाँ बैठे बात करें, जिससे भी बात करें, कोई ऑफिशियल से एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आराम से बात करें, अच्छे से बात करें, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, हम लोग यही कर सकते हैं।
0: चर्चा अब ये छिड़ गई कि ये छात्रों को सलाह दी जा रही है या फिर उनको कार्रवाई का डर दिखाकर जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने से डीयू और जेएनयू की तरफ से रोका जा रहा है। जेएनयू की पहचान भारत में छात्र आंदोलनों के सबसे अहम केंद्रों में से एक के तौर पर रही है। दशकों से इस कैंपस में शिक्षा नीति और कैंपस के कामकाज से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक के मुद्दों पर प्रदर्शन होते आए, जिससे विरोध प्रदर्शन इसकी सार्वजनिक पहचान का एक खास हिस्सा बने। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब छात्रों को चेताया, तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए लिखा है कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई, समय आने पर आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं AIU ने छात्रों से विरोध प्रदर्शन के बजाय परीक्षाओं पर ध्यान देने को कहा है। IIT रुड़की ने भी छात्रों और स्टाफ को सलाह दी, हालांकि बाद में कहा गया कि ऐसे निर्देश हर साल जारी होते हैं।
4: आक्रोश जनता पार्टी की अपील पर देश भर में छात्रों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल में प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं का गुस्सा शिक्षा की बदहाल व्यवस्था पर फूटा।
5: से पता गया है? घर पे नहीं बताया?
6: नहीं।
5: घर पे क्या बोला है?
6: अभी जाकर बता देंगे, अभी पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
5: अच्छा, अब रास्ते से निकले, देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
6: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए, हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ के परिवर्तन चौक पर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कई छात्राएं घर पर बताकर भी नहीं आई। उनका कहना था कि वो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही हैं, आगे नीट परीक्षा देनी है, अगर बार बार पेपर लीक होता रहेगा तो मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा।
7: जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक धरना चलना चाहिए। पिछले 12 साल में 152 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई है, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ लिटरली खेला जा रहा है।
6: हमारी भी मांग वही है जो बाकी स्टूडेंट्स की है, जैसे कि पहले तो हमें हमसे माफी मांगनी चाहिए जैसा बर्ताव हमारे साथ किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, और दूसरी बात दिल्ली पुलिस कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो रिजाइनेशन नहीं देंगे आंदोलन तो।
0: लखनऊ में इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी लखनऊ में परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक मार्च करते हुए पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए।
5: ये जितने स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, एक वाइट टर्न दिखाई सामने, ये कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो आपने एक तरफ देखा दिल्ली में, तो दूसरी तरफ देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में। अगले दो दिन फिर प्रोटेस्ट है। अब देखना यह है कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या ये जारी रहेगा, और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, इस पर नजर फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि जो गूंज जंतर मंतर से उठी थी वो अब राजधानी पहुंच चुकी है।
0: छात्रों का ऐसा ही प्रदर्शन कोलकाता में भी हुआ है, जहां एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने सीजेपी के आंदोलन का समर्थन करते हुए कोलकाता में सड़कों को जाम कर दिया।
8: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर आज एसएफआई द्वारा बुलाई गई छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता में आयोजन किया गया, जहां सियालदा से लेकर धर्मतला जो सेंट्रल कोलकाता का इलाका है यहां पर आज ये रैली हुआ हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में लोग जो हैं, जो खासकर छात्र छात्राएं हैं, वो हाथ में तिरंगा लिए, एसएफआई के फ्लैग लिए यहां आ पहुंचे हैं, अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
0: मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन निकाला। इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे भी शामिल होते हैं।
9: लेकिन ये जन की बात है, ये आप दिल्ली वालों को सुनना होगा। मैं तमाम देशभक्तांना सांगतोय की दिल्ली मध्ये या पद्धतीने बेछूट पद्धतीने।
0: भोपाल में पेपर लीक के मुद्दे पर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और पेपर लीक को सिस्टम का लीकेज बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। इसमें वो छात्र छात्रा भी शामिल होते हैं जिनकी परीक्षाएं वर्षों से लटकी हुई हैं।
10: भोपाल के नीलम पार्क में इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए छात्र हैं, वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं रुकी हुई है वो होनी चाहिए, वक्त पर नतीजे घोषित होने चाहिए, वक्त पे भर्तियां निकलनी चाहिए। ये बताइए जो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं, जिसके बाद आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए?
11: सर वो सब गलत है, जो भी शिक्षा को लेके जो भी है, ये कोई भी मतलब ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जो लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के स्टूडेंट ही भविष्य है आगे चल के।
0: हैदराबाद की सड़कों पर भी नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश दिखा। पुराने हैदराबाद में इकट्ठा हुए लोग और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया।
12: जब बीआरएस का यूथ विंग ने हैदराबाद के धरना चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया, आप देख सकते हैं मेरे ठीक बिल्कुल पीछे भारी संख्या में यहां पर बीआरएस के लीडर्स, युवा छात्र के संगठन और साथ ही बीआरएस का युवा मोर्चा यहां पर जमा हुए हैं।
13: स्टूडेंट्स का एजुकेशन का मामला है तो मैं पूर्वों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन है इसको सुधारना एक युवा का काम है, युवा जब तक नहीं जागेगा ये एजुकेशन सिस्टम सेट नहीं होगा।
0: नीट पेपर लीक मामले ने शिक्षा की बदहाली को उघाड़ कर रख दिया है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि पेपर लीक के खिलाफ अब छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है।
4: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, बोले सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, हटाए गए एनटीए के 47 अधिकारी, पुलिस एक्शन संभव, सूत्रों के अनुसार इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। आज दोपहर 3:30 बजे नड्डा और जितेंद्र सिंह से फिर मिलेगा सीजेपी का डेलीगेशन। आज तक से बोले अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़ी स्थिति, अहमदाबाद सूरत में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया, असम में 61 लोगों की मौत। एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए लोगों का आभार व्यक्त किया है। अपने कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया है। छोटा सा वीडियो और इंस्टाग्राम पर लाखों लाख व्यूज।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: सरकार और सीजेपी के बीच दो राउंड की बातचीत हो चुकी, आज तीसरे दौर की वार्ता है। शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास आशुतोष रांका से सरकार के दो मंत्री मुलाकात कर चुके हैं, ये मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा हैं। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, वहीं सरकार ने इस पर विचार करने के लिए आज तक का समय मांगा है। अब आज दोपहर फिर से मुलाकात होगी। सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी मांग को लेकर है, जिस पर ना सीजेपी पीछे हट रही है ना विपक्ष, और इसीलिए जंतर मंतर पर धरना भी चल रहा है, जारी है और संसद ठप है।
2: मैंने इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है।
3: 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है, किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी होगा? जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं, जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी।
4: उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है,
5: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग in the march to the parliament on July 20, 2026.
3: बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के दो प्रतिनिधि पहुंचे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। दो घंटे बातचीत चली, 3 मांग 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की दो मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा।
6: नंबर एक क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर वन डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल।
7: हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा
8: हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
3: अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहाँ प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को दुख पहुँचा है।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को यह भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है।
9: आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपी हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोना मांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है, तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
10: पहली मांग करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी, और थर्ड दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एनी डिस्कशन।
3: यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर यह आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा। दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी।
11: हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस जिस दिन कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं, साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए, अंदर क्या हुआ, नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी इन्होंने स्पष्ट तौर पे लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है।
3: सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त की। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
12: छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी संवेदना की भावना के साथ प्रयत्नशील है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया, तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ।
0: सरकार के सूत्र ये कहते हैं कि केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दोबारा नीट परीक्षा बिना किसी लीक के कराए जाने की तारीफ भी की। सरकार का मानना है कि काम होगा लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने से, और अगर अकाउंटेबिलिटी की बात हो तो फिर काम होगा दोषियों को तय समय में सजा दिलाने वाली व्यवस्था को बनाने से। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया, कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को स्वीकृति भी दिलाई जो अगले सप्ताह पेश होगा।
13: छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था क्या वो पास हुआ है बिल जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे?
14: नेक्स्ट, मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में
15: कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज।
3: कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आज कोई पेपर लीक नहीं होगा। नेक्स्ट, असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा।
1: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
1: पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
3: पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है, जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा।
1: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
0: सरकार सख्त है, निर्णय ले रही है, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने लगे हैं, लेकिन क्या इससे भी पेपर लीक रुक पाएगा?
16: अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे।
17: अब प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले, ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटाक्ष करने का कोई जरूरत नहीं है, समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए इस पे ध्यान देना चाहिए।
18: सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है, अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं, उनको जो मार्कशीट दिखाई गई उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो फिर वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विद इन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है इसको हटाना चाहिए सरकार को।
19: युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए, विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी। हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं।
20: जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना CRPF लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
0: नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैलेट गन के इस्तेमाल का भी है। राहुल गांधी आज साहिल नाम के छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, दावा किया कि साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इस आधार पर राहुल ने सरकार पर देश के भविष्य यानी कि छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस दावे को पहले ही खारिज कर चुकी है, वो कह चुकी है कि हम लोग पैलेट गन का इस्तेमाल करते ही नहीं है, हमारे पास है ही नहीं।
21: क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ?
22: सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, ये है पैलेट गन।
21: अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए, दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है।
22: इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है।
21: राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी।
22: कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है।
21: साहिल लोचाप नाम का ये नौजवान दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई।
23: मेरा नाम साहिल है, मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूं, इनकलाब जिंदाबाद।
21: 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही, लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया।
24: मैं था साहिल, तो देख के सारे मेरे नाम ब्लड लग रहे हैं,
25: कटा हुआ था छर्रे, क्या
24: छर्रे यहाँ पे पूरे मुंह पे, आंखों के अंदर पूरे देख के घबरा गए हम, क्या है क्या नहीं है ये चीज। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज, उन्होंने कहा कि आंख में लड़के आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
25: यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है, क्या है?
24: यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने, बंदो घटे ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं करा।
25: ऑपरेशन हो गया या कब?
24: एक ऑपरेशन हो गया था, सुबह हुआ था ऑपरेशन, रात को।
25: आज हुआ है?
24: कल सुबह हुआ था, और मैं रात को लगे थे 1 बजे कराने की, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन, और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद।
25: आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे,
24: नो करें 1-2% चांस है।
25: निशान देख पा रहे थे?
24: निशान देखे हैं मैंने, आंखों में भी देखे हैं, आंखों के जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं या दोनों
25: तरफ शरीर से जो निकले थे छर्रे वो आप देख पाए थे जो निकाला गया?
24: नहीं, नहीं देखा।
25: डॉक्टर ने आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है, क्या लगा इसके शरीर में?
24: बस हाँ पूछा था हमने, सिर्फ इतना बताया था वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने कि
25: वहाँ क्या लगा है शरीर में, क्या चोट है
24: ये पता, हमें खुद पता नहीं चला क्या ये छर्रे छर्रे छर्रे छे छे छे क्या, हम दूसरों को क्या बताएं।
21: आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन के हैं इस पर वो कुछ नहीं कहते।
2: 20 तारीख को 8:30 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास उसी के नंबर से, उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए हैं, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए।
4: तो क्या उस समय का क्या माहौल था घर पर?
2: घर में तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कॉन्टेक्ट किया उनसे तो इलाज के लिए फिर ले गए।
4: क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको क्या पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या?
2: मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्त के जरिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा, मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में जिस चीज के भी हों।
21: पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है।
0: पेपर लीक मामले के विरोध में हो रहे प्रदर्शन से जुड़े एक और विवाद से आइए हम आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने अपने छात्रों और स्टाफ को जंतर मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है डीयू यानी कि, तो इस पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए समय आने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय करने की बात कही है।
5: तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है, सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान।
21: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरह देश के कई बड़े शिक्षा संस्थान निशाने पर है, वजह जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई छात्रों को एडवाइजरी है जिसमें छात्रों से विरोध प्रदर्शनों से बचने की सलाह दे दी गई। जेएनयू की एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल न होने न ही वहां जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रों को जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह दी गई, चेतावनी ये दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही यूनिवर्सिटी के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी छात्रों से जंतर मंतर से दूर रहने की अपील करते हुए इससे पढ़ाई लिखाई और करियर के मौकों पर बुरा असर पड़ने को लेकर चेताया है। कहा है कि जंतर मंतर पर किसी भी तरह की गैर कानूनी भीड़ या प्रदर्शन के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
6: एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर ऐसा कुछ गाइडलाइन है, मैनेजर जैसे अभी हमने कहा कि हमारे जानकारी में नहीं है, अच्छा। तो मेरे ख्याल से अच्छा है और हम सब स्टूडेंट्स को इसको देखना चाहिए और गौर करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है कि वहाँ पे नहीं जाना है, बचना है या ऐसा कुछ, तो हम उससे एग्री करते हैं।
7: गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सब अच्छा चाहिए, सब होगा सही, बाकी सब तो गुड ही है।
8: लोग अगर जाएं कहीं तो हम लोग प्रिकॉशन लें, जैसे हम लोग आराम से जाएं, सेफ पीस आंदोलन पीस मूवमेंट करें, ठीक है, जो भी प्रोटेस्ट करना है पीसफुली करें, आराम से जाए वहाँ बैठे बात करें, जिससे भी बात करें, कोई ऑफिशियल से एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आराम से बात करें, अच्छे से बात करें, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, हम लोग यही कर सकते हैं। और
21: चर्चा अब ये छिड़ गई कि ये छात्रों को सलाह दी जा रही है या फिर उनको कार्रवाई का डर दिखाकर जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने से डीयू और जेएनयू की तरफ से रोका जा रहा है। जेएनयू की पहचान भारत में छात्र आंदोलनों के सबसे अहम केंद्रों में से एक के तौर पर रही है। दशकों से इस कैंपस में शिक्षा नीति और कैंपस के कामकाज से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक के मुद्दों पर प्रदर्शन होते आए, जिससे विरोध प्रदर्शन इसकी सार्वजनिक पहचान का एक खास हिस्सा बने। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब छात्रों को चेताया तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए लिखा है कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई, समय आने पर आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं एआईयू ने छात्रों से विरोध प्रदर्शन के बजाय परीक्षाओं पर ध्यान देने को कहा है। आईआईटी रुड़की ने भी छात्रों और स्टाफ को सलाह दी, हालांकि बाद में कहा गया कि ऐसे निर्देश हर साल जारी होते हैं।
0: आक्रोश जनता पार्टी की अपील पर देश भर में छात्रों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल में प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं का गुस्सा शिक्षा की बदहाल व्यवस्था पर फूटा।
9: से पता गया है?
10: नहीं।
9: घर पे नहीं बोला
10: है? नहीं।
9: घर पे क्या बोला है?
10: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
9: अच्छा, आप रास्ते से निकले, देखा कि हो रहा है, पहुंच गए? आक्रोश देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे?
10: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए, हम उनको जानते भी नहीं थे।
21: लखनऊ के परिवर्तन चौक पर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कई छात्राएं घर पर बताकर भी नहीं आई। उनका कहना था कि वो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही हैं, आगे नीट परीक्षा देनी है। अगर बार बार पेपर लीक होता रहेगा तो मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा?
11: जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक धरना चलना चाहिए। पिछले 12 साल में 152 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई है। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ लिटरली खेला जा रहा है।
10: हमारी भी मांग वही है जो बाकी स्टूडेंट्स की है, जैसे कि पहले तो हमें हमसे माफी मांगनी चाहिए जैसा बर्ताव हमारे साथ किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो रिजाइनेशन नहीं देंगे आंदोलन तो।
21: लखनऊ में इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी लखनऊ में परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक मार्च करते हुए पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए।
9: ये जितने स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, एक वाइट टर्न दिखाई सामने, ये कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो आपने एक तरफ देखा दिल्ली में, और दूसरी तरफ देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में। अगले दो दिन फिर प्रोटेस्ट है। अब देखना ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या ये जारी रहेगा, और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, इस पर नजर फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि जो गूंज जंतर मंतर से उठी थी वो अब राजधानी पहुंच चुकी है।
21: छात्रों का ऐसा ही प्रदर्शन कोलकाता में भी हुआ है, जहां SFI के कार्यकर्ताओं ने CJP के आंदोलन का समर्थन करते हुए कोलकाता में सड़कों को जाम कर दिया।
12: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर आज SFI द्वारा बुलाई गई छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता में आयोजन किया गया, जहां सियालदा से लेकर धर्मतला जो सेंट्रल कोलकाता का इलाका है, यहां पर आज ये रैली हुआ हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में लोग जो हैं, जो खासकर छात्र छात्राएं हैं, वो हाथ में तिरंगा लिए, SFI के फ्लैग लिए यहां आ पहुंचे हैं, अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
21: मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन निकाला। इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे भी शामिल होते हैं।
13: लेकिन ये जन की बात है, ये आप दिल्ली वालों को सुनना होगा। मैं तमाम देशभक्तांना सांगतोय कि दिल्ली मध्ये या पद्धतीने, बेछूट पद्धतीने।
21: भोपाल में पेपर लीक के मुद्दे पर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और पेपर लीक को सिस्टम का लीकेज बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। इसमें वो छात्र छात्रा भी शामिल होते हैं जिनकी परीक्षाएं वर्षों से लटकी हुई हैं।
14: भोपाल के नीलम पार्क में इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए छात्र हैं, वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं रुकी हुई है वो होनी चाहिए, वक्त पर नतीजे घोषित होने चाहिए, वक्त पे भर्तियां निकलनी चाहिए। ये बताइए, जो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं, जिसके बाद आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए?
10: सर, वो सब गलत है, जो भी शिक्षा को लेके जो भी है, ये कोई भी मतलब ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जो लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के स्टूडेंट ही भविष्य है आगे चल के।
21: हैदराबाद की सड़कों पर भी नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश दिखा। पुराने हैदराबाद में इकट्ठा हुए लोग और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया।
26: आज BRS का यूथ विंग ने हैदराबाद के धरना चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं मेरे ठीक बिल्कुल पीछे, भारी संख्या में यहां पर BRS के लीडर्स, युवा छात्र के संगठन और साथ ही BRS का युवा मोर्चा यहाँ पर जमा हुए हैं।
27: स्टूडेंट्स का एजुकेशन का मामला है तो मैं पूर्व से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन है इसको सुधारना एक युवा का काम है। युवा जब तक नहीं जागेगा ये एजुकेशन सिस्टम सेट नहीं होगा।
21: नीट पेपर लीक मामले ने शिक्षा की बदहाली को उघाड़ कर रख दिया है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि पेपर लीक के खिलाफ अब छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन जारी किया वीडियो संदेश, कहा आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। अनशन तोड़ने को लेकर सवाल उठाने वालों पर सोनम वांगचुक का पलटवार, बोले सौदे के लिए मैं नहीं करता 26 दिनों तक भूख हड़ताल, ऐसे लोगों पर है धिक्कार। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, हटाए गए एनटीए के 47 अधिकारी, पुलिस एक्शन संभव, सूत्रों के अनुसार इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान। आज दोपहर 3:30 नड्डा और जितेंद्र सिंह से फिर मिलेगा सीजेपी का डेलीगेशन। आजतक से बोले अभिजीत दीप के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़ी स्थिति, अहमदाबाद सूरत में सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया, असम में 61 लोगों की मौत। एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए लोगों का आभार व्यक्त किया है। अपने कल के वीडियो संदेश पर सकारात्मक सुझाव मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया है। छोटा सा वीडियो और इंस्टाग्राम पर लाखों लाख व्यूज।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: सरकार और सीजेपी के बीच दो राउंड की बातचीत हो चुकी, आज तीसरे दौर की वार्ता है। शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास आशुतोष रांका से सरकार के दो मंत्री मुलाकात कर चुके हैं, ये मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा हैं। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, वहीं सरकार ने इस पर विचार करने के लिए आज तक का समय मांगा है। अब आज दोपहर फिर से मुलाकात होगी। सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी मांग को लेकर है, जिस पर ना सीजेपी पीछे हट रही है ना विपक्ष, और इसीलिए जंतर मंतर पर धरना भी चल रहा है, जारी है और संसद ठप है।
2: मैंने इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट।
3: 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है, किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी होगा, जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं। जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी।
4: उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है,
5: गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड दोज पार्टिसिपेटिंग in the march to the parliament on July 2026.
3: बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के दो प्रतिनिधि पहुंचे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। दो घंटे बातचीत चली, 3 मांग 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की दो मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा।